0: जनरेशन की नई डिमांड के बीच में सियासत सत्ता हासिल करने और सत्ता को बनाए रखने के पुराने ढर्रे पुराने फॉर्मूले पर चलना चाहती है। जहां अखिलेश यादव पहले से कहते हैं कि वो उत्तर प्रदेश में जीते तो महिलाओं को 40,000 रुपए साल भर में देंगे, तो अब उत्तर प्रदेश में खबर कि योगी सरकार महिलाओं को चुनाव से पहले 20,000 रुपए की पहली किस्त देने और बीजेपी की सरकार लगातार तीसरी बार बनने के बाद 10,000 रुपए की 3 किस्तें देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।
1: महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्लान बना रही है, विचार कर रही है। इस विचार के तहत माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो 50,000 तक की जो मदद है वो SC/ST/OBC महिलाओं को दिया जाएगा, जिसको लेकर प्लान बनाया जा रहा है, जिसको लेकर पार्टी विचार कर रही है।
0: कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जब महिलाओं के वोट को लेकर निश्चिंत योगी सरकार पहले से रही है, तो फिर आखिर क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश में भी महिलाओं को पैसा चुनाव से पहले बांटने वाले फॉर्मूले के जरिए सत्ता हासिल करने की रणनीति पर विचार होने लगा? क्या इसकी पहली वजह यह है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा वोट देने उत्तर प्रदेश में निकलती हैं, जहां 2017 में करीब 4% और 2022 में करीब 3% ज्यादा महिला वोटर पुरुषों के मुकाबले वोट देने निकली थी? क्या दूसरी वजह यह है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन ने 17 में से 12 सीटें यानी वो 70% सीटें जीती, जहां 2024 के आम चुनावों में पुरुषों की तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा थी? क्या तीसरी वजह यह है कि महिला वोटर के लिए चुनाव से पहले 50,000 रुपए बांटने वाली स्कीम लाकर जेन जी वोटर की नाराजगी की आशंका में महिला मतदाता को साधा जा रहा है? उत्तर प्रदेश में जेन जी वोटर करीब 21.19% है, जबकि महिला वोटर की संख्या 45.46%। ऐसे में क्या जंतर मंतर के आंदोलन और जगह जगह जेन जी जेन अल्फा की मांगों के मुकाबले महिलाओं को पैसा बांटकर बड़े वर्ग का वोट सुनिश्चित करने की कोशिश है? क्या चौथी वजह ये भी है कि महिला वोट जिधर ज्यादा जाता है उधर ही सत्ता हासिल होती है? 2007 में BSP को सबसे ज्यादा 32% महिला वोट मिला था, मायावती मुख्यमंत्री बनी थी। 2012 में समाजवादी पार्टी को 31% महिला वोट मिला, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। 2017 में 41% महिला वोट और 2022 में 46% महिला वोट लेकर योगी आदित्यनाथ 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं।
2: हमने बिहार में भी देखा था कि चुनाव से पहले किस तरह सरकार ने सबके महिलाओं के खातों में पैसे पहुंचाने का कार्य किया था, और हमने ये भी देखा है महाराष्ट्र में भी इस तरह का कार्य हुआ है। तो हम इसकी बात के लिए तैयार है, हम जानते हैं कि सरकार कुछ ना कुछ इस तरह का करेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी इस बात के लिए तैयार है चुनाव से पहले लोगों के खाते में उनके मतलब कॉन्शियस को आप खरीदने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं। पूरा आपने 10 साल तो भ्रष्टाचार कर दिया, न जाने कितने हजारों लाखों करोड़ रुपए आप भारतीय जनता पार्टी करप्शन के माध्यम से, आज सड़कों की हालत देख लीजिए, आज इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत देख लीजिए, आज नौकरियां नहीं है बच्चों पे, आज सरकारी नौकरी नहीं है, आज हमारे PDA जो है पिछड़ा दलितों को जो आरक्षण मिलना चाहिए वो आरक्षण नहीं है। तो मतलब इस तरह की जो घटनाएं घटी हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, तो पूरा 10 साल का हिसाब किताब देना है भारतीय जनता पार्टी को।
3: भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह चुनाव जीतना चाहती है, हो सकता कोई लॉलीपॉप दिखा रहा हो जी। सरकार की तरफ से लॉलीपॉप आ रहा हो, लेकिन ये तो चला चली की बेला है। अगर आपने वास्तव में महिलाओं के जन कल्याण के लिए कोई काम किया होता तो NCERB के आंकड़ों में आज सबसे ज्यादा महिला उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, सबसे ज्यादा असुरक्षित कहीं महिलाएं हैं। और आपने तो जो समाजवादी पेंशन महिलाओं को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी PDA के जन नायक माननीय अखिलेश यादव जी दे रहे थे, उसको आपने बंद कर दिया। अभी आप कौन सी योजना लेकर के आए हो सकता है चुनावी लॉलीपॉप कोई हो आपका, लेकिन जनता आपकी हकीकत जानती है।
0: BJP अगर महिला वोटर को लुभाने के लिए 50,000 रुपए किस्तों में देने की स्कीम पर विचार कर रही तो ये भले समाजवादी पार्टी के नेताओं को लॉलीपॉप लगे, लेकिन ऐसा ही वादा तो खुद भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव तक कर चुके हैं।
4: बिहार का परिणाम क्यों बदल गया? सुनने में आया है कि 10,000 रुपए बड़े होते हैं, 10,000 रुपए, 10,000 रुपए दे दीजिए। अब बहुत सारी माताएं बहने इंतजार कर रही कि उन्हें कब 10,000 रुपया और मिलेगा, उनको धोखा दे दिया 10,000 रुपये नहीं मिलेंगे। तो हम लोगों ने भी तैयारी कर ली है। मुझे याद है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 500 रुपये महिलाओं को देना शुरू किया था समाजवादी पेंशन के माध्यम से, और उसके बाद जो चुनाव था उसमें 1,000 रुपये हम देने जा रहे थे। उसके बाद जब लोकसभा का चुनाव आया तो हम 2,500 देने जा रहे थे। पिछला चुनाव जीत गए और अगला चुनाव होने जा रहा है जब 27 का, तो हमने बीजेपी से सीख करके हिसाब किताब लगाया है कि अगर हमारी माताएं बहनें जो उत्तर प्रदेश की थीं, उन्होंने जो पैसा खोया है 500 500 500, अगर हिसाब लगाएं तो लगभग 3,000 रुपये बनते हैं, तो 12 महीने देना है 3,000, तो कितना हुआ 36,000 रुपये। और क्योंकि इतने साल नहीं मिला तो उसका इंटरेस्ट भी हम जोड़ रहे हैं 4,000। तो समाजवादी हम लोग तय करेंगे कि गरीब माताएं बहनों को साल में

0: साजिश रची है। आतंकी हमले की साजिश बहुत गहरी है क्योंकि लश्कर के 8 सुइसाइड बॉम्बर घुसपैठ करके देश में दाखिल हो चुके हैं। लश्कर के फिदायीन दस्ते को दिल्ली के 6 ठिकानों पर हमले का जिम्मा सौंपा गया है। आतंकी खतरे को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं।
1: पंद्रह अगस्त को दिल्ली दहलाने का जिहादी प्लान, छह ठिकानों पर बड़े हमले की तैयारी में आतंकी, लश्कर की फिदायीन टीम आज कर सकती है अटैक। आईएसआई का प्लान और तलहा सईद का सुसाइड दस्ता, दिल्ली में हाई अलर्ट ऑपरेशन 15 अगस्त। बीते साल नवंबर में लाल किले के पास आतंक के डॉक्टर मॉड्यूल ने फिदायीन हमले को अंजाम दिया था। डॉक्टर उमर ने विस्फोटक से भरी कार के साथ खुद को उड़ा लिया था, लेकिन लाल किले पर हमला करने में नाकाम रहा। अब इसी पैटर्न पर लश्कर का फिदायीन दस्ता दिल्ली को दहलाने की फिराक में है। आज तक संवाददाता अरविंद ओझा फिदायीन हमले की प्लानिंग से जुड़ा बड़ा खुलासा कर रहे हैं।
2: मेरे हाथ में मौजूद इस कागज में दिल्ली को दहलाने की खुफिया एजेंसी का खौफनाक सच मौजूद है। 15 अगस्त को लेकर खुफिया एजेंसियों की तरफ से 11 अगस्त को जारी किए गए इस इंटेलिजेंस अलर्ट की कॉपी में फिदायीन हमले से सुरक्षा एजेंसियों को सावधान रहने को कहा गया है, क्योंकि लश्कर के फिदायीन हमलावर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और तलहा सईद के इशारे पर दिल्ली में घुसपैठ कर चुके हैं। शायद इसी वजह से दिल्ली को अभेद किले में तब्दील कर दिया गया है।
1: बहुत गौर से अलर्ट की कॉपी को देखिए। कॉपी की एक एक लाइन आतंकियों के खौफनाक मंसूबों की गवाही देने को काफी है। सबसे पहले अलर्ट की कॉपी को डिकोड करते हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई, खालिस्तानी आतंकी और लश्कर की तिकड़ी का प्लान, दिल्ली को आईईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस से दहलाने की साजिश रची गई है। दिल्ली में लोकल नेटवर्क और प्रो खालिस्तान सिंडिकेट के जरिए आईईडी की डिलीवरी होनी है। दिल्ली एनसीआर में आतंक के नेटवर्क को पाक में बैठे आतंकियों ने एक्टिव किया है।
2: दिल्ली को दहलाने की साजिश पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के हेडक्वार्टर में रची गई है। फिदायीन हमले के लिए आतंकियों की खेप तलहा सईद ने मुहैया करवाई है। खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट में खुलासा हुआ है कि एक दो नहीं बल्कि 8 फिदायीन हमलावर देश में घुसपैठ कर चुके हैं। इन 8 आतंकियों को लश्कर के कैंप में ट्रेनिंग दी गई है और इनके निशाने पर कुल 6 लोकेशन हैं।
1: खुफिया इनपुट के मुताबिक आतंकी देश की संसद, कनॉट प्लेस, दिल्ली के सरकारी भवन और रेलवे स्टेशन पर हमला करने की प्लानिंग रच रहे हैं। इसके साथ साथ जम्मू और राजस्थान में फिदायीन हमले की नापाक साजिश पाकिस्तान में रची गई है। 30 जून को गुजरात के अक्षरधाम मंदिर हमले के मास्टरमाइंड फरहतुल्ला गौरी की तरफ से भेजे गए संदेश को इंटरसेप्ट किया गया। आतंकी फरहतुल्ला ने सिग्नल ऐप के जरिए स्टूडेंट ग्रुप ऑफ हिंद पर एक संदेश भेजा था। संदेश में भारतीय मुसलमानों को आर्मी ऑफ मेहदी में शामिल होने के लिए उकसाया। कहा मुसलमानों को दिल्ली पर इस्लाम का झंडा फहराना होगा। ये तभी होगा जब दिल्ली में फिदायीन हमले होंगे। खुफिया एजेंसियों के पास पुख्ता इनपुट है कि दिल्ली रेलवे स्टेशन की रेकी करवाई गई है। मई महीने में इंटरसेप्ट हुए एक मैसेज से पता चला कि आईएसआई का प्लान भारत में 6 बड़े धमाके करवाने का है और फिदायीन हमले के लिए तलहा सईद से जुड़े 8 आतंकी देश में दाखिल हो चुके हैं। फरहतुल्ला गौरी उर्फ अबू सुफियान उर्फ सरदार साहब उर्फ कारी, ये पाकिस्तान में बैठा वही आतंकी है जो आईएसआई का प्यारा और हाफिज सईद का दुलारा है। गौरी लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों से जुड़ा है।
2: भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में फरहतुल्ला गौरी का नाम शामिल है। ये फिलहाल पाकिस्तान में अंडरग्राउंड है और लगातार आईएसआई और लश्कर के इशारे पर भारत को दहलाने की आतंकी साजिश रचता रहा है। खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के मुताबिक फरहतुल्ला गौरी 4 महीने पहले तलहा सईद से मिला था। आतंकी मीटिंग में 15 अगस्त को

0: दिल्ली को दहलाने की स्क्रिप्ट लिखी गई थी, लेकिन आतंकियों की इस नापाक साजिश को नाकाम करने के लिए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से मुस्तैद हैं।
1: आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए देश की राजधानी दिल्ली में हाई अलर्ट है। दिल्ली पुलिस के साथ साथ तमाम सुरक्षा एजेंसियों को 15 अगस्त के मद्देनजर तैनात किया गया है। आतंकवादियों की साजिश को नाकाम करने के लिए दिल्ली पुलिस ने मॉक ड्रिल किया।
2: दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियों की मॉक ड्रिल। दिल्ली सचिवालय से लेकर कनॉट प्लेस तक, एयरपोर्ट से लेकर दिल्ली के बाजारों तक आतंकी हमले से निपटने की पूरी तैयारी। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने मॉक ड्रिल किया। तैयारी हर हालात से निपटने की है। सबसे पहले दिल्ली सचिवालय की तस्वीरें, जहां सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकी हमले से निपटने की मॉक ड्रिल की। आप देख सकते हैं सचिवालय के बाहर धुआं उठ रहा है, ये मॉक ड्रिल का हिस्सा है। यानी हमला हुआ तो 15 अगस्त को सुरक्षा एजेंसियां कैसे निपटेंगी।
3: इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली सचिवालय के बाहर, जहां से दोपहर 1:30 बजे एक कंट्रोल रूम को कॉल गई कि गेट नंबर 5 से कुछ संदिग्ध बैग लेकर अंदर घुसे और साथ ही धमाके की आवाज आई। इसके तुरंत बाद तमाम एजेंसियां, आप देखिए सामने बम डिटेक्शन टीम यहां पर अपने तमाम इक्विपमेंट के साथ मौजूद है, क्योंकि अंदर कुछ लोग घुसे हुए हैं, ये कॉल थी। और उसके बाद पूरी टीम पहुंची है कि अगर उन्होंने कहीं पर अंदर कोई विस्फोटक छिपाया है तो उसको कैसे डिटेक्ट किया जाएगा। इसके लिए बम डिटेक्शन टीम यहां पर अपने तमाम सामान के साथ पहुंची है, देखिए जो अंदर की तरफ जा रही है। वहीं हम अगर आपको दिखाएं तो इस पूरे गेट नंबर 5 को पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस कि आप ये देखिए स्वात की गाड़ी यहां पर मौजूद है। दरअसल 15 अगस्त के पहले मॉक ड्रिल किया जा रहा है। तमाम एजेंसियों का रिस्पॉन्स टाइम देखा जा रहा है कि अगर कोई सिचुएशन बनती है तो उससे कैसे निपटा जाएगा।
2: मॉक ड्रिल में तमाम एजेंसियों को शामिल किया गया। इसमें बम निरोधक दस्ते से लेकर घायलों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाना शामिल है। दिल्ली सचिवालय की तरह ही कनॉट प्लेस पर मॉक ड्रिल की गई। खुफिया इनपुट के मुताबिक आतंकी कनॉट प्लेस पर बड़े आतंकी हमले की फिराक में हैं।
4: 15 अगस्त से पहले दिल्ली में हर साल की तरह इस बार भी सिक्योरिटी अलर्ट है। एक बार फिर से एनएसजी और दिल्ली पुलिस का एक बहुत बड़ा मॉक ड्रिल जो है कनॉट प्लेस में हो रहा है। इस मॉक ड्रिल का थीम बेसिकली ये रखा गया है कि अगर कनॉट प्लेस में किसी भी तरह का आतंकी हमला हो जाता है तो जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स और पुलिस की टीम है वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगी। अगर आप तस्वीरों में देखें तो ये जो पूरा इलाका है इनर सर्कल का कनॉट प्लेस में, इसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है ट्रैफिक के लिए इस वक्त, और हर जगह अलग अलग जगह बैरिकेड लगा करके और ये डू नॉट क्रॉस दिल्ली पुलिस की जो टेप्स हैं ये लगा करके सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ इस तरीके से एक के बाद एक एम्बुलेंसेस पहुंच रही हैं और जो कथित तौर पे घायल होंगे जो लोग ऐसे हमले में, उन्हें किस तरीके से वहां से निकाला जाएगा और कैसे जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचाया जाएगा ताकि उन्हें सही समय पर उपचार मिल सके, इन चीजों की डिटेल में तैयारी की जा रही है।
2: ये तस्वीरें दिल्ली के शहादरा इलाके की हैं। यहाँ पर भी आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए मॉक ड्रिल की गई। यहाँ बम ब्लास्ट का सीन क्रिएट किया गया जिसमें धमाके के बाद कुछ लोग घायल हो गए। मॉक ड्रिल के दौरान सुरक्षा एजेंसियों का रिस्पांस टाइम देखा गया।
5: इंडिपेंडेंस डे के अरेंजमेंट को ध्यान में रखते हुए हमारे डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग व्हीकल इंस्टॉलेशन पे मॉक ड्रिल कराई जा रही है। इसी के तहत ये गांधीनगर मार्केट में आज एक हमने मॉक ड्रिल किया है जिसमें ये कॉल दी गई थी कि एक एक्सप्लोजन होने के कारण 2 लोग इंजर्ड हैं। इसी चीज को ध्यान रखते हुए सारे कंसर्न एजेंसियों को सूचना दी गई और सबने अपने अपने तरीके से क्विक वे में रिस्पॉन्ड किया है, जिसमें लोकल पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया, PCI ने किया है, हमारी BDT की टीम ने किया है, कैट्स एम्बुलेंस ने किया है। और इस कार्रवाई के तहत उन्होंने पहले पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया है और जो इंजर्ड लोग थे उनको सुरक्षित उन्होंने फिर हॉस्पिटल पहुँचाया है। पूरी कार्रवाई में करीब 10 से 12 मिनट का रिस्पॉन्स टाइम रहा है। इससे जो इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन है हमारी इंप्रूव हुई है ताकि कभी भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो उस पर हम बहुत क्विक तरीके से रेस्पॉन्ड कर पाए।
2: दिल्ली पुलिस के मुताबिक दिल्ली के अलग अलग इलाकों में 17 घंटे तक मॉक ड्रिल की गई। इस पूरी एक्सरसाइज को गृह मंत्रालय के निर्देश पर एनएसजी और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने कोऑर्डिनेट किया। इसका मकसद ये देखना था कि अगर दिल्ली में एक साथ कई जगह आतंकी हमला होता है तो अलग अलग सुरक्षा एजेंसियां कितनी जल्दी मौके पर पहुंचती हैं और आपस में कितना बेहतर तालमेल बनाकर हालात को काबू में करती हैं। साफ है कि 15 अगस्त के मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। खासतौर पर दिल्ली में अभेद सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है ताकि आतंकियों की नापाक साजिश पर पानी फेरा जा सके। आज तक ब्यूरो।
1: बलूचिस्तान ने अपनी आजादी का ऐलान किया और जश्न मनाया, तो आसिम मुनीर की सेना ने बलूचिस्तान के लोगों पर F-16 फाइटर प्लेन से बमबारी कर डाली, जिसमें 30 लोगों की जान चली गई है और बड़ी तबाही मच गई। एक तरफ पाकिस्तान बेगुनाहों का खून बहा रहा है तो दूसरी तरफ उसका आतंक प्रेम भी दुनिया के सामने आ रहा है।
2: बलूचिस्तान ने ली आजादी, मुनीर की सेना ने बरसाए बम।

0: Well, it's just time for parts in any F-16 to grab on. These keep on. बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का पलटवार, पाक सुरक्षा बलों पर हमले। आतंकियों का गुलाम बना पाकिस्तान, पूर्व गृह मंत्री का कबूलनामा। लश्कर के चीफ हाफिज सईद को शेख रशीद ने माना आका। दुनिया के सामने पाकिस्तान के दो चेहरे बेनकाब हुए हैं, एक जल्लाद आसिम मुनीर का चेहरा और दूसरा पाकिस्तान के आतंक परस्त होने का सबूत देने वाला चेहरा। तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कैसे बलूचिस्तान में आजादी की घोषणा के बाद मुनीर की फौज ने बलूचिस्तान के लोगों पर F-16 फाइटर जेट से बमबारी की, तो दूसरी तरफ हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री शेख रशीद अहमद ने कबूल किया कि वो आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के चीफ हाफिज सईद के गुलाम हैं। पहले बात बलूचिस्तान की। 11 अगस्त 2026, पिछले 80 साल से पाकिस्तान की धोखेबाजी और जुल्म का शिकार हो रहे बलूचिस्तान के लोगों ने अपनी आजादी का ऐलान किया और जश्न मनाया। बलूचिस्तान ने खुद को एक आजाद देश घोषित किया। उन्होंने दुनिया भर के देशों से इसे आधिकारिक मान्यता देने की मांग की और पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस यानी 14 अगस्त से 3 दिन पहले स्वतंत्रता दिवस मनाया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर बलोचों की इस आजादी को बर्दाश्त नहीं कर पाए। पहले तो पाकिस्तान ने पुलिस की मदद से बलूचिस्तान में जश्न रोकना चाहा, लेकिन जब बात नहीं बनी तो गाजा की तरह बम बरसाने शुरू कर दिए। पाकिस्तान की वायुसेना अपने ही देश में हवाई हमले कर रही है। बलूचिस्तान से आई रिपोर्टों से पता चलता है कि इन हमलों में आम लोगों को निशाना बनाया गया है। सुराब और ग्वादर इलाकों में किए गए इन हमलों में कम से कम 30 आम नागरिक मारे गए हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। बलोच नेता मीर यार बलोच ने हमले की तस्वीरें और वीडियो शेयर किए हैं, जिसमें हमले की जगह को देखने के बाद गाजा की याद ताज़ा हो जाती है। मीर यार बलोच ने कहा कि पाकिस्तानी जमीनी सेना और पाकिस्तान की वायुसेना ने सुराब और आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर बमबारी और गोलीबारी की, जिससे नागरिकों और उनकी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तानी सेना ने F-16 फाइटर से हमला किया। बलूचिस्तान में हवाई हमले ऐसे समय में हुए हैं जब पाकिस्तानी सेना बलूच विद्रोहियों के भयंकर हमलों का सामना कर रही है। हाल ही में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने दावा किया था कि उसने इस महीने अब तक कम से कम 38 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है। पाकिस्तानी बमबारी के बीच BLA ने भी पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर हमले शुरू कर दिए। बलूच विद्रोही समूह ने चगाई जिले में आधी रात को बमबारी करके एक पुलिस स्टेशन पर हमला किया। इस हमले में 3 पाकिस्तानी जवान मारे गए। इसके अलावा छाव में पाकिस्तानी मिलिट्री कैंप, खुजदार में सुरक्षा बलों के काफिले और पड़ोसी बाद शहर में सेना की गाड़ियों पर घात लगाकर हमला किया। आतंक परस्त पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब। हाफिज सईद जैसे आतंकियों का गुलाम है पाकिस्तान। दुनिया के सामने आज आतंक परस्त पाकिस्तान का मुखौटा उतर चुका है। पाकिस्तान की सरकार आतंक के आकाओं की उंगलियों पर चलती है, ये आज साबित हो चुका है। भारत को पाव भर के परमाणु बम की धमकियां देने वाले पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री शेख रशीद ने खुलेआम आतंकवादी हाफिज सईद से रिश्तों को कबूल किया है। शेख रशीद ने खुद को हाफिज सईद का गुलाम और फॉलोअर बताया। वो हाफिज सईद जो आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का संस्थापक है, वो लश्कर-ए-तैयबा जो भारत में कई बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दे चुका है। जब शेख रशीद ने ये बयान दिया तो वो प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के मंच पर लश्कर के 2 खूंखार आतंकवादियों के बीच में बैठे थे। इसी दौरान उन्होंने ये भी कबूल किया कि उन्हें अमेरिका से धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया था, क्योंकि उनके फोन से ग्लोबल टेररिस्ट और मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का फोन नंबर मिला था। सुनिए हाफिज सईद का ये गुलाम कल क्या कह रहा था।
1: मैं तो सिर्फ एक ही बात, हाफिज सईद साहब का मैं गुलाम हूँ। मैं हाफिज सईद साहब की वजह से सारी मेरे टेलीफोन में से हाफिज सईद साहब का नंबर निकल आया अमरीका में, और उन्होंने मुझे अमरीका से निकाल दिया कि हाफिज सईद का नंबर इस बंदे के फोन में से निकला है। और आप मुजाहिद लोग हैं, अजीम लोग हैं, आप نے اپنی زندگیاں وقف کی ہیں اس پاکستان کے لیے, اور ہم بھی انشاءاللہ تعالی حافظ سعید صاحب کے ساتھ ہیں.
0: آتنکیوں کا یہ غلام ان کے ہی اشارے پر بھارت کو گیدڑ بھبکی دینے سے باز نہیں آیا. اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی کیونکہ آپریشن سے دور میں پڑی مار اب تک پاکستان بھولا نہیں ہے. اس کے باوجود شیخ راشد نے بھارت کو گیدڑ بھبکی دی. پہلے اس کا یہ بیان سنیے, پھر آپ کو بتائیں گے جس سٹیج سے یہ بیان دیا گیا اس پر لشکر کے کتنے خونخوار آتنکی بیٹھے تھے.
1: کبھی بھی ہندوستان موقع ضائع نہیں کرے گا, اور جب بھی ہندوستان پاکستان کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر پاکستان پر جو کچھ اس کا رول ہے اس سے وہ رول ادا کرنے کی ناکام کوشش کرتا ہے. انشاءاللہ تعالی نیز تو نابود کر دیں گے اگر ہندوستان نے پاکستان کی طرف دیکھا. نہ چڑیا چہکیں گی ہندوستان میں, نہ برلا جی کے مندر میں گھنٹیاں بجے گی, اور نہ ہی ہندوستان میں کوئی ایسا کام ہو سکے گا جو پاکستان کے خلاف جائے. ہم پاکستان کے ساتھ ہیں, حافظ سعید صاحب کے ساتھ ہیں.
0: آپریشن سے دور کے بعد بھارت نے دنیا بھر میں اپنے پرتینیدھی بھیج کر پاکستان کے جس آتنک پرست چہرے سے پردہ ہٹایا تھا آج اس کی گواہی پاکستان سے خود ہی دی جا رہی ہے. آج تک بیورو.
2: اور اسی کے ساتھ ہم یہاں رکیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے, آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ, دیکھتے رہیے آج تک.
3: پریزنٹڈ بائی پتنجلی دنت کانتی ٹروتھ پیسٹ, کمپلیٹ اورل ہیلتھ کا سچ.
4: व्यक्ति को मधुमेह हो जाता है, डायबिटीज होने के ग्रह योग कौन से होते हैं, और डायबिटीज हो जाने पर कौन से उपाय करने चाहिए, क्या है डायबिटीज का ग्रहों के साथ संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र.
5: آج تک لا رہا ہے آپ کے لیے ویڈیو والا پیپر, ہر روز صبح آپ کے موبائل پر, وہ بھی آپ کے پرانے نیوز پیپر سے پہلے. اسے پڑھنے کے لیے اپنے ڈیوائس پر e-paper.aajtak.in ٹائپ کریں, یا پھر سکرین پر دیے ہوئے کیو آر کوڈ کو اسکین کریں.
6: سر بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, میں ہلدوان میں پبلک اسپیچ میں رام لیلم میدان میں رام لیلا اسٹیج پہ بھاشن کیا اور لاکھوں لوگ وہاں پر تھے. اس وقت میں نے کسی سماج کا کسی دھرم کا نام نہیں لیا, صرف میں لوگوں کے سمسیاؤں کو وہاں پر بتایا. لیکن میرے اسپیچ ہونے کے بعد کل وہ لوگ بی جے پی کے لوگ سب مل کے ہون کر کے اس اسٹیج کا شدھیکرن کرنے کا کام کیے.
7: بی جے پی, کیونکہ کھڑگے صاحب نے کہا کہ بی جے پی کے لوگ تھے, میں سپشٹ کرنا چاہتا ہوں, یہاں راشٹری ادھیکش جی بھی بیٹھے ہیں اور میں بھی پورو راشٹری ادھیکش رہا ہوں. بی جے پی ڈز ناٹ سبسکرائب ٹو سچ ایکٹیویٹیز, نیور. لیکن آپ نے کہا ہے ہم اس کی تحقیقات بھی کریں گے.
3: پریزنٹڈ بائی پتنجلی دنت کانتی ٹروتھ پیسٹ, کمپلیٹ اورل ہیلتھ کا سچ.

हाइड्रो प्रोजेक्ट की टनल में फंसे 22 लोगों में से 7 की मौत की पुष्टि, 14 अन्य का किया गया रेस्क्यू। पानी और मलबा भरने की वजह से बचाव कार्य मुश्किल। नांदेड़ में शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल पर हमले के आरोपी के खिलाफ जांच तेज। पुणे में जसपाल सिंह के घर पर एटीएस ने की छापेमारी।

उड़ाने पर राहुल गांधी के खिलाफ उतरी बीजेपी, भारतीय राजनीति की मर्यादा पर बताया कलंक। रांची में छात्र प्रदर्शन का आज 21वां दिन, राज्य सरकार पर दबाव बनाने के लिए 15 अगस्त को तिरंगा रैली, 10 अगस्त के प्रदर्शन को लेकर हत्या की कोशिश के आरोप में दर्ज एफआईआर पर बीजेपी ने उठाए सवाल। अगस्त से पहले दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में हाई अलर्ट, जबरदस्त सुरक्षा इंतजाम, तिरंगे की रोशनी से रंगे इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन।

0: 6 बज चुके हैं और वक्त हो गया है इस खास बुलेटिन का। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त की एक बड़ी खबर उत्तराखंड के चमोली से आ रही है, जहां पर सुरंग हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक पीपलकोटी स्थित THDC की निर्माणाधीन टनल में अचानक से मलबा और पानी भरने के कारण वहां काम कर रहे 22 मजदूर फंस गए और खबर मिलते ही उनका रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। उत्तराखंड पुलिस, SDRF, NDRF और ITBP के जवानों को राहत कार्य में लगाया गया। काफी मशक्कत करनी पड़ी, जिसके बाद सुरंग से 21 लोगों को निकाला गया है। इनमें से 7 की मौत की पुष्टि हो चुकी है और अभी भी एक मजदूर अंदर फंसे होने की खबर है। उसे बाहर निकालने के लिए पूरी रात ऑपरेशन चला है। बचाव कर्मी ड्रम की मदद से नाव बनाकर रेस्क्यू में जुटे दिखे। जिन 7 लोगों की मौत हुई है, उनमें उत्तराखंड के टिहरी और चमोली से एक एक लोग हैं, बाकी बिहार और झारखंड से बताए जा रहे हैं। घायलों में ज्यादातर झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ से, वही एक पंजाब और एक हिमाचल प्रदेश से भी है। टनल में पानी और कीचड़ भरे होने की वजह से काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जिला अधिकारी ने जानकारी दी है कि पानी को निकालने के लिए मशीन को लगाया जा रहा है। THDC की निर्माणाधीन टनल में रात भर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। एक व्यक्ति अभी तक वहां पर फंसा हुआ है, जिसको वहां से निकालने की पूरा कोशिश की जा रही है। सुरंग में पानी भर गया, कीचड़ भरने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
1: यहाँ से 1600 मीटर अंदर इस टनल का लूज गिरा है, जिस समय शिफ्ट जहाज यहाँ से जा रही थी। लगभग 28 लोगों की जो जानकारी है, जो जिला प्रशासन के अनुसार 28 लोग यहाँ से अंदर जा रहे थे, उसी समय ये लूज गिरा। कुछ लोग उस तरफ फंस चुके हैं, वहीं 7 लोग पानी के बहाव के साथ इस तरफ को आए थे और उसके बाद से यहाँ पे लगातार राहत बचाव कार्य चल रहा है। अभी भी 18 लोगों को रेस्क्यू कर दिया गया है। जो अन्य लोग फंसे हैं, लगभग 10 के आसपास वहाँ पे लोग फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने की अभी कवायद की जा रही है। सभी घायलों को यहां से जिला अस्पताल गोपेश्वर भेजा जा रहा है। तो वहीं SDRF, NDRF, भारतीय सेना और तमाम जो ITBP है और यहां पे SDRF है, जिला प्रशासन की जो टीमें हैं, तमाम लोग इस समय यहां पे पहुंचे हैं। हर कोई, जो जिलाधिकारी चमोली हैं वो यहां पे पहुंचे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, NDRF की टीम को यहां पे गाइड कर रहे हैं। वहीं पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, तमाम यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। वहीं इस तरफ भी लगातार राहत एवं बचाव कार्य किया जा रहा है। भारतीय सेना और तमाम लोगों के द्वारा जो जिला प्रशासन है वो लगा हुआ है। यहाँ से लगभग 1600 मीटर जो अंदर है, वहां पे ये घटना हुई है। वहीं पे इस टनल का लूज गिरा है और वहीं पे से टनल का जो उस तरफ का हिस्सा है वो बंद हो चुका है। अब ये JCB मशीन यहाँ से अंदर जा रही है और ये वहां पे उस लूज को हटाने का काम करेगा, ताकि जो लोग उस लूज के उस तरफ फंसे हुए हैं उन्हें आसानी से इस तरफ निकाला जा सके। देखना होगा उस तरफ क्या स्थिति है, हालांकि ये अभी देखने वाली बात है। लेकिन इस समय जो हालात है, यहाँ पे तमाम फोर्स मौजूद हैं, रेस्क्यू, राहत, बचाव, सेना से लेकर पुलिस से लेकर NDRF से लेकर तमाम सब यहाँ पे मौजूद हैं और इस तरह से यहाँ पे राहत एवं बचाव कार्य किया जा रहा है। मौके की तस्वीरें इस तरह से जो है वो बनी हुई है। कमल एंसिलोरी, चमोली, आज तक।
0: और हमारे सहयोगी कमल नैन सिलोड़ी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, एक बार जानकारी दीजिएगा। देखिए, 22 लोग वहां पर फंसे थे, अभी भी कहा जा रहा है कि एक मजदूर वहां फंसा हुआ है। क्या अपडेट है, कब तक उसको वहां से निकाल लिया जाएगा, क्यों वहां पर मुश्किल आ रही है उस व्यक्ति को बचाने में?
2: जी पूजा, कल 22 लोग जब यहाँ फंस गए थे तो सबसे पहले 10 लोगों को निकाला गया, उसके बाद धीरे धीरे सभी लोगों को निकाला गया। अब तक 21 लोगों को निकाला जा चुका है, एक व्यक्ति अभी भी लापता है, क्योंकि वहां पे अंदर जो TRT टनल है, इसके अंदर लगातार पानी जो है वो भरता जा रहा है। पहले क्या होता है, जब काम चलता है तो यहाँ पे पंपिंग जो होती है, पंपिंग के माध्यम से पानी को बाहर किया जाता है, लेकिन जब कल से ये हादसा हुआ है उसके बाद पंपिंग पूरी तरह से बंद हो गई है। इसीलिए यहाँ पे जवान जो है वो खाली ड्रमों को नाव बनाकर इस तरीके से रेस्क्यू कर रहे हैं, ताकि वहां पे ढूंढा जा सके। यही यहां पे एक माध्यम है अब इस पानी को बाहर करना, क्योंकि रात को भी बीच बीच में रेस्क्यू को रोका गया और पानी को बाहर करने के बाद फिर यहां पे जवान जाते रहे, ताकि SDRF तमाम जो फोर्सें हैं वो वहां पे रेस्क्यू करती रही है। अब इन्हें ढूंढने का काम यहां पे किया जा रहा है। जो एक व्यक्ति अभी तक लापता बताया जा रहा है, उसे ढूंढने का काम लगातार यहाँ पे जारी है, क्योंकि पानी भर रहा है और पानी को कम करना और उसके बाद फिर से रेस्क्यू करना, फिर से सर्च अभियान चलाना, ये थोड़ा सा मुश्किलें खड़ी कर रहा है।
0: चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अंबाला की, जहां पर पंजोखरा साहिब विवाद मामले में जबरदस्त हिंसा हुई है। गुरुवार को वहां पर गुरसिमरन सिंह मन के खिलाफ FIR दर्ज करने के बाद उसकी मांग करने को लेकर सिख संगत ने बड़ी संख्या में हाईवे पर प्रदर्शन किया, तभी उनकी पुलिस वालों से झड़प भी हो गई। देखते ही देखते वहां पर जमकर बवाल हो गया।
3: ये अंबाला कैंट की तस्वीरें हैं। बड़ी संख्या में सिख पंगत के लोग इस हाईवे पर उतर आए। इनका गुस्सा एंटी खालिस्तानी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष गुरसिमरन सिंह मंड के खिलाफ था। कल हुए प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। प्रदर्शनकारियों की पुलिस से भिड़ंत हो गई। हालात ऐसे हो गए कि भीड़ ने कई पुलिस वालों को निशाना बनाया। जवाब में पुलिस ने भी बल प्रयोग शुरू कर दिया। कई राउंड तक आंसू गैस के गोले दागे, लाठीचार्ज भी किया। इस झड़प में कई पुलिस वालों को गंभीर चोट आई। बवाल के बाद DGP अजय सिंघल ने अस्पताल पहुंचकर घायल पुलिस वालों से मुलाकात की। पुलिस ने बताया कि कैसे ये हिंसा भड़की।
4: उनसे बातचीत करते रहे, डिमांड थी वो हमने पूरी करी, लेकिन एंड में आके जब इतना जाम लग गया, लोगों का हैरेसमेंट हो गई, तो फिर उस वजह से अचानक से किसी ने पथराव शुरू किया और उसके एवज में हरियाणा पुलिस को कुछ लाठीचार्ज करते हुए उनको क्लियर कराना पड़ा। उसमें हमारे काफी जवानों के चोट लगी है, DSP के बूटे पे कट दिया है।
3: अब आपको बताते हैं कि ये बवाल हुआ क्यों। दरअसल 7 अगस्त को अंबाला के गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब के बाहर गुरसिमरन सिंह मंड पर हमला हुआ था। उनकी कार भी तोड़ दी गई थी। उस मामले में कई सिख युवक गिरफ्तार किए गए थे। गुरुवार को अंबाला कैंट में प्रदर्शन करने वालों की पहली मांग थी कि उस मामले में मंड पर FIR दर्ज की जाए। शाम तक पुलिस ये मांग मान भी ली, लेकिन तभी प्रदर्शनकारियों ने नई शर्त रख दी। कहा कि पकड़े गए युवकों को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। इसके बाद देखते ही देखते हिंसा शुरू हो गई और हालात बिगड़ गए। अब इस मामले को लेकर तनाव बढ़ा हुआ है। कृष्णबाली अंबाला आज तक।
0: तो वहीं महाराष्ट्र के नांदेड़ में अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर एक निहंग ने अचानक से हमला कर दिया। सुखबीर बादल गुरुद्वारा माथा टेकने के लिए गए थे, अपने परिवार के साथ वहां पर पहुंचे थे और इस हमले में सुखबीर बादल के हाथ में चोट भी आई है। जब बादल हॉस्पिटल में थे तो उस वक्त PM मोदी ने फोन कर उनका हालचाल जाना। वहीं CM फडणवीस ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। सुखबीर सिंह बादल पर हमले को लेकर कहा गया है कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाएगी। CM फडणवीस ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी फोन पर बातचीत हुई। PM ने उनको फोन कर उनका हालचाल जाना। सुखबीर सिंह बादल पर हमले को लेकर अब एक्शन लिया जाएगा, जांच कड़ी कर दी गई है। वहीं पुणे में आरोपी के घर पर ATS की छापेमारी भी हुई है।

0: महाराष्ट्र के नांदेड़ में गुरुद्वारा माता साहिब कौर में मत्था टेकने के बाद जैसे ही शिरोमणि अकाली दल के मुखिया और पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखविंदर सिंह बादल बाहर निकले, इस निहंग ने कृपाण से उन पर हमला कर दिया।
1: दर्शनों को आए वाले पंजाब के माजी डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह जी बादल और उनकी धर्मपत्नी हरसिमरत कौर जी बादल और उनके बच्चे, उनके दामाद, उनकी पूरी फैमिली यहाँ पे, उन्होंने अखंड पाठ साहब 12 तारीख को आरंभ किया गया था और कल रात में भी वो 2 बजे गोदावरी से घाघर लेके आते, वहां पे भी जाके हरसिमरत कौर जी वो साथ में गोदावरी से घाघर लेके आए, गुरु महाराज को जो स्नान कराते। आज मालटेकड़ी साहब, उसके बाद हीराघाट साहब, उसके बाद माता साहब जब दर्शन करके नीचे आते तो कोई नहंग सिंह उनपे अचानक हमला करता, कोई कुछ समझ पाते उसके अचानक वो हमला कर देता उनपे और उनको बहुत हाथ पर उनके चोट आई है। और बहुत शर्म की बात है जो गुरु महाराज के दर्शनों को आने के बाद में इस तरीके के काम होता है।
0: देखिए, सफेद दाढ़ी और नीली पगड़ी पहने ये निहंग धीरे धीरे सुखबीर बादल की ओर बढ़ता है, जिसके बाद वो अचानक अपनी कमर से कृपाण निकालता है और सुखबीर बादल पर हमला कर देता है। अफरा तफरी के बीच बादल के सुरक्षा गार्ड हमलावर को तुरंत पकड़ लेते हैं। अब इस मामले की जांच एटीएस, आईबी और नांदेड़ पुलिस तीनों मिलकर करेंगे।
2: लगभग 2 बजे के आसपास साहब जो है माता साहब गुरुद्वारा विजिट पे गए थे, तो गुरुद्वारा विजिट करने के बाद वहाँ से वापस आते वक्त सीढ़िया के पास एक वहाँ का सेवादार है, उसने अचानक से आके अपने कृपाण से अटैक करने की कोशिश की, जिसमें हमारा एक साहब को राइट हैंड में इंजरी हुई है और एक हमारा ऑफिसर है इंस्पेक्टर एसपीयू का, उसने वहाँ पे सिक्योरिटी में था, उसने हाथ से वो रोक लिया, उसको हाथ में थोड़ी सी इंजरी हुई है। ये होते ही हमने इमिडिएटली उस जो अटैकर था उसको अपने कस्टडी में ले लिया और उससे इंट्रोगेशन चल रही है। वो लगभग 62 साल का उम्र का है और लगभग 2 साल से यहाँ पे सेवादार काम कर रहा था गुरुद्वारे में।
3: सर, ये आईबी का स्पेसिफिक इनपुट था, फिर भी नांदेड़ पुलिस कैसे चूक गई?
2: चूक ही नहीं है, इसमें पूरी जेड प्लस सिक्योरिटी थी साहब के उसमें, और इसीलिए हमारा वहाँ पे इंस्पेक्टर था, हमारे सारे ऑफिसर्स थे वहाँ पे, इसीलिए हमने इमीडिएटली उसको रोक लिया और इमीडिएट कस्टडी में ले लिया।
0: इस हमले में सुखबीर सिंह बादल का हाथ जख्मी हो गया और उनका सुरक्षा कर्मी भी घायल हो गया, जिसके बाद तुरंत ही सुखबीर सिंह बादल को नजदीकी यशोसाई अस्पताल में भर्ती कराया गया, हालांकि अब वो खतरे से बाहर है।
4: वरिष्ठ अफसरों ने ये बताया कि सुखबीर सिंह बादल स्टेबल हैं, उनकी तबीयत ठीक है, उन्हें दाहिने हाथ पर जख्म हुआ है और एक किरपान से ये जख्म हुआ है, किरपान से उन पर हमला किया था आरोपी जसपाल सिंह ने, जो कि जसपाल सिंह पिछले 2 साल से माता साहिब गुरुद्वारा नांदेड़ में रह रहे थे। जसपाल सिंह पुणे के रहने वाले हैं, पुणे के सोलापुर बाजार में उनका घर स्थित है, वो तेजा सिंह नामक व्यक्ति के बेटे हैं और वो एक बीकॉम ग्रेजुएट हैं, पहले वकील भी रह चुके हैं, पिछले 2 साल से वो माता साहिब गुरुद्वारा में ही रह रहे थे।
0: अब ये तस्वीर देखिए, जिस शख्स की पग बांधी जा रही है इसका नाम जसपाल सिंह है, इसी ने बादल पर हमला किया है, इसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब शिरोमणि अकाली दल कह रहा है कि इस हमले के पीछे गहरी साजिश है,
5: पर लगातार पंथक आगुआ नु निशाना बनाया जा रहा है, ये कोझियां साजिशां, ये षड्यंत्र कुछ पंथ विरोधी ताकतां ने जिहड़ियां ओह रच रहियां ने। सरदार सुखबीर सिंह बादल ते इस तो पहला भी जदों दरबार साहब दे विच अकाल तख्त साहब दे आदेश ते सेवा निभा रहे सी उदों भी एक हमला उहनां दे उत्ते होया।
0: पीएम मोदी ने भी फोन करके सुखबीर सिंह बादल का हालचाल जाना, वहीं महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। उसके बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने पहले सुखबीर सिंह बादल और उनकी पत्नी हरसिमरत कौर से फोन पर बात कर हालचाल पूछा।
6: जो अटैक किया उन्होंने, वो वहाँ काम करने वाले है क्या? अच्छा,
0: उसके बाद शिंदे ने पुलिस के आला अधिकारियों को हत्या की कोशिश जैसी संगीन धाराओं में केस दर्ज करने के निर्देश भी दिए।
6: अटेम्प्ट टू मर्डर आणि त्याच्याबरोबर आणखी का केलंय, प्लॅनिंग काय आहे त्यांचं ते जरा बघून त्या मॅडम मला बोलत होत्या की इसमें जो जो जो भी लोग है कि उसमें कोई भी नहीं छुटना चाहिए।
0: नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने भी बादल पर हमले को सुरक्षा में चूक करार दिया।
7: मैं समझता हूँ इसमें सिक्योरिटी की भी कमजोरी है, क्योंकि लोगों को याद रखना चाहिए और हुकूमतों को याद रखना चाहिए कि ये बहुत वल्नरेबल शख्सियतें हैं और पहले भी हमला हुआ और ये नहीं कह सकते कि आगे नहीं होगा, मगर बहुत ही अल्लाह का शुक्र है कि वो पिछली दफा भी कामयाब नहीं हुए, इस दफा भी कामयाब नहीं।
0: खास बात है कि सुखबीर सिंह बादल पर साल 2024 में अमृतसर में गोल्डन टेंपल में भी हमला हो चुका है, तब उन पर फायरिंग की गई थी। सवाल है कि आखिर बादल पर बार बार हमले क्यों हो रहे हैं?
4: पुलिस, एटीएस की टीम और इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम अब इस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि अभी तक क्या मोटिव था जसपाल सिंह का सुखबीर सिंह बादल पर हमला करने के पीछे, इस बारे में जांच की जा रही है, इस बारे में पूछताछ की जा रही है। अभी तक इस बारे में कोई क्लैरिटी नहीं आई है और जसपाल सिंह से ज्वाइंट टीम एटीएस की टीमें और नांदेड़ पुलिस की टीमें पूछताछ कर रही हैं। आपको बता दें कि सुखबीर सिंह बादल नांदेड़ दौरे पर थे और उसके बाद मुगट गांव के माता साहेब गुरुद्वारा में वो गए थे जहां पर ये हमला हुआ। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी इस मामले में एक जांच ऑर्डर की है और इस बारे में एक पूरी डिटेल्ड इंक्वायरी करने के भी आदेश दिए हैं नांदेड़ पुलिस को। कैमरा पर्सन मंदार चौहान और नांदेड़ से कुंवरचंद मंडले के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक।
8: सियासत के दो रंग, एक तरफ नई जनरेशन की नई डिमांड तो दूसरी तरफ चुनाव जीतने के लिए पुरानी सियासी रीत चली आ रही है। एक तरफ जंतर मंतर के आंदोलन के बाद देश के अलग अलग हिस्से में जेन जी से लेकर जेन अल्फा तक प्रदर्शन करके साफ पानी, साफ क्लासरूम, साफ टॉयलेट, स्कूल जाने के लिए सड़क और स्कूल में टीचर ईमानदारी से भर्तियां मांग रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पिछले कुछ वर्ष से महिलाओं को पैसा बांटो और सत्ता हासिल करो वाले फॉर्मूले को फिर से आजमाती सियासत है। यूपी सरकार चुनाव से पहले महिलाओं के लिए 50,000 रुपए वाली स्कीम ला सकती है और इसका जिक्र आते ही अखिलेश यादव पहले इसे बता चुके हैं, वहीं अब फिर से खुद भी महिलाओं को 40,000 रुपए देने का वादा किया है।
9: इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चलकर वाले दौर से कहीं आगे, जब बच्चों को गड्ढे वाली सड़क पर बच्चों दिखाओ चलकर वाली नौबत ला दी जाती है, तो आज तक ने दिखाया आपको कि बच्चे अब टूटी सड़क को अपनी नियति मानकर नहीं चलने वाले। तभी तो बुधवार को नासिक के त्र्यंबकेश्वर में पेगलवाड़ी गोयरेवाड़ी रोड पर टूटी सड़क को बनवाने की मांग को लेकर आदित्य और स्मिता ने हाथ में बोतल को माइक की तरह पकड़कर एक इंटरव्यू किया।
10: अब तो ये चीज इच्छा है कि आमचे रस्ता थोड़ा चांगला होय पाहिजे, सगळा चांगला होय पाहिजे, एवढी आमची इच्छा आहे।
9: जो हाथ में बोतल को माइक की तरह पकड़कर प्रशासन को जगा सकते हैं, उन तक आज तक भी पहुंचता है। हाथ में आज तक का माइक थमाया और पूछा, क्या हुआ जो आपको आवाज उठानी पड़ी?
10: स्कूल में जाते समय फाटे पे जाते जाते तो हमारा ड्रेस खराब हो जाता है, कभी कभी हम चिखल में गिर जाते हैं।
11: जो शूज या चप्पल पहनते उसका क्या हालत होता है?
10: जब चुखल में अटक गई तो वो निकलते समय वो डायरेक्ट टूट जाती
11: और ये जो साथी है
10: और हम गिर जाए तो स्कूल में स्कूल को डांडी मारनी पड़ती।
11: स्कूल जाते नहीं हो,
10: उधर से ही रिटर्न आना पड़ता है।
9: आदित्य और स्मिता ने एक वीडियो बनाकर बता दिया कि बच्चे अब देश में सत्ताधारियों से चाहते क्या है, जिसके बाद नासिक के त्र्यंबकेश्वर में उनके गांव की सड़क बनने लगती है।
12: मैं खड़ा हूँ अभी पेगलवाड़ी में, जहाँ के दो बच्चों ने पूरी सिस्टम यहाँ की हिला दी है। यहाँ कल रात में जो रास्ता बच्चों ने वीडियो में दिखाया था, वो रास्ते पे कल रात को 1:30 बजे तक वहाँ मिट्टी और कंकड़ डाले गए और आज जब हम लोग रिपोर्टिंग करने आए थे यहाँ, तब जाके रोड रोलर आया था। बच्चों ने कल से सिस्टम मिला, तो कल क्या क्या कल से क्या क्या यहाँ हैपनिंग हो रही है?
13: अभी बच्चों का जब से वीडियो वायरल हुआ है तब से वो रास्ते का काम उस पर खड़ी वगैरह डाला है, उस पर रोलिंग वगैरह कर रहे हैं। अभी ये उन्होंने पहले ही ध्यान दिया होता तो आज का ये दिन हमें देखना नहीं पड़ता।
14: इस वक्त देश के बच्चे और युवा चाहते क्या है, क्या सरकारें सुन नहीं पा रही, क्या राजनीतिक दलों को अब भी समझ में नहीं आ रहा कि नई जनरेशन नई डिमांड करती है। वो सड़क, स्कूल, टीचर, साफ पानी, साफ टॉयलेट चाहती है, लेकिन नई जनरेशन की नई डिमांड के बीच में सियासत सत्ता हासिल करने और सत्ता को बनाए रखने के पुराने ढर्रे, पुराने फॉर्मूले पर चलना चाहती है। जहां अखिलेश यादव पहले से कहते हैं कि वो उत्तर प्रदेश में जीते तो महिलाओं को 40,000 रुपए साल भर में देंगे, तो अब उत्तर प्रदेश में खबर है कि योगी सरकार महिलाओं को चुनाव से पहले 20,000 रुपए की पहली किस्त देने और बीजेपी की सरकार लगातार तीसरी बार बनने के बाद 10,000 रुपए की 3 किस्तें देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।
15: महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्लान बना रही है, विचार कर रही है। इस विचार के तहत माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो 50,000 तक की जो मदद है वो SC ST OBC महिलाओं को दिया जाएगा, जिसको लेकर प्लान बनाया जा रहा है, जिसको लेकर पार्टी विचार कर रही है।
14: कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जब महिलाओं के वोट को लेकर निश्चिंत योगी सरकार पहले से रही है, तो फिर आखिर क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश में भी महिलाओं को पैसा चुनाव से पहले बांटने वाले फॉर्मूले के जरिए सत्ता हासिल करने की रणनीति पर विचार होने लगा? क्या इसकी पहली वजह यह है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा वोट देने उत्तर प्रदेश में निकलती हैं, जहां 2017 में करीब 4% और 2022 में करीब 3% ज्यादा महिला वोटर पुरुषों के मुकाबले वोट देने निकली थी? क्या दूसरी वजह यह है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन ने 17 में से 12 सीटें यानी वो 70% सीटें जीती, जहां 2024 के आम चुनावों में पुरुषों की तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा थी? क्या तीसरी वजह यह है कि महिला वोटर के लिए चुनाव से पहले 50,000 रुपए बांटने वाली स्कीम लाकर जेन जी वोटर की नाराजगी की आशंका में महिला मतदाता को साधा जा रहा है? उत्तर प्रदेश में जेन जी वोटर करीब 21.19% है, जबकि महिला वोटर की संख्या 45.46%। ऐसे में क्या जंतर मंतर के आंदोलन और जगह जगह जेन जी जेन अल्फा की मांगों के मुकाबले महिलाओं को पैसा बांटकर बड़े वर्ग का वोट सुनिश्चित करने की कोशिश है? क्या चौथी वजह ये भी है कि महिला वोट जिधर ज्यादा जाता है उधर ही सत्ता हासिल होती है? 2007 में BSP को सबसे ज्यादा 32% महिला वोट मिला था, मायावती मुख्यमंत्री बनी थी। 2012 में समाजवादी पार्टी को 31% महिला वोट मिला, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। 2017 में 41% महिला वोट और 2022 में 46% महिला वोट लेकर योगी आदित्यनाथ 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं।
16: हमने बिहार में भी देखा था कि चुनाव से पहले किस तरह सरकार ने सबके महिलाओं के खातों में पैसे पहुंचाने का कार्य किया था, और हमने ये भी देखा है महाराष्ट्र में भी इस तरह का कार्य हुआ है। तो हम इसकी बात के लिए तैयार है, हम जानते हैं कि सरकार कुछ ना कुछ इस तरह का करेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी इस बात के लिए तैयार है चुनाव से पहले लोगों के खाते में उनके मतलब कॉन्शियस को आप खरीदने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं। पूरा आपने 10 साल तो भ्रष्टाचार कर दिया, न जाने कितने हजारों लाखों करोड़ रुपए आप भारतीय जनता पार्टी करप्शन के माध्यम से, आज सड़कों की हालत देख लीजिए, आज इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत देख लीजिए, आज नौकरियां नहीं है बच्चों पे, आज सरकारी नौकरी नहीं है, आज हमारे PDA जो है पिछड़ा दलितों को जो आरक्षण मिलना चाहिए वो आरक्षण नहीं है। तो मतलब इस तरह की जो घटनाएं घटी हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, तो पूरा 10 साल का हिसाब किताब देना है भारतीय जनता पार्टी को।
17: भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह चुनाव जीतना चाहती है, हो सकता कोई लॉलीपॉप दिखा रहा हो जी। सरकार की तरफ से लॉलीपॉप आ रहा हो, लेकिन ये तो चला चली की बेला है। अगर आपने वास्तव में महिलाओं के जन कल्याण के लिए कोई काम किया होता तो NCERB के आंकड़ों में आज सबसे ज्यादा महिला उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, सबसे ज्यादा असुरक्षित कहीं महिलाएं हैं। और आपने तो जो समाजवादी पेंशन महिलाओं को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी PDA के जननायक माननीय अखिलेश यादव जी दे रहे थे, उसको आपने बंद कर दिया। अभी आप कौन सी योजना लेकर के आए हो सकता है चुनावी लॉलीपॉप कोई हो आपका, लेकिन जनता आपकी हकीकत जानती है।
14: बीजेपी अगर महिला वोटर को लुभाने के लिए 50,000 रुपए किस्तों में देने की स्कीम पर विचार कर रही तो ये भले समाजवादी पार्टी के नेताओं को लॉलीपॉप लगे, लेकिन ऐसा ही वादा तो खुद भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव तक कर चुके हैं।
18: बिहार का परिणाम क्यों बदल गया? सुनने में आया है कि 10,000 रुपए बड़े होते हैं, 10,000 रुपए, 10,000 रुपए दे दीजिए। अब बहुत सारी माताएं बहने इंतजार कर रही कि उन्हें कब 10,000 रुपया और मिलेगा, उनको धोखा दे दिया, 10,000 रुपये नहीं मिलेंगे। तो हम लोगों ने भी तैयारी कर ली है। मुझे याद है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 500 रुपए महिलाओं को देना शुरू किया था समाजवादी पेंशन के माध्यम से, और उसके बाद जो चुनाव था उसमें 1000 रुपए हम देने जा रहे थे, उसके बाद जब लोकसभा का चुनाव आया तो हम 2500 देने जा रहे थे, पिछला चुनाव जीत गए और अगला चुनाव होने जा रहा है जब 27 का, तो हमने बीजेपी से सीख करके हिसाब किताब लगाया है कि अगर हमारी माताएं बहनें जो उत्तर प्रदेश की थीं उन्होंने जो पैसा खोया है 500 500 500 अगर हिसाब लगाएं तो लगभग 3000 रुपये बनते हैं, तो 12 महीने देना है 3000 तो कितना हुआ 36000 रुपये, और क्योंकि इतने साल नहीं मिला तो उसका इंटरेस्ट भी हम जोड़ रहे हैं 4000। तो समाजवादी हम लोग तय करेंगे कि गरीब माताएं बहनों को साल में 40000 रुपये हम लोग देने का काम करेंगे। अगर 10000 से सरकार बन सकती है तो 40000 हम लोग देने जा रहे हैं।
8: वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक।
19: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से पर...
20: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर, हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें ePaper.aajtak.in या स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।

0: व्यक्ति को मधुमेह हो जाता है। डायबिटीज होने के ग्रह योग कौन से होते हैं और डायबिटीज हो जाने पर कौन से उपाय करने चाहिए? क्या है डायबिटीज का ग्रहों के साथ संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

हाइड्रो प्रोजेक्ट की टनल में फंसे 22 लोगों में से 7 की मौत की पुष्टि, 14 अन्य का किया गया रेस्क्यू। पानी और मलबा भरने की वजह से बचाव कार्य मुश्किल। नांदेड़ में शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल पर हमले के आरोपी के खिलाफ जांच तेज। पुणे में जसपाल सिंह के घर पर एटीएस ने की छापेमारी।

उड़ाने पर राहुल गांधी के खिलाफ उतरी बीजेपी, भारतीय राजनीति की मर्यादा पर बताया कलंक। रांची में छात्र प्रदर्शन का आज 21वां दिन, राज्य सरकार पर दबाव बनाने के लिए 15 अगस्त को तिरंगा रैली, 10 अगस्त के प्रदर्शन को लेकर हत्या की कोशिश के आरोप में दर्ज एफआईआर पर बीजेपी ने उठाए सवाल। अगस्त से पहले दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में हाई अलर्ट, जबरदस्त सुरक्षा इंतजाम, तिरंगे की रोशनी से रंगे इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ पूजा। यूपी चुनावों में जेंजी के साथ साथ राजनीतिक पार्टियों का भी बड़ा टेस्ट है। दरअसल इनकी ये परीक्षा अभी से शुरू हो चुकी है, इसलिए युवाओं को अपने पाले में करने के लिए पार्टियां तरह तरह के हथकंडे अपना रही हैं। देखना दिलचस्प होगा कि यूपी में जेंजी किसका साथ देता है।
1: के अंदर बहुत शीघ्र युवा नीति लेकर के आ रहे हैं।
2: तो यूपी चुनावों के लिए फोकस पूरी तरह से युवा मतदाताओं पर केंद्रित हो चुका है। निर्देश सीधे ऊपर से। ये कल की ही तस्वीरें। यूपी सरकार के तमाम बड़े मंत्री ऐसे ही स्कूल कॉलेजों में पहुंचकर सीधा युवाओं से संवाद कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार सीधे युवाओं के मन की बात टटोल रही है, इसीलिए मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में जेंजी चौपालें लगा रहे हैं। इस अभियान के तहत विधानसभा वार 10-10 युवाओं की टीम तैयार की जाएगी। टीम के सदस्य स्कूल कॉलेजों के युवाओं से बातचीत कर उनकी समस्याओं, अपेक्षाओं और सरकार को लेकर उनकी राय जानेंगे। टीम उन्हें सरकार की ओर से युवाओं के लिए शुरू की गई योजनाओं, रोजगार कार्यक्रम की जानकारी देगी। विधानसभा स्तर पर गठित होने वाले कार्यक्रमों और संवाद की जिम्मेदारी दी जाएगी। ये अभियान शुरू भी हो चुका है। कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे ने रायबरेली में बड़े स्तर पर युवाओं से संपर्क साधा, उनसे बातचीत की, उनकी समस्याएं सुनी।
3: आपके क्षेत्र में कार्यक्रम था तिरंगा यात्रा से लेके युवा संवाद
4: जी, आप देख रहे हैं जिस तरीके से आज युवा संवाद कार्यक्रम यहाँ रखा गया, कई हजार यूथ आज इस युवा संवाद में शामिल हुए और ये उनसे सीधे संवाद हुआ। उन्होंने अपनी भावनाएं भी बताई, अपनी दिक्कतों को भी बताई और उन्होंने सराहना भी किया भारत के प्रधानमंत्री जी के कार्यों के और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के। ये यूथ हमारा भविष्य है, ये हमारे कल है और इन यूथ के साथ संवाद होना जरूरी है। इनसे जब कम्युनिकेशन गैप रहता है तो बहुत सारी चीजें रह जाती हैं। इनसे लगातार हम सबका संवाद रहेगा और इनकी बहुत महत्वपूर्ण चीजें भी हम सबको जानकारी में आई है, जिसको हम लोग आगे धीरे धीरे करके उसे भी ठीक करने का भी काम करेंगे।
2: बीजेपी का टारगेट यही लगता है कि 2027 के चुनावों में युवाओं के तमाम वोट्स पर कब्जा, इसीलिए सीधे मुख्यमंत्री भी सक्रिय हैं, लगातार युवाओं से बात कर रहे हैं।
5: हमारा युवा प्रतिभाशाली है, हमारा युवा ऊर्जा का प्रतीक है, हमारा युवा देश की हर चुनौती का सामना करने की सामर्थ्य रखता है और उस सामर्थ्य के प्रतीक इस युवा ऊर्जा को आगे बढ़ने के लिए एक उचित प्लेटफॉर्म प्राप्त हो, वो अपने परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ देश और समाज की उन चुनौतियों का भी सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर सके।
2: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युवाओं से हवा हवाई बातें नहीं कर रहे, बल्कि उनके लिए पूरी युवा नीति तैयार की जा रही है, लंबी चौड़ी रणनीति है। सरकारी कोचिंग में IAS और PCS की तैयारी करने वालों की कलेक्टर और कप्तान की क्लास होगी। नीट की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए मुफ्त में डॉक्टरों की क्लास होगी। IIT की तैयारी करने वालों को IITian अफसर पढ़ाएंगे। बैंक PO की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए सरकारी बैंक के मैनेजर मार्गदर्शन करेंगे।
1: यूपी के अंदर बहुत शीघ्र युवा नीति लेकर के आ रहे हैं। हर जिले के अंदर, हर महाविद्यालय के अंदर, हर विश्वविद्यालय के अंदर युवा के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था। आपको प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी हो, आपको आपके महाविद्यालय विश्वविद्यालय में हम वर्चुअल भी और फिजिकल भी वहां क्लास की व्यवस्था रहेगी और पढ़ाने वाले कौन होंगे, पढ़ाने वाला होगा वहां का DM भी एक घंटा देगा, SP एक घंटा देगा, क्योंकि उन्होंने UPSC क्लियर किया।
2: बीजेपी के अलावा समाजवादी पार्टी की भी युवाओं को लेकर अपनी तैयारी है। समाजवादी पार्टी ने भी चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। सबसे पहला काम सर्वे से शुरू हो रहा है, यहाँ भी जिताऊ प्रत्याशी खोजे जा रहे हैं।
6: यूपी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने बूथ स्तर से लेकर विधानसभा सीट्स तक अपनी तैयारी शुरू कर दी और इसी के चलते कुल मिलाकर पार्टी 3 सर्वे करा रही है। सूत्रों के मुताबिक 2 सर्वे एक प्राइवेट एजेंसीज के द्वारा किए जा रहे हैं तो तीसरा सर्वे संगठन के द्वारा किया जा रहा है। आकलन ये करना है हर बूथ पर, हर विधानसभा पर कौन उम्मीदवार है जो जिताऊ हो सकता है, कौन उम्मीदवार है जो जातीय समीकरणों को साध सकता है। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी को लगता है कि सर्वे के जरिए हर बूथ के, हर विधानसभा के एक फ्रेश जातीय आंकड़े सामने आ सकते हैं। यूं तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से या डेटा के जरिए जातीय आंकड़े मिल जाते हैं, लेकिन सपा को ऐसा लगता है कि अपने स्तर पर भी जातीय आंकड़े निकालने चाहिए, क्योंकि कई ऐसे विधानसभा सीट्स हैं जहां पर सपा को कुछ चौंकाने वाले जातीय आंकड़े मिले हैं, जो पेपर्स पर कुछ और थे लेकिन जमीन पर सर्वे में कुछ और सामने आए हैं। और इसी के चलते दो एजेंसीज और संगठनात्मक तौर पर समाजवादी पार्टी के यूथ विंग्स मिलकर ये सर्वे कर रहे हैं। सर्वे अलग है लेकिन एक तरीके से माहौल एक है कि विधानसभा पे जिताऊ कैंडिडेट हो जिससे सही उम्मीदवार चुना जा सके और चुनाव जीता जा सके।
2: समाजवादी पार्टी तो इसी दावे पर है कि उनके पास तो युवाओं के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव मौजूद हैं, जिनकी युवाओं में पहुंच भी है और पकड़ भी।
6: बीजेपी एक प्लानिंग के तहत अब जो है उनकी जो यूथ विंग है उनको जिम्मेदारी दे रही है कि स्कूल कॉलेजेस में जाएं। यूपी सरकार के तमाम मंत्री भी अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में ये काम करने वाले हैं, जैसे कि मनोज पांडे आज रायबरेली से कर रहे हैं, वो युवाओं का सम्मेलन कर रहे हैं, युवाओं से मिलेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे। तमाम अन्य मंत्री भी प्लान आउट कर रहे हैं, तो ये जेन जी कितना बड़ा वोटर एकदम से यूपी में हो गया है।
7: देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी अब कर रही है, समाजवादी पार्टी तो नौजवानों की पार्टी रही है और सबसे ज्यादा यंग मिनिस्टर्स और यंग लोगों को चुनाव लड़ने का मौका या यंग लोगों की बात अगर किसी ने सबसे ज्यादा की है तो वो समाजवादी पार्टी के संस्थापक आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, श्रद्धेय नेता जी ने की थी। और अब उसी मशाल को आगे लेकर के आदरणीय अखिलेश यादव जी चल रहे हैं और लगातार जिन जेंजीज की बात आज सरकार जागी है इन आंदोलन के बाद, समाजवादी पार्टी ने सबसे कम उम्र के लोगों को चुनाव लड़ा करके सदन में भेजा। मुझे अपना मैं अगर बात करूं तो मैं जब 25 साल 4 दिन की थी तब मैंने नॉमिनेशन किया था, तो मैं भी एक जेंजी हूं। और साथ ही साथ अब मैं देखूं तो हमारी पार्टी में सबसे ज्यादा युवा विधायक हैं जो 25 साल के हैं, 25 साल के हमने सांसद बनाए।
2: लेकिन खबरें तो ये भी हैं कि जेंजी को मिल रहे इस समर्थन से तमाम राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े और पुराने नेता बहुत परेशान हैं, उन्हें अपनी सीट खिसकने का डर लग रहा है।
6: खबर ये भी है कि जेंजी फोर्स को देखते हुए यूपी के तमाम वरिष्ठ और दिग्गज नेताओं की जमीन खिसकी हुई है। कई राजनीतिक दलों के वरिष्ठ विधायक ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है कि कहीं उनका इस बार विधानसभा चुनाव में टिकट ही ना कट जाए, क्योंकि एक बात तो साफ है, सभी राजनीतिक दल इस बार जेंजी को उम्मीदवारी में उतारने वाले हैं। यानी कि इस बार जो उम्मीदवारों की एक लिस्ट आएगी, चाहे विपक्ष की हो चाहे सरकार की हो, उसमें जेंजी को तवज्जो मिलनी तय है। ऐसे में एक दिलचस्प बात की चर्चा यह भी है, जो विधायक पहले अपनी पत्नी या पति के नाम से जाने जाते थे, जिनको टिकट मिलता था, वो अब जेंजी के पिता के नाम से, यानी कि जेंजी विधायक के पिता के नाम से भी जाने जाएंगे।
2: समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दरअसल पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के साथ मिलकर दिल्ली को दहलाने की साजिश रची है। आतंकी हमले की साजिश बहुत ही गहरी है क्योंकि लश्कर के 8 सुसाइड बॉम्बर घुसपैठ कर देश में दाखिल हो चुके हैं।

0: पर हमले का जिम्मा सौंपा गया है। आतंकी खतरे को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं।
1: पंद्रह अगस्त को दिल्ली दहलाने का जिहादी प्लान, छह ठिकानों पर बड़े हमले की तैयारी में आतंकी, लश्कर की फिदाइन टीम आज कर सकती है अटैक। आईएसआई का प्लान और तलहा सईद का सुसाइड दस्ता, दिल्ली में हाई अलर्ट ऑपरेशन 15 अगस्त। बीते साल नवंबर में लाल किले के पास आतंक के डॉक्टर मॉड्यूल ने फिदाइन हमले को अंजाम दिया था। डॉक्टर उमर ने विस्फोटक से भरी कार के साथ खुद को उड़ा लिया था, लेकिन लाल किले पर हमला करने में नाकाम रहा। अब इसी पैटर्न पर लश्कर का फिदाइन दस्ता दिल्ली को दहलाने की फिराक में है। आज तक संवाददाता अरविंद ओझा फिदाइन हमले की प्लानिंग से जुड़ा बड़ा खुलासा कर रहे हैं।
2: मेरे हाथ में मौजूद इस कागज में दिल्ली को दहलाने की खुफिया एजेंसी का खौफनाक सच मौजूद है। 15 अगस्त को लेकर खुफिया एजेंसियों की तरफ से 11 अगस्त को जारी किए गए इस इंटेलिजेंस अलर्ट की कॉपी में फिदाइन हमले से सुरक्षा एजेंसियों को सावधान रहने को कहा गया है, क्योंकि लश्कर के फिदाइन हमलावर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और तलहा सईद के इशारे पर दिल्ली में घुसपैठ कर चुके हैं। शायद इसी वजह से दिल्ली को अभेद किले में तब्दील कर दिया गया है।
1: बहुत गौर से अलर्ट की कॉपी को देखिए। कॉपी की एक एक लाइन आतंकियों के खौफनाक मंसूबों की गवाही देने को काफी है। सबसे पहले अलर्ट की कॉपी को डिकोड करते हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई, खालिस्तानी आतंकी और लश्कर की तिकड़ी का प्लान, दिल्ली को आईईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस से दहलाने की साजिश रची गई है। दिल्ली में लोकल नेटवर्क और प्रो खालिस्तान सिंडिकेट के जरिए आईईडी की डिलीवरी होनी है। दिल्ली एनसीआर में आतंक के नेटवर्क को पाक में बैठे आतंकियों ने एक्टिव किया है।
2: दिल्ली को दहलाने की साजिश पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के हेडक्वार्टर में रची गई है। फिदाइन हमले के लिए आतंकियों की खेप तलहा सईद ने मुहैया करवाई है। खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट में खुलासा हुआ है कि एक दो नहीं बल्कि 8 फिदाइन हमलावर देश में घुसपैठ कर चुके हैं। इन 8 आतंकियों को लश्कर के कैंप में ट्रेनिंग दी गई है और इनके निशाने पर कुल 6 लोकेशन हैं।
1: खुफिया इनपुट के मुताबिक आतंकी देश की संसद, कनॉट प्लेस, दिल्ली के सरकारी भवन और रेलवे स्टेशन पर हमला करने की प्लानिंग रच रहे हैं। इसके साथ साथ जम्मू और राजस्थान में फिदाइन हमले की नापाक साजिश पाकिस्तान में रची गई है। 30 जून को गुजरात के अक्षरधाम मंदिर हमले के मास्टरमाइंड फरहतुल्ला गौरी की तरफ से भेजे गए संदेश को इंटरसेप्ट किया गया। आतंकी फरहतुल्ला ने सिग्नल ऐप के जरिए स्टूडेंट ग्रुप ऑफ हिंद पर एक संदेश भेजा था। संदेश में भारतीय मुसलमानों को आर्मी ऑफ मेहदी में शामिल होने के लिए उकसाया। कहा मुसलमानों को दिल्ली पर इस्लाम का झंडा फहराना होगा। ये तभी होगा जब दिल्ली में फिदाइन हमले होंगे। खुफिया एजेंसियों के पास पुख्ता इनपुट है कि दिल्ली रेलवे स्टेशन की रेकी करवाई गई है। मई महीने में इंटरसेप्ट हुए एक मैसेज से पता चला कि आईएसआई का प्लान भारत में 6 बड़े धमाके करवाने का है और फिदाइन हमले के लिए तलहा सईद से जुड़े 8 आतंकी देश में दाखिल हो चुके हैं। फरहतुल्ला गौरी उर्फ अबू सुफियान उर्फ सरदार साहब उर्फ कारी, ये पाकिस्तान में बैठा वही आतंकी है जो आईएसआई का प्यारा और हाफिज सईद का दुलारा है। गौरी लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों से जुड़ा है।
2: भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में फरहतुल्ला गौरी का नाम शामिल है। ये फिलहाल पाकिस्तान में अंडरग्राउंड है और लगातार आईएसआई और लश्कर के इशारे पर भारत को दहलाने की आतंकी साजिश रचता रहा है। खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के मुताबिक फरहतुल्ला गौरी 4 महीने पहले तलहा सईद से मिला था। आतंकी मीटिंग में 15 अगस्त को दिल्ली को दहलाने की स्क्रिप्ट लिखी गई थी, लेकिन आतंकियों की इस नापाक साजिश को नाकाम करने के लिए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से मुस्तैद हैं।

0: रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
1: कब किसी व्यक्ति को मधुमेह हो जाता है, डायबिटीज होने के ग्रह योग कौन से होते हैं और डायबिटीज हो जाने पर कौन से उपाय करने चाहिए, क्या है डायबिटीज का ग्रहों के साथ संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।

कच्चे तेल की कीमतों में आई बड़ी गिरावट से तेल कंपनियों पर लागत का दबाव काफी कम हो गया है। कुछ कमोडिटी रिसर्च का अनुमान है कि इससे OMCS का मार्केटिंग मार्जिन फिर सकारात्मक हो गया है। ऐसे में हर किसी को पेट्रोल डीजल के प्राइस में कमी का बेसब्री से इंतजार है, जिसको लेकर अभी सरकार या तेल कंपनियों की तरफ से कोई संकेत नहीं मिला है। पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल यानी PPAC के मुताबिक इंडियन बास्केट क्रूड लुढ़क कर करीब $68 प्रति बैरल पर आ गया है, जबकि पश्चिम एशिया संघर्ष के दौरान ये करीब $157 प्रति बैरल के रिकॉर्ड स्तर पर थी, जो 2026 के उच्चतम स्तर से करीब 56% नीचे है। इसके बावजूद देश में पेट्रोल और डीजल के दाम में अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ है। दरअसल तेल कंपनियों और सरकार का तर्क है कि रिटेल कीमतों का फैसला केवल एक दिन या एक हफ्ते की कीमतों के आधार पर नहीं होता, ये लॉन्ग टर्म रुझानों और आयातित ईंधन की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों को देखकर किया जाता है। हालांकि निजी फ्यूल रिटेलर नायरा एनर्जी ने क्रूड ऑयल सस्ता होने के बाद 1 जुलाई से पेट्रोल की कीमत में ₹5 प्रति लीटर और डीजल की कीमत में ₹3 प्रति लीटर की कटौती की थी। ये बीते 2 साल से ज्यादा समय में निजी कंपनी की पहली फ्यूल प्राइस कटौती थी, लेकिन सरकारी तेल कंपनियों ने अब तक अपनी रिटेल कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। अगर युद्ध के दौरान फ्यूल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी की बात करें तो सरकारी कंपनियों ने मई में 4 फेज में पेट्रोल डीजल के दाम में करीब ₹7.5 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। 4 साल में ये तेल की कीमतों में की गई पहली बढ़ोतरी थी। हालांकि युद्ध से पहले तेल कंपनियों को हुए बम्पर मुनाफे के बावजूद दाम घटाए भी नहीं गए। वहीं 2025-26 में भी सरकारी तेल कंपनियों को कुल मिलाकर ₹77,000 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा हुआ था। अगर कीमतों में कमी की उम्मीदों की बात करें तो केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल में कहा था कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कुछ और समय तक निचले स्तर पर टिकी रहती हैं, तो रिटेल कीमतों में कटौती पर फैसला लिया जा सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया था कि तेल कंपनियों को अब भी घरेलू LPG सिलेंडर की बिक्री पर अंडर रिकवरी यानी नुकसान झेलना पड़ रहा है, इसलिए क्रूड में गिरावट का असर तुरंत पंप तक पहुंचना मुश्किल है। ऐसे में ताज़ा तस्वीर यही है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें नीचे आई हैं, लेकिन इसका सीधा असर अभी पेट्रोल पंपों तक नहीं पहुंचा है। देश के 90% से ज्यादा पेट्रोल पंप सरकारी तेल कंपनियों IOC, BPCL और HPCL के पास हैं। ऐसे में करोड़ों वाहन चालकों की नज़र अब इस बात पर टिकी है कि कच्चे तेल में आई नरमी का फायदा उन्हें कब और किस रूप में मिलता है। आज तक ब्यूरो।

लोकसभा में जितना टाइम आवंटित किया गया है, टोटल टाइम एलोकेशन के हिसाब से सिर्फ 19% हमने प्रोडक्टिविटी के दृष्टि से 19% सक्सेस प्राप्त किया है। राज्यसभा में 39%। राज्यसभा में ओपोजिशन पार्टी हंगामा करके कभी कभी वॉकआउट भी करते थे, तो बाकी मेजोरिटी पार्टीज एनडीए के और कुछ ओपोजिशन पार्टी के एमपीस ने डिबेट डिस्कशन में हिस्सा लिया। तो राज्यसभा का टोटल प्रोडक्टिविटी मॉनसून सेशन का 39%, लोकसभा का 19%। एक बिल सिर्फ चर्चा हो पाई लोकसभा में, जो प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट जो बना है, ये लोकसभा में भी डिस्कशन हुए थे और राज्यसभा में भी हुए हैं। इसके अलावा लोकसभा में कोई अच्छा चर्चा नहीं हुआ, बिल पास हुए हैं, 11 बिल्स पास किए हैं। इसलिए मैंने कहा टोटल 12 बिल्स पास किए हैं इन टोटल, और चर्चा के दृष्टि से हम खुश नहीं हैं क्योंकि ऑपोजिशन ने ठीक से चर्चा करने नहीं दिया, विशेष करके लोकसभा में।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: Sorry.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

हाइड्रो प्रोजेक्ट की टनल में फंसे 22 लोगों में से 7 की मौत की पुष्टि, 14 अन्य का किया गया रेस्क्यू। पानी और मलबा भरने की वजह से बचाव कार्य मुश्किल। नांदेड़ में शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल पर हमले के आरोपी के खिलाफ जांच तेज। पुणे में जसपाल सिंह के घर पर एटीएस ने की छापेमारी।

गांधी के खिलाफ उतरी बीजेपी, भारतीय राजनीति की मर्यादा पर बताया कलम। रांची में छात्र प्रदर्शन का आज 21वां दिन, राज्य सरकार पर दबाव बनाने के लिए 15 अगस्त को तिरंगा रैली, 10 अगस्त के प्रदर्शन को लेकर हत्या की कोशिश के आरोप में दर्ज एफआईआर पर बीजेपी ने उठाए सवाल। अगस्त से पहले दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में हाई अलर्ट, जबरदस्त सुरक्षा इंतजाम, तिरंगे की रोशनी से रंगे इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो बड़ी तेजी से फैल रही है और ये बीमारी शरीर पर सबसे ज्यादा असर डालती है। आज बात करेंगे डायबिटीज के बारे में, यानी मधुमेह के बारे में। इस बीमारी के बारे में ज्योतिष क्या कहता है और ज्योतिष के अनुसार इसका समाधान क्या है, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 14 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, शाम के 6:46 तक। नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, ज्योतिष में जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है, जो चिकित्सा ज्योतिष है, उसमें अलग अलग बीमारियों का अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि डायबिटीज होती कब है, ज्योतिष इसके बारे में क्या कहता है। देखिए, शरीर में एक विशेष केमिकल है, एक विशेष रसायन है, इंसुलिन। इसकी कमी से डायबिटीज होती है। इंसुलिन कम हो जाने से ग्लूकोज के पचने में मुश्किल होती है। ज्योतिष में शुक्र और चंद्रमा दोनों जल तत्व और रसायन के कारण होते हैं। बृहस्पति पाचन तंत्र का स्वामी होता है। इन तीनों में से कोई एक भी अगर ज्यादा कमजोर हुआ या ज्यादा खराब हुआ तो डायबिटीज हो जाएगी। जब भी कुंडली में बृहस्पति कमजोर हो, अस्त हो या शत्रु राशि में हो, निगेटिव स्थिति में हो, तो डायबिटीज बृहस्पति की वजह से होती है। उल्टा सीधा खाने की वजह से, अति पोषण की वजह से डायबिटीज हो जाती है। जब चंद्रमा की स्थिति खराब हो तो तनाव के कारण, मानसिक चिंता के कारण व्यक्ति को डायबिटीज हो जाती है। चंद्रमा इतना तनाव देता है व्यक्ति को कि शरीर का पाचन तंत्र बिगड़ जाता है और डाइजेशन बिगड़ने से, आंतों में दिक्कत आने से डायबिटीज की संभावना बन जाती है।
डायबिटीज पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में अंत तक हम आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और सावन के पावन महीने में आप अपने भाग्य को कैसे चमका सकते हैं ये भी बताएंगे सावन सूत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल।

मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, अचानक धन की प्राप्ति होगी, करियर में आपको लाभ होगा। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा पर जा सकते हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। मिथुन राशि, करियर में लाभ होगा, पारिवारिक समस्या हल होगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। देखिए, ग्रहों के, हस्तरेखा के, कुंडली के कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो ये आपको बता सकते हैं कि आपको डायबिटीज हो सकती है। कौन से लक्षण हैं? अगर हथेलियों का रंग कालेपन की तरफ हो, ब्लैक होने की तरफ दिखाई दे रहा हो तो आपको जल्दी डायबिटीज हो सकती है। अगर शुक्र के पर्वत पर अंगूठे के नीचे वाले स्थान पर अगर रेखाओं का जाल हो तो ये भी डायबिटीज का एक कारण बन सकता है। अगर चंद्रमा पर ढेर सारी छोटी छोटी लकीरें हों तो इसका मतलब ये है कि आपको तनाव बहुत ज्यादा रहता होगा और इस ज्यादा तनाव की वजह से आपको डायबिटीज हो सकती है। आप अगर ऐसे घर में रहते हैं जिस घर में सूर्य का प्रकाश नहीं आता तो घर में पॉजिटिव एनर्जी नहीं आएगी, सकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी। और अगर पॉजिटिव एनर्जी नहीं आएगी तो आपको डायबिटीज हो सकती है। अगर आप अपने घर में कूड़े कबाड़ का, अनुपयोगी सामानों का ढेर लगाते हो, जिन चीजों का प्रयोग ना करना हो उन चीजों को इकट्ठा करके रखते हो, तो ऐसी स्थिति में भी घर में नकारात्मक ऊर्जा आएगी और आपको डायबिटीज हो सकती है। डायबिटीज पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है,
व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें, सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि, ऑफिस में व्यस्तता रहेगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, किसी अतिथि का आगमन होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।

करियर में सुधार होगा, स्वास्थ्य बेहतर होगा। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न आशुतोष जी ने हमें लिखा है, वाराणसी से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 19 अक्टूबर 2002। जन्म का समय सुबह के 9:55। जन्म स्थान है वाराणसी। आशुतोष जी कह रहे हैं कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहता हूं, क्या मैं सरकारी नौकरी में जा सकूंगा, भविष्य मेरा कैसा रहेगा। आशुतोष जी, आपकी कुंडली के हिसाब से मैं आपको कहूंगा कि आप या तो मैनेजमेंट की या फाइनेंस की या बैंकिंग की कोई पढ़ाई कर लें, इस तरह के क्षेत्र में आप कोशिश करें, MBA कर लें या अकाउंटिंग पढ़ लें। ऐसे क्षेत्रों में आप नौकरी करेंगे, सरकारी नौकरी में जा पाना आपका कठिन है। आपकी कुंडली के हिसाब से आप प्राइवेट सेक्टर में अच्छी नौकरी करेंगे और अच्छा करियर अपना बना सकेंगे। आपकी एकाग्रता बेहतर हो, करियर बेहतर रहे, इसके लिए एक पन्ना बनवा करके पहने, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपको लाभ होगा। देखिए, अगर आपकी कुंडली में डायबिटीज के योग हैं और आपने उसे जान लिया, समझ लिया, तो शुरुआत से क्या उपाय करें जिससे आप डायबिटीज से बच सकें। रोज सुबह जल्दी उठ करके, स्नान करके, उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाइए। जहां तक हो सके खिड़की लगवा के, रोशनदान लगवा के ऐसी व्यवस्था करिए कि घर में सूर्य का प्रकाश आए। दोपहर के भोजन में दही का प्रयोग जरूर करिएगा। एक सफेद रंग का ओपल चांदी की अंगूठी में बनवा कर तर्जनी उंगली में धारण करिएगा तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अगर डायबिटीज होने की संभावना है तो हीरा धारण करने से बचिएगा। अपने हाथ के अंगूठे में, दाहिने हाथ में या बाएं हाथ में एक चांदी का छल्ला पहनिएगा, वो आपके लिए लाभकारी होगा। और जहां तक योगासन की बात है, धनुरासन और पश्चिमोत्तान आसन का अभ्यास करिएगा। अगर आपके कुंडली में डायबिटीज होने के योग हैं और आप ये सब उपाय करें तो आपको डायबिटीज होने की संभावना कम हो जाएगी, आप डायबिटीज से बच जाएंगे। अगर डायबिटीज हो गई है
तो क्या उपाय करना चाहिए जिससे डायबिटीज कंट्रोल में बनी रहे, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और इसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल।

समस्या हल होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। चोट चपेट से बचाव करें। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा

तनाव बढ़ सकता है, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी। परिवार में विवादों से बचाव करें, सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, परिवार में शुभ कार्य होंगे, करियर में लाभ के योग हैं, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब मान लिया कि आपको डायबिटीज हो गई है, तो डायबिटीज हो जाने पर कौन से मंत्र का जप करें, कौन सा उपाय करें जिसको करने से डायबिटीज कंट्रोल में बनी रहे। रोज सवेरे स्नान करके उगते हुए सूर्य को अर्घ दीजिए। अब इसके बाद ऐसे जगह पर बैठिए अपनी बालकनी में या अपने छत पर जहां सूर्य की रोशनी आती हो, और इसके बाद स्फटिक की माला ले लें। सफेद स्फटिक की माला से शुक्र के मंत्र का कम से कम 108 बार जप करिएगा। मंत्र होगा ओम द्रां द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः। ओम द्रां द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः। इस मंत्र का जप करिएगा और मंत्र जप करने के बाद 5 मिनट तक जल का स्पर्श मत करिएगा। फिर से बता दूं कि डायबिटीज होने पर आपको शुक्र का मंत्र जपना चाहिए और सलाह लेकर एक सफेद ओपल अगर आप धारण करें तो इससे डायबिटीज को कंट्रोल कर पाना आपके लिए बहुत आसान होगा। देखिए, अगर आपको चंद्रमा की वजह से डायबिटीज है, तमाम तनाव तमाम चिंता की वजह से डायबिटीज है, तो ऐसी स्थिति में पन्ना धारण करने से लाभ होगा। अगर खान पान में गड़बड़ी की वजह से या लाइफ स्टाइल में गड़बड़ी की वजह से डायबिटीज है तो ओपल धारण करना ज्यादा बेहतर होगा। और अगर अनुवांशिक कारणों से जेनेटिक कारणों से डायबिटीज है तो ऐसी स्थिति में आप सलाह लेकर के एक मोती धारण कर सकते हैं, उससे आपको डायबिटीज को कंट्रोल करना आसान होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, करियर में सफलता के योग हैं, लंबी यात्रा पर जा सकते हैं, धन के खर्चों पर ध्यान दें, अनाज का दान कर दें तो दिन
बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा।

करियर की समस्या हल होगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी।

करियर में लापरवाही ना करें, सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मंत्र जप करने के बाद तुरंत 5-10 मिनट तक जल का स्पर्श नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, जब आप मंत्र का जप करते हैं तो आपके शरीर में मंत्र की एक ऊर्जा पैदा हो जाती है, वो आपके हाथ पैरों में शरीर की त्वचा में मौजूद हो जाती है और पूजा करने के बाद शरीर उसको अपने अंदर लेता है अगले 5-10 मिनट में। तो अगर आप मंत्र जप करने के बाद जल को छूते हैं तो सारी ऊर्जा आपकी जल में चली जाएगी, आपके शरीर के अंदर नहीं जा पाएगी, आपको इसका लाभ नहीं होगा। इसीलिए मंत्र जप करने के बाद, स्तुति करने के बाद कम से कम अगले 10 मिनट तक जल का स्पर्श नहीं करना चाहिए। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 2, किसी मनोरंजक काम में व्यस्त रहेंगे। नंबर 3, काम की अधिकता से परेशानी होगी। नंबर 4, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 5, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 6, करियर में नए अवसर मिलेंगे। नंबर 7, धन लाभ के योग हैं। नंबर 8, यात्रा के योग बन रहे हैं। और नंबर 9, दुर्घटनाओं से सावधान रहें। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में माता लक्ष्मी को गुलाब के फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो दही खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है तो मिश्री खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज आपकी कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो अपने साथ एक गुलाब का फूल रख करके जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है
वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, तो गुलाबी रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किसको सावधान रहना होगा।

के लिए हर कार्य में सफलता मिलेगी, काम की रुकावटें दूर होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा। धनु राशि वालों के लिए कोई शुभ सूचना मिलेगी, धन का लाभ होगा। और आज सावधान रहना होगा कर्क राशि वालों को। बेवजह की चिंता और तनाव आपको परेशान कर सकता है। अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज द्वितीया तिथि है। शुक्रवार की द्वितीया अशुभ मानी जाती है, इसलिए आज कोई भी शुभ और मंगल कार्य ना करें। सावन का पावन महीना चल रहा है, तो चलिए आपको बताते हैं कि आप अपने भाग्य को कैसे बेहतर कर सकते हैं सावन सूत्र में।

जीवन में कोई समस्या हो, कोई समस्या आ रही हो, तो सावन में लगातार 3 दिन तक शिवलिंग पर शहद अर्पित करें और शहद अर्पित करने के बाद जल अर्पित करें और प्रार्थना करें, आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

उत्तराखंड के चमोली में पीपलकोटी टीएचडीसी जल विद्युत परियोजना की निर्माणाधीन टनल में बड़ा हादसा। टनल में पानी भरने की वजह से लोग फंसे, 7 मजदूरों की गई जान। हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। टनल में अभी भी एक के फंसे होने की खबर। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आकाशीय बिजली गिरने की वजह से एक दर्दनाक घटना में 2 युवाओं की मौत हो गई है और 2 अन्य रूप से घायल। धर्मशाला में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। जल भराव के कारण पैदल चलने वाले लोगों के साथ वाहन चालकों को भी भारी परेशानी का करना पड़ा सामना। चित्तौड़गढ़ में पिकनिक मनाने गया युवक झरने में बहा, मौके पर मौजूद लोगों की सूझबूझ और तत्परता से बची जान। धर्मशाला में मूसलाधार बारिश से सड़कों पर जल भराव, आवाजाही हुई मुश्किल। खरगोन में मूसलाधार बारिश से तरबतर हुआ शहर, सड़कों पर घुटने तक भरा पानी। एडिशनल एसपी के बंगले में घुसा बारिश का पानी। सोनमर्ग के सरबल में क्लाउड बर्स्ट, बालटाल जाने वाली सड़क बंद हुई, ट्रैफिक प्रभावित। भद्रवाह में भारी बारिश का कहर, फ्लैश फ्लड जैसे हालात, कई इलाकों में पानी का तेज बहाव। शिमला में अचानक से गाड़ियों पर गिरे बड़े बड़े पत्थर, कई वाहन चपेट में आए। पत्थर गिरने की वजह से मौके पर मचा हड़कंप। भारी बारिश के कारण जैसलमेर के सरकारी अस्पताल परिसर और वार्ड में भरा भारी पानी। मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानी का करना पड़ा सामना। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश का दौर जारी, कई जिलों में 19 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट। गोरखपुर में भारी बारिश से वाटर लॉगिंग, सड़कों पर वाहनों की रफ्तार रही धीमी। एमपी के नरसिंहपुर में NH-45 पर भीषण लैंडस्लाइड, भारी बारिश से जबलपुर भोपाल मार्ग पर गिरा पहाड़ का मलबा। मलबे से सड़क पर आवागमन प्रभावित हुआ, फिलहाल सड़क पर वन वे ट्रैफिक जारी, जेसीबी से हटाया जा रहा है मलबा। अंबाला के पंजोखरा साहिब विवाद मामले में बढ़ा बवाल, गुरसिमरन सिंह पर FIR की मांग को लेकर हाईवे पर पुलिस से भिड़े सिख संगत, दोनों पक्ष से कई घायल। उग्र प्रदर्शन के जवाब में पुलिस ने बल का प्रयोग किया, कई राउंड तक आंसू गैस के गोले दागे गए, लाठीचार्ज भी किया गया। बवाल के बाद डीजीपी ने अस्पताल पहुंचकर घायल पुलिस वालों से मुलाकात की, हौसला बढ़ाया। घायल हुए पुलिसकर्मियों के साहस, कर्तव्य निष्ठा और समर्पण की सराहना की। सुखबीर सिंह बादल पर हमले को लेकर अकाली दल ने सीबीआई जांच की मांग की। 2024 के हमले का जिक्र करते हुए आरोप लगाया गया है कि हमलावर ISI से ट्रेनिंग पाया हुआ व्यक्ति। सीएम फडणवीस ने सुखबीर बादल पर हमले के जांच के आदेश दिए, पीएम मोदी ने भी हालात के लिए जानकारी। सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले को लेकर मचा सियासी घमासान, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने हमले की निंदा की, लेकिन पुराने घटनाओं का जिक्र करते हुए साधा का निशाना। अकाली दल ने आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि वो पंजाब को जलाना चाहते हैं, ये पार्टियां एक अलग नैरेटिव बनाना चाहती हैं। इस पूरे मामले में पुलिस के साथ साथ ATS ने भी जांच की तेज। आरोपी के पुणे स्थित घर पर छापेमारी की गई, साथ ही जांच टीम ने आरोपी के बैकग्राउंड और गतिविधियों को भी खंगाला। JPSC परीक्षा में गड़बड़ी मामले में CID का ताबड़तोड़ एक्शन, 7 आरोपियों की तलाश में कई जिलों में छापेमारी। रांची में छात्रों का आंदोलन, रांची में 15 अगस्त को भव्य तिरंगा यात्रा का निकलेंगे छात्र। JPSC JSSC रिफॉर्म मंच ने किया ऐलान। राहुल गांधी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति पर निशाना साधा, मजाक उड़ाते हुए लगाए कई गंभीर आरोप। पीएम मोदी और अमित शाह पर मजाक करने पर राहुल गांधी के खिलाफ उत्तरी बीजेपी, भारतीय राजनीति की मर्यादा को बताया गलत। समित पात्रा का राहुल गांधी पर हमला, ये अशोभनीय भाषा और नकारात्मक राजनीति, लोकतांत्रिक मूल्यों का पतन। बीजेपी का राहुल गांधी पर हमला, भारतीय सेना को लेकर एक बार फिर से झूठ बोल रहे हैं राहुल गांधी। हंगामे से शुरू हुआ और हंगामे में ही सिमटा मॉनसून सत्र, सरकार विपक्ष ने एक दूसरे पर फोड़ा ठीकरा, स्पीकर की बैठक से कांग्रेस रही दूर। उत्तराखंड के हल्द्वानी के रामलीला मैदान में सभा के बाद मंच का शुद्धिकरण का आरोप लगाते हुए भड़के खड़गे, संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान भी बताया। खड़गे के बयान के बाद जेपी नड्डा ने सरकार की ओर से जवाब दिया, कहा कि ऐसी घटना दुखद है और बीजेपी इस तरह की गतिविधियों के समर्थन में नहीं करती, जांच भी होगी। राहुल गांधी ने खड़गे के मंच के शुद्धिकरण वाले आरोप पर जवाब दिया, उन्होंने कहा कि ये बीजेपी और RSS की मनुवादी सोच का नतीजा है। हल्द्वानी स्टेट शुद्धिकरण पर प्रियंका गांधी का वार, बोली बीजेपी संघ की यही विचारधारा, यही मानसिकता, पीएम से भी माफी की मांग की। खड़गे की सभा स्थल के शुद्धिकरण पर भड़के अखिलेश यादव का, बीजेपी और उनके संगी साथियों को मंच नहीं अपने कलुषित मन का गंगाजल से शुद्धिकरण करना चाहिए। बिहार में NEET UG 2026 और RENEET UG 2026 परीक्षा में धांधली और फर्जीवाड़े के मामले में बड़ा एक्शन, EOU ने 2 मुख्य सरगनाओं को गिरफ्तार किया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने नलसा यूनिवर्सिटी के 2026 बैच के छात्रों का नामांकन रोकने का आदेश वापस लिया, CJI जस्टिस सूर्यकांत के खिलाफ अभियान चलाने का आरोप था। आदेश के 3 घंटे बाद ही BCA ने वापस लेने का फैसला लिया। दरअसल इसमें कहा गया है कि जब तक इस पूरे मामले की जांच रिपोर्ट नहीं मिल जाती, तब तक छात्रों के खिलाफ कोई भी फैसला नहीं लिया जाएगा।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित खान और खनिज संशोधन विधेयक 2026 पर कड़ी आपत्ति जताई है और इसे तत्काल वापस लेने की मांग की। सीएम सोरेन ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि

स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगे की रोशनी में नहाया दिल्ली का इंडिया गेट। आजादी के जश्न में चार चांद लगा रहा है ये खूबसूरत नजारा। मुंबई में भी आजादी के जश्न की जोरदार तैयारी। महाराष्ट्र विधान भवन तिरंगे की रोशनी से जगमगा उठा। मुंबई की प्रमुख इमारतों पर केसरिया, सफेद और हरे रंग की रोशनी दिखाई दी। देशभक्ति रंग में रंगी माया नगरी मुंबई। मुंबई की दो बड़ी पहचान भी तिरंगे के रंग में रंगी नजर आई। बीएमसी ऑफिस और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की इमारत को तिरंगे की रोशनी से सजाया गया। मुंबई के ऐतिहासिक छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल यानी कि सीएसटी को भी तिरंगे की रोशनी से सजाया गया। वहीं एलआईसी और एसबीआई की इमारतें भी देशभक्ति के रंग में नजर आई। स्वतंत्रता दिवस से पहले दुल्हन की तरह सजाया गया लखनऊ शहर। तिरंगे के रंग में जगमगाती नजर आई इमारतें और सड़कें। स्वतंत्रता दिवस से पहले गुवाहाटी में असम विधानसभा भवन तिरंगे की रोशनी में जगमगाया। जनता भवन को ये खूबसूरत नजारा देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। ग्वालियर की ऐतिहासिक इमारतों को भी तिरंगे की रोशनी से सजाया गया। रंग बिरंगी रोशनी में शहर की पुरानी इमारतें बेहद ही खूबसूरत नजर आई। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में बढ़ा दी गई है सुरक्षा व्यवस्था। पुलिस जगह जगह कर रही है वाहनों की चेकिंग। जम्मू कश्मीर के पुंछ में गाड़ियों की हो रही है कड़ी चेकिंग। स्वतंत्रता दिवस से पहले अलर्ट मोड पर सुरक्षा बल। दिल्ली के आरकेपुरम में बीजेपी की विशाल तिरंगा यात्रा। विधायक अनिल शर्मा के नेतृत्व में उमड़ा जन सैलाब। जगह जगह लोगों ने किया स्वागत। जम्मू कश्मीर के गांधरबल में मानसबल झील में तिरंगा रैली। स्वतंत्रता दिवस से पहले शिकारा रैली में दिखा देशभक्ति का जज्बा। पलवल में खेल मंत्री गौरव गौतम के नेतृत्व में 5 किलोमीटर लंबी विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में हर वर्ग और आयु के लोगों ने भाग लिया। भोपाल के बड़े तालाब में अनोखी तिरंगा यात्रा। नाव पर लहराया तिरंगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और खेल मंत्री विश्वास सारंग मौजूद रहे। बिहार के मुजफ्फरपुर में बीजेपी की तिरंगा यात्रा। सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ स्वागत हुआ। मध्य प्रदेश में नर्सिंग छात्रों का गुस्सा फूटा। रिजल्ट और परीक्षा की मांग को लेकर भोपाल में बड़ा प्रदर्शन। प्रदर्शन कर रहे कुछ छात्र वापस पास की एक ऊंची इमारत पर चढ़े। प्रशासन की समझाइश के बाद उन्हें नीचे उतारा गया। हैदराबाद में आयुष डॉक्टर्स का हंगर स्ट्राइक सस्पेंडेड। स्टाइपेंड बढ़ाने और गवर्नमेंट ऑर्डर जारी करने की मांग। संभल में सरकारी जमीनों से लेकर निजी जमीनें हो रही हैं कब्जा मुक्त। 22 साल बाद बीएसपी नेता को योगी सरकार में मिली 5 करोड़ रुपए कीमत की बेशकीमती जमीन। गुरुग्राम में कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन। टूटी सड़कों और जलभराव से आजादी की मांग की गई। वहीं अयोध्या में सड़क हादसे के बाद भाग रही कार ने

1.5 करोड़ की ठगी से था परेशान, पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ठगी महिला और उसका पति। गुजरात के मेसाड़ा में ज्वेलरी शॉप से लाखों की चोरी की गई। यूपी के अलीगढ़ में हार्डवेयर कारोबारी से लाखों की लूट का 48 घंटे में हुआ खुलासा। गुजरात साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बड़ी कार्रवाई, 11 राज्यों के 126 धार्मिक स्थलों की फर्जी वेबसाइट बनाकर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का किया गया भंडाफोड़, 2 गिरफ्तार। बिहार के मोतिहारी में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर हमला किया गया, घटना में 7 पुलिसकर्मी हो गए घायल। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में घर के बाहर खेल रही 4 मासूम बच्चियों पर सनकी युवक ने किया अचानक से जानलेवा हमला। बिहार के मुजफ्फरपुर में मसाज पार्लर की आड़ में देह व्यापार का भंडाफोड़ हुआ, छापेमारी में 12 युवतियां पकड़ी गई। जयपुर में 12वीं के छात्र की संदिग्ध मौत, परिजनों ने स्कूल पर लगाए गंभीर आरोप। गुजरात के मोरबी में जर्जर पानी की टंकी तोड़ने के दौरान बड़ा हादसा, टंकी उल्टी दिशा में गिरकर एक घर और दुकान पर जाकर गिरी। मेरठ में 50 से ज्यादा बाइक पर सैकड़ों युवाओं का हुड़दंग, गलियों में मचा हड़कंप, 3 गिरफ्तार। पंजाब के कपूरथला से मानवता को शर्मसार करने वाला एक वीडियो सामने आया। मंदिर के बाहर गरीब महिला की चप्पलों से मारपीट कर वीडियो वायरल होते हैं, FIR दर्ज। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़, बदमाशों ने की पुलिस पर फायरिंग। MP के कटनी में बीजेपी विधायक की कंपनी से 1.5 करोड़ की साइबर ठगी, डायरेक्टर के नाम से फर्जी मैसेज भेजकर उड़ाई गई रकम। पंचकूला में बड़ा हादसा, तीसरी मंजिल पर जनरेटर चढ़ाते समय क्रेन पलटी, 2 की मौत।

0: मैनकाइंड फार्मा, दिल से स्वदेशी, जान हिंदुस्तान।
1: बहुत टायर्ड हो गई।
2: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
3: लायन डेट नट बाइट्स।

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
2: AU
3: सोच बदलो और बैंक भी।
4: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
5: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
6: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
7: बिजली का बिल पेड,
8: तो है मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
9: कैसे?
8: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो
9: इतना माही वे।

0: in association with Sharda University. The world comes together at Sharda University. Where are you?
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
0: विमल बोलो जुबां केसरी हिंट बड़े आराम से
2: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें ईपेपर.aajtak.in या स्क्रीन पर दिए गए क्यूआर कोड को अभी स्कैन करें।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
2: सॉरी।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: बिजली का बिल पेड
2: तो है, मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
3: कैसे?
2: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो पे।
3: इतना माही वे।
4: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
5: सोच बदलो और बैंक भी।

0: संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ और आज हंगामे और गतिरोध के बीच खत्म हो गया। पूरे सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच तकरार इस कदर हावी रही कि कई अहम मुद्दों पर सदन में चर्चा तक नहीं हो सकी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मानसून सत्र के हंगामे में खत्म होने के पीछे विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया। विपक्ष कहता है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।
1: ऑपोजिशन सरकार से जवाब मांगता है और सरकार जवाब देना ही होता है पार्लियामेंट के अंदर में, तो पहले बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और ओपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
2: जी, प्राइम मिनिस्टर कदम नहीं रख रहे, होम मिनिस्टर कदम नहीं रख रहे, और मैं अंदर था, मैं सुन रहा था। सुनने के लिए तुम्हारे रूम में बैठ के सुनने के लिए आते हो? अरे, या हाउस में बैठ के सुनो, उसके बाद ये सब ऐसे हैं कि दे वांट टू डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी एंड दे वांट टू मींस डिमोरलाइज पार्लियामेंट मेंबर्स, एंड वो ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट हमारे सामने कुछ नहीं, सब कुछ हम हैं।
0: कांग्रेस का आरोप है कि पूरे मानसून सत्र के दौरान सरकार ने विपक्ष की बात नहीं सुनी। विपक्ष लगातार गृह मंत्री के बयान की मांग करता रहा। FCRA बिल वापस लेने की मांग की गई, लेकिन जवाब देना तो दूर। विपक्ष कहता है कि गृह मंत्री अमित शाह सत्र के दौरान सदन तक में नहीं आए। वहीं सत्र के आखिरी दौर में सरकार ने विपक्ष को चर्चा का प्रस्ताव दिया था। अमित शाह ने कहा था कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है और वो विपक्ष के हर सवाल का जवाब देंगे, लेकिन राहुल गांधी ने इस प्रस्ताव को खारिज करते हुए कहा कि विपक्ष को लेक्चर नहीं, सीधा जवाब चाहिए। अब देखिए मानसून सत्र में संसद का रिपोर्ट कार्ड क्या है। संसद का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ। आखिरी दिन लोकसभा की कार्रवाई सिर्फ एक मिनट चली, जबकि राज्यसभा करीब एक घंटे। वहीं राज्यसभा में आखिरी दिन MMDR संशोधन बिल पास हुआ। हैरान करने वाली बात, लोकसभा में 114 घंटे में से 96 घंटे काम नहीं हुआ। मानसून सत्र में लोकसभा की 19 बैठक हुई। इस हिसाब से 19 बैठक में करीब 114 घंटे कार्रवाई होनी थी, लेकिन ये करीब 17 घंटे 30 मिनट ही चली, यानी करीब 96 घंटे 30 मिनट कम काम हुआ है। वही मानसून सत्र में राज्यसभा में 114 घंटे कार्रवाई होनी थी, लेकिन लगभग 37 घंटे 24 मिनट ही काम हुआ, यानी करीब 76 घंटे 36 मिनट कम कार्रवाई हुई। अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें तो 2026 के मानसून सत्र में कुल 12 नए बिल पेश किए गए। इनमें 10 लोकसभा और 2 राज्यसभा में पेश हुए। लोकसभा में आए बिल टैक्स, बैंकिंग, खनन, ट्रिब्यूनल, जन्म मृत्यु पंजीकरण, परीक्षा में नकल रोकने, केरल का नाम बदलने और सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या जैसे मुद्दों से जुड़े। माइंस एंड मिनरल्स संशोधन बिल के राज्यसभा से पास होने के बाद अब 12 में से 11 बिल दोनों सदनों से पास हो चुके हैं। संसद का पूरा मानसून सत्र पेपर लीक के खिलाफ छात्रों के आंदोलन के इर्द गिर्द रहा है, लेकिन इस सियासी शोर में जनता के कई जरूरी मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई, जिससे जनता की कमाई के करोड़ों रुपए बह गए। इसीलिए हम कह रहे हैं, न बहस न चर्चा, करोड़ों का खर्चा। आज तक ब्यूरो।
1: लोकसभा में जितना टाइम आवंटित किया गया है, टोटल टाइम एलोकेशन के हिसाब से सिर्फ 19% हमने प्रोडक्टिविटी के दृष्टि से 19% सक्सेस प्राप्त किया है। राज्यसभा में 39%। राज्यसभा में ओपोजिशन पार्टी हंगामा करके कभी कभी वॉकआउट भी करते थे, तो बाकी मेजोरिटी पार्टीज NDA के और कुछ ओपोजिशन पार्टी के MPs ने डिबेट डिस्कशन में हिस्सा लिया। तो राज्यसभा का टोटल प्रोडक्टिविटी मॉनसून सेशन का 39%, लोकसभा का 19%। एक बिल सिर्फ चर्चा हो पाई लोकसभा में, जो प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट जो बना है, ये लोकसभा में भी डिस्कशन हुए थे और राज्यसभा में भी हुए हैं। इसके अलावा लोकसभा में कोई अच्छा चर्चा नहीं हुआ। बिल पास हुए हैं, 11 बिल्स पास किए हैं, इसलिए मैंने कहा टोटल 12 बिल्स पास किए हैं इन टोटल। और चर्चा के दृष्टि से हम खुश नहीं है, क्योंकि ओपोजिशन ने ठीक से चर्चा करने नहीं दिया, विशेष करके लोकसभा में।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

उत्तराखंड के पीपलकोटी में हाइड्रो प्रोजेक्ट की टनल में फंसे 22 लोगों में से 7 की मौत की पुष्टि, 14 लोगों को बचाया गया। पानी और मलबा भरने की वजह से रेस्क्यू में मुश्किल। नांदेड़ में शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल पर हमले के आरोपी के खिलाफ जांच तेज। पुणे में जसपाल सिंह के घर पर एटीएस ने की छापेमारी। कांग्रेस के एक कार्यक्रम में पीएम मोदी और अमित शाह का मजाक उड़ाने पर राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी हमलावर, राजनीति की मर्यादा पर बताया कला। सोरेन सरकार पर दबाव बनाने के लिए 15 अगस्त को रांची के छात्र निकालेंगे तिरंगा रैली। असेंबली प्रदर्शन को लेकर हत्या की कोशिश के आरोप में दर्ज एफआईआर पर बीजेपी ने उठाए सवाल। 15 अगस्त से पहले दिल्ली और देश के कई हिस्सों में हाई अलर्ट, जबरदस्त सुरक्षा इंतजाम। तिरंगे की रोशनी में नहाए इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन।

0: बजे हैं और अब वक्त हो गया है खास बुलेटिन सुपर 8 का। इस बुलेटिन में तमाम अहम खबरें आपको दिखाएंगे। सबसे पहले खबर होगी उत्तराखंड में हुए सुरंग हादसे की, साथ ही आपको बताएंगे कि आखिर क्यों अंबाला में बवाल मचा हुआ है। खबर रांची में छात्रों के नॉनस्टॉप प्रदर्शन की भी डिटेल के साथ आपको देंगे। राहुल के उस बयान का भी जिक्र करेंगे जिसे लेकर बीजेपी आग बबूला हो चुकी है। वहीं जयपुर के स्कूल में छात्र भी पूरी डिटेल आपको देंगे। बात जम्मू कश्मीर में सैलाबी संकट की भी करेंगे और राजस्थान की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि कैसे लहरों में एक युवक वहां पर फंस गया। साथ ही 15 अगस्त की तैयारियों की झलक भी आगे आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। दरअसल बड़ी खबर जो कि उत्तराखंड के चमोली से आ रही है, जहां पर हुए सुरंग हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक पीपलकोटी स्थित THDC की निर्माणाधीन टनल में अचानक से मलबा और पानी भरने के कारण वहां काम कर रहे 22 मजदूर फंस गए। खबर मिलते ही उनका रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। उत्तराखंड पुलिस, SDRF, NDRF और ITBP के जवानों को राहत कार्य में लगाया गया है। काफी मशक्कत वहां करनी पड़ रही है, जिसके बाद सुरंग से 21 लोगों को निकाला गया, जिनमें से 7 की मौत हो चुकी है। अभी भी एक मजदूर के अंदर फंसे होने की खबर सामने आ रखी है। उसे बाहर निकालने के लिए पूरी रात ऑपरेशन चला है। बचावकर्मी ड्रम की मदद से नाव बनाकर रेस्क्यू में जुटे दिखे। जिन 7 लोगों की मौत हुई है उनमें उत्तराखंड के चमोली से एक एक लोग हैं, बाकी बिहार और झारखंड से हैं। वहीं घायलों में ज्यादातर झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ से, एक पंजाब और एक हिमाचल से भी बताया जा रहा है। टनल में पानी और कीचड़ भरे होने के कारण वहां काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जिलाधिकारी ने जानकारी दी है कि पानी को निकालने के लिए मशीन को लगाया गया। NDRF, SDRF सभी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं।
1: जैसे ही हमको पता लगा तो हम लगभग 15-20 मिनट में जो है अपनी लोकेशन से चल दिए थे और यहाँ पर हम जो है इंसिडेंट साइट पे लगभग 40-45 मिनट में पहुँच गए थे। और जैसे ही हम पहुँचे तो यहाँ पर जो हमको डेटा दिया गया उसमें ये बताया गया कि 28 लोग अंदर हैं। तो 28 में से 6 रेस्क्यूअर थे जो यहाँ कंपनी के रेस्क्यूअर थे। उसके बाद उसी के साथ जो है हमारी एक टीम अंदर गई थी, एक टीम हमारी बाहर थी। और इसके अलावा हमारी जो है अभी 3-4 टीमें और मार्च कर चुकी हैं यहाँ पर, एक देहरादून से और एक जो है हमारे बटालियन हेडक्वार्टर रुद्रपुर से भी 2-3 टीमें मार्च कर चुकी हैं।
0: तो 14 लोगों को सुरक्षित वहां से बाहर निकाल लिया गया है और 23 मजदूर वहां पर, लगभग 22 मजदूर वहां पर फंसे हुए थे। एक व्यक्ति अभी भी फंसा हुआ है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर कल रात से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अभी भी उस व्यक्ति को बचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और हमारे सहयोगी कमल नयन सिरोड़ी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, अभी अपडेट दीजिएगा कि वहां पर अभी क्या हालात है और जो एक व्यक्ति फंसा हुआ है लगभग कितना समय और लगेगा, क्योंकि कल देर रात से ही रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।
2: जी, यहाँ पे मेरे पीछे जो टनल है इसमें लगभग 1.5 किलोमीटर अंदर ये घटना हुई है। वहां पे सबसे बड़ी बात है जो मुश्किलें आ रही है वो लगातार पानी भर रहा है। लगभग 5 मोटरें यहाँ पे लगाई गई हैं, लेकिन पानी बढ़ता जा रहा है जिससे रेस्क्यू अभियान में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है। ITBP यहाँ पे है, NDRF यहाँ पे है, प्रशासन की टीमें हैं, SDRF है, तमाम टीमें यहाँ पे लगी हुई हैं, लेकिन कहीं कहीं जो है दिक्कतें है वो पानी भरने से आ रहा है। ऐसे में जो बोट बनाई जा रही है, जो रेस्क्यू बोट बनाई जा रही है, उसी के माध्यम से अब वहां पे रेस्क्यू अभियान अभी भी लगातार चल रहा है। जैसे ही पानी को थोड़ा कम करते हैं वैसे ही वहां पे ढूंढ खोज करती है, सर्च किया जाता है, रेस्क्यू अभियान चलाया जाता है हर तरफ, क्योंकि बारिश भी हो रही है। ऐसे में पूरी टीमें यहाँ पे तत्परता से लगी हुई है।
0: कमल, क्या कुछ देर में वहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचने वाले हैं, क्या कोई इसको लेकर जानकारी आई है?
2: जी, जानकारी है मुख्यमंत्री धामी के यहाँ पे पहुंचने की, लेकिन मौसम कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशानी का सबब बन रहा है। ऐसे में अभी कंफर्म नहीं हो पाया है कि मुख्यमंत्री देहरादून से यहाँ के लिए चले हैं या नहीं चले हैं अभी।
0: चलिए ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बड़ी खबर, करीब 1 घंटे बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टनल राहत और बचाव कार्यों का जायजा लेने के लिए वहां पहुंचेंगे। उसके बाद करीब 10:30 बजे वो गोपेश्वर में रेस्क्यू में बचाए गए लोगों से भी मिलने जाएंगे। चमोली के पीपलकोटी हाइड्रो प्रोजेक्ट की टनल में शाम करीब 7 बजे यह हादसा हुआ, जिसमें 22 मजदूर फंस गए थे। अंकित हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अंकित, लगभग कब तक जो जिन लोगों को वहां से बचाया गया है उनसे मिलने के लिए पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे?
3: जी बिल्कुल पूजा, जिस तरह से शाम को एक खबर आती है, बहुत ही दुखद हादसा हुआ है और इसमें 7 लोगों की मौत की पुष्टि भी हो चुकी है, 14 घायल निकाले गए थे और जो बाकी एक व्यक्ति जो है उसके रेस्क्यू की कवायद चल रही है, लेकिन बार बार टनल में पानी भर रहा है जिसकी वजह से रेस्क्यू में देरी हो रही है। डीवाटरिंग के लिए मशीन्स भी लगाई गई थी, और इसके साथ सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि जो वर्कर्स हैं उनकी सिक्योरिटी का किस तरह से होगा। टनल कंस्ट्रक्शन को लेकर और सिक्योर कदम उठाने होंगे सरकार को, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आज चमोली पहुंचेंगे 9 बजे। सबसे पहले वो पीपल कोटी की टनल का निरीक्षण करेंगे, उसके बाद गोपेश्वर पहुंचेंगे जहां वो घायलों का हालचाल जानेंगे और पूरे इस हादसे का असेसमेंट लेंगे कि आखिर क्या कारण थे और इसके पीछे क्या ठोस कदम उठाने चाहिए। सिलक्यारा से लेकर पीपल कोटी तक हम ये देख रहे हैं कि टनल कंस्ट्रक्शन को लेकर जिस तरह से टनल केविन हो जाती है, उसमें पानी भर जाता है या जो पूरा डेबरी आ जाती है वो कितना घातक हो सकता है। सिलक्यारा में किस्मत अच्छी थी कि सभी वर्कर्स जो थे सुरक्षित बाहर निकल आए, लेकिन यहाँ पर बहुत ही दुखद घटना हमारे सामने आई है। 7 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है, एक व्यक्ति की अभी भी तलाश जारी है, लेकिन कहा जा रहा है कि उसके बचने की उम्मीद कम है क्योंकि पानी काफी हद तक पूरा टनल में भर चुका है। कीचड़ की वजह से जो रेस्क्यू एजेंसीज है उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो ज्यादा अंदर नहीं जा पा रहे हैं। पूरे जो 3 किलोमीटर के टनल में 1.5 किलोमीटर का जो पॉइंट है वहां पर ये हादसा हुआ था देर शाम, और काफी सेंसिटिव जियोलॉजी है इस पूरे क्षेत्र की। पहले भी वैज्ञानिक जो है यहाँ पर प्रोजेक्ट्स को लेकर सवाल उठाते आए हैं।
0: चलिए ठीक है अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं खबर अंबाला की, जहां पर पंजू खरा साहिब विवाद मामले में जबरदस्त हिंसा हुई। गुरुवार को वहां पर गुरसिमरन सिंह मन के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग को लेकर सिख संगत ने बड़ी संख्या में हाईवे पर प्रदर्शन किया, और तभी उनकी पुलिस वालों से झड़प भी हो गई। देखते ही देखते जमकर बवाल हो गया।
4: ये अंबाला कैंट की तस्वीरें हैं। बड़ी संख्या में सिख पंगत के लोग इस हाईवे पर उतर आए। इनका गुस्सा एंटी खालिस्तानी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष गुरसिमरन सिंह मंड के खिलाफ था। कल हुए प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। प्रदर्शनकारियों की पुलिस से भिड़ंत हो गई। हालात ऐसे हो गए कि भीड़ ने कई पुलिस वालों को निशाना बनाया। जवाब में पुलिस ने भी बल प्रयोग शुरू कर दिया। कई राउंड तक आंसू गैस के गोले दागे, लाठीचार्ज भी किया। इस झड़प में कई पुलिस वालों को गंभीर चोट आई। बवाल के बाद DGP अजय सिंघल ने अस्पताल पहुंचकर घायल पुलिस वालों से मुलाकात की। पुलिस ने बताया कि कैसे ये हिंसा भड़की।
5: उनसे बातचीत करते रहे, डिमांड थी वो हमने पूरी करी, लेकिन एंड में आके जब इतना जाम लग गया, लोगों का हैरेसमेंट हो गई, तो फिर उसमें से अचानक से किसी ने पथराव शुरू किया और उसके एवज में अरेना पुलिस को कुछ लाठीचार्ज करते हुए उनको क्लियर कराना पड़ा। उसमें हमारे काफी जवानों के चोट लगी है, DSP के बूटे पे कट दिया है।
4: अब आपको बताते हैं कि ये बवाल हुआ क्यों। दरअसल 7 अगस्त को अंबाला के गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब के बाहर गुरसिमरन सिंह मंड पर हमला हुआ था। उनकी कार भी तोड़ दी गई थी। उस मामले में कई सिख युवक गिरफ्तार किए गए थे। गुरुवार को अंबाला कैंट में प्रदर्शन करने वालों की पहली मांग थी कि उस मामले में मंड पर FIR दर्ज की जाए। शाम तक पुलिस ये मांग मान भी ली, लेकिन तभी प्रदर्शनकारियों ने नई शर्त रख दी। कहा कि पकड़े गए युवकों को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। इसके बाद देखते ही देखते हिंसा शुरू हो गई और हालात बिगड़ गए। अब इस मामले को लेकर तनाव बढ़ा हुआ है। कृष्ण बाली अंबाला आज तक।
0: तो वहीं शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल पर महाराष्ट्र के नांदेड़ में हुए हमले को लेकर जांच तेज है। अब ATS ने हमले के आरोपी जसपाल सिंह के घर पर पुणे में छापेमारी की। आरोपी के बारे में जांच एजेंसियां पूरी जानकारी जुटा रही हैं। तो वहीं आरोपी के बैकग्राउंड की जांच भी की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर उसने सुखबीर सिंह बादल पर हमला क्यों किया।
4: नांदेड़ के गुरुद्वारा माता साहिब कौर में मत्था टेकने पहुंचे थे सुखबीर सिंह बादल, वही उन पर हमला हुआ। अब हमलावर गिरफ्त में है, उसके खिलाफ जांच तेज हो गई है। सफेद दाढ़ी और नीली पगड़ी पहने ये वही आरोपी है जिसने सुखबीर सिंह बादल को जख्मी कर दिया। एक सुरक्षा कर्मी भी घायल हुआ है। जानकारी मिली है कि 62 साल का हमलावर जसपाल सिंह पुणे का रहने वाला है और वो फिलहाल इसी गुरुद्वारे में सेवा कर रहा था। वो पेशे से वकील भी रहा है।
6: निशाना बनाया, सो हम चाहते हैं कि इसकी सेंट्रल एजेंसी या हाईकोर्ट मॉनिटर्ड, किसी जज साहब की मॉनिटर्ड जांच हो, टाइम बाउंड मैनर से जांच हो, और ये सच है ये सामने आना चाहिए कि साजिश के पीछे है कौन।
4: इस मामले में पुलिस के साथ साथ ATS ने भी जांच तेज कर दी है। ATS की टीम ने आरोपी जसपाल सिंह के पुणे स्थित घर पर छापेमारी की है। वहां तलाशी भी ली गई है। साथ ही जांच टीम ने आरोपी के बैकग्राउंड और गतिविधियों की जानकारी जुटाई है।
7: जो उसकी बैकग्राउंड चेक और उसके कनेक्शंस, ये सारी चीजें हम डिटेल में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी एजेंसी, एटीएस और हम, ये सभी लोग मिलकर कर रहे हैं। इनिशियली वो खुद बोल रहा है कि मुझे थोड़ा सा ड्रग्स, पंजाब में ड्रग्स के ऊपर मेरा गुस्सा है वगैरह वगैरह, लेकिन वो फैक्ट एग्जैक्ट क्या है वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन के बाद ही पता चलेगा।
4: सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने हरसिमरत कौर बादल से फोन पर बात की और सुखबीर बादल का हाल जाना। इस मामले में मुख्यमंत्री फडणवीस ने हमले की वजह की जांच के आदेश दिए हैं। चंडीगढ़ से असीम बस्सी के साथ अभिजीत करांदे, नांदेड़ आज तक।
0: तो वहीं रांची में छात्रों के प्रदर्शन का आज 21वां दिन है। अभी भी छात्र जमे हुए हैं और कह रहे हैं कि जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। सरकार की ओर से भी कोई भी अभी तक ताजा पहल नहीं हुई है। ऐसे में गतिरोध बना हुआ है और इधर सरकार के रुख से नाराज छात्रों ने ऐलान कर दिया है कि दबाव डालने के लिए वो 15 अगस्त को भव्य तिरंगा यात्रा निकालेंगे। वहीं जेपीएससी, जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने इसका ऐलान किया। तिरंगा यात्रा कर सभी छात्र चट्टानी एकता का परिचय देंगे और छात्रों की माने तो सरकार हमारी मांगे पूरी करे, इसके लिए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजन होगा। उधर 10 अगस्त को हुए प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। अब रांची पुलिस उन हंगामा करने वालों की पहचान कर कार्रवाई की तैयारी में जुटी हुई है। देखिए, प्रदर्शन का आज 21वां दिन है। अभी भी छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं लेकिन कोई भी नई पहल अभी तक नहीं की गई है। छात्रों का 15 अगस्त को मार्च निकालने का प्लान है।
8: मनोज जी, अब आगे क्या, ये जितना था ये तो हो गया, और उस दिन जो लाठी चार्ज हुआ उसमें क्या हुआ था, चोट लगी थी यहाँ स्टूडेंट्स को, आगे क्या करेंगे अब आप लोग, क्योंकि ये तो गतिरोध जो है वो बरकरार है।
9: अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी तो विधानसभा हुआ है, मुख्यमंत्री घेरा होगा, राजभवन घेरा होगा, जब तक नहीं मिलेगा जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम लोग कोई हेमंत सोरेन जी से इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं, इस्तीफा कभी नहीं बोले। हम सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं। हम लोग छात्र हैं, हम लोग जो है सिर्फ यही कहेंगे कि TDPL कंपनी के द्वारा जितनी भी परीक्षा JPSC में ली गई है तमाम परीक्षाओं को रद्द करिए और JSSC की तमाम परीक्षाओं को रद्द करिए।
0: देखिए, बीजेपी का आरोप है कि झारखंड सरकार छात्रों पर हत्या की कोशिश का आरोप लगाकर FIR दर्ज कर रही है।
10: देखिए, तानाशाही सरकार का तानाशाही रवैया दिखा। 10 अगस्त को जो ऐतिहासिक प्रदर्शन हुआ था झारखंड की सड़कों पे JPSC प्रवेश परीक्षा में हुई धांधलियों के खिलाफ, उसमें छात्रों को पहले तो बर्बरता से लाठियों से पीटा गया, कई हॉस्पिटल में भी एडमिट है, और पुलिस ने अब उन पर FIR कर दिया है। FIR संख्या 61/26 विधानसभा थाने में, और कैसी कैसी धाराएं लगाई है साहब, छात्रों पे हत्या के प्रयास का मुकदमा लगाया है। कौन से छात्र आपको दिख रहे थे डंडा और पत्थर चलाते हुए साहब? राहुल गांधी जी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने हद कर दी साहब।
0: तो छात्रों के प्रदर्शन के बीच JPSC परीक्षा में गड़बड़ी के 7 आरोपियों की तलाश तेज हो गई है। CID ने झारखंड के कई जिलों में दबिश डाली। झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में अनियमितताओं की जांच कर रही CID ने मामले में वंचित 7 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी और तलाश अभियान चलाया है। जांच के क्रम में प्राप्त OMR, कार्बन कॉपी के मिलान और स्क्रूटनी की प्रक्रिया CID की गठित टीम ने शुरू कर दी है। जांच एजेंसी साक्ष्यों के संकलन के साथ परीक्षा में कथित अनियमितताओं की कड़ियों को जोड़ने में जुटी हुई है। तो रांची में चल रहे छात्र आंदोलन के समर्थन में कल दिल्ली में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रदर्शन किया। ABVP कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में झारखंड भवन के बाहर नारेबाजी की। वैसे तो दिल्ली पुलिस ने झारखंड भवन के बाहर भारी इंतजाम किए हुए थे, जगह जगह बैरिकेड लगाए गए थे ताकि प्रदर्शनकारी छात्र झारखंड भवन तक ना पहुंचे, लेकिन हजारों की संख्या में छात्र कुछ देर तक पहुंच गए और बैरिकेडिंग तोड़कर आगे भी बढ़ने लगे। हालांकि झारखंड भवन से ठीक पहले दूसरे बैरिकेडिंग के पास पुलिस प्रदर्शनकारियों को रोकने में सफल रही, लेकिन प्रदर्शनकारी छात्र घंटे तक झारखंड भवन के पास सड़क पर प्रदर्शन और नारेबाजी करते रहे। हंगामेदार मानसून सत्र कल खत्म हो गया, लेकिन अब राहुल गांधी के बयान से फिर से सियासी घमासान शुरू हो गया, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर कई हमले किए, जिसे लेकर सियासत तेज हो गई है। पहले आपको सुनाते हैं कि आखिर राहुल गांधी ने क्या कहा।
11: जिस दिन तक नरेंद्र मोदी अपना इस्तीफा नहीं देंगे, अमित शाह नहीं हटेगा, उस दिन तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं सो पाएंगे। उनको उनको हम जगा के रखेंगे, पूरी रात जगा के रखेंगे, जब तक वो कलैप्स करके कहें कि भैया ये हमारी बस की नहीं है, माफ करो, छोड़ दो हमें। फॉरेन पॉलिसी इज दिस।
12: मैं तो बच्चे फिर रहा था।
11: अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी।
12: एक चीज पूछ सकता हूं?
11: हाँ।
12: मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था?
11: आई हैव नॉट रीच देयर येट, बट पता नहीं कहां से घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी का मतलब नेताओं से गले लगना।
0: तो राहुल गांधी के इस बयान को लेकर बीजेपी ने उन पर जोरदार पलटवार किया है। पार्टी आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी संस्कार भूल गए हैं।
13: वो सभ्यता संपूर्ण उन्होंने भूल गया है, क्योंकि वो सभ्यता ही नहीं है उनके पास। तो अपने आप को समझते हैं ही इज बॉर्न टू रूल, ये इनके मन में अहंकार है। जब ये पूरा नहीं हो रहा है, हताश होके अत्यंत लो लैंग्वेज फिल दी लैंग्वेज उपयोग कर रहे।
14: जो आदमी मानसिक दिवालियेपन में हो, राहुल गांधी उसी श्रेणी में आते हैं। उन्हें संसद के बदले आगरा जैसे संस्थान में रहना चाहिए, और जिसका कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, नीचता की हद है।
0: अब एक ऐसी खबर जो हर माता पिता की चिंता बढ़ाने वाली है। दरअसल पैटीज खाने से किसी बच्चे की जान जा सकती है। जी हाँ, जयपुर के एक स्कूल में 12वीं के छात्र की मौत का मामला सामने आने के बाद गंभीर सवाल ऐसे उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि पैटीज खाने के बाद तबीयत बिगड़ने से उसकी जान चली गई। परिजनों का आरोप है कि स्कूल स्टाफ की जो लापरवाही थी, उसकी वजह से वो बच नहीं पाया।
4: 12वीं का छात्र प्रिंस सोनी अब इस दुनिया में नहीं है, वो अपनी जान गवा बैठा है। जयपुर के झोटवाड़ा इलाके में महाराणा प्रताप स्कूल में 12वीं का छात्र था प्रिंस। बताया जा रहा है कि लंच टाइम में प्रिंस ने स्कूल कैंटीन से पैटीज खरीदी और उसे खाया। उसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। बुधवार सुबह 11:03 पर सीसीटीवी में वो स्कूल कैंपस में परेशान दिखा। चंद सेकंड बाद वो वहीं पर बेहोश हो गया। स्कूल स्टाफ उसे स्कूल के दफ्तर में अंदर ले गए। उसे अंदर लेकर जाकर सोफे पर लिटाया। स्कूल स्टाफ ने उसे अस्पताल पहुंचाने की बजाय देर तक वहीं रखे रहा। परिजनों का आरोप है कि समय पर इलाज नहीं मिलने के उसकी मौत हुई। अब माँ का रो रो कर बुरा हाल है।
15: मेरे बच्चा न्याय दे रहा हूँ, हाथ जोड़ के मेरे बच्चा न्याय दे रहा हूँ, पर मेरे बच्चा न्याय दे रहा हूँ, मेरी आत्मा सुख पड़ी थी, मेरे बच्चे की आत्मा सुख पड़ी थी, फिर से अन्याय हुई है स्कूल में।
4: प्रिंस अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उसके जाने से घर का चिराग बुझ गया है।
15: एक औलाद किसी ने, एक लड़का था इनके, क्या इनके लिए एक बार बताओ क्या बचा इनकी जिंदगी में? चले सड़क पे पड़े हुए एक मरीज को भी लेकर के भग जाता है, पर ये लोगों ने उसको उठा करके कुत्तों की जैसे भटक करके रखा अपने वहां पे ऑफिस में 30 मिनट तक।
4: स्कूल में हुई इस घटना से लोग गुस्से में है, मांग कर रहे हैं कि प्रिंस की मौत की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ले लिया है और जांच शुरू कर दी गई है। अब पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। विशाल शर्मा, जयपुर आज तक।
0: अगली खबर जम्मू कश्मीर की, जहां पर दरअसल कुदरत का तांडव जारी है क्योंकि लगातार भारी बारिश और कई इलाकों में जिंदगी पर संकट बन गई है। अलग अलग हिस्सों में फ्लैश फ्लड की घटनाएं सामने आ रही हैं। देखिए
4: सबसे पहले तस्वीरें जम्मू कश्मीर के भद्रवाह की देखिए। वहां अचानक आई बाढ़ ने भद्रवाह शहर में तबाही मचा दी। सैलाब के इस रौद्र रूप को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्थिति कितनी गंभीर हो गई। मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाकों में अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ का पानी बाजारों और रिहायशी इलाकों में घुस गया। सड़कों पर कई लोग फंसे भी दिखे। तेज रफ्तार लहरों ने लोगों को डरा दिया। इसकी चपेट में आकर बड़े पैमाने पर संपत्ति और सामान को नुकसान बताया जा रहा है। उधर जोजिला में रंगा मोड़ के पास भी बेहिसाब संकट बढ़ा। वहां भारी बारिश का गंभीर असर हुआ। अचानक आई बाढ़ के बाद पहाड़ों से मलबा निचले इलाकों में दौड़ा। जोजिला के ऊंचे इलाकों में बादल फटने की घटना के बाद ऐसी गंभीर स्थिति हुई। सड़कों पर मलबा जमा हो गया। हालात ऐसे हो गए कि रंगा मोड़ का रास्ता बंद हो गया। घटना के बाद प्रभावित हिस्से पर आवाजाही रुक गई। बीआरओ की टीमों ने तुरंत मोर्चा संभाला और मलबा हटाकर ट्रैफिक बहाल करने की कोशिश में जुट गई। सोनमर्ग के पास सरबल में भी बादल फटने की घटना हुई। इस वजह से बालटाल की ओर जाने वाली सड़क पर मलबा भरने से आवाजाही बंद हो गई। श्रीनगर से मीर फरीद के साथ आज तक ब्यूरो।
0: खबर 15 अगस्त की तैयारी की, इसे लेकर दिल्ली में जबरदस्त तैयारी है। तमाम सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। देश के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर स्वतंत्रता दिवस की जोरदार तैयारी है। फिलहाल कई शहरों में इसकी रौनक भी दिख रही है। तमाम तस्वीरें इमारतें तिरंगे की रोशनी में डूबी हुई नजर आ रही है। दिल्ली के इंडिया गेट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहां पर भी सुरक्षा बल भारी मात्रा में तैनात कर दिए गए हैं। जोरदार तैयारी आजादी के पर्व की अभी फिलहाल हो चुकी है। अलग अलग जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर इमारतें तिरंगे की रोशनी में डूबी हुई हैं। तो 15 अगस्त की तैयारी अब लगभग पूरी हो चुकी है। सुरक्षा बल इंडिया गेट पर भी तैनात कर दिए गए। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए आज तक।
16: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से। इन एसोसिएशन विद
17: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आगे आगे
3: अरे उधर
2: उधर गया।
3: करेक्ट करेक्ट
4: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: मैं करता हूँ ना,
6: मैं करूँगा।
7: ओए कार्ड्स की दुकान, इतने कार्ड्स कौन रखता है?
5: ये ग्लोबल लग्जरी होटल्स के लिए, ये स्टे स्पा फाइन डाइनिंग के लिए, वर्ल्ड क्लास गोल्फ प्रिविलेजेस के लिए।
7: पंजाब नेशनल बैंक का लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड लो एंड गेट अनलिमिटेड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस, अनलिमिटेड स्टेज, डाइनिंग एंड मच मोर।
5: क्रिकेट में आप और बैंकिंग में PNB दोनों ही चैंपियन हैं।
7: PNB लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड, PNB मेरा अपना बैंक।
8: अर्जुन कुछ भी पढ़े मेमोरी में नहीं रहता।
9: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
10: लायन डेट नट बाइट्स।
11: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
12: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
13: सोच बदलो और बैंक भी।
14: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
15: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
16: बिजली का बिल पेड
17: तो है, मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
18: कैसे?
17: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए तक का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो
18: पे।
19: इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
20: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
21: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: जिस मिट्टी में फसल उगती है उसी में भारत की स्वतंत्रता की खुशबू है। इस स्वतंत्रता दिवस आइए उन किसानों का सम्मान करें जो हर दिन देश को मजबूत बनाते हैं। मेरे और क्रिस्टल परिवार की ओर से आपके और आपके परिवार को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: in association with
1: Cera Sanitaryware. It's your moment of Cera. E3 HDMR. ये रिश्ता लंबा चलेगा.
2: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर. ये है खबरें सात तक. देखते रहिए आज तक.
3: क्या जनगण का मन समझेंगी सरकारें जहां मुख्यमंत्री के सामने बेधड़क होकर बात जेन अल्फा रख देते.
4: मेरा इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ था सर, लेकिन वहाँ पे पैसे मांग रहे थे. इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ था, वहाँ पे पैसे मांग रहे थे मुझे 1.5 लाख रुपए, तो जिसकी वजह से मैं इंटरनेशनल खेलने नहीं जा सकी.
5: कौन सी स्कूल की है?
4: CMI
5: की. अच्छा, ठीक है, नोट कर ले नाम, है ना, एक बार देख ले.
3: क्या जनगण का मन समझकर अब फैसला लेंगी सरकारें जहां डिप्टी सीएम के सामने बिना डरे हक की सड़क जेन अल्फा मांगते.
6: चलो बताओ बताओ,
7: क्या नाम है?
8: कहाँ की?
7: जलंगिया और ढाबला के बीच की सड़क.
6: बस पक्की बात
8: है,
6: सड़क दोनों बने, बस दोनों बने.
3: क्या जनगण का मन समझकर अब सरकारों को अपनी रीत बदलनी होगी जहां स्कूली बच्चे विधायक से ही सीधे अपनी मांग रखते हैं. क्या जनगण का मन समझकर अब सुधरेगी व्यवस्था जहां बच्चा बच्चा अब डीएम के दफ्तर में घुसकर अपने अधिकार की बात करने लगा है. क्या जनगण का मन सुनकर बदलेगा सरकारी रंग और ढंग जहां जेन अल्फा को पता है कि वीडियो बनाकर वायरल होकर कैसे अधिकार लेना है.
4: खड़ा,
3: क्या जनगण के मन को जो अनसुना करेगा बुरा फंसेगा

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

उत्तराखंड के पीपलकोटी में हाइड्रो प्रोजेक्ट की टनल में फंसे 22 लोगों में से 7 की मौत की पुष्टि, 14 लोगों को बचाया गया। पानी और मलबा भरने की वजह से रेस्क्यू में मुश्किल। नांदेड़ में शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल पर हमले के आरोपी के खिलाफ जांच तेज। पुणे में जसपाल सिंह के घर पर एटीएस ने की छापेमारी।

बीजेपी हमलावर, राजनीति की मर्यादा पर बताया कला। सरकार पर दबाव बनाने के लिए 15 अगस्त को रांची के छात्र निकालेंगे तिरंगा रैली। असेंबली प्रदर्शन को लेकर हत्या की कोशिश के आरोप में दर्ज एफआईआर पर बीजेपी ने उठाए सवाल। पंद्रह अगस्त से पहले दिल्ली और देश के कई हिस्सों में हाई अलर्ट, जबरदस्त सुरक्षा इंतजाम, तिरंगे की रोशनी में नहाए इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन।

चमोली में पीपलकोटी टीएचडीसी जल विद्युत परियोजना के निर्माणाधीन टनल में बड़ा हादसा। टनल में पानी भरने की वजह से लोग फंसे, 7 मजदूरों की गई जान। हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। टनल में अभी भी एक फंसे होने की आशंका। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आकाशीय बिजली गिरने के कारण एक दर्दनाक घटना में 2 युवाओं की मौत हो गई है और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल। धर्मशाला में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। जल भराव के कारण पैदल चलने वाले लोगों के साथ वाहन चालकों को भारी परेशानी का करना पड़ा सामना। चित्तौड़गढ़ में पिकनिक मनाने गया युवक झरने में बहा, मौके पर मौजूद लोगों की सूझबूझ और तत्परता से बची जान। धर्मशाला में मूसलाधार बारिश से सड़कों पर जल भराव, आवाजाही हुई मुश्किल। खरगोन में मूसलाधार बारिश से तरबतर हुआ शहर, सड़कों पर घुटनों घुटनों तक भरा पानी। एडिशनल एसपी के बंगले में भी घुसा बारिश का पानी। सोनमर्ग के सरबल में क्लाउड ब्लस्ट, बालटाल जाने वाली सड़क बंद हुई, ट्रैफिक प्रभावित। भद्रवाह में भारी बारिश व कहर फ्लैश फ्लड जैसे हालात पैदा हुए, कई इलाकों में पानी का तेज बहाव। शिमला में अचानक से गाड़ियों पर गिरे बड़े बड़े पत्थर, कई वाहन चपेट में आए। पत्थर गिरने की वजह से मौके पर मचा हड़कंप। भारी बारिश के कारण जैसलमेर के सरकारी अस्पताल परिसर और वार्ड में भरा पानी, मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानियों को करना पड़ा सामना। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश का दौर जारी, कई जिलों में 19 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट। गोरखपुर में भारी बारिश से वाटर लॉगिंग, सड़कों पर वाहनों की रफ्तार रही धीमी। एमपी के नरसिंहपुर में NH-45 पर भीषण लैंडस्लाइड, भारी बारिश से जबलपुर भोपाल मार्ग पर गिरा पहाड़ का मलबा। मलबे से सड़क पर आवागमन प्रभावित, फिलहाल सड़क पर वन वे ट्रैफिक जारी, जेसीबी से हटाया जा रहा मलबा। अंबाला के पंजूखरा साहिब विवाद मामले में बढ़ा बवाल, गुरसिमरन सिंह पर एफआईआर की मांग को लेकर हाईवे पर पुलिस से भिड़ा सिख संगत, दोनों पक्ष से कई घायल। उग्र प्रदर्शन के जवाब में पुलिस ने भी बल प्रयोग किया, कई राउंड तक आंसू गैस के गोले भी दागे, लाठीचार्ज किया। बवाल के बाद डीजीपी ने अस्पताल पहुंचकर घायल पुलिस वालों से मुलाकात की, हौसला बढ़ाया। घायल हुए पुलिसकर्मियों के साहस, कर्तव्य निष्ठा और समर्पण की सराहना की। सुखबीर सिंह बादल पर हमले को लेकर अकाली दल ने सीबीआई जांच की मांग की। 2024 के हमले का जिक्र करते हुए आरोप लगाया है कि हमलावर आईएसआई से ट्रेनिंग पाया हुआ व्यक्ति। सीएम फडणवीस ने सुखबीर बादल पर हमले की जांच के आदेश दिए, पीएम मोदी ने भी ली हालात की जानकारी। सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले को लेकर मचा सियासी घमासान, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने हमले की निंदा की लेकिन पुरानी घटनाओं का जिक्र करते हुए निशाना बिसा। वहीं अकाली दल ने आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि वो ऐसे बयान से पंजाब को जलाना चाहते हैं, ये पार्टियां एक अलग नैरेटिव बनाना चाहती हैं। इस पूरे मामले में पुलिस के साथ साथ एटीएस ने भी जांच तेज की। आरोपी के पुणे स्थित घर पर छापेमारी की गई, साथ ही जांच टीम ने आरोपी के बैकग्राउंड और गतिविधियों को भी खंगाला। जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी मामले में सीआईटी का ताबड़तोड़ एक्शन, 7 आरोपियों की तलाश में कई जिलों में छापेमारी। रांची में छात्रों का आंदोलन जारी, रांची में 15 अगस्त को भव्य तिरंगा यात्रा कर निकालेंगे छात्र, जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने किया ऐलान। राहुल गांधी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति पर निशाना साधा, मजाक उड़ाते हुए लगाए गई गंभीर आरोप। पीएम मोदी और अमित शाह पर मजाक करने पर राहुल गांधी के खिलाफ उतरी बीजेपी, भारतीय राजनीति की मर्यादा पर बताया कलंक। संबित पात्रा का राहुल गांधी पर हमला, ये अशोभनीय भाषा और नकारात्मक राजनीति, लोकतंत्र मूल्यों का पतन। बीजेपी का राहुल गांधी पर हमला, भारतीय सेना को लेकर एक बार फिर से झूठ बोल रहे हैं राहुल गांधी। हंगामे से शुरू हुआ और हंगामे में ही सिमटा मानसून सत्र, सरकार विपक्ष ने एक दूसरे पर फोड़ा ठीकरा, स्पीकर की बैठक से कांग्रेस रही। उत्तराखंड के हल्द्वानी के रामलीला मैदान में सभा के बाद मंच का शुद्धिकरण का आरोप लगाते हुए भड़के खड़गे, संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान बताया। खड़गे के बयान के बाद जेपी नड्डा ने सरकार की ओर से जवाब दिया, कहा कि ऐसी घटना दुखद है और बीजेपी इस तरह की गतिविधियों का समर्थन नहीं करती, जांच का भी भरोसा। राहुल गांधी ने खड़गे के मंच के शुद्धिकरण वाले आरोप पर जवाब दिया, उन्होंने कहा कि ये बीजेपी और आरएसएस की मनुवादी सोच का नतीजा। हल्द्वानी से बोली, बीजेपी संघ की यही धारा, यही मानसिकता, पीएम माफी की। खड़गे की सभा स्थल के

की समस्या हल होगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा।

ध्यान रखें, धन के लेन देन में सावधानी रखें, करियर में लापरवाही ना करें, सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
6: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: जैन जी वोटरों को साधने की नई सियासत का पहला चुनावी टेस्ट यूपी में होगा।
1: देश का कोई युवा इंजीनियर गर्व से कह रहा है, फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू बिल्ड अ रॉकेट, फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया, फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ ड्रोन।
0: बीजेपी को देश के जैन जी वोटरों से संवाद की राह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखा दी है। पीएम मोदी से मिले संकेतों के बाद अब 2027 के यूपी चुनाव से पहले यूपी सरकार के मंत्री जैन जी चौपाले लगाने की शुरुआत कर रहे हैं। यूपी में जैन जी को साधने के लिए बीजेपी की युवा टोली स्कूल कॉलेजों तक पहुंचकर उनसे सीधा संवाद करेगी। ऐसा माना जा रहा है कि इस अभियान के तहत हर विधानसभा में 10-10 युवाओं की टीमें तैयार होंगी। टीम के सदस्य स्कूल कॉलेजों के युवाओं से बातचीत कर उनकी समस्याएं, उनकी अपेक्षाएं और उनकी राय जानेंगे। इस अभियान में भारतीय जनता युवा मोर्चा की अहम भूमिका होगी। जैन जी को लेकर इस रणनीति की यह खबर ऐसे समय में सामने आई है जब यूपी बीजेपी के बड़े नेता लगातार केंद्रीय नेतृत्व के संपर्क में हैं। बुधवार को यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में यूपी चुनाव के मद्देनजर चर्चा हुई है। वैसे जैन जी पर दाम विपक्ष का भी रहने वाला है। दिल्ली में सीजेपी प्रोटेस्ट को समर्थन देने वालों में अखिलेश यादव बेहद सक्रिय थे। इस बीच जैन जी को लेकर बीएसपी की रणनीति भी सामने आई है। बीएसपी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद को जैन जी की नब्ज टटोलने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जालौन की माधोगढ़ सीट से बीएसपी ने आशीष पांडे को अपना पहला प्रत्याशी घोषित किया है, जो पार्टी के युवा चेहरों में शामिल है। बीएसपी की रणनीति संगठन, सोशल मीडिया और चुनावी मैदान, तीनों स्तरों पर युवा नेतृत्व को आगे लाने की है। मायावती के सोशल मीडिया पोस्ट्स में लगातार छात्रों और युवाओं की बात की गई है। उनके निशाने पर सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी है। हाल में आकाश आनंद ने अखिलेश यादव को अंकल कहा था, जिस पर अखिलेश प्रतिक्रिया देने से बचे थे।
2: आकाश आनंद ने आपको अंकल कहा है?
3: बोला मैं 30 का हूँ,
2: आपको अंकल कहा है?
4: देखिए ऐसा है, उस बहस में हम और आप नवल हैं, और जो सीएस बात है, एक सिक्के के दो पहलू, और जो अंडरग्राउंड लोग हैं, अनरजिस्टर्ड लोग हैं, वो सोचते हैं कि कहीं ना कहीं से तो काम चलता ही रहे।
0: कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मायावती की रणनीति को समझकर बीएसपी पर पलटवार कर रहे हैं। जैन जी के साथ साथ महिला वोटरों पर भी राजनीतिक दलों की नजरें हैं। यूपी में महिलाओं को सालाना 50,000 रूपए, जिसमें चुनाव से पहले ही 20,000 रूपए ट्रांसफर करने की संभावना वाली स्कीम पर अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि भाजपा के पास चुनाव जीतने के लिए पैसे के सिवा कुछ नहीं बचा है, वो भी भाजपा की पाप की कमाई है, जिसे यूपी की धार्मिक महिलाएं कभी नहीं लेंगी, जिसे उप्र की धार्मिक महिलाएं कभी नहीं लेंगी। यूपी की जागरूक महिलाएं पूछ रही हैं, जिन दूसरे राज्यों में महिलाओं को पैसे देने की घोषणा करके चुनाव जीता था, वहां एक तरफ तो देने से आनाकानी कर रहे हैं, दूसरी तरफ पैसे वापस मांग रहे हैं, और जो लौटा नहीं पा रही हैं, उन महिलाओं पर भाजपा थाने कचहरी पुलिस मुकदमे की निंदनीय कार्रवाई कर रही है। पोस्ट के अंत में अखिलेश ने लिखा है, हम 40,000 से करेंगे शुरुआत, जिसमें बढ़ोतरी होगी हर साल। युवा और महिला किसी भी चुनाव का रुख मोड़ सकते हैं। मौजूदा माहौल में चुनावों में इनकी भूमिका और अहम हो सकती है, इसलिए यूपी में इन पर दांव लग रहा है। आज तक ब्यूरो।
5: सर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं हल्द्वानी में पब्लिक स्पीच में रामलीला मैदान में रामलीला स्टेज में भाषण किया और लाखों लोग वहां पर थे। उस वक्त मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किया।
6: बीजेपी, क्योंकि खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग थे, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और मैं भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं, बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज। नेवर। लेकिन आपने कहा है हम इसकी तहकीकात भी करेंगे।
7: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

हादसे के बाद उत्तराखंड के चमोली में जिंदगी बचाने की जंग। हाइड्रो प्रोजेक्ट की टनल में फंसे 22 लोगों में से अब तक 7 की मौत, 14 बचाए गए। घटनास्थल पर जा रहे हैं सीएम धामी। कांग्रेस के मन से पीएम और गृह मंत्री का मजाक उड़ाने पर राहुल गांधी के खिलाफ आग बबूला हुई बीजेपी का ये संस्कारहीन अभद्र और अश्लील भाषा। गिरिराज ने कहा मानसिक दिवालियापन। महाराष्ट्र के नांदेड़ में शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल पर हमले की जांच तेज। आरोपी के घर एटीएस की छापेमारी। पीएम मोदी ने ली सेहत की जानकारी।

बनाने के लिए 15 अगस्त को रांची के छात्र निकालेंगे तिरंगा रैली। असेंबली प्रदर्शन को लेकर हत्या की कोशिश के आरोप में दर्ज एफआईआर पर बीजेपी ने उठाए सवाल। 15 अगस्त से पहले दिल्ली और देश के कई हिस्सों में हाई अलर्ट, जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम, तिरंगे की रोशनी में नहा इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। सुबह का सबसे पहला संपूर्ण न्यूज बुलेटिन लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं, खबरें रफ्तार से और विस्तार से भी। लेकिन सबसे पहले खबरों की झलकियों पर एक नजर डाल लेते हैं। उत्तराखंड में हुआ एक और टनल हादसा, पीपल कोटी के टनल में कैसे हुई 7 लोगों की मौत, क्या बचाव के पूरे इंतजाम नहीं थे, इसी पर करेंगे विस्तार से चर्चा। राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया कि भड़क गई है बीजेपी, दिखाएंगे आपको राहुल का वो बयान और बीजेपी का पलटवार। जम्मू कश्मीर ले चलेंगे जहां पर कुदरत का कोहराम मचा है। आखिरी हिस्से में बुलेटिन के दिखाएंगे मूसलाधार आफत कैसे जम्मू कश्मीर को परेशान कर रही है। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर बुलेटिन की शुरुआत करें उत्तराखंड के चमोली में हुए सुरंग हादसे की खबर के साथ, क्योंकि ताजा खबर यह है कि सुरंग में फंसे एक मजदूर की तलाश तेज है। हादसे में मृतकों की संख्या अब 7 पहुंच गई है। चमोली जिले के पीपल कोटी स्थित THDC की निर्माणाधीन टनल में कल शाम 6:30 से 7 बजे के बीच हादसा हुआ। सुरंग में अचानक पानी और मलबा भरने से वहां 22 मजदूर फंस गए। उत्तराखंड पुलिस, SDRF, NDRF और ITBP के जवानों ने काफी मशक्कत के बाद सुरंग से 21 लोगों को बाहर निकाला, जिनमें से 7 की मौत हो चुकी है। अभी भी एक मजदूर अंदर फंसा हुआ है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चमोली के लिए रवाना हो चुके हैं, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से उन्हें वहां पहुंचने में समय लग सकता है। फिलहाल यहां लापता एक मजदूर को ढूंढने का काम जारी है। कमल नैन मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कमल नैन, इस मजदूर के बारे में क्या जानकारी मिल रही है, जिंदा है, मृत है, सुरंग से कितनी दूरी पर है?
1: ये टनल के 1500 मीटर के लगभग दायरे में है, जहां पे ये फ्लड आया था, जहां पे ये लूज गिरा था, वहीं पे ये जो मजदूर है वो लापता हुआ है, वहां पे मिसिंग है। अंदर पानी बहुत ज्यादा भर गया है, इसलिए राहत और बचाव कार्य में थोड़ी सी दिक्कतें हो रही है, क्योंकि पानी को बाहर करना भी एक अब राहत और बचाव कार्य में आ गया है, क्योंकि वहां पे पानी बहुत ज्यादा भर चुका है। पहले पानी को बाहर करो, फिर रेस्क्यू अभियान करो। वहां पे जो बोट बनाई जा रही है वो भी यहाँ पे खाली ड्रम जो रखे हैं उनके द्वारा बनाई जा रही है, ताकि वहां पे जैसे तैसे उस व्यक्ति को ढूंढा जा सके। वहीं अब कुछ देर बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। यही वो टनल है, देख सकते हैं, ये जो अंदर जाने के बाद लगभग 1600 मीटर पे इसी के ऊपर से कहीं से लूज गिरा है, और उसी लूज के साथ भारी पानी, क्योंकि ये आप देख सकते हैं ये टनल सीधा डाउन के लिए जा रही है, तो इसमें जो भी पानी या कुछ भी जाएगा तो वो एकदम अंदर टनल में भरता रहेगा। वही कारण है यहाँ पे जो लूज गिरा है, उसके बाद जो लोग फंसे हैं वो वहां पे फंस चुके हैं। हालांकि सबको निकाला गया, लेकिन अभी भी एक व्यक्ति लापता है।
0: जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो क्या देरी से शुरू हुआ जिसकी वजह से 7 मजदूरों की मौत हो गई?
1: नेहा, जैसे ही SDRF और ITBP और आर्मी को जैसे ही सूचना मिली वो लोग तो यहाँ पे पहुंच गए, लेकिन जहां पे लूज गिरा था वहां पे मलबा हटाना और बोट बनाना सबसे पहली प्राथमिकता थी। फिर पानी आ गया था, पानी के नीचे जो जिन डेड बॉडियों को निकाला गया वो लोग पानी के नीचे थे, फिर अंदर तक लास्ट पॉइंट तक इसमें पहुंचना था, तो इसलिए उसमें टाइम लगा। तो रात्रि 1 बजे तक तो बहुत तेजी से जो राहत और बचाव कार्य है वो हुआ, लेकिन जैसे ही 1 बजे के करीब टनल के अंदर पूरा पानी, जब पूरा व्यक्ति जो SDRF का NDRF का व्यक्ति पूरा डूबने लगा, उसके बाद रेस्क्यू अभियान को यहाँ पे ब्रेक करके पहले पानी को हटाया जा रहा था, फिर राहत बचाव कार्य किया जा रहा था, इसीलिए यहाँ पे थोड़ी सी देर हुई है।
0: तो कल शाम तकरीबन 7 बजे का वक्त था, पीपलकोटी में बन रहे THGC टनल में हमेशा की तरह वहां काम हो रहा था। सुरंग के भीतर करीब 1600 मीटर पर अचानक पानी का तेज रिसाव शुरू हो गया और फिर मलबा गिरने लगा। सब कुछ अचानक हुआ और वहां 22 लोगों को निकलने का मौका ही नहीं मिला। कैसे हुआ यह हादसा, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए।

0: पानी से भरी सुरंग, ड्रम को नाव बनाकर सुरंग में फंसे लोगों की तलाश करते राहत कर्मी। तस्वीर उत्तराखंड के चमोली जिले के पीपल कोठी की है। गुरुवार शाम करीब 6:30 बजे से 7 बजे के बीच अलकनंदा नदी पर बन रही विष्णुगाड़ पीपल कोठी जल विद्युत परियोजना की सुरंग भारी भूस्खलन की चपेट में आ गई। जानकारी के मुताबिक अचानक सुरंग में करीब 1600 मीटर अंदर पानी का रिसाव, कीचड़ भरा पानी भरने और मलबा गिरने से वहां मौजूद लोग फंस गए।
1: लगभग 6:30 बजे आज जो पीपल कोठी के यहां पे जो TSDC का ये प्रोजेक्ट है, SCC का यहां पे काम चल रहा है, TRT ये टनल है और यहां से 1600 मीटर अंदर इस टनल का लूज गिरा है। जिस समय शिफ्ट जहाज यहां से जा रही थी, लगभग 28 लोगों की जो जानकारी है, जो जिला प्रशासन के अनुसार 28 लोग यहां से अंदर जा रहे थे, उसी समय ये लूज गिरा। कुछ लोग उस तरफ फंस चुके हैं, वहीं 7 लोग पानी के बहाव के साथ इस तरफ को आए थे और उसके बाद से यहां पे लगातार राहत बचाव कार्य चल रहा है। अभी भी 18 लोगों को रेस्क्यू कर दिया गया है।
0: जिस सुरंग में हादसा हुआ उसका निर्माण THDC की सहायक कंपनी हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी यानी HCC करा रही है। निर्माणाधीन DRT टनल के अंदर मजदूरों के फंसने की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन और SDRF की टीमों का पहुंचना शुरू हो गया। तत्काल राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया गया, लेकिन टनल के अंदर पानी का तेज बहाव और मलबा आने से बचाव दल के लिए ये बेहद चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन था।
2: तो अभी जो अंदर सिचुएशन है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण जो है सिचुएशन थोड़ा सा टफ हो रही है। तो NDRF प्लस SDRF भी उसमें लगी हुई है। तो NDRF के ज़्यादातर जो जवान है वो अपना जो भी इक्विपमेंट है उसका यूज करके जो है कार्रवाई कर रहे हैं।
0: तस्वीरें देखिए, सुरंग के अंदर रेस्क्यू टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी है, जबकि सुरंग के बाहर जिले के आला अधिकारी, राहत कर्मी और स्थानीय लोग बड़ी तादाद में मौजूद है। हादसा कल शाम हुआ था, लिहाजा पूरी रात जिंदगी की जंग चलती रही और पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन का पल पल का अपडेट CM पुष्कर सिंह धामी लेते रहे।
3: खुद घायल लोग जो अस्पताल में भर्ती हैं पीपल कोठी में, उनसे बात की है और अभी उनके हालत ठीक है। और मैंने झारखंड और छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री गणों को भी अवगत करा दिया है कि उनका उनके जो झारखंड और छत्तीसगढ़ के जो लोग यहाँ पर घायल हुए हैं या जो इस रेस्क्यू में थे उनको यहाँ पर इलाज दिया जा रहा है, इसकी जानकारी भी उनको दी।
0: पीपल कोठी के टनल हादसे ने 2023 के सिलख्यारा टनल हादसे की यादें ताजा कर दी है। उत्तरकाशी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 134 को जोड़ने के लिए प्रस्तावित सिलख्यारा सुरंग का एक हिस्सा निर्माण के दौरान ढह गया था। हालांकि उस हादसे में सभी 41 श्रमिकों को बचा लिया गया था। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या पीपल कोठी में बन रही सुरंग में बचाव के पूरे इंतजाम नहीं थे। कमल नयन सिलोड़ी, पीपल कोठी, चमोली, आज तक।
4: कमल नयन मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। कमल नयन, अगर आप मौके पर ही मौजूद हैं तो वहां की तस्वीरें दिखाइए, किस तरह के हालात हैं वहां पर, कितना पानी और मलबा सुरंग के अंदर मौजूद है।
5: जी नया, यहाँ देख सकते हैं यही टनल जाती है, ये 1.5 किलोमीटर के बाद जो घटना हुई है वहां पे है, वहां किसी को जाने नहीं दिया जा रहा। लेकिन जो रेस्क्यू अभियान के हैं, जितने उपकरण हैं यहाँ पे, कभी SDRF, NDRF, तमाम फोर्स यहाँ पे, ITBP की फोर्स देख सकते हैं, पूरी फोर्स यहाँ पे मौजूद है, आधे से ज्यादा अंदर है। और ये बाहर पे जो अगर जरूरत पड़ती है तो ये लोग भी तत्काल तैयार बैठे हैं, प्रशासन की टीम यहाँ पे मौजूद है, जो एम्बुलेंसे हैं वो बाहर पे मौजूद है। अभी CM पुष्कर सिंह धामी पहुंचने वाले हैं, उसकी तैयारियां भी यहाँ पे हो रही है, तमाम चीजें हैं जो यहाँ पे हो रही है। वहीं मौसम की बात करें, लगातार बारिश हो रही है, बारिश के बीच ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब कुछ देर में यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। ऐसे में सबसे पहले हाल जानेंगे, यही वो टनल है, इसको एक बार दिखाएं तो यही ऊपर जो टॉप होता है यही से लूज गिरता है, ये लूज अचानक से गिरता है और इसके बाद हमेशा जब भी देखने को मिलता है तो लूज गिरने के बाद हादसा होता है। ये TRT जो टनल है ये पूरी तरह से पानी से भर चुकी है, अब इसका पानी बाहर किया जा रहा है, राहत बचाव किया जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो पानी है बहुत तेजी से भर रहा है, उसी कारण थोड़ी सी दिक्कतें राहत और बचाव में हो रही है।
4: कमल नयन, आप बता रहे थे कि वहां पर ड्रम्स का इस्तेमाल किया जा रहा है पानी में तैरने के लिए और रेस्क्यू के लिए, अभी तक बोट या फिर कोई और बेहतर तरीका क्यों नहीं रेस्क्यू टीम्स ने अपनाया?
5: जी नहीं, यहाँ पे बोट एकदम आसानी से मिलती नहीं है, इसलिए जो यहाँ पे काम होता है प्लास्टिक की जो ड्रम होते हैं उन्हीं से इन लोगों को जो राहत और बचाव कार्य में एकदम बोट बनाते हैं। बहुत तेजी से इन लोगों ने बोट बनाई है और वही उन्हीं बोटों का एक फायदा ये रहा है कि जो इतने लोगों को जो अभी तक रेस्क्यू किए गए हैं कल रात को 1 बजे तक, तो वो उन्हीं बोटों की मदद से की गई है।
4: ठीक है, तस्वीरें एक बार दिखा देते हैं कि यहाँ टनल हादसे में अब तक 7 की जान गई है, 21 लोगों का रेस्क्यू हुआ है, एक व्यक्ति बताया जा रहा है कि अभी भी अंदर फंसा हुआ है और उसे निकालने का काम इस तरीके से किया जा रहा है। आप देखिए कैसे ये ड्रम्स के जरिए टेम्प्रेरी बोट बनाई गई है, उसमें 4 रेस्क्यू वर्कर्स सवार हैं, वो धीरे धीरे करके आगे की ओर पैडल कर रहे हैं क्योंकि मलबा होने की वजह से रेस्क्यू में भी दिक्कतें आ रही हैं। और अब बात सियासत की, क्योंकि राहुल गांधी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। दिल्ली में रचनात्मक कांग्रेस कन्वेंशन में राहुल गांधी ने ऐसा भाषण दिया कि बीजेपी भड़क गई। राहुल गांधी ने ऐसा क्या कहा कि बीजेपी ने आक्रामक रुख अख्तियार किया है, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए।
6: कहीं भी नहीं फटाता, ये कहीं भी घुस जाता है।
0: दिल्ली के मावलंकर हॉल में राहुल गांधी रचनात्मक कांग्रेस कन्वेंशन में बोल रहे थे। निशाने पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह।
6: अब कांग्रेस पार्टी ऑपोजिशन सबका एक्सप्रेशन चालू है, अब नहीं रुकने वाला वो क्या। हाँ, थैंक यू, टाटा, गुड बाय। और मैं आपको बता रहा हूं, आप लिख लो, जिस दिन तक नरेंद्र मोदी अपना इस्तीफा नहीं देंगे, अमित शाह नहीं हटेगा, उस दिन तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं सो पाएंगे। उनको उनको हम जगा के रखेंगे, पूरी रात जगा के रखेंगे, जब तक वो कोलैप्स करके कहें कि भैया ये हमारी बस की नहीं है, माफ करो, छोड़ दो हमें। What is the magic trick?
0: राहुल गांधी ने पीएम मोदी की विदेश नीति पर सवाल खड़े किए, खासकर विदेशी नेताओं के साथ उनके गर्मजोशी से गले मिलने को निशाना बनाया। पीएम पर कटाक्ष करने के लिए वो स्टेज पर बकायदा संदीप दीक्षित से गले भी मिले।
6: इनके इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया, अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस। पता नहीं कहां से घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी का मतलब नेताओं से गले लगना। फिलोसॉफिकल सिस्टम में ओपोनेंट गुरु होता है।
0: राहुल गांधी ने कहा कि ईरान युद्ध के दौरान भारत को मध्यस्थता का मौका मिला था, लेकिन मोदी सरकार ने मौके को गंवा दिया।
6: एक साइड ईरान में युद्ध होता है, हिंदुस्तान के लिए अगर हिंदुस्तान अपनी स्ट्रेंथ को समझता और अगर हिंदुस्तान का नेता इंदिरा गांधी जी जैसा होता तो हिंदुस्तान के लिए दुनिया में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई। कौन सी कि भैया ईरान हमारा पुराना दोस्त, अमेरिका हमारा दोस्त, रशिया हमारा दोस्त, चलो भैया हम रेलेवेंट बन जाते हैं, इनकी दोस्ती बनाते हैं। हुआ क्या? नहीं हुआ क्या? पाकिस्तान ने हमें जगह उठा के ले गया। जो मीडिएटर पाकिस्तान बन गया और हिंदुस्तान मोदी जी देखते रह गए, ये हुआ क्या भाई?
0: कल ही संसद का मानसून सत्र खत्म हुआ है, पूरा सत्र शोर शराबे और हंगामे की भेंट चढ़ गया। सरकार लगातार राहुल गांधी के स्टैंड पर सवाल उठाती रही और अब दिल्ली के मावलंकर हॉल में राहुल गांधी के इस भाषण ने बीजेपी और कांग्रेस के बीच नया सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। आज तक ब्यूरो,
4: बीजेपी राहुल के इन बयानों पर भड़क गई है। सांसद बांसुरी स्वराज ने इसे संस्कारहीन, गरिमाहीन और अभद्र बताया।
7: नीचता की हद है और राहुल गांधी आज लगभग, मैं तो पहली बार कह रहा हूं कि राहुल गांधी आधा फ्रस्ट्रेशन उनके चेहरे से झलकता है, वो पागल हो चुके हैं। अगर सोनिया जी ने उनका इलाज नहीं कराया तो एक दिन उन्हीं के लिए घातक हो गया। मोदी जी को देख देख करके है वो पागल हो जाते हैं और वो कटकटाह होता है ना कुत्ता, उसे ये करने लगते हैं।
8: आज जिस प्रकार की संस्कारहीन, गरिमाहीन, अश्लील और अभद्र बयान राहुल गांधी ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर दिया है, उसे वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं, एक फेल्ड स्टैंड अप कॉमेडियन लग रहे थे। ही वॉज रिजोर्टिंग टू चीप इनवेंडोज एंड ही वॉज इंडल्जिंग इन लॉकर रूम टॉक। इस देश को एक सकारात्मक विपक्ष की जरूरत है। लोकतंत्र में नेता प्रतिपक्ष की बहुत अहम भूमिका होती है एंड दिस कंट्री डिजर्व्स बेटर देन अ 56 ईयर ओल्ड मैन लाइक राहुल गांधी बिहेविंग इन अ जुवेनाइल मैनर।
9: कोई भी विरोधी नेता को, वेदर इट इज प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर, टीका टिप्पणी करने के लिए, क्रिटिसिज्म करने के लिए, एक तो भाषा का सभ्यता रहता था, वो सभ्यता संपूर्ण उन्होंने भूल गया है क्योंकि वो सभ्यता ही नहीं है उनके पास। तो अपने आप को समझते हैं ही इज बॉर्न टू रूल, ये इनके मन में अहंकार है। जब ये पूरा नहीं हो रहा है, हताश होके अत्यंत लो लैंग्वेज, फिल्दी लैंग्वेज उपयोग कर रहे हैं।
10: राहुल गांधी के पूरे भाषण में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज झलकती है जिसको कहते हैं अंग्रेजी में फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन इस बात की कि वो रिजेक्टेड हैं, तो वो अब वाचिक हिंसा पे आ गए हैं। राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति जिस तरह से नाटक कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, कोई शीला जी के पुत्र के झप्पी पा रहे हैं, वो क्या बताना चाह रहे हैं? उसको, उसके लिए एक चुनी हुई देश की महिला के लिए एक भारत देश के संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का स्टेटमेंट, और वो महिला उनका ननेरे में है, ननिहाल की महिला के लिए ये उनकी भावना है।
4: अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। अमित, अब क्या बीजेपी कोई एक्शन लेने की तैयारी में है, क्योंकि काफी नेगेटिव तरीके से राहुल गांधी के इस बयान और भाषण को लिया गया है?
11: नहीं, देखिए, जब राहुल गांधी ने बयान कल दिया था कांग्रेस पार्टी के एक फंक्शन के बीच में, रचनात्मक कांग्रेस का ये समिट था, कॉन्फ्रेंस था दिल्ली में, तभी यह स्पष्ट हो गया था कि अब यहां से बीजेपी इस बयान को लेकर हमलावर होगी और भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के बयान आने शुरू हो गए हैं, जिसमें न केवल जिस तरह का क्रिटिसिज्म राहुल गांधी ने फॉरेन रिलेशंस को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और उनके सरकार के विदेश नीतियों को लेकर किया, बल्कि स्पष्ट रूप से एक देश के प्रधानमंत्री दूसरे देश के प्रधानमंत्री के लिए जिस तरह से एक बैंटर करने की कोशिश की गई मंच से, उसको महिला विरोधी सोच के तौर पे भारतीय जनता पार्टी अब यहां से बढ़ाने की कोशिश करेगी और ये इस नैरेटिव को सेट जरूर करेगी बीजेपी आज लगातार जैसे ही दिन बढ़ेगा, कि किस तरह से राहुल गांधी और संदीप दीक्षित के बीच जो बातचीत कल हुई मंच के ऊपर, वो महिला विरोधी सोच रिफ्लेक्ट करती है और जो लीडर ऑफ अपोजिशन की गरिमा है उसको मेंटेन नहीं करती है। बीजेपी लगातार आज ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश करेगी। अब देखना ये है कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस पर क्या बचाव आता है और संदीप दीक्षित खुद क्या कहते हैं, क्योंकि जिस ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ वो संदीप दीक्षित द्वारा कहे गए वक्तव्य के बाद ही राहुल गांधी का उस पर एक तरह से रिबटल आया था या जवाब आया था। तो अब ये इंपॉर्टेंट है कि संदीप दीक्षित अपने बचाव में क्या कहते हैं और कांग्रेस पार्टी किस तरह से अपने नेता राहुल गांधी का बचाव करती है।
4: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। अब रुक करेंगे रांची का, जहां पर छात्र प्रदर्शन का आज 21वां दिन है। अभी भी छात्र वहां पर डटे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहने वाला है। सरकार की ओर से भी कोई ताजा पहल नहीं हुई है, ऐसे में गतिरोध बना हुआ है। इधर सरकार के रुख से नाराज छात्रों ने ऐलान कर दिया है कि दबाव डालने के लिए वो 15 अगस्त को भव्य तिरंगा यात्रा निकालेंगे। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने इसका ऐलान किया है। तिरंगा यात्रा कर सभी छात्र चट्टानी एकता का परिचय देंगे। छात्रों की माने तो सरकार हमारी मांगे पूरी करे, इसके लिए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजन किया जाएगा। उधर 10 अगस्त को हुए प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने 300 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। अब रांची पुलिस उन हंगामा करने वालों की पहचान कर कार्रवाई करने की तैयारी में जुट गई है। शशि भूषण मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शशि भूषण, आज 21वें दिन किस तरीके से तस्वीर अलग दिखाई दे रही है, क्या छात्रों की संख्या और कम हो गई है?
12: नहीं, देखिए छात्रों की संख्या कम नहीं हुई है। कल शाम से यहाँ जबरदस्त बारिश हुई है रांची में नेहा, लेकिन इस बारिश के बीच भी छात्र जो हैं वो जमे हुए हैं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में। और छात्रों ने कल देर रात ही ये कॉल दिया कि 15 अगस्त को वो अपनी एकजुटता दिखाने के लिए तिरंगा यात्रा निकालेंगे। मतलब जो मुख्यमंत्री आवास के घेराव की बात सामने आ रही थी या चर्चाएं हो रही थी, उसको JPSC JSSC रिफॉर्म्स मंच जो है उसने खारिज किया है। फिलहाल उन्होंने कहा है कि हमने फिलहाल ऐसा कोई कॉल नहीं दिया है, अगर कॉल दिया जाएगा तो इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। लेकिन आज 21वें दिन भी जो धरना प्रदर्शन आंदोलन जो भी कह लीजिए वो छात्रों का जारी है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में। आज प्लानिंग उनकी तरफ से होगी, आज कोई आयोजन नहीं रखा गया है। आज ये तमाम छात्र राज्य के दूसरे इलाकों से जो छात्र पहुंच सकते हैं कल 15 अगस्त को रांची में, उन तमाम छात्रों के साथ सामंजस्य करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे। और उनकी कोशिश ये है कि कल एक बेहद शांतिपूर्ण तिरंगा मार्च निकाला जाए जिसके जरिए सरकार को यह मैसेज दिया जाए कि जो दो प्रमुख मांगे हैं, एक JSSC में जो गड़बड़ियां हुई उस परीक्षा को पूरी तरह से रद्द करना और CBI जांच का आदेश देना। तो यहां पर जो मामला फंसा है वहीं पर अटका पड़ा है। 21वां दिन है, आज 11 दिन हो गए हैं उन छात्रों के, जो छात्र भूख हड़ताल पे हैं उनकी स्थिति लगातार बिगड़ रही है। लेकिन हाँ, एक नए कॉल से, एक तिरंगा यात्रा का जो कॉल दिया है इन छात्रों ने और रिफॉर्म मंच ने, उसके बाद अब सबकी नजरें वहां पर जाकर टिक गई हैं। नेहा,
4: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। बात हैदराबाद नेशनल लॉ स्टडी एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी यानी कि नलसार की करेंगे। नलसार यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में जस्टिस सूर्यकांत को बुलाने के लेकर विरोध हो रहा है, जिसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस विश्वविद्यालय के 2026 बेंच के लॉ ग्रेजुएट्स के वकील बनने पर रोक लगा दी है और यहीं से मामला और ज्यादा फैल गया है। अब विस्तार से समझिए कि मामला है क्या। दरअसल हैदराबाद स्थित सरकारी लॉ यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह होना है। प्रबंधन ने मुख्य अतिथि के तौर पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत को आमंत्रण भेजा, लेकिन जैसे ही छात्रों को यह मालूम चला तो विरोध शुरू हो गया। 450 से ज्यादा छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रबंधन को पत्र लिखकर आपत्ति जाहिर की। छात्रों का विरोध इसलिए क्योंकि 20 जुलाई को जब दिल्ली में छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ तो CGI के पास याचिका गई और CGI ने सुनवाई से इनकार कर दिया। इस बात से लॉ ग्रेजुएट्स खफा है। अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया पर आते हैं। BCI के अध्यक्ष हैं मनन मिश्रा, ये BJP के सांसद हैं। इन्होंने आदेश जारी किया कि नलसा के 2026 बैच के छात्रों को भारत में कहीं भी वकील के तौर पर रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। इस फैसले का भारी विरोध हुआ, सोशल मीडिया पर बवाल हुआ, जिसके बाद बार काउंसिल को यू टर्न लेना पड़ा और अपना फैसला वापस लेना पड़ा।
13: कल एक आदेश जारी हो गया, लेकिन तुरंत काउंसिल की मीटिंग हुई। काउंसिल ने उस पर कहा कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। असल में मनसा ये है कि किसी स्टूडेंट को इंटर्नशिप जुडिशरी में मिलने में कोई नुकसान ना हो। तो बाद में जब ये बातें काउंसिल में सारी बातें हुई, रियलाइज किया गया कि नहीं भाई, स्टूडेंट को पनिश करने का कोई सवाल नहीं है, स्टूडेंट्स का इसमें कोई कसूर नहीं था और इससे स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट पे गलत असर पड़ेगा, तो तुरंत उस आदेश को विथड्रॉ कर लिया गया। देयर विल बी नो इंक्वायरी, कोई इंक्वायरी नहीं होगी।
4: और अब खबर अंबाला से, जहां जोखरा साहिब विवाद मामले में जबरदस्त हिंसा हुई है। गुरुवार को वहां गुरसिमरन सिंह मंड के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग को लेकर सिख संगत ने बड़ी संख्या में हाईवे पर प्रदर्शन किया है। उनकी पुलिस वालों से वहां झड़प भी हुई, देखते देखते जमकर बवाल हुआ।
0: ये अंबाला कैंट की तस्वीरें हैं। बड़ी संख्या में सिख पंगत के लोग इस हाईवे पर उतर आए। इनका गुस्सा एंटी खालिस्तानी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष गुरसिमरन सिंह मंड के खिलाफ था। कल हुए प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। प्रदर्शनकारियों की पुलिस से भिड़ंत हो गई। हालात ऐसे हो गए कि भीड़ ने कई पुलिस वालों को निशाना बनाया। जवाब में पुलिस ने भी बल प्रयोग शुरू कर दिया। कई राउंड तक आंसू गैस के गोले दागे, लाठीचार्ज भी किया। इस झड़प में कई पुलिस वालों को गंभीर चोट आई। बवाल के बाद DGP अजय सिंघल ने अस्पताल पहुंचकर घायल पुलिस वालों से मुलाकात की। पुलिस ने बताया कि कैसे यह हिंसा भड़की।
14: उनसे बातचीत करते रहे, उनकी डिमांड थी वो हमने पूरी करी, लेकिन एंड में आके जब इतना जाम लग गया, लोगों को हैरेसमेंट हो गई, तो फिर उसमें से अचानक से किसी ने पथराव शुरू किया और उसके एवज में हरियाणा पुलिस को कुछ लाठीचार्ज करते हुए उनको क्लियर कराना पड़ा। उसमें हमारे काफी जवानों के चोट लगी है, डीएसपी के बूटे पे कट गया है।
0: अब आपको बताते हैं कि ये बवाल हुआ क्यों। दरअसल 7 अगस्त को अंबाला के गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब के बाहर गुरसिमरन सिंह मंड पर हमला हुआ था। उनकी कार भी तोड़ दी गई थी। उस मामले में कई सिख युवक गिरफ्तार किए गए थे। गुरुवार को अंबाला कैंट में प्रदर्शन करने वालों की पहली मांग थी कि उस मामले में मंड पर FIR दर्ज की जाए। शाम तक पुलिस ये मांग मान भी ली, लेकिन तभी प्रदर्शनकारियों ने नई शर्त रख दी। कहा कि पकड़े गए युवकों को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। इसके बाद देखते ही देखते हिंसा शुरू हो गई और हालात बिगड़ गए। अब इस मामले को लेकर तनाव बढ़ा हुआ है। कृष्णबाली अंबाला आज तक।
4: और अब आज जम्मू कश्मीर के फ्लैश फ्लड की। पिछले कुछ दिन से जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बारिश है और अब फ्लैश फ्लड बनकर मुसीबत सामने आ चुकी है। सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं, हिमाचल प्रदेश भी का पहाड़ों से आफत बरस रही है।
0: जम्मू कश्मीर में बारिश आफत बनकर आई। पहाड़ों पर मूसलाधार प्रहार से कई इलाकों में फ्लैश फ्लड आ गया, तो कहीं मलबे के साथ पानी की तेज धारा घरों और गलियों तक पहुंच गई। ये जम्मू कश्मीर की भद्रवाह की तस्वीरें हैं। बाजार पर पानी का कब्जा हो गया है। चौक चौराहों पर बहाव इतना तेज है कि मानो यहां सड़क नहीं नहर बह रही है। भारी बारिश के बाद भद्रवाह के कई इलाकों से इसी तरह की तस्वीरें आईं। रिहायशी इलाकों में भी बारिश का पानी घुस गया। जिन गलियों में बच्चे खेलते थे वहां पानी की तेज धारा बह रही है। ये तस्वीर भी भद्रवाह की है। जामिया मस्जिद चौक पर अचानक फ्लैश फ्लड जैसे हालात हो गए। लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। इस दौरान कुछ लोग एक बाइक को भी इस पानी से बचाने की कोशिश करते दिखे। कड़ी मशक्कत के बाद एक बाइक तो बच गई, लेकिन सड़क किनारे खड़ी दूसरी गाड़ी पानी में बह गई। जो जिला सुरंग के पास ऊंचाई वाले इलाके में अचानक बादल फटने की घटना हुई, जिसके बाद वहां भी फ्लैश फ्लड आ गया। पानी के साथ मलबा और बड़े पत्थर भी बहने लगे। भारी मलबे की वजह से जोजिला का रंगा मोड़ ब्लॉक हो गया। हालांकि बीआरओ ने अपनी टीमों को तैनात कर दिया है। स्थिति पर नजर रखी जा रही है। अब जरा शिमला की भी तस्वीरें देखिए। भारी बारिश के चलते जगह जगह लैंडस्लाइड की खबरें सामने आ रही हैं। शिमला के ढली इलाके में सब्जी मंडी के पास अचानक पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। गनीमत रही कि ये पत्थर जिन वाहनों पर गिरे उसमें लोग नहीं थे। पत्थरों की वजह से 12 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। भारी बारिश की वजह से चित्तौड़गढ़ के मेनाल प्रपात में भी जलस्तर बढ़ा हुआ है। यहां पिकनिक मनाने गया एक शख्स पानी में बहने लगा। अचानक हुई इस घटना से वहां अफरा तफरी मच गई। आसपास खड़े लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को निकाल लिया। आज तक ब्यूरो।
4: तो बिना ब्रेक की खबरों का सिलसिला लगातार 9 बज गए में जारी रहेगा। वक्त हो गया हेडलाइंस का।
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी। लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस। इन एसोसिएशन विद
16: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

दर्दनाक सुरंग हादसे के बाद उत्तराखंड के चमोली में जिंदगी बचाने की जंग। हाइड्रो प्रोजेक्ट के टनल में फंसे 22 लोगों में से अब तक 7 की मौत, 14 बचाए गए। एक लापता मजदूर की तलाश जारी। कांग्रेस के मन से पीएम और गृहमंत्री का मजाक उड़ाने पर राहुल गांधी के खिलाफ आग बबूला हुई बीजेपी का यह संस्कारहीन, अभद्र और अश्लील भाषा। गिरिराज ने कहा मानसिक दिवालियापन है। महाराष्ट्र नांदेड़ में शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल पर हमले की जांच तेज। आरोपी के घर एटीएस की छापेमारी। फॉरन एक्शन के लिए हरसिमरत ने गृहमंत्री को दिया धन्यवाद। जयपुर के स्कूल की कैंटीन से पैटीज खाने के बाद गई छात्र की जान। सीसीटीवी में बेहोश दिखा 12वीं क्लास का प्रिंस। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। मां का आरोप, वक्त पर इलाज होता तो बच जाता बेटा। 15 अगस्त से पहले दिल्ली और देश के कई हिस्सों में हाई अलर्ट। जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम। तिरंगे की रोशनी में नहा इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन।

चमोली में पीपलकोटी टीएचडीसी जल विद्युत परियोजना के निर्माणाधीन टनल में बड़ा हादसा, सुरंग में पानी भरने से फंसे लोग, 7 मजदूरों की गई जान। हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, टनल में अभी एक मजदूर के फंसे होने की जानकारी। चमोली में टनल हादसे के बाद सुबह की तस्वीरें आई सामने, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी, राहत और बचाव दल मौके पर जुटे नजर आए। बेहद खराब मौसम के बीच पीपलकोटी पहुंचे मुख्यमंत्री धामी, रेस्क्यू ऑपरेशन का कर रहे निरीक्षण। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आकाशीय बिजली गिरने की घटना में 2 युवाओं की मौत, 2 अन्य गंभीर रूप से घायल। धर्मशाला में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, जलभराव के कारण राहगीरों और वाहन चालकों की बड़ी परेशानी। ओडिशा के भद्रक में भारी बारिश के बीच बैतरणी नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पार, बाढ़ का पानी इलाकों में घुसा। चित्तौड़गढ़ में पिकनिक मनाने गया युवक, झरने में बहा, मौके पर मौजूद लोगों की सूझबूझ से बची जान। यूपी के सीतापुर में झमाझम बारिश, तापमान में गिरावट से लोगों को गर्मी से राहत। धर्मशाला में मूसलाधार बारिश से सड़कों पर जलभराव, आवाजाही मुश्किल। खरगोन में मूसलाधार बारिश से सड़कों पर घुटनों तक पानी, रिश्तेदार एसपी के बंगले में घुसा बारिश का पानी। सोनमर्ग के सरवल में फटा बादल, बालटाल जाने वाली सड़क बंद, ट्रैफिक प्रभावित। हैदराबाद में भारी बारिश का कहर, फ्लैश फ्लड जैसे हालात, कई इलाकों में पानी का तेज बहाव। शिमला में अचानक गाड़ियों पर गिरे बड़े बड़े पत्थर, कई वाहन चपेट में, पत्थर गिरने से मौके पर हड़कंप। भारी बारिश के कारण जैसलमेर के अस्पताल परिसर और वार्ड में भरा पानी, मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानी। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश का दौर, कई जिलों में 19 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट। गोरखपुर में भारी बारिश से वाटर लॉगिंग, सड़कों पर वाहनों की रफ्तार रही धीमी। एमपी के नरसिंहपुर में NH-45 पर भीषण लैंडस्लाइड, भारी बारिश से जबलपुर भोपाल मार्ग पर गिरा पहाड़ का मलबा। मलबे से सड़क पर आवागमन प्रभावित, लाल सड़क पर वन वे ट्रैफिक जारी, जेसीबी से हटाया जा रहा है मलबा। अंबाला के पंजोखरा साहिब विवाद मामले में बड़ा बवाल, गुरसिमरन सिंह पर एफआईआर की मांग को लेकर हाईवे पर चक्का जाम, पुलिस से भिड़ा सिख संगत। उग्र प्रदर्शन के जवाब में पुलिस ने किया लाठीचार्ज, कई राउंड तक आंसू गैस के गोले दागे गए। बवाल के बाद डीजीपी ने अस्पताल पहुंचकर घायलों और पुलिस वालों से मुलाकात की, घायल पुलिसकर्मियों का साहस, कर्तव्य निष्ठा और समर्पण की सराहना की। सुखबीर बादल पर हमले को लेकर अकाली दल ने सीबीआई जांच की मांग की, 2024 के हमले का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि हमलावर आईएसआई से ट्रेनिंग पाया हुआ है। पीएम फडणवीस ने सुखबीर बादल पर हमले की जांच के आदेश दिए, पीएम मोदी ने भी ली हालात की जानकारी। सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले को लेकर सियासी घमासान तेज, कांग्रेस और आप ने हमले की निंदा की लेकिन पुरानी घटनाओं का जिक्र करते हुए साधा निशाना। अकाली दल ने आप कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि वे ऐसे बयान से पंजाब को जलाना चाहते हैं, ये पार्टियां एक अलग नैरेटिव बनाना चाहती हैं। इस मामले में पुलिस के साथ साथ एटीएस की जांच तेज, आरोपी के पुणे स्थित घर पर छापेमारी कर आरोपी के बैकग्राउंड और गतिविधियों की जानकारी ली गई। जेपीएससी परीक्षा गड़बड़ी मामले में सीआईडी का ताबड़तोड़ एक्शन, 7 आरोपियों की तलाश में, कई जिलों में छापेमारी, रांची के छात्रों का आंदोलन जारी। रांची में 15 अगस्त को भव्य तिरंगा यात्रा निकालेंगे छात्र, जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच से किया ऐलान। राहुल गांधी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति पर निशान साधा, मजाक उड़ाते हुए लगाए गंभीर आरोप। पीएम मोदी और अमित शाह पर मजाक करने पर राहुल गांधी के खिलाफ उतरी बीजेपी, भारतीय राजनीति की मर्यादा पर बताया कलंक। संबित पात्रा का राहुल गांधी पर हमला, बोले ये अशोभनीय भाषा और नकारात्मक राजनीति, लोकतांत्रिक मूल्यों का पतन है। बीजेपी का राहुल गांधी पर हमला, कहा भारतीय सेना को लेकर एक बार फिर झूठ बोल रहे हैं राहुल गांधी। हंगामेदार मानसून सत्र का समापन, सरकार विपक्ष ने एक दूसरे पर फोड़ा ढीकरा, स्पीकर की बैठक से कांग्रेस दूर रही। उत्तराखंड के हल्द्वानी रामलीला मैदान में सभा के बाद मंच के शुद्धिकरण का आरोप लगाते हुए भड़के खड़गे, संविधान लोकतांत्रिक मूल्यों का बताया अपमान। खड़गे के बयान के बाद जेपी नड्डा ने कहा ऐसी घटना दुखद और बीजेपी इस तरह की गतिविधियों का समर्थन नहीं करती है। खड़गे के मंच के शुद्धिकरण वाले आरोप पर राहुल गांधी बोले ये बीजेपी और आरएसएस की मनुवादी सोच का नतीजा है। हल्द्वानी से शुद्धिकरण पर प्रियंका गांधी का वार, बोली बीजेपी संघ की यही विचारधारा है, यही मानसिकता है, पीएम मोदी से भी माफी की मांग की। खड़गे की सभा स्थल के शुद्धिकरण पर भड़के अखिलेश यादव, कहा बीजेपी और उनके संगी साथी को मंच नहीं अपने कलुषित मन का गंगा जल से शुद्धिकरण करना चाहिए। बिहार में नीट और री नीट यूजी 2026 परीक्षा में धांधली और फर्जीवाड़े के मामले में बड़ा एक्शन, ईओयू ने मुख्य सरगनाओं को गिरफ्तार किया।
बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने नालसा यूनिवर्सिटी के 2026 बैच के छात्रों का नामांकन रोकने का आदेश वापस लिया। सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत के खिलाफ अभियान चलाने का आरोप था। आदेश 3 घंटे बाद डीसीआई ने वापस लिया फैसला। कहा जब तक इस मामले की जांच रिपोर्ट नहीं मिल जाती तब तक छात्रों के खिलाफ कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित खान और खनिज संशोधन विधेयक 2026 पर कड़ी आपत्ति जताई। सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि झारखंड ऐसा बड़ा आंदोलन करेगा जिससे पूरा देश देखेगा। स्वतंत्रता दिवस से पहले दुल्हन की तरह सजाया गया लखनऊ शहर, तिरंगे के रंग में जगमगाती नजर आई इमारतें और सड़कें। स्वतंत्रता दिवस से पहले गुवाहाटी में असम विधानसभा भवन तिरंगे की रोशनी में जगमगाया। जनता भवन का ये खूबसूरत नजारा देशभक्ति के रंग में रंगा दिखाई दिया। कोलर की ऐतिहासिक इमारतों को भी तिरंगे की रोशनी से सजाया गया। रंग बिरंगी रोशनी में शहर की पुरानी इमारतें बेहद खूबसूरत दिखी। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में बढ़ाई गई है सुरक्षा व्यवस्था। पुलिस जगह जगह कर रही है वाहनों की चेकिंग। जम्मू कश्मीर के पुंछ में गाड़ियों की हो रही है कड़ी चेकिंग। स्वतंत्रता दिवस से पहले अलर्ट मोड पर सुरक्षा बल। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का पर मृतकों को दी श्रद्धांजलि। अखंड भारत के निर्माण का दिया संदेश। मायावती का हल्द्वानी मंच पर शुद्धिकरण पर हमला। जातिवादी तत्वों पर कार्रवाई की मांग। खड़गे के कार्यक्रम के बाद मंच के शुद्धिकरण को बताया निंदनीय। सख्त कानून के तहत कार्रवाई की मांग। मिशन 2027 बीएसपी का बदला अंदाज। बीजेपी का बी टीम वाली धारणा तोड़ने की रणनीति। मायावती आकाश आनंद पर बेरोजगारी, पेपर लीक और आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी पर हमलावर। ब्राह्मण घाट पर बीएसपी का दांव, लेकिन कद्दावर नेताओं से लगातार छोड़ने से बड़ी मुश्किल। अंटू मिश्रा के निष्कासन से झटका। यूपी चुनाव 2027 को लेकर बीजेपी का मंथन। योगी की मजबूत पकड़, विधायकों को लेकर मंथन। सरकार संगठन और विधायकों के बीच तालमेल पर फोकस। दिल्ली के आरकेपुरा में बीजेपी की विशाल तिरंगा यात्रा। विधायक अनिल शर्मा के नेतृत्व में उमड़ा जन सैलाब। जम्मू कश्मीर के गांधरबल में मानसबल झील में तिरंगा रैली। स्वतंत्रता दिवस से पहले शिकारा रैली में दिखा देशभक्ति का जज्बा। पलवल में खेल मंत्री गौरव गौतम के नेतृत्व में 5 किलोमीटर लंबी विशाल तिरंगा यात्रा। हर वर्ग और आयु के लोगों ने हिस्सा लिया। भोपाल के बड़े तालाब में अनोखी तिरंगा यात्रा। नाव का लहराया गया तिरंगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और खेल मंत्री विश्वास सारंग रहे मौजूद। बिहार के मुजफ्फरपुर में बीजेपी की तिरंगा यात्रा। सैकड़ों कार्यकर्ता हुए शामिल। जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत। यूपी के बांदा में आईजीआरएस रैंकिंग गिरने पर बड़ा एक्शन। एसडीएम समेत 11 अफसरों पर जुलाई का वेतन रोका गया। सहारनपुर में पुलिस और गौकशों के बीच मुठभेड़। फायरिंग के बाद एक शख्स घायल, 2 बदमाश गिरफ्तार। यूपी के शाहजहांपुर में मामूली विवाद में 2 पक्षों में झड़प। एक युवक की पीट पीट कर हत्या। वाराणसी में बुर्का पहन बाइक पर घूम रहा युवक निकला प्रैंक रील बनाने वाला वीडियो हो रहा है वायरल। जलौन में बक्से में छुपा मिला प्रेमी। पिटाई के बाद प्रेमी प्रेमिका का गांव में जुलूस। तालिबानी सजा का वीडियो वायरल। अयोध्या में सड़क हादसे के बाद भाग रही कार ने एक शख्स को मारी टक्कर। दर्दनाक हादसे में से मचा हड़कंप। गोरखपुर में पशु चिकित्सक ने अपार्टमेंट की 8वीं मंजिल से कूदकर दी जान। 1.5 करोड़ की ठगी से था परेशान। पुलिस की गिरफ्त में आरोपी महिला और उसका पिता। यूपी के अलीगढ़ में हार्डवेयर कारोबारी से लाखों की लूट का 48 घंटे में खुलासा। 5 आरोपी गिरफ्तार। नकद के साथ हथियार जब्त। बांदा में चोरी करने पहुंचे चोरों को नहीं मिला कीमती सामान। गुस्से में घर की 25 नल टोटियां उखाड़ ले गए चोर। रामपुर पंचायत घर बना अखाड़ा। संवाद दिवस में भिड़े ग्रामीण। जमकर मारपीट, तोड़ी कुर्सियां। वीडियो हो रहा है वायरल। गोरखपुर हत्याकांड में वायरल वीडियो से फिर गरमाया मामला। क्रिकेट विवाह से शुरू हुई रंजिश। पुलिस पर वीडियो हटाने का दबाव बनाने का आरोप। ग्रेटर नोएडा के फर्नीचर मार्केट में एक दुकान में आग। एक की मौत। तस्वीरें आई सामने। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में घर के बाहर खेल रही 4 मासूम बच्चों पर संघ के युवक ने किया अचानक जानलेवा हमला। हमले में एक बच्ची की मौत, 3 की हालत गंभीर। जयपुर में 12वीं की छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत। परिजनों ने लगाया स्कूल पर आरोप।

उल्टी दिशा में गिरकर एक घर और दुकान पर गिरी। हादसे में कोई हताहत नहीं। मेरठ 50 ज्यादा बाइक्स पर सैकड़ों युवाओं का उड़दंग, गलियों में मचा हड़कंप, 3 गिरफ्तार। कपूरथला से इमारतों को शर्मसार करने वाला वीडियो, गरीब महिला की चप्पलों से मारपीट का वीडियो वायरल होते ही FIR। मुजफ्फरपुर में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़, बदमाशों ने की पुलिस पर फायरिंग, बाइक लूटकर फरार, 5 जिंदा कारतूस बरामद। कटनी में बीजेपी विधायक की कंपनी से 1.5 करोड़ की साइबर ठगी, डायरेक्टर के नाम पर फर्जी मैसेज भेजकर उड़ाई गई रकम। पंचकुला में बड़ा हादसा, तीसरी मंजिल पर जनरेटर चढ़ाते समय क्रेन पलटी, 2 की मौत। महाराष्ट्र जालना में पुलिस और FDA के संयुक्त कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में प्रतिबंधित गुटखे को किया जब्त। चरखी दादरी फायरिंग कांड में पुलिस का बड़ा एक्शन, पुलिस साजिशकर्ता ने 5 दबोचे, अब तक 12 गिरफ्तार। महाराष्ट्र अमरावती में आश्रमशाला में भूत प्रेत के अफवाह और अजीब आवाजों के कारण दहशत, 600 ज्यादा छात्रों ने छोड़ा हॉस्टल। महाराष्ट्र कोल्हापुर में ई चालान और भारी जुर्माने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच धक्का मुक्की। वडोदरा में पैसों के लेन देन को लेकर 2 गुटकों में झड़प, बदमाश ने व्यापारी की गाड़ी को किया आग के हवाले, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। गुजरात बनासकांठा जिले में डीसा में बनेगा एशिया का पहला डेजर्ट थीम वाला ड्राइव थ्रू, नाइट सफारी और जूलॉजिकल पार्क। लगभग 103 हेक्टेयर सरकारी जमीन पर विकसित किया जा रहा है ये प्रोजेक्ट, 542 करोड़ है इसकी लागत। रायपुर में आत्मसमर्पण करने वाली नक्सली महिलाओं ने भव्य स्वदेशी फैशन शो में लिया हिस्सा, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के मौके पर आयोजित हुआ था कार्यक्रम। पेशेवर मॉडल्स के साथ रैंप वॉक करती नजर आई आत्मसमर्पण करने वाली नक्सली महिलाएं। RCTC ने लॉन्च किया बेहतरीन हवाई टूर पैकेज, सितंबर के महीने में महाकाल और ओंकारेश्वर सहित इन पर्यटक स्थलों का कर सकेंगे भ्रमण। बॉक्स ऑफिस पर 2 बड़ी फिल्में रिलीज, बटवारा 1947 में सनी देओल के एक्शन को, आवारा पंटू में अपने रोमांस से टक्कर दे रहे इमरान हाशमी। साउथ स्टार सूर्या अपने चांद फैलाने के लिए तैयार, फैमिली ड्रामा फिल्म विश्वनाथ एंड सन्स रिलीज, फिल्म में ममिता बैजू, रवीना टंडन, राधिका शरत कुमार जैसे स्टार्स। 19 जून को थिएटर्स में रिलीज होने के बाद आज से OTT पर कॉकटेल 2 रिलीज। संजय दत्त की आखिरी फिल्म सवाल OTT पर हुई स्ट्रीम, इस साल मई में सिनेमाघर में हुई थी लॉन्च। हॉरर थ्रिलर फिल्म अरूपी भी OTT पर रिलीज।

0: Oh no, बहुत बोर लग रहा है.
1: Take a date, not bites.
2: No added sugar, preservative के बिना. Dates, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया. Lion Dates Nut Bites.
1: Lion Date Nut Bites.
3: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने.
4: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ.
5: सोच बदलो और बैंक भी.

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
2: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
3: बिजली का बिल पेड तो है, मोबाइल रिचार्ज भी करा दिए।
4: कैसे?
3: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए तक का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो पे।
4: इत्ता माही वे।
5: पापा।
6: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
5: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
6: छक्का?
5: सब कैशलेस हो गया है।
6: हाँ ला भाई मेरा बैट।
5: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
6: चार्ज हुआ यार।
5: बैट किसका है?
7: टाटा AIG है तो भरोसा है।
8: नहीं, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
9: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
10: रुंगटा नहीं।

0: घर स्ट्रॉन्ग रहे, रुंगटा स्टील पीएम की बात एकदम सॉलिड।
1: जिस मिट्टी में फसल उगती है उसी में भारत की स्वतंत्रता की खुशबू है। इस स्वतंत्रता दिवस आइए उन किसानों का सम्मान करें जो हर दिन देश को मजबूत बनाते हैं। मेरे और क्रिस्टल परिवार की ओर से आपके और आपके परिवार को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: मैनकाइंड फार्मा, दिल से स्वदेशी, जान हिंदुस्तान।
1: In association with Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
2: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
3: विमल बोलो जुबां केसरी, हिंद बड़े आराम से।

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
2: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
3: जितनी गाड़ियां हैं ये पूरा रेला विधानसभा जा रहा छात्रों का।
4: जब तक वो सीबीआई जांच नहीं कराएंगे तब तक हम लोग इस पे डटे रहेंगे।
3: छात्रों को पीछे हटाने की कोशिश की जा रही है। वाटर कैनन खत्म हो गए, फायर टेंडर खत्म हो गए।
5: प्रोटेस्टर हैं, देखिए उनको कैसे चोट लगी है।
6: विधानसभा के करीब ये पहुंच चुका है।
7: पुलिस काफी देर तक रोक नहीं सकी छात्रों को। और छात्र देखिए विधानसभा के अंदर प्रवेश करते हुए
8: विधानसभा का लाइट ऑफ करके मारा है।
3: पूरे प्रदर्शन मार्च के बाद भी छात्रों ने ऐलान किया है वो अभी भी डटे हुए हैं। जयपाल सिंह स्टेडियम मेलो केंद्र के साथ मैं आशुतोष मिश्रा आज तक।
9: संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ और आज हंगामे और गतिरोध के बीच खत्म हो गया। पूरे सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच तकरार इस कदर हावी रही कि कई अहम मुद्दों पर सदन में चर्चा तक नहीं हो सकी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मानसून सत्र के हंगामे में खत्म होने के पीछे विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया। विपक्ष कहता है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।
10: अपोजिशन सरकार से जवाब मांगता है और सरकार जवाब देना ही होता है पार्लियामेंट के अंदर में। तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और ओपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
11: जी प्राइम मिनिस्टर कदम नहीं रख रहे, होम मिनिस्टर कदम नहीं रख रहे और मैं अंदर था, मैं सुन रहा था। सुनने के लिए तुम्हारे रूम में बैठ के सुनने के लिए आते हो, अरे या हाउस में बैठ के सुनो। उसके बाद ये सब ऐसे हैं कि दे वांट टू डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी एंड दे वांट टू मींस डिमोरलाइज पार्लियामेंट मेंबर्स एंड वो ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट हमारे सामने कुछ नहीं, सब कुछ हम हैं।
9: कांग्रेस का आरोप है कि पूरे मानसून सत्र के दौरान सरकार ने विपक्ष की बात नहीं सुनी। विपक्ष लगातार गृह मंत्री के बयान की मांग करता रहा। एफसीआरए बिल वापस लेने की मांग की गई, लेकिन जवाब देना तो दूर। विपक्ष कहता है कि गृह मंत्री अमित शाह सत्र के दौरान सदन तक में नहीं आए। वहीं सत्र के आखिरी दौर में सरकार ने विपक्ष को चर्चा का प्रस्ताव दिया था। अमित शाह ने कहा था कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है और वो विपक्ष के हर सवाल का जवाब देंगे, लेकिन राहुल गांधी ने इस प्रस्ताव को खारिज करते हुए कहा कि विपक्ष को लेक्चर नहीं सीधा जवाब चाहिए। अब देखिए मानसून सत्र में संसद का रिपोर्ट कार्ड क्या है। संसद का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ। आखिरी दिन लोकसभा की कार्यवाही सिर्फ एक मिनट चली जबकि राज्यसभा करीब एक घंटे। वहीं राज्यसभा में आखिरी दिन MMDR संशोधन बिल पास हुआ। हैरान करने वाली बात, लोकसभा में 114 घंटे में से 96 घंटे काम नहीं हुआ। मानसून सत्र में लोकसभा की 19 बैठक हुई। इस हिसाब से 19 बैठक में करीब 114 घंटे कार्यवाही होनी थी, लेकिन ये करीब 17 घंटे 30 मिनट ही चली, यानी करीब 96 घंटे 30 मिनट कम काम हुआ है। वही मानसून सत्र में राज्यसभा में 114 घंटे कार्यवाही होनी थी, लेकिन लगभग 37 घंटे 24 मिनट ही काम हुआ, यानी करीब 76 घंटे 36 मिनट कम कार्यवाही हुई। अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें तो 2026 के मानसून सत्र में कुल 12 नए बिल पेश किए गए। इनमें 10 लोकसभा और 2 राज्यसभा में पेश हुए। लोकसभा में आए बिल टैक्स, बैंकिंग, खनन, ट्रिब्यूनल, जन्म मृत्यु पंजीकरण, परीक्षा में नकल रोकने, केरल का नाम बदलने और सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या जैसे मुद्दों से जुड़े। माइंस एंड मिनरल्स संशोधन बिल के राज्यसभा से पास होने के बाद अब 12 में से 11 बिल दोनों सदनों से पास हो चुके हैं। संसद का पूरा मानसून सत्र पेपर लीक के खिलाफ छात्रों के आंदोलन के इर्द गिर्द रहा है, लेकिन इस सियासी शोर में जनता के कई जरूरी मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई जिससे जनता की कमाई के करोड़ों रुपए बह गए। इसीलिए हम कह रहे हैं न बहस न चर्चा, करोड़ों का खर्चा। आज तक ब्यूरो।
10: लोकसभा में जितना टाइम आवंटित किया गया है टोटल टाइम एलोकेशन के हिसाब से सिर्फ 19% हमने प्रोडक्टिविटी के दृष्टि से 19% सक्सेस प्राप्त किया है। राज्यसभा में 39%, राज्यसभा में ऑपोजिशन पार्टी हंगामा करके कभी कभी वॉकआउट भी करते थे, तो बाकी मेजोरिटी पार्टीज एनडीए के और कुछ ऑपोजिशन पार्टी के एमपीस ने डिबेट डिस्कशन में हिस्सा लिया। तो राज्यसभा का टोटल प्रोडक्टिविटी मॉनसून सेशन का 39%, लोकसभा का 19%। एक बिल सिर्फ चर्चा हो पाई लोकसभा में, जो प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट जो बना है, ये लोकसभा में भी डिस्कशन हुए थे और राज्यसभा में भी हुए हैं। इसके अलावा लोकसभा में कोई अच्छा चर्चा नहीं हुआ, बिल पास हुए हैं, 11 बिल्स पास किए हैं। इसलिए मैंने कहा टोटल 12 बिल्स पास किए हैं इन टोटल, और चर्चा के दृष्टि से हम खुश नहीं है क्योंकि ऑपोजिशन ने ठीक से चर्चा करने नहीं दिया, विशेष करके लोकसभा में

दर्दनाक सुरंग हादसे के बाद उत्तराखंड के चमोली में जिंदगी बचाने की जंग। हाइड्रो प्रोजेक्ट की टनल में फंसे 22 लोगों में से अब तक 7 की मौत, 14 बचाए गए। घटनास्थल पहुंचे सीएम धामी। कांग्रेस के मंच से पीएम और गृह मंत्री का मजाक उड़ाने पर राहुल गांधी के खिलाफ आग बबूला हुई बीजेपी, कहा यह संस्कारहीन, अभद्र और अश्लील भाषा। गिरिराज ने कहा मानसिक दिवालिया पर। महाराष्ट्र के नांदेड़ में शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर बादल पर हमले की जांच तेज, आरोपित के घर एटीएस की छापेमारी। फौरन एक्शन के लिए हर सिमरत ने गृहमंत्री को दिया धन्यवाद। जयपुर के स्कूल की कैंटीन से पेटीज खाने के बाद गई छात्र की जान, सीसीटीवी में बेहोश दिखा 12वीं क्लास का प्रिंस। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार, मां का आरोप वक्त पर इलाज होता तो बच जाता बेटा। 15 अगस्त से पहले दिल्ली और देश के कई हिस्सों में हाई अलर्ट, जबरदस्त सुरक्षा इंतजाम। तिरंगे की रोशनी में नहाए इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वांशु दीक्षित। मॉर्निंग प्राइम टाइम आज सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर है। आगे बढ़ने से पहले जैसा होता है हम आपको बता देते हैं कि आज खास क्या है। हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों राहुल गांधी के बयान पर सियासी तूफान उठा हुआ है, क्यों बीजेपी ने नेता विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, कैसे प्रहार किया जा रहा है। हम आपको बताएंगे चमोली के बारे में, जहां निर्माणाधीन सुरंग के धसने से 7 मजदूरों की मौत हो गई है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कहां तक पहुंचा डिटेल में बताएंगे। और बताएंगे कि हरियाणा में अंबाला में क्यों बरपा है हंगामा, क्यों हाईवे पर हुई है हिंसा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं, संसद का मानसून सत्र खत्म हो गया लेकिन सियासी संग्राम खत्म नहीं हुआ, और उसी सियासी संग्राम की बात करेंगे। दिल्ली के मावलंकर हॉल में राहुल गांधी के पीएम पर बयान पर सियासी तूफान उठ गया है। राहुल गांधी के निशाने पर प्रधानमंत्री की विदेश नीति रही, पीएम मोदी के विदेशी नेताओं से गले मिलने की तस्वीरों पर राहुल ने तंज कस दिया। और बात सिर्फ बयान तक नहीं रुकी है, मंच पर संदीप दीक्षित थे, संदीप दीक्षित को गले लगाकर राहुल ने प्रधानमंत्री पर कटाक्ष भी किया। ईरान युद्ध का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने दावा किया कि भारत के पास मध्यस्थता करने का मौका था लेकिन मोदी सरकार ने यह मौका गंवा दिया। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी हमलावर है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और प्रहलाद जोशी ने न सिर्फ राहुल गांधी की भाषा पर सवाल किया बल्कि उन्हें मानसिक तौर पर दिवालिया तक बता दिया। बीजेपी के सांसद बांसुरी स्वराज ने तो राहुल को संस्कारहीन, अभद्र और अश्लील तक कह डाला। राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हैं, तंज कसते हैं, संदीप दीक्षित उनके साथ में होते हैं और उसके बाद पलटवार होता है बीजेपी की तरफ से। आपको सुनवाते हैं कि कैसे यह घटनाक्रम हुआ, किसने क्या कहा और उसके बाद कैसे हंगामा हुआ।
1: इनकी इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया, अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस, बट पता नहीं कहां से घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी का मतलब नेताओं से गले लगना।
0: राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री शाह की रातों की नींद उड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि इस्तीफे तक हम उनको जगा कर रखेंगे।
1: अब कांग्रेस पार्टी ओपोजिशन सबका एक्सप्रेशन चालू है, अब नहीं रुकने वाला वो क्या। हाँ, थैंक यू, टाटा, गुड बाय। और मैं आपको बता रहा हूं, आप लिख लो, जिस दिन तक नरेंद्र मोदी अपना इस्तीफा नहीं देंगे, अमित शाह नहीं हटेगा, उस दिन तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं सो पाएंगे। उनको उनको हम जगा के रखेंगे, पूरी रात जगा के रखेंगे, जब तक वो कलैप्स करके कहें कि भैया ये हमारी बस की नहीं है, माफ करो, छोड़ दो हमें।
0: राहुल गांधी यहां पर रुके नहीं, राहुल गांधी और आगे बढ़े, संघ की विचारधारा पर भी उन्होंने हमला बोला।
1: नाउ आई कैन अंडरस्टैंड इफ you are fighting the British Empire and suddenly you say, you know, I'm feeling a bit scared. But you're fighting a bunch of jokers. How can you feel scared? You're literally fighting a bunch of jokers, clowns, right? Who have no idea about our philosophy, no idea about our history, right? They're a bunch of clowns. Now, I couldn't say this. I can naturally say this about my friends in the RSS. It's obvious to me. In fact, it's obvious to most people that these people have no understanding of India. Right? Why? Because somebody who cannot connect with India as it is today cannot understand India. To understand India, you can't understand India 3,000 years ago. You have to understand it today, right now. And to understand it today, to understand it today, the only way to understand it today is if you understand its expression.
0: तो राहुल गांधी जब मंच पर थे तो एक एक एक करके हर मुद्दे पर सरकार को घेरा, और फिर राहुल गांधी पहुंचे चीन बॉर्डर के मुद्दे पर और वहां पर भी सरकार को घेरा।
1: मैंने देखा, नहीं नहीं मैंने अपनी आंखों से देखा, गलवान के बाद प्रधानमंत्री आए, जूम कॉल थी, प्रधानमंत्री कहते हैं हिंदुस्तान की जमीन का एक इंच चाइना ने नहीं लिया। उसके बाद आर्मी कहती है कि भैया हिंदुस्तान की जमीन तो ले गए। आप सोचिए चाइना को मैसेज किया गया, चाइना के निगोशिएटर्स ने हमारे निगोशिएटर से कहा कि आप क्या बकवास कर रहे हो, आपके प्रधानमंत्री ने बोला हमारी आपकी जमीन नहीं गई। फैक्ट बोल रहा हूं आपको। आर्मी कह रही है कि भैया हमारी जमीन गई, चाइना का निगोशिएटर कह क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारा तो प्रधानमंत्री कह रहा नहीं गई है, जाके उनसे बात करो।
0: तो दो केंद्रीय मंत्रियों ने राहुल गांधी के बयान पर हल्ला भी बोल दिया और कहा कि राहुल गांधी जिस तरह से बात कर रहे हैं और जिनके बारे में बात कर रहे हैं ये सही नहीं है।
2: वो सभ्यता संपूर्ण उन्होंने भूल गया है क्योंकि वो सभ्यता ही नहीं है उनके पास। तो अपने आप को समझते हैं ही इज बॉर्न टू रूल, ये इनके मन में अहंकार है। जब ये पूरा नहीं हो रहा है हताश होके अत्यंत लो लैंग्वेज फिल दी लैंग्वेज उपयोग कर रहे हैं।
3: जो आदमी मानसिक दिवालियेपन में हो, राहुल गांधी उसी श्रेणी में आते हैं। उन्हें संसद के बदले आगरा जैसे संस्थान में रहना चाहिए और जिसका कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, नीचता की हद है।
0: तो राहुल गांधी की तरफ से जिस तरह से तंज कसा गया, कटाक्ष कसा गया, तो बीजेपी यहां पर रुकने वाली नहीं थी। बीजेपी की सांसद बांसुरी स्वराज भी आती है, मोर्चा खोल देती है और उनके हमले तो और भी धारदार रहे।
4: आज जिस प्रकार के संस्कारहीन, गरिमाहीन, अश्लील और अभद्र बयान राहुल गांधी ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर दिया है, उसे वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं, एक फेल्ड स्टैंड अप कॉमेडियन लग रहे थे। ही वॉज रिजोर्टिंग टू चीप इनोवेंडोज एंड ही वॉज इंडल्जिंग इन लॉकर रूम टॉक। इस देश को एक सकारात्मक विपक्ष की जरूरत है। लोकतंत्र में नेता प्रतिपक्ष की बहुत अहम भूमिका होती है एंड दिस कंट्री डिजर्व्स बेटर देन अ 56 ईयर ओल्ड मैन लाइक राहुल गांधी बिहेविंग इन अ जुवेनाइल मैनर।
5: राहुल गांधी के पूरे भाषण में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज झलकती है जिसको कहते हैं अंग्रेजी में फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन इस बात की कि वो रिजेक्टेड है, तो वो अब वाचिक हिंसा पे आ गए हैं। राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति जिस तरह से नाटक कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, कोई शीला जी के पुत्र के झप्पी पा रहे हैं, वो क्या बताना चाह रहे हैं? उसको उसके लिए एक चुनी हुई देश की महिला के लिए एक भारत देश के संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का स्टेटमेंट और वो महिला उनका ननेरे में है, ननिहाल की महिला के लिए ये उनकी भावना है।
0: हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, बात करते हैं उनसे। हिमांशु, संदीप दीक्षित राहुल गांधी जिस अंदाज में जिस तरह से सवाल खड़े कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, सरकार पर, अब उससे जो सियासी तूफान उठा है ये कितनी दूर तक जाएगा और थमने के आसार हैं क्या?
6: देखिए लगता नहीं है, जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्री और नेता राहुल गांधी पे हमलावर हुए हैं और उन्होंने जिस तरीके से विदेश नीति को लेकर स्टेटमेंट्स दिए हैं उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्री, चाहे वो प्रहलाद जोशी हो, गिरिराज सिंह हो, बांसुरी स्वराज जो नई दिल्ली से सांसद हैं, गौरव वल्लभ हो, ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने लगातार राहुल गांधी के ऊपर हमले किए और इनका ये कहना है कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाया है विदेश नीति को लेकर, जिसका वो प्रधानमंत्री जिनको लेकर विदेशों के अंदर ये चर्चा होती है कि कितने लोकप्रिय है और किस तरीके से जो है बड़ी से बड़ी जो क्राइसिस होती है उसे वो पार पाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बैठे बैठा एक जो है राहुल गांधी ने मौका दे दिया है कि उनके ऊपर जो है और उनकी पार्टी के ऊपर इस तरीके से जो है विदेश नीति के मामले पर जो उन्होंने बयान दिया है वो कहीं ना कहीं उनको नुकसान पहुंचेगा और भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को जल्दी ही से जो है भुनाना भी चाहेगी। और लगता है कि देश भर के अंदर कांग्रेस दफ्तर और जो कांग्रेस के नेता है उनके घर पे जो है प्रोटेस्ट भी देखने को मिल सकते हैं।
0: और वो दिख भी रहा है यहाँ पर कि अब बीजेपी यहाँ पर इतनी जल्दी शांत होने वाली नहीं है। लेकिन क्या कांग्रेस की तरफ से दोबारा से कोई बयान सामने आया, क्योंकि हर तरफ से वो बोलते हैं ना चौतरफा निंदा इस वक्त राहुल गांधी और संदीप दीक्षित की हो रही है कि मंच से जिस तरह का बयान दिया, इसके बाद कांग्रेस का कोई स्टैंड सामने आया?
6: देखिए कांग्रेस की तरफ से अभी कोई स्टैंड जो है ऑफिशियली सामने नहीं आया है और यही कारण है कि सबसे बड़ी बात राहुल गांधी अगर कोई भी बयान देते हैं अगर वो पॉलिटिकली और नरेटिव वाइज अगर देखा जाए ठीक नहीं भी है तो भी जो है पूरा कांग्रेस का जो सिस्टम है जो कांग्रेस पार्टी है वो उसको जस्टिफाई करती है कि क्यों उन्होंने कहा और किस तरीके से जिस तरीके से राहुल
0: गांधी जैसा आप भी कह रहे हैं वो समझ में आ रहा है कि यहां पर इतनी जल्दी सियासी तूफान थमेगा नहीं, अभी दूर तक जाता हुआ दिख रहा है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब एक और बड़ी खबर, मानसून सत्र छात्रों पर एक्शन पर विपक्ष के हंगामे से शुरू हुआ और आखिर में विपक्ष के हाथ एक और मुद्दा लग गया और ये मुद्दा क्या है? ये मुद्दा है कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की रैली स्थल के शुद्धिकरण का जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाया था। राज्यसभा में खड़गे ने खुद मुद्दा उठाया, इसकी निंदा केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और सभापति दोनों ने की और बीजेपी ने पल्ला झाड़ा तो कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी से माफी की मांग यहां पर कर दी। अब आप समझिए यहां पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री से माफी की मांग कर चुकी है। 8 अगस्त हल्द्वानी रामलीला मैदान पर मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे थे, मंच से सभा को संबोधित किया था, बहुत से लोग वहां पर मौजूद थे। मल्लिकार्जुन खड़गे तो कह रहे हैं कि लाखों लोग वहां पर मौजूद थे। उसके बाद 10 अगस्त को क्या होता है? हवन होता है, पूजन होता है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि यह शुद्धिकरण कर दिया गया। पूरा घटनाक्रम आपको बता रहे हैं, खड़गे की विजय शंखनाद रैली थी हल्द्वानी में, 10 अगस्त को रामलीला मैदान में शुद्धिकरण होता है, हालांकि कुछ लोग वहां पर हवन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि वो शुद्धिकरण हुआ। 12 अगस्त को कांग्रेस का धरना प्रदर्शन और उसके बाद मुद्दा उठता है राज्यसभा में।
7: सर बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं हल्द्वानी में पब्लिक स्पीच में रामलीला मैदान में रामलीला स्टेज में भाषण किया और लाखों लोग वहां पर थे। उस वक्त मैंने किसी समाज का किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए।
0: अब केंद्रीय मंत्री ने इस घटना को गलत बताया, उन्होंने कहा कि बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है और बीजेपी अगर ऐसा हुआ है तो उसकी जांच भी करवाएगी।
8: माननीय खड़गे जी ने कहा है, ये सच में बहुत ही दुखदाई विषय है और ये दुखदाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, ये दुखदाई हम सब के लिए है। बीजेपी, क्योंकि खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग थे, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और मैं भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं, बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नेवर। लेकिन आपने कहा है हम इसकी तहकीकात भी करेंगे, लेकिन जो भी बात हुई है उसकी तहकीकात जरूर होगी। लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, इस तरह की एक्टिविटी को भारतीय जनता पार्टी कभी भी सब्सक्राइब नहीं करती है। मैं भर्त्सना करता हूं और मैं भर्त्सना भी करता हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसको गहराई से देखेंगे भी, लेकिन आपकी भावनाओं को जो ठेस पहुंची है वो सच में हम सबके लिए खेद का विषय है।
0: और देखिए मुद्दा कोई भी हो लेकिन कांग्रेस की एक ही रणनीति है सीधे ऊपर तक घेराव करने की। तो कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी से इस पूरे मुद्दे पर माफी की मांग की।
9: आप उधर से। ये इनकी जो एकदम मतलब ये जो मानसिकता है उसका प्रदर्शन है कि बीजेपी की विचारधारा क्या है, आरएसएस की विचारधारा क्या है। इसका खंडन होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को इसका खंडन करना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए।
10: तो इस तरह के कृत्य करके वो समाज में अंदर विघटन डाल के किसी तरह से चाहते हैं राजनीतिक लाभ लेना, लेकिन हम इस मौके पे बीजेपी के लोगों से और उनके संगी साथी और नियत के लोगों से कहेंगे कि हम दलितों को, हम पिछड़ों को, आदिवासियों को, मुसलमानों को जितना आप अपमानित करोगे, जितना आप जलील करोगे, हमारा संघर्ष का संकल्प उतना ही और मजबूत होता जाएगा। घटने वाला नहीं है, ये बढ़ने वाला संकल्प है।
0: और आइए अब रुक कर लेते हैं अंबाला कैंट का, जहां ऐसा बवाल हुआ कि एक हाईवे जंग के मैदान में तब्दील हो गया। सिख संगत के प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में जमकर हिंसा झड़प हो गई। आंसू गैस के गोले दागे गए, लाठी चार्ज किया गया और इस दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, सर फट गया, खून हम खून हो गए। अब बवाल की शुरुआत हुई गुरसिमरन सिंह मन के खिलाफ एफआईआर की मांग को लेकर। प्रदर्शनकारियों की यह मांग थी कि पुलिस ने मांग भी ली, प्रदर्शनकारियों की जो मांग थी, लेकिन इसके बाद रखी गई एक नई मांग ने पूरा मामला बिगाड़ दिया। प्रदर्शनकारी 7 अगस्त के मामले में गिरफ्तार किए गए सिख युवकों की तत्काल रिहाई पर अड़ गए कि तुरंत रिहा करो, और इसी मांग को लेकर तनाव बढ़ता गया। तनाव इतना बड़ा कि एक तरफ भीड़ थी, एक तरफ पुलिस थी, आमने सामने आ गए और फिर हुआ जमकर हंगामा। 7 अगस्त को अंबाला के गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब के बाहर गुरसिमरन सिंह मन पर हमला हुआ था और उनकी कार में तोड़फोड़ की गई थी। अब इस मामले में कई सिख युवकों की गिरफ्तारी हुई थी। गुरुवार को मन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ, एफआईआर दर्ज भी हुई, लेकिन फिर उसके बाद हुआ कि सिख युवकों को तुरंत छोड़ दिया जाए।
11: उनसे बातचीत करते रहे, उनकी जो डिमांड थी वो हमने पूरी करी, लेकिन एंड में आके जब इतना जाम लग गया, लोगों को हैरेसमेंट हो गई, तो फिर उसमें से अचानक से किसी ने पथराव शुरू किया और उसके एवज में हरियाणा पुलिस को कुछ लाठी चार्ज करते हुए वो क्लियर कराना पड़ा। उसमें हमारे काफी जवानों के चोट लगी है, डीएसपी के अंगूठे पे कट गया है।
0: हमारे सहयोगी हमारे साथ में इस वक्त मौजूद है। असीम, क्या मामला पूरी तरह से शांत हुआ, अब क्या अपडेट है आपके पास?
12: जी हाँ, कल रात को काफी बवाल हुआ था क्योंकि जो अमृतसर दिल्ली हाईवे है अंबाला में जाम कर दिया गया था और जो सिख प्रोटेस्टर्स थे, जो सिख ऑर्गेनाइजेशन के प्रोटेस्टर्स थे, वो मांग कर रहे थे कि गुरसिमरन सिंह मांड के खिलाफ एफआईआर दी जाए, लेकिन एफआईआर तो दे दी हरियाणा पुलिस ने, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि जिन लोगों को पकड़ा गया था पुलिस के द्वारा 7 तारीख के घटनाक्रम में, जिन्होंने मांड के ऊपर अटैक किया था या उसको मारा था, उनको छोड़ा जाए, लेकिन उसके बाद जो है एक डेडलॉक सिचुएशन हुई, हाईवे जाम कर दिया गया, तो पुलिस ने हाईवे खाली कराने की कोशिश की। उसके बीच में वायलेंस हुई जिसमें कुछ लोग इंजर्ड भी हुए और 6 से 7 लोग जो पुलिसकर्मी थे वो भी इंजर्ड हुए, लेकिन फॉर्चुनेटली उसके बाद जो चीजें हैं वो पीसफुल हैं। हम इस वक्त अंबाला से थोड़े पीछे हैं, लेकिन ये वही हाईवे है अमृतसर दिल्ली हाईवे, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक जो है बिल्कुल एकदम स्मूथली चल रहा है। कल इसको बंद कर दिया गया था, इसी हाईवे के ऊपर जो है वायलेंस हुई थी।
0: तो पुलिस की लगातार कोशिश यही है कि जल्द से जल्द शांति स्थापित यहां पर की जाए, जिसमें काफी वो सफल भी हुई। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड के चमोली में हुए सुरंग हादसे में 7 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। जानकारी जो अभी तक आई है उसके मुताबिक पीपल कोटी स्थित THDC की निर्माणाधीन टनल में अचानक मलबा और पानी भरने से वहां काम कर रहे 22 मजदूर फंस गए। खबर मिलते ही उनका रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। उत्तराखंड पुलिस, SDRF, NDRF, ITBP के जवान मौजूद थे, राहत कार्य में जुट गए और बहुत मेहनत के बाद सुरंग से 21 लोगों को निकाल लिया गया, जिनमें से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। CM धामी भी मौके पर पहुंचे, राहत बचाव काम का जायजा वो लेते दिखे।
13: जो यहाँ पर घटना हुई है उसके कारण से जो कुल 22 लोग, ऐसा अनुमान यहाँ पर बताया गया कि 22 लोग कुल काम कर रहे थे, उसमें से 3 लोगों को छोड़ के बाकी सभी लोग रेस्क्यू हो गए हैं और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको यहाँ एडमिट किया है अस्पताल में, और कुछ लोगों के लिए बेस में भी बात की गई है कि बेस में अगर जिनको भेजना है बेस में भेजा जाएगा, और एम्स ऋषिकेश में भी सारी व्यवस्थाएं वहां की गई हैं। यहां पर बचाव के लिए और खोजबीन के लिए सभी प्रकार की एजेंसियां यहां पर हैं, NDRF भी है, SDRF भी है, आईटीबीपी के लोग भी हैं, उत्तराखंड के जो हमारा आपदा प्रबंधन डिपार्टमेंट है वो सारा का सारा यहाँ पर काम कर रहा है, अन्य एजेंसियां, जिला प्रशासन लगातार काम कर रहा है।
0: और जहां पर ये हादसा हुआ सीधे आपको वहां पर ले चलते हैं, कमल नयन हमारे सहयोगी मौके से जुड़े हुए हैं। कमल, रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ा क्या अपडेट है? बताया जा रहा है एक शख्स अभी भी लापता है।
14: जी, अभी भी तीन लोग जो है वो अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री यहाँ पे पहुंचे उन्होंने टनल का पूरा मुआयना किया। जब वो बाहर आए उन्होंने जब हमने सवाल पूछा तो उन्होंने बताया कि अभी भी तीन लोग मिसिंग चल रहे हैं, जिनका राहत और बचाव इस समय चल रहा है। टनल के अंदर सबसे बड़ी मुश्किल जो है वो पानी भर रहा है, मलबा भर रहा है, उसे हटाने में हो रही है। हालांकि जो ड्रम है उनके द्वारा यहाँ पे बोट बनाई गई है, जो एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, आईटीबीपी है, तमाम फोर्स यहाँ पे लगी है, राहत बचाव चल रहा है। लेकिन अब जो नई जानकारी है, 19 लोगों को अभी तक रेस्क्यू किया गया है, जिनमें से 7 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 3 लोग अभी भी।
0: और बिल्कुल सब रेस्क्यू टीम की कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जो लोग फंसे हुए उनको भी निकाला जा सके। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए कमल। यहाँ पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
16: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
17: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा,
16: छक्का
17: सब कैशलेस हो गया है।
16: हाँ ला भाई मेरा बैट,
17: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
16: चार्ज हुआ यार,
18: बैट किसका है?
19: टाटा AIG है तो भरोसा है।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आगे आगे
3: अरे उधर
2: उधर किधर
3: करेक्ट करेक्ट
4: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: कुछ भी खा नहीं पा रहा हूँ, बहुत अपसेट हूँ।
6: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
7: लायन डेट नट बाइट्स।
8: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
9: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
10: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
11: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
12: AU सोच बदलो और बैंक भी।
13: जिस मिट्टी में फसल उगती है उसी में भारत की स्वतंत्रता की खुशबू है। इस स्वतंत्रता दिवस आइए उन किसानों का सम्मान करें जो हर दिन देश को मजबूत बनाते हैं। मेरे और क्रिस्टल परिवार की ओर से आपके और आपके परिवार को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
14: बिजली का बिल पेड
15: तो है, मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
16: कैसे?
15: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो
16: इतना माही वे।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
2: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। एयू,
3: सोच बदलो और बैंक भी।
4: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
5: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
4: छक्का?
5: सब कैशलेस हो गया
4: है। ला भाई मेरा बैट।
5: वो अभी तो ठीक हुआ, तो
6: चार्ज हुआ यार।
7: बैट किसका है?
8: टाटा AIG है तो भरोसा है।
9: बिजली का बिल पेड
10: तो है, मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
11: कैसे?
10: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो
11: इतना माही वे।

0: in association with
1: Sera Sanitaryware. It's your moment of Sera. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
2: जहां खबर वहां न्यूज तक, ग्राउंड रिपोर्ट से लेकर एक्सक्लूसिव कवरेज तक, खबरों का सच तथ्यों के साथ, जनता के सवालों से लेकर सत्ता के जवाबों तक, देश दुनिया की हर बड़ी खबर सिर्फ न्यूज तक पर.
3: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर. ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक.
4: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने बैठे बच्चे, इसी बीच सीएनआई गर्ल्स स्कूल में पढ़ने वाली सायरा खड़ी होती है, कहती है
5: आधा से ज्यादा टाइम मेरा स्पोर्ट्स में जाता है. मैं अभी जम्मू गई थी टाइकोंडो का नेशनल खेलने, सर वहाँ पे मेरा गोल्ड मेडल आया था, वहाँ से मेरा इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ था सर. लेकिन वहाँ पे पैसे मांग रहे थे, इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ था, वहाँ पे पैसे मांग रहे थे मुझे 1.5 लाख रुपए, तो जिसकी वजह से मैं इंटरनेशनल खेलने नहीं जा सकी.
4: इतना सुनते ही वहाँ सब सन्न रह जाते हैं, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस. तब मुख्यमंत्री बोलते हैं,
6: चलो चलो बेटा अभी है, बैठ जाओ बैठ जाओ, कोई बात. कौन सी स्कूल की है?
7: सीएमआई
6: की. अच्छा ठीक है, नोट कर ले नाम, है ना, एक बार देख.
4: ये वीडियो सामने आने के बाद कुछ देर बाद एक दूसरा वीडियो आता है, जिसमें छात्रा सायरा बताती हैं कि वो 1.5 लाख रुपए की कमी की वजह से इंटरनेशनल स्तर पर खेलने रोमानिया नहीं जा सकी. ये बात बताते हुए वो मुख्यमंत्री के सामने भावुक हो गई थी. पूरी बात बताने का दावा नए वीडियो में किया गया.
8: मैं 10 तारीख को सीएम सर के प्रोग्राम में गई थी, जहाँ पे अपने में पूरी बात रख नहीं पाई, इसलिए अब रख रही हूँ. मेरा सिलेक्शन जम्मू में, मैं नेशनल खेलने जम्मू में गई थी, जहाँ पे मेरा इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हो गया था रोमानिया में क्वानकिडो का, जहाँ से मुझे फेडरेशन 1,70,000 रुपए दे रही थी. बाकी का खर्चा मुझे करना था, और बाकी मैंने स्कूल में किसी को बताया नहीं या किसी को भी बताया नहीं, जिसके कारण मैं नहीं जा सकती.
4: अब दो बयानों को लेकर तीन तरह की चर्चा चलती है. पहली चर्चा, क्या बाद में छात्रा से बयान में गोलमटोल बात कराई गई, क्या इसके पीछे प्रशासन का दबाव? दूसरी चर्चा, क्या सरकारी स्तर पर खेल विभाग, महिला बाल विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग ये खुद नहीं देखते कि ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों को कैसे स्पॉन्सर किया जा सके? और तीसरी चर्चा इस बात की है कि कम से कम छात्र छात्राएं मुख्यमंत्री तक के सामने अपनी बात कहकर सच्चाई सामने लाने लगे हैं. अंकित शर्मा, देहरादून आज तक.

0: और आइए बुलेटिन में बात करते हैं जेन जी वोटर्स की, जिन पर अचानक से सभी का फोकस बढ़ गया है। अचानक से ऐसा लगता है कि जेन जी देश के पॉलिटिकल डिस्कोर्स में आ चुके हैं, और ये सब हुआ है दिल्ली के जंतर मंतर और रांची के जेन जी प्रोटेस्ट से। अब इस देश की राजनीतिक पार्टियों को अचानक से युवा वोटर्स की याद आने लगी है। लेकिन सवाल तो यहां पर बनता है ना कि युवाओं का वोट तो हर पार्टी को चाहिए, लेकिन उनकी भागीदारी कितनी है, और क्या जेन जी वोटर्स सरकारों को गिराने और बनाने का दमखम भी रखते हैं या नहीं, इसका पहला टेस्ट उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है।
1: जेन जी के इस फोर्स की राजनीतिक ताकत पूरे देश ने देखी और सरकारों ने महसूस की। दिल्ली से लेकर झारखंड तक युवाओं की ताकत का अनुमान इस देश के हुक्मरानों को हो चुका है, इसीलिए अब राजनीतिक पार्टियों के एजेंडे पर यही जेन जी है। और जेन जी की ताकत का पहला इम्तिहान होने वाला है उत्तर प्रदेश में, जहां सबसे पहले चुनाव होंगे। वैसे तो राजनीतिक दलों के एजेंडे पर हमेशा से ही युवा रहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की राजनीतिक पार्टियों में युवाओं की भूमिका एक वोटर से ज्यादा कुछ नहीं रहती। लेकिन अब ऐसा लगता है कि मौजूदा आंदोलन के बाद इन पार्टियों में जेन जी को बड़ी जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं, इसीलिए सारी पार्टियों का फोकस इस वक्त इसी युवा वोटर पर है।
2: उत्तर प्रदेश की सभी राजनीतिक पार्टियों को यह समझ में आ गया है कि आखिर जेन जी की ताकत क्या है। खासकर दिल्ली के जंतर मंतर में हुए प्रोटेस्ट के बाद ये बात साफ हो गई है कि जेन जी को खुश रखना जरूरी है। जिस पार्टी के नेता ये कहते थे कि कितना भी बड़ी बात हो जाए हम अपने मंत्री का इस्तीफा नहीं कराते हैं, उसी पार्टी के नेताओं को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कराना पड़ा है। अगला चुनाव उत्तर प्रदेश का है, इसलिए सभी राजनीतिक दल जानते हैं कि जेन जी एक बेहद अहम वोट है और इसीलिए उसको महत्व देना भी जरूरी है। नतीजा जेन जी चौपाल, जेन जी तिरंगा यात्रा और जेन जी के बीच जाकर बातें करना, परेशानियां समझना।
1: उत्तर प्रदेश में हर पार्टी जेन जी पर जोर लगा रही है। बीजेपी ने मंत्रियों की जेन जी चौपाल लगाई है। समाजवादी पार्टी चुनावों के लिए युवाओं का सर्वे करवा रही है। बीएसपी ने ऐलान किया है कि वो युवाओं को प्रत्याशी बनाएंगे। कांग्रेस के राहुल गांधी तो लगातार छात्रों के मुद्दों को उठा ही रहे हैं, और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि यूपी में जेन जी एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल फोर्स है। जेन जी का मतलब हुआ 1997 से 2012 के बीच पैदा हुई जनरेशन। इस हिसाब से 14 से 29 साल के लोग जेन जी हुए, लेकिन भारत में मतदान की उम्र 18 साल है, तो उत्तर प्रदेश में 18 से 29 साल के युवा वोटर्स की संख्या करीब 21.19% है, जो बनते हैं करीब 3,27,00,000। अब अगर इतनी बड़ी संख्या में जेन जी वोटर होंगे तो राजनीतिक दल तो जोर लगाएंगे ही। मतलब कि अगर जेन जी किसी एक पार्टी को तय कर ले तो उसका चुनाव जीतना तय है, और इसी फोर्स को उत्तर प्रदेश की पार्टियां अच्छे से समझ रही हैं। इसीलिए आज बीएसपी ने भी युवाओं के लिए बड़े बड़े ऐलान किए हैं। बीएसपी का कहना है कि आने वाले चुनावों में वो प्रत्याशियों के चयन में युवाओं को प्राथमिकता देगी। जालौन की माधोगढ़ सीट से बसपा ने आशीष पांडे को अपना पहला प्रत्याशी घोषित किया है, जो पार्टी के युवा चेहरों में शामिल है। बीएसपी की रणनीति, संगठन, सोशल मीडिया और चुनावी मैदान, तीनों स्तरों पर युवा नेतृत्व को आगे लाने की है। पार्टी को उम्मीद है कि जेन जी और युवा मतदाताओं के बीच सक्रियता बढ़ाकर वो 2027 के विधानसभा चुनाव में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत कर सकती है। मायावती ने अपने भतीजे और राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद को जेन जी की नब्ज टटोलने की जिम्मेदारी दी है। हालांकि आकाश खुद जेन जी नहीं है, 32 साल के हैं, युवा हैं। युवाओं की तासीर और उनके मुद्दों को कितना समझते हैं ये पता नहीं, लेकिन बीएसपी को सोशल मीडिया पर सक्रिय रखने की जिम्मेदारी भी आकाश आनंद की टीम संभाल रही है। हाथरस के सादाबाद में आकाश ने अपनी चुनावी तैयारियां भी दिखा दी और यहां से युवाओं को संदेश भी दिया।
3: हमारे समाज के बच्चे अगर पढ़ गए तो अपने अधिकारों के लिए लड़ना खड़े हो जाएंगे, लड़ेंगे अपने अधिकारों के लिए। तो जैसे आपने देखा था अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में, हमारी जनरेशन के बच्चे अपने अधिकारों के लिए लड़े, वैसे ही हमारे समाज के बच्चे प्रदेश के कोने कोने में चौराहे चौराहे पर इनसे सवाल करेंगे, आरक्षण के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए और लॉ एंड ऑर्डर के लिए, रोजगार के लिए, तब इनके लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। साथियों, जो सरकार स्कूल बंद कर दे, जो सरकार आपके स्कूलों में पढ़ने वाले टीचरों की भर्ती ना करे, क्या वो सरकार लायक है आपके प्रदेश में सत्ता में रहने के लिए?
2: ये भी उठता है कि आखिर एकदम से उत्तर प्रदेश की राजनीतिक पार्टियों को जेंजी की याद क्यों आई? क्या अगर दिल्ली में या रांची में ये प्रदर्शन ना हुए होते तो राजनीतिक दल यूपी के जेंजीज को इतना महत्व दे रहे होते? क्या यही मंत्री जगह जगह जाकर चौपाले कर रहे होते, या फिर यूपी सरकार नई युवा नीति की बात भी कर रही होती है, ऐसा कोई ऑर्डर भी आने वाला होता? बड़ी बात तो ये है, यूपी में जेंजी एक बड़ा वोटर है जो चुनाव के नतीजों में बदलाव भी कर सकता है, लेकिन कभी भी विधानसभा चुनावों में उनके हक के मुताबिक उन्हें टिकट नहीं मिले। अब दिलचस्प होगा देखना इस यूपी चुनाव में क्या सियासी गणित बदलती है और जेंजी को उनका हक मिलता है।
1: आंकड़े तो यही बता रहे हैं कि राजनीतिक दलों को युवाओं के वोट तो चाहिए, लेकिन उन्हें हिस्सेदारी नहीं देनी है। कुल 543 लोकसभा सांसदों में से सिर्फ 6 सांसद ही जेंजी हैं। पूरे देश में कुल 4131 विधायक हैं और पूरे देश भर में सिर्फ 20 जेंजी विधायक हैं। हालांकि ये भी एक फैक्ट है कि 2022 के बाद ही जेंजी चुनाव लड़ने की उम्र में आए, लेकिन 2022 से भी इस देश में बहुत से चुनाव हुए हैं। सबसे ज्यादा जेंजी विधायक तमिलनाडु में है, 4, इनमें से 3 टीवीके के हैं और 1 एडीएमके के। पश्चिम बंगाल में 3 जेंजी विधायक हैं, 3 बीजेपी के हैं। इसके अलावा बिहार, मेघालय और तेलंगाना में 2 जेंजी विधायक हैं। इन सभी राज्यों में 2023 से 2026 के बीच चुनाव हुआ। ये आंकड़े बता रहे हैं कि राजनीतिक दलों ने युवाओं को वोटर तो समझा, लेकिन उन्हें भागीदारी नहीं दी। हालांकि यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि भारत में सांसद या विधायक बनने के लिए आपको 25 साल का होना जरूरी है। इस हिसाब से जेंजी सिर्फ 4 साल पहले ही चुनाव लड़ने के लायक बने हैं, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि आने वाले चुनावों में तमाम पार्टियां अपने टिकटों में जेंजी उम्मीदवारों की संख्या बढ़ाकर रखेंगी। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।
0: यूपी चुनावों में जेंजी के साथ साथ राजनीतिक पार्टियों का भी बड़ा टेस्ट होने जा रहा है और इनकी यह परीक्षा अभी से शुरू हो चुकी है। इसीलिए युवाओं को अपने पाले में करने के लिए पार्टियां तरह तरह के हथकंडे अपना रही हैं। अब यहां पर तो देखना बहुत दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश में जेंजी साथ किसका देता है।
4: यूपी के अंदर बहुत शीघ्र युवा नीति लेकर के आ रहे हैं,
1: तो यूपी चुनावों के लिए फोकस पूरी तरह से युवा मतदाताओं पर केंद्रित हो चुका है। निर्देश सीधे ऊपर से, ये कल की ही तस्वीरें। यूपी सरकार के तमाम बड़े मंत्री ऐसे ही स्कूल कॉलेजों में पहुंचकर सीधा युवाओं से संवाद कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार सीधे युवाओं के मन की बात टटोल रही है, इसीलिए मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में जेंजी चौपाले लगा रहे हैं। इस अभियान के तहत विधानसभा बार 10-10 युवाओं की टीम तैयार की जाएगी। टीम के सदस्य स्कूल कॉलेजों के युवाओं से बातचीत कर उनकी समस्याओं, अपेक्षाओं और सरकार को लेकर उनकी राय जानेंगे। टीम उन्हें सरकार की ओर से युवाओं के लिए शुरू की गई योजनाओं, रोजगार कार्यक्रम की जानकारी देगी। विधानसभा स्तर पर गठित होने वाले कार्यक्रमों और संवाद की जिम्मेदारी दी जाएगी। ये अभियान शुरू भी हो चुका है। कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे ने रायबरेली में बड़े स्तर पर युवाओं से संपर्क साधा, उनसे बातचीत की, उनकी समस्याएं सुनी।
5: आपके क्षेत्र में कार्यक्रम था तिरंगा यात्रा से लेकर युवा संवाद?
6: जी, आप देख रहे हैं जिस तरीके से आज युवा संवाद कार्यक्रम यहाँ रखा गया, कई हजार यूथ आज इस युवा संवाद में शामिल हुए और ये उनसे सीधे संवाद हुआ। उन्होंने अपनी

0: तो बहुत सारी चीजें रह जाती हैं। इनसे लगातार हम सबका संवाद रहेगा और इनकी बहुत महत्वपूर्ण चीजें भी हम सबको जानकारी में आई है, जिसको हम लोग आगे धीरे धीरे करके उसे भी ठीक करने का भी काम करेंगे।
1: बीजेपी का टारगेट यही लगता है कि 2027 के चुनावों में युवाओं के तमाम वोट्स पर कब्जा, इसीलिए सीधे मुख्यमंत्री भी सक्रिय है, लगातार युवाओं से बात कर रहे हैं।
2: हमारा युवा प्रतिभाशाली है, हमारा युवा ऊर्जा का प्रतीक है, हमारा युवा देश की हर चुनौती का सामना करने की सामर्थ्य रखता है और उस सामर्थ्य के प्रतीक इस युवा ऊर्जा को आगे बढ़ने के लिए एक उचित प्लेटफॉर्म प्राप्त हो, वो अपने परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ देश और समाज की उन चुनौतियों का भी सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर सके।
1: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युवाओं से हवा हवाई बातें नहीं कर रहे, बल्कि उनके लिए पूरी युवा नीति तैयार की जा रही है, लंबी चौड़ी रणनीति है। सरकारी कोचिंग में आईएएस और पीसीएस की तैयारी करने वालों की कलेक्टर और कप्तान की क्लास होगी। नीट की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए मुफ्त में डॉक्टरों की क्लास होगी। आईआईटी की तैयारी करने वालों को आईआईटीएन अफसर पढ़ाएंगे। बैंक पीओ की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए सरकारी बैंक के मैनेजर मार्गदर्शन करेंगे।
3: यूपी के अंदर बहुत शीघ्र युवा नीति लेकर के आ रहे हैं। हर जिले के अंदर, हर महाविद्यालय के अंदर, हर विश्वविद्यालय के अंदर युवा के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था। आपको प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी हो, आपको आपके महाविद्यालय विश्वविद्यालय में हम वर्चुअल भी और फिजिकल भी वहां क्लास की व्यवस्था रहेगी। और पढ़ाने वाले कौन होंगे? पढ़ाने वाला होगा वहां का डीएम भी एक घंटा देगा, एसपी एक घंटा देगा, क्योंकि उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया।
1: बीजेपी के अलावा समाजवादी पार्टी की भी युवाओं को लेकर अपनी तैयारी है। समाजवादी पार्टी ने भी चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। सबसे पहला काम सर्वे से शुरू हो रहा है, यहाँ भी जिताऊ प्रत्याशी खोजे जा रहे हैं।
4: यूपी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने बूथ स्तर से लेकर विधानसभा सीट्स तक अपनी तैयारी शुरू कर दी और इसी के चलते कुल मिलाकर पार्टी 3 सर्वे करा रही है। सूत्रों के मुताबिक 2 सर्वे एक प्राइवेट एजेंसीज के द्वारा किए जा रहे हैं तो तीसरा सर्वे संगठन के द्वारा किया जा रहा है। आकलन ये करना है हर बूथ पर, हर विधानसभा पर कौन उम्मीदवार है जो जिताऊ हो सकता है, कौन उम्मीदवार है जो जातीय समीकरणों को साध सकता है। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी को लगता है कि सर्वे के जरिए हर बूथ के, हर विधानसभा के एक फ्रेश जातीय आंकड़े सामने आ सकते हैं। यूं तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से या डेटा के जरिए जातीय आंकड़े मिल जाते हैं, लेकिन सपा को ऐसा लगता है कि अपने स्तर पर भी जातीय आंकड़े निकालने चाहिए, क्योंकि कई ऐसे विधानसभा सीट्स हैं जहां पर सपा को कुछ चौंकाने वाले जातीय आंकड़े मिले हैं, जो पेपर्स पर कुछ और थे लेकिन जमीन पर सर्वे में कुछ और सामने आए हैं। और इसी के चलते 2 एजेंसीज और संगठनात्मक तौर पर समाजवादी पार्टी के यूथ विंग्स मिलकर ये सर्वे कर रहे हैं। सर्वे अलग है लेकिन एक तरीके से माहौल एक है कि विधानसभा में जिताऊ कैंडिडेट हो जिससे सही उम्मीदवार चुना जा सके।
5: और गांजा पीकर एयर इंडिया का प्लेन चलाने के आरोपों के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है, वो आपको बता दें। एयरबस ने शुरुआती जांच में फ्लाइट में तकनीकी खराबी की बात मानी है। एयरबस के मुताबिक करीब 4 सेकंड के लिए फ्लाइट से पायलट ने कंट्रोल खो दिया था। जांच के दौरान फ्लाइट नंबर AI2379 का EFDR डाटा डीकोड किया गया है। एयरबस ने इस मामले में एयर इंडिया से गहन जांच कराने को कहा है। अमित भारद्वाज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, शुरुआती क्या जानकारी अभी तक आ पाई है, जांच आगे बढ़ी है?
6: देखिए हिमांशु, हम लोग पहले दिन से ही कह रहे थे कि किसी भी कंक्लूजन पे हमको जंप नहीं करना चाहिए। भले ही मारुआना का टेस्ट पॉजिटिव आया है, बहुत चिंताजनक बात थी, लेकिन टेक्निकल ग्लिचेस की भी बात इस एयरक्राफ्ट के अंदर आ रही थी। और एयरबस नियो के अंदर 3-3 हाइड्रोलिक फेलियर का अलर्ट आना, ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मोमेंट होता है। आमतौर पर जो एक्सपर्ट सालों से इस एयरक्राफ्ट को चला रहे हैं वो यही बात मुझे कह रहे थे कि देखिए अगर 2 अलर्ट भी आता है तो हम लोग नियरेस्ट एयरपोर्ट पर जाकर क्राफ्ट को लैंड करा देते हैं। 3-3 अलर्ट का आना और वो भी इतने कम समय के अंदर।

0: 11 टेक्निकल ग्लिचेस के अलर्ट आए थे और 2 से 3 सेकंड के अंदर ही ये हाइड्रोलिक अलर्ट्स आने शुरू हो गए थे। तो ये बहुत ही गंभीर और चिंताजनक विषय था। इसकी वजह से कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए कम से कम हम लोग तो यही कह रहे थे कि कंक्लूजन पे हमको नहीं पहुंचना चाहिए, और पायलट फ्लाइंग कौन था ये सवाल भी बना हुआ था। अब आते हैं एयरबस इंजीनियरिंग ने जो कम्युनिकेशन की है एयर इंडिया से, उस पर क्या निकल के आ रहा है। ये दस्तावेज हमारे पास है, आज तक के पास वो दस्तावेज है जिसमें एयरबस ने ये कंफर्म किया है एयर इंडिया को कि टेक्निकल इश्यूज उस दिन उस एयरक्राफ्ट में आया था। एयरबस 320 नियो एयरक्राफ्ट के अंदर टेक्निकल इश्यूज आए थे, ये बात एक्सेप्ट किया है। ये 300 फीट डिप एल्टीट्यूड में जो आया उसको लेकर कम्युनिकेशन है, और क्योंकि इस तरह की घटना जब होती है तो जो स्टेट ऑफ डिजाइनर होता है वो मैन्युफैक्चरर जो होता है एयरक्राफ्ट का, उसके लिए बहुत चिंता का विषय होता है कि तुरंत आप एयरक्राफ्ट जांच करें ताकि अगर आपको इंटरनेशनली इसके लिए कोई गाइडलाइन इश्यू करना है तो वो भी करते हैं आप। और अब इसमें निकल के क्या आ रहा है कि 4 सेकंड के लिए फ्लाइट का कंट्रोल लूज हो गया था। मतलब अब फ्लाइट कंट्रोल्स जो आमतौर पर ऑटो पायलट या जो पायलट होता है उसके हाथ पे होता है वो खत्म हो गया था, जिसकी वजह से इस तरह का इंपैक्ट शुरू हुआ। और दूसरी सबसे अहम बात हिमांशु, जो हमारे दर्शकों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, जो फुल नोज डाउन इंपैक्ट है वो शुरू हो गया था। यानी कि जहाज अगर स्थिर स्थिति में चल रहा है तो अचानक से उसका नीचे
1: ठीक है, ये कह सकते हैं कि एक नया ट्विस्ट यहाँ पर जरूर आया है। तकनीकी खराबी भी सामने आई है लेकिन अभी जांच और लंबी यहाँ पर चल सकती है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और यहाँ रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं हल्द्वानी में पब्लिक स्पीच में रामलीला मैदान में रामलीला स्टेज में भाषण किया और लाखों लोग वहां पर थे। उस वक्त मैंने किसी समाज का किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किया।
1: बीजेपी, क्योंकि खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग थे, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और मैं भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं। बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नेवर। लेकिन आपने कहा है हम इसकी तहकीकात भी करेंगे,

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं और बेहतर मौके की उम्मीद लगाए बैठे प्रोफेशनल्स के लिए राहत की खबर आई है। लंबे समय से सुस्ती झेल रहे व्हाइट कॉलर जॉब मार्केट में फिर से तेजी लौटती दिखाई दे रही है। खासकर टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े सेक्टर्स में कंपनियां तेजी से नई हायरिंग कर रही हैं। आंकड़ों के मुताबिक जुलाई में देश में व्हाइट कॉलर हायरिंग में सालाना आधार पर 5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बीते महीने जॉब स्पीक इंडेक्स बढ़कर 3,227 पर पहुंच गया, जो पिछले साल जुलाई में 3,074 था। इस दौरान AI और मशीन लर्निंग से जुड़े रोल्स में 33% की सबसे तेज ग्रोथ दर्ज की गई। वहीं IT और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से जुड़े पदों में 23% की बढ़ोतरी हुई, जबकि कुल IT और सॉफ्टवेयर सर्विसेज सेक्टर में हायरिंग 6% बढ़ी है। दरअसल बदलती टेक्नोलॉजी के साथ कंपनियों का फोकस ऐसे स्किल्स पर है जो भविष्य की जरूरतों को पूरा कर सकती हैं। यही वजह है कि AI, डेटा और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में प्रोफेशनल्स की मांग लगातार बढ़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इंश्योरेंस सेक्टर में हायरिंग 10%, रियल एस्टेट सेक्टर में 8%, IT और सॉफ्टवेयर सर्विसेज में 6% बढ़ी, लेकिन टेलीकॉम, बैंकिंग, फार्मा और एजुकेशन सेक्टर्स में बढ़ती की रफ्तार धीमी रही। हालांकि टेक्नोलॉजी आधारित नौकरियों में आई इस तेजी ने जॉब मार्केट को नई ऊर्जा देने का काम किया है। दिलचस्प बात है कि इस रिकवरी का फायदा अनुभवी प्रोफेशनल्स के साथ फ्रेशर्स को भी मिल रहा है, जिनकी हायरिंग जुलाई में 6% बढ़ी है। वहीं कई शहरों में भी हायरिंग की रफ्तार तेज हुई है और बीते महीने कोलकाता में हायरिंग 17%, हैदराबाद में 16%, चेन्नई में 11% और बेंगलुरु में हायरिंग में 8% की ग्रोथ देखी गई। वहीं मुंबई और दिल्ली में हायरिंग का स्तर लगभग स्थिर रहा। उधर ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स यानी GCCS में भर्तियां 5% बढ़ी हैं। यानी कंपनियां अनुभवी टैलेंट के साथ फ्रेशर्स को भी अपने साथ जोड़ने पर जोर दे रही हैं। जुलाई के आंकड़े संकेत देते हैं कॉर्पोरेट भारत में भर्ती गतिविधियां धीरे धीरे मजबूत हो रही हैं। हालांकि सभी सेक्टर्स में एक जैसी तेजी नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी, AI और डिजिटल स्किल्स से जुड़े क्षेत्रों ने जॉब मार्केट की रफ्तार बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। आदित्य के राणा आज तक।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

जंग हादसे के बाद उत्तराखंड के चमोली में जिंदगी बचाने की जंग। हाइड्रो प्रोजेक्ट के टनल में फंसे 22 लोगों में से अब तक 7 की मौत, 14 बचाए गए। घटनास्थल पहुंचे सीएम धामी। कांग्रेस के मंच से पीएम और गृहमंत्री का मजाक उड़ाने पर राहुल गांधी के खिलाफ आग बबूला हुई बीजेपी। कहा ये संस्कारहीन, अभद्र और अश्लील भाषा। गिरिराज ने कहा मानसिक दिवालियापन। महाराष्ट्र नांदेड़ में शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल पर हमले की जांच तेज। आरोपी के घर एटीएस की छापेमारी। फॉरेन एक्शन के लिए हरसिमरत ने गृहमंत्री को दिया धन्यवाद। जयपुर के एक स्कूल की कैंटीन से पेटीज खाने के बाद की गई छात्र की गई जान। सीसीटीवी में बेहोश दिखा 12वीं क्लास का प्रिंस। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। मां का आरोप, वक्त पर इलाज होता तो बच जाता बेटा। विभाजन विभीषिका दिवस पर पीएम मोदी ने बंटवारे में जान गंवाने वाले लोगों को किया याद। लिखा परिवार उजड़ गए, अपने को खो दिया। लखनऊ में सीएम योगी ने किया मौन मार्च।

0: चमोली में पीपलकोटी टीएचडीसी जल विद्युत परियोजना की निर्माणाधीन टनल में बड़ा हादसा, सुरंग में पानी भरने की वजह से फंसे लोग, 7 मजदूरों की गई जान। सूचना मिलते ही प्रशासन एसडीआरएफ की टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, 3 मजदूर की तलाश जारी। चमोली टनल हादसे के बाद सुबह की तस्वीरें आई सामने, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी, राहत और बचाव दल मौके पर जुटे नजर आए। बेहद खराब मौसम के बीच भी पीपलकोटी पहुंचे मुख्यमंत्री धामी, रेस्क्यू ऑपरेशन का किया गया निरीक्षण। अंबाला के पंजोखरा साहिब विवाद मामले में बढ़ा बवाल, गुरसिमरन सिंह पर एफआईआर की मांग को लेकर हाईवे पर पुलिस से भिड़े सिख संगत, दोनों पक्ष से कई लोग घायल। उग्र प्रदर्शन के जवाब में पुलिस ने किया लाठीचार्ज, कई राउंड तक आंसू गैस के गोले दागे। बवाल के बाद डीजीपी ने अस्पताल पहुंचकर घायल पुलिस वालों से की मुलाकात, घायल पुलिसकर्मियों के साहस, कर्तव्य निष्ठा और समर्पण की सराहना की। सुखबीर बादल पर हमले को लेकर अकाली दल ने सीबीआई जांच की मांग की, 2024 के हमले का जिक्र करते हुए आरोप लगाया है कि हमलावर आईएसआई से ट्रेनिंग पाया हुआ व्यक्ति। सीएम फडणवीस ने सुखबीर बादल पर हमले की जांच के आदेश दिए, पीएम मोदी ने भी ली हालत की जानकारी। सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले को लेकर सियासी घमासान, कांग्रेस और आप ने हमले की निंदा की लेकिन पुरानी घटनाओं का जिक्र करते हुए साधा निशाना। अकाली दल ने आप कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा, वो ऐसे बयान से पंजाब को जलाना चाहते हैं, ये पार्टियां एक अलग नैरेटिव बनाना चाहती हैं। इस मामले में पुलिस के साथ साथ एटीएस की जांच तेज, आरोपी के पुणे स्थित घर पर छापेमारी कर आरोपी के बैकग्राउंड और गतिविधियों की जानकारी। जेपीएससी परीक्षा गड़बड़ी मामले में सीआईडी का ताबड़तोड़ एक्शन, 7 आरोपियों की तलाश में कई जिलों में छापेमारी। रांची में 15 अगस्त को भव्य तिरंगा यात्रा निकालेंगे छात्र, जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने किया ऐलान। राहुल गांधी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री की विदेश नीति पर निशाना साधा, मजाक उड़ाते हुए लगाए गंभीर आरोप। पीएम मोदी और अमित शाह पर मजाक करने पर राहुल गांधी के खिलाफ उतरी बीजेपी, भारतीय राजनीति की मर्यादा पर बताया कलंक। संबित पात्रा का राहुल गांधी पर हमला, बोले ये अशोभनीय भाषा और नकारात्मक राजनीति लोकतांत्रिक मूल्यों का पतन है। बीजेपी का राहुल गांधी पर हमला, कहा भारतीय सेना को लेकर एक बार फिर झूठ बोल रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी की टिप्पणी पर भड़की बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज, बोली पद की गरिमा भूल गए हैं नेता प्रतिपक्ष। उत्तराखंड के हल्द्वानी के रामलीला मैदान में सभा के बाद मंच के शुद्धिकरण का आरोप लगाते हुए भड़के खड़गे, संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों का बताया अपमान। खड़गे के बयान के बाद जेपी नड्डा ने कहा, ऐसी घटना दुखद है और बीजेपी इस तरह की गतिविधियों का समर्थन नहीं करती, जांच का दिया भरोसा। खड़गे के मंच के शुद्धिकरण वाले आरोप पर राहुल गांधी बोले कि यह बीजेपी और आरएसएस की मनुवादी सोच का नतीजा। हल्द्वानी स्टेट शुद्धिकरण पर प्रियंका गांधी पर वार, बोली बीजेपी संघ की यही विचारधारा यही मानसिकता, पीएम मोदी से भी माफी की मांग। खड़गे की सभा स्थल के शुद्धिकरण पर भड़के अखिलेश यादव, कहा बीजेपी और उनके संगी साथियों को मंच नहीं अपने मन का गंगाजल से शुद्धिकरण करना चाहिए। बिहार में नीट और रीनीट यूजी 2026 परीक्षा में धांधली और फर्जीवाड़े मामले में बड़ा एक्शन, यूयू ने 2 मुख्य सरगनाओं को किया गिरफ्तार। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने नालसर यूनिवर्सिटी के 2026 बैच के छात्रों का नामांकन रोकने का आदेश वापस लिया, सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत के खिलाफ अभियान चलाने का था आरोप। आदेश के 3 घंटे बाद ही वापस लिया गया फैसला, कहा कि जब तक जांच रिपोर्ट नहीं मिलती तब तक छात्रों के खिलाफ कोई भी फैसला नहीं लिया जाएगा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित खान और खनिज संशोधन विधेयक 2026 पर जताई आपत्ति, तत्काल वापस लेने की मांग। सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि झारखंड ऐसा बड़ा आंदोलन करेगा जिसे पूरा देश देखेगा।
1: सीएम योगी की विभाजन भीषिका स्मृति दिवस पर मृतकों को श्रद्धांजलि, अखंड भारत के निर्माण का दिया संदेश, बोले 1947 का विभाजन सिर्फ सीमाओं का बंटवारा नहीं, सपनों और रिश्तों का बिखराव। यूपी चुनाव 2027 को लेकर बीजेपी का मंथन, योगी की मजबूत पकड़, सरकार संगठन और विधायकों के बीच तालमेल पर फोकस। मायावती का हल्द्वानी मंच शुद्धिकरण पर हमला, जातिवादी तत्वों पर कार्रवाई की मांग, खड़गे के कार्यक्रम के बाद मंच के शुद्धिकरण को बताया निंदनीय। मिशन 2027 बीएसपी का बदला अंदाज, बीजेपी की बी टीम वाली धारणा तोड़ने की रणनीति, मायावती आकाश आनंद बेरोजगारी, पेपर लीक और आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी पर हमलावर। ब्राह्मण कार्ड पर बीएसपी का दांव, लेकिन कद्दावर नेताओं के लगातार छोड़ने से बड़ी मुश्किल, अंटू मिश्रा के निष्कासन पर मायावती का सफाई, कहा निजी स्वार्थ के लिए पार्टी छोड़ने वालों के नुकसान हुआ है, ब्राह्मण समाज का भरोसा बरकरार है। बीजेपी प्रवक्ता आलोक अवस्थी का मायावती पर हमला, बोले 2027 मायावती का खाता खुलना भी मुश्किल है, ब्राह्मणों को जोड़ने की कोशिश होगी नाकाम। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत का बीजेपी पर हमला, बोले दलितों का लगातार अपमान किया जा रहा है। खड़गे के भाषण स्थल के शुद्धिकरण पर सवाल, कहा देश भर में कांग्रेस करेगी विरोध प्रदर्शन। यूपी में कांवड़ यात्रा ने बनाया नया रिकॉर्ड, 4.5 करोड़ से ज्यादा कांवड़िए हुए शामिल। करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ के बावजूद बड़ी दुर्घटना नहीं, यात्रा सुरक्षित संपन्न। प्रयागराज में भव्य तिरंगा यात्रा, हजारों लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर दिखाया देशभक्ति का जज्बा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत कई बीजेपी नेता शामिल। दिल्ली के आरकेपुरम में बीजेपी की विशाल तिरंगा यात्रा, विधायक अनिल शर्मा के नेतृत्व में उमड़ा जनसैलाब, जगह जगह लोगों ने किया स्वागत। जम्मू कश्मीर के गांधरबल में मानसबल झील में तिरंगा रैली, स्वतंत्रता दिवस से पहले शिकारा रैली में दिखा देशभक्ति का जज्बा। पलवल में खेल मंत्री गौरव गौतम के नेतृत्व में 5 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा, हर वर्ग आयु के लोगों ने लिया भाग। भोपाल के बड़े तालाब में अनोखी तिरंगा यात्रा, नाव पर लहराया गया तिरंगा, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और खेल मंत्री विश्वास सारंग रहे मौजूद। बिहार के मुजफ्फरपुर में बीजेपी की तिरंगा यात्रा, सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए, जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आकाशीय बिजली गिरने की वजह से इस घटना के कारण 2 की मौत हुई, 2 घायल। धर्मशाला में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, जलभराव के कारण राहगीरों और वाहन चालकों की बड़ी परेशानी। ओडिशा के भद्रक में भारी बारिश के बीच बैतरणी नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर, बाढ़ का पानी इलाकों में घुसा। चित्तौड़गढ़ में पिकनिक मनाने गया युवक झरने में बहा, मौके पर मौजूद लोगों की सूझबूझ से बची जान। यूपी के सीतापुर में झमाझम बारिश, तापमान में गिरावट से लोगों को गर्मी से मिली राहत। धर्मशाला में मूसलाधार बारिश से सड़कों पर जलभराव, आवाजाही मुश्किल। खरगोन में मूसलाधार बारिश से सड़कों पर घुटनों तक पानी, रीजनल एसपी के बंगले में घुसा बारिश का पानी। सोनमर्ग के सरबल में फटा बादल, बालटाल जाने वाली सड़कें बंद, ट्रैफिक प्रभावित। हैदराबाद में भारी बारिश का कहर, फ्लैश फ्लड जैसे हालात, कई इलाकों में पानी का तेज बहाव। शिमला में अचानक गाड़ियों पर गिरे बड़े बड़े पत्थर, कई वाहन चपेट में, पत्थर गिरने से मौके पर मचा हड़कंप। भारी बारिश के कारण जैसलमेर के अस्पताल परिसर और वार्ड में भरा पानी, मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानी। हिमाचल प्रदेश की मूसलाधार बारिश का दौर जारी, कई जिलों में 19 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट। गोरखपुर में भारी बारिश से वाटर लॉगिंग, सड़कों पर वाहनों की रफ्तार रही धीमी। एमटी के नरसिंहपुर में NH-45 पर भीषण लैंडस्लाइड, भारी बारिश से जबलपुर भोपाल मार्ग पर गिरा पहाड़ का मलबा। मलबे से सड़क पर आवागमन प्रभावित, लाल सड़क पर 1 वे ट्रैफिक जारी, जेसीबी से हटाया जा रहा है मलबा। यूपी के बांदा में IGRS रैंकिंग गिरने पर बड़ा एक्शन, SDM समेत 11 अफसरों पर जुलाई का वेतन रोका गया। सहारनपुर में पुलिस और गोकशु के बीच मुठभेड़, फायरिंग के बाद 1 शख्स घायल, 2 बदमाश गिरफ्तार। यूपी के शाहजहांपुर में मामूली विवाद के बाद 2 पक्षों में झड़प, एक युवक की पीट पीट कर हत्या, आरोपी फरार। वासी बुरका पहनकर बाइक पर घूम रहा युवक निकला प्रैंक रील बनाने वाला, पुलिस से पूछताछ का वीडियो हो रहा है वायरल। जलौन में बक्से में छिपा मिला प्रेमी, पिटाई के बाद प्रेमी प्रेमिका का गांव में जुलूस, तालिबानी सजा। अयोध्या में सड़क हादसे के बाद भाग रही कार ने एक शख्स को मारी टक्कर, दर्दनाक सड़क हादसे में मचा हड़कंप। गोरखपुर में शख्स ने अपार्टमेंट की 8वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दी, 1.5 करोड़ की ठगी से था परेशान आरोपी महिला और उसका पिता गिरफ्तार। यूपी के अलीगढ़ में हार्डवेयर कारोबारी से लाखों की लूट का खुलासा, 5 आरोपी गिरफ्तार, नगद के साथ हथियार जब्त। बांदा में चोरी करने पहुंचे चोरों को नहीं मिला कीमती सामान, गुस्से से घर की 25 नल की टोंटियां उखाड़ कर ले गए चोर। रामपुर में पंचायत घर बना अखाड़ा, संवाद दिवस में भिड़े ग्रामीण, जमकर मारपीट की गई, तोड़ी कुर्सियां, वीडियो हो रहा है वायरल। गोरखपुर हत्याकांड में वायरल वीडियो से फिर से गरमाया पूरा मामला, क्रिकेट विवाद से शुरू हुई थी रंजिश, पुलिस पर वीडियो हटाने का दबाव बनाने का आरोप। ग्रेटर नोएडा के फर्नीचर मार्केट में एक दुकान में लगी भीषण आग, 1 की मौत, तस्वीर आई सामने। मुर्शिदाबाद में घर के बाहर खेल रही मासूम बच्चियों पर सनकी युवक ने किया अचानक से जानलेवा हमला, 1 बच्ची की मौत, 3 की हालत गंभीर। जयपुर में 12वीं के छात्र की संदिग्ध मौत, परिजनों ने स्कूल कैंटीन से पैटीज खाने के बाद तबीयत बिगड़ने की कही बात। गुजरात के मोरबी में जर्जर पानी की टंकी तोड़ने के दौरान बड़ा हादसा, टंकी की उल्टी दिशा में गिरकर एक घर और दुकान पर जाकर गिरी, हादसे में कोई हताहत नहीं। मेरठ में 50 ज्यादा बाइक्स पर सैकड़ों युवाओं का हुड़दंग, गलियों में मचा हड़कंप, 3 गिरफ्तार। कपूरथला से मानवता को शर्मसार करने वाला वीडियो, मंदिर के बाहर गरीब महिला की पिटाई, वीडियो वायरल होते ही FIR दर्ज। मुजफ्फरपुर में पुलिस अपराधियों के बीच मुठभेड़, बदमाशों ने की पुलिस पर फायरिंग, बाइक लूटकर फरार। कटनी में बीजेपी विधायक की कंपनी से 1.5 करोड़ की साइबर ठगी, डायरेक्टर के नाम से फर्जी मैसेज भेजकर उड़ाई रकम। पंचकुला में बड़ा हादसा, तीसरी मंजिल पर जनरेटर चलाते समय क्रेन पलटी, 2 की मौत। महाराष्ट्र जालना में पुलिस और एडीए की संयुक्त कार्रवाई में प्रतिबंधित गुटखे जब्त, मुख्य आरोपी की तलाश तेज। चरखी दादरी फायरिंग कांड में पुलिस का बड़ा एक्शन, मुख्य साजिशकर्ता समेत 5 दबोचे, अब तक 12 गिरफ्तार। डीएसपी की अगुवाई पुलिस ने निकाली बदमाशों की परेड। महाराष्ट्र के अमरावती में आश्रमशाला में भूत प्रेत की अफवाह और अजीब आवाजों के कारण दहशत, 600 से ज्यादा छात्रों ने छोड़ा हॉस्टल। महाराष्ट्र कोल्हापुर में ई चलान और भारी जुर्माने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच धक्का मुक्की। वडोदरा में पैसों के लेन देन को लेकर 2 गुटों में झड़प, बदमाश ने व्यापारी गाड़ी को किया आग के हवाले, आरोपी को किया गिरफ्तार।
0: कल से हॉकी वर्ल्ड कप की शुरुआत, बेल्जियम और नीदरलैंड मिलकर कर रहे हैं मेजबानी। पहली बार एक साथ हो रहे हैं महिला और पुरुष के टूर्नामेंट, 16 दिन तक चलेगा टूर्नामेंट, दोनों टूर्नामेंट में खेले जाएंगे कुल 50 मैच। कल अपना 600वां टेस्ट मैच खेलेगा भारत, गोल इंटरनेशनल स्टेडियम में होगी भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत। गोल टेस्ट जीतने पर भी टीम इंडिया रचेगी नया इतिहास, सबसे ज्यादा टेस्ट मैच जीतने के मामले में कर लेगी वेस्टइंडीज की बराबरी। भारत ने नाइजीरिया में कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में पहली बार जीता, ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब भारतीय फेंसर्स ने सीनियर और अंडर 23 कैटेगरी में कुल 35 मेडल जीते। आज बॉक्स ऑफिस पर दिखेगी सनी देओल का एक्शन अवतार, बंटवारा 1947 हुई रिलीज, फिल्म में प्रीति, करण देओल, शबाना आजमी आएंगी नजर। इमरान हाशमी की आवारापन 2 की भी आज रिलीज होगी, 2007 में आई इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन का सीक्वल है ये फिल्म। थिएटर के बाद अब ओटीटी पर कंगना की फिल्म भारत भाग्य विधाता Z5 पर हुई रिलीज। 19 जून को थिएटर्स में रिलीज होने के बाद अब ओटीटी पर कमाल करेगी कॉकटेल 2, नेटफ्लिक्स पर आज से होगी स्ट्रीम। संजय दत्त की फिल्म आखिरी सवाल भी आज से ओटीटी पर स्ट्रीम, इस साल मई में सिनेमाघरों में रिलीज हो रही फिल्म।

0: और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर सीएम योगी इस वक्त बोल रहे हैं, सीधे आपको वहीं ले चलेंगे।
1: लेकिन एक्ट का प्रावधान था कि अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, यानी ये तीनों भाग वह हैं जो अखंड भारत के हिस्से हुआ करते थे। आज से नहीं, हजारों वर्षों की विरासत एक साथ जुड़ी हुई है और उसमें प्रावधान था कि इन देशों में कोई हिंदू, कोई सिख, कोई जैनी, कोई बौद्ध, कोई पारसी, कोई ईसाई अगर वहां से निकाला गया है और वह भारत में शरण लिए हुए 5 वर्ष हो गए हैं तो उसे हम भारत की नागरिकता देंगे। इसमें कहीं ये नहीं था कि हम मुसलमान की जमीन लेंगे या कांग्रेस की जमीन लेंगे या समाजवादी पार्टी की जमीन ले लेंगे, ये कहीं नहीं था, एक्ट में कोई प्रावधान नहीं। लेकिन आंदोलन देश के अंदर करने के प्रयास हुए। आपने देखा होगा लखनऊ में भी आगजनी करने का प्रयास हुआ, कानपुर में, मेरठ में, संभल में, अलीगढ़ में, बुलंदशहर में, मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर में, जगह जगह करने के प्रयास हुए। तो गनीमत थी कि उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की कृपा से यूपी में डबल इंजन की सरकार थी। आप सोचो अगर समाजवादी पार्टी की सरकार दुर्भाग्य से रही होती तो दंगों की इस आग से क्या यूपी उभर पाता, किस प्रकार का नग्न तांडव होता था। और तो उन्हें मालूम था दंगाइयों को कि दंगा की कीमत क्या चुकानी है अब, तो इसलिए वे अपनी मनमर्जी से कर नहीं पाए। लेकिन उनके दुस्साहस से बताते थे और मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि ये विरोध क्यों कर रहे हैं। हम पूछते थे विरोध का कारण क्या है, अगर कोई विस्थापित हिंदू को, विस्थापित सिख को, विस्थापित बौद्ध को, विस्थापित जैन को, विस्थापित पारसी को भारत सरकार अपनी लैंड दे करके उसको बसाना चाहती और नागरिकता देना चाहती तो आपको परेशानी क्या हो रही है। लेकिन विरोध किया गया और उस विरोध को कौन मजबूती से पीछे से पुशअप कर रहा था, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, इनका वो चेहरा भी तो आपने देखा होगा। यानी ये वास्तविक दोषी है 1947 के विभाजन के भी और 1947 के कत्लेआम के भी। अगर उस समय मोदी जैसा प्रधानमंत्री होता तो भारत का कोई बाल बांका नहीं कर पाता। लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा प्रधानमंत्री होता तो भारत की एकता को कोई खंडित नहीं कर पाता। लेकिन इन कांग्रेसियों की बुजदली का दुष्परिणाम क्या था कि देश को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। और सीए के दौरान भी इनका एक चरित्र आप सबने देखा होगा। आज का यह दृश्य अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए हमारे लिए है, जो बाहर प्रदर्शनी लगी उस प्रदर्शनी को आप भी, आपके पास भी स्मार्टफोन होगा, इस स्मार्टफोन से उसके विजुअल्स लीजिए, अपने वर्तमान को दिखाइए। वर्तमान युवा पीढ़ी को दिखाइए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप भी अपने कमेंट लिखिए इस पे, और आप भी इस बात, उन गलतियों को दोहराइए मत जो गलती कभी हम लोगों ने आपस में बंट करके की थी। हमारी व्यक्तिगत पहचान, हमारे नातेदारी, रिश्तेदारी, पारिवारिक संबंधों के लिए हो सकती है, लेकिन हमारी एक पहचान होनी चाहिए और वह एक भारतीय के रूप में, एक भारत के कर्तव्यनिष्ठ नागरिक के रूप में। यह हमारा एक सामूहिक दायित्व बनता है कि हम सब अपनी उस पहचान को बनाएं, उस पहचान के साथ हम आगे बढ़ें, अन्यथा आपस में हमारा यह विभाजन यह उन तत्वों को जो भारत को कमजोर करना चाहते हैं उनको मजबूती प्रदान करता है। हमारा आपसी विभाजन विभाजन की जो भीषण त्रासदी हुई, इस त्रासदी में लाखों लाखों हिंदू सिख बौद्ध जैनी ये सभी लोग जो भारत के मूल नागरिक थे, इन लोगों को अपने घरों से बेघर होना पड़ा, लाखों का कत्लेआम हुआ। अकेले पंजाब के अंदर ही, अकेले पाकिस्तान के अंदर ही 10 लाख से अधिक लोग काटे गए थे। ट्रेन में जो विभत्स हत्याकांड हो रहे थे।
0: तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारत में आज 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंटवारे के वक्त हुए नुकसान को याद किया। पीएम ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि हम उन सभी लोगों के साहस को याद करते हैं जो विभाजन से प्रभावित हुए थे। इतिहास का वो दौर था जिसने कई जिंदगियां तहस नहस कर दी। विभाजन की चुनौतियों से उभरते हुए लोगों ने शून्य से अपनी जिंदगी फिर से बनाई है। पीएम मोदी ने देशवासियों से मिलकर विकसित भारत के निर्माण की दिशा में काम करने की अपील भी की है। तो विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जा रहा है, जिस पर प्रधानमंत्री का ये भावुक पोस्ट, उन्होंने लोगों की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि विभाजन के बावजूद लोगों ने हौसला नहीं हारा और फिर से अपने जीवन की शुरुआत की। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए आज।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: जिस मिट्टी में फसल उगती है उसी में भारत की स्वतंत्रता की खुशबू है। इस स्वतंत्रता दिवस आइए उन किसानों का सम्मान करें जो हर दिन देश को मजबूत बनाते हैं। मेरे और क्रिस्टल परिवार की ओर से आपके और आपके परिवार को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: पापा।
6: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
7: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
6: छक्का?
7: सब कैशलेस हो गया है।
6: हाँ ला भाई मेरा बैट।
8: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
9: वो अभी तो डिस्चार्ज हुआ यार।
10: बैट किसका है?
11: टाटा AIG है तो भरोसा है।

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: पापा।
4: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
5: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
4: छक्का?
5: सब कैशलेस हो गया है।
4: हाँ,
6: ला भाई मेरा बैट।
7: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
6: बेटा चार्ज हुआ यार।
8: बैट किसका है?
9: टाटा AIG है तो भरोसा है।

0: उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड के नाम पर बड़ा खेल चल रहा है। कभी कब्र बेचने का आरोप तो कभी वक्फ की संपत्तियों के सौदे का आरोप। यूपी के कई मुस्लिम नेता वक्फ बोर्ड की धांधलियों के खिलाफ खुलकर सामने आए हैं। बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने सीएम योगी से मुलाकात की और वक्फ में हो रही धांधलियों की जांच की मांग की। उत्तर प्रदेश में दो शिया और सुन्नी के लिए अलग अलग वक्फ बोर्ड हैं, जो वक्फ की गई संपत्तियों का प्रबंधन करते हैं, लेकिन अब ये वक्फ बोर्ड ही सवालों के घेरे में है। ये वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी हैं, दावा कर रहे हैं कि यूपी का वक्फ बोर्ड घोटाला 1,000 करोड़ से भी अधिक का है। वसीम रिजवी दावा करते हैं कि उनके पास घोटालों के सबूत हैं। रिजवी कहते हैं कि लखनऊ से प्रयागराज, मेरठ तक हर जगह वक्फ की संपत्तियों को या तो बेचा गया या फिर उन्हें वक्फ के रिकॉर्ड से हटाकर मौलानाओं ने अपने नाम कर लिया। हाल ही में लखनऊ के इमाम बाड़े में कब्र बेचने का भी मामला आया था।
1: वक्फ सज्जादिया है आलमनगर में, लखनऊ की अभी हम बात कर रहे हैं। लीज जो सीलिंग प्रॉपर्टी होती है, सीलिंग की सरकारी संपत्ति को वक्फ दर्ज करके 1500 क्वार्टर बना दिए गए। हर क्वार्टर से 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपया एक बड़े मौलाना साहब वसूल कर रहे हैं, उसका भी सारा रिकॉर्ड है।
2: कौन है मौलाना साहब ये जो वसूल कर रहे हैं?
1: मतलब लखनऊ के एक बड़े मौलाना है, मौलाना कल्बे जव्वार साहब, जो हमेशा वक्फ बोर्ड पर काबिज रहना चाहते हैं।
0: वसीम रिजवी की तरह ही बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी भी सबूतों के साथ वक्फ बोर्ड में घोटाले का दावा करते हैं। रजवी ने दावा किया, अकेले बरेली में 320 करोड़ का वक्फ घोटाला हुआ है। यूपी के दोनों वक्फ बोर्डों पर आरोप गंभीर है। मुसलमान अपनी संपत्ति इसलिए वक्फ करता है ताकि उसका इस्तेमाल जरूरतमंद मुसलमानों के लिए किया जा सके, लेकिन यूपी में तो अलग ही खेल चल रहा है। यूपी के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने सीएम योगी से मांग की कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच हो, हर जिले में एसआईटी गठित करके ऑडिट कराया जाए। उन्होंने दावा किया कि 70,000 से अधिक संपत्तियां गायब हैं। पिछली सरकारों में ठीक से ऑडिट नहीं हुआ, जिन लोगों ने वक्फ संपत्तियों में धांधली में उनसे वसूली की जाए। साथ ही मांग ये भी की गई है कि घोटाला करने वाले मौलानाओं का नाम सार्वजनिक हो। तो यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अब वक्फ बोर्ड का मामला भी गर्मा गया है। समाजवादी पार्टी चढ़ावा चोरी के मामले पर बीजेपी को घेर रही थी, लेकिन वक्फ बोर्ड पर धांधली के आरोपों ने बीजेपी को पलटवार का मौका दे दिया। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।

दर्दनाक सुरंग हादसे के बाद उत्तराखंड के चमोली में जिंदगी बचाने की जंग। हाइड्रो प्रोजेक्ट की टनल में फंसे 22 लोगों में से अब तक 7 की मौत, 14 बचाए गए। टनल के अंदर जाकर सीएम धामी ने लिया रेस्क्यू कार्यों का जायजा। कांग्रेस के मंच से पीएम और गृहमंत्री का मजाक उड़ाने पर राहुल गांधी के खिलाफ आग बबूला हुई बीजेपी, कहा यह संस्कारहीन, अभद्र और अश्लील भाषा। गिरिराज ने कहा मानसिक दिवालिया पर।

तस्करी का बड़ा सरगना, वीरेंद्र सिंह वसोया, गृहमंत्री का पोस्ट, नशे के माफिया कहीं भी हो खींच कर लाएंगे, ड्रग्स तस्करों के खिलाफ मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति। विभाजन विभीषिका दिवस पर पीएम मोदी ने बंटवारे में जान गंवाने वाले लोगों को किया याद, कहा परिवार उजड़ गए, अपनों को खो दिया। योगी ने कहा कि आज भी विभाजन की कीमत चुका रहा है देश। जयपुर के स्कूल की कैंटीन से पैटीज खाने के बाद गई छात्र की जान, सीसीटीवी में बेहोश दिखा 12वीं क्लास का प्रिंस, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार, मां का आरोप वक्त पर इलाज होता तो बच जाता बेटा।

0: बात अब जयपुर की करेंगे, जहां से एक ऐसी खबर आई है जिसे देखकर हर माता पिता की चिंता बढ़ जाएगी, जिसके बच्चे स्कूल जाते हों। जयपुर के एक निजी स्कूल की कैंटीन से खरीदकर एक छात्र ने पैटीज खाई और उसकी तबीयत उसके बाद इतनी बिगड़ गई कि मौके पर ही मौत हो गई।
1: अब सवाल यही है कि क्या पैटीज में कोई खराबी थी, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि बच्चे को स्कूल वाले अस्पताल क्यों नहीं लेकर गए, एम्बुलेंस क्यों नहीं बुलाया गया। बच्चा तड़प तड़प कर दम तोड़ता रहा और स्कूल प्रशासन हाथ पर हाथ धरे क्यों देखता रहा।
2: सेकेंड सांस रोक के बता दो, मैं आप लोगों को मान जाऊंगा।
3: एक घंटे तक रोके रहे,
2: एक घंटे में जान दे रहा था उसके, कैसा हो रहा था वो।
4: सिर्फ इतना से कि न्याय चाहिए उस बच्चे के लिए, बच्चा तो गया पर किसी और की जिंदगी उस स्कूल में खराब नहीं हो।
5: जब आपके सामने आपका कोई दोस्त तड़प तड़प कर दम तोड़ जाए और स्कूल प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा रह जाए तो खून खौलना लाजमी हो जाता है। जयपुर के महाराणा प्रताप स्कूल के इन छात्रों का भी खून खौल रहा है, क्यों ये इन्हीं बच्चों से सुनिए।
6: उसने बाइट ली, वो भागा, सांस नहीं आ रही थी, पानी पीने गया और फिर वो बेहोश हो गया। पूरा नहीं, आधा ही खाया था, आधी फेंक दी थी।
7: खराब
6: थी,
7: पहले पता नहीं चला,
6: पहले पता नहीं,
7: फंगस लगी थी, बदबू आ रही थी,
6: बदबू आ रही थी,
7: बदबू आ रही थी, पूरा नहीं थी।
8: सबसे बड़ी लापरवाही है ना
6: स्कूल की, हॉस्पिटल भेज देते तो वो आज चिंता रहे।
5: इस स्कूल में 12वीं क्लास के छात्र प्रिंस की जिन हालात में मौत हुई उसे सुनकर किसी का भी आक्रोश भड़क जाए। इस स्कूल में छात्र कैंटीन से पेटीज खरीदता है, खाते ही उसकी तबीयत बिगड़ती है, उसकी सांस बंद हो जाती है, बदन नीला पड़ जाता है, मुंह से झाग निकलने लगता है, लेकिन स्कूल प्रशासन अस्पताल ले जाने की जहमत तक नहीं उठाता।
4: सड़क पे पड़े हुए एक मरीज को भी लेकर के भग जाता है, पर ये लोगों ने उसको उठा करके कुत्तों की जैसे पटक करके रखा अपने वहां पे ऑफिस में 30 मिनट तक।
5: जाहिर है इस स्कूल ने लापरवाही की हद कर दी है। दरअसल इस स्कूल ने अपराध किया है, 50 से 100 मीटर की दूरी पर अस्पताल है, लेकिन स्कूल प्रशासन को बच्चे को वहां तक ले जाने का ख्याल तक नहीं आया। माना कि बच्चे की हालत काफी बिगड़ गई थी, लेकिन कम से कम उसे अस्पताल तो ले जाते, क्या पता कोई अनहोनी हो जाती, वक्त पर इलाज से बच्चे की जान बच जाती। लेकिन अब कुछ नहीं बचा है सिवाय एक माँ के आंसू और पिता के ताउम्र कुरेदने वाले दर्द के।
9: मेरे बच्चा न्याय दिलाओ, हाथ जोड़ के उसे मेरे बच्चा न्याय दिलाओ, प्रिंस तो कोटिया में पड़ते हैं पर मेरे बच्चा न्याय दिलाओ, मेरी आत्मा सुख पानी चाहिए, मेरे बच्चे की आत्मा सुख पानी चाहिए, फिर से अन्याय हुई है स्कूल में।
5: होनहार प्रिंस अब इस दुनिया में नहीं रहा, परिवार के लिए अब उसकी यादें ही शेष हैं। माता पिता को जब भी उसकी याद आएगी तो ये ख्याल भी आएगा कि प्रिंस की किन परिस्थितियों में मौत हुई थी। अब सारा दारोमदार पुलिस पर है, क्या प्रिंस के माता पिता को इंसाफ मिल पाएगा।
10: संदिग्ध परिस्थितियों में डेथ का मैटर हमारे सामने आया है और उस पर जो उनके परिजन है उन्होंने ये आशंका जताई है कि स्कूल में किसी प्रकार की लापरवाही की वजह से उनकी मृत्यु हो गई है, तो उस पर भी प्रकरण पंजीबद्ध करके उसमें अनुसंधान किया जा रहा है, जो मौके की फुटेज और ये सारी चीज़ें उनको कलेक्ट किया जा रहा है और उसमें भी जो भी चीज़ें आएंगी, जो फैक्ट्स आएंगी वो आपके सामने आएंगे।
5: पुलिस जांच की बात कर रही है, उसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। मौत की वजह का पता तो तभी चल पाएगा, लेकिन पुलिस की असली जिम्मेदारी ये तय करने की है कि वक्त पर अस्पताल न पहुंचाने वाले स्कूल पर सख्त कार्रवाई जरूर हो। विशाल शर्मा, जयपुर आज तक।
0: शरद मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। शरद, वक्त पर हॉस्पिटल ना ले जाने की क्या दलील दे रहा है स्कूल प्रशासन, उनके खिलाफ अब क्या कार्रवाई की जाएगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आएगी?
11: देखिए, ये बड़ी लापरवाही है, जिस तरह से वहां पर 100 मीटर की दूरी पर अस्पताल है उसके बावजूद नहीं ले गए। अब उनकी दलील है कि हम फोन कर रहे थे उनके पिताजी को, वो कह रहे थे हम आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, उन्होंने हम लगातार फोन करते रहे, अब वो कहते रहे कि हम पहुंच रहे हैं, उनकी तरफ से देरी हुई, हमें वो कह देते कि हम आधे घंटे लेट आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे तो हम ले जाते। अब ये उनकी दलील है, मगर कायदे से बच्चे को अस्पताल ले जाना चाहिए था, जब सांस लेने में उसे तकलीफ हो रही थी, तो आप सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं किस तरह से लिटा के उसको हवा दी जा रही है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, मगर अगर क्या वो पेटी जहरीला था ये पता करने के लिए विस्तृत जांच की जरूरत पड़ेगी, जिसमें वक्त लग सकता है 4 से 5 दिन का, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो प्रारंभिक तौर पर बात सामने आई है कि सांस लेने में तकलीफ हो रही थी उसको, मगर क्या ये पेटीज खाने के बाद गला सूखने से, कुछ चिपकने से या सांस नली में कुछ अटकने से मौत हुई है, ये पूरा खुलासा कह रहे हैं डॉक्टर की पोस्टमार्टम की कंप्लीट रिपोर्ट आने के बाद हो पाएगी। अब दोनों ही तरफ से पुलिस ने जांच शुरू कर दिया है, जो वहां पर डीवीआर था, जो सीसीटीवी थे, सब वो जब्त कर लिए हैं कि कितनी लापरवाही हुई है, कितनी देरी हुई है, कितने बस के फोन, कितना देर पर फोन किया गया था उनके पिताजी को और कितनी दूरी पर थे वो, आने में देरी क्यों की, मतलब तमाम एंगल को इन्वेस्टिगेट करने के बाद
1: जो प्रिंस है उनके बच्चों का, इस उनके माँ बाप का इस सब पर क्या कुछ कहना है, परिवार वाले क्या मांग कर रहे हैं?
11: देखिए, परिवार के साफ मांग है कि अस्पताल ने लापरवाही की है। जब हम वहां पर पहुंचे तो बच्चे का शव जो नीला पड़ गया था और इसके बावजूद उसे हमारा इंतजार करते रहे, हमें फोन करते रहे कि स्कूटी पर मत आना, आप कोई कार लेके आना, चौपहिया वाहन लेके आना, क्योंकि अस्पताल ले जाना पड़ सकता है, और ऐसी स्थिति में हमसे देरी हुई है। लेकिन वहां पर स्कूल प्रशासन के पास गाड़ी थी, वो स्कूल में लेकर जा सकते थे उसको, मगर उसके बावजूद स्कूल में नहीं ले गए। माता पिता कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आज दिए की बैठक के बाद वहां पर कैंडल मार्च भी निकाला जाएगा, वो स्कूल पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। माता पिता का कहना है कि स्कूल प्रबंधन की लापरवाही से मेरे बेटे की मौत हुई है, वो ठीक ठाक मनपसंद का खाना खाकर घर से निकला था।
1: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। बात संसद के मानसून सत्र की, जो खत्म हो चुका है, लेकिन सियासी संग्राम नहीं खत्म हुआ है। दिल्ली के मालवंकर हॉल में राहुल गांधी के पीएम पर बयान पर सियासी तूफान तेज है। राहुल गांधी के निशाने पर प्रधानमंत्री की विदेश नीति है। पीएम मोदी के विदेशी नेताओं से गले मिलने की तस्वीरों पर राहुल गांधी ने तंज कसा और बात से बयान तक नहीं रुकी। मंच पर संदीप दीक्षित को गले लगाकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर कटाक्ष किया।
3: राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी हमलावर है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और प्रहलाद जोशी ने न सिर्फ राहुल गांधी की भाषा पर सवाल किया बल्कि उन्हें मानसिक तौर पर दिवालिया तक बता दिया है। और बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने तो राहुल को संस्कारहीन, अभद्र और अश्लील तक कह डाला।
12: इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस, आप लिख लो जिस दिन तक नरेंद्र मोदी अपना इस्तीफा नहीं देंगे, अमित शाह नहीं हटेगा, उस दिन तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं सो पाएंगे। इफ यू आर फाइटिंग द ब्रिटिश एम्पायर and suddenly you say, you know, I'm feeling a bit scared. But you're fighting a bunch of jokers. How can you feel scared?
13: एक दिन पहले का वाकया है। दिल्ली के मावलंकर हॉल में राहुल गांधी पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर हमलों की बौछार कर रहे थे।
12: अब कांग्रेस पार्टी ओपोजिशन सबका एक्सप्रेशन चालू है, अब नहीं रुकने वाला। वो क्या, हाँ, थैंक यू, टाटा, गुड बाय। और मैं आपको बता रहा हूं, आप लिख लो जिस दिन तक नरेंद्र मोदी अपना इस्तीफा नहीं देंगे, अमित शाह नहीं हटेगा, उस दिन तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं सो पाएंगे। उनको हम जगा के रखेंगे, पूरी रात जगा के रखेंगे, जब तक वो कलैप्स करके कहें कि भैया ये हमारी बस की नहीं है, माफ करो, छोड़ दो हमें।
13: राहुल गांधी ने पीएम मोदी की विदेश नीति पर सवाल खड़े किए। उन्होंने अमेरिका ईरान युद्ध के दौरान मोदी सरकार की विदेश नीति की आलोचना की। विदेश नीति की आलोचना करते करते राहुल गांधी ने पीएम मोदी के विदेशी नेताओं के साथ उनके गर्मजोशी से गले मिलने को निशाना बनाया।
12: इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया, अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस, बट पता नहीं कहां से घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी का मतलब नेताओं से गले लगना।
13: यहां तक तो ठीक ठाक था, लेकिन राहुल गांधी से गले मिलने के बाद संदीप दीक्षित ने एक ऐसी टिप्पणी कर दी जिससे जबरदस्त विवाद खड़ा हो गया।
14: एक चीज पूछ सकता हूँ? हाँ। मिलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था। संदीप

0: बीजेपी के निशाने पर राहुल गांधी है।
1: वो सभ्यता संपूर्ण उन्होंने भूल गया है, क्योंकि वो सभ्यता ही नहीं है उनके पास। तो अपने आप को समझते हैं ही इज बॉर्न टू रूल, ये इनके मन में अहंकार है। जब ये पूरा नहीं हो रहा है, हताश होके अत्यंत लो लैंग्वेज, फिल्दी लैंग्वेज उपयोग कर रहे हैं।
2: जो आदमी मानसिक दिवालियेपन में हो, राहुल गांधी उसी श्रेणी में आते हैं। उन्हें संसद के बदले आगरा जैसे संस्थान में रहना चाहिए, और जिसका कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, नीचता की हद है।
0: कल ही संसद का मॉनसून सत्र खत्म हुआ है। पूरा सत्र शोर शराबे और हंगामे की भेंट चढ़ गया। सरकार लगातार राहुल गांधी के स्टैंड पर सवाल उठाती रही, और अब दिल्ली के मावलंकर हॉल में राहुल गांधी के इस भाषण ने बीजेपी और कांग्रेस के बीच नया सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। आज तक ब्यूरो।
3: तो राहुल गांधी ने न सिर्फ मोदी सरकार की विदेश नीति की आलोचना की, बल्कि संघ की विचारधारा पर भी हमला बोला है।
4: Now I can understand if you are fighting the British Empire and suddenly you say, you know, I'm feeling a bit scared. But you're fighting a bunch of jokers. How can you feel scared? Please understand, you're literally fighting a bunch of jokers, clowns, right? Who have no idea about our philosophy, no idea about our history, right? They're a bunch of clowns. Now, I couldn't say this. I can naturally say this about my friends in the RSS. It's obvious to me. In fact, it's obvious to most people that these people have no understanding of India. Right? Why? Because somebody who cannot connect with India as it is today cannot understand India. To understand India, you can't understand India 3,000 years ago. You have to understand it today, right now. And to understand it today, the only way to understand it today is if you understand its expression.
3: राहुल गांधी के हमलों पर करारा जवाब भी आया। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा है कि राहुल गांधी को गलत बयान करने की आदत हो गई है।
5: आज जिस प्रकार के संस्कारहीन, गरिमाहीन, अश्लील और अभद्र बयान राहुल गांधी ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर दिया है, उसे वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं, एक फेल्ड स्टैंड अप कॉमेडियन लग रहे थे। ही वॉज रिजोर्टिंग टू चीप इनवेंडोज एंड ही वॉज इंडल्जिंग इन लॉकर रूम टॉक। इस देश को एक सकारात्मक विपक्ष की जरूरत है। लोकतंत्र में नेता प्रतिपक्ष की बहुत अहम भूमिका होती है, एंड दिस कंट्री डिजर्व्स बेटर देन अ 56 ईयर ओल्ड मैन लाइक राहुल गांधी बिहेविंग इन अ जुवेनाइल मैनर।
6: राहुल गांधी के पूरे भाषण में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज झलकती है, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन इस बात की कि वो रिजेक्टेड है, तो वो अब वाचिक हिंसा पे आ गए हैं। राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति जिस तरह से नाटक कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, कोई शीला जी के पुत्र के झप्पी पा रहे हैं, वो क्या बताना चाह रहे हैं? उसको, उसके लिए एक चुनी हुई देश की महिला के लिए, एक भारत देश के संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का स्टेटमेंट, और वो महिला उनका ननेरे में है, ननिहाल की महिला के लिए ये उनकी भावना है।
3: अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। अमित, अब किस एक्शन की तैयारी में बीजेपी, और साथ ही क्या माफी की मांग भी की जाएगी? राहुल गांधी मौखिक या लिखित रूप से माफी मांगे, क्योंकि मंच बहुत बड़ा था और तमाम लोगों ने वो बातें सुनी है जिसमें वो उपहास उड़ा रहे हैं आरएसएस से लेकर प्रधानमंत्री मेलानी का।
7: बिल्कुल नेहा, देखिए जहां तक प्रधानमंत्री और उनके विदेश नीति के मजाक उड़ाने की बात थी, तो संभवतः वहां बात राजनीतिक लड़ाई तक रुक जाती, लेकिन जब प्रधानमंत्री दूसरे मुल्क की प्रधानमंत्री इटालियन प्राइम मिनिस्टर मेलोनी के बारे में शब्द कहे गए, तो उसे अब बीजेपी सेक्सिस्ट रिमार्क यानी कि महिला विरोधी रिमार्क के तौर पर पुष्टि कर रही है। और कई सारे सेक्शन में अगर आप सोशल

0: एक्टिविस्ट भी देखेंगे, कई सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी इस बात का जिक्र हो रहा है। जो आमतौर पे जो लिबरल इकोसिस्टम है उसका हिस्सा होता है, वो भी संदीप दीक्षित के इस बयान को बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहा है। तो बीजेपी के लिए मुफीद समय है कि इस तरह से अटैक कर सकते हैं वो कांग्रेस पार्टी पर, राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष है लोकसभा में, और इसके साथ साथ संदीप दीक्षित पे जिन्होंने वो बयान दिया जिसे हंसकर राहुल गांधी ने उसपे अपनी प्रतिक्रिया दी थी। तो कुल मिलाकर एक तरफ
1: से सियासी तूफान तो बिल्कुल आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड के चमोली की, जहां पर बेहद खराब मौसम के बीच पीपलकोटी पहुंचे मुख्यमंत्री धामी। मुख्यमंत्री धामी टनल में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का मुआयना उन्होंने किया। सीएम धामी ने कहा है कि अभी 3 लोग लापता हैं, उन्हें तलाश करने की कोशिश की जा रही है। सीएम धामी ने कहा है कि उन्होंने झारखंड और छत्तीसगढ़ के सीएम से बात भी की है। चमोली के पीपलकोटी सुरंग हादसे को लेकर एक बड़ी खबर, मुख्यमंत्री धामी वहां पर पहुंचे, हालात का जायजा उन्होंने लिया और उन्होंने ये भी कहा है कि छत्तीसगढ़ के सीएम से उन्होंने इसको लेकर बातचीत भी की।
2: जो यहां पर घटना हुई है उसके कारण से जो कुल 22 लोग, ऐसा अनुमान यहाँ पर बताया गया कि 22 लोग कुल काम कर रहे थे, उसमें से 3 लोगों को छोड़ के बाकी सभी लोग रेस्क्यू हो गए हैं और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको यहाँ एडमिट किया है अस्पताल में, और कुछ लोगों के लिए बेस में भी बात की गई है कि बेस में अगर जिनको भेजना है बेस में भेजा जाएगा, और एम्स ऋषिकेश में भी सारी व्यवस्थाएँ वहाँ की गई हैं। यहाँ पर बचाव के लिए और खोजबीन के लिए सभी प्रकार की एजेंसियाँ यहाँ पर हैं, NDRF भी है, STRF भी है, ITBP के लोग भी हैं, उत्तराखंड के जो हमारा आपदा प्रबंधन डिपार्टमेंट है वो सारा का सारा यहाँ पर काम कर रहा है, अन्य एजेंसियाँ, जिला प्रशासन लगातार काम कर रहा है।
3: इसी के साथ यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ और आज हंगामे और गतिरोध के बीच खत्म हो गया। पूरे सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच तकरार इस कदर हावी रही कि कई अहम मुद्दों पर सदन में चर्चा तक नहीं हो सकी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मानसून सत्र के हंगामे में खत्म होने के पीछे विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया। विपक्ष कहता है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।
1: ऑपोजिशन सरकार से जवाब मांगता है और सरकार जवाब देना ही होता है पार्लियामेंट के अंदर में, तो पहले बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और ओपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं, तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
2: जी, प्राइम मिनिस्टर कदम नहीं रख रहे, होम मिनिस्टर कदम नहीं रख रहे, और मैं अंदर था, मैं सुन रहा था। सुनने के लिए तुम्हारे रूम में बैठ के सुनने के लिए आते हो, अरे या हाउस में बैठ के सुनो, उसके बाद ये सब ऐसे हैं कि दे वांट टू डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी एंड दे वांट टू मींस डिमोरलाइज पार्लियामेंट मेंबर्स, एंड वो ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट हमारे सामने कुछ नहीं, सब कुछ हम हैं।
0: कांग्रेस का आरोप है कि पूरे मानसून सत्र के दौरान सरकार ने विपक्ष की बात नहीं सुनी। विपक्ष लगातार गृह मंत्री के बयान की मांग करता रहा। FCRA बिल वापस लेने की मांग की गई, लेकिन जवाब देना तो दूर। विपक्ष कहता है कि गृह मंत्री अमित शाह सत्र के दौरान सदन तक में नहीं आए। वहीं सत्र के आखिरी दौर में सरकार ने विपक्ष को चर्चा का प्रस्ताव दिया था। अमित शाह ने कहा था कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है और वो विपक्ष के हर सवाल का जवाब देंगे, लेकिन राहुल गांधी ने इस प्रस्ताव को खारिज करते हुए कहा कि विपक्ष को लेक्चर नहीं, सीधा जवाब चाहिए। अब देखिए मानसून सत्र में संसद का रिपोर्ट कार्ड क्या है। संसद का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ। आखिरी दिन लोकसभा की कार्रवाई सिर्फ एक मिनट चली, जबकि राज्यसभा करीब एक घंटे। वहीं राज्यसभा में आखिरी दिन MMDR संशोधन बिल पास हुआ। हैरान करने वाली बात, लोकसभा में 114 घंटे में से 96 घंटे काम नहीं हुआ। मानसून सत्र में लोकसभा की 19 बैठक हुई, इस हिसाब से 19 बैठक में करीब 114 घंटे कार्रवाई होनी थी, लेकिन ये करीब 17 घंटे 30 मिनट ही चली, यानी करीब 96 घंटे 30 मिनट कम काम हुआ है। वही मानसून सत्र में राज्यसभा में 114 घंटे कार्रवाई होनी थी, लेकिन लगभग 37 घंटे 24 मिनट ही काम हुआ, यानी करीब 76 घंटे 36 मिनट कम कार्रवाई हुई। अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें तो 2026 के मानसून सत्र में कुल 12 नए बिल पेश किए गए। इनमें 10 लोकसभा और 2 राज्यसभा में पेश हुए। लोकसभा में आए बिल टैक्स, बैंकिंग, खनन, ट्रिब्यूनल, जन्म मृत्यु पंजीकरण, परीक्षा में नकल रोकने, केरल का नाम बदलने और सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या जैसे मुद्दों से जुड़े। माइंस एंड मिनरल्स संशोधन बिल के राज्यसभा से पास होने के बाद अब 12 में से 11 बिल दोनों सदनों से पास हो चुके हैं। संसद का पूरा मानसून सत्र पेपर लीक के खिलाफ छात्रों के आंदोलन के इर्द गिर्द रहा है, लेकिन इस सियासी शोर में जनता के कई जरूरी मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई, जिससे जनता की कमाई के करोड़ों रुपए बह गए। इसीलिए हम कह रहे हैं, न बहस न चर्चा, करोड़ों का खर्चा। आज तक ब्यूरो।

लोकसभा में जितना टाइम आवंटित किया गया है टोटल टाइम एलोकेशन के हिसाब से सिर्फ 19% हमने प्रोडक्टिविटी के दृष्टि से 19% सक्सेस प्राप्त किया है। राज्यसभा में 39%, राज्यसभा में ऑपोजिशन पार्टी हंगामा करके कभी कभी वॉकआउट भी करते थे तो बाकी मेजोरिटी पार्टीज एनडीए के और कुछ ऑपोजिशन पार्टी के एमपीस ने डिबेट डिस्कशन में हिस्सा लिया। तो राज्यसभा का टोटल प्रोडक्टिविटी मॉनसून सेशन का 39%, लोकसभा का 19%। एक बिल सिर्फ चर्चा हो पाई लोकसभा में जो प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट जो बना है, ये लोकसभा में भी डिस्कशन हुए थे और राज्यसभा में भी हुए हैं। इसके अलावा लोकसभा में कोई अच्छा चर्चा नहीं हुआ, बिल पास हुए हैं, 11 बिल्स पास किए हैं। इसलिए मैंने कहा टोटल 12 बिल्स पास किए हैं इन टोटल, और चर्चा के दृष्टि से हम खुश नहीं है क्योंकि ऑपोजिशन ने ठीक से चर्चा करने नहीं दिया, विशेष करके लोकसभा में

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

दर्दनाक सुरंग हादसे के बाद उत्तराखंड के चमोली में जिंदगी बचाने की जंग। हाइड्रो प्रोजेक्ट की टनल में फंसे 22 लोगों में से अब तक 7 की मौत, 14 बचाए गए। टनल के अंदर जाकर सीएम धामी ने लिया रेस्क्यू का जायजा। कांग्रेस के मन से पीएम और गृहमंत्री का मजाक उड़ाने पर राहुल गांधी के खिलाफ आग बबूला हुई बीजेपी, कहा यह संस्कारहीन, अभद्र और अश्लील भाषा। नड्डा बोले देश का दुर्भाग्य है कि ऐसा नेता विपक्ष को मिला। यूएई से दबोच कर भारत लाया गया ड्रग तस्करी का बड़ा सरगना वीरेंद्र सिंह वासोया। गृहमंत्री का पोस्ट, नशे के माफिया कहीं भी हो खींच कर लाएंगे। ड्रग्स तस्करी के खिलाफ मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी।

पीएम मोदी ने बंटवारे में जान गंवाने वाले लोगों को किया याद, लिखा परिवार उजड़ गए, अपने को खो दिया। योगी ने कहा, आज भी विभाजन की कीमत चुका रहा है देश। जयपुर के स्कूल की कैंटीन से पेटीज खाने के बाद गई छात्र की जान, सीसीटीवी में बेहोश दिखा 12वीं क्लास का प्रिंस। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार, मां का आरोप, वक्त पर इलाज होता तो बच जाता बेटा।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और 12 बजे 12 रिपोर्टर हैं। सबसे पहले रिपोर्ट यूपी के सीएम योगी के कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर हमले की। विभाजन विभीषिका दिवस के मौके पर सीएम योगी ने कहा कि पड़ोसी देशों से पीड़ित हिंदुओं सिखों बौद्धों को भारत में बसाने की बात का कांग्रेस और समाजवादी पार्टी विरोध कर रही थी। उन्होंने कहा कि यही लोग 1947 के विभाजन और कत्लेआम के वास्तविक दोषी हैं। अगर उस समय मोदी जैसा प्रधानमंत्री होता तो भारत का कोई बाल बाका नहीं कर पाता। लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा प्रधानमंत्री होता तो भारत की एकता को कोई खंडित नहीं कर पाता।
1: भारत की एकता को कोई खंडित नहीं कर पाता, लेकिन इन कांग्रेसियों की बुजदली का दुष्परिणाम क्या था कि देश को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। और सीए के दौरान भी इनका एक चरित्र आप सबने देखा होगा।
0: और इससे पहले विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मौन पदयात्रा का आयोजन किया गया। लखनऊ में जीपीओ स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा से लोक भवन तक यह पदयात्रा निकाली गई।
2: उत्तर प्रदेश में विभाजन की विभीषिका को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने हजरतगंज के जीपीओ से लोक भवन तक ये पैदल मार्च किया। इसमें उनको श्रद्धांजलि दी गई क्योंकि ये त्रासदी के रूप में मनाया जा रहा है। जब विस्थापित हुए थे परिवार, विभाजन हुआ था देश का, और कहीं ना कहीं ऐसे परिवारों को काफी ज्यादा परेशानी उठानी पड़ी थी। कई परिवारों को श्रद्धांजलि दी है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। आज प्रोग्राम लोक भवन में आयोजित किया है जिसमें उन विस्थापित परिवारों के साथ सहायता करेंगे, उनकी मदद करेंगे, साथ ही साथ उनके अनुभव भी साझा करेंगे। विभाजन की जिस तरीके से हुआ था उसको लेकर एक श्रद्धांजलि के रूप में, पदयात्रा के रूप में चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ खुद सड़क पर पैदल चलते हुए नजर आए और कहीं ना कहीं इसको एक श्रद्धांजलि के रूप में अर्पित किया।
0: तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से कांग्रेस पर हमला किया, तो उधर कल दिल्ली में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर और गृह मंत्री पर सीधा निशाना साधा। राहुल गांधी के निशाने पर प्रधानमंत्री की विदेश नीति रही। पीएम मोदी के विदेशी नेताओं से गले मिलने की तस्वीरों पर राहुल ने तंज कसा और बात सिर्फ बयान तक नहीं रुकी। मंच पर संदीप दीक्षित को गले लगाकर राहुल ने प्रधानमंत्री पर भी कटाक्ष किया और राहुल के इस बयान को बीजेपी अभद्र और अश्लील बता रही है।
3: पीएम मोदी की हक डिप्लोमेसी का राहुल गांधी ने मजाक उड़ाया तो बीजेपी ने राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी के नेताओं ने उन्हें संस्कारहीन, अभद्र, अश्लील तक कह डाला है। अब देखना यह है कि बीजेपी क्या इसे सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रखेगी या फिर इस लड़ाई को कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ सड़क तक उतारेगी। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: लेकिन राहुल गांधी ने बोला क्या जिसको लेकर इतना हंगामा है? अगर आपके मन में ये चल रहा है तो आपको राहुल गांधी का वो बयान दिखाते हैं जिस पर जमकर बवाल मचा हुआ है।
4: इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया, अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस। बट पता नहीं कहां से घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी का मतलब नेताओं से गले लगना।
0: बीजेपी राहुल के इन बयानों पर भड़की हुई है। सांसद बासुरी स्वराज ने इसे संस्कारहीन बताया, गरिमाहीन बताया और अभद्र बताया।
5: आज जिस प्रकार की संस्कारहीन, गरिमाहीन, अश्लील और अभद्र बयान राहुल गांधी ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर दिया है, उसे वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं, एक फेल्ड स्टैंड अप कॉमेडियन लग रहे थे। ही वॉज रिजोर्टिंग टू चीप इनवेंडर्स एंड ही वॉज इंडल्जिंग इन लॉकर रूम टॉक। इस देश को एक सकारात्मक विपक्ष की जरूरत है। लोकतंत्र में नेता प्रतिपक्ष की बहुत अहम भूमिका होती है एंड दिस कंट्री डिजर्व्स बेटर देन अ 56 ईयर ओल्ड मैन लाइक राहुल गांधी बिहेविंग इन अ जुवेनाइल मैनर।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी राहुल गांधी के बयान पर तीखा हमला बोला है। एक्सपर्टों ने लिखा कि ऐसा विपक्ष का नेता देखना ही बाकी रह गया था। यह देश के लोकतंत्र का दुर्भाग्य है। कांग्रेस के लिए भी इससे दुख का क्या विषय होगा कि उन्हें राहुल गांधी को अपना नेता मानना पड़ रहा है। ये जेपी नड्डा की तरफ से एक्स पर लिखा गया है। और 12 बजे 12 रिपोर्टर में आप जो अगली रिपोर्ट है वो रांची से है। रांची में छात्रों के आंदोलन का आज 21वां दिन है और आंदोलन किस दिशा में जा रहा है ये आपको बता रहे हैं हमारे संवाददाता शशि भूषण रांची से।
6: जेपीएससी और जेएससीसी रिफॉर्म को लेकर के छात्रों का आंदोलन रांची में 21वें दिन भी जारी है। 10 अगस्त को छात्रों ने विधानसभा का घेराव किया था और उसके ठीक एक दिन पहले यानी 9 अगस्त को सरकार से अंतिम वार्ता हुई थी। इस वार्ता में सरकार ने उन दो प्रमुख मांगों को नहीं माना जिसमें सीबीआई जांच और जेएससीसी की नियुक्तियों को रद्द करने पर छात्र मांग कर रहे थे, लेकिन अब छात्रों ने नया ऐलान किया है। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन जो रिफॉर्म मंच है उसके बैनर तले तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। मंच के लोगों ने कहा है कि इस तिरंगा यात्रा का मकसद छात्रों की एकजुटता को दिखाना है। वहीं सरकार से लगातार जो अपनी प्रमुख दो मांगे हैं उसको मानने की मांग जो छात्र हैं वो कर रहे हैं।
0: और अब आपको बताते हैं उत्तराखंड सुरंग हादसे के बारे में। चमोली में निर्माणाधीन हाइड्रो प्रोजेक्ट की टनल फंस गई। दुखद खबर यह कि 7 लोगों की मौत हो गई, 14 लोग घायल हैं और सुरंग के अंदर अभी भी लोग फंसे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है और यह बताया जा रहा है कि करीबन 3 लोग हैं जो अंदर फंसे हैं।
7: चमोली के पीपल कोटी के क्षेत्र में जो विष्णुघाट टीएसडीसी टनल है 3 किलोमीटर लंबी, वहां पर शाम को एक दुखद हादसा हो गया जिसमें कि कई मजदूर फंस गए और ताजा जानकारी के मुताबिक 22 लोगों के फंसने की जानकारी आई थी। इससे पहले 28 लोगों की जानकारी आई थी लेकिन 6 लोग जो थे वो रेस्क्यूअर्स थे वो अलग छट गए थे, लेकिन 22 लोगों के फंसे होने की जानकारी थी जिसमें अभी 3 मिसिंग चल रहे हैं जो कि ताजा अपडेट है। इससे पहले 1 मिसिंग की बात कही जा रही थी। हमने आपदा प्रबंधन मंत्री मदन कौशिक से भी बातचीत की है, उन्होंने साफ कहा है कि 3 लोग मिसिंग हैं और जो पहले मिसिंग बताए जा रहे थे उनमें 2 का आंकड़ा बढ़ा है। 7 लोगों की मौत हुई है, ज्यादातर झारखंड छत्तीसगढ़ और बिहार के रहने वाले लोग हैं और उनका कहना है कि घायलों की और मृतकों की सूची भी जारी की गई है। और इस मामले में सबसे बड़ा अपडेट यह है कि इस मामले को लेकर जांच भी होगी क्योंकि लगातार सवाल उठे हैं कि जियोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में जिस तरह से बड़े कंस्ट्रक्शंस होते हैं उसमें वर्कर्स की सेफ्टी का ध्यान रखा नहीं जाता है और इसी तरह से कई हादसे भी देखने को मिलते हैं। इसी वजह से मंत्री ने आज तक को भी बताया है, मीडिया को बताया है कि इस मामले में जांच भी होगी और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही ये ऑपरेशन पूरा कर लिया जाएगा, जो 3 मिसिंग हैं उनको भी ढूंढ लिया जाएगा।
0: और अब बात करते हैं सुखबीर सिंह बादल पर हमले की। कल नांदेड़ में, महाराष्ट्र के नांदेड़ में अकाली नेता सुखबीर सिंह बादल पर हमला हुआ था, हाथ पर हमला हुआ था। अब महाराष्ट्र पुलिस ने इसकी जांच पड़ताल तेज कर दी है और आरोपित को तो कल ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन अब नांदेड़ पुलिस ने उसके ठिकानों पर छापे मारे हैं और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इस हमले का उद्देश्य क्या था।
8: अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल नांदेड़ दौरे पर थे, वो मुगट इलाके के माता साहिब गुरुद्वारा दर्शन करने पहुंचे थे और वहां से जब निकल रहे थे तब एक निहंग ने उन पर एक कृपाण से हमला कर दिया। आपको बता दें इस निहंग की पहचान जसपाल सिंह ऐदल इस नाम से हुई है और ये पुणे का रहने वाला है, पुणे के सोलापुर बाजार का रहने वाला है। आपको बता दें कि नांदेड़ पुलिस ने आज पुणे के सोलापुर बाजार इलाके में भी छापेमारी की है, सर्च ऑपरेशन चलाया है ये पता लगाने के लिए कि असल मोटिव क्या है, क्या वजह थी कि जसपाल सिंह ऐदल ने सुखबीर सिंह बादल पर कृपाण से हमला किया। आपको बताएं कि जसपाल सिंह ऐदल ने जब उससे प्राथमिक पूछताछ की गई तो उसने प्राथमिक पूछताछ में ये भी कहा था कि पंजाब में जो नशे की हालत है और जो उसके वजह से वो परेशान था और उस वजह से उसने सुखबीर सिंह बादल पर हमला किया, पर अभी भी पुलिस उसका असली मोटिव असली वजह तलाश रही है कि क्यों ये हमला किया गया।
0: और अब जो खबर है वो है अम्बाला से, जहां पंजोखरा साहिब विवाद मामले में जबरदस्त हिंसा हुई, बवाल हुआ। गुरुवार को वहां गुरसिमरन सिंह मंड के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर सिख संगत ने बड़ी संख्या में जो हाईवे था उस पर प्रदर्शन किया, उसको जाम कर दिया। और तभी उनकी पुलिस वालों से झड़प होती है, और जब झड़प हुई तो वो देखते देखते बवाल में बदल गई।
9: अम्बाला में कल रात को हरियाणा पुलिस और सिख ऑर्गेनाइजेशन के बीच में क्लैशेस हुए। ये क्लैशेस जो है इसी जगह पे हुए जहां हम खड़े हैं, जो कि अमृतसर दिल्ली हाईवे है, अम्बाला सिटी है। यहां पे क्लैशेस हुए क्योंकि जो सिख ऑर्गेनाइजेशन थी वो डिमांड कर रहे थे कि गुरसिमरन मंड, जो कि ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट चलाते हैं, लुधियाना के रहने वाले हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और उनको अरेस्ट किया जाए। इसके अलावा वो मांग कर रहे थे कि 7 अगस्त को जो इंसिडेंट हुआ था, जिसमें पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, जहां गुरसिमरन मंड के ऊपर अटैक हुआ था, क्योंकि गुरसिमरन मंड के ऊपर ये आरोप था कि पंजोकरा साहब गुरुद्वारा में 7 अगस्त को गुरुद्वारा के बाहर उन्होंने कुछ लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, जिससे उनको इंजरीज हुई। लेकिन उस मामले में पुलिस ने सिख समुदाय के कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था। तो कल जो सिख ऑर्गेनाइजेशन थी वो बड़ी गिनती में यहां इकट्ठी हुई, उन्होंने यहां पर धरना लगाया, हाईवे ब्लॉक किया और डिमांड की कि जो लोगों को पकड़ा गया था उनको रिलीज किया जाए और मंड के ऊपर एफआईआर की जाए। हालांकि हरियाणा पुलिस ने मंड के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली, लेकिन उन लोगों को रिलीज नहीं किया, वो जेल में थे। इसके बीच में जो है क्लैश बढ़ गया और हरियाणा पुलिस ने फिर हाईवे वैकेट कराने के लिए लाठी चार्ज किया, टीयर गैस शेल यूज किए और दूसरी तरफ से भी इस तरह के एग्रेसिव पोस्टर्स आए, जिसमें जो है पुलिसकर्मी भी, 6 से 7 पुलिसकर्मी इंजर्ड हुए और डीएसपी को भी ग्रीवियस इंजरी आई है।
0: और 12 बजे 12 रिपोर्टर में बात करते हैं ड्रग सिंडिकेट पर शिकंजे की। भारतीय एजेंसियों ने बड़ा एक्शन लिया है ड्रग सिंडिकेट पर, और इसी कड़ी में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को बहुत बड़ी सफलता मिली। ड्रग तस्कर वीरेंद्र सिंह बसोया यूएई से भारत वापस लाया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने इस कार्रवाई को नशे के खिलाफ केंद्र सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति की बड़ी उपलब्धि बताया है। 13,000 करोड़ की ड्रग्स बरामदगी केस में आरोपी है बसोया, जिसको लाया गया है। और अब हैदराबाद के नेशनल लॉ स्टडी एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी या नलसार की बात करेंगे। विरोध के बाद बार काउंसिल ने अब यूटर्न ले लिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने विश्वविद्यालय के 2026 बैच के लॉ ग्रेजुएट्स के वकील बनने पर अब रोक लगा दी थी। पूरी खबर आपको बता रहे हैं हमारे संवाददाता संजय शर्मा।
10: नेशनल अकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च यानी नालसर यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ उनको लेकर जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने आदेश जारी किया था कि वहां से पास आउट छात्रों का, जो आधुनिक अभी हाल में इसी सत्र में पास आउट हुए हैं, उनका किसी भी बार काउंसिल में यानी किसी भी राज्य की बार काउंसिल में उनका रजिस्ट्रेशन ना किया जाए, इसे लेकर पूरे देश में बार काउंसिल ऑफ इंडिया की किरकिरी हुई और लोगों ने इसकी आलोचना की। लगातार होती आलोचना को देखते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपनी आपातकालीन मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में ये बताया गया कि जिन लोगों ने प्रधानमंत्री का विरोध किया था उनसे इन छात्रों का लेना देना नहीं है, छात्र निर्दोष हैं। पता लगाया गया है, जिसमें पता चला कि वो कोई बाहर के लोग थे, उसमें कुछ शिक्षक थे जिन लोगों ने प्रधानमंत्री का विरोध किया। लेकिन प्रधानमंत्री का विरोध करना आखिर ऐसी कोई घटना नहीं है जिससे कि छात्रों को इसकी सजा दी जाए, और कुछ घंटों के अंदर ही राष्ट्रव्यापी विरोध, आलोचनाओं और तमाम चीजों को, आरोपों को देखते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपना आदेश वापस ले लिया।
0: और अब एक ऐसी खबर जो हर माता पिता को आगाह करने वाली है, क्या पेटीज खाने से किसी बच्चे की जान जा सकती है। जयपुर के एक स्कूल में 12वीं के छात्र की मौत का मामला सामने आने के बाद यह गंभीर सवाल उठे हैं, और यह बताया जा रहा है कि पेटीज खाने के बाद तबीयत बिगड़ने से उसकी जान चली गई। परिजनों का आरोप है कि स्कूल स्टाफ की लापरवाही की वजह से वो बच नहीं पाया। शरद कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शरद, इतना सा सवाल सब जानना चाहते हैं, कैसे हुई इस छात्र की मौत?
11: ये बड़ा सवाल है और यही यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से प्रदर्शन हुआ है। जो यहाँ पर बच्चे हैं स्कूल के वो सब यहाँ पर आए हैं जानने के लिए, अभिभावक हैं किस तरह से ये मौत हुई, सब लोग ये जानना चाहते हैं मौत कैसे हुई है।
12: ये अन्याय हुआ है और इनको सजा मिलनी चाहिए।
11: यहीं पढ़ते हो आप लोग?
13: यस सर।
11: कैसे क्या हुआ था?
13: स्कूल वालों की लापरवाही की वजह से आज हमारा दोस्त नहीं है। वो बंदे के गले में पेटी चटक गई थी उसके। स्कूल वालों ने डॉक्टर के पास नहीं लेके गए, बोले घर वालों कार लेके आओ। इनके सबके पास में कार है, अपने पर्सनल साधन से आते ही है, उसके पास भी लेके नहीं गए।
11: आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है और किस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है, लोग अपने हाथों में तस्वीर लिए हुए हैं यहाँ पर हाथों में, और
14: अभी चल रहा है ना,
15: कोई मांग नहीं है। यही मांग है कि मेरे बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए, हर उस माँ के बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए जिसका बेटा बेटी यहाँ पढ़ रहे हैं। आज मेरा प्रिंस है, कल कोई और प्रिंस नहीं हो। मेरा बेटा बेमौत इनके सामने मर गया।
11: कितने बजे बताया था
15: इन्होंने? बताया मेरा हस्बैंड के पास फोन आया 11:14 में, 1:35 पर लंच टाइम होता है, उसी वक्त मेरे बच्चे ने पेटीज खाई थी, और मेरे बच्चे ने वहाँ पेटीज खाई थी, पेटीज यहाँ जल्दी जल्दी में खाई, बोले डर के कि सर मारते हैं या अगर लंच थोड़ा सा भी लेट कर देंगे तो सर पिटाई करते हैं, बता रहा मेरे को, बहुत बार बोला भी था अभी सर आएंगे पिटाई करेंगे, मेरे बच्चे ने दो घासे ली।
0: देखिए, एक माँ की तकलीफ यहां पर साफ देखी जा सकती है, अपना बच्चा खो दिया है, सुबह जिसको तैयार करके बस्ता देकर स्कूल भेजा था, वहां पेटीज खाने के बाद
15: उसकी टीचर्स ने कहा मैडम आप घबराओ मत, आपका बच्चा ठीक है, आप लेके जाओ डॉक्टर के, मेरे बच्चा तो था ही नहीं भैया, मैं इतनी तो पढ़ी लिखी हूँ, मैं जानती हूँ मेरे बच्चा, जीभ बाहर आ गई, जीभ नीली पड़ के बाहर आ गई, नीला पड़ गया चेहरा, हाथ ठंडे हो गए, मैं वही समझ गई मेरे बच्चे के साथ में कुछ गलत हो रहा है यहाँ पे, और ये रहा हॉस्पिटल।
16: ये दो बच्चों के साथ ऐसा हुआ, एक दोनों के नाम प्रिंस है, एक प्रिंस राठौड़ है, एक प्रिंस
15: स्कूल में रखा था बच्चे को, इन्होंने 48 मिनट तक स्कूल में रखा, और डॉक्टर ने बोला आधे घंटे लेट हो गए वरना आपका बच्चा बच जाता, ये छुप यहाँ मर गया था ना मेरा बच्चा, यहाँ मर गया था तो वो छुपेगा नहीं, वो और सोफे पे वो उसको सुला करके सारे खड़े हो गए उसके आगे, ताकि ये बच्चा यहाँ सो रहा है, सोफा भी है पीछे बच्चे की, छोड़ो सोफा भी है, पता नहीं लगना चाहिए।
11: तो 48 मिनट आपको कितने मिनट पहले बुलाया था?
16: अभी आपकी प्रशासन से क्या मांग है?
15: मेरे को इंसाफ चाहिए, स्कूल बंद हो, गिरफ्तार करो इन सबको,
16: दो लोगों को पकड़ा गया है पुलिस के द्वारा,
15: सबको पकड़ो, वो मैडम उसके सामने मेरे बच्चे ने यू यू किया है, वो कहा है मैडम, वो जानते हैं वो बच्चे की माँ होगी ना, कि बच्चा सांस के लिए गुहार मांग रहे है, रो जीने की गुहार मांग रहे तुमसे, और तुम इग्नोर करके चले गए उसके सामने से।
16: बोल रही थी डायरेक्टर वहाँ मौजूद थे, उसके बावजूद भी बच्चे को हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया, 50 मीटर दूर हॉस्पिटल है।
15: हाँ, नहीं लेके गए वो हॉस्पिटल, गाड़ी दो खड़ी थी, इसमें दो गाड़ी खड़ी थी, मेरे को बोले कि मैडम गाड़ी कहाँ है आपकी, टू व्हीलर से मत आना, फोर व्हीलर से आना है, तो गाड़ी कहाँ है, फोर व्हीलर यहाँ मेरे कोई कर्जन है हमारे, उनकी मांग के लाई मैं, मेरे पास नहीं थी, वो यहाँ खड़ी थी वो, और बोले मैडम कहाँ खड़ी करी, मैंने कहा भैया वो गेट है ना एक आपके मेन गेट में, तो वही जानती हूँ, बोले मैं तो दूसरी वहाँ पे, हाँ होश मेरे खोरे साथ में, लेकिन मैंने कंट्रोल किया मेरे बच्चे के लिए, वहाँ पे मैंने आवाज उठाई, मैंने कहा 11:14
0: परिजनों का ये कहना है कि 48 मिनट बाद बताया गया, अगर पहले बताया होता तो सही वक्त पर इलाज मिल जाता, बच्चे की जान बच जाती। 12:12 रिपोर्टर में अगली रिपोर्ट दिल्ली से। कल 15 अगस्त है और इसे लेकर दिल्ली में जबरदस्त तैयारी इस वक्त की गई है। पीएम मोदी कल लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराएंगे।
17: 80वें स्वतंत्रता दिवस के उत्सव की तैयारी पूरी कर ली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लाल किले के प्राचीर से पहली बार वंदे मातरम के साथ ध्वजारोहण और पूरा उत्सव मनाया जाएगा। वंदे मातरम के 150 साल की यात्रा की थीम पर इस बार स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, और इसके साथ ही विकसित भारत में युवाओं की भूमिका को भी मनाया जा रहा है, और इस थीम पर बहुत सारे युवाओं को बुलाया गया है खास मेहमान के तौर पर। इन युवाओं को भारत के विकास में उनकी यात्रा के लिए, उनके योगदान के लिए प्रेरित भी किया जाएगा और सम्मानित भी किया जाएगा। पहली बार 150 साल की यात्रा पूरी करने पर वंदे मातरम के साथ स्वतंत्रता दिवस के उत्सव की शुरुआत होगी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ध्वजारोहण करेंगे भारत में बनी 21 तोपों की सलामी की गर्जना के साथ पूरा देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा।
0: यहां रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
18: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसें। इन एसोसिएशन विद
19: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
4: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
5: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बाय एकदम सॉलिड।

0: in association with
1: Cera Sanitary Wear. It's your moment of Cera. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
2: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर. ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: एयू
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: मैनकाइंड फार्मा, दिल से स्वदेशी, जान हिंदुस्तान।
1: In association with
2: Sera Sanitaryware, it's your moment of Sera. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

आइए चलते यूपी एक्सप्रेस वे पर। सीएम योगी की विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर मृतकों को श्रद्धांजलि, निकाली मौन पद यात्रा, अखंड भारत के निर्माण का दिया संदेश, बोले 1947 का विभाजन इतिहास का काला अध्याय। यूपी चुनाव 2027 को लेकर बीजेपी का मंथन, योगी की मजबूत पकड़, सरकार संगठन और विधायकों के बीच तालमेल पर फोकस, फीडबैक से तय होगी आगे की रणनीति। मायावती का हल्द्वानी मंच शुद्धिकरण पर हमला, जातिवादी तत्वों पर कार्रवाई की मांग, खड़गे के कार्यक्रम के बाद मंच के शुद्धिकरण को बताया निंदनीय। मिशन 2027 में बीएसपी का बदला अंदाज, बीजेपी की भी टीम वाली धारणा तोड़ने की रणनीति, मायावती आकाश आनंद, बेरोजगारी, पेपर लीक और आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी पर हमलावर। ब्राह्मण कार्ड पर बीएसपी का दाव, लेकिन कद्दावर नेताओं की लगातार छोड़ने से बड़ी मुश्किलें, अंटू मिश्रा के निष्कासन से झटका, 2027 से पहले ब्राह्मण वोट बैंक साधने की चुनौती। अंटू मिश्रा के निष्कासन पर मायावती की सफाई का, निजी स्वार्थ के लिए पार्टी छोड़ने वालों से नुकसान हुआ, ब्राह्मण समाज को भरोसा बरकरार है। बीजेपी प्रवक्ता आलोक अवस्थी का मायावती पर हमला, बोले 2027 में मायावती का खाता खोलना भी मुश्किल, ब्राह्मणों को जोड़ने की कोशिश होगी नाकाम। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत का बीजेपी पर हमला, बोले दलितों का लगातार अपमान किया जा रहा है, खड़गे के भाषण स्थल के शुद्धिकरण पर सवाल, कहा देशभर में कांग्रेस करेगी विरोध प्रदर्शन। यूपी में कांवड़ यात्रा ने बनाया नया रिकॉर्ड, 4,50,00,000 से ज्यादा कांवड़िए हुए शामिल, करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ के बावजूद बड़ी दुर्घटना नहीं, प्रशासन की मुस्तैदी से यात्रा सुरक्षित संपन्न। प्रयागराज में भव्य तिरंगा यात्रा, हजारों लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर दिखाया देशभक्ति का जज्बा, डिप्टी सीएम केशव मौर्य समेत बीजेपी नेता और कार्यकर्ता हुए शामिल, देशभक्ति के रंग में रंगा संगम शहर। यूपी के बांदा में आईजीआरएस रैंकिंग गिरने पर बड़ा एक्शन, एसडीएम समेत 11 अफसरों का जुलाई का वेतन रोका गया। सहारनपुर में पुलिस और गौकशों के बीच मुठभेड़ हुई, फायरिंग के बाद एक शख्स घायल हुआ, दो बदमाश गिरफ्तार हुए। यूपी के शाहजहांपुर में मामूली विवाद के बाद दो पक्षों में झड़प, एक युवक की पीट पीट कर हत्या, आरोपित फरार। वाराणसी में बुर्का पहनकर बाइक पर घूम रहा युवक निकला प्रैंक रील बनाने वाला, पुलिस के पूछताछ का वीडियो हो रहा है वायरल। जालौन में बक्से में छिपा मिला प्रेमी, पिटाई के बाद प्रेमी प्रेमिका का गांव में जुलूस, तालिबानी सजा का वीडियो वायरल। अयोध्या में सड़क हादसे के बाद भाग रही कार ने एक शख्स को मारी टक्कर, दर्दनाक सड़क हादसे में मचा हड़कंप। गोरखपुर में शख्स ने अपार्टमेंट की आठवीं मंजिल से कूदकर जान दी, 1.5 करोड़ की ठगी से था परेशान, आरोपित महिला और उसका पिता गिरफ्तार। यूपी के अलीगढ़ में हार्डवेयर कारोबारी से लाखों की लूट का खुलासा, 5 आरोपित गिरफ्तार, नगद के साथ हथियार भी जब्त। बांदा में चोरी करने पहुंचे चोरों को नहीं मिला कीमती सामान, गुस्से में घर की 25 नल की टोटियां उखाड़ ले गए चोर। रामपुर में पंचायत पर घर बना अखाड़ा, संवाद दिवस में भिड़े ग्रामीण, जमकर मारपीट, तोड़ी कुर्सियां, वीडियो वायरल। गोरखपुर हत्याकांड में वायरल वीडियो से फिर गरमाया मामला, क्रिकेट विवाद से शुरू हुई थी रंजिश, पुलिस पर वीडियो हटाने का दबाव बनाने का आरोप। ग्रेटर नोएडा की फर्नीचर मार्केट में एक दुकान में लगी भीषण आग, एक की मौत, तस्वीरें सामने आई। मुर्शिदाबाद में घर के बाहर खेल रही मासूम बच्चियों पर सनकी युवक ने किया अचानक जानलेवा हमला, एक बच्चे की मौत, 3 की हालत गंभीर। जयपुर में 12वीं के छात्र की संदिग्ध मौत, परिजनों ने स्कूल कैंटीन से पीटीज खाते बाद तबीयत बिगड़ने की कही बात। गुजरात के मोरबी में जर्जर पानी की टंकी तोड़ने के दौरान बड़ा हादसा हुआ, टंकी उल्टी दिशा में गिरकर एक घर और दुकान पर गिरी, हादसे में कोई हताहत नहीं।

0: लखनऊ में स्कूली छात्र आज सड़क पर आ गए। ये छात्र स्कूल में शिक्षकों की कमी से बहुत नाराज थे और छात्रों का यह आरोप है कि उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है। बुद्धेश्वर चौराहे के पास छात्रों ने स्कूल यूनिफॉर्म में अपना गुस्सा जाहिर किया। रोड जाम हो गई, तस्वीरें आपके सामने हैं। इस बीच कन्नौज जा रहे समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण बच्चों को समझाते दिखे और उन्हें स्कूल के अंदर ले गए। संतोष शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, आखिर क्या वजह थी कि छात्रों को स्कूल में पढ़ने की वजह जगह उनको सड़क पर आना पड़ा, बैठना पड़ा?
1: देखिए, ये पारा थाना क्षेत्र के बुद्धेश्वर चौराहे के जयनारायण स्कूल है, जयनारायण कॉलेज है, वहाँ पर ये इंटर कॉलेज है। वहाँ पर ये बच्चों का सीधे से ये कहना था कि वहाँ पे टीचर्स नहीं है और टीचर्स नहीं होने की वजह से उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है और वो बच्चे सड़क पर उतर आए हैं। आपको याद होगा कि सबसे पहले बच्चों के द्वारा बिजली पानी को लेकर के प्रदर्शन फतेहपुर में हुआ, फिर हमीरपुर में हुआ और अब लखनऊ में। तो एक नए तरीके का ट्रेंड है कि बच्चों की अगर बात नहीं मानी जा रही है तो वो सड़क पर आ रहे हैं, वो अपनी बात रखने के लिए अब मुखर हो रहे हैं। उसी कड़ी में ये बुद्धेश्वर चौराहे पर ये प्रदर्शन हुआ। हालांकि बुद्धेश्वर चौराहे पर ये प्रदर्शन बहुत देर नहीं चल पाया, 15 से 20 मिनट ही चला। उसी बीच में कन्नौज जा रहे उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने जब जाम में वो भी फंसे तो उन्होंने बच्चों से बात की, स्कूल के अंदर ले गए, उनसे संवाद किया और तमाम जो बच्चों को एक तरीके से भरोसा जताया। लेकिन ये बच्चे सड़क पर उतर आए सिर्फ इस बात पर कि स्कूल में टीचर ही नहीं है, तो ये पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है कि वहाँ पर टीचर्स नहीं हैं और बच्चों को सड़क पर उतरना पड़ा कि हमारी पढ़ाई कराने वाले टीचर तो दे दो। तो ये तमाम मुद्दे थे।
0: शुक्रिया संतोष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए भी। और देखिए, इसी बीच जेंजी के बहाने सीएम योगी ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि जेंजी को भटकाने की साजिश हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से विपक्ष पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा गया कि जेंजी को भटकाने की साजिश हो रही है। लखनऊ में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर मौन पदयात्रा निकाली गई। सीएम योगी आदित्यनाथ इस पदयात्रा में शामिल हुए। मौन पदयात्रा के जरिए विभाजन के दौरान जान गंवाने वाले और विस्थापन की पीड़ा झेलने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर सीएम योगी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि सत्ता के लिए सनातन राष्ट्र के टुकड़े किए गए थे।
2: जब करोड़ों हिंदुओं को अपने ही मातृभूमि से, अपनी ही जन्मभूमि से विस्थापित होना पड़ा था और लाखों की संख्या में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैनी, इनका कत्लेआम हुआ। किसी भी स्तर पर कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई इस पीड़ा के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने वाला नहीं। सुनने और संवेदना की बात तो दूर, अपनी स्वयं की सत्ता प्राप्त होने की लिप्सा इस हद तक एक सनातन राष्ट्र को विभाजन की ओर धकेल करके उसके टुकड़े कर दिए गए। भारत की एकता को कोई खंडित नहीं कर पाता, लेकिन इन कांग्रेसियों की बुजदली का दुष्परिणाम क्या था कि देश को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। और सीए के दौरान भी इनका एक चरित्र आप सबने देखा होगा।
0: और दो दिन पहले समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव ने रामपुर जिला जेल में आजम खान से मुलाकात की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और आजम खान पर जुल्म होने की बात उन्होंने कही। अब सीएम योगी ने आजम खान के बहाने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधा। जौहर विश्वविद्यालय के बहाने
2: करिए ना, मोहम्मदाबाद के नवाब की पूरी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए कांग्रेसियों ने एड़ी चोटी लगा ली, एड़ी चोटी लगा ली कि किसी प्रकार से वह प्रॉपर्टी बचे, जबकि मुस्लिम लीग का ट्रेजरर था वो व्यक्ति। देश की आजादी के खिलाफ और भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने वाले व्यक्ति को समाजवादी पार्टी आज पैरोकार बनती है कि हम आएंगे तो उसको गृह मंत्री बनाएंगे। यानी ये तो जानते हैं कि उसको नहीं आना है, लेकिन इनका शर्मनाक, इनके सोच को देखो, यानी ये फिर दंगा करवाना चाहते हैं। बेटी के लिए इनका किस प्रकार का व्यवहार रहता है, कैसे मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के दंगाइयों को लाकर के तत्कालीन सीएम के आवास में लाकर के उन्हें सम्मानित किया जाता है, और ऐसे व्यक्ति के समर्थन में लोग इस प्रकार की दलीलें देते हैं।
0: वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक रैली हुई। हिंदुवादी संगठन ने रैली स्थल का शुद्धिकरण कराया, वहां हवन कराया। अब ये विवाद जबरदस्त सियासी तूल पकड़ चुका है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी इसे लेकर जमकर संग्राम छिड़ गया। आरोप दलित नेता के अपमान का है। कांग्रेस, एसपी, बीएसपी सभी के निशाने पर बीजेपी है, और इस मुद्दे के बहाने उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले दलितों के मुद्दे पर एक नई जंग छिड़ गई है।
3: उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली और फिर रैली स्थल का शुद्धिकरण अब नए सियासी रण की वजह बन गया है। पहले मुद्दा संसद में उठा, सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हुआ, अब इसका असर यूपी की सियासत तक भी पहुंच गया है। सूबे में बनते चुनावी माहौल के बीच विपक्ष को दलित नेता के अपमान के आरोप के बहाने बीजेपी पर हमले का बड़ा मौका मिल गया है। इस घटना का जिक्र कर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने सोशल मीडिया पर लिखा, उत्तराखंड के हल्द्वानी में हाल ही में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम के बाद उनके मंच का दलित होने की वजह से शुद्धिकरण किया गया। ये मामला अति निंदनीय और चिंतनीय है। वहाँ की सरकार बिना कोई देरी किए हुए जातिवादी एवं सामंती तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजे। मायावती के हमले से साफ है कि इस मुद्दे पर यूपी में दलित राजनीति जोर पकड़ती दिख रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले हर पार्टी दलित वोटरों को साधने के प्रयास में लगी है, और इसकी बड़ी वजह भी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में दलित करीब 22% है। सियासी तौर पर ये दो हिस्सों में बटा दिखता है। पहला हिस्सा जाटव वोटरों का है जो करीब 14% है, जबकि सूबे में गैर जाटव दलित वोटरों की आबादी तकरीबन 8% है। एक समय यूपी के दलित वोटों पर बीएसपी की पकड़ बेहद मजबूत थी, लेकिन चुनाव दर चुनाव बीएसपी कमजोर हुई। यही वजह है कि 2022 विधानसभा चुनाव में दलित वोट बटा नजर आया। बीते विधानसभा चुनाव में गैर जाटव दलितों की बड़ी संख्या बीजेपी के साथ गई, और तब कुछ हिस्सा समाजवादी के पाले में भी गया था। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में दलित वोटों के पैटर्न में बड़ा बदलाव दिखा। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को गैर जाटव दलित वोटों का बड़ा समर्थन मिला। यही वजह है कि विधानसभा चुनाव में सभी पार्टी दलित वोटों को साथ लाने के लिए दम लगा रही है, और ऐसे में खड़गे के रैली स्थल के शुद्धिकरण ने विपक्षी दलों को बड़ा मौका दे दिया है।
4: तो इस तरह के कृत्य करके वो समाज के अंदर विघटन डाल के किसी तरह से चाहते हैं राजनीतिक लाभ लेना, लेकिन हम इस मौके पे बीजेपी के लोगों से और उनके संगी साथी और नियत के लोगों से कहेंगे कि हम दलितों को, हम पिछड़ों को, आदिवासियों को, मुसलमानों को

0: अत्याचार अनाचार दुराचार कदाचार हो रहा, और अब तो हद हो गई। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के सबसे बड़े दलित नेताओं में से एक श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने जहां पर भाषण दिया था उस जगह का शुद्धिकरण भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हो रहा। ये एक दलित विरोधी मानसिकता की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी हो चाहे पुष्कर सिंह धामी हो, ये सरकारें शुद्ध दलित विरोधी मानसिकता की।
1: जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाया तो बीजेपी ने इसकी गंभीरता को समझते हुए इसकी निंदा की, साथ ही जांच और एक्शन की भी बात कही।
2: बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए।
3: क्योंकि खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग थे, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और मैं भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं। बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नेवर। लेकिन आपने कहा है, हम इसकी तहकीकात भी करेंगे।
1: हालांकि बीजेपी की ओर से भरोसे के बाद भी सियासत बढ़ती जा रही है।
4: ये इनकी जो एकदम मतलब ये जो मानसिकता है उसका प्रदर्शन है कि बीजेपी की विचारधारा क्या है, आरएसएस की विचारधारा क्या है। इसका खंडन होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को इसका खंडन करना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए।
1: इस बीच रामलीला मैदान का शुद्धिकरण कराने वाले श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास का बयान भी सामने आया है। न्यास के अध्यक्ष गिरीश पांडे ने आरोप लगाया कि कांग्रेस जाति के नाम पर सियासत के लिए झूठे आरोप लगा रही है। सियासत के बीच शुद्धिकरण वाले इस मुद्दे से जबरदस्त सियासी तूल पकड़ लिया है और इस संग्राम का असर सीधे यूपी की दलित राजनीति पर नजर आ रहा है। आज तक ब्यूरो।
5: ..2007 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 80 ब्राह्मणों को टिकट देकर 41 को जिताने वाली बीएसपी अब बिखराव से जूझ रही है। पार्टी की तैयारी फिर से ब्राह्मणों को साधने की है, लेकिन इसकी राह आसान बिल्कुल नहीं दिख रही है।
6: पार्टी जिंदाबाद, पवन कुमार माधव जी जिंदाबाद।
7: एक और यूपी चुनाव में बीएसपी की 2007 जैसी सामाजिक रणनीति पर चर्चा चल रही है। ब्राह्मण समाज के नेताओं को फिर पार्टी से जोड़ने की कोशिश हो रही है। वहीं दूसरी ओर ब्राह्मण नेता लगातार बीएसपी से दूर हो रहे हैं। कुछ नेता पार्टी छोड़ रहे हैं और कुछ कार्रवाई के चलते पार्टी से बाहर हो रहे हैं। यूपी में चुनावी तैयारियों के बीच ये बीएसपी प्रमुख मायावती की एक दिन पहले की पोस्ट है, जब उन्होंने पार्टी विरोधी गतिविधियों पर आरोप लगाते हुए पूर्व मंत्री अनंत कुमार मिश्रा को बीएसपी से बाहर कर दिया। ये पहला मौका नहीं है जबकि किसी बड़े ब्राह्मण नेता पर मायावती ने एक्शन लिया है या किसी बड़े नेता ने बीएसपी का साथ छोड़ा है। बीते एक दशक में कई ब्राह्मण नेता बीएसपी से दूर होते गए। मौजूदा यूपी सरकार में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ब्रजेश पाठक 2004 में बीएसपी में शामिल हुए और इसी साल सांसद भी बने। फिर साल 2016 में वो बीएसपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। पूर्व मंत्री नकुल दुबे भी 2022 में बीएसपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए। दिवंगत रामवीर उपाध्याय, रंगनाथ मिश्रा और विनय शंकर तिवारी जैसे नेता भी बीएसपी से दूर हो गए। अम्बेडकर नगर से बीएसपी सांसद और विधायक रहे राकेश पांडे और उनके बेटे रितेश पांडे ने पार्टी छोड़ दी। अब अनंत मिश्रा पर मायावती की ताजा कार्रवाई ब्राह्मण नेताओं के बीएसपी से दूर होने की अगली कड़ी है।
8: एक दौर था जब हाथी से जुड़ा हर ब्राह्मण चेहरा खुद को सियासी बुलंदी पर पाता था। 2007 में मायावती का वो सियासी सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला आज भी यूपी की सियासत में मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है। लेकिन साल बदला, वक्त बदला और बदले समीकरण, और बसपा की सियासी नर्सरी से कद्दावर ब्राह्मण नेताओं ने एक एक कर साथ छोड़ा। किसी ने साथ छोड़ा तो किसी को निष्कासन मिला। वजह चाहे कुछ हो, ब्रजेश पाठक से लेकर नकुल दुबे तक एक लंबी लिस्ट है। सवाल यह है कि मायावती एक बार फिर उसी फॉर्मूले को दोहराने जा रही हैं। 27 के चुनाव में मायावती ने ब्राह्मण चेहरों को

0: उम्मीदवार के तौर पर तवज्जो देना शुरू कर दिया है। अब देखना यह है कि क्या केवल उम्मीदवारों की घोषणा के साथ और सम्मेलनों में ब्राह्मणों की बात करने से ही बसपा एक बार फिर से सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला दोहरा पाएगी और चुनाव में कुछ नतीजे हासिल कर पाएगी, या फिर कद्दावर नेताओं का जाना बसपा से या निकाला जाना या कमी होना और सतीश चंद्र मिश्रा पर केवल जिम्मेदारी होना बसपा के लिए मुश्किल की घड़ी साबित होगा यह वक्त।
1: यार करेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: सर बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं हल्द्वानी में पब्लिक स्पीच में रामलीला मैदान में रामलीला स्टेज में भाषण किया और लाखों लोग वहां पर थे। उस वक्त मैंने किसी समाज का किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किया।
5: बीजेपी, क्योंकि खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग थे, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और मैं भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं। बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नेवर। लेकिन आपने कहा है, हम इसकी तहकीकात भी करेंगे।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं और बेहतर मौके की उम्मीद लगाए बैठे प्रोफेशनल्स के लिए राहत की खबर आई है। लंबे समय से सुस्ती झेल रहे व्हाइट कॉलर जॉब मार्केट में फिर से तेजी लौटती दिखाई दे रही है। खासकर टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े सेक्टर्स में कंपनियां तेजी से नई हायरिंग कर रही हैं। आंकड़ों के मुताबिक जुलाई में देश में व्हाइट कॉलर हायरिंग में सालाना आधार पर 5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बीते महीने जॉब स्पीक इंडेक्स बढ़कर 3,227 पर पहुंच गया, जो पिछले साल जुलाई में 3,074 था। इस दौरान AI और मशीन लर्निंग से जुड़े रोल्स में 33% की सबसे तेज ग्रोथ दर्ज की गई। वहीं IT और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से जुड़े पदों में 23% की बढ़ोतरी हुई, जबकि कुल IT और सॉफ्टवेयर सर्विसेज सेक्टर में हायरिंग 6% बढ़ी है। दरअसल बदलती टेक्नोलॉजी के साथ कंपनियों का फोकस ऐसे स्किल्स पर है जो भविष्य की जरूरतों को पूरा कर सकती हैं। यही वजह है कि AI, डेटा और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में प्रोफेशनल्स की मांग लगातार बढ़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इंश्योरेंस सेक्टर में हायरिंग 10%, रियल एस्टेट सेक्टर में 8%, IT और सॉफ्टवेयर सर्विसेज में 6% बढ़ी, लेकिन टेलीकॉम, बैंकिंग, फार्मा और एजुकेशन सेक्टर्स में भर्ती की रफ्तार धीमी रही। हालांकि टेक्नोलॉजी आधारित नौकरियों में आई इस तेजी ने जॉब मार्केट को नई ऊर्जा देने का काम किया है। दिलचस्प बात है कि इस रिकवरी का फायदा अनुभवी प्रोफेशनल्स के साथ फ्रेशर्स को भी मिल रहा है, जिनकी हायरिंग जुलाई में 6% बढ़ी है। वहीं कई शहरों में भी हायरिंग की रफ्तार तेज हुई है और बीते महीने कोलकाता में हायरिंग 17%, हैदराबाद में 16%, चेन्नई में 11% और बेंगलुरु में हायरिंग में 8% की ग्रोथ देखी गई। वहीं मुंबई और दिल्ली में हायरिंग का स्तर लगभग स्थिर रहा। उधर ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स यानी GCCS में भर्तियां 5% बढ़ी हैं। यानी कंपनियां अनुभवी टैलेंट के साथ फ्रेशर्स को भी अपने साथ जोड़ने पर जोर दे रही हैं। जुलाई के आंकड़े संकेत देते हैं कॉर्पोरेट भारत में भर्ती गतिविधियां धीरे धीरे मजबूत हो रही हैं। हालांकि सभी सेक्टर्स में एक जैसी तेजी नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी, AI और डिजिटल स्किल्स से जुड़े क्षेत्रों ने जॉब मार्केट की रफ्तार बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। आदित्य के राणा आज तक।

0: पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन होता है। इस प्रदर्शन का बड़ा असर होता है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री इस्तीफा देते हैं। फिर रांची में आंदोलन के शोले भड़कते हैं। छात्रों और नौजवानों की ताकत के आगे हेमंत सोरेन सरकार को झुकना पड़ता है।
1: सरकार ने छात्रों को आश्वस्त किया है कि इन परीक्षाओं को जांच करने का आश्वासन दिया है। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि जो सरकार ने निर्णय लिए हैं अध्यक्ष महोदय, रिफॉर्म्स का रद्द करने को लेकर और जांच को लेकर, बिल्कुल सरकार की मंशा स्पष्ट है और सरकार निरंतर अपने कदम आगे बढ़ा भी रही है।
0: और फिर राहुल गांधी प्रयागराज पहुंचते हैं और छात्रों से संवाद करते हैं।
2: डेटा आपका, यूथ पोटेंशियल आपका, मगर सिस्टम ने आपको चक्रव्यूह में फंसा रखा है। ये आप देखिए, आपको चक्रव्यूह में फंसा रखा है। आपके परिवारों से, आपके जेब से पैसा छीना जाता है, लाखों करोड़ रुपए लिए जाते हैं और फिर आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। आपको कहा जाता है कि हाँ, आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट मिल गया, बीए मिल गया, एमए मिल गया, एमएससी मिल गया, मगर इस सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं है आज हिंदुस्तान में।
0: ये तीन तस्वीरें बता रही हैं कि देश की राजनीति इस वक्त जेंजी यानी नौजवानों के इर्द गिर्द घूम रही है। कांग्रेस हो या बीजेपी, नौजवानों की ताकत के आगे सब नतमस्तक है। और ऐसे में जब यूपी की चुनावी परीक्षा नजदीक है तो नौजवानों पर सबकी निगाहें टिकी हैं। खबर है कि जेंजी को लेकर बीजेपी खास रणनीति बनाने में जुटी है। दिल्ली में अमित शाह और केशव प्रसाद मौर्य की अहम बैठक हुई है। आधे घंटे की बैठक में जेंजी पर विशेष फोकस रहा। नौजवानों के साथ साथ बीजेपी महिला वोटरों को साधने की भी कोशिश में है। यूपी सरकार बड़ी आर्थिक सहायता योजना लागू करने पर विचार कर रही है। प्रस्तावित योजना के तहत महिलाओं को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने पर विचार हो रहा है। 20,000 रुपए की पहली किस्त चुनाव से पहले दे दी जाएगी। बीजेपी की सरकार बनने के बाद 10,000 रुपए की 3 किस्तें देने का प्रस्ताव है। सरकार की प्राथमिकता में एससी, एसटी, बीपीएल और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाएं हैं। ऐसे परिवारों की महिलाओं को भी योजना में शामिल करने पर विचार हो रहा है, जिनकी सालाना आय 12 लाख रुपए तक है।
3: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

कांग्रेस के मन से पीएम का माहौल उड़ाने पर राहुल गांधी के खिलाफ आग बुलबुला हुई बीजेपी का ये संस्कारहीन अभद्र और अश्लील भाषा है। नड्डा बोले, देश का दुर्भाग्य है कि हमें ऐसा नेता विपक्ष मिला। विभाजन विभीषिका दिवस के बहाने सीएम योगी का विपक्ष पर हमला, कहा नौजवानों को भटकाने की कोशिश करने वालों ने ही 1947 में देश को बांटा। सीए पर बोले, यूपी में होती समाजवादी सरकार तो तय था दंगा। दर्दनाक सुरंग हादसे के बाद उत्तराखंड के चमोली में जिंदगी बचाने की जंग। हाइड्रो प्रोजेक्ट की टनल में फंसे 22 लोगों में अब तक 7 की मौत, 14 बचाए गए। टनल के अंदर जाकर सीएम धामी ने लिया रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा। यूएई से दबोचकर भारत लाया गया ड्रग तस्करी का बड़ा सरगना वीरेंद्र सिंह वसोया। गृह मंत्री का पोस्ट, नशे के माफिया विदेश में कहीं भी हो खींच कर लाएंगे ड्रग्स तस्करों के खिलाफ, मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। जयपुर के स्कूल की कैंटीन से पैटीज खाने के बाद गई छात्र की जान, सीसीटीवी में बेहोश दिखा 12वीं क्लास का प्रिंस। मां का आरोप, वक्त पर इलाज होता तो बच जाता बेटा। स्कूल के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लंच ब्रेक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। शुरुआत कर रहे हैं नॉनस्टॉप 100 के साथ। प्रेजेंटेड

विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर पीएम मोदी ने बंटवारे के पीड़ितों को किया नमन, एकजुटता की राष्ट्र भावना को और सशक्त करने का दिया संदेश। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने विभाजन की त्रासदी को याद कर पीड़ितों और विस्थापितों के साहस को सराहा, बोले सब कुछ खोने के बावजूद से अपने जीवन की पुनः शुरुआत की। पीएम योगी की विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर मौन पद यात्रा, अखंड भारत के निर्माण का दिया संदेश, बोले 1947 का विभाजन सिर्फ सीमाओं का बंटवारा नहीं, सपनों और रिश्तों का बिखराव भी। सीएम योगी ने विभाजन की त्रासदी को इतिहास का काला अध्याय बताया, विस्थापितों और मृतकों को दी श्रद्धांजलि। राहुल गांधी ने अरुणाचल में चीन द्वारा भारतीय सेना की पेट्रोलिंग रोकने का किया दावा, मोदी सरकार प्रदेश की सुरक्षा से ऊपर अपनी नकली छवि को प्राथमिकता देने का लगाया आरोप। राहुल गांधी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति पर निशाना साधा, मजाक उड़ाते हुए लगाए गंभीर आरोप। पीएम मोदी और अमित शाह पर मजाक करने पर राहुल गांधी के खिलाफ उतरी बीजेपी, भारतीय राजनीति की मर्यादा पर बताया कलंक। राहुल गांधी की भाषा पर बीजेपी का हमला, अनुराग ठाकुर ने अमर्यादित टिप्पणियों और अहंकार के लगाए आरोप, कांग्रेस की मानसिकता पर उठाए सवाल। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राहुल के पीएम मोदी पर बयान की निंदा की, बोले ऐसी भाषा का इस्तेमाल बेहद निंदनीय। राहुल गांधी की टिप्पणी पर भड़की बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज, बोली पद की गरिमा भूल गए नेता प्रतिपक्ष। अंबाला के पंजोखरा साहिब विवाद में बढ़ा बवाल, गुरसिमरन सिंह पर एफआईआर की मांग को लेकर हादसे पर पुलिस से भिड़ा सिख संगत, दोनों पक्ष से कई घायल। नांदेड़ में सुखबीर बादल पर हमले के आरोपी जसपाल सिंह के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत कई धाराओं में मामले दर्ज, आज कोर्ट में होगी पेशी। सुखबीर बादल पर हमले को लेकर अकाली दल ने सीबीआई जांच की मांग की, 2024 के हमले का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि हमलावर आईएसआई से ट्रेनिंग पाया हुआ व्यक्ति है। अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया ने दोनों हमलों में साजिश और सुरक्षा चूक की जांच पर दिया जोर, सुखबीर बादल पर नांदेड़ हमले की एनआईए जांच की मांग की। पीएम फडणवीस ने सुखबीर बादल पर हमले की जांच के आदेश दिए, पीएम मोदी ने भी ली हालात की जानकारी। सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले को लेकर सियासी घमासान, कांग्रेस और आप ने हमले की निंदा की लेकिन पुरानी घटनाओं का जिक्र करते हुए साधा निशाना। अकाली दल ने आप और कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि वो ऐसे बयान से पंजाब को जलाना चाहते हैं, ये पार्टियां एक अलग नैरेटिव बनाना चाहती हैं। इस मामले में पुलिस के साथ साथ एटीएस की जांच तेज, आरोपी के पुणे स्थित घर पर छापेमारी कर आरोपी के बैकग्राउंड और गतिविधियों को खंगाला गया। जेपीएससी परीक्षा गड़बड़ी मामले में सीआईडी का ताबड़तोड़ एक्शन, 7 आरोपियों की तलाश में कई जिलों में छापेमारी, रांची में छात्रों का आंदोलन जारी। रांची में 15 अगस्त को भव्य तिरंगा यात्रा निकालेंगे छात्र, जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने किया ऐलान। उत्तराखंड के हल्द्वानी के रामलीला मैदान में सभा के बाद मंच के शुद्धिकरण का आरोप लगाते हुए भड़के खड़गे, संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों का बताया अपमान। खड़गे के बयान के बाद जेपी नड्डा ने कहा ऐसी घटना दुखद है और बीजेपी इस तरह की गतिविधियों का समर्थन नहीं करती है, जांच कर दिया भरोसा। खड़गे के मंच के शुद्धिकरण वाले आरोप पर राहुल गांधी बोले यह बीजेपी और आरएसएस की मनुवादी सोच का नतीजा है। हल्द्वानी सीट शुद्धिकरण पर प्रियंका गांधी का वार, बोली बीजेपी संघ की यही विचारधारा है, यही मानसिकता है, पीएम मोदी से भी माफी की मांग की। खड़गे की सभा स्थल के शुद्धिकरण पर भड़के अखिलेश यादव, कहा बीजेपी और उनके संगी साथियों ने मंच नहीं अपने मन का गंगा जल से शुद्धिकरण करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बीसीआई अध्यक्ष मनन मिश्रा बोले फिलहाल मामला खत्म, बीसीआई कानून छात्रों और वकीलों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, छात्र हित सर्वोपरि है, किसी को का रजिस्ट्रेशन नहीं रुकेगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने नालसार यूनिवर्सिटी के 2026 बैच के छात्रों का नामांकन रोकने का आदेश वापस लिया, सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत के खिलाफ अभियान चलाने का था आरोप। नालसार विवाद के में बार काउंसिल के आदेश पर भड़के सीजीआई सूर्यकांत, का ये मेरे और छात्रों के बीच का मामला है, पीसीआई कौन होता है दखल देने वाला। आप नेता संजय सिंह ने नालसार छात्रों के मामले पर बीसीआई को घेरा, कहा सत्ता के आगे न झुकने वालों की डिग्री छीनने की कोशिश तानाशाही है। कांग्रेस जनता पार्टी की महिला प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट का किया रुख, कहा रेप किडनैपिंग की धमकियां मिल रही हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीजी इतिहास सिलेबस में दिल्ली सल्तनत समेत प्राचीन मध्यकालीन भारत के कई पेपर हटे, प्रस्तावित 38 पेपर में से सिर्फ 16 को मिली मंजूरी। यूपी चुनाव 2027 को लेकर बीजेपी का मंथन, योगी की मजबूत पकड़, सरकार संगठन और विधायकों के बीच तालमेल पर फोकस। मायावती का हल्द्वानी मंच शुद्धिकरण पर हमला, जातिवादी तत्वों पर कार्रवाई की मांग, खड़गे कार्यक्रम के बाद मंच के शुद्धिकरण को बताया निंदनीय।
मिशन 2027 से बीएसपी का बदला अंदाज, बीजेपी की भी टीम वाली धारणा तोड़ने की रणनीति, मायावती आकाश आनंद बेरोजगारी, पेपर लीक और आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी पर हमलावर। ब्राह्मण कार्ड पर बीएसपी का दांव, लेकिन कद्दावर नेताओं के लगातार छोड़ने से बड़ी मुश्किल, अंटू मिश्रा के निष्कासन से झटका। अंटू मिश्रा के निष्कासन पर मायावती की सफाई, कहा निजी स्वार्थ के लिए पार्टी छोड़ने वालों से नुकसान हुआ, ब्राह्मण समाज को भरोसा बरकरार है। बीजेपी प्रवक्ता आलोक अवस्थी का मायावती पर हमला, बोले 2027 से मायावती का खाता खुलना भी मुश्किल है, ब्राह्मणों को जोड़ने की कोशिश होगी नाकाम। कांग्रेस नेता सुनील राजपूत का बीजेपी पर हमला, बोले दलितों का लगातार अपमान किया जा रहा है, खड़गे के भाषण स्थल के शुद्धिकरण पर सवाल, कहा देश भर में कांग्रेस करेगी विरोध प्रदर्शन। यूपी में कांवड़ यात्रा ने बनाया नया रिकॉर्ड, 4.5 करोड़ से ज्यादा कांवड़िए हुए शामिल, करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ के बावजूद बड़ी दुर्घटना नहीं, यात्रा सुरक्षित संपन्न। प्रयागराज में भव्य तिरंगा यात्रा, हजारों लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर दिखाया देशभक्ति का जज्बा, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत बीजेपी नेता हुए शामिल। चबोली में पीपल कोटी पीएचटीसी जल विद्युत परियोजना के निर्माणाधीन टनल में बड़ा हादसा। सूचना मिलते ही प्रशासन एसडीआरएफ की टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, 3 मजदूर की तलाश तेज। चमोली टनल हादसे के बाद सुबह की तस्वीरें आई सामने, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी, राहत और बचाव दल मौके पर मौजूद। बेहद खराब मौसम के बीच भी पीपलकोटी पहुंचे मुख्यमंत्री धामी, रेस्क्यू ऑपरेशन का किया निरीक्षण। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आकाशीय बिजली गिरने की घटना से 2 की मौत, 2 घायल। धर्मशाला में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, जलभराव के कारण राहगीरों और वाहन चालकों की बड़ी परेशानी। उड़ीसा के भद्रक में भारी बारिश के बीच बैतरणी नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पार। चित्तौड़गढ़ में पिकनिक मनाने गए युवक झरने में बहा, मौके पर मौजूद लोगों की सूझबूझ से बची जान। यूपी के सीतापुर में झमाझम बारिश, तापमान में गिरावट से लोगों को गर्मी से मिली राहत। धर्मशाला में मूसलाधार बारिश से सड़कों पर जलभराव, आवाजाही प्रभावित। खरगोन मूसलाधार बारिश से सड़कों पर घुटनों तक पानी, एडिशनल एसपी के बंगले में घुसा बारिश का पानी। सोनमर्ग के सरबल में फटा बादल, बालटाल जाने वाली सड़कें बंद, ट्रैफिक प्रभावित। भद्रवाह में भारी बारिश का कहर, फ्लैश फ्लड जैसे हालात, कई इलाकों में पानी का तेज बहाव। शिमला में अचानक गाड़ियों पर गिरे बड़े बड़े पत्थर, कई वाहन चपेट में, पत्थर गिरने से मौके पर मचा हड़कंप। भारी बारिश के कारण जैसलमेर के अस्पताल परिसर में वार्ड्स में भरा पानी, मरीजों और परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश का दौर जारी, कई जिलों में 19 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट। गोरखपुर में भारी बारिश से वाटर लॉगिंग, सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी रही। एमपी के नरसिंहपुर में NH-45 पर भीषण लैंडस्लाइड, भारी बारिश से जबलपुर भोपाल मार्ग पर गिरा पहाड़ का मलबा। मलबे सड़क पर आवागमन प्रभावित, फिलहाल सड़क पर वन वे ट्रैफिक जारी, डीसीबी से हटाया जा रहा है मलबा। दिल्ली के न्यू अशोकनगर क्षेत्र में डीटीसी बस की चपेट में आने से 12 साल की बच्ची की मौत, गुस्साए लोगों ने बस के शीशे तोड़े। राजकोट में पागल कुत्ते का आतंक, 10 से ज्यादा लोगों को काटा, नगर पालिका की टीम ने कुत्ते को पीट कर उतारा मौत के घाट। पन्ना में रेलवे कार की आड़ में अवैध खनिज भंडारण और ट्रेशर का खुलासा, शर 2 पोकलेन मशीन और 10 टंपर जब्त। कनाडा के मंदिर में तैनात महिला पीएसआई से बीजेपी विधायक की बेटी पर मारपीट और धमकी का आरोप, मामले में एफआईआर दर्ज। गाजियाबाद में पनीर के नाम पर सेहत से खिलवाड़, पाम ऑयल और व्हाइटनिंग एजेंट से तैयार हो रहा था नकली पनीर। ओडिशा के भुवनेश्वर में इंडिगो फ्लाइट कैंसिल होने पर एयरपोर्ट पर महिला पैसेंजर्स का हंगामा, कहा बच्चों के इलाज के ले जाना था, इंडिगो से जवाबदेही की जगह महिला पैसेंजर पर एफआईआर दर्ज। अलवर में वीडियो कॉल पर फर्जी आईपीएस डिजिटल अरेस्ट करके ठगे 10 लाख रूपये, आरोपी ने 6 करोड़ के फ्रॉड फंसाने की धमकी दी। लखनऊ में शिक्षकों की कमी से नाराज स्कूली छात्रों ने सड़क पर उतरकर किया प्रदर्शन, चौराहे पर लगाया जाम। गोरखपुर हत्याकांड में वायरल वीडियो से फिर गरमाया मामला, क्रिकेट विवाद से शुरू हुई थी रंजिश। ग्रेटर नोएडा के फर्नीचर मार्केट में एक दुकान लगी भीषण आग, 1 की मौत, तस्वीरें आई सामने। यूपी के बांदा में आईजीआरएस रैंकिंग गिरने पर बड़ा एक्शन, एजीएम समेत 11 अफसरों का जुलाई का वेतन रोका गया। सहारनपुर में पुलिस और गौकशों के बीच मुठभेड़, फायरिंग के बाद 1 शख्स घायल, 2 बदमाश गिरफ्तार। शाहजहां
शारजापुर में मामूली विवाद के बाद दो पक्षों में झड़प, एक युवक की पीट पीट कर हत्या, आरोपी फरार। बांसी में बुर्का पहनकर बाइक पर घूम रहा युवक निकला प्रैंक रील बनाने वाला, पुलिस ने पूछताछ का वीडियो हो रहा है वायरल। जलौन बक्से में छिपा मिला प्रेमी, पिटाई के बाद प्रेमी प्रेमिका का गांव में जुलूस, तालिबानी सजा का वीडियो वायरल। अयोध्या में सड़क हादसे में भाग रही कार ने एक शख्स को मारी टक्कर, दर्दनाक सड़क हादसे से मचा हड़कंप। गोरखपुर में शख्स ने अपार्टमेंट की 8वीं मंजिल से कूदकर दी जान, 1.5 करोड़ की ठगी से था परेशान, आरोपी महिला उसका पिता गिरफ्तार। यूपी के अलीगढ़ में हार्डवेयर कारोबारी से लाखों की लूट का खुलासा, 5 आरोपी गिरफ्तार, नकद के साथ हथियार जब्त। बांदा में चोरी करने पहुंचे चोरों को नहीं मिला कीमती सामान, गुस्से में घर की 25 नल की टोटियां उखाड़ ले गए। रामपुर में पंचायत घर बना अखाड़ा, संवाद दिवस पर भिड़े ग्रामीण। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के अभेद्य और कड़े इंतजाम, लाल किले के आसपास मल्टीलेयर्ड सिक्योरिटी। ड्रोन से की जा रही आसमान की निगरानी, बॉर्डर्स पर सख्त चेकिंग, शहर भर में भारी वाहनों की आवाजाही पर कड़ी निगरानी। ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, सुबह 4 से 10 बजे तक लाल किले के सभी रास्तों में वाहनों की आवाजाही पर रोक। जम्मू कश्मीर स्वतंत्रता दिवस से पहले हाई अलर्ट पर एजेंसियां, स्वतंत्रता दिवस और आगामी बुड्ढा अमरनाथ जी की यात्रा के मद्देनजर बढ़ाई गई सुरक्षा। श्रीनगर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, आजादी के जश्न के बीच संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर। कल से हॉकी वर्ल्ड कप की शुरुआत, बेल्जियम और नीदरलैंड मिलकर कर रहे हैं मेजबानी। पहली बार साथ होने महिला और पुरुष की टूर्नामेंट, 16 दिन तक चलेगा टूर्नामेंट, दोनों टूर्नामेंट में खेले जाएंगे कुल 50 मैच। कल अपना 602 टेस्ट मैच खेलेगा भारत, गोल इंटरनेशनल स्टेडियम में होगी भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज। गोल टेस्ट जीतने पर भी टीम इंडिया रचेगी नया इतिहास, सबसे ज्यादा टेस्ट मैच जीतने के मामले में करेगी वेस्ट इंडीज की बराबरी। भारत ने नाइजीरिया में कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में पहली बार जीता ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब। बॉक्स ऑफिस पर सनी देओल का एक्शन अवतार, पटवारा 1947 हुई रिलीज, फिल्म में प्रीति जिंटा, करण देओल, शबाना आजमी दिखाई देंगे। इमरान हाशमी का आवारापन 2 भी आज रिलीज, 2007 में आई इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन का ये है सीक्वल। थिएटर के बाद अब ओटीटी पर कंगना रनौत की फिल्म भारत भाग्य विधाता Zee5 पर हुई रिलीज। 19 जून को थिएटर्स में रिलीज होने के बाद अब ओटीटी पर कमाल करेगी कॉकटेल 2। संजय दत्त की फिल्म आखिरी सवाल भी आते ओटीटी पर स्ट्रीम।

0: जयपुर के झोटवाड़ा इलाके महाराणा प्रताप स्कूल में 12वीं के छात्र की संदिग्ध मौत पर विवाद और ज्यादा बढ़ गया। आज मृत छात्र प्रिंस सोनी के परिजनों और छात्रों ने प्रदर्शन कर इंसाफ की मांग की है। छात्र के घरवाले स्कूल स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। आरोपों के मुताबिक बुधवार तकरीबन सुबह 11 बजे लंच ब्रेक के दौरान स्कूल कैंटीन में पैटीज खाने के बाद प्रिंस सोनी की तबीयत बिगड़ गई, वो बेहोश हो गया और बाद में अस्पताल में उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि प्रिंस को अस्पताल पहुंचाने में स्कूल स्टाफ ने काफी देर कर दी। छात्र को तुरंत अस्पताल ना ले जाने पर अब परिजनों ने सवाल उठाए हैं। सीसीटीवी में भी दिखाई दे रहा है कि उसे स्कूल परिसर में काफी देर तक रखा गया। उसके घर वालों को सूचित तो किया गया, लेकिन इस दौरान करीब 50 से 100 मीटर की दूरी पर अस्पताल था, वहां नहीं ले जाया गया।
1: जयपुर के स्कूल में पेटीज खाने के बाद प्रिंस की मौत हुई, उसके बाद देख सकते हैं किस तरह से यहां पर प्रदर्शन जारी है। बहुत सारे लड़के लड़कियां छात्र छात्राएं जो इस कॉलेज में स्कूल में पढ़ते थे वो सब यहां पर आए हुए हैं और सब यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, सब इंसाफ की मांग कर रहे हैं प्रिंस के लिए कि आखिर प्रिंस की मौत हुई कैसे थे। पेटीज खाने के बाद जिस तरह से मौत हुई है उसे लेकर यहां पर आप देख सकते हैं कि प्रिंस का पोस्टर बैनर लेकर आए हुए हैं। और आप लोग यहीं पढ़ते थे?
2: नहीं, हम उसके फ्रेंड हैं जी।
1: पता चला क्या हुआ था?
3: हमें क्या बताया कि उसने एक पेटीज खाई थी, पेटी उसके गले में फंसने से उसने रिक्वेस्ट करी मैम सरों से मुझे हॉस्पिटल लेके जाइए, वो हॉस्पिटल नहीं लेके गए, इस कारण उसकी मृत्यु हो गई। और इसका पूरा मृत्यु का कारण पूरी पुलिस स्कूल पर।
1: आप लोग यहाँ पढ़ते थे, क्या हुआ था प्रिंस के साथ?
4: उसने पेटीज खा ली थी, वो उसके गले में अटक गई, वो पानी पीने भागा, फिर वहाँ पे वो अनकॉन्शियस होके बेहोश हो गया, तो इन लोगों ने उसको सीधा लिटा दिया, हॉस्पिटल लेके नहीं गए और घर वालों को फोन करा, बस एक घंटे तक लिटा के रखा उसको।
1: एक घंटा लिटा के रखा उसको।
4: आधे घंटे तक सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा है उसकी सांस चल रही है, लेकिन उन लोगों से 50 मीटर की दूरी पर वो सामने हॉस्पिटल है, वहाँ नहीं। पापा को फोन करके बोलते तबियत खराब है आप लेने आ जाओ, ये नहीं बोला बेहोश हो गया।
5: देखिए जगह उल्टा लिटा दिया उसको, और सांस कहाँ से आता, वैसे रुका हुआ था और रुक गया उल्टा लिटाने के बाद।
1: प्रिंस के साथ यहाँ पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं जो वहाँ पर जस्टिस मांग रही हैं प्रिंस के लिए। इनका कहना है कि स्कूल की लापरवाही की वजह से प्रिंस की जान गई है। कैमरा मैन मनीष के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक।
0: और इस बीच जयपुर में लगातार इंसाफ की मांग हो रही है, तो वहीं मृत छात्र की मां ने स्कूल पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वक्त पर इलाज नहीं मिला, इसी वजह से उनके बेटे की जान चली गई।
6: जिसका बेटा बेटी यहाँ पढ़ रहे हैं, आज मेरा प्रिंस है, कल कोई और प्रिंस नहीं हो, मेरा बेटा बेमौत इनके सामने मर गया।
1: कितने बजे बताया था?
6: इन्होंने बताया मेरा हस्बैंड के पास फोन आया 11:14 में, 1:35 पर लंच टाइम होता है, उसी वक्त मेरे बच्चे ने पेटीज खाई थी और मेरे बच्चे ने वहीं पेटीज खाई थी। पेटीज यहाँ जल्दी जल्दी में खाई, बोले डर के कि सर मारते हैं या अगर लंच थोड़ा सा भी लेट कर देंगे तो सर पिटाई करते हैं, बता रहा मेरे को बहुत बार बोला भी था इसने और कई बच्चों ने बोला जल्दी जल्दी खा लेते हैं, अभी सर आएंगे पिटाई करेंगे। मेरे बच्चे ने दो घासे लिए, इन्होंने 48 मिनट तक स्कूल में रखा और डॉक्टर ने बोला आधे घंटे लेट हो गए वरना आपका बच्चा बच जाता। ये छुप यहाँ मर गया था ना, मेरा बच्चा यहाँ मर गया था तो वो छुपेगा नहीं, वो और सोफे पे वो उसको सुला करके सारे खड़े हो गए उसके आगे ताकि ये बच्चा यहाँ सो रहा है, सोफा भी है पीछे बच्चे की, छोड़ो सोफा भी है। 11:14 में इनका फोन आया सर का, बोले आप आ जाओ बच्चा आपका ना बीमार है, इतना ही बोला था इन्होंने। लेकिन उस वक्त बच्चा मेरा बेहोश होके मर गया था, बेहोश नहीं सीधा ही मर गया था इनके सामने। उसने जब यू किया तो वो हेल्प मांग रहे ना पानी की, मेरी हेल्प करो मैं जीना चाहता हूँ, वो मैडम इग्नोर करके चली गई और मरे हुए बच्चे को वहाँ पे ले जा करके उस सोफे वाले कमरे में क्यों ले गए? यहाँ पे एक ऑफिस है, यहाँ एसी चलती है, खुला ऑफिस है ना, बड़ा ऑफिस है।
0: अगली खबर का रुख करेंगे। ड्रग्स सिंडिकेट पर भारतीय एजेंसियों ने बड़ा एक्शन लिया है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को बड़ी सफलता हासिल हुई है। ड्रग तस्कर वीरेंद्र सिंह बसोया को यूएई से भारत वापस लाया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने इस कार्रवाई को नशे के खिलाफ केंद्र सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति की बड़ी उपलब्धि बताया। और इस बीच गृहमंत्री अमित शाह का ये ट्वीट जो बता रहा है कि मोदी सरकार विदेशों में छिपे ड्रग तस्करों का पता लगाकर उनके नेटवर्क को खत्म कर रही है, नशीले पदार्थों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति में एक नया मील का पत्थर स्थापित हुआ है। एनसीबी ने ड्रग तस्करी के सरगना को दुबई से भारत लाया है। एनसीबी की यह बड़ी कार्रवाई, रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था, उसके बाद अब दबिश में ये भारत प्रत्यर्पण हुआ है। रुकेंगे यहां छोटे से ब्रेक के लिए, टिकते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
9: आगे आगे,
10: अरे उधर
9: उधर गया,
10: करेक्ट करेक्ट
11: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: शादी का किचन महके जहां गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां
2: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
3: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
4: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील टीएमटी से बना।
5: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील टीएमटी बाय एकदम सॉलिड।
6: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
7: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
8: सोच बदलो और बैंक भी।
9: पापा।
10: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
11: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
10: छक्का?
11: सब कैशलेस हो गया है।
10: हाँ
12: जिस मिट्टी में फसल उगती है उसी में भारत की स्वतंत्रता की खुशबू है। इस स्वतंत्रता दिवस आइए उन किसानों का सम्मान करें जो हर दिन देश को मजबूत बनाते हैं। मेरे और क्रिस्टल परिवार की ओर से आपके और आपके परिवार को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: in association with
1: Sharda University. The world comes together at Sharda University. Where are you?
2: Punjab National Bank. Bharose ka prateek.
0: विमल बोलो जुबां केसरी हिंट बड़े आराम से
3: वेट लाइफस्टाइल के लिए 10 अलग पेजेस क्यों फॉलो करना हेल्थ फिटनेस योगा मेंटल वेलनेस सब कुछ एक ही जगह फिट तक सिंपल टिप्स एक्सपर्ट इनसाइट्स रियल कॉन्वर्सेशंस लाइफ अपग्रेड करो इजी वे वॉच ओनली ऑन फिट तक यूट्यूब
4: इतनी गाड़ियां हैं ये पूरा रेला विधानसभा जा रहा छात्रों का
5: जब तक वो सीबीआई जांच नहीं कराएंगे तब तक हम लोग इस पे डटे रहेंगे
4: छात्रों को पीछे हटाने की कोशिश की जा रही है वाटर कैनन खत्म हो गए फायर टेंडर खत्म हो गए
6: प्रोटेस्टर हैं देखिए उनको कैसे चोट लगी है
7: विधानसभा के करीब ये पहुंच चुका है
8: पुलिस काफी देर तक रोक नहीं सकी छात्रों को और छात्र देखिए विधानसभा के अंदर प्रवेश करते हुए
9: विधानसभा का लाइट ऑफ करके मारा है
4: पूरे प्रदर्शन मार्च के बाद भी छात्रों ने ऐलान किया है वो अभी भी डटे हुए हैं जयपाल सिंह स्टेडियम में लोकेंद्र के साथ मैं आशुतोष मिश्रा आज तक

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: एयू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
5: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
6: सोच बदलो और बैंक भी।
0: In association with Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
1: Punjab National Bank, Bharose ka Prateek.
0: Vimal, bolo zuba kesri. Hint, bade aaram se.
7: Jis din tak Narendra Modi apna istifa nahi denge, Amit Shah nahi hatega, us din tak Narendra Modi aur Amit Shah nahi so payenge. उनको उनको हम जगा के रखेंगे, पूरी रात जगा के रखेंगे, जब तक वो कलैप्स करके कहें कि भैया ये हमारी बस की नहीं है, माफ करो, छोड़ दो हमें। फॉरेन पॉलिसी इज दिस।
8: मैं तो पर्चे फिर रहा था।
7: अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी।
8: एक चीज पूछ सकता हूं?
7: हाँ।
8: मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था?
7: आई हैव नॉट रीच देयर येट, बट पता नहीं कहां से घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी का मतलब नेताओं से गले लगना।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

जहां भाग बुबुला हुई बीजेपी का ये संस्कारहीन अभद्र अश्लील भाषा है। नड्डा बोले देश का दुर्भाग्य है कि हमें ऐसा नेता विपक्ष मिला है। विभाजन विभीषिका दिवस के बहाने सीएम योगी का विपक्ष पर हमला। कहा नौजवानों को भड़काने की कोशिश करने वालों ने ही 1947 में देश को बांटा। सीए पर बोले यूपी में होती समाजवादी सरकार तो तय था दंगा। दर्दनाक सुरंग हादसे के बाद उत्तराखंड के चमोली में जिंदगी बचाने की जंग। हाइड्रो प्रोजेक्ट के टनल में फंसे 22 लोगों में से अब तक 7 की मौत, 14 बचाए गए। यूएई से भारत लाया गया ड्रग तस्करी का बड़ा सरगना वीरेंद्र सिंह बसोया। गृहमंत्री का पोस्ट, नशे की माफिया विदेश में कहीं भी हो खींच कर लाएंगे। ड्रग्स तस्करों के खिलाफ मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। जयपुर के स्कूल की कैंटीन से पैटीज खाने के बाद गई छात्र की जान। सीसीटीवी में बेहोश दिखा 12वीं क्लास का प्रिंस। मां का आरोप, वक्त पर इलाज होता तो बच जाता बेटा।

0: बुलेटिन के इस हिस्से में बात करेंगे उत्तराखंड के चमोली सुरंग हादसे की, जहां एक निर्माणाधीन सुरंग धस गई, मजदूर अंदर काम कर रहे थे और सुरंग में मलबे के साथ पानी भर गया। पूरी खबर आपको विस्तार से दिखाएंगे, साथ ही उन लोगों से मिलवाएंगे जिन्होंने उस अंधेरी सुरंग में मौत को चकमा दिया है। साथ ही बात होगी पहाड़ों पर आसमानी आफत की, किस तरीके से कुदरत का कहर यहां बरप रहा है। जम्मू कश्मीर से हिमाचल तक मूसलाधार बारिश और फ्लैश फ्लड ने परेशानी को बढ़ा दिया है। तो सबसे पहले बात उत्तराखंड के चमोली सुरंग हादसे की। चमोली के पीपल कोटी में एक सुरंग धस गई। करीब 13 किलोमीटर लंबी यह सुरंग हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट की थी, जिस पर काम चल रहा था। गुरुवार की शाम को अचानक मेन एंट्री पॉइंट से करीब 1.5 किलोमीटर अंदर सुरंग धस गई। स्थिति ये हो गई कि सुरंग में पानी भरने लगा और मजदूर इसकी चपेट में आ गए। सुरंग में पानी भरने से रेस्क्यू में परेशानी आ रही है। हालांकि अब वहां पर स्वयं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जायजा लिया है, कहां तक रेस्क्यू ऑपरेशन बढ़ा है ये उन्होंने जानकारी ली है। पानी निकालने के लिए एनटीपीसी ने पंप्स का इस्तेमाल किया है। 3 लोगों के अभी अंदर फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। तो कैसे हुआ चमोली टनल का ये हादसा और कहां तक पहुंचा है रेस्क्यू ऑपरेशन, दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट।
1: उत्तराखंड में फिर सुरंग हादसा हुआ। उत्तराखंड में फिर से सुरंग धसी है। इस बार यह हादसा उत्तराखंड के चमोली में हुआ है। पानी से भरी सुरंग, ड्रम को नाव बनाकर सुरंग में फंसे लोगों की तलाश करते राहत कर्मी। ये चमोली के पीपलकोट सुरंग के अंदर की तस्वीरें हैं, जहां गुरुवार शाम करीब 6:30 बजे से 7 बजे के बीच बड़ा हादसा हुआ। पीपलकोटी सुरंग का बड़ा हिस्सा धस गया।
2: यही वो टनल है, देख सकते हैं, ये जो अंदर जाने के बाद लगभग 1600 मीटर पे इसी के ऊपर से कहीं से लूज गिरा है और उसी लूज के साथ भारी पानी, क्योंकि ये आप देख सकते हैं ये टनल सीधा डाउन के लिए जा रही है, तो इसमें जो भी पानी या कुछ भी जाएगा तो वो एकदम अंदर टनल में भरता रहेगा। वही कारण है यहाँ पे जो लूज गिरा है, उसके बाद जो लोग फंसे हैं वो वहां पे फंस चुके हैं। हालांकि सबको निकाला गया लेकिन अभी भी एक व्यक्ति लापता है।
1: सुरंग के अंदर घुप अंधेरा है, बाहर निकलने का जो रास्ता है उसमें पानी के साथ साथ मलबा भर गया है और उसी मलबे में जिंदगी बचाने की जद्दोजहद हो रही है। रेस्क्यू की टीम अंदर है और बाहर एम्बुलेंस खड़ी है ताकि जैसे ही किसी को निकाला जाए तो उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया जा सके।
2: जहां पे लूज गिरा था वहां पे मलबा हटाना और बोट बनाना सबसे पहली प्राथमिकता थी। फिर पानी आ गया था, पानी के नीचे जो जिन डेड बॉडियों को निकाला गया वो लोग पानी के नीचे थे। फिर अंदर तक लास्ट पॉइंट तक इसमें पहुंचना था तो इसलिए उसमें टाइम लगा। तो रात्रि 1 बजे तक तो बहुत तेजी से जो राहत और बचाव कार्य है वो हुआ, लेकिन जैसे ही 1 बजे के करीब टनल के अंदर पूरा पानी, जब पूरा व्यक्ति जो एसडीआरएफ का एनडीआरएफ का व्यक्ति पूरा डूबने लगा, उसके बाद रेस्क्यू अभियान को यहाँ पे ब्रेक करके पहले पानी को हटाया जा रहा था फिर राहत बचाव कार्य किया जा रहा था, इसीलिए यहाँ पे थोड़ी सी देर हुई है।
1: जिस सुरंग में हादसा हुआ उसका निर्माण THDC की सहायक कंपनी हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी यानी HCC करा रही है। इस परियोजना का नाम विष्णुगढ़ पीपलकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट चमोली जिले में अलकनंदा नदी पर बन रहा है। इसका विद्युत उत्पादन क्षमता 444 होगी। ये रन ऑफ द रिवर हाइड्रो प्रोजेक्ट है जिसमें करीब 13 किलोमीटर लंबी हेड रिज टनल बनाई जा रही है। निर्माणाधीन TRT टनल के अंदर मजदूरों के फंसने की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन और SDRF की टीमों का पहुंचना शुरू हो गया, लेकिन टनल के अंदर पानी का तेज बहाव और मलबा आने से बचाव दल के लिए ये बेहद चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन था।
3: अभी जो अंदर सिचुएशन है क्योंकि पानी बहुत ज्यादा हो रहा है जिसके कारण जो है सिचुएशन थोड़ा सा टफ हो रही है, तो NDRF प्लस SDRF भी उसमें लगी हुई है। तो NDRF के ज्यादातर जो जवान है वो अपना जो भी इक्विपमेंट है उसका यूज करके जो है कार्रवाई कर रहे हैं।
1: सुरंग में करीब 1600 मीटर अंदर पानी का रिसाव हुआ जिससे वहां मजदूर फंस गए। पानी के साथ साथ वहां मलबा भी जमा होने लगा। अंदर फंसे लोगों को भागने का मौका भी नहीं मिला। इस हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। अंदर करीब 22 लोग फंसे थे। घायलों को पीपलकोट के अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शुक्रवार की सुबह पीपलकोटी पहुंचे, सुरंग के अंदर गए जहां राहत बचाव कार्य चल रहा है।
4: जो यहां पर घटना हुई है उसके कारण से जो कुल 22 लोग, ऐसा अनुमान यहां पर बताया गया कि 22 लोग कुल काम कर रहे थे, उसमें से 3 लोगों को छोड़ के बाकी सभी लोग रेस्क्यू हो गए हैं और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको यहां एडमिट किया है अस्पताल में, और कुछ लोगों के लिए बेस में भी बात की गई है कि बेस में अगर जिनको भेजना है बेस में भेजा जाएगा, और एम्स ऋषिकेश में भी सारी व्यवस्थाएं वहां की गई हैं।
1: मुख्यमंत्री ने बताया कि अंदर काफी पानी और मलबा है जिसकी वजह से रेस्क्यू में कठिनाई हो रही है। पीपलकोटी के टनल हादसे ने 2030 के सिलकियारा टनल हादसे की याद ताजा कर दी। उत्तरकाशी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 134 को जोड़ने के लिए प्रस्तावित सिलकियारा सुरंग का एक हिस्सा निर्माण के दौरान ढह गया था। हालांकि उस हादसे में सभी 41 श्रमिकों को बचा लिया गया था। अब बड़ा सवाल यह कि क्या पीपलकोटी में बन रही सुरंग में बचाव के पूरे इंतजाम नहीं थे। कमल नयन सिलोड़ी, पीपलकोटी, चमोली आज तक।
0: और इस बीच बड़ी खबर चमोली से। यहां पर सुरंग के अंदर फिर से पानी बढ़ने लगा है। चमोली के जिलाधिकारी गौरव कुमार ने जानकारी दी कि टनल के अंदर पानी लगातार बढ़ता जा रहा है जिसकी वजह से 3 लोगों के रेस्क्यू ऑपरेशन में रुकावट आ रही है। वहीं डी वाटरिंग के लिए प्रशासन ने सेना और NTPC के वाटर पंप्स मंगवाए हैं जो पानी को तेजी से बाहर निकाल सके, लेकिन रेस्क्यू में मुश्किल है क्योंकि सुरंग में पानी बढ़ रहा है। कमल नयन मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं मौके से हमारे साथ। कमल नयन, क्या ताजा जानकारी मिल रही है, क्या पानी का स्तर वहां पर बढ़ रहा है, इसकी वजह क्या है?
2: नहीं, यहां पे टनल के अंदर लगातार पानी बढ़ता जा रहा है। जो मलबा है और पानी के अंदर जो अभी NDRF के जो असिस्टेंट कमांडेंट है आलोक जयाला, उन्होंने जानकारी दी कि कल रात 1 बजे के बाद से लगातार जो पानी है वो भर रहा है।
0: अगर संभव हो तो कमल वहां की तस्वीरें दिखाइए, और अगर आप सुरंग के नजदीक तक पहुंच सके तो वहां से ताजा जानकारी दीजिए।
2: जी, यहां पे जो टनल के अंदर है वहां पे लगातार जो 1600 लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में जो NDRF के जो असिस्टेंट कमांडेंट है आलोक जयाला, उन्होंने जानकारी दी है लगभग 1 किलोमीटर का जो एरिया है उसमें पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। अभी 4 डिवाटरिंग पंप यहाँ पे लगाए गए हैं। वहीं जो आपदा सचिव है उत्तराखंड के, वो उनके आने के बाद NTPC से भी यहाँ पे वाटर पंप मंगवाए गए हैं जिसके बाद यहाँ पे पानी को हटाने में आसानी मिलेगी और पानी को जल्दी से जल्दी बाहर किया जाएगा, क्योंकि सिर्फ पानी ही नहीं है बल्कि पत्थर और सरिया, जो लोहे है, जो अंदर तमाम चीजें हैं वो भी परेशानी का सबब बन रही है अंदर। इसीलिए बहुत तेजी से पानी, जितनी तेजी से बाहर निकल रहा है।
0: कमल नयन, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो यह हादसा कितना भयावह था इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि सुरंग के अंदर जो जहां था वहीं पर फंस गया, भागने का मौका ही नहीं मिला। जो उस काली सुरंग में मौत को मात देकर बाहर आए हैं, आइए उन्हीं से जान लेते हैं कि वो कैसा मंजर था।
5: एकदम कच्ची मिट्टी और पानी आ गया, जैसे आंधी तूफान आता है हवा की तरह।
6: को जो कि भागने के लिए कहीं चांस नहीं मिले, ऊपर से जो मिट्टी धस गया ना उसी में बहुत पूरा हादसा हो गया वहां से पूरा।
7: चमोली के पीपलकोटी सुरंग हादसे में जिंदगी बचाने की जद्दोजहद जारी है। जो अंदर फंसे हैं उन्हें निकालने की कोशिश जारी है। SDRF, NDRF, ITBP की टीमें तैनात हैं। लेकिन जो लोग मौत की सुरंग से मौत को मात देकर आए हैं, अब उनसे मिलिए।
5: क्या सर, एकदम कच्ची मिट्टी और पानी आ गया, जैसे आंधी तूफान आता है हवा की तरह। 10 मिनट में पूरा अफरा तफरी मच गया, किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला।
8: कितने लोग थे आप लोग टोटल?
5: डे वाइज पूरी शिफ्ट सर 20 आदमी।
7: चमोली सुरंग हादसे के घायलों को गोपेश्वर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वहीं पर उनका इलाज चल रहा है। इन लोगों ने बताया कि हर रोज की तरह गुरुवार को भी मजदूरों की टोली सुरंग में घुसी और अपने काम में जुट गई, लेकिन तभी तेज आवाज से सुरंग का एक हिस्सा टूट गया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, मलबे के साथ साथ सुरंग में पानी भर गया।
6: बहुत बहुत बहुत खराब स्थिति थी वहाँ पर, जो कि बहुत तेज से आंधी तूफान आ रहा था, जो कि वो ऊपर से जो मिट्टी धस गया ना उसी में बहुत पूरा हादसा हो गया वहाँ से। पूरा आदमी को जो कि भागने के लिए कहीं चांस ही नहीं मिला, जो आदमी आया वो पूरा गंभीर चोट से आया।
8: आपके साथ के कितने लोग थे?
6: मेरे साथ के तो कोई नहीं थे, मैं तो अकेला उड़ीसा का हूँ।
7: मजदूरों की इन बातों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितनी तेजी से हुआ होगा। कुछ ही सेकंड में सुरंग का माहौल बदल गया। जो मजदूर कुछ देर पहले तक सामान्य तरीके से काम कर रहे थे, उनके सामने अचानक मलबा, पानी और अंधेरा था। किसी को संभलने का मौका मिला तो किसी ने किसी तरह सुरंग से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। हादसे के बाद सबसे बड़ी चुनौती सुरंग के भीतर फंसे मजदूरों तक पहुंचने की है। सुरंग के अंदर मलबा और पानी रेस्क्यू ऑपरेशन की रफ्तार को प्रभावित कर रहा है। रेस्क्यू टीमें लगातार रास्ता बनाने और पानी को बाहर निकालने की कोशिश में जुटी हैं। मशीनों की मदद से मलबा हटाया जा रहा है, जबकि सुरंग के भीतर हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। इस हादसे में घायल और मृतक ज्यादातर मजदूर झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री धामी ने इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बात करके स्थिति की जानकारी दी। सीएम धामी ने आश्वासन दिया कि शासन स्तर पर हर संभव मदद की जा रही है। जब सीएम सुरंग के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन देखकर वापस लौटे तो उन्होंने बताया कि भारत सरकार की भी इस पर नजर है। गृह मंत्री अमित शाह लगातार अपडेट ले रहे हैं।
4: एकदम से हादसा इतना अचानक हुआ है कि उसमें स्थिति तभी क्लियर हो पाएगी जब थोड़ा पानी भी उसमें से बाहर निकल पाएगा। और कल आदरणीय गृह मंत्री जी ने इस पर पूरी जानकारी दी, हर संभव उन्होंने भी सहायता का आश्वासन दिया था रात को, क्योंकि वो बार बार इसकी चिंता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो भी भारत सरकार की तरफ से सहयोग किया जाएगा।
7: चमोली सुरंग हादसे में टिहरी गढ़वाल के प्रदीप पंवार की भी मौत हो गई। प्रदीप पंवार 31 साल के थे। इसी साल अप्रैल में उनकी शादी हुई थी। इस हादसे के बाद पूरे परिवार में मातम है। एक तरफ सुरंग के अंदर जिंदगी बचाने की जद्दोजहद चल रही है तो दूसरी तरफ बाहर कई परिवार अपनों के लौटने का इंतजार कर रहे हैं। हर किसी की नजर रेस्क्यू टीमों पर है और उम्मीद सिर्फ एक है, सुरंग में फंसे मजदूर जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर आएं। बेस अस्पताल और ऋषिकेश एम्स को भी अलर्ट पर रखा गया है।
9: तीन लोग मिसिंग हैं और जो पहले मिसिंग बताए जा रहे थे उनमें दो का आंकड़ा बढ़ा है। 7 लोगों की मौत हुई है, ज्यादातर झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार के रहने वाले लोग हैं। और उनका कहना है कि घायलों की और मृतकों की सूची भी जारी की गई है। और इस मामले में सबसे बड़ा अपडेट यह है कि इस मामले को लेकर जांच भी होगी, क्योंकि लगातार सवाल उठे हैं कि जियोलॉजिकल

0: जारी है। वक्त बीत रहा है, चुनौती बड़ी है, लेकिन रेस्क्यू टीमों की कोशिश लगातार जारी है। देहरादून से अंकित शर्मा के साथ कमल नयन लिसौड़ी, चमोली आज तक।
1: और अब बात करेंगे आसमानी आफत की। पहाड़ों पर से सुरंग नहीं धस रही है, मूसलाधार बरसात से पहाड़ दरक रहे हैं। हिमाचल प्रदेश से जम्मू कश्मीर तक कई जगहों पर तेज बारिश हुई, जिसकी वजह से फ्लैश फ्लड ने मुसीबत बढ़ा दी। हिमाचल में नेशनल हाईवे पर अचानक पहाड़ दरक गया।

0: जम्मू कश्मीर में बारिश इस वक्त आफत बनकर बरसी है। पहाड़ों पर मूसलाधार प्रहार से कई इलाकों में फ्लैश फ्लड यानी अचानक बाढ़ आ गई है। ये तस्वीरें भद्रवाह की हैं, जहां बाजार पूरी तरह पानी की चपेट में आ चुका है। चौक चौराहों पर पानी का बहाव इतना खतरनाक और तेज है कि मानो यहां सड़क नहीं बल्कि कोई उफनती नदी बह रही हो। भारी बारिश के बाद भद्रवाह के कई आवासीय इलाकों से इसी तरह डरावनी तस्वीरें सामने आई हैं। पानी बेकाबू होकर रिहायशी बस्तियों के भीतर घुस गया है। जिन गलियों की रौनक बच्चों की हंसी और खेलकूद से हुआ करती थी, वहां अब सिर्फ पानी का खौफनाक सैलाब बहता दिखाई दे रहा है। ये सबसे रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीर भद्रवाह के जामिया मस्जिद चौक की है। यहाँ अचानक आए फ्लैश फ्लड ने ऐसा कहर बरपाया कि लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इस मची अफरा तफरी के बीच कुछ लोग एक बाइक को इस जल प्रलय से बचाने की जी तोड़ कोशिश करते दिखे। कड़ी मशक्कत के बाद एक बाइक को तो सुरक्षित खींच लिया गया, लेकिन सड़क किनारे लाचारी में खड़ी दूसरी गाड़ी देखते ही देखते पानी के तेज बहाव में बह गई। अब जरा दूसरे एंगल की तस्वीरें देखिए, ये भी भद्रवाह की ही है। जब सैलाब इन गलियों से गुजरा तो मानो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाएगा। जो बाइक पानी में बह गई थी उसे आसपास के लोगों ने बरामद कर लिया। पानी के बहाव को रोकने की कोशिश भी की गई, सारे उपाय नाकाफी रहे। भद्रवाह के इस जामिया मोहल्ले में लोगों के घरों के सामने से मानो नदी बह रही हो। ये किश्तवाड़ की तस्वीरें हैं, जहां भारी बारिश के बाद हाकू नाला उफान पर आ गया। ऊंचाई वाले इलाकों में तेज बारिश की वजह से अचानक हाकू नाले में पानी बढ़ने से संपर्क मार्ग भी बह गया। सड़क किनारे लगे बिजली खंभे भी पानी की मार नहीं झेल सके, धारा के साथ बह गए। कुछ ही देर में पानी तो निकल गया, लेकिन अपने पीछे भारी मलबा छोड़ गया। जो जिला सुरंग के पास ऊंचाई वाले इलाके में अचानक बादल फटने की घटना हुई, जिसके बाद वहां भी फ्लैश फ्लड आ गया। पानी के साथ मलबा बड़े पत्थर भी बहने लगे। भारी मलबे की वजह से जो जिला का रंगा मोड़ ब्लॉक हो गया। हालांकि बीआरओ ने अपनी टीमों को तैनात कर दिया है, स्थिति पर नजर रखी जा रही है। अब जरा हिमाचल प्रदेश के सोलन की तस्वीरें देखिए, जहां भराड़ी घाट के पास अचानक पहाड़ टूटकर गिरने लगा। लैंडस्लाइड की वजह से हाईवे पर अफरा तफरी मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे। इस लैंडस्लाइड में हिमाचल परिवहन की एक बस भी फंस गई, लेकिन गनीमत रही कि समय रहते ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया और सभी यात्री सुरक्षित बस से नीचे उतर गए। बारिश के बाद पहाड़ दरकने की घटनाएं बढ़ जाती, लेकिन भराड़ी घाट में फोरलेन रोड का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसकी वजह से यहां की पहाड़ियां संवेदनशील बनी हुई हैं। इससे पहले भी कई बार यहां भूस्खलन की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। अब जरा शिमला की भी तस्वीरें देखिए, भारी बारिश के चलते जगह जगह लैंडस्लाइड की खबरें सामने आ रही हैं। शिमला के ढली इलाके में सब्जी मंडी के पास अचानक पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। गनीमत रही कि ये पत्थर जिन वाहनों पर गिरे उसमें लोग नहीं थे। पत्थरों की वजह से 12 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। भारी बारिश की वजह से चित्तौड़गढ़ के मेनाल प्रपात में भी जल स्तर बढ़ा हुआ है। यहाँ पिकनिक मनाने गया एक शख्स पानी में बहने लगा। अचानक हुई इस घटना से वहाँ अफरा तफरी मच गई। आसपास खड़े लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को निकाल लिया। आज तक ब्यूरो।
1: ओडिशा के मयूरभंज और भद्रक में भारी बारिश के बाद बाढ़ ने तबाही मचाई है। बूढ़ा, बलंगा और सालांडी नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं, जिसमें सैकड़ों गांव जलमग्न हो चुके हैं। बारीपदा के निचले इलाकों में पानी घुसने से आम जनजीवन पूरी तरह से ठप है। और यहां पर प्रशासन और ODRAF की टीमें युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। भद्रक में बेतरणी नदी भी खतरे के निशान के पार है। वहीं मयूरभंज में कोला डैम से पानी छोड़ा गया है, जो निचले इलाकों में घुस गया है।

0: रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
4: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
5: वो सभ्यता संपूर्ण उन्होंने भूल गया है क्योंकि वो सभ्यता ही नहीं है उनके पास। तो अपने आप को समझते हैं ही इज बॉर्न टू रूल, ये इनके मन में अहंकार है। जब ये पूरा नहीं हो रहा है हताश होके अत्यंत लो लैंग्वेज फिल्दी लैंग्वेज उपयोग कर रहे हैं।
6: जो आदमी मानसिक दिवालियेपन में हो, राहुल गांधी उसी श्रेणी में आते हैं। उन्हें संसद के बदले आगरा जैसे संस्थान में रहना चाहिए और जिसका कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, नीचता की हद है।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
1: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
2: लोकसभा में जितना टाइम आवंटित किया गया है टोटल टाइम एलोकेशन के हिसाब से सिर्फ 19% हमने प्रोडक्टिविटी के दृष्टि से 19% सक्सेस प्राप्त किया है। राज्यसभा में 39%। राज्यसभा में ऑपोजिशन पार्टी हंगामा करके कभी कभी वॉकआउट भी करते थे, तो बाकी मेजोरिटी पार्टीज एनडीए के और कुछ ऑपोजिशन पार्टी के एमपीज ने डिबेट डिस्कशन में हिस्सा लिया, तो राज्यसभा का टोटल प्रोडक्टिविटी मॉनसून सेशन का 39%, लोकसभा का 19%। एक बिल सिर्फ चर्चा हो पाई लोकसभा में, जो प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट जो बना है, ये लोकसभा में भी डिस्कशन हुए थे और राज्यसभा में भी हुए हैं। इसके अलावा लोकसभा में कोई अच्छा चर्चा नहीं हुआ, बिल पास हुए हैं, 11 बिल्स पास किए हैं। इसलिए मैंने कहा टोटल 12 बिल्स पास किए हैं इन टोटल, और चर्चा के दृष्टि से हम खुश नहीं है क्योंकि ऑपोजिशन ने ठीक से चर्चा करने नहीं दिया, विशेष करके लोकसभा में

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ।
5: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: भारतीय शेयर बाजार में पिछले कुछ समय से चल रही आईपीओ की तेज रफ्तार हाल के दिनों में थोड़ी धीमी पड़ती नजर आने लगी है। जिन कंपनियों को कुछ महीने पहले तक बाजार से शानदार रिस्पांस मिलने की उम्मीद थी, वो अब अपने कदम फूंक फूंक कर रख रही है। इसकी वजह है कि बाजार में बढ़ती अस्थिरता, निवेशकों की सतर्कता और वैल्यूएशन को लेकर बढ़ती चिंता ने आईपीओ मार्केट को धीमा कर दिया है। ब्लूमबर्ग की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत के आईपीओ बाजार में फिलहाल पहले जैसी तेजी नहीं दिखाई दे रही है। कई कंपनियां तो अपनी रणनीति पर दोबारा विचार कर रही हैं और हाल ही में जेप्टो ने अपने आईपीओ का प्लान टाल भी दिया है। दरअसल इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मार्केट की कमजोरी के चलते कई कंपनियां अपने आईपीओ का साइज और वैल्यूएशन कम करने को मजबूर हो गई हैं। इसकी वजह है कि वैश्विक अनिश्चितताओं और बाजार में बढ़ते उतार चढ़ाव ने निवेशकों को ज्यादा सतर्क बना दिया है। वहीं कुछ हालिया लिस्टिंग्स के कमजोर प्रदर्शन के बाद निवेशक शेयरों की कीमत और बिजनेस मॉडल को ज्यादा बारीकी से परखने लगे हैं। बाजार के इस बदलते माहौल का असर केवल निवेशकों पर ही नहीं, उन कंपनियों पर भी दिखाई दे रहा है जो केवल बाजार के जरिए पूंजी जुटाने की तैयारी में थीं। ऐसे में कंपनियां जल्दबाजी में बाजारों में उतरने की जगह सही समय और सही वैल्यूएशन का इंतजार कर रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हाल के महीनों में आईपीओ के जरिए फंड जुटाने की रफ्तार पहले के मुकाबले धीमी पड़ी है। वहीं कई कंपनियों ने बाजार की स्थिति को देखते हुए अपनी लिस्टिंग योजनाओं की टाइमिंग पर दोबारा विचार शुरू कर दिया है और मर्चेंट बैंकर्स कंपनियों को आक्रामक प्राइसिंग से बचने और निवेशकों के लिए आकर्षक वैल्यूएशन रखने की सलाह दे रहे हैं। यानी जो आईपीओ बाजार पिछले कुछ समय से रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहा था, वो एक नए दौर में प्रवेश करता नजर आ रहा है। ऐसे में केवल नाम या चर्चा के दम पर निवेशकों का पैसा जुटाना आसान नहीं होगा। कंपनियों को मजबूत बिजनेस, संतुलित वैल्यूएशन और बेहतर ग्रोथ प्लान के साथ बाजार में आना होगा। एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि बदलाव लंबे समय में बाजार को और ज्यादा परिपक्व और मजबूत बना सकता है। यानी फिलहाल आईपीओ बाजार में भले ही सुस्ती का माहौल नजर आ रहा है, लेकिन आगे चलकर यही कमजोरी इसकी ताकत बन सकती है, क्योंकि निवेशकों की बढ़ती समझ कंपनियों को ज्यादा भरोसेमंद बनने का रास्ता तैयार करने में मदद करेगी। आदित्य के राणा आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: उत्तराखंड के चमोली में टनल में फंसे लोगों के रेस्क्यू में बाधा, बचाव के दौरान रिसने लगा पानी। हाइड्रो प्रोजेक्ट की सुरंग में अब तक 7 की मौत, 14 बचाए गए। सीएम धामी ने लिया राहत बचाव का जायजा। कांग्रेस के मंच से पीएम का मखौल उड़ाने पर राहुल गांधी के खिलाफ आग बबूला हुई बीजेपी, कहा ये संस्कारहीन, अभद्र और अश्लील भाषा। नड्डा बोले देश का दुर्भाग्य कि हमें ऐसा नेता विपक्ष मिला। विभाजन विभीषिका दिवस के बहाने सीएम योगी का विपक्ष पर हमला, कहा नौजवानों को भटकाने की कोशिश करने वालों ने ही 1947 में देश को बांटा। सीएए पर बोले यूपी में होती समाजवादी सरकार तो तय था दंगा। यूएई से दबोच कर भारत लाया गया ड्रग तस्करी का बड़ा सरगना वीरेंद्र सिंह बसोया। गृह मंत्री का पोस्ट, नशे के माफिया विदेश में कहीं भी हो खींच कर लाएंगे। ड्रग्स तस्करों के खिलाफ मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। जयपुर के स्कूल की कैंटीन से पेटीज खाने के बाद गई छात्रा की जान, सीसीटीवी में बेहोश दिखा 12वीं क्लास का प्रिंस। मां का आरोप, वक्त पर इलाज होता तो बच जाता बेटा। स्कूल के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन।
0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। 2 बज गए हैं, न्यूज रूम लाइव का वक्त हो चला है। न्यूज रूम लाइव में सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि आज कौन सी बड़ी खबरों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। देखिए, बताएंगे हम आपको कि कैसे देश के बंटवारे की लड़ाई अब जेन जी तक आ गई है, ये हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही बात होगी राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो बयान दिया गया, उस पर कैसा उबाल मचा हुआ है, कैसा हंगामा हो रहा है, ये भी हम आपको बताएंगे। जो तीसरी बड़ी खबर हमारी होगी वो होगी दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीजी सिलेबस में एक चैप्टर बाहर हुआ दिल्ली सल्तनत, तो उसके बाद कैसे हंगामा मचा हुआ दिल्ली सल्तनत पर, ये भी हम आपको बताएंगे। और इसके बाद हम बात करेंगे मौत की पेटीज की। 12वीं का छात्र पेटीज खाता है, उसके बाद सांस नहीं ले पाता, 45 से 48 मिनट तक वो स्कूल में रहता है। और सबसे पहले सारी खबरों के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं विभाजन विभीषिका दिवस पर, वो सुनिए।
2: वह भारत कटा तो हिंदू भी कटा, कोई प्रश्न नहीं पूछता। आज भी जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर निर्दोष हिंदू मारे जाते हैं, काटे जाते हैं, और ये हर व्यक्ति जानता है कि मरने वाला जो हिंदू है ये सभी दलित समुदाय से है, एक भी जवान भारत के अंदर उन राजनीतिज्ञों के मुंह से नहीं निकलती है जो भारत के अंदर एक होने वाली किसी घटना में हाय तोबा एक करके पूरे देश के अंदर घूमते हैं। पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, वहां की घटना में कोई शब्द नहीं निकलते, वे मौन होते हैं। 14 अगस्त 1947 की घटना के लिए किसकी जवाबदेही थी, कौन जिम्मेदार था उसके लिए, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, क्योंकि उनको सत्ता चाहिए थी, उनको देश की प्रजा से, देश की उस समय के भारत की अन्य बहुसंख्यक प्रजा से कोई लेना देना नहीं था, एन केन प्रकारेण सत्ता चाहिए। और याद करिए, आज भी वही स्थिति है, नाम बदले होंगे, चेहरे बदले होंगे, कार्य पद्धति वही है जो 15वीं सदी में देखने को मिल रही थी, आक्रांताओं के समय देखने को मिल रही थी, उसके उपरांत भी अलग अलग घटनाओं में जो कुछ भी हम देख रहे थे, वही चीज आज भी वही उसी स्तर पर वही सब देखने को मिलता है। हमें फुर्सत नहीं होती इन घटनाओं को आपस में जोड़ने की। मैं बहुत जग था, संभल के बारे में हमेशा से मान्यता थी कि संभल तो वहां पे जाने लायक स्थिति नहीं है, संभल को बने हुए लगभग 30 साल हो गए, उनका जिला मुख्यालय नहीं बन पाया, तो मैं यही जानने के लिए कि भी संबल में जिला मुख्यालय क्यों नहीं बन पाया, इसके बारे में आगे की कार्रवाई होनी चाहिए, तो उसको लेके कुछ विवाद खड़ा किया गया। माननीय न्यायालय ने वहां पर 1996 तक जामा मस्जिद, जो पहले हरिहर मंदिर था, हरिहर मंदिर के मुद्दे को लेकर के, जहां पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास वह स्थल था, उस स्थल के सर्वे का आदेश माननीय न्यायालय ने दिया और वहां पर एक टीम आकर के उसकी सर्वे करने लग गए। इसी को लेकर के उपद्रव प्रारंभ होता है और प्रारंभ होने के बाद उस उपद्रव का निशाना पुलिसकर्मी थे और उसका निशाना निर्दोष हिंदू था। 1947 से कमोवेश कोई वर्ष ऐसा नहीं बीता था जब वहां दंगे न हुए हो, भीषण दंगे न हुए हो। 1976 और 1978 में तो इतना भीषण दंगा हुआ था, 150 हिंदू मार दिए गए।
0: तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप। अब खबरों की ओर वापस लौटते, झारखंड की बात करते हैं और झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा धांधली मामले में अब जैसे जांच आगे बढ़ रही है, खुलासे हो रहे हैं, जब खुलासे हो रहे हैं तो सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सीआईडी की पूछताछ में बुद्धेश्वर भगत के कथित खुलासे से परीक्षा माफिया के पूरे नेटवर्क पर सवाल खड़ा हुआ। अब सूत्र ये बता रहे हैं कि 14वीं जेपीएससी परीक्षा में सेटिंग का पूरा रेट कार्ड तैयार था और अगर ये खुलासे जांच में सही साबित होते हैं तो करोड़ों के सैकेट की तस्वीर बेहद चौंकाने वाली है। सामान्य और ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थियों से अंतिम चयन के लिए 1 करोड़ रुपए, एससी एसटी अभ्यर्थियों के लिए 80 लाख रुपए का रेट तय था। करीब 100 करोड़ रुपए वसूलने की तैयारी थी और रकम सिर्फ कैश में लेने की योजना थी। शशि भूषण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशि, ये तो बहुत बड़ा नेक्सस है और 1 करोड़ 80 लाख अगर लिए जा रहे हैं तो सोचिए ये कहां तक इसका दायरा फैला हुआ और क्या खुलासे हो रहे हैं।
3: अरे खुलासे तो हो रहे हैं और सीआईडी जो झारखंड सरकार के अंदर आती है, उस सीआईडी की जांच में लगातार जो अलग अलग नेटवर्क से जुड़े किरदार हैं, जो पेपर लीक करा रहे थे, सेटिंग करा रहे थे जेपीएससी और जेएससी सीजीएल जैसी परीक्षाओं में, उनको लेकर के रिमांड पर जो पूछताछ हो रही है उसमें ये खुलासे हो रहे हैं। बुधेश्वर भगत एक ऐसा ही किरदार है। अभय तिवारी ने क्या खुलासे किए थे 2 दिन पहले हमने बताया था हिमांशु, और अब बुधेश्वर भगत जो बिचौलिए के तौर पे काम कर रहा था इस पूरे सिंडिकेट में, उसने ये कहा है कि उसकी तरफ से, सिर्फ उसकी तरफ से 100 करोड़ रुपए वसूली का टारगेट था और बजाबता उसने जो सोर्सेज बता रहे हैं सीआईडी की पूछताछ में बताया है कि जो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स रहे अभ्यर्थी थे, जो सेटिंग जिनकी की जा रही थी, उनसे 1 करोड़ रुपए लिए जाने की तैयारी थी। जो एससी और एसटी कैटेगरी के थे उनसे 80 लाख रुपए, और सबसे दिलचस्प बात यह हिमांशु कि पीटी की परीक्षा में सेटिंग पहले स्तर पर करनी थी, पहला टारगेट पीटी का था 14वीं जेपीएससी के अंदर, और उसमें 10 लाख रुपए एडवांस लिए गए। ये तमाम रकम जो है वो कैश में डील होनी थी। पूरा प्लान ये था सिंडिकेट का कि पहले 10 लाख रुपए में पीटी की परीक्षा क्रैक कराई जाए सेटिंग वाले अभ्यर्थियों की, और उसके बाद
0: जो खुलासे हो जाएंगे इसमें, ऐसा ही लग रहा है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब चलिए दिल्ली से एक बड़ी खबर की बात करते हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के एमए इतिहास के सिलेबस में बड़े बदलाव पर विवाद अब बढ़ गया है, खड़ा भी हो गया। यूनिवर्सिटी ने सेमेस्टर 3 के फाइनल सिलेबस से द दिल्ली सल्तनत स्ट्रक्चर्स ऑफ अथॉरिटी इन मिडविल नॉर्थ इंडिया पेपर को हटा दिया। ये वही पेपर था जिसमें 13वीं और 14वीं सदी के उत्तर भारत के राज्य के गठन, सत्ता के ढांचे और राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का अध्ययन कराया गया। सिर्फ दिल्ली सल्तनत ही नहीं, हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया लगभग 1400 से 1550 समेत प्राचीन और मध्यकालीन भारत से जुड़े कई और अहम पेपर भी फाइनल सिलेबस से बाहर हो गए हैं। अनमोल वाली हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनमोल, क्या विवाद खड़ा हो रहा है और आगे क्या होने वाला है?
4: हिमांशु, जैसे कि आप जानते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने नेशनल एजुकेशन एनईपी के तहत जो पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रेमवर्क है उसके तहत एक बड़ा बदलाव किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के सिलेबस में जो इलेक्टिव सब्जेक्ट था दिल्ली सल्तनत को लेकर जो है उसे हटा दिया। 13वीं से 14वीं शताब्दी पर दिल्ली सल्तनत को लेकर डिस्कशन करता था और इसके साथ और अन्य जो टॉपिक्स हैं उनको भी हटाया गया है। बात की जाए चाहे उत्तर भारत के इतिहास को लेकर, जेंडर एंड वुमन इन अर्ली इंडिया को लेकर, पॉलिटिकल प्रोसेस इन एंशियंट इंडिया और रिलीजियस एंड सोसाइटी इन एंशियंट इंडिया लिटरेचर, ऐसे कुछ जो टॉपिक्स हैं उसको हटा दिया गया, जिसको लेकर कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी के अंदर जो एक विवाद है वो शुरू हो गया है। जो क्रिटिक्स हैं, एकेडमिक्स हैं, कहीं ना कहीं सेफनाइजेशन, भगवाकरण के आरोप लगा रहे हैं। हालांकि यूनिवर्सिटी ने बचाव करते हुए कहा है कि इसे पोस्ट ग्रेजुएशन के इलेक्टिव जो सब्जेक्ट था दिल्ली सल्तनत का उसको हटाया गया है, ना कि यूजी कोर्सेज से हटाया गया। पर कहीं ना कहीं जो इसके क्रिटिक्स हैं कह रहे हैं कि ये जो कोर्स है ऐसा ही किया जा रहा है। जैसे एनसीईआरटी में भी हमने देखा कि पहले बहुत से जो टॉपिक्स मुगल हिस्ट्री और मुस्लिम हिस्ट्री से जुड़े हुए थे उनको हटाया गया था, जिसको लेकर कांग्रेस बीजेपी पर आक्रामक हुई थी। तो कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर हम देख सकते हैं कि राजनीति भी
0: यहाँ पर रुकती हुई नजर नहीं आएगी। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए अब बात कर लेते हैं राहुल गांधी के एक बयान की, कटाक्ष की, जिसको लेकर जमकर हंगामा हो रहा है बीजेपी की तरफ से। तो मोर्चा खोल दिया गया है बीजेपी की तरफ से, संस्कारों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, अभद्र कहा जा रहा है, अश्लील कहा जा रहा है। राहुल गांधी संदीप दीक्षित मौजूद थे, विदेश नीति की बात की जा रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और फिर कैसे गले मिलते हैं उस पर भी कटाक्ष किया गया। कुछ नाम भी सामने आए जिसके बाद अब बीजेपी की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और ये भी राहुल गांधी की तरफ से कहा गया, पता नहीं ये पीएम मोदी के दिमाग में कौन डालता है, कहां से डालता है। अब जब कांग्रेस की तरफ से तंज किया गया, राहुल गांधी की तरफ से तंज किया गया, तो पलटवार किया गया। अब राहुल के बड़े बयान पर बड़ा घमासान, जेपी नड्डा कह रहे हैं ऐसे विपक्ष का नेता देखना बाकी रह गया था बस। कांग्रेस के लिए भी इससे दुख का क्या विषय होगा कि उन्हें राहुल गांधी को नेता मानना पड़ रहा है, ऐसा विपक्ष का नेता देखना बाकी रह गया था, ये देश के लोकतंत्र का दुर्भाग्य है।
5: देखिए ये बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस और कांग्रेस के नेता लगातार देश और देश की सेना, माननीय प्रधानमंत्री और हमारी पूरे गणतंत्र का अपमान करते हैं। मुझे लगता है कि कम से कम स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उनको भगवान सद्बुद्धि दे और वो उससे बाज आए। और यही कारण है कि जनता ये उनके द्वारा किए गए अपमान का हिसाब आने वाले चुनावों में करती है। मैं एक बार फिर आपके माध्यम से अपील करूंगा कि कांग्रेस के लोग कृपा करके ऐसे अपमानजनक व्यवहार को छोड़े जिससे देश की इज्जत खराब होती
6: है। राहुल गांधी की अपब्रिंगिंग दिखाता है और ये दिखाता है कि एक फ्रस्ट्रेटेड आदमी किस तरीके से इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री के प्रति उसके विचार हैं। एंड ही लुक्ड एज अ मैन हु इज एक्सट्रीमली फ्रस्ट्रेटेड एंड ही बिहेव लाइक अ क्लाउन। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोई भी अगर व्यक्ति जिसका मानसिक संतुलन ठीक होगा और जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो इस तरीके का कृत्य नहीं करेगा। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि राहुल गांधी एक 55 साल के बालक है जिनकी बुद्धि अभी भी बालक बुद्धि वाली है और जो इस देश के लोकतंत्र से इतनी नफरत करते हैं कि अगर इस देश की जनता उनको प्रधानमंत्री के पद पे उनके खानदान को नहीं बैठा है तो वो हर डेमोक्रेटिक पद का मजाक उड़ाना शुरू करते हैं।
7: बीजेपी के बारे में अगर कोई इस तरह का इंसल्ट टू वुमेन आता है वो कोई पहली बार आ रहा है। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने बोला था, जर्सी गाय किसने बोला था। जब इनका नेता ऐसा हो तो बाकी जो बोल रहे हैं उससे क्या फर्क पड़ रहा है।
8: जनता ने जिनको 3-3 बार नकारा अब वो गाली गलौज पर उतर आए हैं, ओछी राजनीति पर उतर आए हैं। राहुल गांधी जी की भाषा अमर्यादा और अहंकार से भरी नजर आती है। राजनीति में मतभेद लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन अशोभनीय टिप्पणी, संवैधानिक पदों का अपमान, ये एक आदत सी बन गई है राहुल गांधी जी की। अब तो लगता है राहुल गांधी जी का पालन पोषण और संस्कार, इस पे प्रश्न चिन्ह उठने लगे हैं। कांग्रेस की मानसिकता उजागर हो रही है, भारत की गौरवशाली राजनीतिक परंपरा रही है और इस गौरवशाली राजनीतिक परंपरा का अपमान बार बार कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया, विशेषतौर पर राहुल गांधी जी ने किया है। आप कल्पना कीजिए एक महिला विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्ष पर अभद्र, अमर्यादित और ओछी टिप्पणी करना, ये राहुल गांधी जी और कांग्रेस की मानसिकता दिखाती है।
9: प्रधानमंत्री जी हमारे जहां जाते हैं, जिस ढंग से मिलते हैं, राहुल गांधी ने वही तो उठाया था। राहुल गांधी ने तो और कुछ कहा नहीं, किसी और ने कहा हो तो उसकी जिम्मेदारी राहुल गांधी की तो नहीं हो सकती। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, भारत की विदेश नीति इस समय सबसे कमजोर और भारत के हितों के सबसे ज्यादा खिलाफ है।
10: नीचता की हद है और राहुल गांधी आज लगभग, मैं तो पहली बार कह रहा हूं कि राहुल गांधी आधा फ्रस्ट्रेशन उनके चेहरे से झलकता है, वो पागल हो चुके हैं। अगर सोनिया जी ने उनका इलाज नहीं कराया तो एक दिन उन्हीं के लिए घातक हो गया। मोदी जी को देख देख करके है वो पागल हो जाते हैं और वो कटकटाह होता है ना कुत्ता, उसे ये करने लगते हैं।
11: आज जिस प्रकार की संस्कारहीन, गरिमाहीन, अश्लील और अभद्र बयान राहुल गांधी ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर दिया है, उसे वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं, एक फेल्ड स्टैंड अप कॉमेडियन लग रहे थे। ही वॉज रिजोर्टिंग टू चीप इनवेंडोज एंड ही वॉज इंडल्जिंग इन लॉकर रूम टॉक। इस देश को एक सकारात्मक विपक्ष की जरूरत है। लोकतंत्र में नेता प्रतिपक्ष की बहुत अहम भूमिका होती है एंड दिस कंट्री डिजर्व्स बेटर देन अ 56 ईयर ओल्ड मैन लाइक राहुल गांधी बिहेविंग इन अ जुवेनाइल मैनर।
0: इतना हो हंगामा मचा हुआ है तो आपके मन में यह सवाल चल रहा होगा कि आखिर राहुल गांधी की तरफ से ऐसा क्या कहा गया जिसको लेकर सियासी तूफान खड़ा हो गया, तो वो हम आपको बताते हैं। राहुल गांधी ने कैसे कटाक्ष किया पीएम मोदी की विदेश नीति पर।
12: इनकी इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया, अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस, बट पता नहीं कहां से घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी का मतलब नेताओं से गले लगना।
0: मोदी पर तो कटाक्ष कर ही रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी नहीं छोड़ रहे हैं, उन पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं और राहुल गांधी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जब तक इस्तीफा नहीं तब तक हम उन्हें जगाकर रहेंगे।
12: कि अब कांग्रेस पार्टी ओपोजिशन सबका एक्सप्रेशन चालू है, अब नहीं रुकने वाला वो क्या। हाँ, थैंक यू, टाटा, गुड बाय। और मैं आपको बता रहा हूं, आप लिख लो, जिस दिन तक नरेंद्र मोदी अपना इस्तीफा नहीं देंगे, अमित शाह नहीं हटेगा, उस दिन तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं सो पाएंगे। उनको हम जगा के रखेंगे, पूरी रात जगा के रखेंगे, जब तक वो कलैप्स करके कहें कि भैया ये हमारी बस की नहीं है, माफ करो, छोड़ दो हमें।
0: देखिए, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहे थे हल्द्वानी में सभा को संबोधित किया और उसके बाद वहां से लौटाए, फिर वहां पर हुआ हवन। अब ये मुद्दा उठाया गया राज्यसभा में और मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि मेरा अपमान किया गया, शुद्धिकरण किया गया है मेरा, क्योंकि मैं एससी से आता हूं। इसको लेकर अब जमकर हंगामा भी हो रहा है। प्रियंका गांधी की तरफ से तो यह भी कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मुद्दे पर माफी मांगनी चाहिए। उत्तराखंड में खड़गे के मंच के शुद्धिकरण पर हंगामा जो शुरू हुआ था वो अब थम नहीं रहा है, वो और बढ़ रहा है। प्रियंका गांधी ये कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माफी मांगना चाहिए। बीजेपी है ही ऐसी, बीजेपी ने मेरे वेस्टेज का शुद्धिकरण किया, ये मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया। अब हालांकि इस पर जेपी नड्डा का उसी वक्त राज्यसभा में बयान आया था कि बीजेपी इस तरह की पार्टी नहीं है और अगर इस तरह से हुआ है तो हम जांच कराएंगे, पड़ताल कराएंगे, तहकीकात कराएंगे इसकी, और आपको आपका मन अगर आहत हुआ है तो उसके लिए हम खेद भी जताते हैं, ये बात कही गई थी। अब आप समझिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे हल्द्वानी जाते हैं, बहुत सब आती, वो तो कह रहे लाखों लोग वहां मौजूद थे, किसी का नाम नहीं लिया, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, लेकिन उसके बावजूद अगर बाद में जाकर हवन कराया जाता है, शुद्धिकरण कराया जाता है तो ये गलत है, ये मेरा अपमान है। अब इस पर कांग्रेस की नेता कुमारी शैलजा वो क्या कह रही हैं, वो भी आपको सुनाते हैं।
13: भाजपा की सरकार है वहां पर, ऐसे लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि ये वहां जाकर शुद्धिकरण करें और बताएं कि यहाँ पर हम ये करें और अब जवाब दे रहे हैं और इन्होंने एक तरफ कहते हैं कि हम जांच करेंगे, दूसरी ओर पहले से ही सफाइयां दे रहे हैं। ये तो दोषी हैं पूरी तरह से। देश में जो हमारा संविधान हम सबको जो समानता दे रहा है, समान अधिकार दे रहा है, सबको समान इज्जत दे रहा है, लेकिन भाजपा आरएसएस की सोच नहीं दे सकती। इन्होंने जात पात के नाम पर, धर्म के नाम पर केवल और केवल नफरत फैलानी है। चुनाव आ रहे हैं वहां पर उत्तराखंड में, ये हर तरह के हथकंडे अपनाने पर उतारू हैं, लेकिन जनता इस बार इन्हें माफ नहीं करेगी।
14: अनटचेबिलिटी एक्ट के तहत जो है मामला दर्ज हो, इस तरह की बात खड़गे साहब ने ये मांग की है, क्या कुछ कार्रवाई का आश्वासन दिया है आपको उत्तराखंड सरकार?
13: अब देखेंगे कि क्या काम ये कार्रवाई क्या करते हैं। अभी तक तो ये कह रहे हैं कि इनको कुछ मालूम ही नहीं है, तो ये राज किस बात का कर रहे हैं, सरकार किस बात की अगर इन्हें कुछ मालूम ही नहीं? बिल्कुल, इसमें तो साफ तौर पर SC ST एक्ट पर वो होना चाहिए, एक्शन होनी चाहिए, FIR कब की हो जानी चाहिए थी, गिरफ्तारियां हो जानी चाहिए थी, लेकिन कुछ नहीं किया इन्होंने।
15: तो इस तरह के कृत्य करके वो समाज के अंदर विघटन डाल के किसी तरह से चाहते हैं राजनीतिक लाभ लेना, लेकिन हम इस मौके पे बीजेपी के लोगों से और उनके संगी साथी और नियत के लोगों से कहेंगे कि हम दलितों को, हम पिछड़ों को, आदिवासियों को, मुसलमानों को जितना आप अपमानित करोगे, जितना आप जलील करोगे, हमारा संघर्ष का संकल्प उतना ही और मजबूत होता जाएगा। घटने वाला नहीं है, ये बढ़ने वाला संकल्प है।
0: और देखिए 15 अगस्त है, तिरंगा यात्रा घर घर निकाली जा रही है, दो राज्य और दो राज्य के अलग अलग मुख्यमंत्री, अब जैसे बिहार में सम्राट चौधरी हुए, मध्य प्रदेश में मोहन यादव हुए, इनकी तरफ से तिरंगा यात्रा निकाली गई। हाथों में तिरंगा, जुबा पर जय हिंद। भोपाल में मोहन यादव ने तिरंगे को नमन किया, तो बिहार के मुंगेर में CM सम्राट चौधरी की तरफ से ये तिरंगा यात्रा निकाली गई। 15 अगस्त से पहले हिंद तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री और भारी संख्या में लोग हाथों में तिरंगा थामे इस रैली में थे। यहां पर वक्त उछला, बहुत छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
16: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: मैनकाइंड फार्मा, दिल से स्वदेशी, जान हिंदुस्तान।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: शादी का किचन महके जहाँ गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ
1: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: to finding myself. That's my moment of Sarah.
1: Honey, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं.
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा. रुंगटा स्टील टीएमटी से बना.
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं. रुंगटा स्टील टीएमटी बाय एकदम सॉलिड.

0: जिस मिट्टी में फसल उगती है उसी में भारत की स्वतंत्रता की खुशबू है। इस स्वतंत्रता दिवस आइए उन किसानों का सम्मान करें जो हर दिन देश को मजबूत बनाते हैं। मेरे और क्रिस्टल परिवार की ओर से आपके और आपके परिवार को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: In association with
2: Sera Sanitaryware, it's your moment of Sera. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, देखते रहिए आज तक।

0: 1947 में भारत बटा था तो हिंदू ही कटा था। विभाजन विभीषिका दिवस के बहाने योगी का हिंदुत्व कार्ड, कहा सरहद के दोनों ओर बहा हिंदुओं का खून। आज नौजवानों को भटकाने की कोशिश करने वालों ने ही बंटवारा करवाया। कांग्रेस के मंच से पीएम का मखौल उड़ाने पर राहुल गांधी के खिलाफ आग बबूला हुई बीजेपी, कहा ये संस्कारहीन अभद्र और अश्लील भाषा। नड्डा बोले देश का दुर्भाग्य है कि हमें ऐसा नेता विपक्ष मिला। उत्तराखंड के चमोली में टनल में फंसे लोगों के रेस्क्यू में बाधा, बचाव के दौरान रिसने लगा पानी। हाइड्रो प्रोजेक्ट की सुरंग में अब तक 7 की मौत, 14 बचाए गए। सीएम धामी ने लिया राहत बचाव का जायजा। यूएई से दबोचकर भारत लाया गया ड्रग तस्करी का बड़ा सरगना वीरेंद्र सिंह वसोया। गृह मंत्री का पोस्ट, नशे के माफिया विदेश में कहीं भी हो खींच कर लाएंगे। ड्रग्स तस्करी के खिलाफ मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। और जयपुर के स्कूल की कैंटीन से पेटीज खाने के बाद गई छात्र की जान। सीसीटीवी में बेहोश दिखा 12वीं क्लास का प्रिंस। मां का आरोप, वक्त पर इलाज होता तो बच जाता बेटा। स्कूल के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
0: राजस्थान के जयपुर से एक ऐसी खबर आई जिसने हर माता पिता के मन में चिंता बढ़ा दी। उनका बेटा स्कूल गया, ठीक था, बिल्कुल ठीक था। लंच होता है, वो पेटीज खाता हो, पेटीज खाने के बाद उसको सांस नहीं आती है, टीचर से बोलता है, फिर उसकी तबीयत बिगड़ती जाती है, माँ बाप को बुलाया जाता है। 48 मिनट तक वो स्कूल में रहा और माता पिता का ये आरोप है कि अगर वक्त रहते उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता तो उसकी जान बच जाती। अब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इतनी देर तक स्कूल में वो क्यों रहा, अगर उसकी तबीयत बिगड़ रही थी, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी तो उसे अस्पताल क्यों नहीं भर्ती कराया गया, जबकि स्कूल से अस्पताल बेहद नजदीक था, सही टाइम पर पहुंचाया होता तो जान बच जाती। बहुत से सवाल खड़े हो रहे हैं, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
2: आप 2 सेकंड सांस रोक के बता दो, मैं आप लोगों को मान जाऊंगा।
3: 1 घंटे तक रोके रहे,
2: 1 घंटे में जान पे रहा उसकी, कैसा हो रहा था वो।
4: सिर्फ इतना है कि न्याय चाहिए उस बच्चे के लिए। बच्चा तो गया पर किसी और की जिंदगी उस स्कूल में खराब नहीं हो।
5: जब आपके सामने आपका कोई दोस्त तड़प तड़प कर दम तोड़ जाए और स्कूल प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा रह जाए तो खून खौलना लाजमी हो जाता है। जयपुर के महाराणा प्रताप स्कूल के इन छात्रों का भी खून खौल रहा है, क्यों ये इन्हीं बच्चों से सुनिए।
6: उसने बाइट ली, वो भागा, सांस नहीं आ रही थी, पानी पीने गया और फिर वो बेहोश हो गया। पूरा नहीं, आधा ही खाया था, आधी फेंक दी थी।
7: खराब थी,
6: हॉस्पिटल भेज देते तो वो आज चिंता रहे।
5: इस स्कूल में 12वीं क्लास के छात्र प्रिंस की जिन हालात में मौत हुई उसे सुनकर किसी का भी आक्रोश भड़क जाए। इस स्कूल में छात्र कैंटीन से पेटीज खरीदता है, खाते ही उसकी तबीयत बिगड़ती है, उसकी सांस बंद हो जाती है, बदन नीला पड़ जाता है, मुंह से झाग निकलने लगता है, लेकिन स्कूल प्रशासन अस्पताल ले जाने की जहमत तक नहीं उठाता।
4: एक औलाद किसी ने, एक लड़का तो इनके, क्या इनके लिए एक बार बताओ क्या बचा इनकी जिंदगी में। सड़क पे पड़े हुए एक मरीज को भी लेकर के भग जाता है पर ये लोगों ने उसको उठा करके कुत्तों के जैसे भटक करके रखा अपने वहां पे ऑफिस में 30 मिनट तक।
5: जाहिर है इस स्कूल ने लापरवाही की हद कर दी है। दरअसल इस स्कूल ने अपराध किया है। 50 से 100 मीटर की दूरी पर अस्पताल है, लेकिन स्कूल प्रशासन को बच्चे को वहां तक ले जाने का ख्याल तक नहीं आया। माना कि बच्चे की हालत काफी बिगड़ गई थी, लेकिन कम से कम उसे अस्पताल तो ले जाते, क्या पता कोई अनहोनी हो जाती। वक्त पर इलाज से बच्चे की जान बच जाती, लेकिन अब कुछ नहीं बचा है सिवाय एक माँ के आंसू और पिता के ताउम्र कुरीदने वाले दर्द के। हुनहार प्रिंस अब इस दुनिया में नहीं रहा, परिवार के लिए अब उसकी यादें ही शेष हैं। माता पिता को जब भी उसकी याद आएगी तो ये ख्याल भी आएगा कि प्रिंस की किन परिस्थितियों में मौत हुई थी। अब सारा दारोमदार पुलिस पर है, क्या प्रिंस के माता पिता को इंसाफ मिल पाएगा?
3: संदिग्ध परिस्थितियों में डेथ का मैटर हमारे सामने आया है और उस पर जो इनके परिजन हैं उन्होंने ये आशंका जताई है कि स्कूल में किसी प्रकार की लापरवाही की वजह से उनकी मृत्यु हो गई है, तो उस पर भी प्रकरण पंजीबद्ध करके उसमें अनुसंधान किया जा रहा है। जो मौके की फुटेज और ये सारी चीज़ें उनको कलेक्ट किया जा रहा है और उसमें भी जो भी चीज़ें आएंगी, जो फैक्ट्स आएंगी, वो आपके सामने हम रखेंगे।
5: पुलिस जाँच की बात कर रही है, उसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। मौत की वजह का पता तो तभी चल पाएगा, लेकिन पुलिस की असली जिम्मेदारी ये तय करने की है कि वक्त पर अस्पताल न पहुंचाने वाले स्कूल पर सख्त कार्रवाई जरूर हो। विशाल शर्मा, जयपुर आज तक।
0: और देखिए, आपके मन में भी ये सवाल चल रहा होगा कि आखिर 48 मिनट तक स्कूल प्रशासन क्या करता रहा, टीचर्स क्या करते रहे, स्टाफ क्या करते रहे। सही वक्त पर अगर अस्पताल ले जाते तो शायद उसकी जान बच जाती, और यही लापरवाही का आरोप परिजन लगा रहे हैं। आक्रोशित है, नाराजगी है, उसके बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे छात्र आज एकजुट हुए और स्कूल प्रशासन के खिलाफ सवाल उठाए।
2: आप दो सेकंड सांस रोक के बता दो, मैं आप लोगों को मान जाऊंगा।
7: एक घंटे तक रोक के रहे,
2: एक घंटे में जान पे रहना, उसके कैसा हो रहा था वो।
4: सिर्फ इतना है कि न्याय चाहिए उस बच्चे के लिए। बच्चा तो गया, पर किसी और की जिंदगी उस स्कूल में खराब नहीं हो।
8: स्कूल में दिल को झकझोर देने वाली वारदात, 17 साल के प्रिंस की मौत पर जबरदस्त बवाल, स्कूल वालों पर लापरवाही का आरोप और लोगों का भारी विरोध प्रदर्शन। जयपुर में जिस तरह से पेटीज खाने के बाद युवक की तबीयत बिगड़ी और फिर उसकी जान चली गई, उसे लेकर अब गुस्सा और नाराजगी साफ नजर आ रही है। स्कूल प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं।
4: यही मांग है कि मेरे बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए, हर उस माँ के बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए जिसका बेटा बेटी यहाँ पढ़ रहे हैं। आज मेरा प्रिंस है, कल कोई और प्रिंस नहीं हो। मेरा बेटा बेमौत इनके सामने मर गया।
9: कितने बजे बताया था
4: इन्होंने? बताया मेरा हस्बैंड के पास फोन आया 11:14 में, 1:35 पर लंच टाइम होता है, उसी वक्त मेरे बच्चे ने पेटीज खाई थी और मेरे बच्चे ने वहीं पेटीज खाई थी। पेटीज यहाँ जल्दी जल्दी में खाई, बोले डर के कि सर मारते हैं या अगर लंच थोड़ा सा भी लेट कर देंगे तो सर पिटाई करते हैं, बता रहा।
8: परिवार वालों का आरोप है कि प्रिंस की हालत बिगड़ने के बाद स्कूल प्रशासन ने उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाने के बजाय परिवार को सूचना दी और उन्हें स्कूल बुलाया। परिजन स्कूल पहुंचे और प्रिंस को निजी अस्पताल लेकर गए। वहां चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे दूसरे अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी।
4: 11:14 में इनका फोन आया सर का, बोले आप आ जाओ, बच्चा आपका ना बीमार है, इतना ही बोला था इन्होंने। लेकिन उस वक्त बच्चा मेरा बेहोश होके मर गया था, बेहोश नहीं सीधा ही मर गया था इनके सामने। उसने जब यूं किया तो वो हेल्प मांग रहे हैं ना पानी की, मेरी हेल्प करो, मैं जीना चाहता हूँ। वो मैडम इग्नोर करके चली गई और मरे हुए बच्चे को वहाँ पे ले जा करके उस सोफे वाले कमरे में क्यों ले गए? यहाँ पे एक ऑफिस है, यहाँ एसी चलती है, खुला ऑफिस है।
8: महाराणा प्रताप स्कूल में 12वीं के छात्र प्रिंस सोनी की मौत के बाद परिजनों और छात्रों में आक्रोश है। लोगों ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया और संस्था प्रधान और आरोपी शिक्षकों की गिरफ्तारी की मांग की।
10: पेटीज खाली थी, उसे गले में अटक गई, वो पानी पीने भागा, फिर वहाँ पे वो अनकॉन्शियस होके बेहोश हो गया, तो इन लोगों ने उसको सीधा लिटा दिया, हॉस्पिटल लेके नहीं गए और घर वालों को फोन करा, बस 1 घंटे तक लिटा के रखा उसको।
9: 1 घंटा लिटा के रखा उसको।
10: आधे घंटे तक सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा है उसकी सांस चल रही है, लेकिन उन लोगों से 50 मीटर की दूरी पर वो सामने हॉस्पिटल है। वहाँ पापा को फोन करके बोलते तबियत खराब है आप लेने आ जाओ, ये नहीं बोला बेहोश हो गया।
11: देखे जगह उल्टा लिटा दिया उसको, और सांस कहाँ से आता, वैसे रुका हुआ था और रुक गया उल्टा लिटाने के बाद।
8: प्रदर्शन के दौरान स्कूल परिसर वी वॉन्ट जस्टिस के नारों से गूंज उठा। जयपुर में जिस तरह स्कूल में बच्चे की जान गई वो बेहद सनसनीखेज है। घटना की तस्वीरें भी हैरान करने वाली हैं। इस घटना के बाद लोगों में भारी गुस्सा है और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कड़े एक्शन की मांग हो रही है। जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।
0: और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन विभाजन विभीषिका दिवस पर अपनी बात रख रहे हैं गुरुग्राम में।
12: किया था मित्रों, और मैं कह सकता हूं आज भी उनकी मानसिकता बदली नहीं है। कल देश को बांटने का काम किया था, आज समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। इनकी रीति और नीति में कोई परिवर्तन नहीं आया है मित्रों। मैं पूछता हूं कांग्रेस के साथियों से कि आखिर आपने उस विभाजन का जो दंश झेले परिवारों से, उनसे कभी सार्वजनिक रूप से आपने माफी मांगी? आपने कभी उसके दुख को समझा या उन विषयों की चर्चा कभी समाज के साथ की? कभी नहीं किया आपने, क्योंकि आपको मालूम था कि अगर हम इसकी चर्चा करेंगे तो सबसे पहले आपके चेहरे का नकाब उतर जाएगा। लोग दंश कहते हैं कि हमने आजादी दिलाई है, हमने आजादी के लिए संघर्ष किया है। मित्रों, जिन्होंने आजादी के लिए संघर्ष किया उन्होंने तो फांसियां लगा ली देश के तिरंगे के लिए। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि सत्ता किसको मिलेगी, उन्होंने तो केवल बलिदान दिया था। मित्रों, मैं इसीलिए कहता हूं जब कांग्रेस का नाम आई से जुड़ता है तो लोग कहते हैं कि कुछ लोग ये इंडियन कांग्रेस है। मैं हमेशा कहता हूं ये इंडियन कांग्रेस हो ही नहीं सकती। जो कांग्रेस आजादी के लिए लड़ी थी वो कांग्रेस कभी भी देश का बंटवारा की नींव रख ही नहीं सकती। कहीं ना कहीं चंद लोगों ने देश के बंटवारे की नींव रखी और उस समय ही कांग्रेस हमेशा के लिए दफन हो गई। मित्रों, मैं आज जब आपके बीच में ये चर्चा कर रहा हूं तो मुझे वो हत्याएं, वो आगजनी, वो बहन बेटियों पर अत्याचार और जबरन धर्म परिवर्तन करने के लिए जो विवश हुआ था, कहीं ना कहीं उनके बातें या उनके स्मरण को अगर याद कर रहा हूं तो अपने आप में शरीर में हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मित्रों, महात्मा गांधी जी ने भी पदयात्रा की उस कलकत्ता की भूमि पर जहां पर सबसे बड़ा भीषण मानवता को संसार करने वाला सांप्रदायिक दंगा हुआ और कितने ही लोगों विस्थापित हुए, कितने ही लोगों ने अपनी जानों की आहुति दी। 1947 में रावलपिंडी से पंजाब तक अनेक क्षेत्रों में हिंसा हुई और वो हिंसा महाविस्थापन की शुरुआत हुई जिसमें लाखों लोगों ने अपने जीवन का आहुति दी। मित्रों, लेकिन मित्रों आज जब हम उन आंकड़ों की चर्चा करना चाहते हैं तो आज की पीढ़ी को यह जानना इसलिए जरूरी है कि कितनी बड़ी त्रासदी हुई थी। 1.5 करोड़ से अधिक परिवारों को विस्थापन का दंश झेला, 30 लाख से अधिक लोगों ने अपनी जानें गवाई और कितने ही मां बहनों ने अपनी इज्जत और प्रतिष्ठा गवाई, कितनों ने केवल अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपनी जानों की आहुति दी। लेकिन लोग इन आंकड़ों का जिक्र इतिहास के पन्नों में नहीं होने देना चाहते। लोग ये सोचते थे कि शायद हमें अमृत मिला है, हम कभी भी इस कड़वी सच्चाई को जनता के बीच में आने नहीं देंगे। और मुझे खुशी है कि आज की पीढ़ी को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब स्मृति दिवस की बात कही तो आज की पीढ़ी को वो सभी सच्चाई कहीं ना कहीं बताने का, समझाने का और वो अनुभव के साथ जोड़ने का मौका मिला है। मित्रों, मैं आज के दिन उस बात की भी चर्चा करना चाहता हूं जिस प्रकार से बड़े पैमाने पर रिफ्यूजी कैंप बने, उन रिफ्यूजी कैंप में सैकड़ों की संख्या में जब ट्रेनों से लोग आते थे और आकर अपना जीवन एक अंधकार में देख रहे थे, उस समय भी समाज के लोगों ने खड़ा हुआ। और मुझे खुशी है कि हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उस समय भी लोगों की सेवा की और कहीं ना कहीं समाज में एक दूसरे के लिए खड़े होने का भाव पैदा किया। जो लोगों ने इसको केवल सत्ता देखी, मैं उनसे पूछता हूं आपने तो प्रतिबंध लगाने का काम किया था, आपने उस सेवा के भाव को कभी नहीं देखा जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से उस समय किया था। मित्रों, मुझे आज गर्व होता है कि मैं भी उस विचार के साथ जुड़ा हुआ परिवार का जुड़ा हुआ सदस्य हूं जिसने इस देश में उस त्रासदी के समय में भी सेवा के भाव से काम किया। मित्रों, लेकिन जहां एक ओर हम उन परिस्थितियों की इसलिए चर्चा कर रहे हैं, वो वाकया इसलिए समाज के सामने रख रहे हैं मित्रों, क्योंकि आज भी हमें जब अपने लिए नए भारत बनाने का समय है, जब हम एक विकसित भारत बनाने की सपना देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अभी भी हमें सचेत रहने की आवश्यकता है।
0: देखिए, हमारे देश में छात्रों को उच्च शिक्षा देने की बात की जाती है, लेकिन कई बार छात्र उसकी पोल खोल देते हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ का एक वाकया आपको बता देते हैं, जहां पर जैन अल्फा स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन वो सड़क पर बैठ गए। क्यों बैठ गए? क्योंकि शिक्षक ही नहीं है जो उनको पढ़ा सके, और इस वजह से नारेबाजी करने लगे, सड़क जाम हो गई।

0: और इस वजह से नारेबाजी करने लगे, सड़क जाम हो गई, गाड़ियां आगे बढ़ नहीं पाई। अब ऐसे में कैबिनेट मंत्री वहां से निकल रहे थे असीम आरोप, उन्होंने देखा कि गाड़ियां जाम है, आगे बढ़ नहीं रही है, छात्र हंगामा कर रहे हैं और ये छोटे छोटे बच्चे हैं, जनरल अल्फा इन्हें कह सकते हैं। तो फिर इनसे बातचीत की, इनको समझाया गया, हालांकि 15 से 20 मिनट रहा ये जाम, लेकिन आप समझिए कि छात्रों को शिक्षक नहीं है इसीलिए उन्हें यहां पर बैठना पड़ रहा है। हमारे सहयोगी संतोष की एक रिपोर्ट आपके सामने।
1: देखिए, ये पारा थाना क्षेत्र के बुद्धेश्वर चौराहे के जयनारायण स्कूल है, जयनारायण कॉलेज है, वहाँ पर ये इंटर कॉलेज है, वहाँ पर ये बच्चों का सीधे से ये कहना था कि वहाँ पे टीचर्स नहीं है और टीचर्स नहीं होने की वजह से उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है और वो बच्चे सड़क पर उतर आए हैं। आपको याद होगा कि सबसे पहले बच्चों के द्वारा बिजली पानी को लेकर के प्रदर्शन फतेहपुर में हुआ, फिर हमीरपुर में हुआ और अब लखनऊ में। तो एक नए तरीके का ट्रेंड है कि बच्चों की अगर बात नहीं मानी जा रही है तो वो सड़क पर आ रहे हैं, वो अपनी बात रखने के लिए अब मुखर हो रहे हैं। उसी कड़ी में ये बुद्धेश्वर चौराहे पर ये प्रदर्शन हुआ, हालांकि बुद्धेश्वर चौराहे पर ये प्रदर्शन बहुत देर नहीं चल पाया, 15 से 20 मिनट ही चला। उसी बीच में कन्नौज जा रहे उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने जब जाम में वो भी फंसे तो उन्होंने बच्चों से बात की, स्कूल के अंदर ले गए, उनसे संवाद किया और तमाम जो बच्चों को एक तरीके से भरोसा जताया। लेकिन ये बच्चे सड़क पर उतर आए सिर्फ इस बात पर कि स्कूल में टीचर ही नहीं है, तो ये पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है कि वहाँ पर टीचर्स नहीं हैं और बच्चों को सड़क पर उतरना पड़ा कि हमारी पढ़ाई कराने वाले टीचर तो दे दो। तो ये तमाम मुद्दे थे।
0: और देखिए, ये छात्र थे, अब आप सोचिए, उच्च गुणवत्ता की जो बात की जाती है शिक्षा की, अब वहां पर ये छोटे छोटे छात्र जो फोर्थ क्लास में, फिफ्थ क्लास में, थर्ड, सेकंड, एट्थ, ऐसी क्लासों में पढ़ रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि शिक्षा की नहीं है, मार्क्स कहां से लाएंगे हम, नंबर कहां से लाएंगे, अपना भविष्य कैसे संवारेंगे, क्योंकि हमें गुरु की जरूरत तो पड़ती है और जब तक गुरु ज्ञान नहीं देंगे तब तक हम कुछ कर नहीं सकते। और ऐसे में गुरुओं की चाह के लिए ये सड़क को जाम करना पड़ा। और अब आपको इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें, अब देखिए जेन ज़ी की बात की जा रही है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से विपक्ष पर बड़ा हमला किया गया है और जेन ज़ी की बात यहां पर की गई है कि जेन ज़ी को भटकाने की साजिश हो रही है, किसकी तरफ से, विपक्ष की तरफ से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है।

0: तो देखिए हर जगह बात हो रही है छात्रों की। अब जब दिल्ली के जंतर मंतर पर जोरदार प्रदर्शन हुआ और उसके बाद सबका टेंशन कहां पहुंच गया, झारखंड के रांची में पहुंच गया। आज 21वां दिन है और 21वां दिन होने के बावजूद छात्रों का आत्मविश्वास कम नहीं हो रहा है। आंदोलन का 21वां दिन और सरकार को चुनौती अभी भी दी जा रही है। आप लाइट काट दीजिए कोई बात नहीं, हम वहां पर बैठे हुए हैं, हम हटेंगे नहीं जब तक हमारी मांगे नहीं मान ली जाती हैं। जब तक इस अव्यवस्था को दूर नहीं किया जाता है, जब तक इस धांधली करने वालों के गुनहगारों को पकड़ा नहीं जाता है, तब तक हम हटने वाले नहीं है। ये छात्रों ने बहुत स्पष्ट कह दिया।
1: जेपीएससी और जेएससीसी रिफॉर्म को लेकर के छात्रों का आंदोलन रांची में 21वें दिन भी जारी है। 10 अगस्त को छात्रों ने विधानसभा का घेराव किया था और उसके ठीक एक दिन पहले यानी 9 अगस्त को सरकार से अंतिम वार्ता हुई थी। इस वार्ता में सरकार ने उन दो प्रमुख मांगों को नहीं माना जिसमें सीबीआई जांच और जेएससीसी की नियुक्तियों को रद्द करने पर छात्र मांग कर रहे थे। लेकिन अब छात्रों ने नया ऐलान किया है। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन जो रिफॉर्म मंच है उसके बैनर तले तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। मंच के लोगों ने कहा है कि इस तिरंगा यात्रा का मकसद छात्रों की एकजुटता को दिखाना है। वहीं सरकार से लगातार जो अपनी प्रमुख दो मांगे हैं उसको मानने की मांग जो छात्र हैं वो कर रहे हैं।
0: यहां रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
5: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
6: वो सभ्यता संपूर्ण उन्होंने भूल गया है क्योंकि वो सभ्यता ही नहीं है उनके पास। तो अपने आप को समझते हैं ही इज बॉर्न।

0: टू रूल, ये इनके मन में अहंकार है। जब ये पूरा नहीं हो रहा है, हताश होके अत्यंत लो लैंग्वेज, फिल्दी लैंग्वेज उपयोग कर रहे हैं।
1: जो आदमी मानसिक दिवालियेपन में हो, राहुल गांधी उसी श्रेणी में आते हैं। उन्हें संसद के बदले आगरा जैसे संस्थान में रहना चाहिए और जिसका कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, नीचता की हद है।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: अम्बाला गैंग की बात करते हैं जहां पर जमकर बवाल हुआ और हाईवे जंग के मैदान में तब्दील हो गया। एक तरफ सिख संगत का प्रदर्शन चल रहा था, इस दौरान पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे और फिर हंगामा बढ़ता गया। इस दौरान लाठीचार्ज भी हुआ, पथराव भी हुआ और कई जगह झड़प भी हुई। बवाल की शुरुआत गुरसिमरन सिंह मंड के खिलाफ FIR की मांग को लेकर हुई। वो FIR की मांग मान भी ली गई, लेकिन उसके बाद एक और नई मांग आई जिसको लेकर जमकर हंगामा हुआ और ये कहा गया कि जितने भी सिख प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया था या हिरासत में लिया गया था 7 अगस्त में प्रदर्शन के दौरान, उन सबको तुरंत रिहा किया जाए। वहां से मामला बिगड़ गया।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ।
4: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
5: सर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं हल्द्वानी में पब्लिक स्पीच में रामलीला मैदान में रामलीला स्टेज पर भाषण किया और लाखों लोग वहां पर थे। उस वक्त मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किया।
6: बीजेपी, क्योंकि खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग थे, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और मैं भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं, बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नेवर। लेकिन आपने कहा है, हम इसकी तहकीकात भी करेंगे।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: शादी का किचन महके जहाँ गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ
1: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं और बेहतर मौके की उम्मीद लगाए बैठे प्रोफेशनल्स के लिए राहत की खबर आई है। लंबे समय से सुस्ती झेल रहे व्हाइट कॉलर जॉब मार्केट में फिर से तेजी लौटती दिखाई दे रही है। खासकर टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े सेक्टर्स में कंपनियां तेजी से नई हायरिंग कर रही हैं। आंकड़ों के मुताबिक जुलाई में देश में व्हाइट कॉलर हायरिंग में सालाना आधार पर 5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बीते महीने जॉब स्पीक इंडेक्स बढ़कर 3,227 पर पहुंच गया, जो पिछले साल जुलाई में 3,074 था। इस दौरान AI और मशीन लर्निंग से जुड़े रोल्स में 33% की सबसे तेज ग्रोथ दर्ज की गई। वहीं IT और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से जुड़े पदों में 23% की बढ़ोतरी हुई, जबकि कुल IT और सॉफ्टवेयर सर्विसेज सेक्टर में हायरिंग 6% बढ़ी है। दरअसल बदलती टेक्नोलॉजी के साथ कंपनियों का फोकस ऐसे स्किल्स पर है जो भविष्य की जरूरतों को पूरा कर सकती हैं। यही वजह है कि AI, डेटा और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में प्रोफेशनल्स की मांग लगातार बढ़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इंश्योरेंस सेक्टर में हायरिंग 10%, रियल एस्टेट सेक्टर में 8%, IT और सॉफ्टवेयर सर्विसेज में 6% बढ़ी, लेकिन टेलीकॉम, बैंकिंग, फार्मा और एजुकेशन सेक्टर्स में बढ़ती की रफ्तार धीमी रही। हालांकि टेक्नोलॉजी आधारित नौकरियों में आई इस तेजी ने जॉब मार्केट को नई ऊर्जा देने का काम किया है। दिलचस्प बात है कि इस रिकवरी का फायदा अनुभवी प्रोफेशनल्स के साथ फ्रेशर्स को भी मिल रहा है, जिनकी हायरिंग जुलाई में 6% बढ़ी है। वहीं कई शहरों में भी हायरिंग की रफ्तार तेज हुई है और बीते महीने कोलकाता में हायरिंग 17%, हैदराबाद में 16%, चेन्नई में 11% और बेंगलुरु में हायरिंग में 8% की ग्रोथ देखी गई। वहीं मुंबई और दिल्ली में हायरिंग का स्तर लगभग स्थिर रहा। उधर ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स यानी GCCS में भर्तियां 5% बढ़ी हैं। यानी कंपनियां अनुभवी टैलेंट के साथ फ्रेशर्स को भी अपने साथ जोड़ने पर जोर दे रही हैं। जुलाई के आंकड़े संकेत देते हैं कॉर्पोरेट भारत में भर्ती गतिविधियां धीरे धीरे मजबूत हो रही हैं। हालांकि सभी सेक्टर्स में एक जैसी तेजी नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी, AI और डिजिटल स्किल्स से जुड़े क्षेत्रों ने जॉब मार्केट की रफ्तार बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। आदित्य के राणा आज तक।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

अध्यक्ष नितिन नवीन समेत पूरी पार्टी का कांग्रेस पर हमला। कहा आजादी का क्रेडिट लेने वाले क्यों भूल जाते हैं विभाजन का दंश। पीएम मोदी का भावुक संदेश, लाखों लोगों ने झेला विस्थापन का दर्द।

बहा हिंदुओं का खून, आज नौजवानों को भटकाने की कोशिश करने वालों ने ही बंटवारा करवाया। कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री मोदी का मखौल उड़ाने पर राहुल गांधी के खिलाफ आग बबूला हुई बीजेपी, कहा ये संस्कारहीन, अभद्र और अश्लील भाषा। जेपी नड्डा बोले, देश का दुर्भाग्य कि हमें ऐसा नेता विपक्ष मिला है। एनएसए अजीत डोभाल की सख्त चेतावनी, कहा कि भारत की उदारता को कमजोरी समझने की भूल ना करे दुनिया। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले अजीत डोभाल, 88 घंटे के सैन्य कार्रवाई में निस्तनाबूद कर दिए दुश्मन के ठिकाने। उत्तराखंड के चमोली में टनल में फंसे लोगों के रेस्क्यू में बाधा, बचाव के दौरान रिसने लगा पानी। हाइड्रो प्रोजेक्ट की सुरंग में अब तक 7 लोगों की मौत, 14 लोग बचाए गए। सीएम धामी ने लिया राहत बचाव कार्य का जायजा।

0: स्वागत है आपके साथ, मैं हूं सुमित चौधरी। आइए अब आपको दिखाते हैं 100 शहर 100 खबरें। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर पीएम मोदी ने बंटवारे के पीड़ितों को किया नमन, एकजुटता की राष्ट्रीय भावना को और सशक्त करने का संदेश भी दिया। गुरुग्राम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम में भाग लिया, विपक्ष पर बोला है हमला। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने विभाजन के पीड़ितों को दी है श्रद्धांजलि, कहा कि कांग्रेस ने देश को लूटा। नितिन नवीन बोले कि कुछ लोगों ने विभाजन को अवसर देखा, सत्ता के लिए देश का किया बंटवारा। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने विभाजन की त्रासदी को याद करते हुए पीड़ितों और विस्थापितों के साहस का सराहना की और बोले कि सब कुछ खोने के बावजूद शून्य से अपने जीवन की पूर्ण शुरुआत की है। सीएम योगी के विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर मौन पद यात्रा की है, अखंड भारत का दिया संदेश, बोले 1947 का विभाजन सिर्फ सीमाओं का बंटवारा नहीं था, सपनों और रिश्तों का भी बिखराव था। सीएम योगी ने विभाजन की त्रासदी को इतिहास का काला अध्याय बताते हुए स्थापितों और मृतकों को दी है श्रद्धांजलि। सीएम योगी का विभाजन विभीषिका दिवस के बहाने हिंदुत्व कार्ड, कहा कि 1947 में भारत बटा था तो हिंदू ही कटा था, आज नौजवानों को भटकाने की कोशिश करने वालों ने ही बंटवारा करवाया था। राहुल गांधी ने अरुणाचल प्रदेश में चीन द्वारा भारतीय सेना की पेट्रोलिंग रोकने का किया है दावा, मोदी सरकार प्रदेश की सुरक्षा से ऊपर अपनी नकली छवि को प्राथमिकता देने का लगाया है आरोप। राहुल गांधी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति पर निशाना साधा है, मजाक उड़ाते हुए लगाए हैं गंभीर आरोप। पीएम मोदी और अमित शाह पर मजाक करने पर राहुल गांधी के खिलाफ उतरी है बीजेपी, भारतीय राजनीति की मर्यादा पर का बताया कलंक। राहुल गांधी की भाषा पर बीजेपी का हमला, अनुराग ठाकुर ने अमर्यादित टिप्पणी और अहंकार के लगाए आरोप, कांग्रेस की मानसिकता पर उठाए सवाल। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी राहुल गांधी के पीएम मोदी पर बयान की निंदा की है, बोले कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल बेहद निंदनीय है, लोकतंत्र में विरोध की इजाजत है लेकिन मर्यादा और संवाद जरूरी है। राहुल गांधी की टिप्पणी पर बड़की बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज बोले कि पद की गरिमा भूल रहे हैं नेता प्रतिपक्ष। अंबाला के पंचखरा साहिब विवाद मामले में बड़ा है बवाल, गुरसिमरन सिंह का FIR की मांग को लेकर हाईवे पर पुलिस ने भिड़े सिख संगत, दोनों पक्षों में कई लोग घायल। नांदेड़ में सुखबीर बादल पर हमले के आरोपी जसपाल सिंह के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया है, आज कोर्ट में होगी पेशी। सुखबीर बादल पर हमले को लेकर अकाली दल की CBI जांच की मांग की है, 2024 में हमले का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि हमलावर ISI से ट्रेनिंग पाया हुआ है। अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने दोनों हमलों के साजिश और सुरक्षा चूक की जांच के लिए जोर दिया। सुखबीर बादल पर नांदेड़ हमले में NIA की जांच की मांग की है। सीएम फडणवीस ने भी सुखबीर बादल पर हमले की जांच के आदेश दिए हैं, पीएम मोदी ने भी उनकी हालत की जानकारी ली है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में रामलीला मैदान में सभा के बाद मंच के शुद्धिकरण का आरोप लगाते हुए भड़के हैं खड़गे, संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों का बताया अपमान। खड़गे के बयान के बाद JP नड्डा ने कहा कि ऐसी घटना दुखद है और ये बीजेपी इस तरह की गतिविधियों का समर्थन नहीं करती, जांच के का दिया है भरोसा। खड़गे के मंच पर शुद्धिकरण वाले आरोपों पर राहुल गांधी बोले हैं कि ये बीजेपी और RSS की मनुवादी सोच का नतीजा है। हल्द्वानी स्टेट शुद्धिकरण प्रियंका गांधी का बड़ा वार, बोली है कि बीजेपी संघ की यही विचारधारा यही मानसिकता, प्रधानमंत्री मोदी से माफी की मांग भी की है। खड़गे की सभा स्थल के शुद्धिकरण पर भड़के अखिलेश यादव, कहा कि बीजेपी उनके संगी साथियों के मंच नहीं, अपने मन को गंगा जल से शुद्धिकरण करना चाहिए। ऐसी के आदेश के बाद BCA अध्यक्ष मनन मिश्रा बोले हैं कि फिलहाल मामला खत्म हो गया, BCA कानून छात्रों और वकीलों के हितों की रक्षा के लिए है, छात्र हित सर्वोपरि है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नलसार यूनिवर्सिटी के 2026 बैच के छात्रों का नामांकन रोकने के आदेश वापस ले लिया, CJI जस्टिस सूर्यकांत के खिलाफ अभियान में चलाने का आरोप लगाया गया था। नलसार विवाद के बाद बार काउंसिल के आदेश पर भड़के CJI सूर्यकांत, कहा ये मेरे और छात्रों के बीच का मामला, BCA कौन होता है कि दखल देने वाला हो, छात्रों को अपनी आवाज उठाने का अधिकार है। आप नेता संजय सिंह ने नलसार छात्रों के मामले पर BCA को ही घेरा है। कहा है कि सत्ता के आगे ना झुकने वालों की डिग्री छीनने की कोशिश तानाशाही है। कांग्रेस जनता पार्टी ने महिला प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट का किया है रोक। कहा है कि रेप किडनैपिंग की धमकियां मिल रही हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीजी इतिहास सिलेबस में दिल्ली सल्तनत समेत प्राचीन मध्यकालीन भारत के कई पेपर हटे हैं। प्रस्तावित 38 पेपरों में से सिर्फ 16 को मिली है मंजूरी। यूपी चुनाव 2027 को लेकर बीजेपी का मंथन। योगी की मजबूत पकड़ सरकार संगठन और विधायकों के बीच तालमेल को लेकर फोकस किया गया। फीडबैक के से तय होगी आगे की रणनीति। मायावती का हल्द्वानी मंच शुद्धिकरण पर हमला। जातिवादी तत्वों पर कार्रवाई की मांग की है। खड़गे के कार्यक्रम के बाद मंच के शुद्धिकरण को बताया है निंदनीय। मिशन 2027 में बीएसपी का बदला अंदाज। बीजेपी की बी टीम वाली धारणा तोड़ने की रणनीति। मायावती आकाश आनंद बेरोजगारी पेपर लीक और आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी पर हमलावर हो गए। ब्राह्मण कार्ड पर बीएसपी का दावा है लेकिन कद्दावर नेताओं के लगातार छोड़ने से बड़ी है मुश्किलें। अंटू मिश्रा के निष्कासन से झटका लगा। 2027 से पहले ब्राह्मण वोट बैंक साधने की चुनौती है। अंटू मिश्रा के निष्कासन पर मायावती की सफाई। कहा कि निजी स्वार्थ के लिए पार्टी छोड़ने वालों से नुकसान हुआ है। ब्राह्मण समाज को भरोसा बरकरार है। बीजेपी प्रवक्ता आलोक अवस्थी का मायावती पर हमला। बोले कि 2027 में मायावती का खाता खुलने की भी मुश्किल है। ब्राह्मणों की जोड़ने की कोशिशें होंगी नाकाम। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत का बीजेपी पर हमला। बोले कि दलितों का लगातार अपमान किया जा रहा है। खड़गे के भाषण स्थल के शुद्धिकरण पर सवाल खड़े किए। देश भर में कांग्रेस करेगी इसका विरोध प्रदर्शन। यूपी में कांवड़ यात्रा ने बनाया नया रिकॉर्ड। 4.5 करोड़ से ज्यादा कांवड़ियों हुए इसमें शामिल। श्रद्धालुओं की भीड़ में बावजूद बड़ी दुर्घटना नहीं हुई है। यात्रा सुरक्षित संपन्न हुई। प्रयागराज में भव्य तिरंगा यात्रा। हजारों लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर दिखाया देशभक्ति का नया जज्बा। डिप्टी सीएम केशव मौर्य समेत बीजेपी नेता हुए इसमें शामिल। उत्तराखंड के चमोली में टनल में फंसे लोगों के रेस्क्यू में बाधा आई है। बचाव के दौरान रिसने लगा है पानी। हाइड्रो प्रोजेक्ट की सुरंग में अब तक 7 लोगों की मौत हो गई है। 14 लोगों को बचाया गया है। सूचना मिलते ही प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी कर दिया गया। 3 मजदूरों की तलाश अब भी जारी है। चमोली टनल हादसे के बाद तस्वीरें आई सामने। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। राहत और बचाव दल मौके पर जुटे हुए हैं। बेहद खराब मौसम के बीच भी पीपलकोटी पहुंचे मुख्यमंत्री धामी। रेस्क्यू ऑपरेशन का किया निरीक्षण। घायल मजदूरों से मिले जिला अस्पताल पहुंचे मुख्यमंत्री धामी। हर तरह की सहायता का दिया आश्वासन। दिल्ली में बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली के कई इलाकों में हो रही है बारिश। नोएडा में अचानक बादल बदला है मौसम। तेज हवाओं के साथ हुई झमाझम बारिश से गर्मी से मिली है राहत। असम के बाढ़ग्रस्त शिव सागर पहुंचे सिंगर पोपोन। बाढ़ प्रभावित लोगों का किया है गांव का किया है दौरा। राहत कार्यों का भी जायजा लिया है। केरल के कुनूर में सुनामी मॉकड्रिल का आयोजन किया गया। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से परखी गई आपातकालीन सेवाएं। आगरा में पुल के अभाव के प्रसूता को चारपाई पर क्यूब के सहारे नदी पार कर आई गई। जच्चा बच्चा की जान जोखिम में डालकर पहुंचाया गया घर। धर्मशाला में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। जलभराव के कारण राहगीरों और वाहन चालकों को हो रही है परेशानी। धर्मशाला में मूसलाधार बारिश से सड़क पर जलभराव हो गया। आवाजाही हुई मुश्किल। ओडिशा के भद्रक में भारी बारिश से के बीच बैतरणी नदी का जलस्तर बढ़ने लगा। निशान के ऊपर पहुंच चुका है। चित्तौड़गढ़ में पिकनिक मनाने गया युवक झरने में बहा। मौके पर मौजूद लोगों ने सूझबूझ से बचाई उसकी जान। यूपी के सीतापुर में झमाझम बारिश है। तापमान में गिरावट से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। भारी बारिश के कारण जैसलमेर के अस्पताल परिसर में और वार्डों में भरा है पानी। मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। कई जिलों में 19 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। गोरखपुर में भारी बारिश से वाटर लॉगिंग होगी। सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में NH-45 पर भीषण लैंडस्लाइड हुआ। भारी बारिश से जबलपुर और भोपाल मार्ग पर गिरा है पहाड़ का मलबा। मलबे से सड़क पर आवागमन प्रभावित हुआ है। फिलहाल सड़क पर वन वे ट्रैफिक जारी कर दिया गया। जीसीबी से हटाया जा रहा है मलबा। दिल्ली के न्यू अशोक नगर क्षेत्र में डीटीसी बस की चपेट में आने से 12 साल की बच्ची की मौत। गुस्साए लोगों ने बस के शीशे तोड़ दिए। राजकोट में पागल कुत्ते का आतंक, 10 से ज्यादा लोगों को काटा। नगर पालिका की टीम ने कुत्ते को पीट पीट कर उतारा मौत के घाट। पन्ना में रेलवे कार्य की आड़ में अवैध खनिज भंडारण और क्रैशर का खुलासा हुआ है। शर और 2 पोकलेन मशीन और 10 डंपर जब्त किए गए। कर्नाटक में मंदिर में तैनात महिला पीएसआई से बीजेपी विधायक की बेटी पर मारपीट और धमकी का आरोप लगाया गया। मामले पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। गाजियाबाद में पनीर के नाम पर सेहत से खिलवाड़ और पाम ऑयल और व्हाइटनिंग एजेंट से तैयार हो रहा है नकली पनीर। बिहार के वैशाली में भीड़ ने पुलिस टीम पर पथराव कर आरोपी को छुड़वाया है। चौकीदार के घर पर ही फायरिंग की गई। उपद्रव का वीडियो भी जारी किया गया है। हरिद्वार में थार चालक की दबंग गई। बस चालक पर गाड़ी चढ़ाई, घायल शख्स को छोड़कर मौके से फरार हुआ। वीडियो वायरल। महुआ में शमशान की जमीन पर मिलने पर सड़क पर चिता सजाकर जताया विरोध। घंटों हंगामे के बाद प्रशासन ने दी जमीन। जूनागढ़ में खड़े ट्रक में टकराए यात्रियों से भरा टेम्पो ट्रैवलर, 9 लोग घायल हुए, 2 की हालत गंभीर है। सूरत में शराब के नशे में कार चालक ने कई वाहनों को मारी है टक्कर। भागने की कोशिश पर भीड़ ने पकड़कर जमकर पीटा। उड़ीसा के भुवनेश्वर में इंडिगो फ्लाइट कैंसिल होने पर एयरपोर्ट पर महिला पैसेंजर का हंगामा। कहा कि बच्चों के इलाज के लिए जाना था इंडिगो से जवाबदेही की जगह महिला पैसेंजर पर एफआईआर दर्ज की गई है। अलवर में वीडियो कॉल कर फर्जी आईपीएस ने डराया। डिजिटल रिस्क करके ठगे 10 लाख रुपए। आरोपी के 6,80,00,000 के फ्रॉड के फंसाने की धमकी दी है। लखनऊ में शिक्षिका की कमी के नाराज स्कूली छात्रों ने सड़क पर उतरकर किया प्रदर्शन। चौराहे पर लगाया जाम। गोरखपुर हत्याकांड में वायरल वीडियो में फिर गरमाया मामला। क्रिकेट विवाद से शुरू हुई थी सर रंजेश। पुलिस पर वीडियो हटाने का दबाव बनाने का आरोप लगाया गया। ग्रेटर नोएडा के फर्नीचर मार्केट में एक दुकान में लगी भीषण आग, 1 की मौत, तस्वीरें आई सामने। यूपी के बांदा में IGRC रैंकिंग गिरने पर बड़ा एक्शन हुआ है। SDM समेत 11 अफसरों पर जुलाई का वेतन रोका गया है। सहारनपुर में पुलिस और गौकशों के बीच मुठभेड़ हुई। फायरिंग के बाद एक शख्स घायल हुआ है। 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए। यूपी के शाहजहांपुर में मामूली विवाद के बाद 2 पक्षों में झड़प हुई। एक युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। आरोपी फरार है। वाराणसी में बुर्का पहन बाइक पर घूम रहा युवक नकली प्रैंक रील बनाने वाला था। पुलिस के पूछताछ का वीडियो हो रहा है वायरल। जालौन में बक्से से छिपा मिला प्रेमी। पिटाई के बाद प्रेमी प्रेमिका का गांव में जुलूस। तालिबानी सजा का वीडियो हुआ वायरल। अयोध्या में सड़क हादसे के बाद भाग रही कार ने एक शख्स को मारी टक्कर। दर्दनाक सड़क हादसे में मचा हड़कंप। गोरखपुर में शख्स ने अपार्टमेंट की 8वीं मंजिल से कूद कर दी जान। 1.5 करोड़ की ठगी से परेशान था। आरोपी महिला और उसका पिता गिरफ्तार हुआ है। यूपी के अलीगढ़ में हार्डवेयर कारोबारी की लाखों की लूट का खुलासा हुआ है। 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। नगद के साथ हथियार भी जब्त किए गए। बांदा में चोरी करने पहुंचे चोरों को नहीं मिली कीमती सामान तो गुस्से में घर की 25 नल की टोटियां उखाड़ कर ले गए चोर। रामपुर में पंचायत घर बना अखाड़ा। संवाद दिवस में बड़े ग्रामीण जमकर मारपीट की गई, तोड़ी कुर्सियां। वीडियो हो रहा है वायरल। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के अभेद और कड़े इंतजाम किए गए। लाल किले के आसपास मल्टी लेयर सुरक्षा घेरा बनाया गया है। ड्रोन से भी की जा रही आसमान की निगरानी। बॉर्डर्स पर सख्त चेकिंग की गई। शहर भर में भारी वाहनों की आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे तक लाल किले के सभी रास्तों में वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। प्रशासन की लोगों से सहयोग करने की अपील है। जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस से पहले हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्वतंत्रता दिवस और आगामी अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर बढ़ाई गई है सुरक्षा। श्रीनगर में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आजादी के जश्न के बीच संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। कल से हॉकी वर्ल्ड कप की शुरुआत हो रही है। बेल्जियम और नीदरलैंड मिलकर कर रहे हैं मेजबानी। पहली बार एक साथ हो रहे हैं महिला और पुरुष के टूर्नामेंट। 16 दिन तक चलेगा ये टूर्नामेंट। दोनों टूर्नामेंटों में खेले जाएंगे कुल 50 मैच। कल अपना 600वां टेस्ट मैच खेलेगा भारत। गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में होगी भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत। वर्ल्ड टेस्ट जीतने पर भी टीम इंडिया रचेगा नया इतिहास। सबसे ज्यादा टेस्ट मैच जीतने के मामले में कर लेगी वेस्ट इंडीज की बराबरी। भारत ने नाइजीरिया के कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में पहली बार जीता ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब। भारतीय फैंस ने सीनियर और अंडर 23 कैटेगरी में कुल 35 मेडल जीते। बॉक्स ऑफिस पर सनी देओल का एक्शन अवतार बंटवारा 1947 हुई रिलीज। फिल्म में प्रीति जिंटा, करण देओल और शबाना आजमी भी नजर आएंगे। इमरान हाशमी की आवारा पंटू की आज रिलीज है। 2007 में आई इमरान हाशमी की फिल्म का ये दूसरा सीक्वल है। थिएटर के बाद अब ओटीटी पर कंगना रनौत की फिल्म भारत भाग्य विधाता C5 पर हुई है रिलीज। 19 जून को थिएटर में रिलीज होने के बाद अब ओटीटी पर कमाल करेगी कॉकटेल 2। नेटफ्लिक्स पर आज से होगी स्ट्रीम। संजय दत्त की फिल्म आखिरी सवाल भी आज से ओटीटी पर स्ट्रीम होगी। इस साल मई में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी फिल्म।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से पर।
0: और चलिए अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं उत्तराखंड के चमोली सुरंग हादसे को लेकर। चमोली के पीपल कोटी में एक सुरंग धस गई है, जिसमें करीबन 13 किलोमीटर लंबी ये सुरंग हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट की थी, जिस पर काम चल रहा था। गुरुवार की शाम को अचानक से मेन एंट्री पॉइंट से करीब 1.5 किलोमीटर अंदर सुरंग धस गई। स्थिति ये हो गई है कि सुरंग में पानी भरने लगा है।
2: उत्तराखंड में फिर सुरंग हादसा हुआ। उत्तराखंड में फिर से सुरंग धसी है। इस बार यह हादसा उत्तराखंड के चमोली में हुआ है। पानी से भरी सुरंग, ड्रम को नाव बनाकर सुरंग में फंसे लोगों की तलाश करते राहत कर्मी। ये चमोली के पीपलकोट सुरंग के अंदर की तस्वीरें हैं, जहां गुरुवार शाम करीब 6:30 से 7 बजे के बीच बड़ा हादसा हुआ। पीपलकोटी सुरंग का बड़ा हिस्सा धस गया।
3: यही वो टनल है, देख सकते हैं, ये जो अंदर जाने के बाद लगभग 1600 मीटर पे इसी के ऊपर से कहीं से लूज गिरा है और उसी लूज के साथ भारी पानी, क्योंकि ये आप देख सकते हैं ये टनल सीधा डाउन के लिए जा रही है, तो इसमें जो भी पानी या कुछ भी जाएगा तो वो एकदम अंदर टनल में भरता रहेगा। वही कारण है यहाँ पे जो लूज गिरा है, उसके बाद जो लोग फंसे हैं वो वहां पे फंस चुके हैं। हालांकि सबको निकाला गया, लेकिन अभी भी एक व्यक्ति लापता है।
2: सुरंग के अंदर घुप अंधेरा है। बाहर निकलने का जो रास्ता है उसमें पानी के साथ साथ मलबा भर गया है और उसी मलबे में जिंदगी बचाने की जद्दोजहद हो रही है। रेस्क्यू की टीम अंदर है और बाहर एम्बुलेंस खड़ी है, ताकि जैसे ही किसी को निकाला जाए तो उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया जा सके।
3: जहां पे लूज गिरा था वहां पे मलबा हटाना और बोट बनाना सबसे पहली प्राथमिकता थी। फिर पानी आ गया था, पानी के नीचे जो जिन डेड बॉडियों को निकाला गया वो लोग पानी के नीचे थे। फिर अंदर तक लास्ट पॉइंट तक इसमें पहुंचना था, तो इसलिए उसमें टाइम लगा। तो रात्रि 1 बजे तक तो बहुत तेजी से जो राहत और बचाव कार्य है वो हुआ, लेकिन जैसे ही 1 बजे के करीब टनल के अंदर पूरा पानी, जब पूरा व्यक्ति जो एसडीआरएफ का एनडीआरएफ का व्यक्ति पूरा डूबने लगा, उसके बाद रेस्क्यू अभियान को यहाँ पे ब्रेक करके पहले पानी को हटाया जा रहा था, फिर राहत बचाव कार्य किया जा रहा था। इसीलिए
0: चलिए वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
4: हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हाँ जिंदाबाद रहेगा।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोस
5: इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
4: पापा।
5: सॉरी यार, गलती हो गई है। ये चोट खर्चा वर्चा।
6: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
5: छक्का?
6: सब कैशलेस हो गया
5: है। ला भाई मेरा बैट।
7: वो अभी तो ठीक हुआ।
8: तो चार्ज हुआ यार।
9: बैट किसका है?
10: टाटा AIG है तो भरोसा है।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: in association with Sharda University. The world comes together at Sharda University. Where are you?
1: Punjab National Bank. Bharose ka prateek.
0: विमल बोलो जुबां केसरी हिंट बड़े आराम से
2: 19 इयर्स की थी तब मैंने जिम ज्वाइन किया था तो मैंने जिम में क्रश बनाया था
3: उसी से रिलेशनशिप था क्या
2: यही मोटिवेशन था मेरा जिम जाने का कि
3: जब जिम जाओ आशी तो वहाँ वर्कआउट करो वहाँ पे रिलेशनशिप नहीं करना
2: है 19 साल की थी ना फिर जब मेरा ब्रेकअप हुआ तो मैंने जिम भी छोड़ दिया था मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं सिर्फ जॉब ही करूँ मेडिकल स्टूडेंट थी तो डॉक्टर नहीं तो टीचर ऐसा She was like, कैमरा के आगे क्या कर रही हो क्या है ये टाइम पास ही रहना चाहिए इसको प्रोफेशन नहीं बनाना है वो फिर जब मॉम ने देखा कि अच्छा पैसे भी मिलते हैं इसमें तो
3: You lost your mom also.
2: I lost my dad when I was in second standard and then I lost her. तो मेरी शादी नहीं देख पाएंगे
4: गाड़ियां हैं ये पूरा रेला विधानसभा जा रहा छात्रों का
5: जब तक वो सीबीआई जांच नहीं कराएंगे तब तक हम लोग इस पे डटे रहेंगे
4: छात्रों को पीछे हटाने की कोशिश की जा रही है वाटर कैनन खत्म हो गए फायर टेंडर खत्म हो गए
6: प्रोटेस्टर हैं देखिए उनको कैसे चोट लगी है
7: विधानसभा के करीब ये पहुंच चुका है
8: पुलिस काफी देर तक रोक नहीं सकी छात्रों को और छात्र देखिए विधानसभा के अंदर प्रवेश करते हुए
9: विधानसभा का लाइट ऑफ करके मारा है
4: पूरे प्रदर्शन मार्च के बाद भी छात्रों ने ऐलान किया है वो अभी भी डटे हुए हैं जयपाल सिंह स्टेडियम में लोकेंद्र के साथ मैं आशुतोष मिश्रा आज तक
0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: विभाजन विभीषिका दिवस पर कांग्रेस को नितिन नवीन ने घेरा, कहा आजादी का क्रेडिट लेने वाले दर्द क्यों भूले, पीएम ने साझा किया विस्थापितों का दर्द। सीएम योगी का विभाजन विभीषिका पर बड़ा बयान, 1947 में भारत बटा तो हिंदू ही कटा, नौजवानों को भड़काने वालों पर साधा निशाना। पीएम मोदी के माखौल पर आग, बबूला हुई बीजेपी, जेपी नड्डा का राहुल गांधी पर बड़ा हमला, संस्कारहीन भाषा का इस्तेमाल कर रहे नेता विपक्ष। एनएसए अजीत डोवाल की दुनिया को खुली चेतावनी, भारत की उदारता को कमजोरी समझने की भूल न करे, दुश्मन ऑपरेशन सिंदूर के 88 घंटों में तबाह किए ठिकाने। महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी को राहत, जुलाई में थोक महंगाई 9.87% से घटकर 9.78% हुई, खाने पीने की चीजें हुई सस्ती।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन।
0: नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ एकदम चुनावी मोड में हैं और योगी हिंदुत्व की पिच पर खुलकर बोल रहे हैं। आज विभाजन विभीषिका दिवस है और इसी के बहाने मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हिंदू बटा था इसीलिए भारत बटा था। बांग्लादेश पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार पर भी योगी आदित्यनाथ ने बातें कही, क्या क्या कहा है उन्होंने आपको सुनाते हैं।
2: 14 अगस्त 1947 को आजादी के एक दिन पहले, तब केवल हिंदू और सिख ही नहीं कटा था, तब भारत भी कटा था। आज से ठीक 79 वर्ष पहले सनातन राष्ट्र के रूप में जो भारत आदिकाल से एक इकाई के रूप में रहा हो, वह भारत कटा तो हिंदू भी कटा। आज भी जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर निर्दोष हिंदू मारे जाते हैं, काटे जाते हैं, और ये हर व्यक्ति जानता है कि मरने वाला जो हिंदू है ये सभी दलित समुदाय से है, एक भी जवान भारत के अंदर उन राजनीतिज्ञों के मुंह से नहीं निकलती है जो भारत के अंदर एक होने वाली किसी घटना में हाय तोबा एक करके पूरे देश के अंदर घूमते हैं। पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, वहां की घटना में कोई शब्द नहीं निकलते। लेकिन इस प्रकार की अराजकता हो, इस प्रकार का रावण राज हो, ये कल्पना नहीं थी। और उसके बाद जब हमने वहां पे पूरी एक टीम लगाई कि भाई देखो ढूंढो क्या है वहां, तो पता लगा कि साहब संभल में केवल हरिहर मंदिर नहीं है, 67 तीर्थ थे वहां, 67 तीर्थ, 19 कोप थे, ये सब पे कब्जा हो गया है। हमने कहा इसको खाली करवा लो, अब खाली करवाओ इनको, केवल राम जन्मभूमि को नहीं, सनातन धर्म फिर से एक बार विधर्मियों की निशाने पर है। और चेहरे वही हैं जिन्होंने कभी 1947 में मौन साध लिया था, जो कभी बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं के कत्लेआम पर मौन साध लेते हैं, और ये वही लोग हैं जो आज राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान राम भक्तों के विरोध में अस्त्र शस्त्र के साथ खड़े होकर के उन पे लाठी और गोली का प्रहार करने में संकोच नहीं करते थे। ये वही लोग हैं जो राम जन्मभूमि आंदोलन के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपनी पूरी टीम खड़ी करके पूरे फैसला राम जन्मभूमि के पक्ष में ना आने पाए, इसके लिए पूरी एड़ी चोटी लगा लेते हैं। ये वही लोग हैं आज वे राम राम जपते हुए कालनेमी के रूप में फिर बहकाने का प्रयास कर रहे हैं।
0: उधर झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं की धांधली से जुड़ी बड़ी खबर, सीआईडी की पूछताछ में बुद्धेश्वर भगत के खुलासों से परीक्षा माफिया के पूरे नेटवर्क पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सूत्रों के अनुसार 14वीं जेपीएससी परीक्षा में सेटिंग का पूरा रेट कार्ड तैयार था और अगर ये खुलासे जांच में सही साबित होते हैं तो करोड़ों के इस रैकेट की तस्वीर बहुत चौंकाने वाली है। सूत्र बता रहे हैं सामान्य और ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थियों से अंतिम चयन के लिए 1 करोड़ रुपए जबकि एससी एसटी अभ्यर्थियों के लिए 80 लाख रुपए का रेट तय किया गया था। करीब 100 करोड़ रुपए वसूलने की तैयारी थी और रकम केवल कैश में लेने की योजना थी। इतना ही नहीं, अभ्यर्थियों को इस नेटवर्क से जोड़ने वाले एजेंटों के लिए भी हर कैंडिडेट पर 15 लाख रुपए का कमीशन तय होने की बात सामने आई। परीक्षा माफिया का पहला टारगेट था पीटी पीटी पास कराने के नाम पर 10 लाख रुपए एडवांस, पीटी क्लियर होते ही अगली किश्त, मेंस तक 50% रकम और अंतिम चयन के बाद पूरी रकम वसूलने का कथित प्लान था। अब सीआईडी इन खुलासों के आधार पर पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ रही है, कौन अफसर इस खेल में शामिल था, कौन बिचौलिया था और करोड़ों की रकम आखिर कहां और किसके जरिए पहुंचनी थी। जांच इन्हीं सवालों के जवाब तलाश रही है। बड़ी खबर भोपाल से, मध्य प्रदेश में आज तक की खबर का बड़ा असर हुआ है। मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार को हटा दिया गया है। मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार मुकेश सिंह को हटा दिया गया है। खबरदार में हमने प्रमुखता से दिखाया था नर्सिंग छात्रों का मुद्दा, जिसके बाद कार्रवाई हुई है। नर्सिंग परीक्षाओं के समय पर रिजल्ट न घोषित करना, स्कॉलरशिप का मुद्दा और भी कई मुद्दे थे जिनको लेकर छात्र आंदोलन कर रहे थे, रजिस्ट्रार को हटाने की मांग कर रहे थे और अब उन्हें हटा दिया गया है।
3: आज तक अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता लेकिन ये दिखाना जरूरी है। जहां सिस्टम से हारे हुए छात्र रजिस्ट्रार का पुतला बनाकर टोने वाला प्रतीकात्मक प्रदर्शन करते हैं ताकि कोई तो इनकी सुने, इनकी ओर देखे। पुतले के सामने आग जलाकर नींबू मिर्ची डालकर ये प्रदर्शन का एक तरीका है, कोई जादू टोने का नहीं। और ये करने वाले मध्य प्रदेश के नर्सिंग छात्र हैं जो इन दिनों भोपाल के नर्सिंग काउंसिल के गेट पर धरना दे रहे हैं, क्योंकि जिस पेशे में किसी की जिंदगी बचाने के लिए हर सेकंड की कीमत होती है, उसी पेशे की पढ़ाई करने वाले हजारों छात्रों का वक्त सिस्टम की फाइलों में थम गया है। किसी का करियर रुका है, किसी की नौकरी, किसी की डिग्री फंसी है और किसी का सपना सालों से एक रिजल्ट के इंतजार में अटका हुआ है। भोपाल में नर्सिंग काउंसिल के बाहर छात्रों का आंदोलन 8 अगस्त से जारी। छात्रों की मांग है लटका कर रखे गए रिजल्ट जारी किए जाएं, परीक्षाएं कराई जाएं, डिग्री और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो, मान्यता से जुड़े विवाद का समाधान निकाला जाए। इसी के चलते छात्रों ने इस तरह का प्रदर्शन करना शुरू किया।
4: भोपाल में आज अनोखे तरीके का एक जादू टोना हो रहा है। ये जादू टोना दरअसल किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि सद्बुद्धि के लिए किया जा रहा है। मिर्ची, नींबू और आग के साथ पुतले बना करके नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार और जो लीगल एडवाइजर हैं, उनके पुतले बना करके, आप देखिए, नींबू और मिर्ची के साथ ये टोटका आज किया जा रहा है ताकि सद्बुद्धि आए और जो लंबे समय से नर्सिंग छात्रों की मांग है नतीजे घोषित करने को लेकर, वो पूरी की जाए।
5: जो 3 साल का कोर्स है उसको आज 5 साल हो गए फर्स्ट ईयर में सर, तो बच्चा बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका है, बहुत परेशान हो चुका है। तो सरकार से बच्चे यही चाह रहे हैं कि उनके एग्जाम कराए जाएं और रिजल्ट जारी किया जाए।
3: छात्रों का दावा है कि 2022 बैच के हजारों छात्र फर्स्ट ईयर तक की परीक्षा देने के बाद से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, यानी 3 साल का कोर्स पूरा करके अस्पताल में नर्सिंग की नौकरी करने की उम्र में पहुंच चुके छात्र अब भी फर्स्ट ईयर के रिजल्ट में अटके हुए हैं। भारी बारिश के बीच नर्सिंग छात्र बोरिया बिस्तर लेकर नर्सिंग काउंसिल के बाहर डट गए हैं। मुरैना के रहने वाले दिलकुश रावत ग्वालियर में रहकर नर्सिंग की पढ़ाई करते हैं। धरना स्थल पर पिछले कई दिन से रहकर मोबाइल से अपने परिवार से जुड़े रहते हैं। पूछने पर बताते हैं कि पिता किसान है और कर्जा लेकर साल 2022 में इनका दाखिला नर्सिंग कॉलेज में करवाया, लेकिन साल 2023 में फर्स्ट ईयर के एग्जाम के बाद से 2026 आ चुका है, लेकिन पिछले 4 साल से रिजल्ट ही नहीं आया।
6: रूम का रेंट जा रहा है, हम कंटिन्यूस 3 साल से डले हुए हैं, ना तो हमारे रिजल्ट की सुनवाई हो रही है, ना हमारी आगामी परीक्षा करवाई जा रही है, ना हमें स्कॉलरशिप से वंचित कर दिया जा रहा है। हमारे घर वाले बहुत परेशान हैं, मेरे पिताजी एक किसान हैं, ये तो हम ही बता सकते हैं कि हमें किस तरह से उन्होंने पढ़ाया है, कर्जा ले लेके हमें पढ़ाया है।
3: बैतूल की रहने वाली राधिका भी उन हजारों छात्रों में से एक जिनके परिवार ने बड़ी उम्मीदों से अपनी बेटी का दाखिला नर्सिंग कॉलेज में करवाया ताकि बेटी पढ़े, लोगों की जान बचाए, अस्पताल में नौकरी पाए, परिवार को संभाले। लेकिन एक मजदूर परिवार से आने वाली राधिका 4 साल से अपने रिजल्ट का इंतजार कर रही।
7: बहुत समस्या आ रही है, बहुत प्रॉब्लम। अब तक तो हमारा जो सेशन है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए था, क्योंकि हमारा 3 साल का कोर्स होता है। अभी तक देखो 2026 आ चुका है और अभी तक हमारे पेपर फर्स्ट ईयर का अभी रिजल्ट ही नहीं आया है सर, तो हम क्या माने? अभी तो हम फर्स्ट ईयर ही पढ़ रहे हैं सर।
3: इस पूरे विवाद की जड़ नर्सिंग कॉलेज की मान्यता और संबंधता से जुड़े कथित फर्जीवाड़े में है। ये समझने के लिए पहले हम आपको ग्वालियर ले चलते हैं। ये ग्वालियर का धाकरे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जिसका संचालन महाराणा प्रताप कॉलेज ऑफ नर्सिंग साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट और महाराणा प्रताप स्कूल ऑफ नर्सिंग की तरफ से किया जाता है। इसी अस्पताल को नर्सिंग कॉलेज से जुड़ा अस्पताल बताया गया, लेकिन जब आज तक संवाददाता यहां पहुंचे, अस्पताल की गेट पर ताला लटका मिला। ताला इस बात की गवाही देता है कि मानो बहुत लंबे वक्त से दरवाजे ही अस्पताल के ना खुले हो। ना यहां कोई पढ़ता दिखता है, ना कोई पढ़ाता, ना सीखता और ना ही सिखाता, तो फिर क्या फर्जी नर्सिंग कॉलेज खड़ा है? कैमरे से अंदर झांक कर देखा तो अस्पताल के अंदर सन्नाटा है, वार्ड खाली, मरीज नजर नहीं आए। दीवारों पर ओपीडी सूचना और दूसरे बोर्ड जरूर दिखे, लेकिन इस अस्पताल में नियमित गतिविधियां नहीं दिखाई देती।
8: हमारे द्वारा स्वयं का 100 बेडेड हॉस्पिटल बनाया गया, जो कि एक ही कैंपस में है और संचालित भी किया गया। कोविड में वहाँ पे कोविड सेंटर भी डेवलप रहा, उसका भी पूर्ण उपयोग जनता को भी प्राप्त हुआ। तत्पश्चात अभी रिसेंटली इस वर्ष के लिए प्रारंभ हुई है प्रोसीजर, और इससे हम लोग भी अपने उसी तैयारियों में लगे हुए हैं कि आगे भविष्य में सुचारू रूप से ये संचालित हो सके। अगर ये सरकार द्वारा शीघ्र इसकी स्वीकृति प्रदान की जाती है तो उसका बेनिफिट लोग बच्चों को भी मिलेगा।
3: 5-5 साल से कॉलेज बंद है, लेकिन खबर केवल इतनी नहीं। साल 2020-21 के दौरान कई नर्सिंग कॉलेज को बिना पर्याप्त भौतिक सत्यापन के मान्यता और संबंधता मध्य प्रदेश में दे दी गई थी। जांच में कई कॉलेज में बुनियादी सुविधाओं की कमी मिली। मामला हाईकोर्ट पहुंचा और इसके बाद सीबीआई जांच हुई। सीबीआई जांच में पूरी तरह सही पाए गए 156 कॉलेज और कमियां सुधारने वाले 89 कॉलेज समेत 245 कॉलेज को उपयुक्त माना गया। इन कॉलेज के छात्रों को परीक्षा और परिणाम की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति मिली। वहीं अनुपयुक्त पाए गए कॉलेज पर कार्रवाई और परीक्षा रिजल्ट को लेकर न्यायिक प्रतिबंधों के चलते विवाद अब भी छात्रों के लिए बड़ी समस्या बना हुआ है। साल 2024 में हाईकोर्ट ने उपयुक्त कॉलेजों को रिजल्ट जारी करने का निर्देश दिया, लेकिन आरोप है कि इसके बावजूद वो कॉलेज भी रिजल्ट जारी नहीं कर पा रहे हैं। भोपाल में जब वर्षों से इंतजार करने के बाद छात्रों को कोई जवाब न सरकार से मिला न स्वास्थ्य विभाग से, तो आंदोलन बढ़ गया। 3 छात्र 6 मंजिला निर्माणाधीन बिल्डिंग पर चढ़ गए। नीचे पुलिस और प्रशासन, ऊपर जिंदगी जोखिम में डालकर अपने भविष्य की गुहार लगाते छात्र, जिन्हें काफी समझाने के बाद नीचे उतारा गया। इस बारे में स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला से आज तक ने सवाल किया। मंत्री कहते हैं कि मामला कोर्ट में है, जल्द ही कोर्ट रिजल्ट को लेकर फैसला करेगा।
9: उच्च न्यायालय में वो सुनवाई है और जल्दी इसका निराकरण हो जाएगा।
10: और छात्रवृत्ति की भी मांग कर रहे हैं वो, कि लगातार जो है भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं।
9: नहीं, उनका सब समाधान हो जा रहा है, हो रहा है।
10: कल बिल्डिंग पे भी चढ़ गए सर, वो लोग मांग की
9: वो रिजल्ट घोषित करने के लिए उनकी मांग है, और सरकार पूरा प्रयास कर रही है, अपना पक्ष प्रस्तुत कर रही है कि हाई कोर्ट से जो रोक लगी है वो हट जाए।
3: कोर्ट के नाम पर क्या जिम्मेदारी सरकार टाल सकती है? क्योंकि हजारों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है, करियर पर ब्रेक लगा हुआ है और नौकरी का रास्ता बंद है। उम्र और समय बीतता जा रहा है और हाथ में अब तक डिग्री नहीं, इसलिए इन छात्रों के साथ सरकार को तुरंत मिलकर बात करके फैसला लेने की जरूरत है। ग्वालियर से सर्वेश पुरोहित के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
0: जयपुर से एक ऐसी खबर आई है जिसे देखकर हर माता पिता की चिंता बढ़ जाएगी जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं। जयपुर के एक निजी स्कूल में एक छात्र ने कैंटीन से खरीदकर पैटीज खाई और उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि मौके पर मौत हो गई। सवाल है कि क्या पैटीज में कोई खराबी थी, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह कि बच्चे को स्कूल वाले अस्पताल नहीं ले गए, एम्बुलेंस नहीं बुलाया, बच्चा

0: का बेहोश हो गया अपनी कार।
1: आप 2 सेकंड सांस रोक के बता दो, मैं आप लोगों को मान जाऊंगा।
2: 1 घंटे तक रोक के रहे,
1: 1 घंटे में जान के रहा था उसकी, कैसा हो रहा था वो।
3: सिर्फ इतना सा है कि न्याय चाहिए उस बच्चे के लिए। बच्चा तो गया, पर किसी और की जिंदगी उस स्कूल में खराब नहीं हो।
4: जब आपके सामने आपका कोई दोस्त तड़प तड़प कर दम तोड़ जाए और स्कूल प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा रह जाए तो खून खौलना लाजमी हो जाता है। जयपुर के महाराणा प्रताप स्कूल के इन छात्रों का भी खून खौल रहा है, क्यों ये इन्हीं बच्चों से सुनिए।
5: उसने बाइट ली, वो भागा, सांस नहीं आ रही थी, पानी पीने गया और फिर वो बेहोश हो गया। पूरा नहीं, आधा ही खाया था, आधी फेंक दी थी।
6: खराब थी,
5: पहले पता नहीं चला।
6: फंगस लगी थी, बदबू आ रही थी।
5: लापरवाही स्कूल के पर हॉस्पिटल भेज देते तो वो आज चिंता रहे।
4: इस स्कूल में 12वीं क्लास के छात्र प्रिंस की जिन हालात में मौत हुई उसे सुनकर किसी का भी आक्रोश भड़क जाए। इस स्कूल में छात्र कैंटीन से पेटीज खरीदता है, खाते ही उसकी तबीयत बिगड़ती है, उसकी सांस बंद हो जाती है, बदन नीला पड़ जाता है, मुंह से झाग निकलने लगता है, लेकिन स्कूल प्रशासन अस्पताल ले जाने की जहमत तक नहीं उठाता।
3: सड़क पे पड़े हुए एक मरीज को भी लेकर के भग जाता है, पर ये लोगों ने उसको उठा करके कुत्तों के जैसे पटक करके रखा अपने वहां पे ऑफिस में 30 मिनट तक।
4: जाहिर है इस स्कूल ने लापरवाही की हद कर दी है। दरअसल इस स्कूल ने अपराध किया है। 50 से 100 मीटर की दूरी पर अस्पताल है, लेकिन स्कूल प्रशासन को बच्चे को वहां तक ले जाने का ख्याल तक नहीं आया। माना कि बच्चे की हालत काफी बिगड़ गई थी, लेकिन कम से कम उसे अस्पताल तो ले जाते, क्या पता कोई अनहोनी हो जाती। वक्त पर इलाज से बच्चे की जान बच जाती, लेकिन अब कुछ नहीं बचा है सिवाय एक माँ के आंसू और पिता के ताउम्र कुरीदने वाले दर्द के। होनहार प्रिंस अब इस दुनिया में नहीं रहा, परिवार के लिए अब उसकी यादें ही शेष है। माता पिता को जब भी उसकी याद आएगी तो ये ख्याल भी आएगा कि प्रिंस की किन परिस्थितियों में मौत हुई थी। अब सारा दारोमदार पुलिस पर है, क्या प्रिंस के माता पिता को इंसाफ मिल पाएगा।
7: संदिग्ध परिस्थितियों में डेथ का मैटर हमारे सामने आया है और उस पर जो उनके परिजन है उन्होंने ये आशंका जताई है कि स्कूल में किसी प्रकार की लापरवाही की वजह से उनकी मृत्यु हो गई है, तो उस पर भी प्रकरण पंजीबद्ध करके उसमें अनुसंधान किया जा रहा है। जो मौके की फुटेज और ये सारी चीज़ें उनको कलेक्ट किया जा रहा है और उसमें भी जो भी चीजें आएंगी, जो फैक्ट्स आएंगे वो आपके सामने आएंगे।
4: पुलिस जांच की बात कर रही है, उसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। मौत की वजह का पता तो तभी चल पाएगा, लेकिन पुलिस की असली जिम्मेदारी ये तय करने की है कि वक्त पर अस्पताल न पहुंचाने वाले स्कूल पर सख्त कार्रवाई जरूर हो। विशाल शर्मा, जयपुर आज तक।
8: रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
9: हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हां जिंदाबाद रहेगा।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
11: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: यूं तो कांग्रेस के कार्यक्रम में राहुल गांधी का सीधा हमला प्रधानमंत्री मोदी पर था। राहुल ने कई मुद्दों का जिक्र किया, सरकार की कमियों का हवाला दिया, लेकिन इन हमलों की भाषा पर अब नई सियासी जंग छिड़ गई है।
1: हम सब के पास हजारों खर्चे हैं।
0: राहुल गांधी के बयान के बहाने बीजेपी हमलावर हो गई है।
2: फ्रस्ट्रेशन इस बात की कि वो रिजेक्टेड है, नाटक कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं।
0: दरअसल दिल्ली के मावलंकर हॉल में राहुल गांधी रचनात्मक कांग्रेस कन्वेंशन में बोल रहे थे। निशाने पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: मोदी और गृह मंत्री अमित शाह।
1: अब कांग्रेस पार्टी ओपोजिशन सबका एक्सप्रेशन चालू है, अब नहीं रुकने वाला वो क्या। हाँ, थैंक यू, टाटा, गुड बाय। और मैं आपको बता रहा हूं, आप लिख लो, जिस दिन तक नरेंद्र मोदी अपना इस्तीफा नहीं देंगे, अमित शाह नहीं हटेगा, उस दिन तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं सो पाएंगे। उनको हम जगा के रखेंगे, पूरी रात जगा के रखेंगे, जब तक वो कोलैप्स करके कहें कि भैया ये हमारी बस की नहीं है, माफ करो, छोड़ दो हम।
0: राहुल गांधी ने पीएम मोदी की विदेश नीति पर सवाल खड़े किए, खासकर विदेशी नेताओं के साथ उनके गर्मजोशी से गले मिलने पर तीखा कटाक्ष किया।
1: इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया, अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी, बट पता नहीं कहां से घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी का मतलब नेताओं से गले लगना।
0: राहुल गांधी की पीएम मोदी पर इन टिप्पणियों पर बीजेपी ने तीखा पलटवार किया।
2: सत्यता ही नहीं है उनके पास, हिंदी लैंग्वेज
1: फॉरेन पॉलिसी,
0: राहुल की भाषा को संस्कारहीन बता दिया, साथ ही उन पर महिला विरोधी होने का आरोप मढ़ दिया। दिल्ली में राहुल गांधी के ताजा बयान पर जंग छिड़ी तो सियासत यूपी तक पहुंचते देर नहीं लगी। यूपी में भी बीजेपी की ओर से राहुल पर हमलों का दौर शुरू हो गया।
3: किसान का बेटा हूं सर।
0: बीते दिनों जब प्रयागराज में राहुल गांधी ने छात्रों के बीच कार्यक्रम कर शक्ति प्रदर्शन किया था, तब भी यूपी बीजेपी के नेताओं की ओर से जोरदार हमले हुए थे। अब प्रधानमंत्री को टारगेट कर राहुल के बयानों ने यूपी की सियासत में नई जंग शुरू कर दी है। इन बयानों के बहाने बीजेपी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर हमलावर हो गई है।
1: पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा।
0: आज तक ब्यूरो।

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: पवन कुमारी मादी जी जिंदाबाद।
1: एक और यूपी चुनाव में बीएसपी की 2007 जैसी सामाजिक रणनीति पर चर्चा चल रही है। ब्राह्मण समाज के नेताओं को फिर पार्टी से जोड़ने की कोशिश हो रही है। वहीं दूसरी ओर ब्राह्मण नेता लगातार बीएसपी से दूर हो रहे हैं। कुछ नेता पार्टी छोड़ रहे हैं और कुछ कार्रवाई के चलते पार्टी से बाहर हो रहे हैं। यूपी में चुनावी तैयारियों के बीच ये बीएसपी प्रमुख मायावती की एक दिन पहले की पोस्ट है, जब उन्होंने पार्टी विरोधी गतिविधियों पर आरोप लगाते हुए पूर्व मंत्री अनंत कुमार मिश्रा को बीएसपी से बाहर कर दिया। ये पहला मौका नहीं है जबकि किसी बड़े ब्राह्मण नेता पर मायावती ने एक्शन लिया है या किसी बड़े नेता ने बीएसपी का साथ छोड़ा है। बीते एक दशक में कई ब्राह्मण नेता बीएसपी से दूर होते गए। मौजूदा यूपी सरकार में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ब्रजेश पाठक 2004 में बीएसपी में शामिल हुए और इसी साल सांसद भी बने। फिर साल 2016 में वो बीएसपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। पूर्व मंत्री नकुल दुबे भी 2022 में बीएसपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए। दिवंगत रामवीर उपाध्याय, रंगनाथ मिश्रा और विनय शंकर तिवारी जैसे नेता भी बीएसपी से दूर हो गए। अम्बेडकर नगर से बीएसपी सांसद और विधायक रहे राकेश पांडे और उनके बेटे रितेश पांडे ने पार्टी छोड़ दी। अब अनंत मिश्रा पर मायावती की ताजा कार्रवाई ब्राह्मण नेताओं के बीएसपी से दूर होने की अगली कड़ी है। दरअसल बीएसपी की दलित ब्राह्मण वोटों की सोशल इंजीनियरिंग का सबसे जबरदस्त असर 2007 के विधानसभा चुनावों में दिखा था। 2007 में बीएसपी ने 80 से ज्यादा ब्राह्मण उम्मीदवारों को टिकट दिया था, जिसमें से 41 ब्राह्मण नेता विधायक बने थे। बीएसपी की ये सोशल इंजीनियरिंग इतनी सफल रही कि दूसरे दलों ने भी इसे साधने का प्रयास किया, लेकिन साल 2017 का विधानसभा चुनाव आते आते ब्राह्मण नेताओं का बीएसपी से मोहभंग शुरू हो गया। हालांकि अब बीएसपी फिर से ब्राह्मण समाज को साथ जोड़ने की कवायद में जुटी है। यही वजह है कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी ने पहला प्रत्याशी भी ब्राह्मण बनाया और इसके बाद सादाबाद सीट से भी ब्राह्मण उम्मीदवार का ऐलान किया। इसके बावजूद दूसरे दलों के बड़े ब्राह्मण नेता बीएसपी को लेकर ज्यादा उत्साहित नजर नहीं आ रहे हैं। शायद इसी को देखते हुए अनंत मिश्रा पर एक्शन के बाद मायावती ने सोशल मीडिया पर सफाई भी दी है। ये ब्राह्मण समाज व अन्य सभी समाज के जो भी लोग अभी तक पार्टी से निकाले गए हैं या निकाले जा रहे हैं, या वे अपने निजी स्वार्थ में दूसरी पार्टियों में चले गए हैं, या फिर वे अपने गलत कारनामों की वजह से उनसे बचने के लिए खासकर सत्ताधारी पार्टी में शामिल हो गए हैं। उधर बीजेपी कह रही है कि बीएसपी की किसी भी कोशिश का अब फायदा होने वाला नहीं। यूपी चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। हर पार्टी सामाजिक समीकरणों को साधकर मजबूत चुनौती देने की कोशिश में लगी है, लेकिन ब्राह्मण नेताओं को साथ लाने की बीएसपी की कोशिश इतनी आसान नहीं लग रही है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ समर्थ श्रीवास्तव आज तक।

0: 1947 में अगर मोदी होते तो भारत के पीएम तो देश को नहीं होता कोई नुकसान। पीएम मोदी के मखौल उड़ाने पर आग बबूला हुई बीजेपी। जेपी नड्डा का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। संस्कारहीन भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं नेता विपक्ष। एनएसजी डोवाल की दुनिया भर को खुली चेतावनी। भारत की उदारता को कमजोरी समझने की भूल ना करे दुश्मन। ऑपरेशन सिंदूर के 88 घंटों में तबाह किए दुश्मन के ठिकाने। महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी को हल्की राहत। जुलाई की थोक महंगाई 9.87% से घटकर 9.78% हुई। खाने पीने की चीजें में के घटे हैं दाम।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सो गुड।
3: जश्न आजादी की आड़ में सड़कों पर गूंजी गोलियां। लाहौर में अपनों के ही खून से सनी पाकिस्तान की सड़कें। इस्लामाबाद में आतिशबाजी तो पीओके सिंध और बलूचिस्तान की सड़कों पर मातम और आक्रोश का ब्लैक डे। बलूचिस्तान में फौजी चौकियों पर बीएलए का प्रचंड प्रहार। बारूद के धुएं से उड़ी पाक फौज की धज्जियां। कब्जाई गई चौकियां जलते फौजी ठिकाने। 14 अगस्त को जारी वीडियो ने खोला आसिफ मुनीर का खोखला सच। आवाम भूखी फौज पस्त फिर भी गीदड़ भक्की जारी। अपनी ही आग में खाक होने की राह पर नया पाकिस्तान।
0: नमस्कार रणभूमि में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। आजादी का ढोंग और अंदर से जलता पाकिस्तान। आज पाकिस्तान अपनी आजादी की सालगिरह का जश्न मना रहा है लेकिन सच तो यह है कि इस देश की नींव ही आज दरक चुकी है। दरअसल एक तरफ इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ और जनरल आसिफ मुनीर कल रात भर आतिशबाजी के बीच ठहाके लगाते नजर आए, भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए नजर आए, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर ही अंदर धधक रहा है। जी हाँ, जिस पाकिस्तान में जश्न के ढोल बजाने शुरू कर दिए हैं वहां आज ब्लैक डे भी मनाया जा रहा है। पीओके सिंध और बलूचिस्तान की सड़कों पर आज आजादी नहीं बल्कि आजादी के खिलाफ मातम और आक्रोश पसरा हुआ है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान में आई तस्वीरें पाकिस्तान फौज की नाकामी की पोल भी खोलती हुई नजर आ रही है। बीएलए यानी बलूच लिबरेशन आर्मी ने 31 जुलाई को पाकिस्तानी सेना की दो चौकियों को नेस्तनाबूद कर उन पर कब्जा जमा लिया था। आज उसका पूरा एक्सक्लूसिव वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि आसिफ मुनीर की फर्जी बहादुरी फौज का जनाजा कैसे निकल रहा है और लाहौर तक हाल भी आपको सुनाएंगे। कल रात जहां पर जश्न आजादी का ड्रामा चल रहा था वहीं सड़कों पर लोग जानवरों की तरह आपस में भिड़ते हुए नजर आए। दिन दहाड़े गोलियां चलाई गई और 3 पुलिसकर्मी अपनी सड़कों पर ही यानी अपने देश की सड़कों पर ही मार दिए गए, ढेर कर दिए गए। जरा सोचिए, जिस मुल्क में आवाम भूखी मर रही हो, जहां फौज अपनी ही चौकियों पर हिफाजत ना कर पा रही हो और जहां जश्न पर मातम पर गोलियां चलानी शुरू कर दी जाए, वहां के वजीर आजम भारत को गीदड़ भभकी दे रहे हैं। आखिरकार क्या है वहां के ताजा हालात, लेकिन ये दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप बात करेंगे बलूचिस्तान की, जहां पर बीएलए यानी बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान फौज की दो चौकियों पर भीषण हमला कर उन पर कब्जा कर लिया है। बड़ी खबर बलूचिस्तान से ही है, जहां पर बलूच लिबरेशन आर्मी ने राजधानी क्वेटा में यानी बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में महज 10 किलोमीटर दूर एक हमला किया। इस हमले में बीएलए के विद्रोहियों ने वली तंगी और स्पिन कारेज नाम की दो फौजी चौकियों को तबाह कर दिया। पाकिस्तानी फौज के जवानों को मारकर इन चौकियों पर कब्जा जमा लिया, यहां तक कि उनके गोला बारूद और उनके हथियार भी अपने कब्जे में कर लिए। यह हमला 31 जुलाई को हुआ था लेकिन बलूच विद्रोहियों ने जानबूझकर इसका वीडियो आज जारी किया है क्योंकि आज पाकिस्तान में जश्न आजादी मनाई जा रही और खासतौर पर आजादी का जश्न के दौरान ये दिखाया गया कि कैसे पाकिस्तान की फौज अपने ही इलाकों को या फिर आप कैसे अपनी चौकियों को की हिफाजत भी नहीं कर पा रही। यह हमला और उसका वीडियो पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिफ मुनीर को तमाचा है, जिन्होंने कहा था कि मुट्ठी भर लड़ाके बलूचिस्तान को छीन नहीं पाएंगे। देखिए क्वेटा के मिलिट्री छावनी में महज 10 किलोमीटर दूर ही पाकिस्तानी फौज की दो चौकियों को कैसे बारूद डालकर या फिर आप कह सकते हैं कि उनको कैप्चर कर लिया गया।

0: ऑपरेशन वली तंगी, तारीख 31 जुलाई 2026। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा से महज 10 किलोमीटर दूर पाकिस्तानी फौज की चौकियों पर बलूच लड़ाकों ने धावा बोल दिया। पहले वली तंगी नाम की जगह पर फौजी चौकी पर कब्जा जमा कर उसे आग के हवाले कर दिया और फिर पहाड़ की चोटी पर बनी स्पेन कारेज नाम की इस चौकी पर बारूद की बरसात कर दी। बीएलए यानी बलूच लिबरेशन आर्मी ने इस हमले को अंजाम देने से पहले ऑपरेशन की पूरी प्लानिंग की। देखिए, ये ऑपरेशन वली तंगी से पहले हुई ब्रीफिंग की तस्वीर है।
1: ग्रुप

0: नीचे पाकिस्तानी चौकियों के आसपास के इलाके का मॉडल बना है और 40 से 50 लड़ाके हमले से ठीक पहले यहां मौजूद हैं। ब्रीफिंग के तुरंत बाद एक्शन शुरू होता है। बीएलए के लड़ाकों ने पहाड़ की चोटी पर स्पिन कारेज फौजी चौकी पर रॉकेट दागने शुरू कर दिए। इस दौरान बीएलए के लड़ाकों की जबरदस्त घेराबंदी दिखी। वो लगातार पाकिस्तानी चौकी पर गोलियां बरसाते रहे, रॉकेट दागते रहे। इसी बीच वायरलेस पर दूसरे मोर्चे को लेकर बातचीत सुनाई देती है। ये पूछा जाता है, क्या बली तंगी में लड़ाई जारी है? जवाब मिलता है, हाँ लड़ाई जारी है।
1: हेलो मेहरान, लग करना चाहेंगे, स्टार्ट ही है ना।
0: ये है बली तंगी पोस्ट, जो पहाड़ से नीचे सड़क के किनारे है। बीएलए के कुछ लड़ाके इस पर पहाड़ से गोलियां चलाते दिख रहे हैं। तभी दूसरी पाकिस्तानी चौकी से मोर्टार के गोले दागे जाते हैं। बीएलए के लड़ाके जवाबी एक्शन को देखते हुए तुरंत अपनी पोजीशन बदलते हैं।
1: आओ चेंज करें, हम तक क्लियर बेटा, चेंज का वन दियो, क्लियर बेटा। हाँ आ रहा सेड, अरे डाट एक सही हो, डाट एक सही।
0: और फिर नई पोजीशन से फायरिंग शुरू कर देते हैं।

0: इस बीच एक लड़ाका पहाड़ की चोटी पर बनी स्पिन कारे चौकी के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है। उधर पहाड़ के नीचे सड़क किनारे बनी चौकी पर बीएलए के लड़ाकों का कब्जा लगभग तय हो गया। कुछ लड़ाके उस पोस्ट के पास पहुंच जाते हैं। अंदर से कोई फायरिंग नहीं होती, यानी पाकिस्तानी फौज या तो भाग खड़ी हुई या मारी गई।
1: देखती है तेरी मौत बलोच सरजमी पर, देखती है तेरी मौत बलोच सरजमी पर, मैं तेरे पांव से गर्दन चुड़ा के छोड़ूंगी।
0: ऐसे में बीएलए के लड़ाके पोस्ट में रखा सारा हथियार और गोला बारूद समेट कर निकल जाते हैं। जाते जाते वो पाकिस्तानी फौज की चौकी को आग के हवाले कर देते हैं। उधर पहाड़ की चोटी पर बनी चौकी पर कब्जे की जंग अंजाम तक पहुंचती नजर आती है। लड़ाकों की फायरिंग के बाद चौकी से धुआं उठता नजर आता है।
2: ये तस्वीरें, ये रिपोर्ट बलूचिस्तान से थी। बलूचिस्तान ही नहीं, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी आज ब्लैक डे मनाया जा रहा है। और बड़ी खबर रावलाकोट से भी आ रही है, जहां पर प्रदर्शनकारियों ने पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से पाकिस्तानी सेना को हटाने की मांग की है। इसको लेकर भी प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुख्य सदस्य सरदार अमान खान ने पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तान के जनरलों से बेशर्म बताते हुए तीखा हमला किया। उन्होंने जनरलों से पूछा कि संयुक्त राष्ट्र में जब 13 अगस्त 1948 में प्रस्ताव का अमल कब किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब प्रस्ताव में पाकिस्तानी सेना को कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को छोड़कर हट जाना चाहिए था, तो आखिरकार अभी तक वो पीओके में क्या कर रहे हैं और पाकिस्तानी सेना को हटाने की समय सीमा क्या होगी।
3: मैं पूछना चाहता हूँ पाकिस्तान के हुक्मरानों से, पाकिस्तान के बदमाश जनरलों से पूछना चाहता हूँ कि 8 तारीख हो गई हैं, तुमने जम्मू कश्मीर से अपनी अफवाज निकालनी थी, कश्मीर के आवाम को टाइम फ्रेम मांगते हैं, अफवाज कब निकालोगे, टाइम फ्रेम दो कश्मीर में से, और कश्मीरियों को जम्मू कश्मीर के शहरियों को वो राय का हक दिया जाए, वो सस्वाब राय दिया जाए, वो हक हुदूद-ए-आज़ादी दिया जाए, जिसका मुतालबा जम्मू कश्मीर के शहरियों का 8 तारीख से जिसका मुतालबा है, और जिसका वादा कायदे आजम से लेके शहबाज शरीफ तक जिसका वादा आपके हुक्मरानों ने हमसे किया।
2: आप सोच कर देखिए कि वो सेना कैसी होगी, उसके जनरल कैसे होंगे जो बॉर्डर पर नहीं अपने देश की जनता से अपने देश में ही लड़ते रहते हैं। ये पाकिस्तान की सच्चाई है, जिसमें उसका हर सूबा पाकिस्तानी फौज से परेशान है। दूसरी तरफ पाकिस्तान फौज लगातार आवाम की आंखों में धूल भी झोंक रही। आजादी की सालगिरह से पहले कल इस्लामाबाद में यादगार फतेह युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया। ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरीके से पिटने के बाद और सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने के बाद पाकिस्तान अपनी आवाम को जीत का चूरण बेच रही है। यही नहीं, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने गीदड़ भभकी भी इस दौरान दे दी। सिंधु जल समझौता सस्पेंड किए जाने के तिलमिलाए शहबाज ने कहा कि पानी का की एक बूंद भी पाकिस्तान के लिए रेड लाइन जैसी होगी। शहबाज ने खोखली धमकी दी है कि अगर भारत होश में नहीं आया तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा।
4: गुज़श्ता वर्ष जंग में शिकस्त के बाद भारत ने सिंध तास माहदे को यकतरफा और गैर कानूनी तौर पर मुअत्तल करके खुद को अमन का दुश्मन साबित किया है। मैं वाशगाफ अल्फाज में ऐलान करता हूं कि पाकिस्तान के पानी की एक एक बूंद हमारी रेड लाइन है। भारत राह रास्त पर ना आया तो उसे बराह रास्त जवाब दिया जाएगा।
2: पाकिस्तान के बारे में एक बात कही जाती है कि हुक्मरान कोई भी आ जाए, लेकिन पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के साथ उनकी मिलीजुली सरकार होती है और उसका समन्वय हमेशा दिखता भी रहता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बाद सिंधु जल संधि पर लश्कर ए तौबा के आतंकियों ने भी वही गिरदड़ भपकी दी है, वही लाइन दी है जो लगातार वहां के हुक्मरान दे रहे। कल रात लाहौर में लश्कर ए तौबा के कमांडर सैफुल्ला खालिद कसूरी ने भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया। लश्कर कमांडर सैफुल्ला खालिद ने कसूरी ने भारत को खोखली धमकी देते हुए कहा कि हम आगे बढ़ेंगे और कुर्बानियां पेश करेंगे, कश्मीर भी ले लेंगे, पाकिस्तान के पानी का इंशाल्लाह कतरा कतरा भी हम जाने नहीं देंगे। अभी हाल ही में सैफुल्ला कसूरी ने भारत सरकार ने घोषित आतंकी की लिस्ट में शामिल किया है। और इसी बीच भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और वहां पल रहे आतंकियों को भारत की तरफ से सबसे करारा और सीधा जवाब भी मिला है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने एक बड़ा बयान दिया है। एनएसए अजीत डोभाल ने पाकिस्तान को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि भारत की उदारता को और सहनशीलता को उसकी कमजोरी समझने की भूल पाकिस्तान बिल्कुल ना करे। दरअसल भारत बड़ा जोखिम उठा सकता है और अंजाम भी की फिक्र किए बिना दुश्मन पर करारा प्रहार भी कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर पर उन्होंने पहले भी इंटरव्यू में अजीत डोभाल ने साफ तौर पर कहा था कि भारत का संदेश दुनिया के लिए बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। पहलगाम आतंकी हमला बदला लेने के लिए चलाए गए 88 घंटे के सैन्य ऑपरेशन का मकसद सिर्फ और सिर्फ आतंकी ठिकानों का खात्मा उन्हें जवाब देना था। और अब बात करते हैं इस्लामाबाद में हुए कल हुए कार्यक्रम में दिलचस्प तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। इस्लामाबाद में पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान यादगार फतेह यानी विक्ट्री मोमेंटम का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर ना तो राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और न ही प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बगल में खड़े हुए नजर आए, बल्कि एक नहीं दो दो बार वो पाकिस्तान के पंजाब सूबे की सीएम मरियम नवाज के साथ खड़े हुए नजर आए। प्रोटोकॉल के अनुसार पाकिस्तान के आर्मी चीफ को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन हर बार वो आसिफ मुनीर जगह ढूंढते रहे और फिर मरियम नवाज के साथ जाकर खड़े हो गए। ऐसा कहा जा रहा है कि आसिफ मुनीर ये संकेत देना चाहते हैं कि मौजूदा पीएम शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की सरकार को पाकिस्तानी फौज और खासतौर पर खुद आसिफ मुनीर का पूरा समर्थन मिला हुआ है। यही नहीं, वो इमरान खान और उनकी पार्टी पीटीआई को भी ये संकेत दे रहे हैं कि उनका समर्थन शरीफ परिवार को है। यानी इसके अलावा जानकार ये भी बांटते हैं कि वो मरियम को पाकिस्तान के भविष्य के नेता के रूप में यानी प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं। और मरियम नवाज इस्लामाबाद में आसिफ मुनीर के साथ प्रधानमंत्री पद के सपने देख रही थी, लेकिन जिस पंजाब सूबे की वो सीएम है उसकी राजधानी लाहौर में ही संग्राम छिड़ा हुआ है। लाहौर के लिबर्टी चौक पर कल रात आजादी के जश्न के दौरान जबरदस्त मारपीट और भगदड़ भी मच गई। दरअसल लाहौर में मुख्यमंत्री मरियम नवाज के निर्देश पर मुफ्त मेगा म्यूजियम कॉन्सर्ट का इंतजाम किया गया था और कई बड़े कलाकारों को सुनने और आधी रात को आतिशबाजी देखने के लिए हजारों लोग यहां पर इकट्ठा हुए और मुफ्त कॉन्सर्ट होने की वजह से उम्मीद से ज्यादा कई गुना ज्यादा भीड़ यहां पर लिबर्टी गोल चक्कर पर आकर पहुंच गई, जिससे पूरा इलाका ब्लॉक हो गया और तिल रखने तक की जगह यहां पर नहीं थी। और इसी बीच धक्का मुक्की भी शुरू हो गई और मारपीट में तब्दील हो गई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इन वीडियो के अनुसार भीड़ में मौजूद युवकों और हुड़दंगियों ने कुछ समूह के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और फिर देखते देखते यहां मारपीट होनी शुरू हो गई। ये विवाद इतना बढ़ गया कि युवकों ने एक दूसरे पर लात घूंसे चलाने शुरू कर दिए, पानी की प्लास्टिक की बोतलें फेंकनी शुरू कर दी। पाकिस्तान के ताजा हालात आप देख कर समझ सकते हैं कि वहां पर जश्न आजादी से ज्यादा मारपीट आजादी तय की गई और वहां पर वो तस्वीरें दिखाते हैं कि कैसे इस देश में अराजकता फैली हुई है। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन रणभूमि में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए आज तक।
5: हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और जिंदाबाद रहेगा।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से, इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: आगे आगे
2: उधर
1: उधर गया। करेक्ट करेक्ट
3: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: जिस मिट्टी में फसल उगती है उसी में भारत की स्वतंत्रता की खुशबू है। इस स्वतंत्रता दिवस आइए उन किसानों का सम्मान करें जो हर दिन देश को मजबूत बनाते हैं। मेरे और क्रिस्टल परिवार की ओर से आपके और आपके परिवार को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
4: In association with
5: Sera Sanitary Wear, it's your moment of Sera. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
6: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।
7: भिखारियों का मनोविज्ञान क्या है?
8: तैयारी तुम भी कर रहे हो क्या?
7: नहीं सर।
8: 12th किससे की हो?
7: 12th सर मेरा PCM से रहा।
8: कंपाउंड क्या होता है?
7: बेसिकली जो एक्युमुलेटेड चीजें रहती हैं उसके ऊपर।
8: यही है भीख मंगे वाली क्वालिटी। तुम पूछ रहे थे ना, यही है यही। एक मिनट,
7: ये जो आपका तरीका बहुत सर बहुत अच्छा नहीं है, इस तरीके से समझाने का स्टूडेंट्स को, इसे सर ह्यूमिलिएशन कहते हैं।
8: देख भाई, अपनी गारंटी पे छेड़ना

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: जम्मू कश्मीर में बारिश आफत बनकर आई, पहाड़ों पर मूसलाधार प्रहार से कई इलाकों में फ्लैश फ्लड आ गया, तो कहीं मलबे के साथ पानी की तेज धारा घरों और गलियों तक पहुंच गई। ये जम्मू कश्मीर की भद्रवाह की तस्वीरें हैं। बाजार पर पानी का कब्जा हो गया है, चौक चौराहों पर बहाव इतना तेज है कि मानो यहां सड़क नहीं नहर बह रही है। भारी बारिश के बाद भद्रवाह के कई इलाकों से इसी तरह की तस्वीरें आईं। रिहायशी इलाकों में भी बारिश का पानी घुस गया। जिन गलियों में बच्चे खेलते थे वहां पानी की तेज धारा बह रही है। ये तस्वीर भी भद्रवाह की है। जामिया मस्जिद चौक पर अचानक फ्लैश फ्लड जैसे हालात हो गए, लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। इस दौरान कुछ लोग एक बाइक को भी इस पानी से बचाने की कोशिश करते दिखे। कड़ी मशक्कत के बाद एक बाइक तो बच गई, लेकिन सड़क किनारे खड़ी दूसरी गाड़ी पानी में बह गई। जो जिला सुरंग के पास ऊंचाई वाले इलाके में अचानक बादल फटने की घटना हुई, जिसके बाद वहां भी फ्लैश फ्लड आ गया। पानी के साथ मलबा और बड़े पत्थर भी बहने लगे। भारी मलबे की वजह से जोजिला का रंगा मोड़ ब्लॉक हो गया। हालांकि बीआरओ ने अपनी टीमों को तैनात कर दिया है, स्थिति पर नजर रखी जा रही है। अब जरा शिमला की भी तस्वीरें देखिए। भारी बारिश के चलते जगह जगह लैंडस्लाइड की खबरें सामने आ रही हैं। शिमला के ढली इलाके में सब्जी मंडी के पास अचानक पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। गनीमत रही कि ये पत्थर जिन वाहनों पर गिरे उसमें लोग नहीं थे। पत्थरों की वजह से 12 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। भारी बारिश की वजह से चित्तौड़गढ़ के मैनाल प्रपात में भी जलस्तर बढ़ा हुआ है। यहां पिकनिक मनाने गया एक शख्स पानी में बहने लगा। अचानक हुई इस घटना से वहां अफरा तफरी मच गई। आसपास खड़े लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को निकाल लिया। आज तक ब्यूरो

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

0: देश का दिवस पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। नितिन नवीन ने कहा कि आजादी का क्रेडिट लेने वाले दर्द क्यों भूले। पीएम ने साझा किया विस्थापितों का दंश। बंटवारे के लिए सीएम योगी ने कांग्रेस को बताया जिम्मेदार। कहा कि 1947 में अगर मोदी होते भारत के प्रधानमंत्री तो देश को नहीं होता कोई नुकसान। प्रधानमंत्री मोदी के मखौल उड़ाने पर आग बबूला हुई बीजेपी। जेपी नड्डा का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। संस्कारहीन भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं नेता विपक्ष। मॉनसून सत्र खत्म होने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। हंगामे के लिए कांग्रेस को ठहराया कसूरवार। कहा बिना सोचे समझे बात करते हैं राहुल गांधी, ज्यादा नुकसान विपक्ष को। एनएसए अजीत डोभाल की दुनिया को खुली चेतावनी। भारत की उदारता को कमजोरी ना समझने की भूल करे दुश्मन। ऑपरेशन सिंदूर के 88 घंटों में तबाह किए ठिकाने।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी। लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
2: भरता गया पानी, घटती गई सांसें, मलबे से और मुश्किल हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। चमोली की टनल में घंटों चला जिंदगी और मौत का संघर्ष। ज्यादातर मजदूरों को बचाया, कई ने जीवन गवाया। अचानक आए पानी ने बचाया टनल में कोहराम। दलदल में डूब गए रोजी रोटी के अरमान।
3: ठीक से इलाज चल रहा है, सभी प्रकार की जो भी स्वास्थ्य की बड़ी हुई चीजें वो सब पी जा रही है। इसके साथ साथ कुछ लोगों को बेस के लिए भी जो है रिफर किया गया है, और कुछ को अगर हायर सेंटर भेजना है तो उसकी भी सब व्यवस्था है। हमारा पूरा ध्यान है इस समय कि एक एक व्यक्ति को बचाया जाए।
2: अब बची है हिमाचल से लेकर बिहार और झारखंड तक के उन मजदूरों की दिल दहला देने वाली कहानियां, जिन्हें 24 घंटे पहले तक ये अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि मौसम की ये मार इतनी जानलेवा साबित होने वाली है।
0: रणभूमि में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी, और अब बात करेंगे एक ऐसी रणभूमि की जहां जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष चल रहा है। जहां उत्तराखंड के चमोली के पीपलकोटी इलाके में बन रही एक ऐसी सुरंग की बात करेंगे जिसमें हुए हादसे की वजह से 7 मजदूरों की जान चली गई है और अभी भी 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम से लेकर एसडीआरएफ की टीम और कई विशेषज्ञ खोजबीन में लगे हुए हैं। कल शाम सुरंग में पानी और मलबा भरने की वजह से 22 लोग इसमें फंस गए थे, जिसे निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन कई घंटों से लगातार जारी। अब दिक्कत यह आ रही है कि जितना पानी निकाला जा रहा है उससे ज्यादा पानी लगातार होती ही बारिश की वजह से फिर से भर रहा है। कई बड़े पंप पानी निकालने में लगे हुए हैं और लगातार इसको लेकर ऑपरेशन और तेजी से चला जा रहा है। बाकी बचे हुए 3 लोगों की तलाश अब भी जारी है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज सुबह हादसे की जगह पर पहुंचे और सुरंग के अंदर जाकर उन्होंने अफसरों से जरूरी निर्देश भी दिए। सीएम धामी लगातार अस्पताल भी गए जहां पर घायलों का इलाज वहां पर चल रहा था। पहाड़ों में बारिश का ये मौसम कई तरीके की मुश्किलें लेकर आए। अभी भी 5 दिन पहले चमोली में ही पानी का तेज बहाव एक पुल को बाहर ले गया था। बारिश और लैंडस्लाइड और बादल फटने और जल भराव की वजह से कई दिक्कतों का सामना इस इलाके में करना पड़ रहा है। और चलिए चमोली हादसे का एक और अपडेट आपको देंगे, लेकिन उससे पहले उत्तराखंड के मुनस्यारी में ही भारी तबाही की तस्वीरें भी सामने आई। दरअसल कहा जा रहा है कि बादल फटने से यहाँ पानी ने रौद रूप ले लिया है और मुनस्यारी में केला चौकला इलाके के अंदर भारी बारिश से नदी नाले उफान पर है। इसके अलावा नालों से बहकर मलबा सड़कों पर आ गया है। निचले इलाकों में पानी तेज रफ्तार से बहता हुआ नजर आ रहा है। इस इलाके के कई रास्ते बंद हो गए हैं। प्रशासन ने लोगों से भारी बारिश को देखते हुए सतर्कता बरतने की अपील भी की है। ये तस्वीर आप देखेंगे कि कैसे तेज पानी का बहाव लगातार बड़ी तेजी के साथ इन इलाकों में बह रहा है और बादल फटने के बाद ही मुनस्यारी की एक्सक्लूसिव तस्वीर है। उत्तराखंड जैसे राज्यों में मॉनसून का मौसम हर दिन नई चुनौतियों लेकर आता है। कल शाम चमोली में सुरंग हादसा हुआ, वहीं रिसाव होने से सुरंग में मलबा और पानी तेजी से भरने लगा। 22 मजदूर इसमें फंस गए। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। इसमें 7 मजदूरों की मौत हो गई है और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लगातार हादसे स्थल पर जाकर अफसरों से राहत और बचाव कार्य का जायजा भी लिया और उनको जरूरी निर्देश भी दिया। हालांकि सुरंग में लगातार भर रहा पानी रेस्क्यू टीमों के लिए और मुश्किलें बढ़ा रहा है।

0: चमोली में फिर कुदरत की मार, खराब मौसम लाया मुसीबतें हजार, सुरंग में पानी मलबे ने मचाई तबाही, अब तक 7 मजदूरों ने जान गंवाई। ये तस्वीरें सारी कहानी कह रही हैं, तबाही की, बर्बादी की, मातम की। चमोली की ये सुरंग एक दिन पहले तक उम्मीदों की सुरंग थी, लेकिन गुरुवार की शाम हुए हादसे ने इसे मातम वाली सुरंग बना दिया है। क्यों और कैसे हुआ ये सब, ये बताने के लिए आपको 24 घंटे पीछे लिए चलते हैं। दरअसल चमोली में अलकनंदा नदी के ऊपर विष्णुगढ़ पीपल कोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के तहत इस सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। हर दिन की तरह गुरुवार को भी इसमें करीब 22 मजदूर काम कर रहे थे। शाम को करीब 6:30 बजे सुरंग के 1.5 किलोमीटर अंदर पानी का रिसाव होने लगा। ये रिसाव इतनी तेजी के साथ हुआ कि मजदूरों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। तेज रफ्तार के साथ आ रहे पानी के साथ मलबा भी मिलता चला गया तो हालात और खराब होने लगे। कुछ ही मिनटों में बाहर निकलने के रास्ते भी बंद हो गए तो स्थिति पूरी तरह से जानलेवा हो गई।
1: शाम को 6:30 बजे के आसपास पीपलकोटी विष्णुघाट परियोजना की जो TSDC की ये टनल है, TRT टनल, इसके अंदर 1500-1600 मीटर के करीब में एक लूज जो है टनल के अंदर गिरा और उसके बाद एक बहुत जबरदस्त, यहाँ पे बताया जा रहा है, हवा का झोंका और पानी का बहुत बड़ा रिसाव हुआ और उसने कुछ लोगों को तो अंदर की ओर धकेला और कुछ लोगों को बाहर की ओर धकेला। ऐसे में कुछ तो ठीक ठाक निकल चुके हैं लेकिन अभी तक 3 लोग लापता है। पता चला इस पूरे हादसे में 22 लोग यहाँ पे हताहत हुए थे, जो कुछ घायल है, कुछ 7 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। वहीं अभी राज्य आपदा प्रबंधन सचिव जो है विनोद कुमार सुमन, वो यहाँ पे निरीक्षण करके गए। उनका कहना है कि डीवाटरिंग करने का काम किया जा रहा है और जल्द से जल्द इस पानी को बाहर निकाला जाएगा।
0: हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन, NDRF, SDRF के जवान सुरंग के बाहर पहुंच गए और उन्होंने बचाव अभियान शुरू कर दिया। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे मजदूरों तक पहुंचना कितना मुश्किल होता जा रहा था। अंधेरा हो चुका था, मौसम खराब था और संसाधन सीमित। बचाव कर्मी किसी तरह ड्रम पर बैठकर मलबे और पानी के बीच निकलते हुए सुरंग में फंसे लोगों को खोजने की कोशिश कर रहे थे।
2: पानी का एरिया जो है बहुत लंबा है, लगभग 1 किलोमीटर एरिया है जो पानी से भरा हुआ है और उसमें हाइट जो है 3-4 फीट तक जा रही है, कहीं कहीं पर 5 फीट भी है। तो उस पर्टिकुलर एरिया में 1 किलोमीटर लंबा प्लस 3-4 फीट गहरा पानी है और वो केवल पानी नहीं है, वो स्लजी वाटर है। तो उसमें जो सर्च करने के लिए दिक्कत आ रही है, मोस्ट फेवरेबल कंडीशन यही होगी जब पानी कम होगा। तो पानी कम करने के लिए जैसा मैंने बताया, संस्थान ने जो मोटर्स लगाई हैं वो सही कार्रवाई करें। बट हो क्या रहा है कि जो इसका दूसरा सोर्स है जहाँ से ये कोलैप्स हुआ है वहाँ से पानी कंटिन्यूसली आ रहा है, तो जितना हम निकाल रहे हैं उतना ही आ रहा है। तो ये कंडीशन थोड़ा सा हमारे लिए डाइसी हो रही है इस वजह से।
0: सुरंग में कुल 22 मजदूर फंसे थे जिनमें से 3 की तलाश जारी है। 7 मजदूरों की मौत हो गई है जबकि 12 लोग घायल हैं जिन्हें पीपलकोटी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
1: 3 लोग हैं अंदर, उनका रेस्क्यू हो नहीं पा रहा है, पानी भर जा रहा है। ऐसे में लगातार यहाँ पे ITBP की फोर्स है, वो लगातार आ रही है जा रही है, जो टीमें हैं वो लगातार लगी हैं, कभी मशीनें भेजी जा रही हैं, कभी ड्रम भेजे जा रहे हैं, अलग अलग तरीके से यहाँ पे इस समय जो रेस्क्यू और बचाव के काम चल रहे हैं वो करवाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो मुश्किलें हैं वो पानी अत्यधिक भरने के कारण यहाँ पे आ रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं 19 घंटों के बाद भी अभी जो 3 लोगों के जो मिसिंग की रिपोर्ट है वो दर्ज की जा रही है, उनके लिए रेस्क्यू चलाया जा रहा है लेकिन अभी तक पानी कम होने की बात नहीं हो पाई है।
3: और चलिए अब आपको सुनाते हैं सुरंग से निकले लोगों की जुबानी मौत के मंजर की कहानी।
4: क्या सर, एकदम कच्ची मिट्टी और पानी आ गया, जैसे आंधी तूफान आता है हवा की तरफ, 10 मिनट में पूरा अफरा तफरी मच गया, किसी को समझने का मौका ही नहीं मिला।
5: कितने लोग थे आप लोग टोटल?
4: देवाई पूरी से उठी सर, 20 आदमी।
6: बहुत बहुत बहुत खराब स्थिति थी वहाँ पर, जो कि बहुत तेज से आंधी तूफान आ रहा था, जो कि वो ऊपर से जो मिट्टी धस गया ना उसी में बहुत पूरा हादसा हो गया। वहाँ से पूरा आदमी को जो कि भागने के लिए कहीं चांस ही नहीं मिला, जो आदमी आया वो पूरा गंभीर चोट से आया।
5: आपके साथ के कितने लोग थे?
6: मेरे साथ के तो कोई नहीं थे, मैं तो अकेला उड़ीसा का हूँ।
3: आपने देखा कि मॉनसून तो आया लेकिन अपने साथ कैसी आफत लेकर आया, जिससे इन पर्वतीय इलाकों में बड़ी आफत आई। अब मॉनसून के बाद बात करते हैं। संसद के मॉनसून सत्र खत्म होने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आज तक को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है। हमारी सहयोगी मारिया शकील ने उनसे बातचीत की है और किरण रिजिजू ने हंगामे के लिए कांग्रेस को कसूरवार ठहराया है और कहा कि राहुल गांधी बिना सोचे समझे बात करते हैं और टी लिमिटेशन बिल और FCRA पास करने को लेकर सवाल पर कहा कि संविधान संशोधन को लेकर हमारे पास पर्याप्त संख्या भी है।
7: किरण रिजिजू जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। यू एंटर्ड द मॉनसून सेशन आफ्टर हिस्टोरिक बंगाल विक्ट्री। देयर वर डिफेक्शंस व्हिच हैड हैपेंड इन TMC, इन द शिवसेना। आम आदमी पार्टी MPs हैड ऑल्सो डिफेक्टेड एंड ज्वाइन द BJP। देयर वॉज दिस कॉन्फिडेंस विथ विच गवर्नमेंट एंटर्ड द मॉनसून सेशन। यू वर कॉन्फिडेंट कि आप डीलिमिटेशन बिल पास करवा देंगे। डीलिमिटेशन बिल का क्या फ्यूचर है, पहले मेरा ये सवाल होगा। और FCRA वो तो एक सिंपल मेजॉरिटी के साथ बिल पास हो सकती थी, लेकिन ऑपोजिशन हैड एन अपर हैंड इन गेटिंग इट सेंट टू द JPC।
8: नहीं, सबसे पहले तो हमने महिला आरक्षण और डीलिमिटेशन को मानसून सेशन में ही पारित करेंगे, हमने कभी नहीं कहा, क्योंकि यह संवैधानिक मामला है और संविधान संशोधन चाहिए जिसके लिए पर्याप्त संख्या और सदन के अंदर में एक माहौल होना चाहिए। आप वोटिंग जो करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो उसमें हाउस इन ऑर्डर और डिवीजन वोटिंग होते हैं, तो उसमें शोरगोल में आप संविधान संशोधन बिल पारित नहीं कर सकते हैं। और हमने कहा नहीं कि अभी हम तुरंत पारित करने जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास संख्या है। लेकिन संख्या होते हुए भी हमने जबरदस्ती नहीं किया। जैसे FCRA का बिल के बारे में आपने जिक्र किया, FCRA,
7: लेकिन सर एक मिनट, मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट करूंगी। संख्या की बात जो आप कर रहे हैं, यू हैव द नंबर्स टू गेट द डीलिमिटेशन पास्ड, विच इज एसेंशियली अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल विच रिक्वायर्स 2/3।
8: यस, बट वी डिड नॉट प्रेस फॉर इट बिकॉज वी थॉट लेट देयर बी मोर कंसल्टेशन विद इन द पार्टीज। तो हमने कोई जबरदस्ती नहीं किया। देखिए, हम बहुत डेमोक्रेटिक लोग हैं, अपोजिशन कुछ भी कहे उससे कोई हमारा छवि बदलने वाला नहीं है। हर बिल हमने जबरदस्ती पास नहीं कराया। बिल पारित होने से पहले हमने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में बिल को बताया, समय आवंटन किया और फिर हमने बिल को लिस्टिंग करके हाउस में रखा। कोई भी ऐसा एक घटना नहीं है जहां हम ऑपोजिशन को पूछे बगैर कोई भी बिल पारित किया हो, ऐसा कोई घटना नहीं हुई है। और जहां तक ऑपोजिशन का सवाल है, कई ऑपोजिशन MPs मेरे पास निजी तौर पर आए और ये कहा कि कृपया राहुल गांधी जी और अखिलेश जी और कुछ लोगों से बातचीत करके बिल को चर्चा कराइए, हम लोग बोलना चाहते हैं।
7: FCRA पे
8: नहीं, कोई भी बिल, लेकिन वो सुनते ही नहीं है। मैं राहुल गांधी जी से बहुत लंबा चर्चा की, अखिलेश यादव जी से भी चर्चा की और बाकी ऑपोजिशन पार्टी के कई नेताओं से मेरा बातचीत बहुत अच्छी तरह से हुई, लेकिन उसका कोई नतीजा इसलिए नहीं निकला क्योंकि वो सदन में चर्चा के लिए बिल्कुल राजी नहीं हुए। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि बिल पे चर्चा नहीं होने से ज्यादा नुकसान ऑपोजिशन पार्टी का है, क्योंकि सरकार का मत तो ऑलरेडी हमने कैबिनेट में बिल पारित करते हैं, फिर कैबिनेट से क्लियर करने के बाद वो पार्लियामेंट में लेके आते हैं, तो सरकार का मत तो बहुत साफ है। और कुछ बिल्स को हमने स्टैंडिंग कमेटी और JPC में भी भेजे हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो कहते हैं कि सेशन वॉश आउट हो गया, सेशन वॉश आउट नहीं हुआ, सेशन पूरी तरह से हमारे लिए कामयाबी रहा। 12 बिल्स पारित किए, एक बिल पर चर्चा हुई, जो पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस इन एग्जाम्स, जो पेपर लीक वगैरह होते हैं, उसके लिए बहुत कठोर कानून बनाया, उसका चर्चा लोकसभा राज्यसभा दोनों में हुए। हाँ, इतना बात जरूर है कि पेपर लीक को लेकर के इतना मजबूत कानून बनाया तो ऑपोजिशन उस पर नहीं बोले, वो बाहर का इधर उधर राजनीति करने लगा, लेकिन चर्चा हुई।
7: लेकिन सर, इफ ऑपोजिशन वांट्स डिस्कशन ऑन सर्टेन इम्पोर्टेंट इश्यूज विच ऑल्सो इंक्लूड्स चंदा चोरी इन अयोध्या, उस पर चर्चा की जरूरत है,
8: तो
7: फिर चंदा चोरी पर आप लोग तैयार क्यों नहीं हुए डिस्कशन?
8: अरे एक बात यह साफ है कि एक समय में एक ही चर्चा होगा, तो हमने पेशकश किया कि छात्र का जो आंदोलन हुआ नीट पेपर एग्जाम का लीक होने से, तो वो बहुत गर्मा गर्म विषय बना, तो हमने तैयार किया ना उसको, हमने कहा कि चर्चा करेंगे। वो कहते हैं कि नहीं, सरकार का जवाब सुनना नहीं चाहते, सिर्फ ये बताओ कि गोली किसने चलाया। अरे जब गोली चला ही नहीं है तो फिर किसने चलाया का सवाल कहां से आता है? ये तो मैं आपसे भी बात करना चाहता हूं, आप भी काफी सीनियर जर्नलिस्ट हो गए हैं, आप भी काफी मैच्योर्ड है, आप भी इसको समझ सकते हैं कि अगर गोली चलती है तो खून खराबा होगा, देश में कितना आंदोलन

0: पैलेट गन्स का जहां तक सवाल है, मैं अभी डिटेल में इसलिए नहीं कह रहा हूं कि वो जब मौका मिलने से तो गृहमंत्री जी बताएंगे, लेकिन मैं एक कॉमन वाला बात बताता हूं जो हर एक आदमी समझते हैं। पैलेट गन्स तो हजारों में सौ सौ वो विस्फोट होते हैं, एक ही को कैसे लगा?
1: और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप सुन रहे थे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
2: हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हाँ और जिंदाबाद रहेगा।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: सर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं हल्द्वानी में पब्लिक स्पीच में रामलीला मैदान में रामलीला स्टेज में भाषण किया और लाखों लोग वहां पर थे। उस वक्त मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किया।
1: बीजेपी, क्योंकि खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग थे, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और मैं भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं। बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नेवर। लेकिन आपने कहा है, हम इसकी तहकीकात भी करेंगे।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: हम इस समय हिंदुस्तान के हीरोज के साथ यहाँ पर मौजूद हैं।
1: भारतीय तटरक्षक की
0: स्वतंत्रता का पर्व हम इनके साथ आज मनाने वाले हैं।
2: आयुष लोग आप ये पांचों ग्रंथ का

0: पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन होता है। इस प्रदर्शन का बड़ा असर होता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री इस्तीफा देते हैं। फिर रांची में आंदोलन के शोले भड़कते हैं। छात्रों और नौजवानों की ताकत के आगे हेमंत सोरेन सरकार को झुकना पड़ता है।
1: सरकार ने छात्रों को आश्वस्त किया है किन किन परीक्षाओं को जांच करने का आश्वासन दिया है। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि जो सरकार ने निर्णय लिए हैं अध्यक्ष महोदय, रिफॉर्म्स का रद्द करने को लेकर और जांच को लेकर, बिल्कुल सरकार की मंशा स्पष्ट है और सरकार निरंतर अपने कदमे आगे बढ़ा भी रही है।
0: और फिर राहुल गांधी प्रयागराज पहुंचते हैं और छात्रों से संवाद करते हैं।
2: डेटा आपका, यूथ पोटेंशियल आपका, मगर सिस्टम ने आपको चक्रव्यूह में फंसा रखा है। ये आप देखिए, आपको चक्रव्यूह में फंसा रखा है। आपके परिवारों से, आपके जेब से पैसा छीना जाता है, लाखों करोड़ रुपए लिए जाते हैं और फिर आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। आपको कहा जाता है कि हाँ, आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट मिल गया, बीए मिल गया, एमए मिल गया, एमएससी मिल गया, मगर इस सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं है आज हिंदुस्तान में।
0: ये तीन तस्वीरें बता रही हैं कि देश की राजनीति इस वक्त जेंजी यानी नौजवानों के इर्द गिर्द घूम रही है। कांग्रेस हो या बीजेपी, नौजवानों की ताकत के आगे सब नतमस्तक है। और ऐसे में जब यूपी की चुनावी परीक्षा नजदीक है तो नौजवानों पर सबकी निगाहें टिकी हैं। खबर है कि जेंजी को लेकर बीजेपी खास रणनीति बनाने में जुटी है। दिल्ली में अमित शाह और केशव प्रसाद मौर्य की अहम बैठक हुई है। आधे घंटे की बैठक में जेंजी पर विशेष फोकस रहा। नौजवानों के साथ साथ बीजेपी महिला वोटरों को साधने की भी कोशिश में है। यूपी सरकार बड़ी आर्थिक सहायता योजना लागू करने पर विचार कर रही है। प्रस्तावित योजना के तहत महिलाओं को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने पर विचार हो रहा है। 20,000 रुपए की पहली किस्त चुनाव से पहले दे दी जाएगी। बीजेपी की सरकार बनने के बाद 10-10,000 रुपए की तीन किस्तें देने का प्रस्ताव है। सरकार की प्राथमिकता में एससी, एसटी, बीपीएल और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाएं हैं। ऐसे परिवारों की महिलाओं को भी योजना में शामिल करने पर विचार हो रहा है, जिनकी सालाना आय 12 लाख रुपए तक है।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: विभाजन विभिषेका दिवस पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। नितिन नवीन ने कहा आजादी का क्रेडिट लेने वाले भूले दर्द। सीएम योगी बोले 1947 में अगर मोदी होते पीएम तो देश को नहीं होता नुकसान। पीएम मोदी का मजाक उड़ाने पर बीजेपी आग बबूला। नड्डा ने राहुल गांधी पर बोला हमला, संस्कारहीन भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं नेता विपक्ष। मानसून सत्र खत्म होने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। हंगामे के लिए कांग्रेस को ठहराया कसूरवार, कहा बिना सोचे समझे बात करते हैं राहुल। एनएसए अजीत डोवाल की खुली चेतावनी, भारत की उदारता को कमजोरी समझने की भूल न करे दुश्मन। ऑपरेशन सिंदूर के 88 घंटों में तबाह किए निशाने ठिकाने। यूपी के स्कूली छात्रों को सीएम योगी की सौगात, सरकारी स्कूल के लाखों बच्चों को मिलेंगे 1200 रुपए। प्राइवेट स्कूलों के करीब 3 लाख शिक्षकों को कैशलेस इलाज का लाभ देने की तैयारी।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद की नालसर यानी नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च लॉ यूनिवर्सिटी से जुड़े विवाद पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को यानी बीसीआई को जमकर फटकार लगाई है। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि भले ही छात्रों का फैसला गलत हो या उन्हें किसी ने गलत सलाह दी हो, फिर भी उन्हें अपनी बात रखने और विरोध करने का पूरा अधिकार है। जस्टिस सूर्यकांत ने बीसीआई के उस सर्कुलर पर भी नाराजगी जताई जिसमें नालसर के 2026 बैच के लॉ ग्रेजुएट्स का वकील के तौर पर एनरोलमेंट रोकने को कहा गया था। सीजेआई ने कहा कि ये मेरे और छात्रों के बीच का मामला है और इसे मुद्दा बनाने की कोई जरूरत नहीं। बार काउंसिल इस पर दखल देने वाला होता कौन है? दरअसल हैदराबाद की नालसर यूनिवर्सिटी के करीब 450 छात्र जस्टिस सूर्यकांत को दीक्षांत समारोह में चीफ गेस्ट बनाए जाने का विरोध कर रहे हैं, जिसका आधार नीट पेपर लीक केस में छात्रों के आंदोलन के दौरान उनकी कुछ टिप्पणियां बताई जा रही है। आज दंगल में है, हम इसी पर जुड़े सवाल पूछेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि बीसीआई के चेयरमैन को यह अधिकार आखिरकार दिया किसने। लेकिन पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं।
1: जब से पेपर लीक के खिलाफ कांग्रेस जनता पार्टी ने देश भर में आंदोलन किया है, तब से देश की सियासत से लेकर न्यायपालिका तक जेंजी इम्पैक्ट देखा जा रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद की नासलर यानी नेशनल लॉ स्टडी एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी से जुड़े विवाद पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को फटकार लगाई है। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा है कि भले ही छात्रों का फैसला गलत हो या उन्हें किसी ने गलत सलाह दी हो, फिर भी उन्हें अपनी बात रखने और विरोध करने का अधिकार है। जस्टिस सूर्यकांत ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के उस सर्कुलर पर भी नाराजगी जताई जिसमें नासलर के 2026 बैच के लॉ ग्रेजुएट्स का वकील के तौर पर एनरोलमेंट रोकने को कहा गया था। सीजेआई ने कहा कि ये मेरे और छात्रों के बीच का मामला है, इसे मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है, बार काउंसिल इसमें दखल देने वाला कौन होता है। सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस भी जारी किया और यूनिवर्सिटी के किसी छात्र या फैकल्टी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया। विरोध के बाद बार काउंसिल ने यूटर्न ले लिया है।
2: कल एक आदेश जारी हो गया लेकिन तुरंत काउंसिल की मीटिंग हुई। काउंसिल ने उस पर कहा कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। असल में मनसा यह है कि किसी स्टूडेंट को इंटर्नशिप जुडिशरी में मिलने में कोई नुकसान ना हो। तो बाद में जब ये बातें काउंसिल में सारी बातें हुई, रियलाइज किया गया कि नहीं भाई, स्टूडेंट को पनिश करने का कोई सवाल नहीं है, स्टूडेंट्स का इसमें कोई कसूर नहीं था और इससे स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट पे गलत असर पड़ेगा, तो तुरंत उस आदेश को विथड्रॉ कर लिया गया।

0: जर्नल में नो इंक्वायरी, कोई इंक्वायरी नहीं होगी।
1: छात्रों की नाराजगी सीजीआई की पिछले महीने की एक टिप्पणी को लेकर थी। सीजीआई सूर्यकांत ने कहा था, कॉकरोच की तरह ऐसे युवा हैं जिन्हें इस पेशे में रोजगार नहीं मिल रहा है। इनमें से कुछ मीडिया, कुछ सोशल मीडिया और कुछ आरटीआई और दूसरे तरह के एक्टिविस्ट बन रहे हैं। ये हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। ये टिप्पणी दिल्ली में नीट प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़ी याचिका की सुनवाई के दौरान की गई।
2: नालसर यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ उनको लेकर जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने आदेश जारी किया था कि वहां से पास आउट छात्रों का जो आधुनिक अभी हाल में इसी सत्र में पास आउट हुए हैं, उनका किसी भी बार काउंसिल में यानी किसी भी राज्य के बार काउंसिल में उनका रजिस्ट्रेशन ना किया जाए, इसे लेकर पूरे देश में बार काउंसिल ऑफ इंडिया की किरकिरी हुई और लोगों ने इसकी आलोचना की। लगातार होती आलोचना को देखते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपनी आपातकालीन मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में ये बताया गया कि जिन लोगों ने प्रधानमंत्री का विरोध किया था उनसे इन छात्रों का लेना देना नहीं है, छात्र निर्दोष हैं। पता लगाया गया है जिसमें पता चला कि वो कोई बाहर के लोग थे, उसमें कुछ शिक्षक थे जिन लोगों ने प्रधानमंत्री का विरोध किया। लेकिन प्रधानमंत्री का विरोध करना आखिर ऐसी कोई घटना नहीं है जिससे कि छात्रों को इसकी सजा दी जाए, और कुछ घंटों के अंदर ही राष्ट्रव्यापी विरोध, आलोचनाओं और तमाम चीजों को, आरोपों को देखते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपना आदेश वापस ले लिया।
1: बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 13 अगस्त को सभी स्टेट बार काउंसिलों को निर्देश दिया था कि नासलक के 2026 बैच के किसी भी ग्रेजुएट को अगले आदेश तक वकील के तौर पर एनरोल ना किया जाए। साथ ही यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से 3 दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी गई थी। आदेश जारी होने के कुछ घंटे बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपना रुख बदल लिया। काउंसिल ने कहा कि नासलक के 2026 बैच के ज्यादातर छात्र निर्दोष हैं और वो सीजीआई के अनादर वाले किसी भी अभियान में शामिल होने के इच्छुक नहीं थे।
0: कुछ गलत रिपोर्टिंग हो गई, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन मिल गए तो एक लेटर भेज दिया गया नालसर को, लेकिन 30 मिनट के अंदर जैसे ही सही बातों का पता चला, स्टूडेंट्स के इनोसेंस का पता चला, तुरंत उस लेटर को वापस ले लिया गया। आधी रात को बार काउंसिल की मीटिंग हुई, सभी मेंबर्स ने डिस्कस किया, पूरा डेलिबरेशन हुआ उस पर, और उसके बाद पूरा का पूरा मामला जो है सो क्लोज कर दिया गया। तो मैटर स्टैंड्स फुल्ली क्लोज्ड नाउ। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को ये बात नहीं बताई गई शायद कि मामला जो है सो उसको क्लोज कर दिया गया, वो लेटर पूरी तरह वापस ले लिया गया, कोई ऑर्डर नहीं है, स्टूडेंट्स जैसे चाहें वो जहां चाहें अपने को एनरोल कराएं। अब सुप्रीम कोर्ट को हम एक्सप्लेन करेंगे।
1: सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी बार काउंसिल के एक्शन पर सवाल उठाए थे। आज तक ब्यूरो।
3: तो मामला लीगल है और सिर्फ लीगल नहीं तो छात्रों के भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। कोई एक व्यक्ति गुस्से में आकर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के बारे में कैसे सोच सकता है। हालांकि मनन कुमार मिश्रा कह रहे हैं कि 30 मिनट के भीतर ही आदेश वापस ले लिया गया था, लेकिन क्या सिर्फ काम इससे बन पाएगा? क्या ये कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं है? क्या ये आदेश पूरी तरीके से अवैध नहीं है? क्या अपनी जो उनके पास पोजीशन है उसका गलत फायदा उठाने की ये कोशिश के तौर पर इसे नहीं देखा जाना चाहिए? और खास करके ये व्यक्ति राज्यसभा के सांसद भी है। हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आशुतोष श्रीवास्तव एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के और मेंबर है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, वो इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। विनीत जिंदल ये भी एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, वो भी चर्चा में शामिल हो रहे हैं। निखत अब्बास कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल होंगी। सौरभ दास सीजेपी के प्रवक्ता और आशुतोष हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट और उसके साथ साथ प्रोफेसर संगीत रागी भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। 3 सवाल इस पैनल के सामने। क्या विरोध करने वाले छात्रों पर इस तरीके से पाबंदी लगाने की कोशिश करना, क्या इसे जायज माना जाएगा? क्योंकि जब यह आदेश वापस लिया गया तब भी उसमें यह कहा गया कि सभी छात्रों ने यह नहीं किया था, इसलिए हम इस आदेश को वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। 2 सवाल, क्या बीसीआई के चेयरमैन ने कानून का उल्लंघन किया है? क्योंकि एडवोकेट्स एक्ट के तहत किसी के जिस तरीके से उनके एनरोलमेंट किया जाता है, क्या एक आदेश से इस उल्लंघन को इस तरीके से रोका जा सकता है? तो किसी कानून का भी उल्लंघन उन्होंने किया हुआ है। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि मनन मिश्रा सार्वजनिक उपवास वाली टिप्पणी जो कर रहे हैं, उनका यह कहना है कि इस तरीके से संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस का उपहास करना ठीक नहीं है, तो क्या इस टिप्पणी की कानूनी परिभाषा आखिरकार क्या है? क्योंकि इस उपहास की वजह से अगर कुछ छात्रों पर इस तरीके से कार्रवाई की जाती है तो क्या इसे सही माना जाएगा? तो इस कानूनी परिभाषा इसका क्या मतलब निकाला जाए? शुरुआत करेंगे सबसे पहले तो इस बात को जानना

0: बहुत जरूरी है। आशुतोष श्रीवास्तव अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या ये कानूनन तौर पर भी जो आदेश दिया गया था वो सही माना जाएगा, क्योंकि बीसीसीआई आखिरकार एक बॉडी है, एक अध्यक्ष वहां पर 2014 से वहां पर बने हुए हैं, वो राज्यसभा के सांसद भी है, और उनके पॉलिटिकल अफिलिएशंस की वजह से क्या उन्होंने ये फैसला लिया, अगर ये कोई समझे तो क्या वो गलत होगा, और क्या कानूनन तौर पर हम इसे सही मानेंगे? आशुतोष श्रीवास्तव,
1: देखिए इसके दो एस्पेक्ट हैं। एक तो जो पहली बात है कि इस ऑर्डर को तुरंत विड्रॉ कर लिया गया था। अब रही बात कि ये ऑर्डर किया क्यों गया, क्या ऐसा जो है कानून में प्रावधान है कि नहीं है, दैट इज अनदर इशू। तो देखिए ये जो एडवोकेट्स एक्ट बनाया गया 1961 में, इसमें सर्टेन प्रोविजन है, जैसे अगर आप सेक्शन 7 को अगर देखें तो उसमें ये कहा गया है कि जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो लीगल इंस्टीट्यूशंस हैं, उसको जो लॉ कॉलेजेस हैं उनको भी जो लाइसेंस देने के लिए या ग्रांट देने के लिए जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो है एक कंसेंट, उनका परमिशन लगता है, और साथ में ये जिम्मेवारी भी बनाई गई है बार काउंसिल ऑफ इंडिया की कि वो जो है एक डिग्निटी को, जो जुडिशियल डिग्निटी है और जो भी एक रिस्पेक्ट, जो रिकग्निशन हो सकता है उसको मेंटेन रखना है जुडिशरी का, जजेस का, और जो सारा पूरा जो सिस्टम है या फिर जो एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, लीगल जो लॉ पढ़ाते हैं उन इंस्टीट्यूशंस का जो है ध्यान रखना, डिग्निटी को, डेकोरम को, जो है लॉ एंड ऑर्डर को जो है हर तरीके से मेंटेन रखना, ये कहीं ना कहीं बीसीआई की पूरी जिम्मेदारी बनाई गई है एडवोकेट्स एक्ट में। और जब ये बात बीसीआई को जब ये लगा कि शायद इसमें कुछ इंटरफेरेंस हो सकता है या कोई पॉलिटिकल रीजन हो सकता है या किसी सिटिंग जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर उनके बारे में ये कहा जा रहा है कॉन्वोकेशन को लेकर के, या उनको कहीं ना कहीं उनके एक तरह से जुडिशरी के डेकोरम को जो है अटैक किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि पहले बीसीआई को ये बात लगी कि कहीं ये ना हो कि हमारी जो जिम्मेदारी बनती है जो डेकोरम को मेंटेन करने की, उस पर कहीं इशू नहीं आना चाहिए। और जब तक पूरी क्लैरिटी नहीं आई, उस बीच में जो है इंटरिम जो है एक ऑर्डर उन्होंने पास किया लाइसेंस अभी नहीं दिया जाएगा करके, लेकिन जब उनके अपने जब इंफॉर्मेशन में ये सारी बातें आ गई कि ऐसा कुछ नहीं है, ये जो है कुछ स्टूडेंट्स हैं जो पीसफुली जो है अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो अपने ऑब्जेक्शंस को जो है पुट अप कर रहे हैं, तो इसमें हमें जो है डायरेक्टली जरूरत से ज्यादा इंटरफेयर करने की
0: इसमें बहुत सारी खामियां नजर आ रही है। जुडिशियल इंस्टीट्यूशन का डेकोरम मेंटेन करना, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि अगर छात्र कह रहे हैं कि हमें कॉन्वोकेशन के लिए चीफ जस्टिस नहीं चाहिए तो इसके वजह से उन्हें लॉ की डिग्री ना मिले, वो एडवोकेट के तौर पर काम ही नहीं कर पाए, उनका एनरोलमेंट ही रोकने की कोशिश हो, उसके लिए कौन सी मीटिंग बुलाई गई, क्या उसके लिए कोई बीसीआई की मीटिंग बुलाई गई थी, या ये मनन कुमार मिश्रा जो राज्यसभा के सांसद भी है वो राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनके बयान सीजेपी के प्रोटेस्ट के जब प्रोटेस्ट हो रहा था, छात्रों का प्रोटेस्ट हो रहा था तब भी सोशल मीडिया पर उनके जो बयान आए थे वो भी एक तरीके से एक तरफा बयान कहा जा सकता है, क्योंकि वो इस पूरे प्रोटेस्ट को गैर जिम्मेदाराना प्रोटेस्ट कह रहे थे, वो उस पूरे प्रोटेस्ट को एक तरीके से असंवैधानिक प्रोटेस्ट कह रहे थे, और यही बयान राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भी दिए जा रहे थे। तो ये डेकोरम मेंटेन करने की बात थी या एक पॉलिटिकल थॉट से ये आदेश इस तरीके से दिखाया गया था, डराने के लिए आदेश निकाला गया था, इसीलिए इस पर सवाल होता है। इस पूरे स्टेटमेंट में, इस पूरे प्रक्रिया में कई खामियां नजर आती है।
1: जी देखिए, क्या है कि किसी का अपना पर्सनल स्टेटमेंट कुछ भी हो सकता है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता कि उन्होंने पहले क्या बोला या उनके उनको जो बोलना, जो उन्होंने बात को बोला वो क्या पॉइंट ऑफ व्यू से बोला या उनका क्या उसमें सोच था, क्योंकि हर बात की दो पहलू हो सकती हैं, लोगों का थॉट प्रोसेस अलग अलग हो सकता है। लेकिन जहां तक अभी ये बीसीआई का जो सवाल है, क्योंकि ये एक इंस्टीट्यूशन है, ये कोई पर्सनल बात नहीं है इसके अंदर, क्योंकि बीसीआई जो है रेगुलेट करता है हर तरीके के एडमिशन को, या फिर जो जो ग्रांट देना है कॉलेजेस को, जो एडमिशन देते हैं इससे रिलेटेड सारे काम उनको दिए गए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, और जो डेकोरम है उसको मेंटेन करने का जुडिशरी का, ये भी उनकी पूरी तरह से जिम्मेदारी है। अगर आप ये सोचिए कि अगर कोई गलत कर दे जुडिशरी के साथ या उनके डेकोरम को खराब करे, मैं इस पर्टिकुलर इशू की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे जनरली, तो ये कहीं ना कहीं तो जिम्मेदारी
0: परिभाषा कौन तय करेगा, लेकिन
1: तुरंत जो है उनके ऊपर जिम्मेदारी आएगी,
0: उसकी परिभाषा कौन तय करेगा? आशुतोष श्रीवास्तव, कौन परिभाषा तय करेगा? क्या एक व्यक्ति ये परिभाषा तय कर सकता है, खास करके वो व्यक्ति जो खुद राजनीतिक दृष्टि से किसी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है? और इसीलिए अब ये दोनों पद अलग अलग करने की बात भी कई लोग कहने की कोशिश कर रहे हैं, ये परिभाषा कैसे कौन तय करेगा?
1: नहीं देखिए, इसमें जब मेंबर्स की जब मीटिंग हुई और मेंबर्स ने ये डिसाइड किया और जब उनको ये फैक्ट्स जो भी उनके सामने आए कि इसके अंदर ऐसा कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट या कोई स्टूडेंट्स के तरफ से कोई ऐसी गलत बात या ऐसा नहीं है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं या वो पीसफुल जब वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इसमें कहीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अननेसेसरली इसमें नहीं इंटरफेयर करना चाहिए। जब ये बात उनको क्लियर हो गई कि ये कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन को डैमेज नहीं करेगा,
0: आप सुन रहे हैं आशुतोष श्रीवास्तव को, वो जो कह रहे हैं, क्या आप इससे इत्तफाक रखते हैं? आपको लगता है कि ये बात सही है? क्योंकि अभी तक इस बात की क्लैरिटी मुझे नहीं मिल पाई है और ना ही बीसीआई के तरफ से भी इस बात की क्लैरिटी मिली है कि आखिरकार उनको क्या जानकारी मिली थी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि जानकारी हमारे पास अधूरी थी, क्योंकि उनका बयान हमने देखा है और उस अधूरी जानकारी के आधार पर हमने ये फैसला कर लिया था, लेकिन क्या जानकारी मिली थी वो नहीं पता है अभी भी। लेकिन जो आप आशुतोष श्रीवास्तव कह रहे हैं, सौरभ दास, आप कैसे उसको रिएक्ट करेंगे?
2: देखिए, आशुतोष जी अपना बोल रहे होंगे, मुझे पता नहीं वो बीसीआई के तरफ से बोल रहे या उनके सपोर्ट में सिर्फ बोल रहे, वो उनका पर्सनल ओपिनियन है। मेरा ओपिनियन ये है साहिल जी कि झूठ बोला जा रहा है, बार बार झूठ बोला जा रहा है एंड सिर्फ झूठ ही बोला जा रहा है। क्योंकि मनन कुमार मिश्रा जी जो है, इनका आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, जब भी ये उत्तेजित होते ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया का लेटर हेड मंगवा लेते अपने पीएस के थ्रू एंड वहां पे कुछ कुछ अपशब्द लिख के लोगों के बारे में लिख के वो इशू कर देते उस चीज को। बाद में 200-300 लॉयर्स को एक स्टेटमेंट देना पड़ता है कि वी डिस्टेंस आर सेल्व्स फ्रॉम दिस स्टेटमेंट ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये बार बार एक पैटर्न रहा है उनका, इस बार भी वही हुआ। इस बार भी पता नहीं कौन से ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला, ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है इनको। इन्होंने अपने पॉलिटिकल लीनिंग्स के वजह से अपने जो भाजपा के वो राज्यसभा सांसद भी है उनको प्लीज करने के चक्कर में एंड शायद चीफ जस्टिस सूर्यकांत को भी प्लीज करने के चक्कर में उन्होंने ये काम किया, लेकिन वो भूल गए कि आज का जो इंडिया है वो पोस्ट जंतर मंतर वाला इंडिया है। यहाँ पे युवा जग चुका है, यहाँ पे युवा ये सब चीजों से डरता नहीं है। आप उनको डराओगे, धमकाओगे, ये बैन कर देने का, ब्लैकलिस्ट करने का आप धमकी दोगे, तो फिर कहीं ना कहीं आपसे भी सवाल पूछे जाएंगे। क्योंकि आप सबसे, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा लंबा अगर किसी को टेन्योर मिला है चेयरमैनशिप का तो वो मनन कुमार मिश्रा जी है, 2012 से बैठे, उनका ब्यौरा कौन देगा? उन्होंने 2012 से लेके अभी तक और 2030 तक जब वो रहेंगे क्या काम किया है उन्होंने इतने टाइम में? अभी इनका जो मानसिकता है वो कल एक्सपोज हो गया पूरे देश भर के सामने, जब हम लोगों ने भी ये इशू उठाया तो उसको और ज्यादा हाईलाइट हुआ वो मामला। ये तो एकदम डिक्टेटोरियल माइंडसेट है ना, कि आप बोल रहे हो कि आपने चीफ जस्टिस सूर्यकांत कोई भगवान तो है नहीं, उनके अगेंस्ट आपने विरोध कर दिया तो आपका पूरा बैच को हम लोग ब्लैकलिस्ट कर देंगे जब तक हमारा ईगो सेटिस्फाई नहीं होता, अंटिल फर्दर ऑर्डर्स, ये बोला उन्होंने। तो ये डिक्टेटोरियल माइंडसेट है, इनका कोई वेलफेयर वाला माइंडसेट नहीं है साहिल जी, मैं बता दे रहा हूं, ऐसा जिनका मानसिकता होता है वो वेलफेयर नहीं कर सकते।
0: श्रीवास्तव, काउंटर करिए आप इस बात,
1: देखिए
0: कि अभी सीधा सीधा ये आरोप है कि ये पॉलिटिकल कंसीडरेशन से ये इस तरीके से आदेश निकाला गया था।
1: देखिए, जो सौरभ जी अभी कह रहे हैं इसमें दो बातें हैं, एक कि आप जब खुद ऑब्जेक्शन लिया जा रहा है चीफ जस्टिस को आने के लिए और वही चीफ जस्टिस जो है कह रहे हैं कि स्टूडेंट का जो प्रोटेस्ट है उससे मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है या उनका जो प्रोटेस्ट है वो पीसफुल है और इसमें जो है बीसीआई को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, कि खुद उनके ही शब्द हैं, वही बोल रहे हैं कोर्ट के अंदर। तो और दूसरी बात कि अगर हम देखें बीसीआई के भी चेयरमैन के स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो उनके दोनों स्टेटमेंट को लेना पड़ेगा। आप सिर्फ पहले वाला स्टेटमेंट उन्होंने जो दिया उसको नहीं, दूसरे को भी तो देखना पड़ेगा ना। आप सिर्फ बोलेंगे नहीं उन्होंने पहले ये कहा था तो यही है बस, उन्होंने कहा कि हम रोक देंगे एडमिशन सब कुछ, लेकिन जब बाद में उन्होंने क्लैरिफाई किया कि भाई हमें एक जो उनको जो इन्फॉर्मेशन मिला होगा बीसीआई को जो उनके पास आया होगा कि कहीं ना कहीं जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो एक हाईएस्ट जुडिशरी का पोजीशन होल्ड करते हैं और उनके डेकोरम को रिस्पेक्ट को मेंटेन करना जरूरी है। देखिए, अगर आप किसी की बात से सहमत नहीं है, खुश नहीं है, वो अलग बात है, आप बिल्कुल जाहिर कर सकते हैं, लेकिन जहां पे अथॉरिटी, जहां बीसीआई है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एडवोकेट्स एक्ट ने दिया है ना 1961 में, जो मैंने आपको सेक्शन 7 बताया, सेक्शन 24 के हिसाब से उनको जो है इनरोलमेंट का भी जो पावर है लॉयर्स का वो भी उनके पास दिया गया है, इसमें संविधान ने दिया है।
0: सौरभ दास, हाँ, जवाब दीजिए।
1: कहीं मेरा ये कहना है कि जब उनको ये क्लैरिटी आई तो उन्होंने तुरंत स्टेटमेंट को वापस लिया और उन्होंने बोला कि ये कंफ्यूजन में और जल्दीबाजी में ये डिसीजन हो गया था, तो उनके इस स्टेटमेंट को भी उतना ही लेना पड़ेगा गंभीरता से जितना पहले वाले को लिया जा रहा है, मेरा ये कहना है इसके बारे में।
2: आप
1: और चीफ जस्टिस के

0: के स्टेटमेंट को देखना पड़ेगा।
1: आप कौन से स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं? जुलाई 23, 2026 वाला स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने
0: अभी
1: बोला
0: अभी
1: कि
0: अभी जो आज तक पे आपने स्टेटमेंट देखा है
1: प्रोटेस्टर्स जो
0: उसकी बात कर रहा
1: प्रोटेस्ट कर
0: हूं।
1: रहे हैं एग्जाम पेपर लीक के खिलाफ, वो एंटी नेशनल फोर्सेस है, वो
0: नहीं,
1: एंटी
0: मैं
1: सोशल फोर्सेस है, वो
0: नहीं नहीं
1: वाला
0: नहीं
1: स्टेटमेंट आप
0: आप
1: बात कर रहे
0: नहीं
1: हैं?
0: नहीं मैं अभी के
1: वो
0: स्टेटमेंट की
1: अच्छा
0: बात कर रहा हूं, और मैं सिर्फ बीसीआई का जो ये डिसीजन था नलसार को लेके, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं। मैं किसी के
1: देखिए
0: पॉलिटिकल पर्सनल उनके व्यू को मैं
1: आप
0: लेके बिल्कुल नहीं चल रहा हूँ। ये मैंने पहले क्लियर कर दिया आपको कि मेरा उनके पॉलिटिकल व्यू से लेना देना नहीं है। मेरा सिर्फ जो लॉ पॉइंट है नलसार को लेकर के जो इशू है, मैं सिर्फ उस पर बात कर रहा हूँ, और मुझे किसी के
1: पर्सनल
0: पॉलिटिकल व्यू
1: पर्सनल
0: को
1: इज
0: जस्टिफाई
1: पॉलिटिकल,
0: या अनजस्टिफाई करने की
1: पर्सनल
0: जरूरत
1: इज
0: नहीं है।
1: पॉलिटिकल। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते हैं एक या दो स्टेटमेंट को, पैटर्न देखना पड़ता है। जुलाई 23, 2026 को उन्होंने जो देश के युवा जिनके अगेंस्ट इतना बर्बरता हुआ पूरे दिल्ली में एंड दूसरे जगहों में, जिनको इतना हरासमेंट फेस करना पड़ा, उनको वो एंटी नेशनल फोर्स बोल रहे, उनको वो
0: देखिए
1: एंटी सोशल फोर्स बोल रहे, तो
0: नहीं
1: कहीं
0: नहीं
1: ना कहीं
0: मैं
1: ये
0: वो
1: सारे
0: देखिए
1: जो ओपिनियंस है
0: नहीं नहीं
1: कहीं ना कहीं तो वे
0: ये
1: कर रहे
0: बीसीआई
1: होंगे
0: का व्यू
1: उनके
0: नहीं
1: मन
0: हो
1: में, जब वो
0: सकता।
1: लेटर हेड मंगवा के ये सब ड्रेकोनियन ऑर्डर्स पास कर रहे हैं। एंड आप मुझे ये बता दीजिए कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया में 19 मेंबर्स है आज के टाइम पे, तो वो 19 मेंबर्स में से कितने मेंबर्स थे जिन्होंने इनका ये कल का जो ऑर्डर आया वो सपोर्ट किया, वो बता दीजिए। मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स
0: जो
1: कहाँ पे है?
0: जो
1: ट्रांसपेरेंसी
0: नहीं
1: कहाँ
0: जो
1: पे है?
0: नहीं जो उन्होंने स्टेटमेंट खुद दिया, देखिए मैं तो बीसीआई में ना मैं हूं ना आप हैं, राइट? तो जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, अगर हम उनके स्टेटमेंट को लेकर के चलें, तो उन्होंने क्या कहा कि हमने आधी रात को मीटिंग बुलाई और हमारे जितने भी मेंबर्स थे इस बात को सबने मेजोरिटी ने एग्री किया कि ये जो डिसीजन है ये हमको वापस लेना चाहिए,
2: नहीं, लेकिन
0: और
2: आशुतोष
0: हमें
2: जी,
0: लगता
2: आपको नहीं
0: है
2: लगता
0: कि
2: अभी, आशुतोष
0: जी
2: श्रीवास्तव जी, आशुतोष
0: जी
2: श्रीवास्तव जी, क्या आपको नहीं लगता कि इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए? ये ना बहुत ज्यादा आर्बिट्री नजर
0: बिल्कुल
2: आ रहा है
0: बिल्कुल
2: कि उनको
0: बिल्कुल
2: गुस्सा लगा, उनके
0: ट्रांसपेरेंसी
2: पास कोई
0: होनी
2: इंफॉर्मेशन
0: चाहिए।
2: आई,
0: वो
2: उस
0: जब भी
2: इंफॉर्मेशन के
0: उत्तेजित हो
2: आधार पे वो
0: जाते हैं
2: सीधा
0: वो
2: एक
0: अपना
2: डिक्टेट
0: लेटर हेड
2: निकाल
0: मंगवा
2: देते
0: लेते
2: हैं
0: हैं।
2: कि उन छात्रों को एनरोल ही नहीं करेंगे, कोई
0: नहीं
2: ट्रांसपेरेंसी नहीं,
0: देखिए
2: कोई मीटिंग के मिनट्स नहीं, किसने जानकारी दी उसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। पब्लिक फोरम
0: देखिए
2: पर
0: ऐसा
2: आकर बीसीआई
0: देखिए
2: जैसी संस्था में कोई संरचनात्मक दोष यहां पर नजर आ रहे हैं एक तरीके से।
0: देखिए
2: आप
0: अगर
2: आके
0: आप
2: यहां
0: ये
2: पर
0: कहें
2: स्टेटमेंट दे रहे हैं बीसीआई,
0: जी, नहीं, देखिए ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल होनी चाहिए, और मैं इससे पूरी तरह से सहमत हूं कि ट्रांसपेरेंसी नहीं होने का कोई सवाल नहीं है। हर एक अथॉरिटी में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और ये हम लोग सब अच्छी तरीके से समझते हैं। अगर आप ये कहें कि कोई गया, किसी ने कोई जो है आरटीआई फाइल किया, या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए गया लेकिन उनको नहीं दिया गया, या गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया, झूठा इन्फॉर्मेशन दिया गया, तो मैं मान सकता हूं कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन गलत दिया गया या ट्रांसपेरेंसी नहीं है। यहाँ पे तो ऐसा कोई सवाल नहीं आ रहा है। जब वो चेयरमैन खुद ही आकर के मीडिया में साफ साफ कह रहे हैं कि भाई हमने मीटिंग बुलाई, हमने मेजोरिटी ऑफ जो मेंबर्स हैं उनके डिसीजन के हिसाब से हमारा जो सर्कुलर, हमने जो ऑर्डर पास किया था वो हमने उसको वापस किया, हमने विड्रॉ किया क्योंकि हमें सर्टेन कंफ्यूजन हुआ था। हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जो है डेकोरम को मेंटेन रखें जुडिशियरी के, लेकिन जब हमें ये एहसास हुआ, जब इस बात का पता चला कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, सब
2: अब
0: कुछ
2: सौरभ
0: नॉर्मल
2: दास,
0: है,
2: बात
0: हमने
2: डेकोरम
0: तुरंत
2: की
0: उसको
2: भी यहां
0: विड्रॉ
2: पर
0: कर
2: निकालने
0: लिया।
2: की कोशिश हो
0: तो
2: रही है। सूर्यकांत
0: देखिए जब
2: के आने का विरोध करना यहां पर, ये डेकोरम की एक अलग बात निकाली जा रही है, और उनको लग रहा है कि डेकोरम मेंटेन करना, ये पैटर्नाइजिंग एटीट्यूड नहीं लगता कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में,
0: देखिए
2: कि हम बीसीआई में बैठे हुए तो हम
0: देखिए
2: तय करेंगे कि डेकोरम क्या होता
0: ये
2: है।
1: जो सो कॉल्ड संस्कारी अंकल आंटीज हैं पूरे देश भर में, उन्होंने तो ठेका ले रखा है कि वो मॉरली पुलिस करेंगे बच्चों को, वो सिखाएंगे कि संस्कार क्या है, जैसे कि हमें नहीं पता है संस्कार क्या है वहां पे। ये तो चेयरमैन है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के, ये एपेक्स बॉडी है जो लॉयर्स को रेगुलेट करती है। अगर इनको कानून नहीं पता, अगर इनको ये नहीं पता है कि राइट टू प्रोटेस्ट इज अ फंडामेंटल राइट एंड इट हैज टू बी पीसफुल, एंड पूरा पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ था नालसार में चीफ जस्टिस सूर्यकांत के खिलाफ, तो क्या मोरालिटी का वो एंगल इस पे देना चाह रहे? वो अपने पर्सनल
0: नहीं,
1: बायसेस, पर्सनल
0: अगर
1: स्टीरियोटाइप्स के हिसाब से ऑर्डर पास करते, आशुतोष जी ने ये बोल के एकदम क्लियर कर दिया ये चीज कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने वाइब के हिसाब से। देखिए आज के
0: नहीं
1: टाइम
0: नहीं
1: पे पूरा वाइब के हिसाब से चल रहा है ये सारे संस्थान, वहां पे कोई अकाउंटेबिलिटी वाला नाम का चीज है ही नहीं, वहां पे अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आप मुझे सबसे पहले बताइए, 2012 से वो चेयरमैन है, क्या काम किया है उन्होंने आज तक, क्या वेलफेयर वाले मेजर्स लिए उन्होंने एडवोकेट्स के खिलाफ, जितना मैंने पढ़ा
2: अब
1: उनके बारे
2: मामला
1: में?
2: थोड़ा अलग जा रहा है तो संगीत रागी भी इसमें आना चाहेंगे, लेकिन आशुतोष जी, जल्द आशुतोष श्रीवास्तव जी, आप जवाब दें इससे पहले। कॉकरोच विवाद पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने एक नया बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरी बातों को गलत इरादे से गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। भारत के मुख्य न्यायाधीश का यह कहना है कि उनकी कई बातों को गलत तरीके से पेश किया गया और देश के युवाओं को गुमराह करने के लिए गलत इरादे से उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बयान उन्होंने अभी दिया हुआ है और उस पर वो कह रहे हैं कि मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर या गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। तो सौरभ, ये भी एक नई बात है, सूर्यकांत कह रहे हैं कि उनकी बातों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने इस पूरे मामले में यह कह दिया है कि भाई आप उनके और स्टूडेंट्स के बीच का मामला है, बीसीआई होता कौन है इस बीच में आने के लिए और इस तरीके से डिक्टेट निकालने के लिए। आशुतोष श्रीवास्तव, जल्दी से आप जवाब दीजिए, उसके बाद संगीत रागी एक नया मुद्दा छेड़ा है यहाँ पर, उस पर आप बात करेंगे।
0: देखिए, उन्होंने जो आज जो कहा या जो कोर्ट में जो अब वो उन्होंने बताया, ये जो नलसार को लेकर के ही जब उन्होंने कहा कि नहीं ये प्रोटेस्ट जो है हमें इसको भी लेके चलना पड़ेगा, कि जब उन्होंने जेंजिक और जो यंगस्टर्स हैं हमारे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो पीसफुल है, जिसको उन्होंने बिल्कुल ये क्लियर कहा कि भाई ये उनका राइट है और ये प्रोटेस्ट वो कर सकते हैं, जबकि ये प्रोटेस्ट बेसिकली उन्हीं के अगेंस्ट में है, एक पर्टिकुलर जो है पोजिशन के अगेंस्ट में, पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट में, जिसको उन्होंने आज की डेट में खुद कहा कि ये जो है जस्टिफाइड है, इसमें कोई गलत नहीं है, इसमें कोई विवाद नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये अपने आप में ये बात बताता है कि वो जो है ऐसा तो नहीं है कि वो हर प्रोटेस्ट के खिलाफ उन्होंने ऐसी कोई बात कही हो। आज जब वो अपने खुद के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट को जब वो कह रहे हैं कि जस्टिफाइड है, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है, ये बड़ा स्टेटमेंट है और मुझे लगता है कि ये पूरा देश देख रहा है, पूरा देश सुन रहा है और इसको एक्सेप्ट करने में क्या बुराई है। अगर उन्होंने इसमें कुछ गलत कहा है तो आप बता सकते हैं, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलती है। और जहां तक अभी जो सौरभ जी ने जो अभी जो बताया कि उन्होंने पहले क्या कहा था, पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया था, देखिए मैंने पहले भी कह दिया कि मैं पॉलिटिकल किसी के पर्सनल स्टेटमेंट से मेरा कोई लेना देना नहीं है या किसी का भी। मैं सिर्फ बीसीआई एक इंस्टीट्यूशन है, एक संस्थान है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। और अगर वो इतने ही अगर
2: तो सवाल उठता है ना कहीं ना कहीं संगीत रागी, कि ऐसे संस्थानों पर पॉलिटिकल अफिलिएशन वाले लोग बैठने चाहिए या नहीं बैठने चाहिए। सौरभ दास कह रहे हैं तो पैट्रनाइजिंग एटीट्यूड है, जब उन्हें सूट करता है तब वो इसके बारे में कहना शुरू कर देते हैं और उसके बाद कुछ अलग बात यहाँ पर निकाल लेते हैं। संगीत रागी, जो सौरभ दास यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहे
0: हैं, आज उन्होंने विड्रॉ किया, इस बात को भी हम नहीं इग्नोर कर सकते।
2: संगीत रागी, ठीक है, संगीत रागी, विनीत जिंदल भी हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन संगीत रागी
3: देखिए साहिल, मैं मानता हूं कि जो मनन मिश्र ने कहा, इससे पहले भी मैं कहीं पर एक से तीन के बीच में बोल रहा था, बहुत ही गलत किया। कुछ छात्र प्रोटेस्ट करने के कारण आप सारे छात्रों को नलिफाई कर दें, उनकी डिग्री को ही आप होल्ड पे डाल दें, ये मेरे तरीके से शिक्षक के नाते भी मैं इसे बहुत बेतुका मानता हूँ और बहुत राजनीतिक टिप्पणी भी कर रहा हूँ कि ऐसे ही लोग भारतीय जनता पार्टी को जरूरत से ज्यादा बदनाम करते हैं ऐसे कदमों से। आपकी ये क्या ऐसी जरूरत है भाई, या तो आप सूर्यकांत के प्रति इतनी बड़ी जिसे कहते हैं लॉयलिटी दिखाना चाहते हैं, या भारतीय जनता पार्टी के। कहा जाता है ना कि कई लोग अज्ञानता बड़ी, आपका बुद्धिमान मित्र हो ना तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन यदि बेवकूफ हो जाए तो बड़ा उस खतरनाक हो जाता है, आपके लिए भी आत्मघाती हो जाता है। ये जो भारतीय जनता पार्टी है उनके लोगों के, उनकी जो खिलाफत करने वाले हैं उसको भी उन्होंने मौका दिया, और स्वाभाविक तौर पर जो उसके भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं वो इस बात को लेकर हैं। लेकिन इससे एक बड़ा मुद्दा भी है सौरभ, साहिल, और ये बड़ा मुद्दा
2: सौरभ को भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
3: 2022 में नहीं, सौरभ, चूंकि मैं वो शिक्षक की भूमिका में हूं तो मैं सौरभ को इस ढंग से एड्रेस नहीं कर सकता,
2: कोई बात नहीं।
3: तो कपिल सिब्बल ने 2022 जुलाई के महीने में ही कहा था कि आई हैव लॉस्ट फेथ इन जुडिशियरी, इंडियन जुडिशियरी। और सौरभ को भी मैं एक इंटरव्यू के दरमियान सुना था बोलते हुए कि चीफ जस्टिस सूर्यकांत जो है वो ऐसे ऐसे जजमेंट दिए हैं, इन्वायरमेंट पर ये जजमेंट दिया है, माइनिंग पर ये जजमेंट दिया है, तो वो उनकी इंटीग्रिटी को एक ढंग से क्वेश्चन कर रहे थे। मुझे नहीं मालूम है कि जो हैदराबाद में लोग प्रोटेस्ट पर आए थे उनका सीजीपी से संबंध है या नहीं है, मुझे नहीं जानकारी है। लेकिन एक बात मैं बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं कि इस देश में जुडिशियल एक इकोसिस्टम था जो यदि कपिल सिब्बल के अनुसार काम न करे, वामपंथियों के अनुसार काम न करे, इस्लामिस्टों के अनुसार न काम करे, कांग्रेसियों के अनुसार न काम करे, यहां तो बदरुल इस्लाम जैसे ऐसे भी जज बनाए गए हैं जिनके पास लॉ की डिग्री नहीं हुई थी और कांग्रेस पार्टी ने उनको हाईकोर्ट का जज बनाया, राज्यसभा भेजा और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया, और आते ही जो है उन्होंने ये जो है वो जो मिश्रा थे बिहार के जगन्नाथ मिश्रा उनको सबसे पहले रिलीफ दिया। मेरे कहने का मतलब है एक जस्टिस सूर्यकांत के खिलाफ एक इकोसिस्टम काम कर रहा है और वो इकोसिस्टम वो ऐसा ही इकोसिस्टम है कि एक समय जेएनयू में यदि सीताराम येचुरी आ जाते थे तो बहुत अच्छा था और यदि सुब्रमण्यम स्वामी चले जाए तो वहां
2: भी जस्टिस सूर्यकांत के खिलाफ कोई पॉलिटिकल इकोसिस्टम काम कर रहा है, कोई आइडियोलॉजिकल इकोसिस्टम काम कर रहा है, यही कहने की कोशिश कर रहा है ना?
3: बिल्कुल
2: ये इकोसिस्टम काम कर रहा है और उस इकोसिस्टम को पनिश करना चाहिए, ये आपकी मांग रहेगी?
3: बिल्कुल 200
2: और इस इकोसिस्टम को पनिश करने के लिए कानून का इस्तेमाल करना चाहिए, ये भी आपकी मांग है?
3: नहीं, साहिल नहीं, आपने फिर गलत डिस्टॉर्ट किया। मैंने कहा ये लार्जर क्वेश्चन है, लेकिन मैंने बार बार कहा कि नहीं, मैंने शुरुआत में ही कहा कि मनन मिश्रा ने जो किया वो बेहद निंदनीय है, मैं बिल्कुल उनके साथ नहीं खड़ा हूं, एक। और दूसरी बात भी मैंने जोड़ दिया, ऐसे लोग जो उछल करके भारतीय जनता पार्टी में आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा नुकसान किया है बनिस्पत की वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी के साथ वैचारिक तौर
2: पर। मनन मिश्रा को माफी मिलेगी, मैं उन लोगों को अच्छा नहीं मिलेगी, वो जो अपने विचारधारा से चाहे लेफ्ट पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर नहीं है, वो अपने विचारधारा से जुड़े हुए हैं, तो मैं उनके पास नहीं ले जा सकता। लेकिन आशुतोष जी यानी हमारे राजनीतिक विश्लेषक इसका जवाब देंगे, संगीत रागी जो कह रहे हैं उसका। लेकिन उससे पहले विनीत जिंदल जी, एक सवाल आपसे पूछना है कि आपको लगता है कि अब ये एक्सपोज हो चुका है कि पॉलिटिकल अफिलिएशन का इस्तेमाल कहीं ना कहीं यहां पर बीसीआई के चेयरमैन के तौर पर उन्होंने जो बयानबाजी की, जो आदेश निकाला उसके उसमें वो दिखाई देता है, तो क्या आपको लगता है कि ये जो मांग अभी उठेगी कि बीसीआई के चेयरमैन के तौर पर क्या उन्हें रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, क्या आपको लगता है कि ये बात सही होगी? विनीत जिंदल जी आपका पहले जवाब, उसके बाद अशुतोष जी के पास चलूंगा।
3: साहिल
2: मैं आता हूं आपके पास, रागी जी आता हूं आपके पास।
3: साहिल 10 सेकंड मैं ले लूं, 10 सेकंड।
4: साहिल भाई देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि
3: साहिल 10 सेकंड।
2: विनीत जिंदल जी आपकी बात खत्म करें, रागी जी आता हूं आपके पास। जी
4: साहिल जी, सबसे पहले और सबसे बड़ी बात यह है साहिल भाई से समझने की जरूरत यह है कि मनन मिश्रा जी ने जो किया वो क्या उन्होंने अपने पॉलिटिकल एफिलेशन की वजह से किया या बीइंग अ बीसीआई सेक्रेटरी बीएससीआई चेयरमैन किया, वो बीसीआई चेयरमैन के जो अधिकार में उन्होंने था वो किया। दूसरी बात, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि देखिए, ये जो मिसकॉट किया गया सीजीआई को, जो उन्होंने 15 जुलाई को जो स्टेटमेंट दिया, ओरल ऑब्जर्वेशन बेसिकली, एक फॉल्स फैब्रिक जो पिटीशन फाइल है उस समय पे दिया, उसको मिसकॉटेड किया गया, और 16 तारीख को उसका उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी दिया कि वो जो बात उन्होंने कॉकरेज के लिए बोला वो कॉकरेज उन लोगों के लिए बोला जो लोग फर्जी डिग्री लेके, फर्जी लॉ की डिग्री लेके काम कर रहे हैं। उसके बावजूद उनको आज तक, देयर आर सिवरल वीडियोज हु हैज बीन मेड बाय सर्टन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो आज तक बनाते हैं उसको सर्कुलेट कर रहे हैं फॉर देयर पॉलिटिकल पर्पजेज, फॉर टू टारगेट द हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। और अगर इस चीज को रोकने के लिए कोई आदमी, चाहे वो बीसीआई के प्रेसिडेंट चेयरमैन हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, अगर कोई आवाज उठाता है या कोई एक्ट लेता है उसके खिलाफ, आप इतना ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, आप उसको ये कहने लगते हैं कि आप गलत कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ दिस, जहां पे लोग बैठ के उस स्टेटमेंट को मिसकॉट करके एक पूरी पार्टी खड़ी हो जाती है, एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा हो जाता है, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं कर रहा, कोई ये नहीं कह रहा कि जो सीजीआई के स्टेटमेंट को मिसकोट किया गया और आज तक लोग उसको मिसकोट कर रहे हैं। भाई सीजीआई तो बोलेंगे, सीजीआई एक इंस्टीट्यूशन है, जस्टिस सूर्यकांत हैं, इसीलिए वो सीजीआई है, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी पे बैठे हुए हैं, और उनके स्टेटमेंट को मिसकोट करने के लिए, क्योंकि वो एक जज है, वो सामने आके रोज मीडिया में स्टेटमेंट नहीं दे सकते, इसलिए आप उनके उनके स्टेटमेंट को किसी भी तरीके से मोड़ेंगे, तोड़ेंगे और कुछ भी कहेंगे, ये गलत है।
2: वही बयान अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले दिया,
4: अंडर गुड फेथ जो बीसीए के प्रेसिडेंट हैं, बिल्कुल देखिए, ये मैं वही कह रहा हूं कि ये लेकिन रोज रोज नहीं दे सकते ना सर भाई ये।

0: चीज किसी ना किसी को आगे आके कहनी पड़ेगी। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसे लोग जो लोग विद्वान कहते हैं,
1: ये कैसे होता है? मुझे ये बात समझना बहुत जरूरी है कि एक व्यक्ति एक वक्त पे किसी पार्टी का राज्यसभा का सांसद भी बनता है और उसके बाद वो अपने मन को बदल के बीसीसीआई के चेयरमैन के तौर पर भी काम कर सकता है। और उस पर सवाल उठाया गया था, हाईकोर्ट ने उस पर पेनल्टी लगाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने वो पेनल्टी निकाल दी थी 2024 में, इस पर सवाल भी उठाया गया था, आपको याद होगा।
0: साहिल भाई, सिर्फ मुझे एक सवाल का जवाब यहाँ पे, अगर आप सवाल उठा रहे हैं तो इस बात का सवाल दीजिए कि क्या एमपी होते हुए बीसीसीआई के प्रेसिडेंट चेयरमैन वो नहीं रह सकते? क्या एमपी होते हुए नहीं, राज्यसभा के एमपी होते हुए नहीं रह सकते? कानून मना करता है क्या? देखिए, ये बड़ा आसान है, ऐसा नहीं है कि वो अकेले एमपी है जो ऐसी किसी सीट पे बैठे हुए हैं।
2: बार कौन से
0: पास में अभी बताया संगीत राजी जी ने किस तरीके से लोगों को, देखिए ये सब चीजें। और बिल्कुल अगर किसी को दिक्कत है तो देखिए ना, आप लोग कल पिटीशन फाइल हुआ,
2: पिटीशन फाइल,
0: मैं यही कह रहा हूं कि इतने सारे लोग रहे हैं ना, तो ऐसा मनन कुमार मिश्रा को लेकर इतने बड़े सवाल उठाने की क्या जरूरत हो गई एकदम से? कौन ऐसा सो के
1: जो एक्ट उन्होंने किया उसके बाद सवाल उठ रहा है?
0: समय से वो है,
1: आप एक आदेश निकाल कर सारे स्टेट काउंसिल्स को आदेश निकाल देते हो, आप उसके बाद आप ये कह देते हो कि उनको आप एनरोलमेंट मत करिएगा। बीसीसीआई के चेयरमैन ने इससे पहले किया था, ये इससे पहले किस बीसीआई के चेयरमैन ने किया था? आपके अफिलिएशन की वजह से आप ये कर रहे हो, सवाल उठ रहा है यहाँ पर।
0: देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की स्टेटमेंट को आप मिसकोट करेंगे, लगातार मिसकोट करेंगे, 3 महीने तक आप उसको मिसकोट करते रहेंगे, उनके क्लेरिफिकेशन के बाद भी आज टीवी पे बैठ के ये बोलेंगे कि नहीं उन्होंने तो सब सारी यूथ को कॉकरेज कहा। उसके बाद जो इंस्टीट्यूशन जिनसे
1: आने
0: वाले हैं, जो लॉयर्स
1: बनेंगे, उसका, लेकिन उससे पहले आशुतोष जी आप जरा इस डिबेट में आइए, क्योंकि संगीत रागी पहले ही बात कर चुके हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो पूरा फ्रेमवर्क है या इंस्टीट्यूशंस है, उनका अपमान कहीं ना कहीं होता है और उसको लेकर ये सवाल उठता है कि भाई उनको तो पनिश कर देना चाहिए। और ये बात सिर्फ नलसर की बात नहीं है, डीयू में या बाकी जेएनयू में भी हमने देखा हुआ है कि छात्रों पर कार्रवाई हुई है, यहां पर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस में भी इस तरीके की कार्रवाई हमने देखी हुई है। तो ये एक नया कहां से आता है, ये इतना कॉन्फिडेंस कहां से आता है कि भाई हम इस तरीके की कार्रवाई कर सकते?
2: कोई कार्रवाई नहीं हुई है
1: और उसके बाद
2: उसको साहिल यूनिवर्सिटी में, साहिल यूनिवर्सिटी में कोई कार्रवाई नहीं हुई है,
1: धमकी।
3: साहिल मैं बोलूं
2: नहीं है, इतना मैं कहना चाहता हूं।
1: जी जी,
3: मैं बोलूं, देखिए विनीत जिंदल जी और आशुतोष श्रीवास्तव जी,
2: आपका ही है, बोलिए।
3: ठीक है, विनीत जिंदल जी और आशुतोष श्रीवास्तव जी एक ऐसे मुकदमे की पैरवी कर रहे हैं जो जानते हैं कि मुकदमा जीत नहीं सकते, वो हारा हुआ मुकदमा है। अब इन लोगों के कहने का मतलब, जैसा कि विनीत जी ने कहा कि भाई जस्टिस सीजीआई ने जो बात कही वो इस देश के 140 करोड़ लोगों ने समझ लिया, लेकिन बाकी लोगों, कुछ लोग नहीं समझ पाए कि उनको मिसकोट किया गया। भाई इस देश के 140 करोड़ लोगों ने समझ लिया कि उन्होंने क्या बोला, उसके आधार पर लोगों में गुस्सा है। या तो आप ये मानिए कि 140 करोड़ लोगों को मिसगाइड कर दिया गया, मतलब इतने जबरदस्त तरीके से पावरफुल लोग हैं सौरभ दास और अभिजीत दिपके कि लोग जस्टिस ने क्या क्या बात समझ ही नहीं पाए। नितिन जी, मैंने बीच में नहीं बोला। देखिए, 3 बड़े महत्वपूर्ण सवाल है। पहला सवाल जो है वो ये कि क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास ये अधिकार है कि वो स्टेट बार काउंसिल को ये ऑर्डर कर सकता है कि आप एनरोल ना करें? ये कानूनी रूप से पूरी तरीके से गलत है। एडवोकेट एक्ट में ऐसी कोई भूमिका नहीं है, उनकी सुपरवाइजरी भूमिका है, एडमिनिस्ट्रेटिव भूमिका नहीं है, पहली बात। दूसरी बात जो सबसे फंडामेंटल है वो है आर्टिकल 19(1)(c), राइट टू प्रोटेस्ट। अगर राइट टू प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण तरीके से, पीसफुल तरीके से, अगर छात्र नहीं कोई भी करता है, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ करे, चाहे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ कहे, किसी को उसके आधार पे पेनलाइज करने का अधिकार नहीं है। अगर कोई पेनलाइज करने की बात करता है तो अपने स्वभाव में फैसिस्ट है। फिर मैं कह दूं, अगर कोई आदमी इस तरीके से रात को 6 बजे उठ के शाम को जब भी अचानक एक ऑर्डर निकाल देता है कि इन छात्रों के को एनरोल मत करिए या इनका पूरा करियर बंद कर, हाँ, करियर बर्बाद कर दीजिए, यह आदमी अपने स्वभाव में और संस्था में बैठा हुआ अपने स्वभाव में फासीवादी है, फैसिस्ट है। ऐसे लोगों को देश से बचना चाहिए। तीसरी बात जो ज्यादा महत्वपूर्ण है,

0: कि आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, और अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया की इंडिपेंडेंस को अगर बचा के रखना है तो इसके पार्टी पॉलिटिक्स से दूर करना पड़ेगा। अगर कपिल सिब्बल भी अगर इस पद पर रहेंगे तो उनका भी विरोध होना चाहिए, इसलिए जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया की इंडिपेंडेंस को मेंटेन करना है तो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से अफिलिएशन हो, चाहे कांग्रेस से अफिलिएशन हो, पूरी तरह खत्म होना चाहिए। लेकिन जो
1: जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया इस पर।
0: राइट टू प्रोटेस्ट को लेकर जिस तरीके से दमन करने की कोशिश की जा रही है, और अफसोस की बात यह है
1: कपिल सिब्बल का भी नाम आया हुआ है।
0: हाँ, दो दो वकील बैठे हुए हैं और वो उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ये ज्यादा दुखद बात है।
1: ठीक है, निखिल अब्बास।
2: साजी जी, मुझे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी न्यू इंडिया जो बनाने की बात करती है उसके मुखौटे में फियरफुल इंडिया बनाने की कोशिश जारी है, क्योंकि ये तो साफ दिख रहा है कि एक माइंडसेट की प्रॉब्लम है। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं मनन कुमार मिश्रा, जो बीसीआई के चेयरमैन भी, यहाँ पर बात स्पष्ट हो गई है आपके व्यूअर्स को किस तरह का माइंडसेट चल रहा है कि पावर को चैलेंज नहीं करना है, क्योंकि साफ दिख रहा है ना कि बीसीआई अपने स्टैट्यूटरी पावर से आगे जाकर ये कदम लेती है। साफ दिख रहा है कि बिना किसी इंडिविजुअल मिसकंडक्ट के एस्टैब्लिश ये कदम लिखती है। साफ दिख रहा है कि क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि उनके पावरफुल पोजीशन पर डेंट पड़ रहा है, इसलिए ये ऐसा कर रही है। ऐसा कि पूरे बैच का एनरोलमेंट कैंसिल कर दिया, मतलब आशा ही चल रही है। देखिए, ये पैटर्न है साहिल भाई, ऐसा नहीं है कि हम आज पहली बार देख रहे हैं कि पावर को जब चैलेंज किया जाता है, जब देश की जनता पावर को चैलेंज कर रही है, मोदी जी को चैलेंज कर रही है, भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज कर रही है, तो इन्हें घबराहट होने लगती है। और यही कारण है कि पावर को चैलेंज करते हुए बच्चों को ये कह देते हैं कि तुम पावर को चैलेंज करो तो तुम्हें तुम्हारा करियर बर्बाद कर देंगे। जर्नलिस्ट को ऐसा लगने लगा है कि अगर कोई स्टोरी कर देंगे जिससे एक्सपोज हो जाएगी बीजेपी की सरकार, तो उसके घर पर रेड पड़ जाएगी। जो एक्टिविस्ट है उन्हें ऐसा लगने लगा है कि सवाल पूछ लेंगे सरकार से तो उनके ऊपर कोई केस हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी ने ये तो भी एस्टैब्लिश कर ही दिया है कि कोई ऑपोजिशन का लीडर या कोई नेता चैलेंज कर दे तो उसके घर पे आप एजेंसी भेज देते हैं। असल में क्या है ना, जागरूक या अवेयर इंडिया, ये अवेयर जनता है और ये अल्फा जनरेशन तक भी जा रहा है। देखिए साहिल भाई, तब तक ये बच्चों की आवाज ऐसे दबाएंगे, डराएंगे, धमकाएंगे। अल्फा जनरेशन स्कूल के स्टूडेंट्स उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों में टीचर्स नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पानी वाली दाल मिल रही है, उस पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। अब मुझे बताइए कौन से दोबारा मनन कुमार मिश्रा और भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद या नेता आएंगे जो इन छोटे छोटे बच्चों का मुंह बंद करेंगे। ये जो हेट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये जो नफरत की राजनीति कर रहे हैं, वो इस तरह गिर गई है कि आज स्टूडेंट्स के खिलाफ बर्बरता तो करी करी, अब उनका फ्यूचर दांव पर लगा के लिए ये सरकार तैयार बैठी है। क्यों? क्योंकि सरकार
1: ये मानसिकता का भी सवाल है,
2: सवाल पूछ लिया,
1: ये मानसिकता का भी सवाल खड़ा होता है यहाँ पर।
3: साहिल भाई, ये बड़ा बड़ा बड़ा आसान है। और मानसिकता मानसिकता की और मानसिकता की अगर बात करें और थॉट्स की बात करें, अभी यहाँ पे बोला गया कि भाई हम लोग एडवोकेट्स हैं, उसके बाद हम इसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। पर क्या किसी व्यक्ति ने जिस तरीके से, इतने एग्रेसिव तरीके से आज मनन मिश्रा को काउंटर किया जा रहा है, मनन मिश्रा के ऊपर हमला किया जा रहा है, क्या किसी ने सीजीआई का जो स्टेटमेंट था, मेरे पास ये वीडियो है कोर्ट का, जो वीडियो जिस समय पे कॉकरोच वाली बात सामने आई थी और ये जब स्टेटमेंट दिया गया तो उस समय पे सीजीआई ने क्या कहा, साफ साफ इसमें दिखता है। लेकिन उसके बावजूद आज तक इस मामले को इस तरीके से दिखाया जा रहा है और सीजीआई को नहीं, पूरे इंस्टीट्यूशन को, सुप्रीम
1: जल्दी से 20 सेकंड आखिर में
3: टारगेट किया जा रहा है, उसको कोई जस्टिफाई, उसको
1: शुरुआत वहां से हुई है।
3: ये बड़ा दुखद है भाई। इस
4: देखिए,
1: कोर्ट
4: मिसकोट किया गया, मिसकोट किया गया, मिसकोट किया गया वाला तबला बज रहा है। मिसकोट मतलब कि आप बताइए, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनके स्टैंडर्ड सबसे हाई होने चाहिए। अगर उनके मुंह से पैरासाइट और कॉकरोच किसी भी वर्क के लिए निकल रहा है तो वो तो कंडेमेबल होना चाहिए ना। आप कैसा स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो? आप बोल
1: तो
4: रहे हो
1: मामला अब आगे बढ़ चुका है और मामला लीगल भी हो चुका है। हालांकि बीसीआई ने ये पूरा जो ऑर्डर था, जो उनका सर्कुलर था, वो वापस तो ले लिया है, लेकिन इससे जुड़े कई सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। कहीं ना कहीं सिस्टम पर भी ये सवाल खड़े करते हैं और जो दिक्कतें हैं बीसीआई के भीतर, उस पर भी सवाल खड़े करते हैं। फिलहाल हम लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेगी, आप देखते रहिए आज तक।
5: हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हाँ, है, और जिंदाबाद रहेगा।

0: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। एयू
1: सोच बदलो और बैंक भी।
2: पापा
3: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का?
4: सब कैशलेस हो गया
3: है।
5: ओ ला ला भाई मेरा बैट।
6: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
5: ओ बिल्कुल चार्ज हुआ यार।
7: बैट किसका है?
8: टाटा AIG है तो भरोसा है।

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: जिस मिट्टी में फसल उगती है उसी में भारत की स्वतंत्रता की खुशबू है। इस स्वतंत्रता दिवस आइए उन किसानों का सम्मान करें जो हर दिन देश को मजबूत बनाते हैं। मेरे और क्रिस्टल परिवार की ओर से आपके और आपके परिवार को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: in association with Sharda University. The world comes together at Sharda University. Where are you?
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
0: विमल बोलो जुबा केसरी हिंट बड़े आराम से
2: जहां जुर्म वहीं कहानी जहां कहानी वहीं साजिश जहां साजिश वहां क्राइम जुर्म चाहे कितना ही उलझा हो उसकी परतें हम सुलझाते हैं देखिए क्राइम तक यूट्यूब पर और बचिए हर क्राइम से
3: जितनी गाड़ियां हैं ये पूरा रेला विधानसभा जा रहा छात्रों का
4: जब तक वो सीबीआई जांच नहीं कराएंगे तब तक हम लोग इस पे डटे रहेंगे
3: छात्रों को पीछे हटाने की कोशिश की जा रही है वाटर कैनन खत्म हो गए फायर टेंडर खत्म हो गए
5: प्रोटेस्टर हैं देखिए उनको कैसे चोट लगी है
6: विधानसभा के करीब ये पहुंच चुका है
7: पुलिस काफी देर तक रोक नहीं सकी छात्रों को और छात्र देखिए विधानसभा के अंदर प्रवेश करते हुए
8: विधानसभा का लाइट ऑफ करके मारा है
3: पूरे प्रदर्शन मार्च के बाद भी छात्रों ने ऐलान किया है वो अभी भी डटे हुए हैं जयपाल सिंह स्टेडियम में लोकेंद्र के साथ मैं आशुतोष मिश्रा आज तक
9: भिखारियों का मनोविज्ञान क्या है
10: तैयारी तुम भी कर रहे हो क्या
9: नहीं सर
10: ट्वेल्थ किससे की हो
9: ट्वेल्थ सर मेरा पीसीएम से रहा
10: कंपाउंड क्या होता
9: है बेसिकली जो एक्युमुलेटेड चीजें रहती हैं उसके ऊपर
10: यही है भीख मंगे वाली क्वालिटी तुम पूछ रहे थे ना यही है यही एक मिनट
9: ये जो आपका तरीका बहुत सर बहुत अच्छा नहीं है इस तरीके से समझाने का स्टूडेंट्स को ह्यूमिलिएशन कहते
10: देख भाई अपनी गारंटी पे छेड़ना

टेक्नोलॉजी की दुनिया में बदलाव की तेज रफ्तार से आईटी सेक्टर में नौकरियों का पूरा गणित बदलने लगा है। आज कंपनियों की नज़र उन लोगों पर है जो सीधे बिजनेस की ग्रोथ बढ़ा सके। इसी बदलाव की झलक मई 2026 के हायरिंग आंकड़ों में नजर आ रही है। दरअसल देश में कुल व्हाइट कॉलर हायरिंग सालाना आधार पर महज 1% बढ़ी है। वहीं आईटी सेक्टर की भर्ती में 7% की गिरावट दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा दबाव एंट्री लेवल और कम स्किल वाली नौकरियों पर दिखाई दे रहा है। दिलचस्प बात यह है कि आईटी सेक्टर की सुस्ती पूरी कहानी नहीं बताती, क्योंकि तस्वीर का दूसरा हिस्सा कहीं ज्यादा खास है। जहां एक तरफ सामान्य टेक रोल्स में मौके कम हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ नई टेक्नोलॉजी से जुड़े एक्सपर्ट्स की मांग लगातार बनी हुई है, जिनमें शामिल हैं AI, मशीन लर्निंग, डेटा इंजीनियरिंग, क्लाउड और साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि कंपनियां ऐसे प्रोफेशनल्स की तलाश कर रही हैं जो ऑटोमेशन

शिक्षण और एआई प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ा सकते हैं। वहीं फोकस बड़ी टीम बनाने की जगह हाई स्किल टैलेंट पर है, यानी नौकरी बाजार में चुनौती स्किल की है। कंपनियों की प्राथमिकता का असर सैलरी ट्रेंड पर भी साफ नजर आ

0: in association with Sharda University. The world comes together at Sharda University. Where are you?
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
0: विमल बोलो जुबां केसरी हिंद बड़े आराम से
2: जहां जुर्म वहीं कहानी जहां कहानी वहीं साजिश जहां साजिश वहां क्राइम जुर्म चाहे कितना ही उलझा हो उसकी परतें हम सुलझाते हैं देखिए क्राइम तक यूट्यूब पर और बचिए हर क्राइम से
3: जितनी गाड़ियां हैं ये पूरा रेला विधानसभा जा रहा छात्रों का
4: जब तक वो सीबीआई जांच नहीं कराएंगे तब तक हम लोग इस पे डटे रहेंगे
3: छात्रों को पीछे हटाने की कोशिश की जा रही है वाटर कैनन खत्म हो गए फायर टेंडर खत्म हो गए
5: प्रोटेस्टर हैं देखिए उनको कैसे चोट लगी है
6: विधानसभा के करीब ये पहुंच चुका है
7: पुलिस काफी देर तक रोक नहीं सकी छात्रों को और छात्र देखिए विधानसभा के अंदर प्रवेश करते हुए
8: विधानसभा का लाइट ऑफ करके मारा है
3: पूरे प्रदर्शन मार्च के बाद भी छात्रों ने ऐलान किया है वो अभी भी डटे हुए हैं जयपाल सिंह स्टेडियम में लोकेंद्र के साथ मैं आशुतोष मिश्रा आज तक
9: भिखारियों का मनोविज्ञान क्या है
10: तैयारी तुम भी कर रहे हो क्या
9: नहीं सर
10: 12th किससे की हो
9: 12th सर मेरा PCM से रहा
10: कंपाउंड क्या होता
9: है बेसिकली जो एक्युमुलेटेड चीजें रहती हैं उसके ऊपर
10: यही है भीख मंगे वाली क्वालिटी तुम पूछ रहे थे ना यही है यही एक मिनट
9: ये जो आपका तरीका बहुत सर बहुत अच्छा नहीं है इस तरीके से समझाने का स्टूडेंट्स को ह्यूमिलिएशन कहते
10: देख भाई अपनी गारंटी पे छेड़ना

टेक्नोलॉजी की दुनिया में बदलाव की तेज रफ्तार से आईटी सेक्टर में नौकरियों का पूरा गणित बदलने लगा है। आज कंपनियों की नज़र उन लोगों पर है जो सीधे बिजनेस की ग्रोथ बढ़ा सके। इसी बदलाव की झलक मई 2026 के हायरिंग आंकड़ों में नजर आ रही है। दरअसल देश में कुल व्हाइट कॉलर हायरिंग सालाना आधार पर महज 1% बढ़ी है। वहीं आईटी सेक्टर की भर्ती में 7% की गिरावट दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा दबाव एंट्री लेवल और कम स्किल वाली नौकरियों पर दिखाई दे रहा है। दिलचस्प बात यह है कि आईटी सेक्टर की सुस्ती पूरी कहानी नहीं बताती, क्योंकि तस्वीर का दूसरा हिस्सा कहीं ज्यादा खास है। जहां एक तरफ सामान्य टेक रोल्स में मौके कम हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ नई टेक्नोलॉजी से जुड़े एक्सपर्ट्स की मांग लगातार बनी हुई है, जिनमें शामिल हैं AI, मशीन लर्निंग, डेटा इंजीनियरिंग, क्लाउड और साइबर सिक्योरिटी। क्योंकि कंपनियां ऐसे प्रोफेशनल्स की तलाश कर रही हैं जो ऑटोमेशन और AI प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ा सकते हैं। वहीं फोकस बड़ी टीम बनाने की जगह हाई स्किल टैलेंट पर है, यानी नौकरी बाजार में चुनौती स्किल की है। कंपनियों की प्राथमिकता का असर सैलरी ट्रेंड पर भी साफ नजर आ रहा है। कम अनुभवी कर्मचारियों की भर्ती घट रही है, जबकि अनुभवी लोगों पर खर्च बढ़ाया जा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक 20 लाख रुपए सालाने से ज्यादा पैकेज वाली नौकरियों में 11% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि मिड लेवल और एंट्री लेवल हायरिंग में कमजोरी बनी रही है। AI को लेकर शुरुआती उत्साह खत्म होने की बातें भी कई बार सामने आई, लेकिन हायरिंग डेटा कुछ और ही कहानी बता रहा है। फरवरी के रिकॉर्ड स्तर के बाद थोड़ी नरमी जरूर आई है, फिर भी AI से जुड़ी नौकरियां बाकी बाजार से बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। मई 2026 में AI और मशीन लर्निंग से जुड़ी हायरिंग 22% बढ़ी है। इस बदलाव के साथ IT कंपनियों का पुराना ढांचा भी बदलता दिख रहा है। लंबे समय तक IT इंडस्ट्री एक ऐसे मॉडल पर चलती रही जिसमें जूनियर कर्मचारियों की संख्या सबसे ज्यादा होती थी और अनुभवी प्रोफेशनल्स कम, लेकिन AI के दौर में ये समीकरण बदल रहा है। अब पारंपरिक पिरामिड मॉडल की जगह डायमंड मॉडल उभर रहा है। इस मॉडल में एक्सपर्ट्स और अनुभवी कर्मचारियों की हिस्सेदारी ज्यादा होती है। वहीं कंपनियां टेक्नोलॉजी खर्च को रिजल्ट देने वाली भूमिकाओं की तरफ मोड़ रही हैं। इसी ट्रेंड का फायदा उन IT कंपनियों को मिल सकता है जिनकी पकड़ AI, डिजिटल इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में मजबूत है।

0: यूं तो कांग्रेस के कार्यक्रम में राहुल गांधी का सीधा हमला प्रधानमंत्री मोदी पर था। राहुल ने कई मुद्दों का जिक्र किया, सरकार की कमियों का हवाला दिया, लेकिन इन हमलों की भाषा पर अब नई सियासी जंग छिड़ गई है।
1: हम सब के पास हजारों खर्चे हैं।
0: राहुल गांधी के बयान के बहाने बीजेपी हमलावर हो गई है।
2: फ्रस्ट्रेशन इस बात की कि वो रिजेक्टेड है, नाटक कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं।
0: दरअसल दिल्ली के मावलंकर हॉल में राहुल गांधी रचनात्मक कांग्रेस कन्वेंशन में बोल रहे थे। निशाने पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह।
3: अब कांग्रेस पार्टी ओपोजिशन सबका एक्सप्रेशन चालू है, अब नहीं रुकने वाला। वो क्या, हाँ, थैंक यू, टाटा, गुड बाय। और मैं आपको बता रहा हूं, आप लिख लो, जिस दिन तक नरेंद्र मोदी अपना इस्तीफा नहीं देंगे, अमित शाह नहीं हटेगा, उस दिन तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं सो पाएंगे। उनको हम जगा के रखेंगे, पूरी रात जगा के रखेंगे, जब तक वो कोलैप्स करके कहें कि भैया ये हमारी बस की नहीं है, माफ करो, छोड़ दो हम।
0: राहुल गांधी ने पीएम मोदी की विदेश नीति पर सवाल खड़े किए, खासकर विदेशी नेताओं के साथ उनके गर्मजोशी से गले मिलने पर तीखा कटाक्ष किया।
3: इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया, अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी, बट पता नहीं कहां से घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी का मतलब नेताओं से गले लगना।
0: राहुल गांधी की पीएम मोदी पर इन टिप्पणियों पर बीजेपी ने तीखा पलटवार किया।
4: सत्यता ही नहीं है उनके पास, हिंदी लैंग्वेज
3: फॉरेन पॉलिसी,
0: राहुल की भाषा को संस्कारहीन बता दिया, साथ ही उन पर महिला विरोधी होने का आरोप मर दिया। दिल्ली में राहुल गांधी के ताजा बयान पर जंग छिड़ी तो सियासत यूपी तक पहुंचते देर नहीं लगी। यूपी में भी बीजेपी की ओर से राहुल पर हमलों का दौर शुरू हो गया।
5: किसान का बेटा हूं सर।
0: बीते दिनों जब प्रयागराज में राहुल गांधी ने छात्रों के बीच कार्यक्रम कर शक्ति प्रदर्शन किया था, तब भी यूपी बीजेपी के नेताओं की ओर से जोरदार हमले हुए थे। अब प्रधानमंत्री को टारगेट कर राहुल के बयानों ने यूपी की सियासत में नई जंग शुरू कर दी है। इन बयानों के बहाने बीजेपी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर हमलावर हो गई है।
3: पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा।
0: आज तक ब्यूरो।
6: लोकसभा में जितना टाइम आवंटित किया गया है, टोटल टाइम एलोकेशन के हिसाब से सिर्फ 19% हमने प्रोडक्टिविटी के दृष्टि से 19% सक्सेस प्राप्त किया है। राज्यसभा में 39%, राज्यसभा में ऑपोजिशन पार्टी हंगामा करके कभी कभी वॉकआउट भी करते थे, तो बाकी मेजोरिटी पार्टीज एनडीए के और कुछ ऑपोजिशन पार्टी के एमपीस ने डिबेट डिस्कशन में हिस्सा लिया। तो राज्यसभा का टोटल प्रोडक्टिविटी मॉनसून सेशन का 39%, लोकसभा का 19%। एक बिल सिर्फ चर्चा हो पाई लोकसभा में, जो प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट जो बना है, ये लोकसभा में भी डिस्कशन हुए थे और राज्यसभा में भी हुए हैं। इसके अलावा लोकसभा में कोई अच्छा चर्चा नहीं हुआ, बिल पास हुए हैं, 11 बिल्स पास किए हैं। इसलिए मैंने कहा टोटल 12 बिल्स पास किए हैं इन टोटल, और चर्चा के दृष्टि से हम खुश नहीं है क्योंकि ऑपोजिशन ने ठीक से चर्चा करने नहीं दिया, विशेष करके लोकसभा में।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: तो दंगल में मेरे साथ बस इतना ही, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे हल्ला बोल के साथ, देखते रहिए आज तक।
0: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय वेक्टर्स, भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले वाटर टैंक्स, टंकी मतलब वेक्टर, प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: नहीं थम रहा प्रधानमंत्री मोदी पर राहुल गांधी के बयान पर बवाल। राजनाथ सिंह ने बताया लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरे का संकेत। तो शिवराज सिंह चौहान बोले माफी मांगे नेता विपक्ष। विभाजन विभीषिका दिवस पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। सीएम योगी ने कहा 1947 में अगर मोदी होते पीएम तो देश को नहीं होता नुकसान। मॉनसून सत्र खत्म होने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। हंगामे के लिए कांग्रेस को ठहराया कसूरवार। कहा बिना सोचे समझे बात करते हैं राहुल। कॉकरोच विवाद पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत का बड़ा बयान। कहा मेरी बातों का गलत इरादे से गलत इस्तेमाल, युवाओं को गुमराह करने की कोशिश। एनएसए अजीत डोभाल की दुनिया को खुली चेतावनी। भारत की उदारता को कमजोरी समझने की भूल न करे दुश्मन। ऑपरेशन सिंदूर के 88 घंटों में तबाह किए ठिकाने।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस।
3: मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था।
4: नीचता की हद।
5: लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं, एक फेल्ड स्टैंड अप कॉमेडियन लग रहे थे।
6: राहुल गांधी जी की भाषा अमर्यादा और अहंकार से भरी नजर आती है।
7: फ्रस्ट्रेशन उनके चेहरे से झलकता है, वो पागल हो चुके हैं।
8: राहुल गांधी ने विपक्ष के नेता की जो मर्यादा बनी थी उसको सब तोड़ दिया।
6: अब तो लगता है राहुल गांधी जी का पालन पोषण और संस्कार इस पे प्रश्न चिन्ह उठने लगे।

0: नमस्कार, हल्ला बोल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पर कांग्रेस पार्टी के एक कार्यक्रम में नकल उतारी और फिर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने गले लगने में इटली की महिला प्रधानमंत्री का जिक्र कर दिया। बीजेपी के सभी नेता अब राहुल गांधी पर नेता विपक्ष की कुर्सी के साथ मजाक करने का आरोप लगा रहे हैं। निशिकांत दुबे ने फिडेल कैस्ट्रो के साथ इंदिरा गांधी की तस्वीर पोस्ट कर दी है और जो शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है उसको लेकर अब बवाल दो तरफा हो चुका है। कुछ ही देर पहले खबर आई कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया इस पर दी है और उन्होंने कहा है कि ये सिरे से गलत है। तो कुल मिलाकर आइए जल्दी से आपको दिखाते हैं कि आज राजनाथ सिंह ने कैसे राहुल गांधी पर अब हमला किया है। इस मुद्दे पर राहुल गांधी पर बरसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ऐसे आचरण से गंभीर चिंता उन्होंने जाहिर की है और कहा है कि लोकतंत्र के लिए खतरे का ये संकेत है। राहुल के मन में पीएम के लिए कुंठा है, निम्न स्तरीय और निंदाजनक, इसे अपने पोस्ट में बता रहे हैं राजनाथ सिंह। उनका कहना है कि राहुल गांधी का बयान निम्न स्तरीय है और निंदाजनक है। तो इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आइए आपको सिलसिलेवार ढंग से दिखाते हैं कि क्या कुछ हुआ है। सबसे पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं कि आखिर राहुल गांधी ने बीते दिन रचनात्मक कांग्रेस करके एक पूरा उनका कार्यक्रम चल रहा था, वहां पर मंच पर वो प्रधानमंत्री की विदेश नीति पर हमला करना चाहते थे, क्या हुआ, फिर संदीप दीक्षित ने ऐसा क्या किया कि बवाल हुआ। पहले ये वीडियो देखिए।
1: इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया, अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी।
2: एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ। मिलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था?
1: I have not reached there yet. But, पता नहीं कहां से घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी का मतलब नेताओं से गले लगना।
0: तो भाई आपको दिखाते हैं राजनाथ सिंह ने इस पर क्या कहा है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, निम्न स्तरीय वो उसे बता रहे हैं। राहुल गांधी के इस बयान को निम्न स्तरीय और निंदाजनक बता रहे हैं राजनाथ सिंह। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के इस बयान से मुझे व्यक्तिगत पीड़ा हो रही है। सुनिए।
3: हर भारतीय के मन को अंदर से कष्ट देने वाली है, पीड़ादायक है। मैं कांग्रेस पार्टी से यह भी कहना चाहूंगा, विनम्रतापूर्वक कांग्रेस पार्टी से अनुरोध करना चाहूंगा कि ऐसी भाषा और आचरण के बाद क्या वे लोग अब लाल बाल पाल से लेकर गांधी, नेहरू, पटेल, सुभाष बाबू, राजेंद्र बाबू से लेकर शास्त्री जी, नरसिम्हा राव जी से लेकर प्रणब मुखर्जी जी तक जैसे विराट व्यक्तित्वों की विरासत का वह दावा किसी भी सूरत में कर सकते हैं? मैं कह सकता हूं कि आज इस आचरण से राहुल गांधी ने न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अपमान किया है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का अपमान किया है, लोकतंत्र नेता प्रतिपक्ष के पद की गरिमा को तार तार कर दिया है। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता कि जिसके नाम के आगे गांधी शब्द लगा हो वह ऐसा शर्मनाक बयान भी कभी दे सकता है।
0: इसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता भी राहुल गांधी के इस बयान पर यह सवाल पूछ रहे हैं कि नेता विपक्ष की गरिमा को क्या हुआ है।
4: नीचता की हद और राहुल गांधी आज लगभग, मैं तो पहली बार कह रहा हूं कि राहुल गांधी आधा फ्रस्ट्रेशन उनके चेहरे से झलकता है, वो पागल हो चुके हैं। अगर सोनिया जी ने उनका इलाज नहीं कराया तो एक दिन उन्हीं के लिए घातक हो गया। मोदी जी को देख देख करके वो पागल हो जाते हैं।
5: बीजेपी के बारे में अगर कोई इस तरह का इंसल्ट टू विमेन आता है वो कोई पहली बार आ रहा है। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने बोला था? जर्सी गाय किसने बोला था? जब इनका नेता ऐसा हो तो बाकी जो बोल रहे हैं उससे क्या फर्क पड़ रहा है?
6: जनता ने जिनको 3-3 बार नकारा, अब वो गाली गलौज पर उतर आए हैं, ओछी राजनीति पर उतर आए हैं। राहुल गांधी जी की भाषा अमर्यादा और अहंकार से भरी नजर आती है। राजनीति में मतभेद लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन अशोभनीय टिप्पणी, संवैधानिक पदों का अपमान, ये एक आदत सी बन गई है राहुल गांधी जी की। अब तो लगता है राहुल गांधी जी का पालन पोषण और संस्कार, इस पे प्रश्न चिन्ह उठने लगे हैं।
7: प्रधानमंत्री जी हमारे जहां जाते हैं, जिस ढंग से मिलते हैं, राहुल गांधी ने वही तो उठाया था। राहुल गांधी ने तो और कुछ कहा नहीं, किसी और ने कहा हो तो उसकी जिम्मेदारी राहुल गांधी की तो नहीं हो सकती। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, भारत की विदेश नीति इस समय सबसे कमजोर और भारत के हितों के सबसे ज्यादा खिलाफ है।
0: आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ प्रदीप भंडारी जी जुड़ गए इस वक्त, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। अजय उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ गए जो कि प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हैं। अंशु जोशी प्रोफेसर जेएनयू के हमारे साथ जुड़ रही है। मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा साहब रक्षा विशेषज्ञ इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। प्रदीप भंडारी जी, लेकिन हम लोग एक पोस्ट भी दिखाना चाहते हैं निशिकांत दुबे का। पोस्ट दिखाइए, ये क्या है प्रदीप जी? मतलब एक तरफ आप कह रहे हैं कि भाई उन्होंने ऐसे प्रधानमंत्री का अपमान किया, और सही बात है, और वो भी एक महिला प्रधानमंत्री का नाम ऐसे लेना ये गलत है, लेकिन मतलब एक एक पूर्व प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा, ये कुंठा नहीं है, ये गलत नहीं है? मिस्टर भंडारी,
8: देखिए अंजना जी आज बड़ी बात ये है, और इस बात पे पूरा देश प्रताड़ित है कि राहुल गांधी क्या फिट भी हैं एलओपी होने के लिए, इज ही मेंटली फिट टू बी दी एलओपी? क्योंकि अगर आप उनके कृत्य को ये ध्यान से देखेंगे तो इंस्टाग्राम पे वायरल होने के चक्कर में जेनजी के अंदर राहुल गांधी एक स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में स्थापित हो सकते हैं, पर इससे इनके कृत्य से साबित हो गया कि कांग्रेस आज विपक्ष में क्यों बैठी और आगे भी विपक्ष में क्यों बैठेगी, और आज उनके संस्कार क्या है। अगर किसी ने भी किसी पे निजी टिप्पणी हुई हम उसका खंडन करते हैं, पर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि कोई दूसरी महिला हेड ऑफ स्टेट के साथ में इस तरीके का सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन सही है? क्या इससे यह नहीं दर्शाया जाता कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, कोई भी प्रोफेशनली सक्सेसफुल महिला जो गांधी वाडा परिवार से नहीं आती उसके प्रति उनकी सोच क्या है? शायद तभी तरुण तेजपाल जैसा रेपिस्ट जो 10 साल की सजा होता है उसको सोनिया गांधी उसके पक्ष में पत्र लिखा करती थी। शायद तभी जब सिमी रॉजवेल जॉन जब कहती थी कि मेरे साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट कांग्रेस पार्टी के अंदर हुआ है, तो दोनों प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी जो है दे लुक दी अदर वे। और सिर्फ बात इसकी नहीं है, बात यह है कि राहुल के अंदर नफरत जो है देश के संवैधानिक पदों के प्रति हो गई है। वो बात करते हैं हक की, इस तरीके की उनने एक्ट किया। अब अगर हम ये इस तरीके की बातें दिखाएंगे जवाहरलाल नेहरू से लेकर, ये सब नहीं करेंगे, हम उनके लेवल पर नहीं जाएंगे। या मैं ये बिल्कुल नहीं करने वाला हूं कि इंदिरा गांधी ने जब फिडेल कैस्ट्रो के साथ में भारत के संबंध की बात करी और इस तरीके का जेस्चर किया तो ये कोई सेक्सुअल जेस्चर नहीं था, ये देश की प्रधानमंत्री उस वक्त जो है देश की गरिमा की बात कर रही थी, ये पहली बात हो गई। तो आज ये देश निर्धारित कर ले कि इस तरीके की महिलाओं पे टिप्पणी क्या सही
0: तो
8: है।
0: प्रदीप जी आप ये मान रहे हैं कि निशिकांत दुबे का जो रिस्पांस है वो भी उतना ही सेक्सिस्ट है, आप मान रहे हैं ना?
8: अंजना जी, निशिकांत जी ने कोई भी पर्सनली सेक्सुअल इनवेंडो की बात नहीं करी है,
0: ठीक है? वो लाइन पढ़ के सुनाइए,
8: प्रकट
0: वो पढ़ के सुनाइए क्या लिखा है उन्होंने,
8: भी खुद टिप्पणी दे चुके हैं। राहुल गांधी इज द लीडर ऑफ ऑपोजिशन, क्या देश के अंदर लीडर ऑफ ऑपोजिशन का इस तरीके से मेंटल इंस्टेबिलिटी रहेगी कि वो कार्टून नेटवर्क जैसे काम करने की शुरू करेगा, जब संसद के अंदर आंख मिचाने की बात करेगा, कभी यहां पे आके इस तरीके की बात करेगा, और इसके ऊपर एक नहीं बार बार एक झूठ को बोलेगा? कितनी बार देश के फॉर्मर आर्मी चीफ ने कहा कि हिंदुस्तान जो है उसका कोई भी इंकर्जन नहीं हुआ, उसके बाद वापस से वो रिपीट किया जा सकता है। तो ये क्यों, किसके रिमोट कंट्रोल पे कर रहे हैं? मुझे लग रहा है कि दिक्कत राहुल गांधी की ये है कि राहुल गांधी के अंदर एक कुंठा आ गई है, क्योंकि जब वो भारत की विदेश नीति को देखते हैं तो देखते हैं कि पूरी दुनिया जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत का सम्मान कर रही है, और ये कांग्रेस पार्टी का कोई भी गांधी वाड्रा परिवार 70 सालों तक अचीव नहीं कर पाया है। तो आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या इस देश के जनजी के सामने
0: प्रदीप जी
8: की इस तरीके की बात सही है?
0: ठीक है, उस पर हम लोग पूछेंगे उनसे प्रदीप जी, लेकिन एक सुझाव है ना, कि आप जिस चीज को क्रिटिसाइज करने निकलते हैं वही काम अगर आपके नेता खुद करें तो उस पर सीधा माफी मांग लेनी चाहिए। इधर उधर की बात किए बिना, क्योंकि मुझे मेरा जमीर तो मुझे इजाजत नहीं देता है कि एक पूर्व प्रधानमंत्री के लिए जो लाइन उन्होंने लिखी है उसको मैं पढ़ के भी सुनाऊं। बहुत वेरी बैड टेस्ट। पिक्चर्स डालना अपने आप में आपको ये करना है, लेकिन जो लाइन उन्होंने लिखी है वो गलत है। और अजय उपाध्याय जी, मुझे पता है कि आपके पास एक पूरी लंबी लिस्ट है कि बीजेपी के किन नेताओं ने कब कब किसके बारे में क्या बोला, और आप वही मुझे सुनाएंगे। लेकिन आज आपको भी यही शोभा देगा कि आप माफी मांगे किसी भी महिला प्रधानमंत्री के लिए, वो भी दूसरे देश की। इस तरह से हल्के में टिप्पणी करना उस मंच से कतई बर्दाश्त के लायक नहीं है। मतलब मजाक ही बन गया है जैसे, कि गिरने की कोई सीमा नहीं रही है।
9: अंजना जी नमस्कार, आपको, आपके सभी दर्शकों को और साथी पैनलिस्ट को भी। मुद्दा चूंकि आज विदेश नीति के संदर्भ में आपने शुरू की और वो आते आते पूरी डिबेट और जो आपने स्टोरी चलाई है कैसे कैसे भाषा और कैसे कैसे शब्दों की, इसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता और इस पर मैं जाना भी नहीं चाहता। और मैं वो पूरी लिस्ट भी नहीं आपके पास लाया हूं सुनाने के लिए, वो तो लगातार आपके चैनल पर लोग सुनाते रहते हैं। मैं मोदी जी की इस यात्रा का, जिसको लेकर के राहुल गांधी जी ने एक सिंबॉलिक जो वहां पे प्रतिवाद किया है उस पर मैं आपको जरूर टिप्पणी करना चाहूंगा। मोदी जी की लगभग 100 से 125 विदेशी यात्राएं अभी तक हुई है। सभी यात्राओं का पैटर्न आप उठाकर देखिए, एक ही पैटर्न है, डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल की ऐसी तैसी। जहां भी वो जाते हैं सामने वाले की गले पड़ने की जुगत में होते हैं, या आ गले लग जा का रील बनाना उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। विदेश नीति में ऐसी कहीं कोई प्राथमिकता आज तक हमने किसी प्रधानमंत्री की नहीं देखी। दूसरी बात, जब भी किसी इंटरनेशनल समिट में जाएंगे, वो बैठे हो सामने लेकिन पीछे से भी कोई आ रहा हो तो तीसरा नेत्र उनका खुल जाता है, और किसी तरह प्रयास करते हैं, फिराक में रहते हैं कि यदि दो नेताओं की चर्चा हो रही हो तो किसी तरह बीच में जाकर के इंटरप्ट करके ही खिखी खिखी करके अमर्यादित व्यवहार करें और कहीं ना कहीं लाइमलाइट में आने के लिए एनी हाउ उसको आकृष्ट करें अपनी तरफ ताकि रील बन सके। रील की बात की है इसलिए मैंने कहा। अब मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि आप सब जानते हैं, मैं कुछ मनोवैज्ञानिक तथ्य भी है, देश के अंदर इतने सालों से प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री के तौर पे मोदी जी पब्लिक लाइफ में हैं, देश के अंदर क्या कभी किसी से इस तरह का व्यवहार उनको करते देखा है आपने? आ आ आ गले लग जा कभी नहीं देखा। अभी हाल में ही सुल्तान यूए के में गए थे और किस तरह का हरकत था वो। दुख इस बात का लगता है कि भाजपा के लोग, सरकार के मंत्री प्रवक्ता और मोदियाबीन के कुछ भक्त जो हैं, वो अपने सोशल मीडिया पर तो छोड़िए प्रधानमंत्री जी के ट्विटर हैंडल पर उसको डालते हैं ताकि लोग उसको देखें और देश का और अपना भी मजाक उड़वाएं। मुझे लगता है यह कहीं से भी ठीक नहीं है। देश के वो प्रधानमंत्री हैं, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसको देखिएगा तो ये कहीं ना कहीं आत्ममुग्धता में नहीं मानता हूं सिर्फ, ये मनोवैज्ञानिक विकृति का शिकार है और इसके कारण पूरा देश जो है जगहसाई होती है, जगहसाई नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है कि जिस तरह की बातें हुई हैं, क्या विदेश नीति में इन चीजों को करके तस्वीर ताली या भाषण या इस तरह के व्यवहार अमर्यादित करके क्या हासिल होगा?
0: आपने भी लगभग 1.5-2 मिनट बोला, लेकिन आपने एक बार उपाध्याय जी आपने भी गलती नहीं स्वीकारी। जिस तरह से इटली की प्रधानमंत्री का वहां पर नाम लिया गया है, एक बार तो उस पर बोल दीजिए। ये किस तरह की पॉलिटिक्स को आप लोग बढ़ावा दे रहे हैं अजय जी, उस पर बोलिए तो।
9: मैं उसी पर आ रहा हूं एकदम उस पर
0: पहुंच नहीं रहे ना।
9: देखिए जब प्रधानमंत्री जी बच्चे की तरह हमारे देश से, हाँ प्रधानमंत्री जी जब देश से गए विदेश, विशेषकर इटली गए जब, और बच्चे की तरह एक मेलोडी लेकर गए थे और उसको भी रील बनाकर, और जिस तरह से भाजपा के बहुत सारे कार्यकर्ता नेताओं के ट्विटर हैंडल को देखिए, उसमें किस तरह से मेलोनी जी के बारे में क्या क्या इन लोगों ने चर्चा की, कितने अभद्र अंदाज में, क्या केमिस्ट्री को किस डायरेक्शन में लिया, ये पूरे पब्लिक डोमेन में और सोशल मीडिया में है।
0: अजय उपाध्याय
9: एक नहीं है, हजार।
0: अजय उपाध्याय जी ये निम्न स्तर का जो वॉटअबाउटरी आप कर रहे हैं इसको एकदम दरकिनार कर दीजिए। जो सुझाव मैंने उनको दिया था वही सुझाव आपको भी दे रही हूं। मुझे पता है आप दोनों के लिए ये बिन मांगा सुझाव है और इस सुझाव का कोई भी महत्व नहीं है, लेकिन अजय उपाध्याय जी जब गलती होती है तो गलती मान लेनी चाहिए। जैसे निशिकांत दुबे पर वो रिलेंट करने को तैयार नहीं है, वैसे आप भी संदीप दीक्षित ने जो मंच से कहा राहुल गांधी के सामने, जिसको तुरंत रोका नहीं गया, वो अति निंदनीय है, अति निंदनीय है अजय जी, बहुत गलत बात है।
10: उसी समय उन्होंने रोका, आपने आप चलवाइए,
0: पूरा
10: राहुल जी ने क्या कहा उस मंच पे, राहुल जी ने उसी समय इस बात को नजरअंदाज किया, उसको रोका, कहा इससे मेरा कोई लेना देना नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, उसमें कोई ऐसी बात उन्होंने नहीं कही थी जो बात कोई अशोभनीय हो। और
0: आप चाहते हैं तो हम लोग पूरा फिर से चलाते हैं, सुनते एक बार देखते हैं ना, अरे क्या किया नहीं किया उन्होंने, जब है सामने में वीडियो है तो फिर क्या हाथ कंगन को आसी क्या। इसके बाद मैं अंशु जी और सेना साहब फौरन इसके बाद आ रही हूँ सर आपके पास, जल्दी से एक बार वीडियो दिखाइए पूरा, और पूरा वहां तक चलाइएगा जो राहुल जी उस पर याद करते।
1: अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस, अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी।
2: एक चीज पूछ सकता हूं?
1: हाँ,
2: मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था?
1: आई हैव नॉट रीच देयर येट, बट पता नहीं कहां से घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी का मतलब नेताओं से गले लगना।
0: अजय जी, राहुल गांधी उसके बाद मुस्कुराते हैं, हंसते हैं और कहते हैं आई हैव नॉट रीच देयर येट, मैं अभी वहां नहीं पहुंचा हूं। मुझे पता है आप लोग दोनों डिफेंड करें, अब वही तुतु मैं आप लोगों का शुरू हो जाएगा, लेकिन सुनिए ना अजय जी, संदीप दीक्षित भी तो आप ही के नेता है ना, तभी मंच पर थे राहुल गांधी से, संदीप दीक्षित के ही खिलाफ बोल दीजिए कि उन्होंने गलत बोला।
10: ठीक है नहीं नहीं, संदीप दीक्षित ने उसमें क्या ऐसी बात कर दी भाई, मुझे मेलोनी तो नहीं समझा है, मेलोनी के बारे में तो पूरा देश में भाजपा के लोगों ने एकदम हाँ हाँ ना किया जाता, तो आरती उतारते और ये बारात वाली एंगल लेकर के चल रहे थे, ये तो पूरे देश के भाजपाइयों ने किया, सारे भाजपाइयों के ट्विटर हैंडल पर बात आई है, एक से एक सोशल मीडिया पर इन लोगों ने चलाया, देखो यहां तक कि वो शब्द मैं बोल नहीं सकता।
0: हाँ, ठीक
10: मैं
0: है,
10: वो
0: ठीक
10: शब्द नहीं बोल सकता,
0: राष्ट्राध्यक्ष अजय जी
10: उनके लिए जितनी बुरी शब्दों का उपयोग किया इन
0: लोगों ने। अजय जी, मैं भी आपको जानती हूँ और मुझे एक अंदर से यकीन है कि आप भी ये समझ रहे होंगे कि कितना डिस्टेस्टफुल है ये किसी भी दूसरी देश की महिला प्रधानमंत्री का नाम ऐसे लेना कि मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था, अपनी बहन बेटी अपनी बीवी अपना नाम तो नहीं लेंगे हम लोग, ऐसे लेंगे किसी के बारे में भी, किसी महिला के बारे में इस तरह से टिप्पणी करना इतने निम्न स्तर का है, लेकिन आप उसको भी डिफेंड कर रहे हैं क्योंकि आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो आपको मेरी तरफ से ब्रेवरी अवार्ड हम देते हैं, क्योंकि मुझे भी एहसास है कि आप एक प्रोफेसर हैं और आप अपने बच्चों को कभी ऐसी शिक्षा नहीं देंगे, लेकिन चूंकि कुछ आपका कहना है कि कुछ लोगों ने यह सब फैलाया है सोशल मीडिया पर, इसलिए उन्होंने जो कहा उसमें क्या गलत है, तो मैं तो इससे आगे अब आपसे बहस इस पर करना ही नहीं चाहती हूं, क्योंकि ये अब आपके कंट्रोल से बाहर की बात है। चलिए बाकी लोगों को दिखाइए, बाकी लोगों को मिस्टर सिन्हा, अब हम लोग देख रहे हैं कि अब मेरा मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहती हूं कि इस वीडियो पर कैसे रिएक्ट किया जाए और उसके बाद की भी पॉलिटिक्स, क्योंकि आज ये चर्चा भी होनी चाहिए कि आप हमला ही इस बात पर कर रहे हैं कि भाई पीएम के बारे में ऐसे बोले, एक महिला पीएम के बारे में ऐसे बोले, और फिर निशिकांत दुबे जी इस तरह का पोस्ट लिख देते हैं, वो भी तो एक पहलू है। जनसेना
11: अंजना जी, जय हिंद।
0: जय हिंद।
11: देखिए, आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि गिरावट की जो सीमा को हम लांग चुके हैं, उसकी एक सीमा होती है, एक सीमा रेखा होती है, उसको भी हम लांग चुके हैं। हमने अपनी जिंदगी में यही सीखा था, जब हम लोग ट्रेनिंग में जाते हैं कि ऑफिसर इज द जेंटलमैन, उसी तरह पॉलिटिशियंस तो उससे भी बहुत आगे हैं, वो हमारे लिए एक नेतृत्व करते हैं, एक बेंचमार्क डालते हैं और उसको हम फॉलो करना चाहते हैं। इतनी गिरावट आपने कभी सुनी होगी? यदि हम डिबेट दो सेकंड दीजिएगा, एक तो है जो पर्सनल चीजें जो कि इतनी निम्न स्तर की है कि उसको बात करना भी शर्म लगता है। आप बताइए, इटली की सोनिया गांधी भी इटली की हैं और राहुल गांधी का संबंध इटली से है, वहां की उस लेडी के ऊपर में जो इतने बड़े और उसके ऊपर इस तरह की बातें करना, और फिर आज हमारे चैनल पे आपके चैनल पे बैठे हुए लोग उसको अभी भी नकार नहीं रहे हैं, उसके बारे में अभी भी उसके जस्टिफाई कर रहे हैं और लोग जस्टिफाई कर रहे हैं। ये इतनी गिरावट यदि राजनीति में आ जाए, और खास करके क्योंकि राहुल गांधी इज ए एलओपी, वो तो उनका उनके सभी देखते हैं उसके ऊपर बहुत बड़ी आशाएं हैं। वो यदि इस तरह से गिर जाते हैं दोनों चीजों के ऊपर में, और दूसरी बात जो डिप्लोमेसी के, क्योंकि मैं उस पर बोलना चाहूंगा ज्यादा, जो उन्होंने हक इन्होंने कहा कि हक जादू की झप्पी आप इसको कह लीजिए। देखिए डिप्लोमेसी के 5 लेयर होते हैं, ये एक आपके चैनल में यदि लोग सुन रहे हैं और यहां खास करके बैठे हुए लोगों को, उसमें पर्सनल डिप्लोमेसी है, पर्सनल केमिस्ट्री इज द फर्स्ट लेयर। सेकेंड लेयर होता है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, और आज भारत के अंदर में यूएसए, रशिया, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इसराइल, यूएई, सऊदी अरेबिया, एशियान, यूरोप, अब सब जगह हमारी स्ट्रेटेजिक। तो आप बोलिएगा कि हम तो ये चाहते हैं, तो ये क्या ये लेयर ऐसे ही आ चुका है? लेयर 3 होता है मिनीलैटरलिज्म, ये डिप्लोमेसी। यदि राहुल गांधी को ये नहीं पता है तो शायद सुन लें, यदि सुन रहे हैं तो। क्वाड, ब्रिक्स, SCO, G20, आप ना ले, I2U2। और लेयर 5 होता है इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। 17 FTA हुआ है, 17 देशों से नहीं, 17 FTO अभी तक हुआ है, जिसमें एशियान के 10 देश हैं, सेप्टा के जो एशियन रीजन के हैं 8 हैं। जब हम बात करते हैं पूरे यूरोप के साथ, आप जाइए मिडिल ईस्ट के अंदर में, हम लोग सऊदी अरेबिया से हमारी हो रही है, यूएई से हो रही है। तो ये तो बेंचमार्क हार्ड पावर आपने देखा होगा जिस तरह से हम रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, इसराइल, इनकी साथियों के साथ हार्ड पावर कर रहे हैं, इंक्लूडिंग जो ईरान के साथ पे। तो आप इसको कह देना कि केवल एक जादू, यू नो, एक पर्सनल केमिस्ट्री को भी, क्योंकि फर्स्ट लेयर वो सबसे बड़ा है। हम तो बात करते हैं कि भारत तो विश्व देव कुटुंबम की बात, तो हम लोग गले लगाना, वो तो हमारी ये, हमें तो बड़ा गर्व होना चाहिए, मुझे गर्व होता है कि हम जा करके दोस्त को भी दुश्मन को भी गले लगा सके।
12: ठीक है,
11: तो दूसरी बात इसी पर एक बार राजा जी रिस्पॉन्ड करें। हाँ,
12: जल्दी से
11: बोलिए जी। ये है कि
10: मुझे ये बात की
12: अजय जी रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, बहुत देर से आपकी बात पे उठा रहे हैं, लेकिन अजय जी आपने कहा था कि वो देश के अंदर तो किसी से गले नहीं मिलते हैं, तो आडवाणी जी से लेकर सबके साथ तस्वीरें हैं देश के अंदर भी, चंद्रबाबू नायडू हो, कई लोगों के साथ है, वो वीडियो भी बहुत वायरल हो रहा है, तो हमने वो वीडियो भी चला दिया है। अशोक गहलोत जी से भी गले लगने का वीडियो है,
10: चलाइएगा, जरूर चलाइएगा जी। गले लगना और गले पड़ना दोनों में अंतर है, गले पड़ रहे हैं वहां, गले लगने में दिक्कत नहीं है। हमारे रक्षा विशेषज्ञ ने बड़ी लंबी बातें की है, कभी मुझे लगता था कि वो शायद इंदिरा गांधी जी वाले फोटो पर भी कुछ बयान देंगे, पर नहीं दे पाए, तो ये अच्छा लगा कि कम से कम चश्मा उन्होंने अभी तक बदला नहीं है, हालांकि अभी तक उनको गवर्नर का पद मिला नहीं है, पर मिल जाएगा आगे।
12: पर्सनल अटैक क्यों कर रहे हैं अजय जी?
10: नहीं जाता हूं, लेकिन
12: अजय जी एक सेकंड, माय वे और हाईवे वाला जो पॉलिसी है ना उसको छोड़िए सर प्लीज, सबकी अपनी सोच है, उनकी अपनी सोच है, वो बोल रहे हैं, पर्सनल एक्यूजेशन मत लगाइए, और जनरल सिन्हा पर तो बिल्कुल मत लगाइए प्लीज सर, इट्स अ रिक्वेस्ट अजय जी, क्योंकि आपके पर्सनल होगा, पर्सनल मत होइए सर, उनको अपनी बात कहनी चाहिए, आप अपनी बात कहिए ना। हाँ,
10: नेता अंजना जी मेरे नेता पर शुरुआत में वो पर्सनल अटैक ही किए हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं। अब आता हूं उनके डिप्लोमेटिक वाले थिंकिंग पर। ठीक है कि मैं रक्षा विशेषज्ञ नहीं हूं, पर हमने भी डिप्लोमेसी में थोड़ी बहुत पढ़ाई की है। डिप्लोमेसी का मतलब ये कभी नहीं होता है कि आप सिर्फ गले जाकर के जबरदस्ती लग लेंगे तो आपको जो है विदेश नीति में लाभ होगा। आपकी बॉडी लैंग्वेज का भी एक मीनिंग होता है और डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल का भी एक मीनिंग होता है। बहुत सारे प्रधानमंत्रियों ने कभी किसी से इस तरह जबरदस्ती गले नहीं लगा, लेकिन देश की विदेश नीति ज्यादा मजबूत और स्वायत्त थी। जहां तक बात आपने कही है क्वाड की, आपको याद है इंडो पैसिफिक था, अब पैसिफिक रीजन में वो चाइना और अमेरिका का क्या रिलेशन बन गया है, क्वाड जो है कहां किस रास्ते में खो गया है पता आपको शायद होगा। सऊदी अरबिया की बात भी अभी हमारे के सिन्हा ने की है, अभी टर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरबिया तीनों मिलकर के एक अलग से इस्लामिक नाटो की स्थापना करने के लग गए और कर लिया उन्होंने, जिसके कारण हमारी वैदेशिक जो कहीं ना कहीं सामरिक सुरक्षा है उस पर प्रश्न लगाने की बात आ रही है, इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। आप तो गए थे गले लगने, लेकिन सऊदी अरबिया कहां खड़ा है आज, कहां है आपका हटा दिया अमेरिका ने,
12: इसका जवाब आप
10: वहां भी जाकर के गले लगने का काम करते हैं।
12: इस्लामिक कंट्रीज का नेटो बना रहा है पाकिस्तान तुर्की के साथ, अब इजिप्ट जुड़ रहा है, आप सोचिए ये आपके लिए सऊदी के साथ। इसके बाद अंशु जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी, क्योंकि प्रदीप जी बहुत देर से जवाब नहीं दे पाए।
8: इन्होंने इन्होंने बोला कि जबरदस्ती गले लग रहे हैं, क्या वर्ल्ड नेता राहुल गांधी को फोन करके बोलते हैं कि जबरदस्ती गले लग रहे हैं? राहुल गांधी के बारे में बराक ओबामा ने प्रॉमिस लैंड में बोला था, ऐसे बच्चे हैं जो किसी को कुछ आता नहीं और अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं। ये पर्सनल जेस्चर्स की बात करें, जवाहरलाल नेहरू के पर्सनल जेस्चर के बारे में बात की जाएगी जहां पे ये क्या करा करते थे, किस हद तक ये छिछोरी हरकत ले गए और ये किस हद तक डिस्कोर्स को लेके गए। अब मैं बात करना चाहता हूं फॉरेन पॉलिसी की और उसके आप निशिकांत दुबे वाला जवाब दूंगा। फॉरेन पॉलिसी की आज की स्थिति अंजना जी ये है कि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है, हम रशिया से तेल ले रहे हैं, ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस के अंदर हिंदुस्तान के घर घर तक एलपीजी पहुंचा है, हम यूएस के साथ ट्रेड डील कर रहे हैं, हम यूएस के साथ डिफेंस इक्विपमेंट कर रहे हैं, हम ग्लोबल साउथ की आवाज बन चुके हैं, हम आईएमएफ के साथ से शाइनिंग स्पॉट ऑफ ग्लोबल इकॉनमी, हम मिडिल ईस्टर्न की सबसे ज्यादा कंट्रीज के साथ में हमारे रिलेशन है, हमारे 100 से ज्यादा कंट्रीज तक एक्सपोर्ट हो चुके हैं, हम जो है चाइना के साथ भी इक्वल पावर्स के रूप में बात कर रहे हैं और ये कह चुके हैं कि बॉर्डर जब स्टेबल होगा तभी चाइना के साथ रिलेशन स्टेबल होंगे, हम पाकिस्तान के घर के अंदर घुस के मारते हैं। अब कंपेयर करिए कांग्रेस पार्टी के समय जो फॉरेन पॉलिसी थी, नेहरू लिखते हैं यूएनएससी की सीट चाइना को दे दो, कांग्रेस 26/11 के पाकिस्तान के अंदर हमला नहीं करता है, भारत ब्लीक स्पॉट होता है वर्ल्ड इकॉनमी के अंदर, भारत ने बलूचिस्तान देने की बात कर दी थी पाकिस्तान को, क्या बात कर रहे हैं हम लोग, कोई एप्पल्स एंड ऑरेंजेस की बात करेंगे? अब मैं बात करता हूं निशिकांत दुबे की जो आपने पूछा, क्योंकि मैं स्कर्ट नहीं करूंगा उनका, देखिए आप इट्स अ क्वेश्चन मार्क, ही इज नॉट कमेड अ कंक्लूजन, सो इट्स अ क्वेश्चन मार्क कि राहुल कितनी हद तक जा रहे हैं, तो क्या राहुल के लॉजिक के हिसाब से ये वो है, वो उनके विचार नहीं है, सो आप वो ट्वीट में देखिए इट्स अ क्वेश्चन मार्क। और यही बात होती है कि जब राहुल गांधी गटर लेवल तक पॉलिटिक्स को लेकर जाते हैं, डिस्कोर्स को लेकर जाते हैं स्टैंड अप कॉमेडियन बनने के चक्कर में, इसीलिए उनके भाषा के अंदर उनसे पूछा जाता है कि तुम्हारे प्रिंसिपल्स के हिसाब से तुम्हारी दादी ने क्या किया, राहुल से सवाल पूछा गया है। और मैं वापस संजना जी पूछूंगा, क्या प्रोफेशनल महिलाओं को इस तरीके से ऑब्जेक्टिफाई करना सही है? ये पहली बार नहीं हुआ है।
12: प्रदीप जी
8: याद करिए, सिमी और
12: प्रदीप जी
8: याद करिए,
12: प्रदीप जी
8: जो 10 साल का
12: प्रदीप जी
8: की बात,
12: प्रदीप जी फोटो डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फोटो डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंदिरा जी की फोटो के साथ क्या लाइन लिखी है मैं आपको बोल रही हूँ, आप पढ़ के सुनाइए, मुझे पता है आपको संकोच होगा।
8: इट्स अ क्वेश्चन मार्क,
12: इट्स अ क्वेश्चन मार्क, बट इट इज सच बैड लैंग्वेज प्रदीप जी किसी के लिए, और वो भी अपने देश की महिला
8: पॉलिटिक्स टू, दिस इज वॉट राहुल गांधी हैज, दिस इज वाई राहुल इज अनफिट टू बी द प्राइम मिनिस्टर, अनफिट टू बी द एलओपी, इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर तो छोड़िए जिंदगी भर नहीं बन पाएंगे, इज ऑल्सो अनफिट टू बी द एलओपी, द डिबेट इज वेदर इज मंथली स्टेबल टू बी द एलओपी और नॉट।
12: राहुल गांधी कह रही हूँ प्रदीप जी पढ़ के सुनाइए ना, मैं तो नहीं पढ़ सकती हूँ, मेरी जुबान मुझे इजाजत नहीं देती है कि मैं अपने देश के एक महिला प्रधानमंत्री के लिए ये लाइन पढ़ूं ऑन एयर, अगर आपकी देती है तो आप पढ़ के सुना दीजिए, समझना तो सबको पड़ेगा ना, समझना सबको पड़ेगा। और अच्छा उपाध्याय जी बड़े मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन मेलनी के नाम पर आप भी खिसक लिए, तो सबकी तो वही हालत है ना अंशु जो, नहीं प्रदीप जी टेल मी व्हेन यू आर रेडी, जब आप ये लाइन पढ़ने को तैयार है मुझे बताइएगा अंशु जी, नहीं ये डिस्कोर्स कोई तो रोकेगा ना, कोई तो रोकेगा ना, या वही करना है, वो भी उधर से कर रहे हैं आप भी करिए, सब लोग हाथ सेकिए, मजाक चलाइए, रोज सोशल मीडिया पर यही खेलते रहिए सुबह से शाम तक। अंशु जी,
13: अंजना जी आपके स्टैंड पर मुझे गर्व है और इसी बात को मैं भी रखना चाहती हूँ, विदेश नीति के कुछ बेसिक्स के साथ, कुछ हिस्ट्री और फैक्ट्स के साथ में, और मेरी अपने पैनल से गुजारिश है कि मैं बहुत देर से चुपचाप आपकी बातें सुन रही थी, कृपया मुझे भी 2 मिनट का समय दीजिएगा। आज देखना बहुत दुखदाई लगा कि देश के 2 ऐसे सशक्त नेता, वो भी ऐसे जिनकी माएं और जिनकी एक दोनों में से एक की दादी बड़ी राजनेता रही है, उनके मुख से इस प्रकार की टिप्पणी सुनना जिसमें कि किसी न सिर्फ सेक्सिस्ट रिमार्क्स जो है वो प्रधानमंत्री के गले लगने को लेकर के किए गए, विदेश नीति को लेकर के उनका जो ज्ञान पता चला, और इसके अलावा जिस प्रकार से इटली के प्रधानमंत्री को लेकर इन्होंने कमेंट्स किए, तो ये बहुत देखना बड़ा शोचनीय है, क्योंकि प्रधानमंत्री शब्द और राष्ट्राध्यक्ष जैसे शब्दों को जब आप देखेंगे तो उसका कोई जेंडर नहीं होता है। और जब हम कूटनीति की बात करते हैं, जब हम विदेश नीति की बात करते हैं, तो उसमें पैरा डिप्लोमेसी होती है, पैरा डिप्लोमेसी में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कनेक्ट्स को मजबूत करने के लिए जो बार बार अजय कह रहे हैं गले पड़ना, वो गले पड़ने की बात नहीं है। आप ऐसे कई प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों को याद कीजिए जिन्होंने प्रोटोकॉल तोड़ के प्रधानमंत्री मोदी की गाड़ी ड्राइव किए एयरपोर्ट से जब वे उनके यहां पहुंचे हैं से लेकर के जहां वो रुके हैं तक, और उनके पैर छुए हैं। तो ये भी याद करना चाहिए कि ये पहले ऐसे हमारे भारत के नेता हैं जिनको 35 देशों ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया, ये उन्होंने गले पड़ के तो लिया नहीं होगा। 17 से अधिक देशों के साथ में भारत ने एफटीए किए हैं, अलग अलग ग्रुप्स के साथ एफटीए किए हैं, उसी बलबूते जो बार बार टर्म से कभी प्यूनिटिव टैरिफ्स लगते हैं उसका मुकाबला सशक्त रूप से कर पा रहे हैं। 27 की जगह 44 देशों से हम ऑयल गैस एंड एलपीजी एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है राहुल गांधी के लिए पहली बार तो महिलाओं को लेकर के जो सोच है, और ये सोच तब भी दिखाई दी थी जब महिला आरक्षण बिल संसद में पेश हुआ था, मेरे जैसे कई महिलाओं को हताशा अभिलाषा हाथ लगी थी। तो ये चाहते हैं कि इनके परिवार की जो महिलाएं हैं उनको पूरा सम्मान मिले और वही राजनीति करें और वही आगे बढ़े, और जो दूसरे परिवारों की महिलाएं हैं जो अपनी मेहनत के बलबूते कुछ बनती हैं उसके प्रति इनकी इस प्रकार की धारणा, ये आज के इस चित्र और ये उनके कमेंट से स्पष्ट होती है। विदेश नीति की बात यदि कर लें तो शायद राहुल गांधी को ऐसे प्रधानमंत्री पसंद है जो अलग अलग ग्रुपिंग्स में सबसे कोने में गुमसुम खड़े रहते थे, नाम मैं नहीं लूंगी, पूरा देश जानता है, और उन्हें इस प्रकार के डायनेमिक प्रधानमंत्री नहीं पसंद है जो टेंजिबल आउटकम्स लेकर के आते हैं, खाली ये गले लगने की ऑप्टिक्स वाली डिप्लोमेसी नहीं करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब हम कांग्रेस की विदेश नीति को देखते हैं तो विगत 70 सालों में हमने भी देखा है कि क्या हिंदी चीनी भाई भाई करके चीन से युद्ध करना या डिप्लोमेटिक टेबल पर उस जमीन को हार जाना जो भारतीय सेना ने आपके लिए अर्जित की थी 1975 का शिमला अग्रीमेंट, या कच्चा थी वो द्वीप जैसे स्ट्रेटेजिक लोकेशन को श्रीलंका को तश्तरी में सजा करके दे देना, यूएनएससी में अपनी परमानेंट सीट को चीन को दे देना, ग्वादर जैसे पोर्ट का जब आपको ऑफर मिलता है तो उसको ठुकरा देना, बलोच नेताओं से नहीं मिलना तब जबकि वे भारत में विलय चाहते थे, जम्मू कश्मीर को लेकर के जिस प्रकार का असमंजस बंजस इन्होंने बनाया, तो क्या ये विदेश नीति के सक्सेसफुल एलिमेंट्स हैं? हम सभी जानते हैं कि विगत 75 सालों में हमारी विदेश नीति किस प्रकार से संचालित हुई है, और आज हम देख रहे हैं कि पिछले 11 से 12 वर्षों में, क्योंकि ये विषय मैं पढ़ाती हूं अंजना जी, लेकिन मेरा मुख्य मुद्दा आज इस पर बहस करना नहीं है, बीइंग अ वुमन, मुझे लगता है कि ये बात इटली की प्रधानमंत्री की नहीं है, अगर कोई घरेलू महिला भी है, यदि कोई प्रोफेशनल वुमन भी है, तो उसके ऊपर इस प्रकार की भद्दी टिप्पणी करना, यदि हमारे राजनेता इससे नहीं बचते हैं तो ये जेन जी को, जेन अल्फा को और जेन बीटा को बहुत गलत संदेश जा रहा है। आज जो कुछ भी राहुल गांधी ने कहा है, संदीप दीक्षित ने कहा है, वो इस देश की युवा पीढ़ी ने, विशेषकर उन लड़कियों ने भी देखा है जो इनके फेवर में वहां जाकर के जंतर मंतर पर धरना कर रही थी और किस प्रकार की भाषा को उन्होंने भी प्रयोग किया था, तो हम कहां जा रहे हैं ये हमको सोचना होगा। और कम से कम विषय का ज्ञान रखते हुए जब बात करें तो फिर बात करें फॉरेन पॉलिसी के बेसिक्स पहले देखें, उसका कैसे टूल डिप्लोमेसी है और डिप्लोमेसी में किस तरह से गले लगना महत्वपूर्ण है, वहां से ट्रस्ट बिल्डअप होता है, पर्सनल केमिस्ट्री बिल्डअप होती है, जिसकी वजह से जो आपके बायलेटरल रिलेशंस हैं वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में परिणत होते हैं जो आज हमने 34 देशों के साथ में एस्टेब्लिश की है। अंजना जी
12: और अजय जी इसका जवाब दीजिए, फिर एक बार सोचिए, आप नए सिरे से आज जवाब देंगे इस बात का कि क्या जिस तरह से नाम मेलनी का लिया कि मेलनी समझ के तो नहीं लगे थे, उस पर आप निंदा करने को तैयार हैं? इस पर इटली पर विदेश मंत्रालय का बयान आया है, इटली के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल, कोई भी बात आदर के साथ रखा जाना चाहिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से ये बात कही गई है, कोई भी बात आदर के साथ रखा जाना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है अजय जी, ऐसा तो है नहीं कि जो बातें एलओपी के सामने हुई हैं, संदीप दीक्षित ने कही हैं, ये वीडियो वहां नहीं जा रहा होगा। आपको नहीं लगता है कि किसी भी देश की महिला के बारे में अगर उनके देश के नागरिक सुनेंगे उनको अच्छा लगेगा ऐसी हल्की बात करना? प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करने के लिए, मतलब विदेशी नेताओं को टारगेट करना, वो भी एक ऐसे देश में जहां पर हमारा रिश्ता अच्छा है, क्या ये जायज है? और हग डिप्लोमेसी जिसकी बात के सिन्हा साहब कर रहे हैं, जिस पर अंशु जोशी कर रहे हैं, वो सिर्फ रील और मजाक का मुद्दा नहीं हो सकता है, कई उन दोनों की बात भी आपने इस पर सुनी है। मेरे प्रश्न के दो हिस्से तो ये हैं, लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा यही है कि आपके पास भी एक सुझाव है, अगर आपको जरा सा भी लगता हो प्रोफेसर साहब की गलत बोला है संदीप दीक्षित ने, नाम नहीं लेना चाहिए, तो आप उस पर बोल सकते हैं, उनकी निंदा कर सकते हैं।
14: अंजना जी 7-8 जय जी अंजना जी 7-8 मिनट से मैंने सबका भाषण सुना है, अब मुझे अनइंटरप्टेड 2-3 मिनट बोलने दीजिएगा। पहली बात, हमारे साथी अंशु जोशी जी ने जो बात रखी है, अंशु जी जी की जेएनयू में हमारे साथी भी रही हैं, भाजपा की अघोषित प्रवक्ता भी हैं, भाजपा की कार्यकर्ता भी हैं, तो उनका जायज है ये बोलना कि विदेश नीति पर मोदी जी की गुणगान करना, उनका प्रशंसा करना, उसमें मुझे कोई बुरा नहीं लगा।
13: हाँ,
14: ये जरूर है कि देश की बेटी होकर के देश के पूर्व प्रधानमंत्री, मैं बीच में बोल रहा हूँ, मैं बीच में नहीं बोला, मैंने
12: बीच में नहीं बोले, लेकिन आप पर भी कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है ना, पर्सनल टिप्पणी
14: नहीं कर रहा हूँ, आप भाजपा के
12: पर्सनल टिप्पणी नहीं कर रहा है कोई,
14: की क्या वो कार्यकर्ता नहीं है क्या?
12: ये गलत बात है। अंशु जी प्लीज रिस्पॉन्ड, वो कह रहे हैं कि आप बीजेपी की कार्यकर्ता है,
14: एबीपी से की नहीं,
13: ना मैं भाजपा की कार्यकर्ता हूँ और ना मैं भाजपा की अघोषित प्रवक्ता हूँ।
14: पूछ लीजिए, मेरे सामने ही जेएनयू में लड़ी है एबीपी की।
13: मुझे ये कहने में कोई गर्व नहीं है कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विद्यार्थी परिषद से ताल्लुक रखती हूँ, लेकिन भाजपा से कोई लेना देना नहीं है, कृपया अपनी राजनीतिक समझ के हिसाब से मेरे ऊपर हल्की टिप्पणी मत कीजिएगा।
10: उनको स्पष्ट
2: तो उनको स्पष्ट नहीं है क्या,
10: उनको स्पष्ट भाजपा का या आरएसएस का समर्थक लिखना चाहिए।
12: डिबेट नहीं चाहती हूँ, लेकिन लेकिन ये जो है ना आपका, आप लोगों की जो एक ये पॉलिसी बन गई है ऑफिशियल पॉलिसी कि जो भी आपकी लाइन के खिलाफ बोले उसको डिसक्रेडिट करना, इससे बचिए अजय जी, तो फिर ये बवाल भी नहीं होगा, है ना। वो प्रोफेसर हैं, जेएनयू में पढ़ाती हैं, अगर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया होता तो मैं बीजेपी लिखती। वो प्रोफेसर हैं, आइडियोलॉग हैं, उनकी अपनी विचारधारा है, संघ का समर्थक, इस देश का नागरिक नहीं है क्या, है ना, तो उसको भी बोलने दीजिए। ऐसे ही के सिन्हा साहब पर, आप जनरल साहब पे पीछे पड़ गए, पर्सनल मत होइए ना, आप पर कोई पर्सनली कुछ बोल रहा है अजय जी, टॉपिक पे रहिए सर, टॉपिक पे, टॉपिक पे बोलिए।
10: अंजना जी, उन्होंने सरेआम स्वीकारा कि वो आरएसएस की समर्थक हैं, एबीपी से वो चुनाव लड़ी हैं, मेरे टाइम में लड़ी हैं, मेरे पैनल जब मैं लड़ा था, छोड़िए उस बात। अब बात आता है कि उन्होंने,
13: अरे भाई मुझे भाजपा का तंगा पहना हो गया,
10: हो गया तो आप क्यों यहां मुखौटा बना के बैठी है, चैनल पर मुखौटा बन के क्यों आती है,
13: आज तक बड़ा चैनल है, मुखौटा मत
10: मुखौटा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है,
13: ये पैनल वन का नहीं होगा ना।
12: अरे अजय जी,
10: सुन लीजिए,
12: अनेकों पैनलिस्ट आते हैं जो कांग्रेस की ऑफिशियल लाइन को सपोर्ट करते हैं, तो थोड़ा नाम कांग्रेस समर्थक लिखते हैं उनके लिए। आराम से टॉपिक पे रहिए ना सर, टॉपिक पे बोलिए, अपनी लकीर लंबी के लिए दूसरे की मिटाने की जरूरत नहीं है, अपनी लकीर आगे ले जाइए, बोलिए
10: अब अपनी। अरे नहीं नहीं, मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि आरएसएस की भाषा भाजपा की भाषा, वो भाजपा के प्रधानमंत्री को डिफेंड कर रही है, देश के प्रधानमंत्री को यदि वो डिफेंड करती तो उनको ये भी जवाब देना चाहिए था, विदेश नीति में जो इतना डंका पीटने के बाद हमको अंततः लाभ क्या मिला, आज मेलोडी खिलाने से क्या, इटली से हमारे रिलेशन कितने अच्छे हो गए, बीच में नहीं, अब मैं तो फैक्ट में बोल रहा हूँ, अब फिर शुरू हो गई आप ही फैक्ट में एक बात करती हैं, आपके अलावा तो कोई करता नहीं है। इंदिरा जी देश की बेटी हैं, उनके साथ बेइज्जती हुई, आपको बेइज्जती फील नहीं हुई, देश की बेटी के साथ जब आप बेइज्जती कर रहे हैं तो आप लोगों को अच्छा लग रहा है, और मेलोडी के साथ जबकि कोई कोई अमर्यादित भाषा नहीं उपयोग हुई तो आपको बड़ा प्रेम मेलोडी से निकल रहा है, मैं समझता हूँ।
12: बंद कीजिए अजय जी, बंद कीजिए, आप फिर वही सब कर रहे हैं। एक तो आपको इटली की प्रधानमंत्री का नाम नहीं पता है, या फिर आप जानबूझकर ये कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, हमेशा कंसिडर दिस फैक्ट कि वो एक देश के प्रधानमंत्री हैं, आप इस देश में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी हैं, थोड़ा सा मर्यादा रखिए। वही मैं कह रही हूं, प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करने के लिए दूसरे का अपमान मत कीजिए, बार बार आपको कह रही हूं अजय जी, प्लीज स्टिक टू इट। अपने शो में मैं कैसे इसकी इजाजत दे सकती हूं, क्यों इतना संकीर्ण होकर कुएं में रहना चाहते हैं आप लोग, दुनिया में अन्य लोग भी सुनेंगे ना आपको। अजय जी प्लीज अपनी बात रखिए और पुरजोर रखिए, लेकिन किसी भी प्रधानमंत्री या उनका अपमान मत कीजिए, बोलिए।
10: अब मुझे अपनी बात रखने दिया
12: जाए, बोलिए,
10: मुझे अपनी बात रखने दिया जाए,
12: बोलिए।
10: सच है कि देश की विदेश नीति जो है राष्ट्रीय हितों से प्रभावित होती है, देश की विदेश नीति कभी किसी को ताली बजवा लेना, कहीं इवेंट मैनेजमेंट कर देना, अवार्ड खरीद लेने से यदि होता तो पूरा विश्व में ढूंढ ढूंढ करके आप अवार्ड लीजिए, हमें क्या चिंता है। आप गए थे ना इजराइल जाने के बाद अवार्ड आपको मिला था ना, क्या हुआ हमारी देश की स्थिति क्या बनी, इजराइल का पक्ष आप लिए, चाबहार से हम लगभग 1400 करोड़ रुपया लगाया हुआ हमारा, हमको विड्रॉ करना पड़ा, हमें भागना पड़ा, नौबत आ गई। आप अमेरिका के साथ ट्रंप गा रहे थे ना, क्या हुआ जब हमारे नाविक मारे गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे, उन नाविक के लिए एक शब्द नहीं, अब बीच में नहीं,
12: अच्छा ठीक है, हाथ उठाइए बीच में नहीं,
10: इनको नहीं बोलना है,
12: हाथ उठाइए बीच में नहीं, बीच में नहीं,
10: पूरा देश जानता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से यदि चाइना इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल में भारत चाइना को भेज रहा था तो इससे बड़ा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का झूठ कुछ नहीं हो सकता। मैं इसी पर अपना रिसर्च वर्क काम किया हूँ
12: प्रदीप जी,
10: कई इस पर
12: प्रदीप जी
10: प्रस्तुत किए हैं,
12: प्रदीप जी को बोलने दीजिए,
2: मैं देश के सामने माफी मांगूंगा, लेटर तैयार कर, मैं देश के सामने माफी मांगूंगा अगर मैंने जो बोला वो गलत है। ये ना जवाहरलाल नेहरू की किताब लेटर्स फॉर अ नेशन, इसमें जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं इनफॉर्मली सजेशंस हैव बीन मेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना।
12: अजय जी अब रुक जाइए, अजय जी रुक जाइए,
2: एंड इंडिया
12: अजय जी अब उनको बोलने दीजिए, बोलिए प्रदीप जी।
8: देखिए अजय उपाध्याय ने अंजना जी बोला कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कहा गया है कि नेहरू ने कहा था कि चाइना को जगह दे दो। ये रहा लेटर्स फॉर नेशन फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू, उससे कोट कर रहा हूं, मुझे फैक्ट चेक कर ले, पूरा पूरा का पूरा कांग्रेस पार्टी का दम है। तो जवाहरलाल नेहरू लिखते रहे कोट, इन फॉर्मली सजेशंस हैव बीन मेड दैट यूनाइटेड स्टेट्स बाय यूनाइटेड स्टेट्स दैट चाइना शुड बी टेकन इनटू यूनाइटेड नेशंस बट नॉट इन सिक्योरिटी काउंसिल एंड दैट इंडिया शुड टेक अ प्लेस इन सिक्योरिटी काउंसिल। वी कैन नॉट एक्सेप्ट दिस। It will be unfair for a great country like China to not be in Security Council. Check कर लीजिए, ये जवाहरलाल नेहरू की खुद की राइटिंग। हिंदुस्तान
12: प्रदीप जी मोबाइल हाथ में ही है। प्रदीप जी मोबाइल हाथ में ही है ना, मेरी एक बात मानिएगा। प्रदीप जी मेरी एक बात मानिएगा, मोबाइल हाथ पे है।
8: बोलिए।
12: एक्स खोलिए। निशिकांत जी के पोस्ट पे जाइए।
8: बोलिए अंजना जी, खोल लिया।
12: निशिकांत जी के पोस्ट पे जाइए।
8: नेट कम चल रहा है अंजना जी।
12: निशिकांत जी के पोस्ट पर
8: एक्स खुल नहीं रहा है। देख एक सेकंड, ये एक्स खोला मैंने, इसमें आ रहा है कि राहुल गांधी, पीपल ऑफ द कंट्री क्रिटिसाइज राहुल गांधी, ये आ रहा है एक्स पे अभी इस वक्त।
12: ठीक, निशिकांत जी का भी खोलिए।
8: मैंने एक्स खोला
12: और निशिकांत जी भी अगर सुन रहे हो,
8: राहुल गांधी इज एक्टिंग लाइक अ क्लाउन, राहुल गांधी इज अब्यूज द वुमेन ऑफ द कंट्री। हां एक सेकंड, ठीक एक सेकंड रुकिए, मैं खोल।
12: चलिए, दोनों में से किसी ने ना निशिकांत दुबे पर उन्होंने निंदा की, ना इन्होंने संदीप दीक्षित ने जो किया राहुल गांधी की मौजूदगी में उस पर निंदा की। ये अपने आप में ही पूरी कहानी है। इन दो लाइनों में ही सबको समझ में आ जाता है कि क्या किसकी मंशा है। आज रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाएंगे कांग्रेस के रचनात्मक प्रकोष्ठ की नकारात्मक सियासत, जिस पर जमकर विवाद हो रहा है। और इसके बाद आपको बताएंगे कि एयर इंडिया का विमान पायलट की गलती से हवा में लहराया या तकनीकी खामी से। और आखिर में आपको दिखाएंगे कि चमोली में भारी बारिश के मौसम में मजदूरों को टनल में जानलेवा मिशन पर किसने भेजा, क्या ये सुसाइड मिशन है हमारे मजदूरों के लिए। देखते रहिए आज।
15: हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हाँ, और जिंदाबाद रहेगा।

0: बिजली का बिल, पेंट,
1: तो मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
2: कैसे?
1: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए तक का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो पे।
2: इतना माही वे।
3: आगे आगे।
4: अरे उधर
3: उधर गया।
4: करेक्ट करेक्ट।
5: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: बहुत टायर्ड हो गई.
2: Take it, take it, date, not bites.
3: No added sugar, preservative के बिना. Dates, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया. Lion dates, nut take bites. It, take
2: it, lion date, nut bites.
4: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं. गोल्डी हिंग कण कण में जान.
5: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम. एयू
6: सोच बदलो और बैंक भी.
7: पापा
8: सॉरी यार गलती हो गई है. ये चोट खर्चा वर्चा
9: अरे लास्ट बॉल पे

0: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा,
1: छक्का
0: सब कैशलेस हो गया है।
1: हाँ ओले ला भाई मेरा बैट,
2: वो अभी तो ठीक हुआ तू,
3: बिलोटे चार्ज हुआ यार।
4: ओले बैट किसका है?
5: टाटा AIG है तो भरोसा है।
6: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं,
7: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना,
8: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रांग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
9: जिस मिट्टी में फसल उगती है उसी में भारत की स्वतंत्रता की खुशबू है। इस स्वतंत्रता दिवस आइए उन किसानों का सम्मान करें जो हर दिन देश को मजबूत बनाते हैं। मेरे और क्रिस्टल परिवार की ओर से आपके और आपके परिवार को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: मैनकाइंड फार्मा, दिल से स्वदेशी, जान हिंदुस्तान।
1: तक डिजिटल फर्स्ट चैनल्स, 11 बिलियन व्यूज, 85 मिलियन यूनिक व्यूअर्स, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर ब्रांड, रीजनल और हाइपर लोकल रीच, हर शहर हर कस्बे तक एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल करें

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: In association with
2: Sarah Sanitary Wear, it's your moment of Sarah. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
3: तक, digital first channels, 11 billion views, 85 million unique viewers, one stop solution for your brand, regional or hyper local reach. हर शहर, हर कस्बे तक advertise करने के लिए email करें.
4: भिखारियों का मनोविज्ञान क्या है?
5: तैयारी तुम भी कर रहे हो क्या?
4: नहीं सर.
5: 12th किससे की हो?
4: 12th सर मेरा PCM से रहा.
5: कंपाउंड क्या होता है?
4: बेसिकली जो एक्युमुलेटेड चीजें रहती हैं उसके ऊपर.
5: यही है भीख मंगे वाली क्वालिटी. तुम पूछ रहे थे ना, यही है, यही. एक मिनट,
4: ये जो आपका तरीका बहुत सर बहुत अच्छा नहीं है. इस तरीके से समझाने का स्टूडेंट्स को, इसे सर ह्यूमिलिएशन कहते हैं.
5: देख भाई, अपनी गारंटी पे छेड़ना.
6: हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हाँ, और जिंदाबाद रहेगा.

0: जब से पेपर लीक के खिलाफ कांग्रेस जनता पार्टी ने देश भर में आंदोलन किया है, तब से देश की सियासत से लेकर न्यायपालिका तक जेंजी बैक देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद की नासलर यानी नेशनल लॉ स्टडी एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी से जुड़े विवाद पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को फटकार लगाई है। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा है कि भले ही छात्रों का फैसला गलत हो या उन्हें किसी ने गलत सलाह दी हो, फिर भी उन्हें अपनी बात रखने और विरोध करने का अधिकार है। जस्टिस सूर्यकांत ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के उस सर्कुलर पर भी नाराजगी जताई जिसमें नासलर के 2026 बैच के लॉ ग्रेजुएट्स का वकील के तौर पर एनरोलमेंट रोकने को कहा गया था। सीजेआई ने कहा कि ये मेरे और छात्रों के बीच का मामला है, इसे मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। बार काउंसिल इसमें दखल देने वाला कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस भी जारी किया और यूनिवर्सिटी के किसी छात्र या फैकल्टी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया। विरोध के बाद बार काउंसिल ने यूटर्न ले लिया है। छात्रों की नाराजगी सीजेआई की पिछले महीने की एक टिप्पणी को लेकर थी। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा था, कॉकरोच की तरह ऐसे युवा हैं जिन्हें इस पेशे में रोजगार नहीं मिल रहा है। इनमें से कुछ मीडिया, कुछ सोशल मीडिया और कुछ आरटीआई और दूसरे तरह के एक्टिविस्ट बन रहे हैं। ये हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। ये टिप्पणी दिल्ली में नीट प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़ी याचिका की सुनवाई के दौरान की गई। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 13 अगस्त को सभी स्टेट बार काउंसिलों को निर्देश दिया था कि नासलर के 2026 बैच के किसी भी ग्रेजुएट को अगले आदेश तक वकील के तौर पर एनरोल न किया जाए। साथ ही यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से 3 दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी गई थी। आदेश जारी होने के कुछ घंटे बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपना रुख बदल लिया। काउंसिल ने कहा कि नासलर के 2026 बैच के ज्यादातर छात्र निर्दोष हैं और वो सीजीआई के अनादर वाले किसी भी अभियान में शामिल होने के इच्छुक नहीं थे।
1: कुछ गलत रिपोर्टिंग हो गई, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन मिल गए तो एक लेटर भेज दिया गया नालसर को, लेकिन 30 मिनट के अंदर जैसे ही सही बातों का पता चला, स्टूडेंट्स के इनोसेंस का पता चला, तुरंत उस लेटर को वापस ले लिया गया। आधी रात को बार काउंसिल की मीटिंग हुई, सभी मेंबर्स ने डिस्कस किया, पूरा डेलिबरेशन हुआ उस पर, और उसके बाद पूरा का पूरा मामला जो है सो क्लोज कर दिया गया। तो मैटर स्टैंड्स फुल्ली क्लोज्ड नाउ। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को ये बात नहीं बताई गई शायद कि मामला जो है सो उसको क्लोज कर दिया गया, वो लेटर पूरी तरह वापस ले लिया गया, कोई ऑर्डर नहीं है, स्टूडेंट्स जैसे चाहें वो जहां चाहें अपने को एनरोल कराएं। अब सुप्रीम कोर्ट को हम एक्सप्लेन करेंगे।
0: सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी बार काउंसिल के एक्शन पर सवाल उठाए थे। आज तक ब्यूरो
2: सर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं हल्द्वानी में पब्लिक स्पीच में रामलीला मैदान में रामलीला स्टेज पर भाषण किया और लाखों लोग वहां पर थे। उस वक्त मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए।
3: बीजेपी, क्योंकि खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग थे, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और मैं भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं। बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नेवर। लेकिन आपने कहा है हम इसकी तहकीकात भी करेंगे,

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: हल्ला बोल में आप देख रहे थे बहस राहुल गांधी के सामने संदीप दीक्षित के दिए विवादित बयान पर और फिर निशिकांत दुबे ने जो उस पर प्रतिक्रिया दी। हम ब्रेक नहीं ले रहे हैं, ब्रेक के साथ तक हमारे साथ।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: नमस्कार, मैं हूं मारिया शकील। शाम के 7 बजने वाले हैं आज तक के इस खास शो में। अगले आधे घंटे में दिन भर की सभी बड़ी खबरें होंगी, लेकिन खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नहीं थम रहा प्राइम मिनिस्टर मोदी पर राहुल गांधी के बयान पर बवाल। राजनाथ सिंह ने बताया लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरे का संकेत। विदेश मंत्रालय ने कहा आदर के साथ रखनी चाहिए कोई बात। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पर भड़की कांग्रेस, कहा पारिवारिक संस्कारों से अछूते हैं भाजपाई। इंदिरा गांधी की तस्वीर पोस्ट करने पर सियासी आर पार। मॉनसून सत्र खत्म होने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। हंगामे के लिए कांग्रेस को ठहराया कसूरवार, कहा बिना सोचे समझे बात करते हैं राहुल। कॉकरोच विवाद पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत का बड़ा बयान, कहा मेरी बातों का गलत इरादे से गलत इस्तेमाल, युवाओं को गुमराह करने की हुई कोशिश। एनएसए अजीत डोवाल की दुनिया को खुली चेतावनी, भारत की उदारता को कमजोरी समझने की भूल ना करें दुश्मन। ऑपरेशन सिंदूर ने 88 घंटों में तबाह किए ठिकाने। शो की शुरुआत यूपी की सियासत के साथ, जहां चुनाव से पहले राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आज योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर थे, जहां उन्होंने एक बार फिर विपक्ष पर राम मंदिर को लेकर निशाना साधा।
1: राम मंदिर पर जारी चढ़ावा चोरी की सियासत के बीच योगी आदित्यनाथ एक बार फिर अयोध्या पहुंचे, जहां चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर सवाल करने वालों को आड़े हाथों लिया।
2: जिस अयोध्या में चढ़ावे की चर्चा वे करते हैं, मुद्दा क्या था? श्री राम जन्मभूमि में चढ़ावा चोरी से संबंधित एक प्रकरण सामने आया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने इसके लिए सिफारिश की, एसआईटी बनी, एसआईटी के अनुसार कार्रवाई हुई, कार्रवाई चल भी रही है। उसका नाम चंदा चोरी के साथ जोड़ा गया।
1: मानसून सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी लगातार राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन करती रही। कल मानसून सत्र खत्म होने के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद दिल्ली के हनुमान मंदिर पहुंचे थे, जहां संसद में दान पेटी में एकत्र किया करीब 2.5 लाख रुपए का चढ़ावा हनुमान मंदिर में सौंपा गया।
3: ये चंदा विपक्ष के सांसदों ने 20 तारीख से लेकर अब तक आज तक इकट्ठा किया था, और राम भक्त श्री हनुमान जी के सिंचरणों में इस चंदे को चढ़ा रहे हैं। राम भक्त हनुमान जी इसकी भी रक्षा करेंगे और वहां के डकैतों पर भी अपनी गदा चलाएंगे।
1: अब योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी के नेताओं को कालनेमी कह रहे हैं।
2: कालनेमियों को तो बजरंग बली बहुत अच्छी ढंग से पहचानते हैं। इन कालनेमियों की पहचान तो बजरंगबली से ज्यादा कौन कर सकता है। बजरंगबली मानते हैं कि मेरा भक्त नहीं, ये बाबरी के भक्त हैं। ये बजरंगबली के भक्त नहीं हो सकते। जो बाबरी का भक्त होगा वह बजरंगबली का भक्त नहीं हो सकता है, और उसको चिन्हित, उसको पहचानने की सामर्थ्य बजरंगबली में है, लेकिन बजरंगबली के भक्तों को भी पालना पड़ेगा।
1: 2027 के चुनाव में राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा सबसे बड़ा होता दिख रहा है, जिस पर यूपी में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। आज तक ब्यूरो।
0: उधर दिल्ली की सियासत में इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी की एंट्री हो गई है, जहां कल राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पर सवाल खड़े किए, लेकिन मेलोनी पर मंच से की गई टिप्पणी पर घमासान मच गया।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पर तंज कसते हुए राहुल गांधी की एक्टिंग पर अब सियासत तेज है, और इस सियासत में आग में घी का काम किया है कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित की इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी पर टिप्पणी में।
5: फॉरेन पॉलिसी इज दिस,
6: मैं तो बच्चे फिर रहा था।
5: पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी।
2: एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ। मिलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था?
5: आई हैव नॉट रीच देयर येट।
4: बीजेपी ने कांग्रेस की मर्यादा पर सवाल खड़े किए, लेकिन ये सवाल पूछने में बीजेपी नेता निशिकांत दुबे खुद मर्यादा भूल गए, जिन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की विदेश दौरे की तस्वीरें साझा करते हुए अमर्यादित टिप्पणी की। अब कांग्रेस और बीजेपी के नेता एक दूसरे को संस्कार और भाषा की मर्यादा का ज्ञान दे रहे हैं।
6: इससे ये भी स्पष्ट होता है कि राहुल गांधी एक 55 साल के बालक है, जिनकी बुद्धि अभी भी बालक बुद्धि वाली है, और जो इस देश के लोकतंत्र से इतनी नफरत करते हैं कि अगर इस देश की जनता उनको प्रधानमंत्री के पद पे उनके खानदान को नहीं बैठा है तो वो हर डेमोक्रेटिक पद का मजाक उड़ाना शुरू करते हैं।
7: बीजेपी के बारे में अगर कोई इस तरह का इंसल्ट टू विमेन आता है, वो कोई पहली बार आ रहा है। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने बोला था? जर्सी गाय किसने बोला था?
8: आप कल्पना कीजिए, एक महिला विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्ष पर अभद्र, अमर्यादित और ओछी टिप्पणी करना, ये राहुल गांधी जी और कांग्रेस की मानसिकता दिखाती है।
9: प्रधानमंत्री जी हमारे जहां जाते हैं, जिस ढंग से मिलते हैं, राहुल गांधी ने वही तो उठाया था। राहुल गांधी ने तो और कुछ कहा नहीं, किसी और ने कहा हो तो उसकी जिम्मेदारी राहुल गांधी की तो नहीं हो सकती।
4: राजनीति में गिरती भाषा की मर्यादा पर अब दोनों पक्ष एक दूसरे को आईना दिखाने में जुट गए हैं। आज तक ब्यूरो।
0: मानसून सत्र खत्म होने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने मैंने खास बातचीत की। अलग अलग मुद्दों को लेकर किरण रिजिजू ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। किरण रिजिजू जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। यू एंटर्ड द मानसून सेशन आफ्टर हिस्टोरिक बंगाल विक्ट्री। देयर वर डिफेक्शंस व्हिच हैड हैपेंड इन टीएमसी, इन द शिवसेना। Aam Aadmi Party MPs had also defected and joined the BJP. There was this confidence with which government entered the monsoon session. You were confident that you will pass the delimitation bill. What is the delimitation bill's future? First, this will be my question. And FCRA, that was also a simple majority ke saath bill pass ho sakti thi. Lekin opposition had an upper hand in getting it sent to the JPC.
10: नहीं, सबसे पहले तो हमने महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन को मानसून सेशन में ही पारित करेंगे, हमने कभी नहीं कहा, क्योंकि यह संवैधानिक मामला है और संविधान संशोधन चाहिए जिसके लिए पर्याप्त संख्या और सदन के अंदर में एक माहौल होना चाहिए। आप वोटिंग जो करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो उसमें हाउस इन ऑर्डर और डिविजन वोटिंग होते हैं, तो उसमें शोरगोल में आप संविधान संशोधन बिल पारित नहीं कर सकते हैं। और हमने कहा नहीं कि अभी हम तुरंत पारित करने जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास संख्या है। लेकिन संख्या होते हुए भी हमने जबरदस्ती नहीं किया। जैसे एफसीआरए का बिल के बारे में आपने जिक्र किया, एफसीआरए,
0: लेकिन सर एक मिनट में आपको यहां पे इंटरप्ट करूंगी। संख्या की बात जो आप कर रहे हैं, यू हैव द नंबर्स टू गेट द डिलिमिटेशन पास, विच इज एसेंशियली कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल विच रिक्वायर्स 2/3।
10: यस, but we did not press for it because we thought let there be more consultation within the parties. To humne koi zabardasti nahi kiya. Dekhiye, hum bahut democratic log hai. Opposition kuch bhi kahe usse koi hamara chavi badalne wala nahi hai. Har bill humne zabardasti pass nahi karaya. Bill parit hone se pehle humne business advisory committee mein bill ko bataya, समय आवंटन किया और फिर हमने बिल को लिस्टिंग करके हाउस में रखा। कोई भी ऐसा एक घटना नहीं है जहां हम ऑपोजिशन को पूछे बगैर कोई भी बिल पारित किया हो, ऐसा कोई घटना नहीं हुई है। और जहां तक ऑपोजिशन का सवाल है, कई ऑपोजिशन एमपीज मेरे पास निजी तौर पर आए और ये कहा कि कृपया राहुल गांधी जी और अखिलेश जी और कुछ लोगों से बातचीत करके बिल को चर्चा कराइए, हम लोग बोलना चाहते हैं
0: एफसीआरए पे,
10: नहीं कोई भी बिल। लेकिन वो सुनते ही नहीं है। मैं राहुल गांधी जी से बहुत लंबा चर्चा की, अखिलेश यादव जी से भी चर्चा की और बाकी अपोजिशन पार्टी के कई नेताओं से मेरा बातचीत बहुत अच्छी तरह से हुई, लेकिन उसका कोई नतीजा इसलिए नहीं निकला क्योंकि वो सदन में चर्चा के लिए बिल्कुल राजी नहीं हुए। तो इसलिए मेरा यह मानना है कि बिल पे चर्चा नहीं होने से ज्यादा नुकसान ओपोजिशन पार्टी का है, क्योंकि सरकार का मत तो ऑलरेडी हमने कैबिनेट में बिल पारित करते हैं, फिर कैबिनेट से क्लियर करने के बाद वो पार्लियामेंट में लेके आते हैं, तो सरकार का मत तो बहुत साफ है। और कुछ बिल्स को हमने स्टैंडिंग कमेटी और जेपीसी में भी भेजे हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो कहते हैं कि सेशन वॉश आउट हो गया, सेशन वॉश आउट नहीं हुआ, सेशन पूरी तरह से हमारे लिए कामयाबी रहा। 12 बिल्स पारित किए, एक बिल पर चर्चा हुई, जो पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस इन एग्जाम्स, जो पेपर लीक वगैरह होते हैं उसके लिए बहुत कठोर कानून बनाया, उसका चर्चा लोकसभा राज्यसभा दोनों में हुए। हाँ, इतना बात जरूर है कि पेपर लीक को लेकर के इतना मजबूत कानून बनाया तो ओपोजिशन उस पर नहीं बोले, वो बाहर का इधर उधर राजनीति करने लगा, लेकिन चर्चा हुई।
0: लेकिन सर, इफ ऑपोजिशन वॉन्ट्स डिस्कशन ऑन सर्टन इम्पोर्टेंट इश्यूज विच ऑल्सो इंक्लूड्स चंदा चोरी इन अयोध्या, उस पर चर्चा की जरूरत है,
10: तो
0: फिर चंदा चोरी पर आप लोग तैयार क्यों नहीं हुए डिस्कशन?
10: अरे, एक बात यह साफ है कि एक समय में एक ही चर्चा होगा, तो हमने पेशकश किया कि छात्र का जो आंदोलन हुआ नीट पेपर एग्जाम का लीक होने से, तो वो बहुत गर्मागर्म विषय बना, तो हमने तैयार किया ना उसको, हमने कहा कि चर्चा करेंगे। वो कहते हैं कि नहीं, सरकार का जवाब सुनना नहीं चाहते, सिर्फ ये बताओ कि गोली किसने चलाया। अरे, जब गोली चला ही नहीं है तो फिर किसने चलाया का सवाल कहां से आता है? ये तो मैं आपसे भी बात करना चाहता हूं, आप भी काफी सीनियर जर्नलिस्ट हो गए हैं, आप भी काफी मैच्योर्ड हैं, आप भी इसको समझ सकते हैं कि अगर गोली चलती है तो खून खराबा होगा। देश में कितना आंदोलन हुए हैं, तेलंगाना राज आंदोलन से लेकर के कई ऐसा आंदोलन हुए, कितने सौ सौ लोग गोली से मारे गए,
0: लेकिन
10: आप सुनिए, उसमें कोई भी रेजिग्नेशन तो नहीं हुआ। हमारा तो शिक्षा मंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया। पैलेट गन्स का जहां तक सवाल है, मैं अभी डिटेल में इसलिए नहीं कह रहा हूं कि वो जब मौका मिलने से तो गृहमंत्री जी बताएंगे, लेकिन मैं एक कॉमन वाला बात बताता हूं जो हर एक आदमी समझते हैं। पैलेट गन्स तो हजारों में सौ सौ वो विस्फोट होते हैं, एक ही को कैसे लगा?
0: बट व्हाट राहुल गांधी सेड हियर दैट ही वांटेड अ स्टेटमेंट फ्रॉम होम मिनिस्टर।
10: अब राहुल गांधी जी को विश्वास मत कीजिए, वो बिना सोचे बात करते हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन होने के नाते मैं उसको सम्मान करता हूं, मैं उसको इज्जत देता हूं, लेकिन बिना सोचे अगर बात करेगा तो उसका हम जवाब कैसे दे सकते हैं? देखिए, राहुल गांधी जी खुद ही बोला कि मैं जवाब नहीं सुनना चाहता हूं, एक स्टेटमेंट दो। अरे, स्टेटमेंट कैसे देंगे आप? स्टेटमेंट पे पूरा चर्चा होगा, पूरा उसमें सबका बात सुनेंगे, ऑपोजिशन वाला बोलेंगे और सरकार जवाब देंगे, तभी तो कंप्लीट होगा चर्चा का।
0: माय लास्ट क्वेश्चन टू यू इज कमिंग फ्रॉम व्हाट वी हैव सीन ओवर द लास्ट फ्यू डेज ऑन सोशल मीडिया। लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश हैव पुट आउट वीडियोज एंड इवन राहुल गांधी हैज नाउ रेज्ड इट एंड हिज वर्ड्स आर एंड आई एम कोटिंग यू हिम, अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर चीन ने हमारी सेना को पेट्रोलिंग करने से रोक दिया है, ये बेहद चिंताजनक है।
10: अरुणाचल में जो जगह अभी एलिगेशन लगा रहे, वो 1959 में असापिला रेंज में जो लोंगजू साइड में जो भी जगह ऑक्यूपाई किया है वो 1959 में ऑक्यूपाई किया। जो अभी हमारा कुछ लोग अरुणाचल के कुछ लोकल लोग कह रहे हैं, वो उनका कंसर्न है, वो कह रहे हैं कि जिस जगह में हम लोग पहले ग्रेजिंग करते थे वहां नहीं जा पा रहे, वहां चाइना ने इस्टाब्लिश किया है, पोस्ट बनाया। वो बात सही है, लेकिन वो सारा एरिया इसलिए चाइना ने ऑक्यूपाई किया क्योंकि इंडिया ने तो रास्ता बनाया नहीं, इंडिया का कोई एक्टिविटी स्थान है, इंडियन गवर्नमेंट का रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी काम जो है वो तो 2014-15 के बाद ही प्लानिंग करके अभी शुरू हो रहा है। ताक्सिंग जो जगह कह रहे हैं वो 2019 में ही रोड कनेक्ट हुआ, आप सोचो 1947 में आजादी प्राप्त हुआ और ताक्सिंग में रोड मोदी जी के समय में 2019 में कनेक्ट हुआ,
11: ऐसे यहाँ गुंजी में भी देखिए 2019 में कनेक्ट हुआ, तो जब हमारा रास्ता ही नहीं था तो चाइना ने रास्ता बना लिया और उन्होंने कई जगह ऑक्यूपाई कर लिया।
0: ऑलराइट, थैंक यू।
11: लेकिन हम एक इंच नया जमीन तो नहीं देने के लिए हम लोग अभी पूरा हमारा फोर्स बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, रास्ता बना रहे हैं। हम लोग तो लेट से शुरू किया ना, चाइना तो पहले कर लिया।
0: ऑल राइट किरण रिजिजू, प्लेजर स्पीकिंग टू यू एंड थैंक यू फॉर टेकिंग ऑल द क्वेश्चंस।
11: थैंक यू।
0: और अब बात जयपुर से आई एक दर्दनाक खबर की, जहां स्कूल में एक छात्र की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। परिवार अब स्कूल पर लापरवाही का आरोप लगा रहा है।
12: जब आपके सामने आपका कोई दोस्त तड़प तड़प कर दम तोड़ जाए और स्कूल प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा रह जाए तो खून खौलना लाजमी हो जाता है। जयपुर के महाराणा प्रताप स्कूल के इन छात्रों का ये गुस्सा देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं।
13: उसने बाइट ली, वो भागा, सांस नहीं आ रही थी, पानी पीने गया और फिर वो बेहोश हो गया। पूरा नहीं, आधा ही खाया था, आधी फेंक दी थी।
12: 12वीं क्लास का छात्र प्रिंस स्कूल कैंटीन से पेटीज खरीदता है। खाते ही उसकी तबीयत बिगड़ती है, उसकी सांस बंद हो जाती है, बदन नीला पड़ जाता है, मुंह से झाग निकलने लगता है, लेकिन स्कूल प्रशासन अस्पताल ले जाने की जहमत तक नहीं उठाता।
14: यही मांग है कि मेरे बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए, हर उस माँ के बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए जिसका बेटा बेटी यहाँ पढ़ रहे हैं। आज मेरा प्रिंस है, कल कोई और प्रिंस नहीं हो, मेरा बेटा बेमौत इनके सामने मर गया।
12: 50 से 100 मीटर की दूरी पर अस्पताल है, लेकिन प्रिंस की हालत बिगड़ने के बाद स्कूल प्रशासन ने उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाने के बजाय परिवार को सूचना दी और उन्हें स्कूल बुलाया। परिजन स्कूल पहुंचे और प्रिंस को निजी अस्पताल लेकर गए।
14: 11:14 में इनका फोन आया सर का, बोले आप आ जाओ, बच्चा आपका ना बीमार है, इतना ही बोला था इन्होंने। लेकिन उस वक्त बच्चा मेरा बेहोश होके मर गया था, बेहोश नहीं सीधा ही मर गया था इनके सामने। उसने जब यू किया तो वो हेल्प मांग रहे हैं ना पानी की, मेरी हेल्प करो, मैं जीना चाहता हूँ। वो मैडम इग्नोर करके चली गई और मरे हुए बच्चे को वहाँ पे ले जा करके उस सोफे वाले कमरे में क्यों ले गए? यहाँ पे एक ऑफिस है, यहाँ एसी चलती है, खुला ऑफिस है।
12: लोगों ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया और संस्था प्रधान और आरोपी शिक्षकों की गिरफ्तारी की मांग की।
14: एक घंटा लटा के रखा है उसको, आधे घंटे तक सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा है उसकी सांस चल रही है, लेकिन उन लोगों से 50 मीटर की दूरी पर वो सामने हॉस्पिटल है, वहाँ नहीं। पापा को फोन करके बोलते तबियत खराब है आप लेने आ जाओ, ये नहीं बोला बेहोश हो गया।
15: देखे जगह उल्टा लटा दिया उसको, और सांस कहाँ से आता, वैसे रुका हुआ था और रुक गया उल्टा लटाने के बाद।
12: पुलिस जांच की बात कर रही है, उसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। मौत की वजह का पता भी तभी चल पाएगा, लेकिन अब पुलिस की असली जिम्मेदारी ये तय करने की है कि वक्त पर अस्पताल ना पहुंचाने वाले स्कूल पर सख्त कार्रवाई जरूर हो। विशाल शर्मा, जयपुर आज तक।
0: अब बात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की, जो 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संदेश दे रही है।
16: निष्ठावान विद्यार्थी और शिक्षक, विकास के लिए तत्पर वैज्ञानिक और इंजीनियर, स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी, मेहनती श्रमिक और अन्नदाता किसान अपने प्रयासों से राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं। प्रतिभावान खिलाड़ी, शिल्पकार तथा कलाकार, मार्गदर्शक बुद्धिजीवी, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की टीमों के कर्मठ सदस्य, जनहित में सेवारत जनप्रतिनिधि, न्याय व्यवस्था से जुड़े न्यायकर्मी, कार्यनिष्ठ सिविल सेवक, अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले छोटे बड़े सभी निवेशक, निस्वार्थ समाजसेवी और स्वच्छता अभियान के अग्रणी कार्यकर्ता, हमारे सभी सफाई मित्र देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अन्य क्षेत्र में सक्रिय असंख्य देशवासी तथा संविधान में निहित मूल कर्तव्यों का पालन करने वाले सभी नागरिक राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भागीदार है। मैं उन सभी के हृदय से सराहना करती हूँ। तीनों सेनाओं के जवानों, सभी सशस्त्र पुलिस बलों एवं पुलिस कर्मियों की कर्तव्य निष्ठा के लिए मैं उनकी विशेष सराहना करती हूँ। विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों और दूतावासों में कार्यरत देशवासियों की मैं प्रशंसा करती हूँ। स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अंत्योदय की भावना के साथ हमारा संकल्प है कि विकास का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे। अपनी समृद्ध विरासत और स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों को अपनाते हुए हम आधुनिक विकास के मार्ग पर अग्रसर हैं। वयं राष्ट्रे जागरूयाम, ये वेदवाक्य हमें प्रेरणा देता है कि हम राष्ट्र के लिए सदैव जागरूक रहे। हमारे स्वाधीनता संग्राम में संघर्षरत अलग अलग विचारधाराओं के लोगों का लक्ष्य एक ही था, भारत की स्वतंत्रता। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम जन जन का गीत बन गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में अनगिनत देशवासी स्वाधीनता संग्राम से जुड़ गए। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज सुधार तथा राष्ट्र निष्ठा के उच्च आदर्श प्रस्तुत किए। भारत माता की उन सभी महान संतानों को मैं सादर नमन करती हूँ जिनके आदर्श पर चलते हुए हमारा देश स्वतंत्र हुआ और आगे बढ़ा। आज 14 अगस्त के दिन को हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। हम उन लाखों देशवासियों को याद करते हैं जो विभाजन से जुड़ी हिंसा में मारे गए या विस्थापन की त्रासदी झेलने को मजबूर हुए। सांप्रदायिक हिंसा की वजह से लाखों लोगों को शरणार्थी बनना पड़ा और बंटवारे की विभीषिका सहन करनी पड़ी। फिर भी उन्होंने अपनी पहचान नहीं छोड़ी। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ उस समय देश के विभाजन के गंभीर परिणामों के साथ साथ 550 से अधिक रियासतों को नव स्वाधीन भारत के साथ जोड़ना भी एक असाधारण चुनौती थी। सरदार पटेल ने राजशाही व्यवस्थाओं को समाप्त करके हमारे स्वाधीन लोकतंत्र में उनका विलय किया। एक कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से आधुनिक भारत की एकता के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पावन स्मृति को मैं सादर नमन करती हूँ।
0: वक्त है अभी ब्रेक का, देखते रहिए आज तक।
17: हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हाँ, और जिंदाबाद रहेगा।
18: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
19: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
20: आगे आगे,
21: अरे उधर
20: उधर यार,
21: करेक्ट करेक्ट,
22: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: अर्जुन कुछ भी पढ़े मेमोरी में नहीं रहता।
3: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स बादाम पिस्ता काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
4: लायन डेट नट बाइट्स।
5: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: Papa.
2: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
3: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
2: छक्का?
3: सब कैशलेस हो गया
2: है।
3: हाँ।
2: ला, ला भाई मेरा बैट।
4: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
5: चार्ज हुआ यार।
6: बैट किसका है?
7: टाटा AIG है तो भरोसा है।
8: बिजली का बिल पेड, तुम्हारा मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
9: कैसे?
8: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए तक का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो
9: वे।
10: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं?
11: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
12: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
13: जिस मिट्टी में फसल उगती है उसी में भारत की स्वतंत्रता की खुशबू है। इस स्वतंत्रता दिवस आइए उन किसानों का सम्मान करें जो हर दिन देश को मजबूत बनाते हैं। मेरे और क्रिस्टल परिवार की ओर से आपके और आपके परिवार को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: in association with Sharda University. The world comes together at Sharda University. Where are you?
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
0: विमल बोलो जुबां केसरी हिंट बड़े आराम से.
2: भिखारियों का मनोविज्ञान क्या है?
3: तैयारी तुम भी कर रहे हो क्या?
2: नहीं सर.
3: ट्वेल्थ किससे की हो?
2: ट्वेल्थ सर मेरा पीसीएम से रहा.
3: कंपाउंड क्या होता है?
2: बेसिकली जो एक्युमुलेटेड चीजें रहती हैं उसके ऊपर.
3: यही है भिख मंगे वाली क्वालिटी. तुम पूछ रहे थे ना, यही है यही. एक मिनट,
2: ये जो आपका तरीका बहुत सर बहुत अच्छा नहीं है. इस तरीके से समझाने का स्टूडेंट्स को, इसे सर ह्यूमिलिएशन कहते हैं.
3: देख भाई, अपनी गारंटी पे छेड़ना.
4: सनी सर, अगर आपकी परमिशन हो तो आपके 2.5 किलो के हाथ का दमदम इस सभा के सामने आज स्वाद माना चाहेंगे.
5: क्यों मेरे साथ पंगा लेना चाहते हैं सब लोग?

0: बेहोश हो गया अपनी सास।
1: आप 2 सेकंड सांस रोक के बता दो, मैं आप लोगों को मान जाऊंगा।
2: 1 घंटे तक रोक के रहे,
1: 1 घंटे में जान पे रहा, उसके कैसा हो रहा था वो।
3: सिर्फ इतना सा है कि न्याय चाहिए उस बच्चे के लिए। बच्चा तो गया, पर किसी और की जिंदगी उस स्कूल में खराब नहीं हो।
4: जब आपके सामने आपका कोई दोस्त तड़प तड़प कर दम तोड़ जाए और स्कूल प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा रह जाए तो खून खौलना लाजमी हो जाता है। जयपुर के महाराणा प्रताप स्कूल के इन छात्रों का भी खून खौल रहा है, क्यों ये इन्हीं बच्चों से सुनिए।
5: उसने बाइट ली, वो भागा, सांस नहीं आ रही थी, पानी पीने गया और फिर वो बेहोश हो गया। पूरा नहीं, आधा ही खाया था, आधी फेंक दी थी।
6: खराब
5: थी,
6: पहले पता नहीं चला।
5: पहले पता नहीं,
6: फंगस लगी थी, बदबू आ रही थी।
5: बदबू आ रही थी,
6: बदबू आ रही थी, पूरा नहीं थी।
7: सबसे बड़ी लापरवाही ये है ना,
5: स्कूल के पास हॉस्पिटल भेज देते तो वो आज चिंता रहे।
4: इस स्कूल में 12वीं क्लास के छात्र प्रिंस की जिन हालात में मौत हुई उसे सुनकर किसी का भी आक्रोश भड़क जाए। इस स्कूल में छात्र कैंटीन से पेटीज खरीदता है, खाते ही उसकी तबीयत बिगड़ती है, उसकी सांस बंद हो जाती है, बदन नीला पड़ जाता है, मुंह से झाग निकलने लगता है, लेकिन स्कूल प्रशासन अस्पताल ले जाने की जहमत तक नहीं उठाता। जाहिर है इस स्कूल ने लापरवाही की हद कर दी है। दरअसल इस स्कूल ने अपराध किया है, 50 से 100 मीटर की दूरी पर अस्पताल है, लेकिन स्कूल प्रशासन को बच्चे को वहां तक ले जाने का ख्याल तक नहीं आया। माना कि बच्चे की हालत काफी बिगड़ गई थी, लेकिन कम से कम उसे अस्पताल तो ले जाते, क्या पता कोई अनहोनी हो जाती। वक्त पर इलाज से बच्चे की जान बच जाती, लेकिन अब कुछ नहीं बचा है सिवाय एक माँ के आंसू और पिता के ताउम्र कुरीदने वाले दर्द के। होनहार प्रिंस अब इस दुनिया में नहीं रहा, परिवार के लिए अब उसकी यादें ही शेष है। माता पिता को जब भी उसकी याद आएगी तो ये ख्याल भी आएगा कि प्रिंस की किन परिस्थितियों में मौत हुई थी। अब सारा दारोमदार पुलिस पर है, क्या प्रिंस के माता पिता को इंसाफ मिल पाएगा।
8: संदिग्ध परिस्थितियों में डेथ का मैटर हमारे सामने आया है और उस पर जो उनके परिजन हैं उन्होंने ये आशंका जताई है कि स्कूल में किसी प्रकार की लापरवाही की वजह से उनकी मृत्यु हो गई है, तो उस पर भी प्रकरण पंजीबद्ध करके उसमें अनुसंधान किया जा रहा है। जो मौके की फुटेज और ये सारी चीज़ें उनको कलेक्ट किया जा रहा है और उसमें भी जो भी चीज़ें आएंगी, जो फैक्ट्स आएंगी, वो आपके सामने हम रखेंगे।
4: पुलिस जांच की बात कर रही है, उसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। मौत की वजह का पता तो तभी चल पाएगा, लेकिन पुलिस की असली जिम्मेदारी ये तय करने की है कि वक्त पर अस्पताल न पहुंचाने वाले स्कूल पर सख्त कार्रवाई जरूर हो। विशाल शर्मा, जयपुर आज तक।
9: नांदेड़ के गुरुद्वारा माता साहिब कौर में मत्था टेकने पहुंचे थे सुखबीर सिंह बादल, वही उन पर हमला हुआ। अब हमलावर गिरफ्त में है, उसके खिलाफ जांच तेज हो गई है। सफेद दाढ़ी और नीली पगड़ी पहने ये वही आरोपी है जिसने सुखबीर सिंह बादल को जख्मी कर दिया। एक सुरक्षा कर्मी भी घायल हुआ है। जानकारी मिली है कि 62 साल का हमलावर जसपाल सिंह पुणे का रहने वाला है और वो फिलहाल इसी गुरुद्वारे में सेवा कर रहा था। वो पेशे से वकील भी रहा है।
10: निशाना बनाया, सो हम चाहते हैं कि इसकी सेंट्रल एजेंसी या हाई कोर्ट मॉनिटर्ड, किसी जज साहब की मॉनिटर्ड जांच हो, टाइम बाउंड मैनर से जांच हो, और ये सच है, ये सामने आना चाहिए कि साजिश के पीछे है कौन।
9: इस मामले में पुलिस के साथ साथ एटीएस ने भी जांच तेज कर दी है। एटीएस की टीम ने आरोपी जसपाल सिंह के पुणे स्थित घर पर छापेमारी की है, वहां तलाशी भी ली गई है। साथ ही जांच टीम ने आरोपी के बैकग्राउंड और गतिविधियों की जानकारी जुटाई है।
11: जो उसकी बैकग्राउंड चेक और उसके कनेक्शंस, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी एजेंसी, एटीएस और हम, ये सभी लोग मिलकर कर रहे हैं। इनिशियली वो खुद बोल रहा है कि मुझे थोड़ा सा ड्रग्स, पंजाब में ड्रग्स के ऊपर मेरा गुस्सा है वगैरह वगैरह, लेकिन वो फैक्ट एग्जैक्ट क्या है वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन के बाद ही पता चलेगा।
9: सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने हरसिमरत कौर बादल से फोन पर बात की और सुखबीर बादल का हाल जाना। इस मामले में मुख्यमंत्री फडणवीस ने हमले की वजह की जांच के आदेश दिए हैं। चंडीगढ़ से असीम बस्सी के साथ अभिजीत करांदे, नांदेड़ आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश, विकसित भारत के निर्माण के लिए आगे बढ़ने का आह्वान, कहा युवा आबादी सबसे मूल्यवान संपत्ति। नहीं थम रहा प्राइम मिनिस्टर मोदी पर राहुल गांधी के बयान पर बवाल, राजनाथ सिंह ने बताया लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरे का संकेत, विदेश मंत्रालय ने कहा आदर के साथ रखनी चाहिए कोई बात। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पर भड़की कांग्रेस, कहा पारिवारिक संस्कारों में से अछूते हैं भाजपाई, इंदिरा गांधी की तस्वीर पोस्ट करने पर सियासी आर पार। अखिलेश यादव ने फिर बोला सीएम योगी पर हमला, कहा यूपी में अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार, बढ़ रहा है अन्याय। कॉकरोच विवाद पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत का बड़ा बयान, कहा मेरी बातों का गलत इरादे से गलत इस्तेमाल, युवाओं को गुमराह करने की हुई कोशिश।

0: नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूँ मारिया शकील। विशेष में आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में हुए एक और टनल एक्सीडेंट की। चमोली में एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की टनल में कल एक हादसा हुआ। अब तक 7 मजदूर इस हादसे में मारे गए हैं, 3 लापता हैं जिनकी तलाश जारी है, 12 मजदूर घायल हैं। लेकिन सवाल ये है कि उत्तराखंड में जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और जिनकी वजह से टनल्स बनाई जा रही हैं, उनमें ये हादसे बार बार क्यों हो रहे हैं और कब तक होते रहेंगे?
1: बार बार उत्तराखंड की सुरंगों में क्यों हो रहे हैं इतने बड़े हादसे? विकास की राह में विनाश का इंतजाम कौन कर रहा है? क्या उत्तराखंड की नदियों में जरूरत से ज्यादा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं? उत्तराखंड के कच्चे पहाड़ों में बड़ी बड़ी सुरंगें खोदकर विनाश कौन ला रहा है? उत्तराखंड में एक और मौत की सुरंग बनी है चमोली जिले के पीपल कोटी की टीएचडीसी की सुरंग। तस्वीरें बता रही हैं कि सुरंग के अंदर इस वक्त क्या हालात हैं। पूरी स्थिति समझने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि यह हादसा कहां और कैसे हुआ। उत्तराखंड के चमोली जिले के पीपल कोटी में टीएचडीसी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहा है। यह प्रोजेक्ट अलकनंदा नदी पर बन रहा है जिसकी क्षमता होगी 444 मेगावाट। बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट का 80% काम पूरा हो चुका है। इस प्रोजेक्ट के तहत एक 65 मीटर ऊंचा डैम बन रहा है जिसमें 2 सुरंगें होंगी। पहली है हेड रेस टनल यानी HRT जिसकी लंबाई है 13.4 किलोमीटर और दूसरी है टेल रेस टनल TRT जिसकी लंबाई है 3.04 किलोमीटर। गुरुवार को जो हादसा हुआ वो इसी TRT सुरंग में हुआ है। अब ये समझिए कि यह हादसा कैसे हुआ। इस इलाके में जमकर बारिश हो रही है, मॉनसून का सीजन है और आसमान से आफत बरस रही है। कई जगहों पर भूस्खलन और बादल फटने की घटनाएं भी हो रही हैं। इन हालात में भी इस टनल में काम चालू था। बताया जा रहा है कि गुरुवार को अचानक से सुरंग में 150 मीटर दूर तेज आवाज के साथ भारी भूस्खलन हुआ। मलबा, पत्थर और पानी तेज गति से टनल के अंदर घुस गए। उस वक्त वहां पर कुछ मजदूर काम कर रहे थे। इसी हादसे में कुछ मजदूर मलबे में दब गए और बाकी फंस गए। टनल में कई जगह से मलबा आने से ऑक्सीजन लेवल बेहद कम हो गया था। बताया जा रहा है कि टनल के अंदर मलबा 2 दिन से आ रहा था, लेकिन इसके बाद भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ने इस पर ध्यान नहीं दिया और काम चालू रखा। इसके बाद तो टनल में लगातार पानी भरता गया। हालांकि हादसे की सूचना मिलते ही राहत और बचाव दल मौके पर पहुंच गया था। ये तस्वीरें बता रही हैं कि अंदर क्या हालात थे। बताया गया कि सुरंग के अंदर कुल 22 मजदूर फंसे हुए थे। 7 मजदूरों की मौत हो गई है, 3 अभी भी फंसे हैं। 12 मजदूरों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।
2: गुरुवार शाम को 6:30 बजे के आसपास पीपल कोटी विष्णु घाट परियोजना की जो TSDC की ये टनल है, TRT टनल, इसके अंदर 1500-1600 मीटर के करीब में एक लूज जो है टनल के अंदर गिरा और उसके बाद एक बहुत जबरदस्त, यहाँ पे बताया जा रहा, हवा का झोंका और पानी का बहुत बड़ा रिसाव हुआ और उसने कुछ लोगों को तो अंदर की ओर धकेला और कुछ लोगों को बाहर की ओर धकेला। ऐसे में कुछ तो ठीक ठाक निकल चुके हैं लेकिन अभी तक 3 लोग लापता है। पता चला इस पूरे हादसे में 22 लोग यहाँ पे हताहत हुए थे, जो कुछ घायल है, कुछ 7 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। वहीं अभी राज्य आपदा प्रबंधन सचिव जो है विनोद कुमार सुमन, वो यहाँ पे निरीक्षण करके गए। उनका कहना है कि डीवाटरिंग करने का काम किया जा रहा है और जल्द से जल्द इस पानी को बाहर निकाला जाएगा ताकि जो 3 लोग हैं अंदर उनका रेस्क्यू हो नहीं पा रहा है, पानी भर जा रहा है। ऐसे में लगातार यहाँ पे ITBP की फोर्स है, वो लगातार आ रही है, जा रही है। जो टीमें हैं वो लगातार लगी हैं, कभी मशीनें भेजी जा रही हैं, कभी ड्रम भेजे जा रहे हैं, अलग अलग तरीके से यहाँ पे इस समय जो रेस्क्यू और बचाव के काम चल रहे हैं वो करवाए जा रहे हैं।
1: लेकिन समस्या ये है कि टनल के अंदर लगातार पानी भरता जा रहा है, इसी वजह से रेस्क्यू टीमों को दिक्कतें आ रही हैं। जैसे ही कल रात ये रेस्क्यू टीमें पहुंची तो टनल में बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ था। तुरंत इन्होंने टेम्पररी नाव बना दी, नीचे बड़े बड़े ड्रम बांधे और एक अस्थायी नाव का निर्माण किया और उसके बाद देखिए कैसे इन जुगाड़ की नामों से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया।
3: कल तक काफी लोगों को निकाला हम लोगों ने, जिसमें से 12 लोग को सुरक्षित बचाया गया है, 7 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है, 3 लोग अभी लापता चल रहे हैं जिनको खोजने का काम चल रहा है। पानी का लेवल ज़्यादा होने से थोड़ी सी समस्या आ रही है हम लोगों को। डीवाटरिंग पंप अभी 5 काम कर रहे हैं, तो डीवाटरिंग पंप की संख्या को बढ़ाने के लिए कहा गया है TSDC से, वो पंप मंगा रहे हैं NTPC के माध्यम से। और बाकी हमने कहा जहाँ भी पंप जितने भी अवेलेबल हैं पंपों की संख्या बढ़ाइए, क्योंकि अभी जिस गति से पानी हम निकाल रहे हैं लगभग उसी गति से पानी ऊपर से आ रहा है, इसके कारण जो है थोड़ी समस्या हो रही है। अभी मैनुअल तरीके से हम राहत बचाव कर्मी दल जाके ढूंढ कर रहे हैं, खोजबीन कर रहे हैं, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल पाई है अभी तक।
1: अभी सबसे पहली प्राथमिकता 3 लापता लोगों को खोजने की है, लेकिन टनल के अंदर बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि करीब 1 किलोमीटर के इलाके में पानी भरा है और कहीं कहीं तो पानी 5 फीट तक गहरा है। पानी में बहुत सी गाद और मलबा है, कीचड़ है, इसी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में समस्याएं हैं। पहली कोशिश यही है कि टनल के अंदर से पानी को किसी तरीके से बाहर निकाला जाए।
4: कठिनाई जैसे मैं बता रहा हूं आपको कि पानी का एरिया जो है बहुत लंबा है, लगभग 1 किलोमीटर एरिया है जो पानी से भरा हुआ है, और उसमें हाइट जो है 3-4 फीट तक जा रही है, कहीं कहीं पर 5 फीट भी है। तो उस पर्टिकुलर एरिया में 1 किलोमीटर लंबा प्लस 3-4 फीट गहरा पानी है, और वो केवल पानी नहीं है, वो स्लजी वाटर है। तो उसमें जो सर्च करने के लिए दिक्कत आ रही है, बट हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा ट्रूप्स को यूज़ करके और मैक्सिमम एरिया जो है मैनुअली सर्च करके क्लियर कर रहे हैं।
5: क्या लग रहा है कब तक ये हो पाएगा, या फिर पानी कैसे भर रहा है इतना ज़्यादा पानी?
4: जी देखिए, मोस्ट फेवरेबल कंडीशन यही होगी जब पानी कम होगा। तो पानी कम करने के लिए जैसा मैंने बताया, संस्थान ने जो मोटर्स लगाई हैं वो सही कार्रवाई करें। बट हो क्या रहा है कि जो इसका दूसरा सोर्स है जहाँ से ये कोलैप्स हुआ है, वहाँ से पानी कंटिन्यूसली आ रहा है, तो जितना हम निकाल रहे हैं उतना ही आ रहा है। तो ये कंडीशन थोड़ा सा हमारे लिए डाइसी हो रही है इस वजह से।
5: कितनी टीम मेंबर NDRF यहाँ पर लगी हुई है?
4: देखिए NDRF की यहाँ पर 3 टीमें वर्तमान में आ रखी हैं, और तीनों टीमें जो है रोटेट होकर अपनी कार्रवाइयाँ कर रही हैं।
1: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी घटनास्थल पर पहुंचे और टनल के अंदर जाकर रेस्क्यू का काम उन्होंने देखा। घायलों से मुलाकात की, अब वो कह रहे हैं कि राज्य की सुरंगों की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि सुरंगों में लगातार हादसों को कैसे टाला जाए।
6: एक और निवेदन, टनल दुर्घटनाएं हमेशा हो रही, सिलक्यारा हुई, ये हुई, इससे पहले टनल की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार क्या संबंधित एजेंसी को कोई निर्देश देगी?
7: बिल्कुल निर्देश देंगे, और हमारे लिए जो भी कार्मिक जो भी काम करने वाले हैं उनकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। बिना सुरक्षा के, जब तक पूरी सुरक्षा के प्रबंध नहीं हो जाते तब तक इन कामों को भी आगे नहीं बढ़ाएंगे।
1: गढ़वाल से BJP के सांसद अनिल बलूनी भी पहुंचे, टनल के अंदर गए, पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन देखा। सबसे ज्यादा समस्या यही आ रही है कि टनल में लगातार पानी भर रहा है, बड़े बड़े पंप लगाकर पानी को निकाला तो जा रहा है, लेकिन जितना पानी निकलता है उतना फिर से सुरंग में आ जा रहा है।
8: वाकई बड़ी मुश्किल परिस्थिति में अंदर काम हो रहा है, और आप सब लोग जानते हैं अभी ऑपरेशन जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है, और हमारे NDRF और SDRF के जवान और बाकी जो हमारा स्थानीय प्रशासन है सब मिलकर अंदर, क्योंकि काफ़ी पानी भरा हुआ है और काफ़ी मुश्किल परिस्थितियाँ हैं, उन सब में काम कर रहा है। अभी बताया जाता है कि 3 लोग मिसिंग की जानकारी जो है वो सब है, हम अंदर देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति मिल सके हमें, और सारे लोग बातचीत कर रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं। अभी प्रशासन पूरी ताकत से लगा है, आगे तक जाने की तैयारी में है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में आगे जाके कुछ अच्छी सूचना भी हम लोगों को मिल सके तो अच्छी बात है।
1: इन हालात में सबसे ज्यादा समस्या मौसम को लेकर भी है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, बारिश रुकी नहीं रही। ऐसे में डर ये भी है कि कहीं और ज्यादा भूस्खलन न हो जाए। अभी तो पहली प्राथमिकता उन 3 लापता मजदूरों को खोजने की है।
9: आ जाओ।
1: कमल नयन सिलोड़ी, चमोली, आज तक।
0: सवाल ये भी है कि टनल्स में सुरक्षा के पूरे इंतजाम क्यों नहीं है? क्या सरकार राज्य भर में चल रहे ऐसे प्रोजेक्ट्स के सिक्योरिटी ऑडिट नहीं करा सकती? पिछली बार जब उत्तरकाशी के टनल में 41 मजदूर 17 दिनों तक फंसे हुए थे, तब भी सरकार ने कहा था कि ऑडिट होगा। अब ये हादसा हुआ है तो फिर सरकार कह रही है कि वो ऑडिट करेंगे, लेकिन कब करेंगे और ये हादसे कब रुकेंगे?
9: एकदम कच्ची मिट्टी और पानी आ गया, जैसे आंधी तूफान आता है हवा की तरह।
10: को जो कि भागने के लिए कहीं चांस नहीं मिले। ऊपर से जो मिट्टी धस गया ना, उसी में बहुत पूरा हादसा हो गया वहां से पूरा।
1: चमोली के पीपल कोटी सुरंग हादसे में जिंदगी बचाने की जद्दोजहद जारी। जो अंदर फंसे हैं उन्हें निकालने की कोशिश चल रही है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी की टीमें तैनात हैं, लेकिन जो लोग मौत की सुरंग से मौत को मात देकर आए हैं, अब उनसे
9: क्या सर? एकदम कच्ची मिट्टी और पानी आ गया, जैसे आंधी तूफान आता है हवा की तरह। 10 मिनट में पूरा अफरा तफरी मच गया, किसी को समझने का मौका ही नहीं मिला।
11: कितने लोग थे आप लोग टोटल?
1: चमोली सुरंग हादसे के घायलों को गोपेश्वर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, वहीं पर उनका इलाज चल रहा है। इन लोगों ने बताया कि हर रोज की तरह गुरुवार को भी मजदूरों की टोली सुरंग में घुसी और अपने काम में जुट गई, लेकिन तभी तेज आवाज से सुरंग का एक हिस्सा टूट गया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, मलबे के साथ साथ सुरंग में पानी भर गया।
10: बहुत बहुत खराब स्थिति थी वहाँ पर, जो कि बहुत तेज से आंधी तूफान आ रहा था, जो कि ऊपर से जो मिट्टी धस गया ना, उसी में बहुत पूरा हादसा हो गया वहाँ से पूरा। आदमी को जो कि भागने के लिए कहीं चांस ही नहीं मिला। जो आदमी आया वो पूरा गंभीर चोट से आया।
11: आपके साथ के कितने लोग थे?
10: मेरे साथ के तो कोई नहीं थे, मैं तो अकेला उड़ीसा का हूँ।
1: मजदूरों की

0: EU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: I wake up wearing someone else again.

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: बिजली का बिल पेड
2: तो है, मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
3: कैसे?
2: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो
3: इतना माही वे।

उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली और फिर रैली स्थल का शुद्धिकरण अब नए सियासी रण की वजह बन गया है। पहले मुद्दा संसद में उठा, सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हुआ, अब इसका असर यूपी की सियासत तक भी पहुंच गया है। सूबे में बनते चुनावी माहौल के बीच विपक्ष को दलित नेता के अपमान के आरोप के बहाने बीजेपी पर हमले का बड़ा मौका मिल गया है। इस घटना का जिक्र कर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने सोशल मीडिया पर लिखा, उत्तराखंड के हल्द्वानी में हाल ही में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम के बाद उनके मंच का दलित होने की वजह से शुद्धिकरण किया गया। ये मामला अति निंदनीय और चिंतनीय है। वहाँ की सरकार बिना कोई देरी किए हुए जातिवादी एवं सामंती तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजे। मायावती के हमले से साफ है कि इस मुद्दे पर यूपी में दलित राजनीति जोर पकड़ती दिख रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले हर पार्टी दलित वोटरों को साधने के प्रयास में लगी है और इसकी बड़ी वजह भी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में दलित करीब 22% है। सियासी तौर पर ये दो हिस्सों में बटा दिखता है। पहला हिस्सा जाटव वोटरों का है जो करीब 14% है, जबकि सूबे में गैर जाटव दलित वोटरों की आबादी तकरीबन 8% है। एक समय यूपी के दलित वोटों पर बीएसपी की पकड़ बेहद मजबूत थी, लेकिन चुनाव दर चुनाव बीएसपी कमजोर हुई। यही वजह है कि 2022 विधानसभा चुनाव में दलित वोट बटा नजर आया। बीते विधानसभा चुनाव में गैर जाटव दलितों की बड़ी संख्या बीजेपी के साथ गई और तब कुछ हिस्सा समाजवादी के पाले में भी गया था। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में दलित वोटों के पैटर्न में बड़ा बदलाव दिखा। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को गैर जाटव दलित वोटों का बड़ा समर्थन मिला। यही वजह है कि विधानसभा चुनाव में सभी पार्टी दलित वोटों को साथ लाने के लिए दम लगा रही हैं। और ऐसे में खड़गे के रैली स्थल के शुद्धिकरण ने विपक्षी दलों को बड़ा मौका दे दिया है। जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाया तो बीजेपी ने इसकी गंभीरता को समझते हुए इसकी निंदा की, साथ ही जांच और एक्शन की भी बात कही। हालांकि बीजेपी की ओर से भरोसे के बाद भी सियासत बढ़ती जा रही है। इस बीच रामलीला मैदान का शुद्धिकरण कराने वाले श्रीराम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास का बयान भी सामने आया है। न्यास के अध्यक्ष गिरीश पांडे ने आरोप लगाया कि कांग्रेस जाति के नाम पर सियासत के लिए झूठे आरोप लगा रही है। सियासत के बीच शुद्धिकरण वाले इस मुद्दे से जबरदस्त सियासी तूल पकड़ लिया है और इस संग्राम का सर सीधे यूपी की दलित राजनीति पर नजर आ रहा है। आज तक ब्यूरो।

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: जब से पेपर लीक के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी ने देश भर में आंदोलन किया है, तब से देश की सियासत से लेकर न्यायपालिका तक जेन ज़ी इंपैक्ट देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद की नासलर यानी नेशनल लॉ स्टडी एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी से जुड़े विवाद पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को फटकार लगाई है। CJI सूर्यकांत ने कहा है कि भले ही छात्रों का फैसला गलत हो या उन्हें किसी ने गलत सलाह दी हो, फिर भी उन्हें अपनी बात रखने और विरोध करने का अधिकार है। जस्टिस सूर्यकांत ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के उस सर्कुलर पर भी नाराजगी जताई जिसमें नासलर के 2026 बैच के लॉ ग्रेजुएट्स का वकील के तौर पर एनरोलमेंट रोकने को कहा गया था। CJI ने कहा कि ये मेरे और छात्रों के बीच का मामला है, इसे मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। बार काउंसिल इसमें दखल देने वाला कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस भी जारी किया और यूनिवर्सिटी के किसी छात्र या फैकल्टी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया। विरोध के बाद बार काउंसिल ने यूटर्न ले लिया है। छात्रों की नाराजगी CJI की पिछले महीने की एक टिप्पणी को लेकर थी। CJI सूर्यकांत ने कहा था, कॉकरोच की तरह ऐसे युवा हैं जिन्हें इस पेशे में रोजगार नहीं मिल रहा है। इनमें से कुछ मीडिया, कुछ सोशल मीडिया और कुछ RTI और दूसरे तरह के एक्टिविस्ट बन रहे हैं। ये हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। ये टिप्पणी दिल्ली में नीट प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़ी याचिका की सुनवाई के दौरान की गई। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 13 अगस्त को सभी स्टेट बार काउंसिलों को निर्देश दिया था कि नासलर के 2026 बैच के किसी भी ग्रेजुएट को अगले आदेश तक वकील के तौर पर एनरोल ना किया जाए। साथ ही यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से 3 दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी गई थी। आदेश जारी होने के कुछ घंटे बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपना रुख बदल लिया। काउंसिल ने कहा कि नासलर के 2026 बैच के ज्यादातर छात्र निर्दोष हैं और वो CJI के अनादर वाले किसी भी अभियान में शामिल होने के इच्छुक नहीं थे।
2: कुछ गलत रिपोर्टिंग हो गई, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन मिल गए तो एक लेटर भेज दिया गया नालसर को, लेकिन 30 मिनट के अंदर जैसे ही सही बातों का पता चला, स्टूडेंट्स के इनोसेंस का पता चला, तुरंत उस लेटर को वापस ले लिया गया। आधी रात को बार काउंसिल की मीटिंग हुई, सभी मेंबर्स ने डिस्कस किया, पूरा डेलिबरेशन हुआ उस पर, और उसके बाद पूरा का पूरा मामला जो है सो क्लोज कर दिया गया। तो मैटर स्टैंड्स फुल्ली क्लोज्ड नाउ। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को ये बात नहीं बताई गई शायद कि मामला जो है सो उसको क्लोज कर दिया गया, वो लेटर पूरी तरह वापस ले लिया गया, कोई ऑर्डर नहीं है, स्टूडेंट्स जैसे चाहें वो जहां चाहें अपने को एनरोल कराएं। अब सुप्रीम कोर्ट को हम एक्सप्लेन करेंगे।
1: सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी बार काउंसिल के एक्शन पर सवाल उठाए थे। आज तक ब्यूरो।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: विशेष में आज मेरे साथ इतना ही, आगे देखिए खबरदार श्वेता सिंह के साथ।
1: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय वेक्टर्स, भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले वाटर टैंक्स, टंकी मतलब वेक्टर्स।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
3: इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: पर राष्ट्र के नाम संदेश, विकसित भारत के निर्माण के लिए आगे बढ़ने का आह्वान, कहा युवा आबादी सबसे मूल्यवान संपत्ति। नहीं थम रहा पीएम मोदी पर राहुल गांधी के बयान पर बवाल, राजनाथ सिंह ने बताया लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरे का संकेत, विदेश मंत्रालय ने कहा आदर के साथ रखनी चाहिए कोई बात। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पर भड़की कांग्रेस, कहा पारिवारिक संस्कारों से अछूते हैं भाजपाई, इंदिरा गांधी की तस्वीर पोस्ट करने पर सियासी आर पार। अखिलेश यादव ने फिर बोला सीएम योगी पर हमला, कहा यूपी में अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार, बढ़ रहा है अन्याय। कॉकरोच विवाद पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत का बड़ा बयान, कहा मेरी बातों का गलत इरादे से गलत इस्तेमाल, युवाओं को गुमराह करने की हुई कोशिश।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 8 बज रहे हैं, वक्त है बड़ी खबरों से आपको खबरदार करने का। कल देश आजादी का 80वां उत्सव मनाने जा रहा है और आज केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 के लिए 40 सवालों की लिस्ट जारी की है। आजादी के बाद पहली बार जनगणना में जाति पूछी जाएगी। आज ही एक तरफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं कि छात्र गलत हो तब भी उन्हें विरोध का अधिकार है और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के एक मंत्री कहते हैं कि छात्रों पर पैलेट गन चलना गलत नहीं। इन सभी खबरों से खबरदार करेंगे, लेकिन उससे पहले 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाते देश में लोकतांत्रिक तरीके से अधिकार मांगते जेन अल्फा की खबरों से आपको खबरदार होना जरूरी है। जिनके हाथों की तनी मुट्ठी और नारे लोकतंत्र की मजबूती का संदेश देते हैं, सरकारी व्यवस्था को इस बात का एहसास कराते हैं कि आवाज अनसुनी नहीं की जा सकती।
1: 80वें स्वतंत्रता दिवस से पहले गूंजते नारे लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। ২০২৬ में आजादी का जश्न मनाते भारत के बच्चे हक मांगने से नहीं डरते हैं।
2: क्या हो गया? आज मैंने हम लोग से
3: टीचर है कोई यहाँ पे?
2: गेट लगा दिए।
3: पहला काम करो, सुनो।
2: यस सर,
3: यस सर। तुरंत साइड में आओ, अंदर चलो, बात करते हैं, ट्रैफिक खोलो, ठीक है? तुरंत मेरे साथ आओ, चलो।
1: 15 अगस्त 2026 ऐतिहासिक है, जहां बच्चे अधिकारियों की आंख से आंख मिलाकर अधिकार मांगते हैं।
4: 4 साल हो गई, 3 ईयर स्कूल बने हुए, मात्र 5 टीचर है।
5: जो भी थायर ग्रेड की
4: सुनवाई नहीं की गई। 4 साल हो गए खाते में। कलेक्टर को मैंने खुद अपने लिखित में कागज दिया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।
5: सही बात।
4: अगर आपके बन जाते तब भी आप यही सुविधा रखते क्या?
1: एक तरफ लगता है कि आजादी के 80 साल बाद भी स्कूल व्यवस्था राज्यों में ढुलमुल है, दूसरी तरफ अच्छा लगता है कि लोकतांत्रिक रूप से विरोध करना बच्चे जानते हैं।
6: हमारे खाने के लिए थाने में सुड़ी निकलती है, मेढक निकलता है, छिपकली निकलती है, प्रिंसिपल पास लेकर जाओ। इनका ये होता है कि इस मौसम में निकलता है, मैं क्या कर सकता हूँ। दूसरी बात, तुमने खुद डाला होगा और कहे भी दें तो कहते हैं दूसरा रखवा लो। ऐसा कि हम लोग मतलब जानवर से बेबत्तर है ये करते हैं हमारे लिए।
1: बच्चों के नारे इस बात का एहसास कराते हैं कि आजादी का असली मतलब अपनी आवाज को बुलंद करना है।
7: हम हमारा अधिकार मांगते हैं, किसी से भी मांगते
4: हैं। जोर जोर के चक्कर में
1: स्वतंत्रता का 80वां महोत्सव खास है, क्योंकि अब की जेन जी और जेन अल्फा की बुलंद आवाज है।
8: कल जो आपने प्रदर्शन किया था उसमें कितने रुपए किराया लिया जा रहा था पहले आपसे? और आज कितने रुपए किराया लिया जा रहा है? आपसे भी 10 रुपए। सभी का किराया मान के चलने तो कम हुआ सभी से, ठीक है।
1: लाल किले पर लहराता तिरंगा, वो पल जब देश हमेशा गर्व से भर जाता है, याद करता है स्वतंत्रता के सेनानियों को। भारत और भारतीयता के विश्वास से उत्प्रोत हर नागरिक के लिए आजादी का दिन बहुत विशेष महत्व रखता है, लेकिन इस बार ये उत्सव और भी विशेष है, जहां भारत के भविष्य की बुलंद होती आवाजें, लोकतांत्रिक रूप से रखी जाती मांगे, अड़ने की जगह बिना डरे हक के लिए लड़ने वाली आदत इस भरोसे को मजबूत करती है कि भारत का बच्चा बच्चा अपने अधिकार और कर्तव्य दोनों को समझ रहा है। आज इसीलिए एक एक करके हम आपको ऐसी तस्वीरों से खबरदार करेंगे। अधिकार और कर्तव्य को समझते भारत के जेन अल्फा की पहली गवाही लखनऊ से आई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मोहान रोड पर जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय है। प्रदेश के समाज कल्याण विभाग के अधीन आने वाले इस स्कूल में छात्र संभव है कि देश में जंतर मंतर आंदोलन से शुरू हुए प्रदर्शन के बाद अपना हक मांगने वाली लकीर पर चलते हुए आगे बढ़े। जहां हॉस्टल में खराब खाना, खाने में बार बार कीड़ा निकलना, बीमार होने पर इलाज की व्यवस्था न होना और शिक्षकों की कमी को लेकर छात्रों का दावा है कि स्कूल प्रशासन ने उनकी शिकायत पर कान नहीं दिया तो ये सड़क जाम करने निकल पड़े। लखनऊ में छात्रों की तरफ से सड़क जाम की खबर आते ही पहले जहां छात्रों को हटाने के लिए पुलिस दिखती रही थी, वहां अब की बार शायद पहली बार ऐसा देखा सुना जा रहा है जब कोई मंत्री तुरंत समस्या सुनने पहुंच गया। जैसे असीम अरुण उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री हैं, प्रदर्शन करते छात्रों के बीच पहुंचकर सीधे कहते हैं चलो तुम्हारी बातें सुनते हैं, शिकायत दूर करते हैं,
3: अंदर चलो बात करते हैं, ट्रैफिक खोलो, ठीक है, तुरंत मेरे साथ आओ।
1: इसके बाद तुरंत मंत्री असीम अरुण के साथ छात्र भीतर आते हैं। यहीं आज हम आपको दिखा रहे हैं कि छात्र संविधान से मिले अधिकार और कर्तव्य दोनों को समझ रहे हैं, जो अपने अधिकार के लिए प्रदर्शन करने का अधिकार भी जानते हैं और मंत्री की तरफ से समस्या सुने जाने की बात आते ही तुरंत रास्ता भी छोड़ देते हैं और फिर समाधान की बात आती है।
3: जो कमियां हैं उनको दूर काफी हद तक किया हम लोग ने, लेकिन मैं स्वयं अभी संतुष्ट नहीं हूँ, हम लोग को कमियों को और दूर करना है। पहली चीज जितने स्टाफ सारे हमारे क्वार्टर बन गए, हमारे ट्रांजिट हॉस्पिटल बन गए, टीचर्स 24 घंटे यहाँ पे रहेंगे, कोई हाँ फार्मासिस्ट भी और भी नॉन टीचिंग स्टाफ जिसके लिए आवास अवेलेबल है। ये आवासीय विद्यालय है, केवल बच्चों का नहीं स्टाफ का, और जिसको रहने में समस्या आ रही है वो अपना इस्तीफा देते घर।
1: लोकतंत्र की यही ताकत है जो इस स्वतंत्रता दिवस को विशेष बनाती है। जहाँ स्कूली शिक्षा का बुनियादी ढांचा लचर है उसे मजबूत करने की मांग खुद बच्चे कर रहे हैं। अधिकार और कर्तव्य को समझते भारत के जेन अल्फा की दूसरी गवाही भी उत्तर प्रदेश से आई है। इसके लिए अब कन्नौज चलते हैं।
5: कई दिनों से समस्याएं थी जिनको लेकर हम झेल रहे थे, सह रहे थे, लेकिन अब कुछ ज्यादा ही ओवर हो गया था
3: जी।
5: तो उसके लिए हमने ये किया क्योंकि परेशान हो चुके थे, और एक नहीं क्लास 6 के जूनियर से लेकर क्लास 12 के बच्चे सभी परेशान हैं।
1: कन्नौज के जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले ये वो जैन अल्फा हैं जो अपनी समस्याओं के निदान के लिए सड़क पर नहीं उतरे बल्कि खुद को ही एक कमरे में बंद कर लिया। इनका वीडियो वायरल हुआ, मीडिया पहुंचा, इन छात्रों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए मुंह ढक लिया, ये इनका अधिकार है। लेकिन अपने दूसरे अधिकारों के लिए इन्होंने खुद को क्लास में लॉक करने का ऐसा तरीका लगाया कि प्रशासन को जागना पड़ा। पहले शिकायत सुनिए फिर समाधान देने पहुंचे जिलाधिकारी को।
5: मैं इसमें खाने की सही व्यवस्था नहीं होती, हाउस में लाते हैं, खाने की व्यवस्था इसलिए नहीं क्योंकि 550 बच्चे हैं वहाँ पर, ना तो फैन लगा है ना फैन, वैसे क्या नाम गैस फैन नहीं लगे हैं, तो सफोकेशन होती है, खाते हैं वहाँ पर, बच्चे भी नहीं बैठ पाते, 550 बच्चे हैं, इतनी जगह नहीं है, तो हम लोग हाथ में ले आते हैं तो ये कहते हैं कि तुम लेटरिन में खाते हो, उसी का सूंघते हो, उसी में खाते हो, उसी में बैठ कर खाते हो, गंदे गंदे सब खाना, ऐसा कच्चे चावल रखे हैं हम दिखाते हैं, चावल कच्चे बिल्कुल जो गले से नीचे ना होते। हम लोग करीब 100 से 100 बच्चे हैं।
3: कितनी देर से बंद है
5: सर? हम कल
3: 4 बजे से,
5: कल शाम से हम लोगों ने खाना नहीं खाया।
3: स्कूल प्रशासन की सूचना दी थी इस बात की आप लोग बंद है अंदर?
5: आए विद्यालय, हमारी डिमांड है कि डीएम सर आए और हमसे बात करें आकर।
9: इस विद्यालय में बच्चों को कुछ अपनी कठिनाइयां थीं जिसमें हम लोग आज गए और उनके बीच वार्ता की, जहां वो रह रहे थे उनके हॉस्टल में उन्हीं के बीच में हम लोग बैठे। सभी बच्चे अनुशासित हैं, अच्छे बच्चे हैं और मेरिट में ये लोग सेलेक्ट होकर यहाँ आए हैं। विधिवत रूप से उनको सुना गया है, जो उनकी कठिनाइयां थीं उनके बारे में हम लोग दूर करेंगे उनको, और सरकार हर तरीके से विद्यार्थियों के साथ है और मेधावी विद्यार्थियों के साथ भी है, किसी प्रकार की कोई कठिनाई लोगों को नहीं होने देंगे।
0: कहीं नारा लग रहा है कि कलेक्टर साहब का आना को आना होगा, कहीं नारे लगाए जाते हैं कि मांगे हमारी सुननी होंगी। ये वो बच्चे हैं जिन्हें नागरिक शास्त्र का पाठ पढ़ाया जाता है, लेकिन ये पहली बार उन पाठों का प्रयोग भी कर रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने आंदोलन के बारे में पढ़ा है लेकिन पहली बार खुद आंदोलन कर रहे हैं। अब दो चीजों की जरूरत है, पहली ऐसे हर आंदोलन में छात्रों की मांग सुनी जाए, उनकी बातें पूरी की जाए, दूसरी जरूरत यह है कि सरकारें देखें कि आखिर क्यों अब भी स्कूलों की हालत खराब है, टीचरों की कमी है, इन लापरवाही के जवाबदेहों पर कार्रवाई हो।
1: अधिकार और कर्तव्य को समझते भारत के जैन अल्फा की तीसरी गवाही राजस्थान के अलवर से आई है।
4: 4 साल हो गई 3 स्कूल बने हुए, मात्र 5 टीचर है,
10: जो भी थर्ड ग्रेड के
11: जो भी थर्ड ग्रेड के
0: अधिकारियों के सामने मर्दान बनकर अपने हक को बुलंद करती एक छात्रा बोलती और तभी
4: मजाक बना रखा है स्कूल को ना इसमें बैठने लायक एक भी कमरा है कितने हम कमरे
0: ये बच्चे चीख नहीं रहे, बस उन अधिकारियों के कानों में सामने खड़े होकर अपनी आवाज पहुंचा रहे जो एसी कमरों से अब तक बहुत कम निकलते रहे, जो फाइलों में ऑल इज वेल लिखते रहे, उन्हें अब सुनना भी पड़ रहा है, बदलाव करना भी पड़ रहा है।

0: पुलिस की गाड़ी भी आ चुकी है और पुलिस की गाड़ी आ चुकी है और
1: जिस मानसून सत्र में हंगामे की वजह से संसद का कामकाज खुल गया, वहाँ इस मानसून में राजस्थान के अलवर में होता यह हंगामा कामकाज धुलने का नहीं, कामकाज को सुधारने का। ये बच्चे अलवर जिले के थाना गाजी में जोधावास गांव की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के हैं, जो कुछ बड़ा या अलग नहीं मांग रहे, बस ये चाहते हैं स्कूल दिया है तो सुरक्षित क्लासरूम हो, टीचर हो, स्कूल आने का रास्ता साफ हो, सड़क बने।
2: हमारी स्कूल को सीनियर हुए 4 साल हो गए, मात्र 5 टीचर है, जो थर्ड ग्रेड के जो बड़ी सीनियर क्लासों को पढ़ाते हैं, सेकंड ग्रेड में बस मात्र 1 टीचर है और जिसको भी कुछ भी होगा जो 400 तक है और
3: हमारे विद्यालय में विद्यार्थियों को पहुंचने के लिए अच्छा रास्ता है, पुल हमारे जो सहपाठी है वो नदी क्रॉस करके आते हैं, तो हम चाहते हैं कि उनको नदी क्रॉस करने के लिए पुलिया का निर्माण किया जाए।
1: प्रदर्शन के बाद अधिकारियों ने पहले यहां तुरंत 7 टीचर और लगाकर शिक्षकों की कमी को पूरा किया, लेकिन इसके बाद भी धरना खत्म नहीं होता।
4: सभी से वार्ता की गई, 4 घंटे वो रुके, तो पहले तो ये है कि वो एक सीनियर स्कूल है, 5-6 अध्यापक थे, तो उसकी वजह 7 अध्यापक वहाँ और लगा दिए मौके पर ही, और 13 अध्यापक अब वहाँ 170 बच्चों के ऊपर हो गए।
1: बच्चे पूरा हिसाब चाहते हैं। इनके स्कूल के क्लासरूम की हालत देखिए, जहाँ पढ़ना खतरे से खाली नहीं, यहाँ बच्चे बाल बाल बचते हैं जब एक क्लासरूम में हादसा हो जाता है, इसीलिए धरना देना जारी रखते हैं। अधिकार और कर्तव्य को समझते भारत के जैन अल्फा की चौथी गवाही मध्य प्रदेश के उज्जैन से आई। छात्राओं के नारों की गूंज उज्जैन में गूंज रही, 700 से ज्यादा बच्चियां उज्जैन के सर्राफा कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हैं, जो अभी महाकाल मंदिर के पास जयसिंहपुरा में चलता है। अब इनके स्कूल को संदीपन विद्यालय में मर्ज किया जा रहा है, दलील ये कि स्कूलों की गुणवत्ता और शिक्षा में सुधार लाया जाएगा। छात्राओं का कहना है कि अब जिस स्कूल के साथ मर्ज किया जा रहा है वहां की दूरी ज्यादा है, रास्ते में इन्हें दिक्कत होगी, इसीलिए कलेक्टर दफ्तर के बाहर आकर धरना दे दिया। कलेक्टर शिकायत सुनने आए नहीं, जिला शिक्षा अधिकारी को भेज दिया।
5: स्कूल जयसिंहपुरा में और हमारा स्कूल शिफ्ट हो रहा है, हम इतनी दूर नहीं जा सकते, हमारे मम्मी पापा हमको परमिशन नहीं देंगे, वो बहुत दूर है और उधर का इलाका भी बहुत मतलब बहुत खराब है, हम कैसे जाएंगे।
6: लड़कियां गांव से आती है 10-10 किलोमीटर दूर से यहां तक, और छोटी और इतनी दूर से अगर वो दाऊद खेड़ी जाएंगे तो कब पहुंचेंगी, रात को 10 बजे। अगर बीच में अगर कोई दुर्घटना हो गई उनके साथ तो जिम्मेदार क्या कलेक्टर रहेगा या कोई और रहेगा।
5: हमारे मम्मी पापा ने बोल दिया अगर सराफा स्कूल में दावत खेड़ी जाएगा तो हमें पढ़ाएंगे ही नहीं वो बिल्कुल भी।
7: अभी एकदम निर्णय नहीं होगा कि वहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, शासन के भी निर्देश है कि जिला स्तरीय मॉनिटरिंग समिति निर्णय ले, तो जिला स्तरीय मॉनिटरिंग समिति की बैठक शीघ्र होने वाली है जिसमें पालकों के प्रतिनिधि को सूचित किया जाएगा, वो भी आएंगे और वो भी अपना पक्ष रखेंगे, उसके बाद जो निर्णय होगा वो मॉनिटरिंग समिति लेगी।
1: देश के तमाम राज्यों में होते ये प्रदर्शन इस बात को साबित करते हैं, सरकारों की तमाम कोशिश के बाद व्यवस्था बुनियादी जरूरतों को स्कूली ढांचे में पूरा करने में नाकाम है, जिसकी वजह से अब बच्चों को मैदान में उतरना पड़ रहा है।
8: जैन अल्फा के इन बच्चों को क्यों आंदोलन करना पड़ रहा है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण उत्तर प्रदेश के एक जगह के 2 स्कूलों से हम आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटा हुआ इलाका है मोहनलालगंज, जहां के 2 प्राइमरी स्कूल में आज तक संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव पहुंचे। इन 2 स्कूलों के बीच बहुत दूरी नहीं है, लेकिन स्कूल में मौजूद संसाधनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक स्कूल में LED प्रोजेक्टर पर पढ़ाई हो रही है, दूसरे स्कूल का ब्लैक बोर्ड तक घिस चुका है। एक स्कूल में साफ सफाई से मिड डे मील आता है, दूसरे स्कूल में टॉयलेट तक में पानी नहीं है, यानी कमी कहीं ना कहीं ऐसी है जहां सारे स्कूल एक जैसे नहीं हो पा रहे हैं। इसकी वजह से बच्चे परेशान होते हैं और सवाल है कि एक स्कूल में जब सब सुविधा पहुंच रही है तो दूसरे में क्यों नहीं।
9: आप तस्वीरों में देखें, ये है प्राथमिक विद्यालय कुशमौरा, और हम यहाँ जब दाखिल होते हैं तो यहाँ साफ सफाई देखने को मिलती है, और शायद ही आपने किसी बेसिक शिक्षा स्कूल में टाइल्स लगे देखे होंगे, आपको यहाँ पर टाइल्स लगे नजर आएंगे। यहाँ कोई खुदरी जमीन, मिट्टी या खड़ंजा, ईंट पत्थर नहीं है यहाँ पर। प्रॉपर आप देखें तो एक तरीके से ये पूरे टाइल्स यहाँ लगे हुए हैं। इसके अलावा ये प्रिंसिपल रूम है। इसके अलावा आपको मैं क्लासरूम में ले जाऊंगा और आप खुद चौंकेंगे कि क्या ये सरकारी स्कूल है। आइए मेरे साथ, ये देख सकते, आप अंदर आते हैं तो यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर एक क्लासरूम चल रही है, तमाम छोटे छोटे बच्चे हैं अपने क्लास पढ़ रहे हैं, साइंस का ये सब्जेक्ट है, इनके पास किताबें हैं। और अगली तस्वीर है इस प्रोजेक्टर की, ये प्रोजेक्टर है
10: जी।
9: ये प्रोजेक्टर है और ये एलईडी
10: स्मार्ट बोर्ड
9: है। तो ये एलईडी स्मार्ट बोर्ड है, आप समझे कि कितना आगे बढ़ सकते हैं अगर चाह लें। अब आपको हम यहाँ ला रहे हैं, यहाँ पर भी क्लासरूम चल रही है और ये देखेंगे तो एक प्रोजेक्टर के माध्यम से ये जो टीचर है वो पढ़ा रही हैं। ये एक सब्जेक्ट है जिसको वो पढ़ा रही हैं। आकार के आधार पर वर्गीकरण कैसे किया जाता है इस प्रोजेक्टर के माध्यम से। ये बड़ी बड़ी मशीन्स आप देखिए यहाँ पर, ये प्रोजेक्टर है, यहाँ पर ये मशीन्स लगी हुई हैं। मैं क्योंकि बीच में आ गए तो मेरी भी तस्वीर इसमें पीछे से आ गई। प्रोजेक्टर्स का ये काम होता है और ये कोई कॉन्वेंट स्कूल नहीं है। हम इस वक्त मोहनलालगंज के मीरानपुर प्राइमरी स्कूल आए और जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ आपको गंदगी का अंबार दिखाई पड़ेगा। पहले आपको ये दिखा देता हूँ, ये एंट्री पॉइंट है मीरानपुर सरकारी स्कूल का, आप देखें, और आप बाहर की तरफ देखेंगे ये स्कूल का एंट्री पॉइंट है। सामने दो गाड़ियां लगी हुई हैं और ये देखिए सामने एक बड़ा सा नाला, तालाब इसको क्या कहें, यहाँ घूमते जानवर। ये गंदगी कितनी बीमारियों का जड़ जो है, ये पूरा का पूरा तालाब नुमा नाला है। आप वॉशरूम कैसे आते हैं, वॉशरूम आने का रास्ता ये है, इतनी बड़ी बड़ी घासें हैं, इतने पुराने दरवाजे हैं और काफ़ी ज़्यादा बदबू है। इस इमारत की आप देखिए, ये देखिए ये हालत सरकारी स्कूल के वॉशरूम की है। ये कब गिर जाएगा, ईंट तक अंदर की दिखने लगी है, जाले यहां लटके हुए हैं। मैं पानी अगर पीना चाहूं तो इसमें पानी नहीं निकल रहा है, कोई पानी नहीं है। सफाई के नाम पर ये चींटियां हैं जो छोटे छोटे बच्चों को कैसे काटेंगी, कितना काटेंगी कोई नहीं जानता। यहां पर एक नल लगा है जहां पर टैप नहीं है, यानी कि इस पे जो नली होती है वो नहीं है। यहाँ पर तो टोटियाँ ही गायब हैं, एक दो तीन। ये गर्मी का मौसम है फिलहाल, यहाँ पर एक क्लास चल रही है। यहाँ की ज़मीन किस तरह की है, क्या किस तरह की इमारत पुरानी है, नीचे देखिए आप, सारी जो नीचे की ईंट हैं वो सब दिखाई पड़ रहे हैं। ऊपर दिखा दें क्लासरूम की हालत इस वक्त क्या है। टीचर्स जो हैं, टीचर्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं, टीचर्स दिन रात अपना एक करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं जिससे छोटे छोटे बच्चों का भविष्य संवरे। ये जितनी लोग हैं ये भी दिन रात एक करके पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन इनकी मेहनत का क्या जब इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है।
11: अब आज के बड़े राजनीतिक बयान वाली खबर से खबरदार कर दें, आज विभाजन विभीषिका दिवस है और इसी के बहाने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हिंदू बटा था इसीलिए भारत बटा था, बांग्लादेश पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं तो भारत के नेता चुप्पी साध लेते हैं। राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर उन्होंने कहा कि कालनेमियों से सनातन धर्म को खतरा है।
12: 14 अगस्त 1947 को आजादी के एक दिन पहले तब केवल हिंदू और सिख ही नहीं कटा था, तब भारत भी कटा था। आज से ठीक 79 वर्ष पहले सनातन राष्ट्र के रूप में जो भारत आदिकाल से एक इकाई के रूप में रहा हो, वह भारत कटा तो हिंदू भी कटा। आज भी जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर निर्दोष हिंदू मारे जाते हैं, काटे जाते हैं, और ये हर व्यक्ति जानता है कि मरने वाला जो हिंदू है ये सभी दलित समुदाय से है, एक भी जवान भारत के अंदर उन राजनीतिज्ञों के मुंह से नहीं निकलती है जो भारत के अंदर एक होने वाली किसी घटना में हाय तोबा एक करके पूरे देश के अंदर घूमते हैं। पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। वहां की घटना पे कोई शब्द नहीं निकलते।
11: और अब बात भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत के उस बयान की करते हैं जिस पर लंबा चौड़ा विवाद हो गया था। उसी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि मेरी बातों का गलत इरादे से गलत इस्तेमाल हुआ और युवाओं को गुमराह करने की कोशिश हुई।
10: जो जिस टिप्पणी की बात आपने की वो टिप्पणी भी इसी प्रकार से दुरुपयोग हुई है। जो नहीं कहा गया था उसको बोला जाता है कि ऐसा बोला गया, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। विशेष रूप से देश के युवाओं को दिग्भ्रमित करने का एक ये बड़ा क्रूर प्रयास है। वो मैं कभी सोच ही नहीं सकता जिनके बारे में जो बात कही गई, तो वो ये सोशल मीडिया ने के कुछ लोगों ने, उसमें सोशल मीडिया में भी सभी नहीं है पर कुछ लोग हैं जो दुर्भाव से और किन्हीं अपने और कारणों से उन्होंने उसको मिसकोट किया और गलत तरीके से उसका दुरुपयोग किया है।
11: एक तरफ आज ही सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि भले ही छात्रों का फैसला गलत हो या उन्हें किसी ने गलत सलाह दी हो, फिर भी उन्हें अपनी बात रखने और विरोध करने का अधिकार है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री दिल्ली के प्रदर्शन में पैलेट गन चलने को जायज ठहराते हैं।
13: पैलेट गन चलने का मामला सामने आया है, एक RTI में भी खुलासा हुआ है कि पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है छात्रों पर, तो इसको लेकर क्या कहते हैं आप?
14: पैलेट गन काहे के लिए दी है ये बताएं पहले। अगर कोई हिंसा करेगा, राष्ट्रद्रोही उसमें शामिल हो गए थे उस आंदोलन में, छात्र आंदोलन था, जंतर मंतर पे उन्होंने अनुशासित ढंग से अपने मांग को रखा, लेकिन जब उसमें अनावश्यक लोग शामिल हो गए जो भारतीय संस्कृति को गरिया रहे थे, भारतीय महापुरुषों को गाली दे रहे थे, भारत के भगवानों को गाली दे रहे थे और प्राइम मिनिस्टर को अमर्यादित शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, तब क्या करना चाहिए था?
13: पहले तो जायज मानते हैं आप? मैं हर चीज को जायज मानता हूं जो हिंसा की अगर करेगा, हिंसा को रोकने के लिए हर कदम जायज।
11: छात्रों की मांग को लेकर आज तक लगातार खबरदार करता है। रांची में प्रदर्शन को 21 दिन हो चुके हैं। अब आज JPSC और JSSC की भर्तियों में धांधली को लेकर नया खुलासा हुआ है। दावा है कि 14वीं JPSC परीक्षा में सेटिंग का पूरा रेट कार्ड तैयार था। सामान्य और OBC कैटेगरी के अभ्यर्थियों के से अंतिम चयन के लिए 1 करोड़ रुपए, जबकि SC ST अभ्यर्थियों के लिए 80 लाख रुपए का रेट तय किया गया था। करीब 100 करोड़ रुपए वसूलने की तैयारी थी और रकम केवल कैश में लेने की योजना थी। अभ्यर्थियों को इस नेटवर्क से जोड़ने वाले एजेंट के लिए भी हर कैंडिडेट पर 15 लाख रुपए का कमीशन तय होने की बात सामने आई है। ऐसा ही दावा JSSC CGL परीक्षा में धांधली को लेकर शिकायत दर्ज कराने वाले राजेश प्रसाद आज तक से करते हैं।

0: हमारे साथ हजारीबाग के रहने वाले राजेश प्रसाद हैं। राजेश, आपने कब सीजीएल की परीक्षा दी और पहली परीक्षा कब हुई, फिर आगे क्या हुआ, थोड़ा बताएंगे?
1: जोहार सर, और सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, जनवरी 2024 में परीक्षा हुई, पेपर लीक हुआ, हम लोग आंदोलन किए, पेपर रद्द कर दिया गया। पुनः परीक्षा हुई सर सितंबर 2024 में, पुनः उसी प्रकार से पेपर लीक हुआ जैसे जनवरी में हुआ था। इसको लेकर के हम जेएसएससी के पास हम लोग शिकायत किए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ सर। देन हमारे पास जो एविडेंस आए हुए थे मोबाइल के में, बहुत सारा डेटा आया हुआ था, उसको आधार मानते हुए हम लोग सदर थाना रांची में मेरे द्वारा कंप्लाइन किया गया, फायर किया गया। फिर भी एफआईआर ना रजिस्टर्ड किया गया, ना ही उस पर कोई कार्रवाई की गई। देन हम लोग पीआईएल किए कोर्ट में, और कोर्ट में हम लोग ये बताए कि हमारा एफआईआर ना ही किया गया है, उसको रजिस्टर्ड किया गया, ना ही उस पर कोई कार्रवाई की गई। तो उस समय के तत्कालीन चीफ जस्टिस जो थे, उन्होंने तमाम नियुक्ति प्रक्रिया को रोक लगाते हुए एफआईआर रजिस्टर्ड करने का आदेश दिए और कहा इसको एक निष्पक्ष जांच कराई जाए।
0: जब आपने रांची में कंप्लेन किया, एफआईआर किया, तो कौन सी तारीख थी? चूंकि वो कंप्लेन भी शायद आपके पास है, थोड़ा दिखाइए भी हमारे दर्शकों को और बताइए कि किस तारीख को आपने कंप्लेन का प्रयास किया था और किस थाने में किया था। जरा दिखाइए इसको सामने स्क्रीन की तरफ।
1: हाँ,
0: कैमरे की तरफ
1: उन्तीस नौ 2024 को ये एफआईआर किया गया था, सदर थाना रांची में किया गया था।
0: ये दूसरी बार जब परीक्षा हुई उसके बाद?
1: हाँ, और इसमें हमने ये आरोप लगाया था कि नेपालपुर, नियामतपुर, आसनसोल, मांडू, मंत्री रेसिडेंसी, हजारीबाग जैसे कई जगहों पर बच्चों को जेएसएससी सीजीएल का उत्तर रटवाया गया, जिसमें से सीआईडी ने अपना इन्वेस्टिगेशन में भी नेपाल एंगल को जस्टिफाई किया। नेपाल में जो पढ़ने गए थे उन पर कहा कि नेपाल जो पढ़ने गए थे उन अभ्यर्थियों को 135 आंसर मिला था, जिसमें 120 आंसर जो है हूबहू जेएसएससी सीजीएल में आया है। और यही आरोप है, ये आरोप नहीं, आपसी दो गया सीआईडी ने सिद्ध कर दिया, और इसी तर्ज पर हम लोग मांग कर रहे हैं कि जेएसएससी सीजीएल तत्काल रद्द की जानी चाहिए।
2: इसी झारखंड में गिरफ्तार हुआ अभय तिवारी अब तक सबसे बड़ा खिलाड़ी भर्ती घोटाले का बनकर सामने आया है, जिसके घर तक आज तक की टीम पहुंची, लेकिन उसके घर वाले और दूसरे लोग कोई नहीं मिला, सब फरार।
3: जेपीएससी और जेएसएससी में जो एग्जामिनेशन में धांधली होती थी और उसका जो किंग पिन था अभय तिवारी, उसका घर यही है। टीडीपीएल जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी, जिसको लेकर लगातार छात्र आंदोलन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि टीडीपीएल ने जिन जिन परीक्षाओं को आयोजित करवाया उसको रद्द किया जाए, उसका किंग पिन का यह घर है अभय तिवारी का। मूलतः वह देवघर का रहने वाला है जो बताया गया है, लेकिन ये उसका आलिशान मकान है नामकुम के जोरार गाँव में, और ये कहा जाता है कि अकूत संपत्ति उसने बनाई है। सरकारी नौकरी में वो था, अभी गोड्डा में वो बीएसओ था, लेकिन उसके पहले वो टीडीपीएल में मैनेजर था, और लगातार 22 जुलाई को जब उसकी गिरफ्तारी हुई, उसके बाद जब से वो रिमांड पे है, सीआईडी के रिमांड पे है, लगातार उससे पूछताछ चल रही है और हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। यहाँ ताले लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ ताला लगा हुआ है, और अंदर से भी, अंदर अगर आपको हम दिखाएं तो ये भी जो है इधर से भी आपको ताला लगा हुआ है। हालांकि अंदर जो है कई सारे व्हीकल्स पार्क्ड हैं, अभी भी कई सारे जो है, कई गाड़ियां जो हैं वो लगी हुई हैं, टू व्हीलर्स जो हैं वो लगे हुए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि घर में कोई है नहीं, और लगातार इसको लेकर जो है वो खुलासे हो रहे हैं यहाँ पे। और अभय तिवारी जो है उसके कई करीबियों को भी गिरफ्तार किया गया है, लगातार छापेमारियां हो रही हैं, मुंबई से गिरफ्तारी हुई, इसके अलावा जो है यहां से गिरफ्तारी हुई। अभय तिवारी के बारे में यह भी कहा गया कि 12 साल में उसने 13 अलग अलग परीक्षाएं पास की, और इसी बात की वो गारंटी देता था कि जिस तरह से वो एग्जामिनेशन को क्लियर कर ले रहा है, तो उसका क्लाउड जो है वो इनॉर्मस है, और वो जो कैंडिडेट्स है उसको भी पास करवा सकता है। उसके करीबी जो हैं वो वसूली कर रहे थे, जेपीएससी के प्रीलिम्स में अलग रेट था, सीडीपीओ का इम्तिहान हो या जेएसएससी थर्ड ग्रेड 3 और ग्रेड 4 का इम्तिहान आयोजित करता है, उसमें वो सेटिंग कराता था, अलग अलग पदों के लिए अलग अलग रेट था, और उसकी वसूली होती थी, पैसे जो हैं वो ऊपर तक जाता था, और इसी की जाँच हो रही है। परत दर परत जो है सीआईडी खोलने की कोशिश कर रहा है। अब तक जांच में 22 गिरफ्तारियां हो चुकी है, जिसमें सबसे प्रमुख गिरफ्तारी जो है वो किंगपिन अभय तिवारी की है और जेपीएससी के चेयरमैन एल ख्यांगते की है।
2: राजस्थान से आज बहुत चिंताजनक खबर आई, भर्तियों का भ्रष्टाचार खुला, जहां योग्य किनारे हो गए, अयोग्य जनता की सेहत से खिलवाड़ करने लगे, फर्जी डिग्री लगाकर डॉक्टर बन मरीजों का इलाज कर रहे 3 डॉक्टर गिरफ्तार किए गए। जिन्होंने 20 से 30 लाख रुपए में फर्जी डिग्री बनवाई थी। राजस्थान एसओजी इस पूरे मामले की तह तक पहुंचने में जुटी है।

0: चेहरा छुपा रहे ये तीनों राजस्थान के वो फर्जी डॉक्टर हैं जो कई वर्षों से मरीजों की जान से खिलवाड़ करते रहे, दवाइयां उनके लिए लिखते रहे। आशीष शर्मा फर्जी डिग्री वाला डॉक्टर, करौली के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ये मरीज देखता था।
1: आदेश दिनांक 18/12/2023 के तहत हमारे पास एक लिस्ट आई थी। उस लिस्ट में डॉक्टर आशीष का सीरियल नंबर 11 पर है। उसकी रैंक एग्जाम में FMG इंट्रेंसिप रैंक 245 थी।
0: नरेश रौलनिया फर्जी डिग्री वाला डॉक्टर, उदयपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज से इंटर्नशिप करके कोटपुतली के पल्स अस्पताल में डॉक्टर बन गया। जयपुर के मुरलीपुरा में ये श्रीनारायण अस्पताल चला रहा डॉक्टर राजेंद्र यादव, जो चीन से 2006 से 2012 के बीच MBBS करने का सर्टिफिकेट लेकर आया। साल 2012 से लेकर 8 बार इसने राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड की FMG स्क्रीनिंग परीक्षा देने की कोशिश की, पर एक बार भी पास नहीं हो पाए। फिर इसने खुद ही नकली सर्टिफिकेट छपवा कर 29 लाख में राजस्थान मेडिकल काउंसिल से मरीज देखने का लाइसेंस हासिल कर लिया। SOG की गिरफ्त में आए राजेंद्र यादव के अस्पताल में जब आज तक संवाददाता खबरदार करने पहुंचते हैं, तो यहां अस्पताल को और आगे बढ़ाने का काम चलता मिलता है। डॉक्टर की गिरफ्तारी के बाद भी अस्पताल खुला हुआ है। फर्जी डॉक्टर और उसकी डेंटिस्ट पत्नी 6 साल से यहां मरीज देख रहे थे।
2: तो कब उनको अरेस्ट की पुलिस ने?
3: 4 रोज पहले।
2: 4 रोज पहले आपको पता था आप लोगों की उनके पास नकली डिग्री है?
3: नहीं,
2: किसी को पता नहीं था?
3: नहीं।
0: डॉक्टर की फर्जी डिग्री वाले आशीष शर्मा ने कजाकिस्तान से साल 2021 में MBBS करने का सर्टिफिकेट बनवाया था। भारत में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड की FMG स्क्रीनिंग परीक्षा 3 बार देने के बावजूद वो पास नहीं हो सका। इसके बाद आरोपी ने शुभम गुर्जर के जरिए 25 लाख रुपए देकर FMG परीक्षा का फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया। शुभम गुर्जर भी पहले 25 लाख में फर्जी सर्टिफिकेट बनवाता था। हैरत की बात है कि दोनों ही राजस्थान सरकार के करौली मेडिकल कॉलेज में मरीज देख रहे थे। दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं।
4: आदमी जितने पैसे करोड़ों रुपए खर्च करके वो बाहर अपनी MBBS करता था, और यहाँ पे जो किंग पिन्स हम लोगों ने जिनको अरेस्ट किया है, उनके इंटरोगेशन से 25 से लेके 35 लाख 40 लाख तक ये अमाउंट लेते थे सर्टिफिकेट अवेलेबल कराने का।
0: नरेश तो इनसे भी आगे निकला। तजाकिस्तान से फर्जी डॉक्टरी की डिग्री हासिल कर पल्स हॉस्पिटल कोटपुतली के इमरजेंसी वार्ड में काम कर रहा था। वो बिना FMG स्क्रीनिंग परीक्षा पास किए और बिना राजस्थान मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रेशन के मरीजों का इलाज करता रहा।
4: फेक FMG एग्जाम के जो सर्टिफिकेट वाला जो स्कैंडल हम लोगों ने खोला है, उसमें करीब 30 के करीब हम डॉक्टर्स और अन एसोसिएट्स को इसमें अरेस्ट कर चुके हैं, और हमारे पास में करीब 80-90 और अधिक इसके अलावा भी कुछ नाम हमारे पास में चल रहे हैं जो इस सारे सिस्टम में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहे हैं।
0: राजस्थान SOG के मुताबिक इस मामले में अब तक 100 से अधिक फर्जी डॉक्टर की पहचान की जा चुकी है, जिन्होंने कथित तौर पर फर्जी स्क्रीनिंग प्रमाण पत्र तैयार करवाया है। इन्हें पकड़ना आसान नहीं हो रहा था क्योंकि इन्होंने सारे फर्जी सर्टिफिकेट ऑफलाइन बनवाए हैं। इस मामले में राजस्थान मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार डॉक्टर राजेश शर्मा समेत 4 कर्मचारी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं।
5: राजस्थान के अस्पतालों में मरीज देखने वाले फर्जी डॉक्टरों के पकड़े जाने का सिलसिला जारी है। अब तक 35 से ज्यादा फर्जी डॉक्टर पकड़े जा चुके हैं, मगर अभी भी 80 से ज्यादा फर्जी डॉक्टर अस्पतालों में मरीज देख रहे हैं और मरीजों के जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कैमरा मनीष के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक।
6: और अब पंजाब के युवाओं के हक की खबर, जहां फार्मेसी भर्ती में हाईटेक तरीके से नकल के बाद हाईकोर्ट के आदेश पर भर्ती रोक दी गई है। जहां आज तक ने इस मामले को कोर्ट तक ले जाने वाले याचिकाकर्ता केशव से बात की, जो बताते हैं कि भर्ती में धांधली कैसे हुई।
7: केशव, आप ये बताइए कि क्या हुआ था, आप जिस दिन एग्जाम देने गए वहां पर आपको किस तरह की इरेगुलरिटीज दिखाई दे रही थी?
8: सर, एक्चुअली इन्होंने टाइम दिया था 8 o'clock का आने का, फिर भी सर उन्होंने जो एंट्री थी वो तकरीबन 10 बजे के पास करवाई थी इन्होंने, और बाहर जो चेकिंग करने वाले थे वो पुलिस सिक्योरिटी वगैरह थी वो ऐसा फ्रिस्किंग नहीं कर रही थी।
7: हाँ।
8: तो इन्होंने रैंडमली कुछ कुछ लोगों की फ्रिस्किंग की, फिर हमने एग्जामिनेशन हॉल में एंटर कर गए। हाँ। और हमारा जैसे ही एग्जाम हुआ तो उसमें ये लैप्स पाया गया कि जब एग्जाम हो गया था और ओएमआर शीट कलेक्ट कर ली गई थी, उसके बाद पुलिस आती है वहाँ पे, और पुलिस आने के बाद वहाँ पे कुछ कुछ लेवल पे फ्रिस्किंग की गई। हाँ। सभी को इन्वेस्टिगेट किया गया, और मेरी साथ वाली क्लास में 2-3 पर्सन को इन्होंने अप्रीहेंड किया पुलिस ने, और कहा कि इनके कानों में ब्लूटूथ डिवाइस कैप्चर हुए हैं।
7: अच्छा, वहाँ पर जहाँ पे एग्जाम दे रहे थे वहाँ पर लोगों के पास ब्लूटूथ डिवाइस थे?
8: यस सर, यस।
7: यानी कि उस ब्लूटूथ का इस्तेमाल करके पेपर बाहर भेजा जा
8: रहा था? यस यस सर, उस ब्लूटूथ डिवाइस का यूज करके पहले किसी ने पेन से, या पेन लाइक कैमरा था, पुलिस ने अपनी पीसी में कंफर्म किया है, कन्फेस किया है, क्या पेन लाइक कैमरा था, उसको व्हाट्सएप से फोटो क्लिक की गई और व्हाट्सएप से भिवानी भेजी गई, उसके वाया उस वाया से इन्होंने फिर मतलब आंसर बच्चों को बताए, जो कैंडिडेट थे उनको बताए गए।
7: अच्छा, फिर ये जो चीटर्स हैं जो इसमें चीटिंग कर रहे थे वो पकड़े कैसे गए?
8: सर एक्चुअली उनको पता नहीं क्या कहाँ से सोर्स प्रोवाइड हुए यूनिवर्सिटी को, तो पेपर कलेक्ट कर लिए गए, उसके बाद इन्होंने कहा यहाँ पे चीटिंग रैकेट है वगैरह, यहाँ पे स्टूडेंट में बैठे हैं, तो ब्लूटूथ डिवाइस ये डिटेक्ट करने के लिए हमको एटलीस्ट 1-2 आवर वहाँ पे बैठाई रखा इन्होंने।
6: आज तक खबरदार करता है तो सरकारें सुनती हैं, सिस्टम काम करने लगता है, यही हुआ मध्य प्रदेश में। आज तक की खबर का असर दिखा है। संवाददाता रवीश पाल सिंह ने कल आपको हजारों नर्सिंग छात्रों की समस्या पर रिपोर्ट दिखाई, बताया कैसे हजारों छात्रों की परीक्षा और रिजल्ट को लटकाकर उनके भविष्य को अधर में लटकाया जा रहा है। आज तक की खबर के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने एक्शन लिया, मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार मुकेश सिंह को हटाया गया, अब जरूरी है कि जल्द परीक्षा भी हो और रुका रिजल्ट जारी हो।
3: क्या नाम है आपका?
9: मेरा नाम भूपेंद्र गुर्जर है, प्रदेश अध्यक्ष नर्सिंग छात्र संगठन। मैं स्पेशल धन्यवाद देना चाहूंगा आज तक चैनल का, जो कलाए और हमारी आवाज को बुलंद किया और हमारी आवाज को ऊपर तक पहुंचाया, जिसका असर है कि रजिस्ट्रार को हटा दिया गया पद से, और हमारे आगे भी मांगे हैं कि जो टाइम टेबल है उसको आगे बढ़ाया जाए, और जो कल कोर्ट ने आदेश दिया है उन सभी परीक्षार्थियों को एक साथ परीक्षा में शामिल किया जाए।
10: मैं आज तक चैनल वालों को ज़्यादातर बधाई देना चाहूँ, क्योंकि 8 तारीख से हम कंटिन्यू धरने बैठे थे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, उन्होंने मंत्रियों को हमारी आवाज़ को पहुँचाया और हमारी एक मांग मांगनी गई है, यहाँ के डिप्टी रजिस्ट्रार को सस्पेंड कर दिया गया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ मीडिया को, हमारे भारत की सबसे बड़ी जो मीडिया को मैं बोलना चाहता हूँ, जो मीडिया ने हमारे लिए जो किया है जीवन भर उनका एहसान नहीं भूलेंगे। जय भारत।
11: मैं यही कहूँगा कि आपका तहे दिल से पहले शुक्रिया करना चाहूँगा, जो आज तक चैनल ने हमारी बात को MPNIC और कोर्ट तक पहुँचाने, और उसमें हमको सफलता भी प्राप्त हुई है कि जो रजिस्ट्रार ऑफिस रजिस्ट्रार अध्यक्ष है उसको हटा दिया गया, और मैं तहे दिल से शुक्रिया करूँगा आपके लिए।
12: सर्वप्रथम मैं क्या है आज तक चैनल को धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज तक मतलब क्या है, ऐतिहासिक जीत हुई है नर्सिंग की, ऐसा धरना अभी तक पहली बार हुआ है, इसमें हमें सफलता भी मिली है जो आज तक चैनल के माध्यम से मिली है, जिन्होंने हमारी आवाज़ को मंत्रियों तक पहुंचाया और ऊपर पहुंचाया, कोर्ट तक भी पहुंचाया। पहली मांग हमारी पूरी हो चुकी है, रजिस्ट्रार को उठा दिया गया है। दूसरी मांग हमारी ये है कि ये 17 तारीख से होने वाली जो परीक्षाएँ हैं उनको स्थगित करके आगे बढ़ा दिया जाए, जिसमें सारे जो बच्चे हैं वो परीक्षाओं में सम्मिलित हो सकें। इसमें क्या है, 2021-22 वाला जो सेशन है उसमें बच्चे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की परीक्षाएं दे चुके हैं, थर्ड ईयर में सम्मिलित नहीं हो रहे हैं, यहाँ तक कि नर्सिंग काउंसिल ने उनसे पैसा भी ले लिया है, फिर भी बच्चे परीक्षाओं में बैठ नहीं पा रहे हैं। तो आज तक चैनल से यही है कि ये गुहार हमारी ऊपर तक और पहुँचाई जाए, जिससे बच्चों का भविष्य खराब ना हो।
6: जयपुर से आज चौंकाने वाली खबर आई जो हर परिवार की चिंता बढ़ाती है। जयपुर के एक निजी स्कूल में एक छात्र ने कैंटीन से खरीदकर पैटीज खाई, और तभी दावा है कि उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि मौके पर मौत हो गई। शर्मनाक और लापरवाही वाली बात यह है कि बच्चे को तुरंत अस्पताल तक स्कूल वाले नहीं ले गए।
13: सेकेंड सांस रोक के बता दो, मैं आप लोगों को मान जाऊंगा।
14: एक घंटे तक रोके
13: रहे, एक घंटे में जान दे रहा था उसकी, कैसा हो रहा था वो।
14: सिर्फ इतना सा है कि न्याय चाहिए उस बच्चे के लिए। बच्चा तो गया पर किसी और की जिंदगी उस स्कूल में खराब नहीं हो।
15: जब आपके सामने आपका कोई दोस्त तड़प तड़प कर दम तोड़ जाए और स्कूल प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा रह जाए तो खून खौलना लाजमी हो जाता है। जयपुर के महाराणा प्रताप स्कूल के इन छात्रों का भी खून खौल रहा है, क्यों ये इन्हीं बच्चों से सुनिए।
16: उसने बाइट ली, वो भागा, सांस नहीं आ रही थी, पानी पीने गया और फिर वो बेहोश हो गया। पूरा नहीं, आधा ही खाया था, आधी फेंक दी थी।
17: खराब
16: थी,
17: पहले पता नहीं चला।
16: पहले पता नहीं,
17: फंगस लगी थी, बदबू आ रही थी।
16: बदबू आ रही थी,
17: बदबू आ रही थी, पूरा नहीं थी।
18: सबसे बड़ी लापरवाही है
16: स्कूल की, हॉस्पिटल भेज देते तो वो आज चिंता रहती।
15: इस स्कूल में 12वीं क्लास के छात्र प्रिंस की जिन हालात में मौत हुई उसे सुनकर किसी का भी आक्रोश भड़क जाए। इस स्कूल में छात्र कैंटीन से पेटीज खरीदता है, खाते ही उसकी तबीयत बिगड़ती है, उसकी सांस बंद हो जाती है, बदन नीला पड़ जाता है, मुंह से झाग निकलने लगता है, लेकिन स्कूल प्रशासन अस्पताल ले जाने की जहमत तक नहीं उठाता।
14: सड़क पे पड़े हुए एक मरीज को भी लेकर के भाग जाता है, पर ये लोगों ने उसको उठा करके कुत्तों के जैसे पटक करके रखा अपने वहां पे ऑफिस में 30 मिनट तक।
15: जाहिर है इस स्कूल ने लापरवाही की हद कर दी है। दरअसल इस स्कूल ने अपराध किया है। 50 से 100 मीटर की दूरी पर अस्पताल है, लेकिन स्कूल प्रशासन को बच्चे को वहां तक ले जाने का ख्याल तक नहीं आया। माना कि बच्चे की हालत काफी बिगड़ गई थी, लेकिन कम से कम उसे अस्पताल तो ले जाते, क्या पता कोई अनहोनी हो जाती। वक्त पर इलाज से बच्चे की जान बच जाती, लेकिन अब कुछ नहीं बचा है सिवा एक माँ के आंसू और पिता के ताउम्र कुरीदने वाले दर्द के।
14: मेरे बच्चा न्याय दिलाओ, हाथ जोड़ के ऊपर मेरे बच्चा न्याय दिलाओ, प्रिंस को आत्मा सुख पानी चाहिए। स्कूल में
15: होनहार प्रिंस अब इस दुनिया में नहीं रहा, परिवार के लिए अब उसकी यादें ही शेष है। माता पिता को जब भी उसकी याद आएगी तो ये ख्याल भी आएगा कि प्रिंस की किन परिस्थितियों में मौत हुई थी। अब सारा दारोमदार पुलिस पर है, क्या प्रिंस के माता पिता को इंसाफ मिल पाएगा।
19: संदिग्ध परिस्थितियों में डेथ का मैटर हमारे सामने आया है और उस पर जो इनके परिजन है उन्होंने ये आशंका जताई है कि स्कूल में किसी प्रकार की लापरवाही की वजह से उनकी मृत्यु हो गई है, तो उस पर भी प्रकरण पंजीबद्ध करके उसमें अनुसंधान किया जा रहा है। जो मौके की फुटेज और ये सारी चीज़ें उनको कलेक्ट किया जा रहा है और उसमें भी जो भी चीजें आएंगी, जो फैक्ट्स आएंगी, वो आपके सामने हम रखेंगे।
15: स्कूल प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं।
20: यही मांग है कि मेरे बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए, हर उस माँ के बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए जिसका बेटा बेटी यहाँ पढ़ रहे हैं। आज मेरा प्रिंस है, कल कोई और प्रिंस नहीं हो। मेरा बेटा बेमौत इनके सामने मर गया।
21: कितने बजे बताया था
20: इन्होंने? बताया मेरा हस्बैंड के पास फोन आया 11:14 में, 1:35 पर लंच टाइम होता है, उसी वक्त मेरे बच्चे ने पेटीज खाई थी और मेरे बच्चे ने वहीं पेटीज खाई थी। पेटीज यहाँ जल्दी जल्दी में खाई, बोले डर के कि सर मारते हैं या अगर लंच थोड़ा सा भी लेट कर देंगे तो सर पिटाई करते है, बता रहा।
15: परिवार वालों का आरोप है कि प्रिंस की हालत बिगड़ने के बाद स्कूल प्रशासन ने उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाने की बजाय परिवार को सूचना दी और उन्हें स्कूल बुलाया। परिजन स्कूल पहुंचे और प्रिंस को निजी अस्पताल लेकर गए। वहां चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे दूसरे अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। पुलिस जाँच की बात कर रही है, उसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। मौत की वजह का पता तो तभी चल पाएगा, लेकिन पुलिस की असली जिम्मेदारी ये तय करने की है कि वक्त पर अस्पताल न पहुंचाने वाले स्कूल पर सख्त कार्रवाई जरूर हो। विशाल शर्मा, जयपुर आज तक।
6: स्वतंत्रता दिवस से पहले हम यही कामना करेंगे कि इस तरह की अव्यवस्था, इस तरह की लापरवाही से हर भारतीय को आजादी मिले। जश्न आजादी पर राष्ट्रपति भवन से लेकर अहम इमारतों को आज तिरंगे के रंगों से सजाया गया है। कल 80वां स्वतंत्रता दिवस देश मनाने जा रहा है और उससे पहले आप दिल्ली के अलग अलग महत्वपूर्ण इमारतों को तिरंगे की रोशनी में नहाया हुआ देख सकते हैं। तिरंगे के रंग में सभी ऐतिहासिक इमारतें आपको नजर आएंगी। जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो भी ऐसी प्रतीत हो रही हैं जैसे तिरंगे में लिपटी हुई हैं। आप एक तरफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भी तस्वीरें देख सकते हैं। आज इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन, संसद का जो पूरा क्षेत्र है, इमारत है, वहां पर हर जगह आप इतनी ही खूबसूरत रोशनी स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देख सकते हैं। आज भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आइए हम मां भारती के उन सपूतों को याद करते हैं जिन्होंने हमेशा हमारी और हमारे देश की रक्षा की है। बात करते हैं साल 1999 करगिल युद्ध की, जब पाकिस्तानी सेना और घुसपैठिए करगिल की ऊंची चोटियों पर कब्जा जमा चुके थे। मकसद था श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर दबाव बनाकर भारतीय सेना की सप्लाई लाइन काट देना, ऊंचाई पर बैठे दुश्मन को सिर्फ जमीनी कार्रवाई से हराना नहीं बल्कि भारतीय वायुसेना को किस तरीके से आसमान पर राज उस समय करना पड़ा था, इसे नाम दिया गया ऑपरेशन सफेद सागर का। भारतीय वायुसेना के जांबाजों ने एक ऐसे ऑपरेशन को अंजाम दिया जिसने करगिल युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाई और भारत को विजय बनाने में सहायता की। अगर आप ऑपरेशन सफेद सागर के बारे में और जानना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स ने इस ऑपरेशन पर आधारित एक वेब सीरीज भी लॉन्च की है। वायुसेना ने इस ऑपरेशन के लिए क्या तैयारियां की थी, कैसे की थी, उन्हें इस दौरान किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, ये सब आप इसमें देख सकते हैं।
1: We are the select chosen few, जिन्हें अपने बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने का मौका मिलता है।
2: अब हम या तो इतिहास बना देंगे या बन जाएंगे।

आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: टैंकर ने घुसकर मारी अलमारी को टक्कर। आश्चर्य जनक, एक खरोच भी नहीं आई अलमारी पे। कैसे कदम? क्रॉसबॉन्ड सुपर स्ट्रॉन्ग।
3: सुपर स्ट्रॉन्ग
2: और मॉइस्चर प्रूफ।
3: वारंटी
2: 15 साल की।
3: कदम
2: सर प्लीज
4: ऑर्डर करो और मेरे घर भिजवाओ। वार्डरोब्स क्रॉसबॉन्ड से ही बनेंगे।
5: क्रॉसबॉन्ड HDMR मैक्स फर्नीचर बने स्ट्रॉन्ग, चले वेरी वेरी लॉन्ग।
6: ओह नो, बहुत बोर लग रहा है।
7: Take it, take it, date not bites.
8: No added sugar, preservative के बिना। Dates, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया। Lion dates,
7: take
8: nut
7: it,
8: bites.
7: Take it, lion date, nut bites.
9: EU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
10: EU सोच बदलो और बैंक भी।
11: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
12: बिजली का बिल पेड
13: तो है, मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
14: कैसे?
13: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए तक का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो पे।
14: इतना माही वे।
15: ये मजबूर हैं पर आप नहीं। बीटेक्स मलहम, दांत खाज खुजली से छुटकारा।
16: अब वही बीटेक्स मलहम ट्यूब में भी उपलब्ध।
17: Where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst. Meets the cool UI UX designer. Meets the gifted content writer. Meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
18: Papa!
19: सॉरी यार, गलती हो गई है। ये चोट खर्चा वर्चा।
18: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
19: छक्का?
18: सब कैशलेस हो गया
19: है। हाँ। ला भाई मेरा बैट।
18: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
19: चार्ज हुआ यार।
18: बैट किसका है?
20: टाटा AIG है तो भरोसा है।
21: नहीं, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
22: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
23: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
24: जिस मिट्टी में फसल उगती है उसी में भारत की स्वतंत्रता की खुशबू है। इस स्वतंत्रता दिवस आइए उन किसानों का सम्मान करें जो हर दिन देश को मजबूत बनाते हैं। मेरे और क्रिस्टल परिवार की ओर से आपके और आपके परिवार को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।

आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: मैनकाइंड फार्मा, दिल से स्वदेशी, जान हिंदुस्तान।
1: In association with
2: Sera Sanitary Wear, it's your moment of Sera. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: भिखारियों का मनोविज्ञान क्या है?
4: तैयारी तुम भी कर रहे हो क्या?
3: नहीं सर।
4: 12th किससे की हो?
3: 12th सर मेरा PCM से रहा।
4: कंपाउंड क्या होता
3: है? बेसिकली जो एक्युमुलेटेड चीजें रहती हैं उसके ऊपर।
4: यही है भीख मंगे वाली क्वालिटी। तुम पूछ रहे थे ना? यही है, यही। एक मिनट,
3: ये जो आपका तरीका बहुत सर बहुत अच्छा नहीं है। इस तरीके से समझाने का स्टूडेंट्स को, इसे सर ह्यूमिलिएशन कहते हैं।
4: देख भाई, अपनी गारंटी पे छेड़ना

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: 14 सालों से भारत के सुरक्षा बलों की कहानियां सुनाता हमारा शो वंदे मातरम जो आपका पसंदीदा शो है वो कल से शुरू हो रहा है, तो भूलिएगा नहीं, हर शनिवार कल से रात 10 बजे आज तक पर देखिएगा वंदे मातरम। अभी के लिए इतना ही, आगे देखिए ब्लैक एंड व्हाइट अंजना के साथ और हरदम रहिए खबरदार।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या राजनीति में अब वायरल होने की होड़ नेताओं पर भारी पड़ रही है। कल दिल्ली में कांग्रेस के रचनात्मक प्रकोष्ठ का अधिवेशन था। मकसद था नई राजनीति की शुरुआत, लेकिन इस मंच से जो हुआ उसने पार्टी की पूरी क्रिएटिविटी पर ही सवालिया निशान लगा दिया है। मंच से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी की हग डिप्लोमेसी यानी गले मिलने के अंदाज पर तंज कसते हुए मिमिक्री की, तो वहीं कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी पर एक बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी कर डाली। और हद तब हो गई जब ये सुनकर लोग ठहाके लगा रहे थे। इंदिरा गांधी की विरासत का दावा करने वाली कांग्रेस के मंच से एक महिला प्रधानमंत्री पर ऐसी टिप्पणी ने बीजेपी को बैठे बैठाए बड़ा मुद्दा दे दिया। सवाल यह है कि क्या जेंजी को रिझाने और सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने की इस दौड़ में हमारे नेता अपनी राजनीतिक मर्यादा भूलते जा रहे हैं? और सोचिए, जब बीजेपी की तरफ से हमला आया तो बीजेपी की तरफ से निशिकांत दुबे ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर एक ऐसी अमर्यादित बात लिख दी जिस पर आज चर्चा करना, कुल मिलाकर अगर आप देखिए तो सिर्फ दिखाता है दोनों ही हिस्से। ऐसा दिखता है, प्रतीत होता है कि राजनीति में अब कोई सीमा बची नहीं है धरातल के नीचे जाने की। इसके बाद आपको उत्तराखंड के चमोली में पीपल कोटी टनल हादसे के बारे में बताएंगे। इस टनल में हुए भूस्खलन में 7 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। इस हादसे को 25 घंटे से ज्यादा वक्त बीत चुका है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन भारी बारिश और मलबे ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बड़ा सवाल यह है कि जब बारिश का येलो अलर्ट पहले से जारी था, सोचिए येलो अलर्ट, तो मानसून में जान जोखिम में डालकर इन मजदूरों को ये काम करने पर मजबूर क्यों कराया गया? क्या इस लापरवाही को सुसाइड मिशन नहीं कहना चाहिए जिसने मजदूरों को मौत के मुंह में उत्तराखंड में ढकेल दिया है? और आखिर में फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट को लेकर नया खुलासा दिखाएंगे। शुरुआत में इसे महज टर्बुलेंस या पायलट की गलती बताया जा रहा था, लेकिन विमान बनाने वाली कंपनी एयरबस की शुरुआती जांच रिपोर्ट के मुताबिक हवा में इस विमान के सभी हाइड्रोलिक सिस्टम्स कुछ सेकंड के लिए पूरी तरह फेल हो गए थे। राहत की बात यह रही कि वक्त रहते सिस्टम रिकवर कर गया, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। सबसे पहले बात पॉलिटिक्स की करेंगे, कांग्रेस के कल हुए उस अधिवेशन की जिसने कल कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी और संदीप दीक्षित को फंसा दिया है। वो कल से ही बीजेपी ने के निशाने पर है। दरअसल कल दिल्ली में रचनात्मक कांग्रेस का पहला अधिवेशन था और हमने कल ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत में ही आपको ये पूरा वीडियो दिखाया था, आज फिर दिखाएंगे। मकसद ये बताया गया कि कांग्रेस न्यू पॉलिटिक्स करना चाहती है, क्रिएटिव पॉलिटिक्स, नए तरह की राजनीति करने वालों को अपने साथ जोड़ना चाहती है। लेकिन नए तरह की राजनीति वाले इस मंच से इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी पर अभद्र टिप्पणी हुई और केंद्र सरकार की विदेश नीति पर राहुल गांधी की व्यंगात्मक एक्ट ने विवाद खड़ा कर दिया है। करीब 56 सेकंड के अंदर ही इन दोनों बड़े नेताओं ने मंच से बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा दिया, जिसका जवाब अब कांग्रेस पार्टी इस बात से दे रही है कि आपके नेता भी तो अपशब्द बोलते हैं। लेकिन यह कोई जवाब है? सवाल है कि एक ऐसी महिला प्रधानमंत्री का जिस देश के साथ भारत के अच्छे रिश्ते हैं, हम उनके नागरिकों को क्या संदेश दे रहे हैं अगर इस तरह का व्यवहार हम करते हैं? हुआ यह कि राहुल गांधी मंच से केंद्र सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों को गले लगाने की उनकी आदत का मजाक उड़ा रहे थे। इसी एक्ट के दौरान संदीप दीक्षित ने उनसे इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को लेकर अभद्र टिप्पणी कर दी और यहीं से संदीप दीक्षित और राहुल का राजनीतिक घेराव शुरू हो गया है। पहले सुनिए।
1: इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया, अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी।
2: एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ। मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था?
1: आई हैव नॉट रीच देयर येट, बट पता नहीं कहां से घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी का मतलब नेताओं से गले लगना।
0: सवाल तो यह है कि राजनीति में यह कहां से घुस गया कि आपको महिलाओं का अपमान करने की खुली इजाजत है। एक महिला पर संदीप दीक्षित की इस टिप्पणी ने कांग्रेस पार्टी के इस कार्यक्रम की छवि धूमिल की, और जिस तरह से मंच पर इस टिप्पणी के बाद ठहाके लगे, उसने इस अधिवेशन के उद्देश्य नई तरह की राजनीति का मजाक बनाया। जिस पार्टी से इंदिरा गांधी जैसी सशक्त महिला प्रधानमंत्री रही हूं, उस पार्टी के एक नेता के द्वारा दूसरे देश की किसी महिला प्रधानमंत्री के लिए गलत टिप्पणी करना राजनीतिक बयानबाजी सबसे निचला स्तर है। और यही वजह है कि कल से ही भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, कई पार्टियों के नेताओं ने इसकी निंदा की है और कई लोग इसके खिलाफ सोशल मीडिया पर भी लिख रहे हैं। देखिए,
3: कल मैंने देखा, भारत के नागरिक के नाते मैं कह रहा हूं, जो व्यवहार नेता प्रतिपक्ष ने किया वो अभारतीय है, अशोभनीय है, अलोकतांत्रिक है, मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाने वाला है। आप किसी को गले लगाते हैं और वो कह रहे हैं एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र की महिला प्रधानमंत्री जी के बारे में, ये क्या कांग्रेस को शोभा देता है? क्या ये भारत के विचार है? मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, उनको माफी मांगनी चाहिए।
4: पूरे देश की महिलाओं का अपमान करने का काम राहुल गांधी ने किया, एक चुने हुए देश की महिला का, ननियाल देश कि महिला का अपमान करने का काम राहुल गांधी ने किया। अपनी निम्नता, घटियापन, ओछापन देश के लोगों के सामने रखने का काम राहुल गांधी ने किया, और उनके साथ में जो एक जोकर और खड़ा था, वो जोकर भी इसलिए क्योंकि उसकी माताजी मुख्यमंत्री थी दिल्ली की, वहां भी उसकी मां का भी अपमान किया उस जोकर ने।
5: दोनों कांग्रेस के वो नेता जिनकी परिवार की महिलाएं उच्च पदों पर रही, वो एक महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में उचित टिप्पणी करें तो महिलाओं के प्रति कांग्रेस की सोच क्या है दिखती है। महिला आरक्षण का कांग्रेस विरोध क्यों करती है ये दिखता है, और जानबूझ के डिलिमिटेशन बिल क्यों नहीं पास होने देती ताकि महिलाओं को 33% आरक्षण, ये दिखता है। लेकिन अब विदेशी महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष पर अभद्र टिप्पणी करना, अमर्यादित टिप्पणी करना, ये इनके चरित्र को दिखाता है, इनके पालन पोषण को, इनके संस्कारों को दिखाता है।
6: राहुल गांधी फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ ड्रामा कर ही रहे थे, उनके साथ उनके एक नेता ने जाकर ये कहना कि इटली की स्टेट हेड के बारे में इस तरह की बातें करना, ये क्या भारत की संस्कृति है? किस तरह की जबान बोली जा रही है? ये दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह की भाषा कांग्रेसी बोल रहे हैं और एक्ट कांग्रेसी कर रहे हैं।
0: संदीप दीक्षित की महिला विरोधी टिप्पणी कांग्रेस पार्टी की पहली मुसीबत थी, लेकिन इसके बाद क्या हुआ वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आज राजनाथ सिंह, देश के रक्षा मंत्री, ने भी राहुल गांधी की इस टिप्पणी पर गहरी चिंता जाहिर की है। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा है।
7: ऐसी अभद्र टिप्पणी हर भारतीय के मन को अंदर से कष्ट देने वाली है, पीड़ादायक है। मैं कांग्रेस पार्टी से यह भी कहना चाहूंगा, विनम्रतापूर्वक कांग्रेस पार्टी से अनुरोध करना चाहूंगा कि ऐसी भाषा और आचरण के बाद क्या वे लोग अब लाल बाल पाल से लेकर गांधी, नेहरू, पटेल, सुभाष बाबू, राजेंद्र बाबू से लेकर शास्त्री जी, नरसिम्हा राव जी से लेकर प्रणब मुखर्जी जी तक जैसे विराट व्यक्तित्वों की विरासत का वह दावा किसी भी सूरत में कर सकते हैं? मैं कह सकता हूं कि आज इस आचरण से राहुल गांधी ने न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अपमान किया है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का अपमान किया है, लोकतंत्र नेता प्रतिपक्ष के पद की गरिमा को तार तार कर दिया है। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता कि जिसके नाम के आगे गांधी शब्द लगा हो वह ऐसा शर्मनाक बयान भी कभी दे सकता है।
0: तो संदीप दीक्षित की महिला विरोधी टिप्पणी कांग्रेस पार्टी की पहली मुसीबत थी। दूसरी मुसीबत राहुल गांधी द्वारा पीएम मोदी की मिमिक्री। राहुल गांधी ने कल मंच से कहा कि केंद्र सरकार के दिमाग में घुस गया है कि विदेश नीति का मतलब है नेताओं से गले लगना। आपने राजनाथ सिंह को भी सुना, उन्होंने भी कड़े शब्दों में इस पर टिप्पणी की। उनका निशाना देखिए, राहुल गांधी का निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गले मिलने का स्वभाव है, जिसमें वो अपने समकक्ष नेता, मित्रों, कुछ सहयोगियों से गले मिलते हैं। राहुल गांधी ने इसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि विदेश नीति जो है वो अब इस बात पर सीमित हो गई है कि प्रधानमंत्री सबके गले मिलते हैं, और उन्होंने बाकायदा इसकी एक्टिंग की जो आप देख रहे हैं। राहुल गांधी की एक्टिंग को नई दिल्ली की सांसद बासी सराज ने फेल्ड स्टैंड अप कॉमेडी कहा है। बीजेपी नेता प्रहलाद जोशी ने उनसे पूछा कि वो बड़े कब होंगे। इसके अलावा कई नेताओं ने राहुल गांधी के इस बयान को बचकाना बताया। अपने राजनाथ सिंह को सुना, वो तो कह रहे हैं कि जिसके नाम में गांधी है वो ऐसा कैसे कर सकता है।

0: मैं कह सकता हूं कि आज इस आचरण से राहुल गांधी ने न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अपमान किया है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का अपमान किया है, लोकतंत्र नेता प्रतिपक्ष के पद की गरिमा को तार तार कर दिया है।
1: लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अब हमारे देश के राजनेता सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की तरह वायरल होना चाहते हैं। सोशल मीडिया को एक्सक्लूसिव कंटेंट देने के लिए भी कई चीजें की जाती हैं और इसी वजह से बहुत सारा ऐसा कंटेंट बनाया जाता है। खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से सोशल मीडिया पर हमारे नेताओं की बयानबाजी, सरकाज्म, आपने हाल में देखा होगा जेन ज़ी आंदोलन के बाद से ज्यादा ही कोशिशें हो रही हैं कि ऐसी ऐसी बातें कही जाए जिनकी मीम्स बने, जिनका अलग अलग अंदाज में लोगों तक पहुंच बढ़े। जैसे आपने राहुल गांधी का वो मीम देखा होगा जिसमें वो कहते हैं खत्म, ओके, टाटा, बाय बाय, काफी वायरल मीम है और वो कई बार इसका इस्तेमाल अपने भाषण में कर चुके हैं। कल भी उन्होंने मंच से इसी मीम को रिपीट किया, यानी उन्हें मालूम है कि उनका कौन सा कंटेंट सोशल मीडिया पर लोग ज्यादा देख रहे हैं, मीम कंटेंट। सुनिए,
2: सिस्टम बदलना है प्यार से, मोहब्बत से, नफरत से नहीं। सिस्टम को खत्म, टाटा, बाय बाय करना है।
3: जैसे सर ने कहा, खत्म, टाटा, बाय बाय,
2: खत्म, टाटा, बाय बाय।
4: अब तो हो गया ना? हाँ। क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी, ओपोजिशन, सबका एक्सप्रेशन चालू है, अब नहीं रुकने वाला
2: वो क्या। हाँ,
4: थैंक यू टाटा, गुड बाय। और मैं आपको बता रहा हूं, आप लिख लो, जिस दिन तक नरेंद्र मोदी अपना इस्तीफा नहीं देंगे, अमित शाह नहीं हटेगा, उस दिन तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं सो पाएंगे।
1: उम्रदराज नेता भी ऐसे वीडियोस बनवा रहे हैं जो जेन ज़ी को पसंद आए, अपने भाषणों में ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो जेन ज़ी की बोलचाल में सामान्य मानी जाती है। अभी हाल ही में जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान संसद में जो चर्चा हुई थी उसमें कुछ नेताओं ने जेन ज़ी द्वारा बोले जाने वाले शब्दों का इस्तेमाल किया। इन शब्दों का इस्तेमाल भी इसलिए किया ताकि भाई भाषणों में एक जुड़ाव जेन ज़ी के साथ दिखे। सुनिए,
5: जहां पर कांग्रेस शासित यूपीए ने पॉलिसी वैक्यूम करा, वहीं पर अगर मैं जेन ज़ी की भाषा को बोरो करूं, देन आई विल हैव टू से मोदी जी क्लॉक्ड इट एंड प्रोवाइडेड अ लेजिस्लेटिव सॉल्यूशन।
6: विपक्ष के आंदोलन को एक समराइज करना चाहूंगा मैं जेन ज़ी के भाषा में। 37 दिन तक तो ये जंतर मंतर नहीं गए, तो इनको एमआईए हो गया। एमआईए क्या है? एमआईए मिसिंग इन एक्शन। आंदोलन क्यों किया आपने? उनको फोमो हुआ, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अरे बच्चे यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? तो हम चले गए पीएम आवास पर, फोमो होने के बाद लहू। इनको डेलुलू हुआ, डेलुलू,
7: डॉक्टर सिंह,
6: डेलुलू,
7: डेल्यूशन,
6: डेल्यूशन।
7: श्रीकांत जी,
6: इनको लगा छात्र हमारे साथ आएंगे प्रधानमंत्री के घर के इधर जाने के बाद, लेकिन छात्र तो कोई आए नहीं।
8: अध्यक्ष जी, मैं जेन ज़ी के लैंग्वेज में मैं आज विपक्ष से कहना चाहता हूं, बिकॉज ऑफ दिस इश्यू ऑपोजिशन थिंक्स दैट यूथ आर विद देम। इससे बड़ा डेलुलू दूसरा नहीं है।
9: ये जो नया जेन ज़ी का लिंगो यूज कर रहे हैं ना, मैं भी उनको बताना चाहती हूँ। सर, इन्होंने शायद इंस्टाग्राम नहीं देखा, सब बीजेपी के लोगों ने देखा भी होगा तो बोलेंगे नहीं पता है, सबके बच्चे हमारे साइड पे, उनके साइड पे तो किसी के बच्चे नहीं है। उनकी अगली जनरेशन ना इनके साथ नहीं, हमारे साथ भी नहीं है शोर। शायद हम जो डिलुलू के बारे में बोले ना, आप भी उस डिलुलू में ना रहना कि वो आपके साथ है। आपकी जनरेशन किसके साथ है ये 29 में पता चलेगा, तब देखा जाएगा।
10: वो कभी आपसे टकराते थे तो दूसरा नारा देते थे, वास्ते गुने हुईया, एक नारा देते थे वास्ते गुने हुईया। आपको समझ ना आए तो आप घर जाके गूगल पे आप सर्च कर लेना ये क्या नारा है। वो नारा देते थे वास्ते गुने हुईया, और वो नारा देते थे इतने प्यार से, इतनी खूबसूरत तरीके से इस्तीफा मांगते थे, कहते थे, जब आपसे इस्तीफा भी मांगते थे तो कहते थे कुचू पुचू इस्तीफा दे दो, आज हमारा जन्मदिन।
1: तो पिछले कुछ समय में कई बड़े और चर्चित नेताओं ने किसी इन्फ्लुएंसर की तरह वीडियोस बनाए हैं, वायरल भी हुए हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, जिसमें दोनों बारिश में भीग रहे थे। बारिश से बचने के लिए छतरी नहीं ली थी और संसद परिसर में मौजूद ये दोनों सांसद आपस में किसी मुद्दे पर गहन बातचीत में बिजी नजर आए। ये वीडियो की रीच मिलियंस में थी। हालांकि बाद में जब वो वीडियो भी आया जिसमें आसपास लोग छतरी के साथ खड़े दिख रहे थे, तो वो वीडियो भी वायरल होने लगा क्योंकि आसपास में लोग खड़े थे। हालांकि ये अलग बात है कि राहुल विरोधियों ने इस घटना का एक और वीडियो, जैसा हम बता रहे हैं आपको, सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। नजर आया कि जिस जगह राहुल और प्रियंका बारिश में भीग रहे थे, वहां पर बहुत सारे सुरक्षाकर्मी छतरियों के साथ खड़े थे। साफ थी कि राहुल प्रियंका का ये वीडियो जो है बारिश वाला, वो रील का कंटेंट था, जिसका मेन जो पॉइंट है ये था कि कांग्रेस पार्टी के दो बड़े नेता कर्ता धर्ता किसी गहन मुद्दे पर बात करते वक्त बारिश की भी चिंता नहीं कर रहे।

0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली गए थे और वहां पर भी जब मेलेडी चॉकलेट वाला ये कंटेंट बना तो सोशल मीडिया पर ये भी बहुत देखा गया। और इसे भी आप इंस्टाग्राम या फिर वीडियो कंटेंट बता सकते हैं, क्योंकि मेलेडी चॉकलेट की बात हुई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलोनी के दोस्ती को लेकर खुद इटली की प्रधानमंत्री ने पहली बार हैशटैग मेलेडी लिखा था। जंतर मंतर पर हुए जेंजी आंदोलन के बाद तो सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को साधने की नई कोशिशें शुरू हो गई हैं। अब तो सोशल मीडिया पर रील स्टाइल में वीडियोस और संबोधन हो ही रहे हैं। जैसे राहुल गांधी ने E20 के मुद्दे पर एक वीडियो बनाया था जिसमें वो बारिश के दौरान कार के पेट्रोल टैंक के पास खड़े हैं, पेट्रोल टैंक का नॉब खोलते हैं और बाद में कहते हैं कि दाल में काला नहीं है, पूरी दाल काली है। इस वीडियो के करीब काफी व्यूज थे, 35 मिलियन के आसपास आप देख रहे हैं। फिर लोगों ने जूम इन किया और जूम इन करके दिखाया कि यहां पर तो E20 लिखा हुआ है, जिस एथेनॉल गाड़ी मानी E20 कंप्लायंट कार है ये। इसी तरह से एक वीडियो जब जेंजी पर हुए लाठीचार्ज को लेकर प्रधानमंत्री आवास पर धरना दे रहे थे तब उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें सुरक्षाकर्मी उनको ले जा रहे हैं, उसके भी लगभग 24 मिलियन व्यूज थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 23 जुलाई वाली इंस्टाग्राम रील भी आपको याद होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे से एक दिन पहले ये डाला था उन्होंने, माफ कीजिएगा, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से एक दिन पहले ये रिलीज की गई थी। ये एक सेल्फी वीडियो बताया गया था जिसमें उन्होंने जेंजी को संबोधित किया था। इसमें नकल माफिया और दोषी लोगों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही गई थी। इसके व्यूज आप देख सकते हैं, 417 मिलियन व्यूज थे। इसके बाद लोगों ने उन्हें सेल्फी वीडियो के कुछ फ्रेम्स बताए जिस पर उन्होंने अमल भी किया और फिर अगले दिन एक वीडियो बनाया और इस वीडियो के 293 मिलियन व्यूज थे। इसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने घर के बाहर जाकर एक और वीडियो बनाया था और ये वीडियो के 195 व्यूज थे, मिलियन, 195 मिलियन। यानी देश के नेता जेंजी को सोशल मीडिया के जरिए कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और वो साफ अब रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्योंकि इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि बहुत सारे रील्स प्रभावी रहे, चाहे वो जंतर मंतर का आंदोलन है उसको लोगों तक पहुंचाने में। आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हक डिप्लोमेसी का मजाक भी कुछ इसी तरह से उड़ाया जिससे उनका ये वीडियो वायरल हो सके और काफी हद तक कामयाबी भी रही, क्योंकि लगातार टीवी डिबेट्स बुलेटिन्स में इस पर चर्चा हो रही है, भारतीय जनता पार्टी इस पर अटैक कर रही है, उनके समर्थक ही नहीं बल्कि विरोधी भी काफी देख रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हक डिप्लोमेसी को लेकर राहुल गांधी के विचार लोगों को सोशल मीडिया में वायरल होने के मिमिक्स से अगर आप इसको तुलना करें तो अलग अलग जगहों पर, क्योंकि उन्होंने सिर्फ विदेशों में जाकर डिप्लोमेसी में हक करने की बात की कि सबके गले लगते हैं, लेकिन अब लोग ये वीडियोस डालने लगे हैं क्योंकि विदेश नीति की कोई रणनीति के बजाय उन्होंने इसका मजाक उड़ाया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के अंदर भी ये वीडियो अब बीजेपी के लोग वायरल कर रहे हैं जिसमें उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी, चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण, कांग्रेस नेता अशोक गहलोत को भी गले लगाया। इसके अलावा इसरो के पूर्व चीफ डॉक्टर सिवान, वाराणसी में हुए कार्यक्रम में दिव्यांगों को भी गले लगाया था।
1: बोलो भारत माता की।
2: সবরই প্রতীক্ষা কত দীর্ঘ প্রতীক্ষা।

0: attackieren.
1: Bolo Bharat Mata Ki!
2: बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए एक्स पर कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं। उन्होंने इसमें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तस्वीर डाली है, जिसमें वो क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति फिडेल कास्ट्रो से गले मिलते हुए दिख रही हैं। ये तस्वीर मार्च 1983 की है, जब दिल्ली में नॉन अलाइंड नेशंस कॉन्फ्रेंस की सातवीं बैठक आयोजित की गई थी। इसमें इंदिरा गांधी जैसी मंच पर जाती हैं तो फिडेल कास्ट्रो की तरफ से हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाती हैं, लेकिन फिडेल कास्ट्रो ने उन्हें छोटी बहन की तरह गले लगा लिया। और आज इस बात को लेकर बहुत चर्चा हो रही है कि निशिकांत दुबे ने इस पोस्ट के साथ जिस तरह की भाषा लिखी है वो कतई एक प्रधानमंत्री के लिए, और वो भी भारत की महिला पूर्व महिला प्रधानमंत्री के लिए अमर्यादित है। और आज आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जिसमें राहुल गांधी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी गले मिले थे। जुलाई 2018 के मानसून सत्र में अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी बोलते बोलते अपनी सीट से उठे, वो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास गए और उन्हें गले लगा लिया था।
3: आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सभी गुस्सा, इतना सभी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है। मैं कांग्रेस हूँ और ये सब कांग्रेस है। इट्स इंटरेस्टिंग, यू लाइक इट, यू एंजॉय दिस वन।
2: और अब हम बात करेंगे उत्तराखंड के चमोली में हुए टनल हादसे की। इस हादसे में अब तक 7 मजदूर मारे जा चुके हैं, 3 लापता हैं, उनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। पिछले करीब 26 घंटे से ये रेस्क्यू जारी है और बारिश इसको मुश्किल बनाती जा रही है। यह हादसा चमोली के पीपल कोटी में हुआ। यहां पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए टनल बनाने का काम चल रहा था। कल शाम करीब 7 बजे टनल में पानी रिसने के बाद लैंडस्लाइड हो गया। उस वक्त वहां टनल में काम कर रहे करीब 22 मजदूर फंस गए और हादसे के तुरंत बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। इसमें अब तक 19 लोगों को निकाला गया है, जिसमें 12 लोग घायल हैं, 7 लोगों की मौत हो चुकी है। जिस टनल में हादसा हुआ है वो THDC यानी इंडिया लिमिटेड बना रहा है। ये 444 मेगावाट का एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, यानी पानी से बिजली बनाने का प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के तहत अलकनंदा नदी के पानी का इस्तेमाल होना है। यह दर्दनाक हादसा इस प्रोजेक्ट के तहत बन रही टेल रेस टनल में हुआ है। यह टनल चमोली के बिरही इलाकों में पड़ती है। और अब हम आपको यह बताते हैं कि असल में यह हादसा किस पॉइंट पर हुआ है। इस हाइड्रो प्रोजेक्ट की शुरुआत चमोली के हेलांग से होती है। यहां अलकनंदा नदी पर एक 65 मीटर ऊंचा डैम बनाया जा रहा है। इस डैम से अलकनंदा की एक धारा का डायवर्जन किया गया है। अलकनंदा की यह धारा करीब 13 किलोमीटर लंबी हेडरेस टनल से होती हुई पीपल कोटी के हाट गांव में बन रहे अंडरग्राउंड पार हाउस में पहुंचेगी। फिर यहां से अलकनंदा की धारा करीब 3 किलोमीटर लंबी टेल रेस टनल से होते हुए मुख्य धारा में जाकर मिल जाएगी। यह हादसा इसी टेल रेस टनल में हुआ है। जानकारी के मुताबिक हादसा का जो लोकेशन है वो टेल रेस टनल के एग्जिट पॉइंट के करीब 1600 मीटर अंदर है, यानी जिस रेस टनल से पानी वापस अलकनंदा नदी में पहुंचाया जाना है उसके बिल्कुल बीच में हादसा हुआ। अभी भी 3 मजदूर बताया जा रहा है इसमें फंसे हुए हैं। इस प्रोजेक्ट के हर चरण पर अलग अलग काम चल रहा है। साल 2009 से शुरू हुए इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए दिसंबर 2027 का टारगेट रखा गया, लेकिन काम की जल्दबाजी कहिए, कुछ और कहिए, लेकिन इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया कि मानसून है और मानसून से पूरे उत्तराखंड में भारी बारिश हो रही है। लैंडस्लाइड की सैकड़ों घटनाएं हो चुकी हैं। येलो अलर्ट मौसम का जारी है, बावजूद इसके टनल बनाने का काम जारी रखा गया, रोका नहीं गया। क्या इन मजदूरों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है? साफ दिख रहा है। अब स्थिति यह है कि बारिश की वजह से रेस्क्यू टीम का काम अटका है। जिन तीन मजदूरों को बचाने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, स्थानीय प्रशासन की टीम्स लगी हैं, वो बारिश के बंद होने और टनल में पानी का स्तर कम होने का इंतजार कर रही हैं। उनके पास इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं है। बताया जा रहा है कि टनल में करीब 1 किलोमीटर के इलाके तक पानी भरा है, कुछ जगहों पर तो पानी 5 फीट तक भर गया है। इस पानी में मलबा, मिट्टी और गाद जमा हुआ है, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी हो रही है। हादसे में 7 मजदूरों की मौतों के बाद सवाल यह है कि क्या टारगेट पूरा करने के लिए उन्हें भारी बारिश, लैंडस्लाइड के खतरों के बीच किसी सुसाइड मिशन पर टनल के अंदर भेज दिया गया था? क्या इस हाइड्रो प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों को यह पता नहीं था कि मानसून में इस बार उत्तराखंड में भारी बारिश हो रही है? केवल चमोली में ही इस मानसून सीजन में सामान्य से लगभग 53% ज्यादा बारिश हुई। 1 जून से लेकर 13 अगस्त के बीच 746 mm बारिश हो चुकी है, जबकि इस समय आमतौर पर 488 mm बारिश होती है। जिस दिन चमोली में हादसा हुआ, उस दिन मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया था, यानी भारी बारिश की चेतावनी जारी की थी। मौसम विभाग के येलो अलर्ट का मतलब है कि बारिश से सावधान रहे, क्योंकि 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश की संभावना रहती है। यहां एक और बात जान लीजिए कि मौसम विभाग ने चमोली में 1 अगस्त से कई बार येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किए, 10 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक के लिए पहले से येलो अलर्ट है, यानी आने वाले दिनों में और बारिश हो सकती है। ये बारिश रेस्क्यू टीम्स के लिए नई चुनौती बन जाएगी। आप सोचिए कि क्या हालत है, अंधेरा है, लेकिन वीडियो से आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे मजदूरों की जिंदगी को खतरे में डाला जाता है। आप सोचिए कि कितनी बड़ी लापरवाही है कि हाइड्रो प्रोजेक्ट जिन लोगों की निगरानी में चल रहा है, उन्होंने मौसम विभाग की चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया है। और ये विष्णुगढ़ पीपल कोटी हाइड्रो पार प्रोजेक्ट जो है, उसका पूरा टनल हम आपको दिखा रहे हैं कि अलकनंदा नदी से होते हुए ये किस तरह से आप देख रहे हैं, इधर से अलकनंदा नदी और फिर उधर अलकनंदा नदी में मिलना है। बीच में ये हेडरेस टनल है, लगभग 13.5 किलोमीटर का सर्च शाफ्ट है और टेल रेस टनल है और अंडरग्राउंड पावर हाउस 444 मेगावाट इसका कैपेसिटी है। आमतौर पर आप देखिए, टनल बनाने का काम हो, पानी अचानक, मलबा आने का खतरा तो रहता ही है। पहाड़ों में ये खतरा बारिश के मौसम में इतना बढ़ जाता है। जिस टेल रेस टनल में हादसा हुआ, इसमें अचानक रिसाव शुरू हो गया और इसके बाद भूस्खलन हो गया, और ये कोई पहली बार हो रहा है। लगातार हमने कई बार बारिश के मौसम में पहले भी देखा है, कई जगहों पर हमने मजदूरों का इस तरह से फंसे होना, लाइफ रेस्क्यू ऑपरेशन होना, सब कुछ देखा है। लेकिन बावजूद इसके सबक इसलिए नहीं सीखते हैं क्योंकि इन मजदूरों की जिंदगी की कोई कीमत जाहिर तौर पर इनकी नजर में है ही नहीं। और यही वजह है कि जो मजदूर इसमें काम कर रहे थे, उन्हें अंदाज नहीं था बारिश उनके लिए ऐसी मुसीबत खड़ी कर देगी। अगर मौसम विभाग की चेतावनियों को ही ध्यान में जरा रख लेते तो फिर ऐसा नहीं होता। और यही आज सबसे बड़ा सवाल है, किया नहीं गया और इसी वजह से हमने 7 मजदूरों को खो दिया है। उन परिवारों की चिंता कौन करेगा, आज बड़ा सवाल है। और यही वो मैप है जिसमें आप समझ रहे हैं कि यहीं पर वो मजदूर, इस वक्त भी 3 मजदूर फंसे हुए हैं। और इसीलिए ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि आखिर इन मजदूरों की जिंदगी की जवाबदेही किसकी है, उन परिवारों को लेकर क्या कर रही है सरकार। अब सवाल तो यही है कि आप देखिए किस तरह से यह हादसा हुआ है। जिस जगह पर येलो अलर्ट हो, येलो अलर्ट, वहां पर आप ऐसा कर रहे हैं, ये अपने आप में बताता है कि किस तरह की सोच है, मजदूरों की जिंदगी को लेकर किस तरह की लापरवाही बरती जा रही है। और ऐसा नहीं है पहली बार हुआ है, जैसा हमने आपको बताया, इस तरह की लापरवाही पहले भी की गई है। पिछले साल ही इसी मौसम में, मुझे याद है, हम लोग लाइव कवरेज कर रहे थे, इसी प्रोजेक्ट में ऐसा हादसा हुआ जब चमोली के हिलांग में डैम बनाने का काम चल रहा था, 2 अगस्त को यहां काम के दौरान भूस्खलन हो गया और 12 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। लेकिन इस हादसे से प्रोजेक्ट संभाल रहे लोगों ने कोई सीख नहीं ली। उन्हें पता होना चाहिए कि मानसून में जब पहाड़ों पर जबरदस्त बारिश होती है, इस तरह का भूस्खलन आता है, टनल बनता है तो पानी, गाद, सब कुछ आता है। और देखिए, 7 मजदूरों की मौत, 3 अभी भी फंसे हुए हैं इस वक्त जब आप ये बुलेटिन देखें। ये सुसाइड मिशन नहीं है तो क्या है? उत्तराखंड में इसी सीजन में 53 दिनों के अंदर ही 1944 सड़कें अलग अलग जगहों पर हुए भूस्खलन की वजह से बाधित हुई। अनुमान है कि इससे सरकार को करीब 217 करोड़ रुपए का नुकसान भी हुआ है। जब भी ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं तो सभी परेशान होते हैं, फिर चाहे पीड़ित हो, रेस्क्यू टीम्स हो या फिर प्रशासन से जुड़े लोग हो। और फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पहुंच भी जाते हैं, घटनास्थल पर पहुंचे वो, कि भाई रेस्क्यू का काम कैसे चल रहा है। लेकिन कोई तो इस बात की सुध ले, कि आखिर ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। अब वो राज्यों की सुरंगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो पिछले साल भी हुआ था। सीएम धामी के अलावा गढ़वाल के बीजेपी सांसद अनिल बलूनी भी घटनास्थल पर हालात का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे।
0: दुर्घटनाएं हमेशा हो रही, सिलक्यारा हुई, ये हुई, इससे पहले टनल की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार क्या संबंधित एजेंसी को कोई निर्देश देगी?
4: बिल्कुल निर्देश देंगे, और हमारे लिए जो भी कार्मिक जो भी काम करने वाले हैं उनकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। बिना सुरक्षा के, जब तक पूरे सुरक्षा के प्रबंध नहीं हो जाते तब तक इन कामों को भी आगे नहीं बढ़ाएंगे।
5: वाकई बड़ी मुश्किल परिस्थितियों में अंदर काम हो रहा है, और आप सब लोग जानते हैं ऑपरेशन जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है, और हमारे NDRF और SDRF के जवान और बाकी जो हमारा स्थानीय प्रशासन है सब मिलकर अंदर, क्योंकि काफ़ी पानी भरा हुआ है और काफ़ी मुश्किल परिस्थितियाँ हैं, उन सब में काम कर रहा है। अभी बताया जाता है कि 3 लोग मिसिंग की जानकारी जो है वो सब है, हम अंदर देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति मिल सके हमें, और सारे लोग बातचीत कर रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं, अभी प्रशासन पूरी ताकत से लगा है।
2: और अब हम आपको इस हादसे की मौजूदा स्थिति पर अपनी एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं, और इस रिपोर्ट में आप देखेंगे कि बारिश ने किस तरह से टनल में तबाही मचाई और अब रेस्क्यू टीम्स के लिए चुनौती भी बन गई है।
6: शाम को 6:30 बजे के आसपास पीपलकोटी विष्णु घाट परियोजना की जो TSDC की ये टनल है, TRT टनल, इसके अंदर 1500-1600 मीटर के करीब में एक लूज जो है टनल के अंदर गिरा, और उसके बाद एक बहुत ज़बरदस्त, यहाँ पे बताया जा रहा है, हवा का झोंका और पानी का बहुत बड़ा रिसाव हुआ, और उसने कुछ लोगों को तो अंदर की ओर धकेला और कुछ लोगों को बाहर की ओर धकेला। ऐसे में कुछ तो ठीक ठाक निकल चुके हैं, लेकिन अभी तक 3 लोग लापता है। पता चला इस पूरे हादसे में 22 लोग यहाँ पे हताहत हुए थे, जो कुछ घायल हैं, कुछ 7 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। वहीं अभी राज्य आपदा प्रबंधन सचिव जो है विनोद कुमार सुमन, वो यहाँ पे निरीक्षण करके गए। उनका कहना है कि डीवाटरिंग करने का काम किया जा रहा है और जल्द से जल्द इस पानी को बाहर निकाला जाएगा, ताकि जो 3 लोग हैं अंदर उनका रेस्क्यू हो नहीं पा रहा है, पानी भर जा रहा है। ऐसे में लगातार यहाँ पे ITBP की फोर्स है, वो लगातार आ रही है, जा रही है, जो टीमें हैं वो लगातार लगी हैं, कभी मशीनें भेजी जा रही हैं, कभी ड्रम भेजे जा रहे हैं, अलग अलग तरीके से यहाँ पे इस समय जो रेस्क्यू और बचाव के काम चल रहे हैं वो करवाए जा रहे हैं।
7: काफ़ी लोगों को निकाला हम लोगों ने, जिसमें से 12 लोग को सुरक्षित बचाया गया है, 7 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है।
2: और अब आपको हवा में गोते लगाने वाले एयर इंडिया के विमान के बारे में बताएंगे, जिसमें पहले एयर टर्बुलेंस, बाद में पायलट के नशे में होने का दावा किया जा रहा था। अब इसमें एक और नई बात सामने आ रही है जिसने सबको हैरान कर दिया है। एयर इंडिया की फुकेट से दिल्ली आने वाली फ्लाइट AI-2379 में सिर्फ एयर टर्बुलेंस और पायलट के नशे में होने के दावों की चर्चा थी, लेकिन अब इस विमान को बनाने वाली कंपनी एयरबस की शुरुआती जांच रिपोर्ट ने एविएशन सेक्टर में सनसनी फैला दी है। रिपोर्ट के मुताबिक हवा में कुछ सेकंड्स के लिए प्लेन के सभी हाइड्रोलिक सिस्टम्स फेल हो गए थे, यानी कुछ पल के लिए विमान से कंट्रोल पूरी तरह से खो चुका था। यह घटना 4 अगस्त की है, जब एयर इंडिया की यह फ्लाइट थाईलैंड के फुकेट से उड़ान भरकर दिल्ली आ रही थी। विमान जब हवा में था तो अचानक उसमें भारी हलचल और सडन लॉस ऑफ एल्टीट्यूड दर्ज किया गया। इस घटना में विमान में सवार कई यात्रियों को चोटें भी आई। शुरुआत में इसे सामान्य एयर टर्बुलेंस या मौसम की खराबी माना गया। इसके अलावा कॉकपिट के भीतर के माहौल को लेकर तरह तरह की चर्चाएं थी, लेकिन जब विमान के फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और सेंट्रलाइज फॉल्ट डिस्प्ले सिस्टम के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया तो जो सच सामने आया उसने एयरलाइंस और रेगुलेटर्स के होश उड़ा दिए। एयरबस की इनिशियल फाइंडिंग्स के अनुसार कॉकपिट के भीतर सुबह 9:32 और 44 सेकंड पर खौफ का वो मंजर शुरू हुआ जिसने विमान को बड़े खतरे में डाल दिया। फ्लाइट वार्निंग सिस्टम द्वारा सबसे पहले ग्रीन हाइड्रोलिक सिस्टम के फेल होने की घोषणा की गई। विमान में ग्रीन हाइड्रोलिक सिस्टम एक बहुत ही ताकतवर और मुख्य पावर सप्लाई होता है, जो विमान को सुरक्षित रूप से उड़ाने और जमीन पर कंट्रोल करने वाले भारी कलपुर्जों को चलाता है। विमान में ग्रीन हाइड्रोलिक सिस्टम के बंद होते ही लेफ्ट हैंड ग्रीन एलिवेटर जो है वो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड ग्रीन एलेरॉन और स्पॉयलर्स 1 और 5 ने काम करना बंद कर दिया। अब ये स्थिति बड़ी खतरनाक है, इतना ही हम लोग समझ सकते हैं। ये समझना जरूरी है कि लेफ्ट हैंडेड ग्रीन एलिवेटर विमान को ऊपर या नीचे ले जाने में मदद करता है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड ग्रीन एलेरॉन्स जो होते हैं वो विमान को हवा में दाई या बाई तरफ झुकाते हैं। स्पॉयलर 1 और 5 हवा में बहाव रोककर विमान की गति काम करने में कंट्रोल करने में मदद करते हैं। अब विमान के डिजाइन के मुताबिक जब यह ग्रीन हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हुआ, सिस्टम का कंट्रोल बैकअप के तौर पर ब्लू और येलो हाइड्रोलिक्स पर शिफ्ट हो जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि अगले ही एक सेकंड के अंदर ये दोनों बैकअप सिस्टम्स भी फेल हो गए। अब विमान के सबसे अहम हिस्से यानी प्लेन को ऊपर नीचे करने वाले जो एलिवेटर्स हैं, बाएं दाएं मोड़ने वाले एलेरॉन्स हैं, स्पॉयलर्स हैं, नियंत्रण पूरी तरह खत्म। एलेरॉन्स के फेल होने का सीधा मतलब था कि पायलट के पास प्लेन को बाएं या दाएं मोड़ने का कोई कंट्रोल नहीं बचा। तीनों हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हुए, वजह से विमान के जो मेन कंट्रोलर्स हैं उन्होंने लगभग 7 सेकंड तक काम करना बंद कर दिया। एयरबस की इनिशियल फाइंडिंग्स बताती है कि जब विमान का नोज यानी आगे का हिस्सा खतरनाक तरीके से ऊपर उठ रहा था तो उसे रोकने के लिए तत्काल एक्शन की जरूरत थी, जबकि ऑटो पायलट पहले ही डिस्कनेक्ट हो चुका था। रिपोर्ट के मुताबिक को पायलट की ओर से नोज डाउन का इनपुट देना शुरू किया गया ताकि प्लेन के आगे के हिस्से को नीचे किया जा सके। लेकिन बड़ी समस्या यह थी कि फ्लाइट कंट्रोल सीधे तौर पर रिस्पॉन्ड कर नहीं रहे थे, सिस्टम काम कर नहीं रहा था, इसे पायलट सिर्फ कोशिश कर रहे थे और विमान अनियंत्रित गति से आगे बढ़ रहा था। क्रू और यात्रियों की किस्मत ही थी कि 9:32:51 पर तीनों हाइड्रोलिक सिस्टम ने अपने आप फिर से काम करना शुरू कर दिया। सिस्टम रिस्पॉन्ड करने लगा जिससे पायलट्स को प्लेन का कंट्रोल वापस मिल गया और वो दिल्ली में सुरक्षित लैंडिंग कर पाए। शुरुआती जांच में तकनीकी खराबी सामने आने के बाद विमान निर्माता कंपनी एयरबस ने एयर इंडिया को तुरंत और बेहद सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। एयरबस ने एयर इंडिया को इस घटना में शामिल एयरक्राफ्ट पर कई परीक्षण और निरीक्षण करने के लिए कहा है, जिसके तहत हाइड्रोलिक सिस्टम पर 4 से 5 कड़े टेस्ट कंडक्ट करना, ऑटोमेटिक फ्लाइट सिस्टम की पूरी तरह से जांच करना, विमान की स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी की जांच करना। इसके साथ ही पिछले 1 महीने के दौरान हाइड्रोलिक सिस्टम पर किए गए मेंटेनेंस एक्टिविटीज की पूरी रिपोर्ट साझा करने के लिए कहा गया है। एयरबस ने अपने कम्युनिकेशन में साफ किया है कि इस असेसमेंट की जटिलता को देखते हुए इसकी फाइनल रिपोर्ट में ज्यादा वक्त लग सकता है। इसके परिणामों के आधार पर आगे और भी एडिशनल इंस्पेक्शंस किए जा सकते हैं। अब इस खुलासे के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या यह सिर्फ एक अकेली तकनीकी खराबी थी या फिर भारत में उड़ने वाले A320 नियो विमानों के फ्लीट्स में कोई गंभीर डिजाइन या सिस्टम फॉल्ट है। आज तक ने इस गंभीर मामले पर एयरबस और DGCA से कुछ सवाल पूछे हैं। ये जानने की कोशिश की गई है कि क्या इस घटना के बाद भारत में इस्तेमाल हो रहे सभी A320 नियो विमानों के बेड़े की स्पेशल ऑडिट की सिफारिश की जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम की आधिकारिक जांच एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन द्वारा की जा रही है और फिलहाल उनकी आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। शुरुआती जांच में यह निकल कर आ रहा है कि यह घटना सिर्फ एक रूटीन एयर टर्बुलेंस या सिर्फ पायलट की गलती का मामला नहीं है। यह विमान निर्माता कंपनी एयरबस की रिपोर्ट के आधार पर एक संभावित बड़े विमान हादसे की तरफ इशारा करती है, जहां महज कुछ सेकंड्स के भीतर विमान का हाइड्रोलिक सिस्टम धड़ाम हो गया। देखिए कुछ पेशेंट्स किस हालत में निकले थे। यदि सिस्टम अपने आप रिकवर ना होता तो परिणाम बहुत भयानक हो सकते थे। आजादी की 80वीं वर्षगांठ से पहले आपको एक दिलचस्प खबर दिखाएंगे और बताएंगे कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी भारत को लेकर ग्लोबल मंच पर क्या सोच चल रही है। क्या दुनिया भारत के बढ़ते कदमों और ताकत को पसंद कर रही है या उसकी सोच भारत के लिए पॉजिटिव है। प्यू रिसर्च सेंटर जिसकी ताजा सर्वे रिपोर्ट ने दुनिया के 36 देशों की नब्ज टटोली। इसके आंकड़े चौंकाने वाले भी हैं और भारत की ग्लोबल कूटनीति के नए रंग दिखाने वाले भी हैं। सबसे पहले बात ग्लोबल तस्वीर के 36 देशों के सर्वे में एक मीडियन आंकड़े के मुताबिक 45% लोगों की राय भारत के प्रति फेवरेबल यानी ये लोग भारत को पसंद करते हैं, जबकि 41% लोग अनफेवरेबल नजर आए। लेकिन असली खेल पड़ोसी देशों में है, जहां आंकड़े एकदम उलटफेर दिखाई देते हैं। पड़ोसियों की बात करें तो श्रीलंका में भारत के प्रति दीवानगी गजब की है। लगभग 79% 79% लोग भारत को पसंद करते हैं। इसके अलावा केन्या, ब्रिटेन में भी करीब 70% यानी 10 में 7 लोग भारत को पॉजिटिव नजर से देखते हैं। जर्मनी, इसराइल, इटली, स्वीडन, जापान, थाईलैंड में भी बहुमत भारत के पक्ष में ही खड़ा है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। वहां सिर्फ 7% लोग भारत के पक्ष में है और 91% लोग भारत को बिल्कुल पसंद नहीं करते। इसके अलावा तुर्की में सिर्फ 15% और वेस्ट बैंक में मात्र 18% लोग भारत को अच्छा मानते हैं। बांग्लादेश में भी भारत को लेकर पिछले कुछ सालों में फेवरेबल रेटिंग 15 अंकों की गिरावट के साथ 50% से नीचे आ गई है, जबकि श्रीलंका में यह आंकड़ा 2024 के बाद से 14 अंकों की जोरदार बढ़त के साथ ऊपर गया है। अमेरिका की बात करें तो यहां तस्वीर थोड़ी मिली जुली है। आज अमेरिका में 45% लोग भारत को फेवर करते हैं, जबकि 50% अनफेवरेबल है। साल 2008 के बाद से ये आंकड़े सबसे निचले स्तर के करीब है, क्योंकि 2023 में ये आंकड़ा 51% हुआ और तब से इसमें लगातार हल्की सी गिरावट ही आ रही है। अमेरिका के भीतर भी राजनीतिक और एक जेनरेशन गैप साफ दिखता है। वहां 50% डेमोक्रेट भारत को लेकर सकारात्मक सोच रखते हैं, जबकि 42% रिपब्लिकन ही भारत को लेकर अच्छी राय रखते हैं। उम्र की बात करें तो अमेरिका में 65 साल से ज्यादा उम्र के 50% बुजुर्ग भारत को पसंद करते हैं, जबकि 18 से 29 साल के युवाओं में यह आंकड़ा 42% है। अमेरिका के 54% लोगों का मानना है कि पिछले कुछ सालों में भारत का ग्लोबल इन्फ्लुएंस जो है वैसा ही बना हुआ है, जबकि 30% मानते हैं कि भारत और मजबूत हुआ है। सिर्फ 13% लोगों को लगता है कि दुनिया में भारत का प्रभाव कमजोर हुआ है। जर्मनी, फ्रांस जैसे यूरोपीय देशों में भारत की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है। तो आइए आपको दिखाते हैं, आइडियोलॉजी की बात करें तो ये भी बड़े दिलचस्प ट्रेंड ही दिखाती है। अमेरिका और कनाडा में लेफ्ट विचारधारा वाले लोग भारत को ज्यादा पसंद करते हैं। जैसे अमेरिका में 54% लिबरल भारत के पक्ष में है, जबकि कंजर्वेटिव जो है वो 40% है। वहीं इसराइल में इसके बिल्कुल उलट स्थिति है। वहां 68% राइट विंगर्स भारत को पसंद करते हैं, जबकि लेफ्ट विचारधारा वाले सिर्फ 40% लोग ही भारत को लेकर अच्छी राय रखते हैं। अब प्यू रिसर्च सेंटर का यह सर्वे जाहिर करता है कि दुनिया के एक बड़े हिस्से में भारत का दबदबा और सम्मान लगातार बढ़ रहा है। प्यू रिसर्च सेंटर के सर्वे में कई और दिलचस्प बातें भी सामने आई हैं। दुनिया की महाशक्तियों को लेकर भारत और पाकिस्तान के लोगों की सोच में जमीन आसमान का अंतर दिखता है। प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट बताती है कि भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जहां लोग चाइना के मुकाबले अमेरिका को ज्यादा सकारात्मक नजरिए से देखते हैं। भारत में 45% लोग अमेरिका को पसंद करते हैं। इसके उलट पाकिस्तान में तस्वीर बिल्कुल अलग है। सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान के सिर्फ 15% लोगों की ही अमेरिका को लेकर अच्छी राय है। रिपोर्ट यह भी कहती है कि 36 देशों के सर्वे में अमेरिका और चाइना की लोकप्रियता का सबसे बड़ा अंतर पाकिस्तान में ही देखने को मिलता है। भारत में चाइना को लेकर सिर्फ 23% लोग ही सकारात्मक राय रखते हैं और देश के अधिकतर लोग जो है वो चाइना को एक बड़े खतरे के तौर पर देखते हैं। वहीं पाकिस्तान के 75% लोग चाइना को अपना सबसे बड़ा सहयोगी मानते हैं। 90% लोग चाइना को ही पसंद करते हैं। हालांकि भारत के अंदर भी दिलचस्प आंकड़े सामने आए हैं। प्यू रिसर्च सेंटर की इस रिपोर्ट के ही मुताबिक तुलनात्मक रूप से भारतीय जो मुस्लिम्स हैं वो चाइना और राष्ट्रपति शी जिनपिंग को लेकर सकारात्मक रुख थोड़ा ज्यादा है। हालांकि हिंदू और मुस्लिम दोनों का नजरिया प्यू रिपोर्ट के मुताबिक शी जिनपिंग के प्रति नकारात्मक ही है। दूसरी ओर रशिया के मामले में भारत का पलड़ा भारी है। भारत के करीब 36% लोग रशिया को अपना सबसे बड़ा सहयोगी मानते हैं और 58% लोग रशिया तथा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रति अच्छी राय रखते हैं, जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा सकारात्मक राय में से एक है। आजादी के पूरे 79 साल बीत चुके हैं, पीढ़ी बदल गई, दौर बदल गया, लेकिन क्या भारत और पाकिस्तान के बीच का अविश्वास कम हुआ है? प्यू रिसर्च सेंटर की एक नई रिपोर्ट ने इस सवाल का जवाब दिया है और जो जवाब दिया है वो चौंकाने वाला है, आंखें खोलने वाला भी है। सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक भारत के 54% लोग पाकिस्तान को देश का सबसे बड़ा खतरा मानते हैं, जबकि 21% लोग चाइना को खतरे के रूप में देखते हैं। वहीं पाकिस्तान में 43% लोग भारत को सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। इसके बाद 24% लोग इसराइल और अमेरिका को पाकिस्तान के लिए खतरा मानते हैं। और अब अगली खबर आपको अंजना 2.0 बताएंगी, कैसे गोरखपुर में एक नाबालिग लड़के ने पिता से 1,00,000 रुपए लेने के लिए अपने अपहरण की कहानी रची। वो अंजना 2.0 है, AI वर्जन है, तो जरा वो भी देखें कि AI के कैसे कैसे खतरे सामने आ रहे हैं। एआई की खबर है तो जरा उन्हीं से सुनते हैं, क्योंकि इसके लिए एआई से उस बच्चे ने अपनी तस्वीर बनाई, पिता को भेज दी। ये पैसे वो ऑनलाइन गेम में लगाना चाहता था, कहा कि किडनैप हो गया हूं और पैसा ले रहा था अपने पिता से। बताइए अंजना 2.0। जी अंजना, ये खबर हर माता पिता को अलर्ट करने वाली खबर है। एआई के इस युग में ऑनलाइन गेम की लत कैसे किसी बच्चे को अपराध की ओर धकेल सकती है, इस पर यह खबर सावधान करती है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सिकरीगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक ऐसे केस का पर्दाफाश किया है जिसमें बेटे ने खुद के अपहरण का नाटक रचा। पिता के मोबाइल पर फेक किडनैपिंग की तस्वीरें भेजी गईं। ये तस्वीरें एआई से जनरेट की गईं। मिली जानकारी के मुताबिक एआई से अपहरण की ये फेक तस्वीरें दिल्ली में रहने वाली आरोपी बेटे की कथित गर्लफ्रेंड ने तैयार की। एआई से तैयार फेक किडनैपिंग की तस्वीरों के साथ बेटे के जान की सलामती के लिए पिता के मोबाइल पर कथित तौर पर किडनैप हुए बेटे के मोबाइल से 1,00,000 की फिरौती मांगी गई। सामने आए व्हाट्सएप चैट में साफ दिख रहा है कि कैसे अपने अपहरण का झूठा नाटक खेल रहा बच्चा अपने पिता को फिरौती के लिए धमका रहा है। एक प्रोफेशनल किडनैपर की तरह व्हाट्सएप चैट में कहा जा रहा है कि इसी नंबर पर ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करो। लेकिन पीड़ित परिवार ने अपने बच्चे के घर न लौटने की सूचना गोरखपुर पुलिस को दी। पुलिस ने जब CDR और CCTV की मदद से कथित तौर पर अगवा बच्चे को तलाशना शुरू किया तो उस तक पहुंचने में पुलिस को महज 2 घंटे लगे। ब्लैक एंड व्हाइट में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद अंजना की विचारधारा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: मैं करता हूँ ना,
2: मैं करूँगा।
3: ओए कार्ड्स की दुकान, इतने कार्ड्स कौन रखता है?
1: ये ग्लोबल लग्जरी होटल्स के लिए, ये स्टे स्पा फाइन डाइनिंग के लिए, वर्ल्ड क्लास गोल्फ प्रिविलेजेस के लिए।
3: पंजाब नेशनल बैंक का लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड लो एंड गेट अनलिमिटेड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस, अनलिमिटेड स्टे, डाइनिंग एंड मच मोर।
1: क्रिकेट में आप और बैंकिंग में PNB दोनों ही चैंपियन है।
3: PNB लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड, PNB मेरा अपना बैंक।
4: टैंकर ने घुसकर मारी अलमारी को टक्कर। आश्चर्यजनक, एक खरोच भी नहीं आई अलमारी पे। कैसे कदम? क्रॉसबॉन्ड सुपर स्ट्रॉन्ग और मॉइस्चर प्रूफ।
5: वारंटी
4: 15 साल की। कदम
5: ऑर्डर करो और मेरे घर भिजवाओ। वार्डरोब्स क्रॉसबॉन्ड से ही बनेंगे।
6: क्रॉसबॉन्ड HDMR Max फर्नीचर बने स्ट्रॉन्ग, चले वेरी वेरी लॉन्ग।

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: Where the software engineer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University.
2: ये मजबूर हैं पर आप नहीं. बीटेक्स मलहम, दांत खाज खुजली से छुटकारा.
3: अब वही बीटेक्स मलहम ट्यूब में भी उपलब्ध.

0: जिस मिट्टी में फसल उगती है उसी में भारत की स्वतंत्रता की खुशबू है। इस स्वतंत्रता दिवस आइए उन किसानों का सम्मान करें जो हर दिन देश को मजबूत बनाते हैं। मेरे और क्रिस्टल परिवार की ओर से आपके और आपके परिवार को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: In association with Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
3: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: Vimal, bolo zuba kesri. Hint, bade aaram se.

0: जिस मिट्टी में फसल उगती है उसी में भारत की स्वतंत्रता की खुशबू है। इस स्वतंत्रता दिवस आइए उन किसानों का सम्मान करें जो हर दिन देश को मजबूत बनाते हैं। मेरे और क्रिस्टल परिवार की ओर से आपके और आपके परिवार को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: जब से पेपर लीक के खिलाफ कांग्रेस जनता पार्टी ने देश भर में आंदोलन किया है, तब से देश की सियासत से लेकर न्यायपालिका तक जेंजी इम्पैक्ट देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद की नासलर यानी नेशनल लॉ स्टडी एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी से जुड़े विवाद पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को फटकार लगाई है। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा है कि भले ही छात्रों का फैसला गलत हो या उन्हें किसी ने गलत सलाह दी हो, फिर भी उन्हें अपनी बात रखने और विरोध करने का अधिकार है। जस्टिस सूर्यकांत ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के उस सर्कुलर पर भी नाराजगी जताई जिसमें नासलर के 2026 बैच के लॉ ग्रेजुएट्स का वकील के तौर पर एनरोलमेंट रोकने को कहा गया था। सीजेआई ने कहा कि ये मेरे और छात्रों के बीच का मामला है, इसे मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। बार काउंसिल इसमें दखल देने वाला कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस भी जारी किया और यूनिवर्सिटी के किसी छात्र या फैकल्टी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया। विरोध के बाद बार काउंसिल ने यूटर्न ले लिया है। छात्रों की नाराजगी सीजेआई की पिछले महीने की एक टिप्पणी को लेकर थी। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा था, कॉकरोच की तरह ऐसे युवा हैं जिन्हें इस पेशे में रोजगार नहीं मिल रहा है। इनमें से कुछ मीडिया, कुछ सोशल मीडिया और कुछ आरटीआई और दूसरे तरह के एक्टिविस्ट बन रहे हैं। ये हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। ये टिप्पणी दिल्ली में नीट प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़ी याचिका की सुनवाई के दौरान की गई। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 13 अगस्त को सभी स्टेट बार काउंसिलों को निर्देश दिया था कि नासलर के 2026 बैच के किसी भी ग्रेजुएट को अगले आदेश तक वकील के तौर पर एनरोल ना किया जाए। साथ ही यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से 3 दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी गई थी। आदेश जारी होने के कुछ घंटे बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपना रुख बदल लिया। काउंसिल ने कहा कि नासलर के 2026 बैच के ज्यादातर छात्र निर्दोष हैं और वो सीजीआई के अनादर वाले किसी भी अभियान में शामिल होने के इच्छुक नहीं थे।
2: कुछ गलत रिपोर्टिंग हो गई, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन मिल गए तो एक लेटर भेज दिया गया नालसर को, लेकिन 30 मिनट के अंदर जैसे ही सही बातों का पता चला, स्टूडेंट्स के इनोसेंस का पता चला, तुरंत उस लेटर को वापस ले लिया गया। आधी रात को बार काउंसिल की मीटिंग हुई, सभी मेंबर्स ने डिस्कस किया, पूरा डेलिबरेशन हुआ उस पर, और उसके बाद पूरा का पूरा मामला जो है सो क्लोज कर दिया गया। तो मैटर स्टैंड्स फुल्ली क्लोज्ड नाउ। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को ये बात नहीं बताई गई शायद कि मामला जो है सो उसको क्लोज कर दिया गया, वो लेटर पूरी तरह वापस ले लिया गया, कोई ऑर्डर नहीं है, स्टूडेंट्स जैसे चाहें वो जहां चाहें अपने को एनरोल कराएं। अब सुप्रीम कोर्ट को हम एक्सप्लेन करेंगे।
1: सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी बार काउंसिल के एक्शन पर सवाल उठाए थे। आज तक ब्यूरो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
1: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
2: तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही. अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे. तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और कभी कभी अनजान लोगों से भी मिलना चाहिए. इनमें कुछ अपनों से बेहतर ही निकल जाते हैं. नमस्कार.
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच. इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी, सोकुडो.

0: 15 अगस्त के पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का राष्ट्र के नाम संदेश, कहा युवा आबादी सबसे मूल्यवान संपत्ति, विकसित भारत के निर्माण के लिए आगे बढ़ने का किया आह्वान। जश्न के आजादी के रंग में रंगा हिंदुस्तान, कर्तव्य पथ से लेकर राष्ट्रपति भवन तक तिरंगे की रोशनी, दिल्ली समेत पूरे देश में चप्पे चप्पे की सख्त सुरक्षा। नहीं थम रहा पीएम मोदी पर राहुल के बयान पर बवाल, राजनाथ सिंह ने बताया लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरे का संकेत, विदेश मंत्रालय ने कहा आदर के साथ होनी चाहिए बात। विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में जुबानी युद्ध तेज, सीएम योगी का बयान सिर्फ सत्ता के लिए पहले की सरकारें, अखिलेश ने कहा यूपी में अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार। और कॉकरोच विवाद पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत का बड़ा बयान, कहा मेरी बातों का गलत इरादे से गलत इस्तेमाल, युवाओं को गुमराह करने का प्रयास।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं आज तक पर। आप देख रहे हैं दस्तक, और आज दस्तक कैसे सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए जेंजी गरज भी बन गए हैं और मजबूरी भी। 2027 में हमारे देश के 7 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, और इन चुनावी राज्यों में जेंजी वोटर्स एक बड़ी शक्ति बनकर उभरे हैं। अपने अधिकारों और भविष्य को लेकर नई पीढ़ी जिस तरह से सजग और मुखर नजर आ रही है, राजनीतिक पार्टीज को मैसेज बहुत क्लियर है, जहां जेंजी वहां पलड़ा भारी। और ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2027 की लड़ाई के लिए जेंजी को लुभाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। और आज मुख्यमंत्री योगी ने 14 अगस्त यानी कि विभाजन विभीषिका दिवस पर जेंजी और जेन अल्फा दोनों को मैसेज देने का प्रयास किया, कोशिश की। जी हां, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ने युवा पीढ़ी को यह समझाने का प्रयास किया कि 1947 में बंटवारे के जिम्मेदारों से सावधान रहने की जरूरत है। योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर सीधे निशाना साधा, तो आइए आपको दिखाएं क्या जेंजी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के तीसरे टर्म पर मोहर लगाएगा।
1: 1947 का बंटवारा, सीएम योगी ने जेन जी को क्या समझाया? विभाजन विभीषिका दिवस पर जेन जी को सीएम योगी का मैसेज। जेन जी और जेन अल्फा के लिए योगी का 1947 की त्रासदी वाला पाठ। 2027 यूपी विधानसभा चुनाव, जेन जी वोट की तगड़ी राजनीति शुरू। कैसे जेन जी को लुभाने में जुटा देश का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम। 15 अगस्त 2026 देश की आजादी के 79 साल पूरे हो रहे हैं। भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है, लेकिन 14 अगस्त 1947 भारत का बंटवारा एक कड़वी याद बनकर सामने आता है, तो उसमें विभाजन के दौरान मारे गए लोगों और विस्थापन का दर्द झेलने वाले परिवारों का संघर्ष जहन में तैर जाता है। ऐसे में यूपी के सीएम योगी लखनऊ में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि कांग्रेस और समाजवादी जैसी पार्टियों के लोग 1947 के विभाजन और कत्लेआम के असली दोषी हैं।
2: याद रखना, जो लोग 1947 में मौन थे, जिनके स्वर उस समय भी नहीं फूट रहे थे, उनकी नजरें तब भी सत्ता में थी, सत्ता पर थी, उन लोगों के कृत्य आज भी वही है। आपने पिछले कुछ दिनों पूर्व बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर हुए कत्लेआम की घटना को देखा होगा, तब भी ये दल मौन थे, क्योंकि बांग्लादेश की घटना पर अगर ये कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करते तो उनको लगता था कि उनका वोट बैंक कहीं यहां खिसक न जाए। उनके लिए उन दलित हिंदुओं के कत्लेआम मायने नहीं रखता है, उनके लिए अपना वोट बैंक मायने रखता है।
1: सीएम योगी कहते हैं कि देश का विभाजन इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक है। करोड़ों हिंदुओं को अपनी मातृभूमि से विस्थापित होना पड़ा था। लाखों की संख्या में हिंदू, बौद्ध, सिख, जैनों का कत्लेआम हुआ। सत्ता प्राप्त करने की भूख इस हद तक थी कि सनातन राष्ट्र के टुकड़े कर दिए गए। यहां सीएम योगी एक और बात कहते हैं कि अगर उस समय नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री होता तो भारत का कोई बाल भी बाका नहीं कर पाता।
2: ये वास्तविक दोषी है 1947 के विभाजन के भी और 1947 के कत्लेआम के भी। अगर उस समय मोदी जैसा प्रधानमंत्री होता तो भारत का कोई बाल बांका नहीं कर पाता, लेकिन इन कांग्रेसियों की बुजदली का दुष्परिणाम क्या था कि देश को इसकी कीमत चुकानी पड़ी।
1: बात 1947 के बंटवारे से शुरू होती है और सीएम योगी जेन जी यानी युवा पीढ़ी पर आ जाते हैं और उन्हें विभाजन की विभीषिका समझाते हैं। साथ ही ये भी बताते हैं कि इस विभीषिका के पीछे कांग्रेस और समाजवादी जैसी पार्टियां हैं जो युवा पीढ़ी को बहकाने की कोशिश कर रही हैं।
2: वर्तमान पीढ़ी को जो आज बहकाने का प्रयास कर रहे हैं ना, युवा पीढ़ी को, उनको बताइए ये बहकाने वाले लोग वही हैं जिनके पूर्वजों ने ये त्रासदी भी ला करके खड़ी की थी देश के सामने।
3: इन्हें इतना ही प्रेम है तो आजादी के आंदोलन की लिस्ट क्यों नहीं देते हैं? और ये किसके साथ थे? ये अंडरग्राउंड थे और अंडरग्राउंड रह करके ये सूचनाएं दे रहे थे अंग्रेजों को। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं सत्ता में जिनके पुराने लोग यही काम करते थे। इन लोगों पे आरोप हैं और क्योंकि अपने विकास की बात नहीं कर सकते हैं, 1947 की बात कर रहे हैं लोग।
1: 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव है और योगी जानते हैं कि जेन जी को अपने पाले में खींचना कितना जरूरी है।
4: लाखों युवाओं से मैं मिला,
5: फ्रेंड्स मैं जानता हूं कि
1: पीएम मोदी इंस्टा पर आए और जेन जी से खुद को कनेक्ट करने की कोशिश की तो जेन जी की ताकत को आरएसएस ने भी समझा है और जाना है। समाजवादी पार्टी जंतर मंतर के आंदोलन तक पहुंच गए तो राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज नाम के कैंपेन से खुद जेन जी को अपने पाले में लाने की भरपूर कोशिशें की।
6: क्या है जेन जी में सेल्फीज बड़ी कॉमन है,
7: तो चलिए
8: हम सब तैयार है जोर के साथ सेल्फी के लिए।
9: 21वीं सदी में अगर देश प्रगति करता है तो दो चीजों के बल पे करता है, यूथ पोटेंशियल जो आप में है और डेटा जो आप क्रिएट करते हो।
1: भारत में जेन जी ने विरोध का एक नया मॉडल विकसित किया है। छात्र केवल धरना प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहे बल्कि उन्होंने मीम्स, सोशल मीडिया ट्रेंड, हैशटैग कैंपेन और शांतिपूर्ण प्रदर्शन के जरिए अपनी आवाज बुलंद की है। जेन जी की इस ताकत का अंदाजा सीएम योगी को भी है क्योंकि यूपी में कुल वोटर्स करीब 13 करोड़ हैं। इनमें जेन जी यानी 18 से 27 साल के वोटर्स 2.07 करोड़ हैं, यानी लगभग 15%। यूपी में जिन सीटों पर जेन जी वोटर्स का असर है वो यूपी विधानसभा की 403 में से लगभग 80 से 120 सीटें हैं। तभी तो बंटवारे का दर्द और हिंदुत्व को आगे रखकर योगी ने जेन जी को नया मैसेज देने की कोशिश की है।
2: ये सभी घटनाएं केवल हंसने के लिए नहीं, मनोरंजन के लिए नहीं, हम सब के लिए एक सबक भी होती हैं। वर्तमान पीढ़ी को और आने वाले भविष्य को समझाने का भी एक माध्यम होती है। सही तरीके से उन तक ये बात पहुंचाने का तरीका भी हमें भी अपनाना पड़ेगा। अगर हमारा दुश्मन और हमारा देश का विरोधी उस प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करके भारत के खिलाफ अव्यवस्था और अराजकता पैदा करने का प्रयास कर रहा है तो क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है?
10: विभाजन विभीषिका पर एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि अब ये जो आने वाली पीढ़ी है या फिर इस वक्त का जो युवा है, जो जेन जी है, जो जेन अल्फा है, उसे उस विभाजन की त्रासदी को जरूर बताया जाना चाहिए, उस विभीषिका से अवगत कराया जाना चाहिए ताकि ये नई जेन जी और जेन अल्फा पीढ़ी है वो उस दर्द को भी समझ सके और समझ सके कि किन लोगों ने उस दौर में क्या भूमिका अदा की थी। इशारा कांग्रेस और कांग्रेस जैसे दल मुख्यमंत्री के निशाने पर थे लेकिन उन्होंने ये भी याद दिला दिया कि अगर शायद उस वक्त मोदी होते तो ये विभाजन होता ही नहीं। कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
0: जेन जी आंदोलन के बाद भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी डैमेज कंट्रोल में जुटी है और सामने सबसे बड़ी चुनौती 2027 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है। योगी आदित्यनाथ की चुनावी डगर आसान नहीं क्योंकि राह में फूल से अधिक कांटे हैं, पत्थर हैं। 10 वर्षों की सत्ता विरोधी लहर से निपटना योगी आदित्यनाथ को है तो रोजगार और शिक्षा के मुद्दों पर युवाओं की नाराजगी को दूर करने के लिए योगी आदित्यनाथ के लिए और उनके पास बहुत कम समय बचा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सिर्फ जेन जी ही नहीं बल्कि जेन अल्फा भी देश में अब अपनी शक्ति दिखा रही है और इसीलिए बीजेपी जेन जी के साथ साथ जेन अल्फा को भी साधने में जुटी हुई है।
11: विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में
1: सीएम योगी ने लखनऊ में विभाजन विभीषिका दिवस पर जेन जी के साथ साथ जेन अल्फा पर फोकस किया है क्योंकि जेन जी की तरह अब जेन अल्फा अपने हक के लिए सड़क पर उतर रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मोहन रोड पर यह जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय है। प्रदेश के समाज कल्याण विभाग के अधीन आने वाले स्कूल में छात्र संभव है कि देश में जंतर मंतर आंदोलन से शुरू हुए प्रदर्शन करके अपना हक मांगने वाली लकीर पर चलते हुए आगे बढ़े हैं। हॉस्टल में खराब खाना, खाने में बार बार कीड़ा निकलना, बीमार होने पर इलाज की व्यवस्था ना होना, शिक्षकों की कमी को लेकर जब छात्रों का दावा है कि स्कूल प्रशासन ने शिकायत पर कान नहीं धरा तो ये सड़क जाम करने निकल पड़े। लखनऊ में छात्रों की तरफ से सड़क जाम की खबर सुनते ही पहले जहां छात्रों को हटाने के लिए पुलिस दिखती रही, वहीं अब की बार ऐसा शायद पहली बार देखा या सुना गया है जब कोई मंत्री तुरंत समस्या सुनने पहुंच गया हो। जैसे असीम अरुण यूपी के समाज कल्याण मंत्री प्रदर्शन करते छात्रों के बीच पहुंचकर सीधे कहते हैं कि चलो तुम्हारी बातें सुनते हैं, शिकायत समझते हैं।
12: टीचर है कोई यहाँ पे? पहला काम करो, सुनो, तुरंत साइड में आओ, अंदर चलो, बात करते हैं, ट्रैफिक खोलो, ठीक है।
1: इसके बाद तुरंत छात्र मंत्री असीम अरुण के साथ भीतर आते हैं। यही आज हम आपको दिखा रहे हैं कि छात्र संविधान से मिले अधिकार और कर्तव्य दोनों को समझ रहे हैं, जो अपने अधिकार के लिए प्रदर्शन करने का अधिकार भी जानते हैं और मंत्री की तरफ से समस्या सुने जाने की बात आते ही तुरंत रास्ता भी छोड़ देते हैं और फिर समाधान की बात आती है।
12: काफी हद तक किया हम लोग ने, लेकिन मैं स्वयं अभी संतुष्ट नहीं हूँ। हम लोग को कमियों को और दूर करना है। पहली चीज, जितने स्टाफ सारे हमारे क्वार्टर बन गए, हमारे ट्रांजिट हॉस्टल बन गए, टीचर्स 24 घंटे यहाँ पे रहेंगे, कोई हाँ फार्मासिस्ट भी और भी नॉन टीचिंग स्टाफ जिसके लिए आवास अवेलेबल है। ये आवासीय विद्यालय है, केवल बच्चों का नहीं स्टाफ का, और जिसको रहने में समस्या आ रही है वो अपना इस्तीफा देते घर जाए।
1: लोकतंत्र की यही ताकत है जो इस स्वतंत्रता दिवस को विशेष बना रही है। जहां स्कूली शिक्षा का बुनियादी ढांचा लचर है उसे मजबूत करने की मांग खुद बच्चे कर रहे हैं। अधिकार और कर्तव्य को समझते भारत के जैन अल्फा की दूसरी गवाही भी उत्तर प्रदेश से आई है। आपको हम कन्नौज लेकर चलते हैं। कन्नौज के जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले ये वो जैन अल्फा हैं जो अपनी समस्याओं के निदान के लिए सड़क पर नहीं उतरे बल्कि खुद को ही एक कमरे में बंद कर लिया। इनका वीडियो वायरल हुआ, मीडिया पहुंचा, इन छात्रों ने अपनी पहचान छिपाने को मुंह ठक लिया। ये इनका अधिकार है, लेकिन अपने दूसरे अधिकारों के लिए इन्होंने खुद को क्लास में लॉक करने का ऐसा तरीका लगाया कि प्रशासन को जागना पड़ा। पहले शिकायत सुनिए फिर समाधान।
13: हमारी कई दिनों से समस्याएं थी जिनको लेकर हम झेल रहे थे, सह रहे थे, लेकिन अब कुछ ज्यादा ही ओवर हो गया था सर। तो उसके लिए हमने ये किया क्योंकि परेशान हो चुके थे, और एक नहीं, क्लास सिक्स के जूनियर से लेकर क्लास ट्वेल्व के बच्चे सभी परेशान। मैथ्स में खाने की सही व्यवस्था नहीं होती, हाउस में लाते हैं। खाने की व्यवस्था इसलिए नहीं क्योंकि 550 बच्चे हैं वहाँ पर, ना तो फैन लगा है ना कोई फैन, वैसे क्या नाम गैस फैन नहीं लगे हैं, तो सफोकेशन होती है। खाते हैं वहाँ पर, बच्चे भी नहीं बैठ पाते, 550 बच्चे हैं, इतनी जगह नहीं है। तो हम लोग हाथ में ले आते हैं तो ये कहते हैं कि तुम लेटरिन में खाते हो, उसी का सूंघते हो, उसी में खाते हो, उसी में बैठकर खाते हो, गंदे गंदे सब खाना। ऐसा कच्चे चावल रखे हैं, हम दिखाते हैं चावल कच्चे बिल्कुल, जो गले से नीचे ना होते। हम लोग करीब 100 से 100 बच्चे हैं।
12: कितनी देर से बंद है
13: सर? हम कल
12: 4 बजे से,
13: कल शाम से हम लोगों ने खाना नहीं खाया।
12: स्कूल प्रशासन की सूचना दी थी इस बात की आप लोग बंद है अंदर?
13: सूचना आए विद्यालय, हमारी डिमांड है कि डीएम सर आए और हमसे बात करें आकर।
14: इस विद्यालय में बच्चों को कुछ अपनी कठिनाइयां थीं जिसमें हम लोग आज गए और उनके बीच वार्ता की। जहां वो रह रहे थे उनके हॉस्टल में, उन्हीं के बीच में हम लोग बैठे। सभी बच्चे अनुशासित हैं, अच्छे बच्चे हैं और मेरिट में ये लोग सेलेक्ट होकर के यहाँ आए हैं। विधिवत रूप से उनको सुना गया है, जो उनकी कठिनाइयां थी उनके बारे में हम लोग दूर करेंगे उनको, और सरकार हर तरीके से विद्यार्थियों के साथ है और मेधावी विद्यार्थियों के साथ भी है। किसी प्रकार की कोई कठिनाई इन लोगों को नहीं होने देंगे।
1: इससे पहले यूपी के हमीरपुर में भी जैन अल्फा ने अपना आक्रोश दिखाया। स्कूल के रास्ते में आने वाले गड्ढों के खिलाफ जेन अल्फा तिरंगा लेकर निकल पड़ता है। स्कूल की सड़क बनवाने के लिए स्कूली बच्चों ने 5 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली। ये बच्चे डीएम ऑफिस तक पहुंचते हैं और जेन अल्फा के आक्रोश के बाद प्रशासन भरोसा देता है कि अब जल्द ही यहां 1,81,00,000 रुपए खर्च करके सड़क बनवाई जाएगी।
15: इतनी सड़क के बारे में कोई सोचना करनी है।
16: कितनी बार यहां आ चुकी हैं?
15: यहां कम से कम 2-4 बार तो आ ही चुके हैं, लेकिन यहां कोई सुना ही नहीं कर कल बता रहे थे जाओ जाओ जाओ, एक हफ्ते में काम चालू हो जाए, 15 दिन में काम चालू हो जाए, लेकिन कोई काम हम चालू नहीं होता। ऐसा संदेह भगा दिया था, हम लोग चले जाते हैं वापस, बता देते एक हफ्ते में हो जाए, 15 दिन में हो जाए, 1 महीने में हो जाए, लेकिन काम ही चालू ही नहीं होता।
1: और यही वजह है कि सीएम योगी अब जेन अल्फा को भी खुश रखना चाहते हैं। अब देखिए, सीएम योगी ने जेन अल्फा को नई सौगात दी है। यूपी के 10 लाख सरकारी स्कूलों के बच्चों को जल्द 1,200 रुपए दिए जाएंगे और ये रकम सीधे अभिभावकों के खातों में पहुंचेगी। ये रकम ड्रेस, जूते, मोजे और अन्य जरूरी स्कूल सामग्री खरीदने के लिए दी जाएगी। पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में भी इसकी निगरानी की जाएगी ताकि बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में स्कूल आएं। आपको बता दें कि 1.1 करोड़ बच्चों को ये राशि पहले ही मिल चुकी है। यूपी के परिषदीय स्कूलों में कुल करीब 1.35 करोड़ विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। इनमें से करीब 1.1 करोड़ विद्यार्थियों के अभिभावकों को पहले ही डीबीटी के जरिए राशि भेजी जा चुकी है। अब नए दाखिले लेने वाले और किसी कारण से राशि से वंचित रहे विद्यार्थियों को शामिल किया जा रहा है। 10 लाख छात्रों का डेटा तैयार कर लिया गया है और इन्हें जल्द राशि भेजी जाएगी। सीएम योगी समझ रहे हैं कि एक भी बच्चा छूटा तो समझो सुरक्षा चक्र टूटा। जेन अल्फा के आगे झुकना भी सियासी पार्टियों की मजबूरी क्यों है वो भी आपको समझाते हैं। भारत के कानूनी नियमों के अनुसार वोट डालने की न्यूनतम उम्र 18 साल है। इस नियम के हिसाब से जेन अल्फा के बच्चे साल 2028 से 2042 के बीच वोटर बनने के योग्य होंगे। इस पीढ़ी के सबसे बड़े बच्चे जिनका जन्म 2010 से 2011 के बीच हुआ वो साल 2028 से 2029 तक 18 साल के हो जाएंगे। यानी 2029 के लोकसभा चुनाव में इनका एक छोटा हिस्सा पहली बार मतदान करेगा और इसीलिए सियासी पार्टियां ना जेन जी को नजरअंदाज कर सकती हैं और ना ही जेन अल्फा को। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव और आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
17: और आइए अब हम आपको दिखाएंगे कैसे उत्तराखंड में एक और टनल हादसा हो गया। चमोली में एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के टनल हादसे में 7 मजदूर हमारे मारे गए जबकि 3 लापता हैं जिनकी तलाश की जा रही है। 12 मजदूर घायल हैं। लेकिन सवाल यह है कि बार बार क्यों उत्तराखंड में टनल हादसे हो रहे हैं? देखिए,
1: उत्तराखंड में एक और मौत की सुरंग बनी है चमोली जिले के पीपल कोटी की टीएचडीसी की सुरंग। तस्वीरें बता रही हैं कि सुरंग के अंदर इस वक्त क्या हालात हैं। पूरी स्थिति समझने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि यह हादसा कहां और कैसे हुआ। उत्तराखंड के चमोली जिले के पीपल कोटी में टीएचडीसी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहा है। यह प्रोजेक्ट अलकनंदा नदी पर बन रहा है जिसकी क्षमता होगी 444 मेगावाट। बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट का 80% काम पूरा हो चुका है। इस प्रोजेक्ट के तहत एक 65 मीटर ऊंचा डैम बन रहा है जिसमें 2 सुरंगें होंगी। पहली है हेड रेस टनल यानी HRT जिसकी लंबाई है 13.4 किलोमीटर और दूसरी है टेल रेस टनल TRT जिसकी लंबाई है 3.04 किलोमीटर। गुरुवार को जो हादसा हुआ वो इसी TRT सुरंग में हुआ है। अब ये समझिए कि यह हादसा कैसे हुआ। इस इलाके में जमकर बारिश हो रही है, मॉनसून का सीजन है और आसमान से आफत बरस रही है। कई जगहों पर भूस्खलन और बादल फटने की घटनाएं भी हो रही हैं। इन हालात में भी इस टनल में काम चालू था। बताया जा रहा है कि गुरुवार को अचानक से सुरंग में 150 मीटर दूर तेज आवाज के साथ भारी भूस्खलन हुआ। मलबा, पत्थर और पानी तेज गति से टनल के अंदर घुस गए। उस वक्त वहां पर कुछ मजदूर काम कर रहे थे। इसी हादसे में कुछ मजदूर मलबे में दब गए और बाकी फंस गए। टनल में कई जगह से मलबा आने से ऑक्सीजन लेवल बेहद कम हो गया था। बताया जा रहा है कि टनल के अंदर मलबा 2 दिन से आ रहा था लेकिन इसके बाद भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ने इस पर ध्यान नहीं दिया और काम चालू रखा।
18: इसके बाद तो टनल में लगातार पानी भरता गया। हालांकि हादसे की सूचना मिलते ही राहत और बचाव दल मौके पर पहुंच गया था। ये तस्वीरें बता रही हैं कि अंदर क्या हालात थे।
17: दस्तक में एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, लौट कर आएंगे तो दस्तक के अगले हिस्से में आपको दिखाएंगे पानी पर पाकिस्तान की गीदड़ भभकी। आप देखते रहिए दस्तक।
19: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस इन एसोसिएशन विद
20: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: जिस मिट्टी में फसल उगती है उसी में भारत की स्वतंत्रता की खुशबू है। इस स्वतंत्रता दिवस आइए उन किसानों का सम्मान करें जो हर दिन देश को मजबूत बनाते हैं। मेरे और क्रिस्टल परिवार की ओर से आपके और आपके परिवार को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: बिजली का बिल पेड़
2: तो है, मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
3: कैसे?
2: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो पे।
3: इतना माही वे।
4: पापा।
5: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
5: छक्का?
4: सब कैशलेस हो गया है।
5: हाँ ला भाई मेरा बैट।
4: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
6: चार्ज हुआ यार।
7: बैट किसका है?
8: टाटा AIG है तो भरोसा है।
9: Where the software engineer meets the gifted content writer to create the big dream, the world comes together at Sharda University.
10: आगे आगे।
11: अरे उधर
10: उधर किधर?
11: करेक्ट करेक्ट।
12: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: कुछ भी खा नहीं पा रहा हूँ, बहुत अपसेट हूँ।
3: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
4: लायन डेट नट बाइट्स।
5: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
6: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
7: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
8: सोच बदलो और बैंक भी।
9: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
10: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
11: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: in association with
1: Cera Sanitary Wear. It's your moment of Cera. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: भिखारियों का मनोविज्ञान क्या है?
3: तैयारी तुम भी कर रहे हो क्या?
4: नहीं सर।
3: 12th किससे की हो?
4: 12th सर मेरा PCM से रहा।
3: कंपाउंड क्या होता
4: है? बेसिकली जो एक्युमुलेटेड चीजें रहती हैं उसके ऊपर।
3: यही है भीख मंगे वाली क्वालिटी। तुम पूछ रहे थे ना? यही है, यही एक मिनट।
4: ये जो आपका तरीका बहुत सर बहुत अच्छा नहीं है, इस तरीके से समझाने का स्टूडेंट्स को, इसे सर ह्यूमिलिएशन कहते
3: हैं। देख भाई, अपनी गारंटी पे छेड़ना।

0: जम्मू कश्मीर में बारिश आफत बनकर आई। पहाड़ों पर मूसलाधार प्रहार से कई इलाकों में फ्लैश फ्लड आ गया, तो कहीं मलबे के साथ पानी की तेज धारा घरों और गलियों तक पहुंच गई। ये जम्मू कश्मीर की भद्रवाह की तस्वीरें हैं। बाजार पर पानी का कब्जा हो गया है, चौक चौराहों पर बहाव इतना तेज है कि मानो यहाँ सड़क नहीं नहर बह रही है। भारी बारिश के बाद भद्रवाह के कई इलाकों से इसी तरह की तस्वीरें आईं। रिहायशी इलाकों में भी बारिश का पानी घुस गया। जिन गलियों में बच्चे खेलते थे वहां पानी की तेज धारा बह रही है। ये तस्वीर भी भद्रवाह की है। जामिया मस्जिद चौक पर अचानक फ्लैश फ्लड जैसे हालात हो गए। लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। इस दौरान कुछ लोग एक बाइक को भी इस पानी से बचाने की कोशिश करते दिखे। कड़ी मशक्कत के बाद एक बाइक तो बच गई, लेकिन सड़क किनारे खड़ी दूसरी गाड़ी पानी में बह गई। जो जिला सुरंग के पास ऊंचाई वाले इलाके में अचानक बादल फटने की घटना हुई, जिसके बाद वहां भी फ्लैश फ्लड आ गया। पानी के साथ मलबा और बड़े पत्थर भी बहने लगे। भारी मलबे की वजह से जोजिला का रंगा मोड़ ब्लॉक हो गया। हालांकि बीआरओ ने अपनी टीमों को तैनात कर दिया है, स्थिति पर नजर रखी जा रही है। अब जरा शिमला की भी तस्वीरें देखिए। भारी बारिश के चलते जगह जगह लैंडस्लाइड की खबरें सामने आ रही हैं। शिमला के ढली इलाके में सब्जी मंडी के पास अचानक पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। गनीमत रही कि ये पत्थर जिन वाहनों पर गिरे उसमें लोग नहीं थे। पत्थरों की वजह से 12 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। भारी बारिश की वजह से चित्तौड़गढ़ के मेनाल प्रपात में भी जलस्तर बढ़ा हुआ है। यहाँ पिकनिक मनाने गया एक शख्स पानी में बहने लगा। अचानक हुई इस घटना से वहाँ अफरा तफरी मच गई। आसपास खड़े लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को निकाल लिया। आज तक ब्यूरो।
1: जिस दिन तक नरेंद्र मोदी अपना इस्तीफा नहीं देंगे, अमित शाह नहीं हटेगा, उस दिन तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं सो पाएंगे। उनको हम जगा के रखेंगे, पूरी रात जगा के रखेंगे, जब तक वो कलैप्स करके कहें कि भैया ये हमारी बस की नहीं है, माफ करो, छोड़ दो हमें। फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी।
2: एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ। मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था?
1: आई हैव नॉट रीच देयर येट, बट पता नहीं कहां से घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी का मतलब नेताओं से गले लगना।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
1: आप देख रहे हैं दस्तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। एक बार फिर से आपका स्वागत। और अब खबर पाकिस्तान की। जी हां, पानी के लिए तड़पता पाकिस्तान कैसे बार बार हमारे देश भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है। अब पाकिस्तान के पीएम शहबाज ने सिंधु जल समझौते को लेकर धमकी दी कि अगर पाकिस्तान के हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं होगा, अगर इसे रोकने या कम करने की कोशिश हुई तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। शरीफ ने कहा कि पानी की हर बूंद पाकिस्तान के लिए रेड लाइन है। शरीफ की धमकी के बाद लश्कर के आतंकी की गीदड़ भभकी भी आई। देखिए कैसे पाकिस्तान के लिए पानी के लिए पाकिस्तान बुरी तरह से बिलबिला रहा है।
2: पानी पर पाकिस्तान की फिर घुड़की, शहबाज शरीफ की गीदड़ भभकी।
3: पाकिस्तान के पानी की एक एक बूंद हमारी रेड लाइन है। भारत राह रास्त पर ना आया तो उसे राह रास्त जवाब दिया जाएगा।
2: पानी के लिए पाकिस्तान बौखलाया, सिंधु समझौते पर तिल बिलाया। बूंद बूंद पानी के लिए तरसेगा पाकिस्तान, मोदी का मैसेज क्लियर है।
4: तय कर लिया है खून और पानी एक साथ नहीं बहे।
2: हाफिज सईद, मुनीर शहबाज, बिलावल मरियम सब चीखते रह जाएंगे।
5: पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते।
6: इस मुल्क की आवाम में इतना ताकत है जो आपकी छीक गया है वो वापस हासिल भी कर सकते हैं।
7: अगर तू पानी बंद करेगा इंशाल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा।
8: हिंदुस्तान के हक का जो पानी है उस पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का है।
2: भारत का प्रोजेक्ट सिंधु नदी, पाकिस्तान पर फूटेगा वाटर बम। इसे कहते हैं मरे में दो लात और लगाना। पाकिस्तान ने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी। ना पाकिस्तान पहलगाम में आतंकी हमला करवाता और ना उसे ऐसे दिन देखने पड़ते। पाकिस्तान ने भारत के साथ जो दुश्मनी पाली है अब उसे उसके कर्मों का पूरा फल मिल रहा है। और अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भारत को सिंधु जल संधि पर जंग की गीदड़ भभकी दे रहे हैं। तो इससे ये साबित हो जाता है कि पाकिस्तान कैसे पानी के लिए तड़प रहा है, तरस रहा है। सिंधु जल समझौता सस्पेंड किए जाने से तिलमिलाए शहबाज ने कहा है कि पानी की एक एक बूंद पाकिस्तान की रेड लाइन है। शहबाज ने खोखली धमकी दी कि अगर भारत होश में नहीं आया तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा।
3: जंग में शिकस्त के बाद भारत ने सिंध तास मुआहदे को यकतरफा और गैर कानूनी तौर पर मुअत्तल करके खुद को अमन का दुश्मन साबित किया है। मैं वाशगाफ अल्फाज में ऐलान करता हूं कि पाकिस्तान के पानी की एक एक बूंद हमारी रेड लाइन है। भारत राह रास्त पर ना आया तो उसे राह रास्त जवाब दिया जाएगा।
2: पाकिस्तान की सरकार और आतंक के आकाओं में किस तरह की सांठगांठ और गठजोड़ है एक बार फिर से ये साबित हो रहा है। सिंधु जल समझौता रद्द होने पर शहबाज शरीफ ने धमकी दी तो लश्करे तैयबा के कमांडर सैफुल्ला खालिद कसूरी ने भी गीदड़ भभकी दी।
9: इसी तरह पाकिस्तान को आलमी इस्तेमारी निशानों और सूती शिकंजों से आजाद करवाना भी पाकिस्तान की तकमील के लिए इंशाअल्लाह लाजिम है। इनसे भी जान छुड़वाएंगे, सूती कर्जे की लानत से अपनी कौम को निकालेंगे, पाकिस्तान का केस लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, कुर्बानियां पेश करेंगे, कश्मीर भी लेंगे, तिब्रापन भी लेंगे, पाकिस्तान के पानियों का इंशाअल्लाह कतरा कतरा भी लेंगे और यूं अपनी आजादी की तकबील इंशाअल्लाह करेंगे।
2: अभी हाल ही में सैफुल्ला कसूरी को भारत सरकार ने घोषित आतंकियों की लिस्ट में शामिल किया है। ये पहली बार नहीं है जब से भारत ने पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सिंधु नदी का पानी रोका है, पाकिस्तान से लगातार गीदड़ भभकियां आ रही हैं। इससे पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान पानी के लिए भारत के खिलाफ जंग भी छेड़ सकता है।
10: बगलियार में उन्होंने अपनी मर्जी का डिजाइन किया, बाकी जगह वो तमाम अपने वो प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं।
11: They are going on with construction. Let me explain. मैं पिछले एक दो साल तीन साल की बात नहीं कर सकता, लेकिन मेरा ख्याल है कि बड़ी चेंज नहीं आई। अब तक जितने भी किशनगंगा वगैरह जितने भी प्रोजेक्ट सारे उस सारे के सारे पाकिस्तान ने मॉनिटर किए हुए, बल्कि जाकर फिजिकली इंस्पेक्ट किए।
10: अगर मैं आपसे बड़ा सिंपल पूछूं,
11: और ये IWT की उसमें, लेकिन पिछले एक साल में जब जंग हुई है उसके बाद जब उन्होंने धमकियां शमकियां लगाई हैं या अब धमकियों को थोड़ा बहुत जो है वो लिबास पहना रहे हैं, तो उसमें जो है हो सकता है एक साल में कोई ऐसी सिचुएशन हुई, मेरे पास लेटेस्ट सिचुएशन नहीं है, लेकिन उससे पहले तमाम तर जो है इवन मैं जैसे आपको बता रहा था कि हाइट है रिजर्वॉयर का पानी कितना।
10: अगर हमें ये लगता है कि इंडिया उस मुकाम पे या चल पड़ा है उस सफर पे सीरियसली, या उस मुकाम की तरफ मीनिंगफुल उसकी अलार्मिंग स्पीड से काम चल रहा है, तो क्या पाकिस्तान इंडिया से इस पे जंग कर सकता है?
11: द मोमेंट वी फील दैट आवर नेशनल सिक्योरिटी, व्हाट इज पार्ट ऑफ आवर नेशनल सिक्योरिटी इज बीइंग थ्रेटन्ड, वी विल गो टू वॉर अगेंस्ट इंडिया, डेफिनेटली।
10: ठीक है,
11: किसी को शक नहीं होना चाहिए।
2: यही नहीं, पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए सिंधु नदी पर भी पीएम मोदी ने एक मास्टर प्लान तैयार किया है। जी हाँ, सिंधु नदी को व्यास नदी से जोड़ने वाली 14 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण किया जाएगा। ये सुरंग जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में बहुउद्देशीय परियोजना से भी जुड़ी होगी, ताकि रावी की सहायक नदी उज से व्यास बेसिन तक पानी पहुंचाया जा सके। इस परियोजना से जम्मू और कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब जैसे राज्यों को भी लाभ होगा। चिनाब नदी को रावी व्यास सतलुज प्रणाली से जोड़ने के लिए एक नहर का निर्माण भी किया जाएगा। यानी पाकिस्तान पर वाटर बम अब फूट चुका है। पाकिस्तान जानता है कि वो पूरी तरह से सिंधु नदी के पानी पर निर्भर है, इसलिए वो बार बार वर्ल्ड बैंक का हवाला देता आ रहा है और पानी के लिए जंग की बात भी कर रहा है।
12: आज से बहुत साल पहले जो डॉक्टर इस्माइल थे वाइस प्रेसिडेंट वर्ल्ड बैंक के, उन्होंने कहा था कि 20वीं सदी की जंगें तो तेल के ऊपर होती थी, लेकिन 21वीं सदी की जंगें जो हैं वो पानी से होंगी।
13: सिंधु और झेलम जैसी नदियों पर विवाद के लिए पंचायत किसको दी? वर्ल्ड बैंक को दी। वर्ल्ड बैंक फैसला करे क्या कर रहा है, नदी हमारी, पानी हमारा, और 80% पानी उन्होंने उसको दिया जो देश खुलेआम भारत को अपना दुश्मन करार कर देता रहा है, दुश्मन कहता रहा।
2: पाकिस्तान सिंधु सिंधु चिल्लाता रहा और भारत ने उसको पानी के लिए तरसाने का पूरा इंतजाम कर दिया। मुनीर ने भी धमकियां दी थी कि अगर सिंधु पर बांध बनाया गया तो उसे मिसाइलों से उड़ा देंगे। अब भारत ने रावी पर शाहपुर कंडी बांध बनाकर पाकिस्तान को डबल झटका दिया है। अगर भारत ने सिंधु जल संधि को रद्द किया या इस पर बांध बनाया तो हम 10 मिसाइलों से उसे खत्म कर देंगे। सिंधु नदी भारत की निजी संपत्ति नहीं है, हमारे पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है, हम एक परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं, और अगर हमें लगता है कि हम डूब रहे हैं तो हम आधी दुनिया को अपने साथ ले जाएंगे। और इस बीच भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और वहां पन रहे आतंकियों को भारत की तरफ से सबसे करारा और सीधा जवाब मिला है। अजीत डोभाल ने पाकिस्तान को सीधी चेतावनी देते हुए कहा है कि भारत की उदारता और सहिष्णुता को उसकी कमजोरी समझने की भूल बिल्कुल न की जाए। भारत बड़ा जोखिम उठा सकता है और अंजाम की फिक्र किए बिना दुश्मन पर करारा प्रहार कर सकता है। धमकीबाज पाकिस्तान का घमंड चूर चूर करने की तैयारी भारत ने भी पूरी की है। यानी इधर पाकिस्तान ने हिमाकत की, उधर भारतीय सेना अपने दुश्मनों का वो हाल करेगी जिसकी कल्पना उन्होंने नहीं की है।
14: As far as Operation Sindoor is concerned, firstly it is still continuing. There is temporary cessation of hostilities. So the Indian Army or all the three services are preparing well for Operation Sindoor 2.0 if it takes place. Presently, we are looking at enhancing our synergy within the three services. We are looking at equipping ourselves for the next warfare. As I have told you, the next warfare will not be limited to the land, maritime and air alone. The new entries, that is the space, cyber and cognitive warfare, will play a very important role.
2: आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को सीधा संदेश दे दिया है कि भारत ऑपरेशन सिंदूर पार्ट टू के लिए तैयार है। गुस्ताखी पाकिस्तान करेगा और जवाबी कार्रवाई की तारीख, वक्त और जगह भारत तय करेगा। अब की बार आर पार की लड़ाई के लिए भारत ने सैन्य रणनीति का पूरा ताना बाना बुन रखा है, क्योंकि भारत की मिसाइलें तैयार हैं, भारत का एयर डिफेंस सिस्टम तैयार है, भारत के लड़ाकू विमान तैयार हैं और भारत का एटम बम तैयार है। आज तक ब्यूरो।
1: और अब खबर ईरान अमेरिका की। ईरान के साथ करीब 6 महीने चले युद्ध में अमेरिका को उसके सबसे महत्वपूर्ण निगरानी और हमले वाले ड्रोन बेड़े को काफी नुकसान हुआ। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट में यह बताया गया है कि ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका को अब तक 1/4 रीपर ड्रोन्स गंवाने पड़े। ईरान युद्ध में अब ट्रंप के लिए गले की हड्डी ये युद्ध बन गया, जो न उससे निगलते बन रहा है और न ही उगलते। हर दिन ट्रंप के लिए युद्ध के फ्रंट से बुरी बुरी खबरें आ रही हैं। तो आइए हम आपको दिखाएं कि ईरान से युद्ध करके कैसे फंस गया है बुरी तरह से अमेरिका।

अमेरिका के लिए मुसीबत बना ईरान, 1.2 लाख करोड़ की चपत। अमेरिका ने गवाई 1/4 ड्रोन फ्लीट, 45 MQ-9 रीपर तबाह। ईरान का युद्ध वाला लॉन्ग टर्म प्लान तैयार, अमेरिका क्या करेगा? युद्ध लंबा खींचने से तनाव में अमेरिकी सेना, 6 सैनिकों का सुसाइड। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर फंस गए सैनिक, हुर्मुज में बड़ा संकट। ईरान के साथ युद्ध अमेरिकी सेना के लिए एक महंगा ऑपरेशन साबित हो रहा है। ईरान के साथ जंग ने अमेरिकी सेना को कम से कम 45 महंगे MQ-9 रीपर ड्रोन का नुकसान उठाना पड़ा है। युद्ध शुरू होने से पहले उसके कुल 185 रीपर ड्रोन थे। ये संख्या अमेरिकी ड्रोन बेड़े का लगभग 1/4 हिस्सा है। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में ये खुलासा किया है। इस ड्रोन का इस्तेमाल अमेरिकी सेंट्रल कमांड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस के अहम शिपिंग रूट के आसपास बड़े पैमाने पर कर रही है। MQ-9 रीपर एक महंगा अमेरिकी ड्रोन है जिसका इस्तेमाल निगरानी और टारगेटेड हमलों के लिए किया जाता है। खास बात है कि भारत ने भी अमेरिका से ये ड्रोन खरीदे हैं। अखबार ने दावा किया कि ईरान युद्ध में अमेरिका के कुल खोए रीपर ड्रोन की कीमत $1.3 अरब से ज्यादा हो सकती है। इसके सेंसर और हथियारों के आधार पर हर एयरक्राफ्ट की कीमत $3 करोड़ से $5 करोड़ के बीच हो सकती है। ये खुलासा उस वक्त हुआ है जब ट्रंप दावा कर रहे थे कि अमेरिकी सेना ईरान को घुटनों के बल ले आई है। ना तो अमेरिका के खिलाफ युद्ध लड़ने की ताकत ईरान के पास बची है और न ही IRGC अब युद्ध लड़ने के लायक बची है। हर कोई हमारी नौसैनिक घेराबंदी को स्टील की दीवार कह रहा है और ईरान इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। सच्चाई यही है कि ईरान ने अमेरिकी कार्रवाइयों का जवाब देने की अपनी क्षमता खो दी है। उनके पास ना तो नौसेना है न ही वायुसेना। उनके बचे हुए सैनिकों को वेतन नहीं मिल रहा है। IRGC बर्बाद हो चुकी है और भाग रही है। उनकी लीडरशिप की स्थिति भी बहुत अनिश्चित है। ट्रंप के इस बयान पर ईरानी सेना ने सीधा पलटवार किया है। ईरानी सेना के प्रवक्ता इब्राहिम ज़ुल्फ़गारी ने कहा है कि हुर्मुज़ पहले की तरह ही पूरी तरह से ईरान के प्रबंधन और नियंत्रण में है। ईरान के सशस्त्र बलों की अनुमति और निगरानी के बिना कोई भी वाणिज्यिक जहाज या तेल टैंकर हुर्मुज़ से सुरक्षित रूप से गुजर नहीं पाया है और न ही गुजर पाएगा। ईरान के सशस्त्र बल क्षेत्र में अमेरिकी और इजरायली गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं और किसी भी प्रकार और स्तर के खतरे का पहले से कहीं अधिक बलपूर्वक जवाब देंगे। हुर्मुज़ को लेकर ईरान की नीति एकदम साफ है। ईरानी सांसद अली रेजा सलीमी ने ऐलान किया है, हुर्मुज़ ईरान के लिए परमाणु बम से कहीं अधिक मूल्यवान है और इसका उपयोग प्रतिबंधों और मुआवजे के दावों को संबोधित करने के लिए किया जा सकता है। हुर्मुज़ एक वरदान है जो ईश्वर ने ईरान के हाथों में दिया है। अमेरिकी कार्रवाइयों ने ईरान के लिए इस जल मार्ग का इस्तेमाल करने का रास्ता खोल दिया है। हुर्मुज़ के साथ हम प्रतिबंधों और मुआवजे के मुद्दे को हल कर सकते हैं और जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। मतलब यही है कि ट्रंप की सबसे कमजोर नस हुर्मुज़ है और ईरान ने इसी कमजोर नस को दबा रखा है। तो दूसरी तरफ अमेरिकी युद्धपोत USS अब्राहम लिंकन पर तैनात अमेरिकी सैनिक बढ़ते मानसिक तनाव के चलते खुदकुशी की कोशिश कर रहे हैं। नेवी टाइम्स की रिपोर्ट की माने तो USS अब्राहम लिंकन पर तैनात 6 अमेरिकी जान देने के लिए समंदर में कूद चुके हैं जिन्हें बचा लिया गया। दरअसल लंबे वक्त से युद्धपोत पर तैनात होने की वजह से अमेरिकी सैनिक मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। इस युद्धपोत पर करीब 5,000 अमेरिकी नौसैनिक और मरीन तैनात हैं। अमेरिकी सांसद माइक लेविन ने आरोप लगाया है कि युद्धपोत पर तैनात सैनिकों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आरोप के मुताबिक USS अब्राहम लिंकन के शावर में फफूंद लग गई है। युद्धपोत के कई टॉयलेट अब इस्तेमाल लायक नहीं है। सैनिकों को मिलने वाली लॉन्ड्री की सुविधा बंद है। सैनिकों को अब लंबे वक्त से गर्म पानी नहीं मिल रहा। सैनिकों को कई हफ्ते से खाने की कमी

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।

0: in association with
1: Cera Sanitary Wear. It's your moment of Cera. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
2: जनता ने जिनको तीन तीन बार नकारा, अब वो गाली गलौज पर उतर आए हैं, ओछी राजनीति पर उतर आए हैं. राहुल गांधी जी की भाषा अमर्यादा और अहंकार से भरी नजर आती है. राजनीति में मतभेद लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन अशोभनीय टिप्पणी, संवैधानिक पदों का अपमान, ये एक आदत सी बन गई है राहुल गांधी जी की. अब तो लगता है राहुल गांधी जी का पालन पोषण और संस्कार, इस पे प्रश्न चिन्ह उठने लगे हैं. कांग्रेस की मानसिकता उजागर हो रही है. भारत की गौरवशाली राजनीतिक परंपरा रही है, और इस गौरवशाली राजनीतिक परंपरा का अपमान बार बार कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया, विशेष तौर पर राहुल गांधी जी ने किया है. आप कल्पना कीजिए, एक महिला विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्ष पर अभद्र, अमर्यादित और ओछी टिप्पणी करना, ये राहुल गांधी जी और कांग्रेस की मानसिकता दिखाती है.
3: प्रधानमंत्री जी हमारे जहां जाते हैं, जिस ढंग से मिलते हैं, राहुल गांधी ने वही तो उठाया था. राहुल गांधी ने तो और कुछ कहा नहीं, किसी और ने कहा हो तो उसकी जिम्मेदारी राहुल गांधी की तो नहीं हो सकती. मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, भारत की विदेश नीति इस समय सबसे कमजोर और भारत के हितों के सबसे ज्यादा खिलाफ.
4: वो सभ्यता संपूर्ण उन्होंने भूल गया है, क्योंकि वो सभ्यता ही नहीं है उनके पास. तो अपने आप को समझते हैं ही इज बॉर्न टू रूल, ये इनके मन में अहंकार है. जब ये पूरा नहीं हो रहा है, हताश होके अत्यंत लो लैंग्वेज, फिल्दी लैंग्वेज उपयोग कर रहे हैं.
5: जो आदमी मानसिक दिवालियेपन में हो, राहुल गांधी उसी श्रेणी में आते हैं. उन्हें संसद के बदले आगरा जैसे संस्थान में रहना चाहिए, और जिसका कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, नीचता की हद है.

0: जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हाँ, और जिंदाबाद रहेगा।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब से कुछ ही क्षणों में वारदात लेकर हमारे साथी शम्स होंगे आपके साथ। आप देखते रहिए आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: फॉरेन पॉलिसी इज दिस, उनके आ रहे गले मिलने, मैं आ रहा हूं गला पकड़ने।

0: यूं तो कांग्रेस के कार्यक्रम में राहुल गांधी का सीधा हमला प्रधानमंत्री मोदी पर था। राहुल ने कई मुद्दों का जिक्र किया, सरकार की कमियों का हवाला दिया, लेकिन इन हमलों की भाषा पर अब नई सियासी जंग छिड़ गई है।
1: हम सब के पास हजारों खर्चे हैं।
0: राहुल गांधी के बयान के बहाने बीजेपी हमलावर हो गई है।
2: फ्रस्ट्रेशन इस बात की कि वो रिजेक्टेड हैं, नाटक कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं।
0: दरअसल दिल्ली के मावलंकर हॉल में राहुल गांधी रचनात्मक कांग्रेस कन्वेंशन में बोल रहे थे। निशाने पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह।
3: अब कांग्रेस पार्टी ओपोजिशन सबका एक्सप्रेशन चालू है, अब नहीं रुकने वाला। वो क्या, हाँ, थैंक यू, टाटा, गुड बाय। और मैं आपको बता रहा हूं, आप लिख लो, जिस दिन तक नरेंद्र मोदी अपना इस्तीफा नहीं देंगे, अमित शाह नहीं हटेगा, उस दिन तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं सो पाएंगे। उनको हम जगा के रखेंगे, पूरी रात जगा के रखेंगे, जब तक वो कलैप्स करके कहें कि भैया ये हमारी बस की नहीं है, माफ करो, छोड़ दो हम।
0: राहुल गांधी ने पीएम मोदी की विदेश नीति पर सवाल खड़े किए, खासकर विदेशी नेताओं के साथ उनके गर्मजोशी से गले मिलने पर तीखा कटाक्ष किया।
3: इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया, अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी, बट पता नहीं कहां से घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी का मतलब नेताओं से गले लगना।
0: राहुल गांधी की पीएम मोदी पर इन टिप्पणियों पर बीजेपी ने तीखा पलटवार किया।
4: सत्यता ही नहीं है उनके पास, हिंदी लैंग्वेज उपयोग,
3: फॉरेन पॉलिसी,
0: राहुल की भाषा को संस्कारहीन बता दिया, साथ ही उन पर महिला विरोधी होने का आरोप मढ़ दिया। दिल्ली में राहुल गांधी के ताजा बयान पर जंग छिड़ी तो सियासत यूपी तक पहुंचते देर नहीं लगी। यूपी में भी बीजेपी की ओर से राहुल पर हमलों का दौर शुरू हो गया।
5: किसान का बेटा हूं सर।
0: बीते दिनों जब प्रयागराज में राहुल गांधी ने छात्रों के बीच कार्यक्रम कर शक्ति प्रदर्शन किया था, तब भी यूपी बीजेपी के नेताओं की ओर से जोरदार हमले हुए थे। अब प्रधानमंत्री को टारगेट कर राहुल के बयानों ने यूपी की सियासत में नई जंग शुरू कर दी है। इन बयानों के बहाने बीजेपी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर हमलावर हो गई है।
3: पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा।
0: आज तक ब्यूरो।
6: सर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं हल्द्वानी में पब्लिक स्पीच में रामलीला मैदान में रामलीला स्टेज में भाषण किया और लाखों लोग वहां पर थे। उस वक्त मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए।
7: बीजेपी, क्योंकि खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग थे, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और मैं भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं। बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नेवर। लेकिन आपने कहा है, हम इसकी तहकीकात भी करेंगे।
8: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

15 अगस्त के पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का राष्ट्र के नाम संदेश, कहा युवा आबादी सबसे मूल्यवान संपत्ति, विकसित भारत के निर्माण के लिए आगे बढ़ने का आह्वान। जश्न आजादी के रंग में रंगा हिंदुस्तान, कर्तव्य पथ से लेकर राष्ट्रपति भवन तक तिरंगे की रोशनी, दिल्ली समेत पूरे देश में चप्पे चप्पे की सख्त सुरक्षा। नहीं थम रहा पीएम मोदी पर राहुल के बयान पर हंगामा, राजनाथ सिंह ने लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरे का संकेत बताया, विदेश मंत्रालय ने कहा आदर के साथ रखनी चाहिए बात। विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में जुबानी युद्ध तेज, सीएम का बयान सिर्फ सत्ता के लिए पहले की सरकारें, अखिलेश बोले यूपी में अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार। कॉकरोच विवाद पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत का बड़ा बयान, कहा मेरी बातों का गलत इरादे से गलत इस्तेमाल किया गया, युवाओं को गुमराह करने की हुई है कोशिश।

0: नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। पिछले साल भारत में आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप हुआ था। यह खिताब भारत ने जीता था। इसी वर्ल्ड कप का एक मैच खेलने के लिए ऑस्ट्रेलियाई विमेंस टीम इंदौर पहुंची थी, जहां एक ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी के साथ छेड़खानी की शर्मनाक वारदात हुई। इस सिलसिले में इंदौर पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया था, लेकिन खुद पुलिस को मालूम नहीं था कि छेड़खानी के इल्जाम में जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है वो 11 साल पुराने एक कत्ल का राज खोल देगा।
1: ये इंदौर के तेजाजी नगर के रहने वाले छगन और उनका परिवार है। इस परिवार को पूरे 11 सालों के बाद एक ऐसी खबर मिली है जिसकी आस उन्होंने लगभग छोड़ ही दी। ये और बात है कि दिल के किसी कोने में उम्मीद की एक लौ फिर भी टिमटिमा रही थी। अब इस परिवार के इन दो नौजवान सदस्यों को देखिए। एक इस परिवार का दामाद है चेतन खरे, जबकि दूसरा है इस परिवार का बेटा विनोद पटेल। गौर कीजिए, चेतन और विनोद दोनों के सिर में लंबे बाल हैं, और इन लंबे बालों का संबंध 11 साल पुरानी उस खबर से है जिसका इंतजार इस परिवार के साथ साथ चेतन और विनोद को भी इतने सालों से था। दोनों ने उसी खबर की उम्मीद में इतने सालों तक अपने बाल भी नहीं कटवाए, लेकिन अब जब वो खबर इन्हें मिल चुकी है, चेतन और विनोद ने आंध्र प्रदेश के मशहूर तिरुपति बालाजी मंदिर में जाकर अपने बाल कटवाने का फैसला किया है। यकीनन इस खबर से पटेल परिवार में राहत भी है और खुशी भी। अब सवाल यह है कि आखिर वो कौन सी खबर है जिसने इस परिवार को पूरे 11 सालों तक बेचैन रखा, जिसने एक माँ को पूरे 11 सालों तक ठीक से सोने भी नहीं दिया, और जिस खबर की उम्मीद में इस घर के बेटे और दामाद को अपने बालों वाली भीष्म प्रतिज्ञा करनी पड़ी। तो आइए अब आपको उस खबर की कहानी सिलसिलेवार तरीके से बता दें। असल में इस परिवार का एक बेटा 11 साल पहले तब गुमनाम कातिलों का शिकार बन गया था, जब वो एक बाइक पर अपनी बहन के घर जाने के लिए निकला था। 17 अप्रैल 2015 को 17 साल का कृष्णा घर से निकलने के बाद गायब हो गया। इसके बाद उसकी कोई खबर नहीं मिली। घर वाले उसे ढूंढते रहे और हार कर उन्होंने पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी। लेकिन उनकी उम्मीदों को तब बड़ा झटका लगा जब करीब 5 दिन बाद उसकी लाश शहर के ही खजराना बाईपास के इलाके से सड़ी गली हालत में बरामद हुई। एक वो दिन था और एक आज का दिन। इंदौर पुलिस के लिए कृष्णा की मौत एक ऐसी अबूझ पहेली बनी हुई थी जिसका दूर दूर तक उसके पास कोई सुराग नहीं था। मामले की तफ्तीश धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चली गई, मगर अब एकाएक 11 साल बाद पुलिस ने इंदौर के उस ब्लाइंड मर्डर की पहेली को न सिर्फ सुलझा लिया है, बल्कि 2 में से 3 गुनहगारों को गिरफ्तार करने का भी दावा किया है। और कृष्णा के कत्ल के इसी खुलासे ने उसके इस परिवार को वो राहत दी है जिसका इंतजार उन्हें 11 सालों से था। लेकिन आखिर 11 साल बाद एकाएक इस मामले का खुलासा हुआ कैसे? आखिर कैसे पुलिस ने उस केस को अचानक सॉल्व कर लिया जिसका उसके पास कल तक कोई क्लू ही नहीं था? तो इस सच्चाई को जानना भी कम जरूरी नहीं। आपको याद होगा 2025 में ऑस्ट्रेलिया की विमेंस क्रिकेट टीम भारत में आईसीसी वर्ल्ड कप खेलने पहुंची थी। तब ऑस्ट्रेलिया का एक मैच इंदौर में भी था, लेकिन इंदौर के साथ साथ उस वक्त पूरे देश के बाशिंदों को तब काफी शर्मिंदगी हुई जब ऑस्ट्रेलिया की टीम की एक मेंबर के साथ शहर के पॉश इलाके में छेड़छाड़ की वारदात हुई। इसके बाद इंदौर पुलिस ने करीब 6 घंटे की मशक्कत के बाद उस वारदात को अंजाम देने वाले सिरफिरे को धर दबोचा। इंदौर के इस परिवार को मिली राहत की उस खबर का ताल्लुक 10 महीने पुरानी छेड़छाड़ की उस वारदात से भी है, क्योंकि पुलिस ने कृष्णा के कत्ल के इल्जाम में जिस शख्स को गिरफ्तार किया है वो आरोपी कोई और नहीं बल्कि वही अकील उर्फ नाइट्रा नाम का छठा हुआ बदमाश है जो ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर के साथ हुए छेड़छाड़ के केस का संदिग्ध गुनहगार है। अब कृष्णा के कत्ल के आरोप में गिरफ्तार होने के बाद अकील और उसके साथी आरिफ ने 17 अप्रैल 2015 की उस मनहूस वारदात की पूरी कहानी सुनाई है जिसने पटेल परिवार की सारी खुशियां एकाएक छीन ली थी। असल में कृष्णा को उस दिन अपने जीजा के साथ डॉक्टर के पास जाना था, लेकिन वो बीच रास्ते से ही गायब हो गया।
2: उस दिन हुआ क्या था, उस दिन हमको हॉस्पिटल जाना था। ये कृष्णा पटेल उनके घर से आ रहे थे, मैं केलोत था, तो उनको हॉस्पिटल लेके जाना था। तो 11:00 में इनका फोन आया कि जाजी मैं जीजा मैं टोल टैक्स के आगे आ गया हूँ। उसके बाद मैंने बोला कि आप फाइल लेके आए, तो यार फाइल तो लाया नहीं हूँ मैं। तो मैंने कहा फाइल तो लाना पड़ेगी, डॉक्टर को दिखाना है अपने को, फाइल वहीं है। तो ठीक है, तो उसके कुछ 10-15 वहाँ से इनको आना रहता, कम से कम 10-15 मिनट का फासला रहता इतनी दूर आने में, जितनी देर अपन आए। तो उन फाइल लेके वहाँ पर वापस पहुँचे नहीं, उनका थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट बाद उनका फ़ोन कवरेज एरिया आ रहा था कृष्णा पटेल का। तो उसके बाद मैंने विनोद पटेल को यहाँ पे घर पे फोन लगाया कि यार कृष्णा आए क्या, तो बोले यार जाजी यहाँ से तो निकली कि आए नहीं यार। हमने फिर उसके बाद ढूंढा ढांडी, पहले हमने यहाँ पे पूछा तो हो सकता है कि कहीं परिवार में निकल गए। हमने परिवार जनों से भी बातचीत की, बोले यार यहाँ पे नहीं आए, यहाँ पे नहीं आए। हम 2-3 बजे तक, मतलब 3-4 बजे तक हम सब दूर ढूंढा करें कि यार ऐसा ऐसा हो सकता है। तो फिर हम तेजाजी नगर थाने पे गए।
1: इसके बाद फिर कृष्णा की लाश ही बरामद हुई। खजराना बाईपास के पास जिस सुनसान इलाके में उसकी लाश मिली, वहीं कृष्णा की जली हुई बाइक भी पड़ी थी। लेकिन तब से लेकर गुनहगारों के पकड़े जाने तक कृष्णा के घर वालों को ये बात समझ ही नहीं आई कि आखिर उनके मासूम बेटे की जान किसी ने क्यों ली।
3: 11 साल आपके कैसे निकले, क्योंकि एक आपका बहुत लाड़ का बेटा था।
4: कैसे निकले वो तो माँ की आत्मा ही जानती है कि कैसे निकले। मैं 7 साल तक सोई नहीं हूँ, आज भी नहीं सोती हूँ, रात भर फिरती हूँ, मेरी नींद ही उड़ गई। वक्त तो क्या निकलेगा, वो तो दिल से क्या बुलाए, अपना बेटा क्या बुला रहा है, मरते दम तक नहीं बुलाता है।
1: पुलिस के लिए कृष्णा की मौत एक ऐसी पहेली थी जिसे वो सालों साल सुलझाने की कोशिश करती रही, मगर उसे कोई कामयाबी नहीं मिली और केस धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। उधर कृष्णा की जान लेने वाले आरोपी अकील उर्फ नाइट्रा, आरिफ और परवेज कानून की नजरों से दूर एक के बाद एक जुर्म की वारदातों को अंजाम देते रहे। कृष्णा का कत्ल करने के बाद अकील और आरिफ उज्जैन निकल गए और वहां भी उन्होंने कत्ल की एक और वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद अकील और आरिफ दोनों अलग अलग मौके पर गिरफ्तार भी हुए और जेल भी गए। फिर बाद में दोनों जमानत पर बाहर भी आ गए। और इसी बीच अकील ने ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर के साथ छेड़छाड़ की उस वारदात को भी अंजाम दिया। मगर अब इंदौर पुलिस को अपने मुखबिरों के जरिए अकील उर्फ नाइट्रा के बारे में एक चौंकाने वाली जानकारी मिली। मुखबिर ने बताया 11 साल पहले खजराना में 17 साल के जिस कृष्णा नाम के लड़के की हत्या हुई थी, उस वारदात को अकील ने ही अपने 2 साथियों के साथ अंजाम दिया था। असल में जेल में बंद रहने के दौरान अकील ने एक बार शेखी बघारते हुए अपने एक साथी कैदी को हत्या की धमकी दी और ये कहा कि जिस तरह उसने कृष्णा समेत और कई लोगों की हत्या की है और पुलिस को इसके बारे में पता ही नहीं चला, वो उसकी भी हत्या कर देगा और किसी को कानोकान खबर भी नहीं होगी।
5: हरियाणा पुलिस ने एक लगभग 11 वर्ष पुराने अंधे कत्ल का खुलासा किया है। इसमें 17 अप्रैल 2015 को कृष्णा नाम के लड़के का अपहरण और उसके बाद में हत्या का मामला पंजीबद्ध किया गया था। तब समय माधवी में धारा 363 और 302 का यह अपराध था। मृतक के गले पे चाकू से प्रहार करके उसकी हत्या की गई थी। इसमें सतत चेष्टा तत्समा भी की गई थी, किंतु अपेक्षित सफलता न मिलने के कारण इसमें खात्मा किया गया था। वर्ष 2019 में ऑपरेशन उजागर के तहत कई सारे अंधे कत्ल के मामले में पुनः खोला गया था। तब से यह मामला लगातार पेंडिंग चल रहा था। अभी हाल ही में विश्वस्त मुखबिर सूचना पर से यह ज्ञात हुआ कि इस पूरे घटनाक्रम में 3 आरोपी सम्मिलित थे।
1: इत्तेफाक से जेल में बंद उस कैदी ने बाहर आकर अकील के इस बड़बोलेपन के बारे में पुलिस के एक मुखबिर को खबर दे दी और इस मामले का खुलासा हो गया। पुलिस ने उस खुफिया खबर के आधार पर पहले अकील को पकड़ा और फिर उसके साथ ही आरिफ को। कृष्णा का कत्ल अकील और आरिफ ने परवेज के साथ मिलकर किया था। अब परवेज की मौत हो चुकी है, ऐसे में पुलिस ने अकील और आरिफ को गिरफ्तार करने के साथ साथ इस मामले का खुलासा कर दिया है।
6: जब मैंने यहाँ पर खजराना थाने पर पोस्टिंग हुई, तो उसके बाद में इस अपराध को मैंने बारीकी से देखा इसको और विवेचना के हर पहलू पर देखा, तकनीकी साक्ष्यों का संकलन किया, अपनी मुखबिर सूचना तंत्र मैंने डेवलप किया। तो हमारी टीम के द्वारा मिलकर इसमें बड़ी एक सफलता मिली है, जिसमें आरिफ और अकील तो आरोपी हैं जिनके द्वारा उक्त घटनाक्रम अंजाम दिया गया। एक परवेज एक साथी और था इनका, जो बीमारी के कारण जेल में मृत्यु हो चुकी है जिसकी, और दोनों काफ़ी आदतन और शातिर बदमाश है, एक के विरुद्ध 14 अपराध है, एक मतलब 3 अपराध हैं और सभी गंभीर प्रवृत्ति के अपराध हैं और ये हेवी काफ़ी आपराधिक किस्म की व्यक्ति है। बड़ी मनोवैज्ञानिक तरीके से इन लोगों से पूछताछ की गई हमारी टीम द्वारा, परिजनों इत्यादि को भी उसके मृतक के विश्वास में लिया गया और उन लोगों से जब हम लोगों ने शिनाख्त की इत्यादि ये सब चीज़ों की कार्रवाई की तो उससे हम लोगों के संदेह करने का कोई नहीं।
7: आरोपियों ने कृष्णा को किडनैप किया और यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर दूर खजराना इलाके में ले जाकर उसकी हत्या कर दी थी। हत्या का कारण था उसके पास गोल्ड का लॉकेट था, ब्रेसलेट था, लेकिन जो आरोपी हैं वो कृष्णा से जब इस चीज़ की डिमांड कर रहे थे तो कृष्णा ने इसका विरोध किया था और विरोध करने के बाद जो है कृष्णा की गला रेत कर हत्या कर दी थी और उसके बॉडी को खजराना छोड़कर चले गए थे। लेकिन कहते हैं ना कि जुर्म जब होता है तो कहीं ना कहीं अपने निशान छोड़ जाता है और वही वजह थी आरोपियों ने इसके बाद उज्जैन जाके क्राइम किया था। वहाँ भी एक जो मुसाफिर है उसकी कार से छीनकर गोली मारकर उसकी हत्या की थी और इसके बाद वो जेल चले गए थे। आरोपी पर तकरीबन 14 से 15 मामले दर्ज हैं लेकिन पुलिस ये कबू अब तक उस बात को, इस हत्याकांड को उजागर नहीं कर पाई थी। इसके पहले भी एक ऑस्ट्रेलियन महिला खिलाड़ी के साथ छेड़छाड़ का भी ये आरोपी रह चुका है।
1: अकील ने पूछताछ में पुलिस को बताया है कि उस दिन वो तीनों नशे की हालत में खजराना बाईपास इलाके में घूम रहे थे, तब उन्हें बाइक पर कृष्णा आता हुआ दिखाई दिया जिसने चांदी की चेन और सोने की पेंडेंट पहन रखी थी। उसके साथ लूटपाट करने के इरादे से तीनों ने पहले उससे लिफ्ट ली और फिर सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ छीना झपटी करने लगे और जब कृष्णा ने इसका विरोध किया तो फिर अकील ने उसके गले में चाकू मारकर उसकी जान ले ली। इसके बाद उसकी लाश को वहीं छोड़कर उसके पास मौजूद सारी कीमती चीजें लूट ली और सबूत मिटाने के लिए उसकी बाइक को भी आग के हवाले कर दिया।
6: मुख्य वजह थी इन लोगों के द्वारा लूट करना। एक्चुअली ये लोग लिफ्ट लेक के बहाने उसको एक सुनसान स्थान पर लेके आए, C21 मैदान है जहाँ पर जो बाईपास से लगा हो एकांत मैदान था ना, यहाँ पे उस समय 2015 में ज़्यादा रहवासी इलाका भी नहीं था। इस जगह लेके आने साथ में नाश्ता किया और उसके बाद उस व्यक्ति से कहा इनके द्वारा कि ये तुम्हारे गले में चेन है ये सोने की है या नकली। उसने कहा दिया बहुत कम है कि अब क्योंकि दोस्ती जैसी हो गई है, आधे घंटे में इनकी दोस्ती हो गई होगी। तो उसने कहा क्या है तो सोने का, तो उसने कहा कि हमें दे दो। उसने देना से इनकार किया, विरोध किया, विरोध करने पर इन्होंने अपने पास रखे हुए चाकू से उसके धारदार हथियार से हमला कर दिया था। तो उसमें अधिक रक्तस्राव हुआ और मौके पर इनकी मृत्यु हो गई थी और मृत्यु के बाद में ये लोग भाग गए थे स्पॉट से। और जाने के बाद फिर अन्य अपराध ये उज्जैन और देवास इत्यादि अन्य अपराध घटित किए और नशे में उस समय लोगों को इनको ध्यान भी नहीं था कि इतना बड़ा घटनाक्रम घटित हो चुका है।
2: डेड बॉडी 5 दिन बाद इन हमको अपगार के माध्यम से पता चला। हम SP ऑफिस में आवेदन देने के लिए गए थे कि साहब हमारा लड़का, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा, लड़के की जल्द से जल्द जाँच की जाए। आवेदन के लिए हम देने के लिए कमिश्नर SP ऑफिस गए थे। वहाँ पे से हमको अखबार के माध्यम से 2 बजे मालूम पड़ा कि यार आप गला कटे हो राज। तो हम SP ऑफिस जो वायरलेस है वहाँ पे गए, वहाँ से हमने खजराना थाने से संपर्क किया, खजराना थाने के TA साहब से संपर्क किया, वहाँ से फिर हमको एम्बॉय हॉस्पिटल गया शिनाख्ती के लिए, हम वहाँ पे गए। उसके बाद से तत्पर ये कार्रवाइयाँ चलती रही।
7: ये वही तेजाजी नगर थाना है जहाँ 2015-17 अप्रैल को कृष्णा की गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज की गई थी और ये तेजाजी नगर थाने की पुलिस जो है कृष्णा को गुमशुदा की रिपोर्ट करने के बाद में उसको ढूंढने के लिए निकली थी। लेकिन आप ये जो जगह देख रहे हैं ये इतना डेवलप इलाका उस समय नहीं था, यहाँ जंगल था। कृष्णा अपने घर से निकला था हॉस्पिटल जाने के लिए लेकिन इस ब्रिज के कुछ आगे ही ये घना जंगल था। उस समय आरोपियों ने कृष्णा को किडनैप किया और यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर दूर खजराना इलाके में ले जाकर उसकी हत्या कर दी थी।
1: तब मामले की जांच इंदौर पुलिस के साथ साथ क्राइम ब्रांच ने भी की थी लेकिन कातिलों का कोई सुराग नहीं मिला। उधर उन्हीं दिनों जब कृष्णा के घर वालों से पूछताछ हुई तो उन्होंने पुलिस के पास अपने ऐसे दुश्मनों के नाम लिए जिनके साथ उनका पुराना जमीन जायदाद को लेकर विवाद चला रहा था। पुलिस ने ऐसे तमाम लोगों से पूछताछ की, कम से कम 100 से ज्यादा लोगों से सवाल जवाब किए, सैकड़ों CCTV कैमरों की जांच की लेकिन असली कातिलों तक फिर भी नहीं पहुंच सकी।
8: 14 आरोप है, उसके 14 बार वो गिरफ्तार हुआ, क्या पुलिस को उस समय कहीं आपने इन्वेस्टिगेशन, आप नहीं थे उस समय, क्या उस समय कोई बात इससे छुपाई बताई नहीं गई थी पुलिस को?
6: क्योंकि ये अपराधी काफी शातिर किस्म के होते हैं ये, और आदतन बदमाश और ज्यादा शातिर होते हैं, तो इतनी आसानी से हर चीज का कबूल ये लोग स्वीकार नहीं करते हैं। जब जो अपराध होता है उसी से संबंधित वो भी साक्ष्य होते हैं तो ये लोग स्वीकार कर पाते हैं। और चूंकि ये अपराध पुराना था, कभी किसी ने इन्वेस्टिगेट भी नहीं किया इतना बारीकी से, और ना किसी का इसकी ओर ध्यान गया, चूंकि अज्ञात था, और चूंकि आदतन बदमाश है तो इनके द्वारा इस तरह की घटना कर दी गई होगी, ऐसा समय संज्ञान में भी किसी के आया नहीं होगा। लेकिन जब मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ और मुखबिर की सूचना सटीक थी, तो उसके आधार पर जब ये पूछताछ की गई इसी स्पेशल केस को लेकर, तो उन लोगों का टूट गया और उन लोगों ने सब अपना खुलासा कर दिया था।
1: केस की तफ्तीश कर रही पुलिस अलग अलग एंगलों पर उलझती रही, लेकिन आखिरकार इस केस का खुलासा तब जाकर हुआ जब एक मुखबिर ने इसके बारे में पुलिस को जानकारी दी। इत्तेफाक देखिए कि मुखबिर को भी शायद अकील और आरिफ की इस करतूत की खबर नहीं होती। अगर अकील ने जेल में बंद रहते हुए दूसरे कैदी को हड़काने के चक्कर में कृष्णा के कत्ल को लेकर बड़े बड़े बोल वचन न दिए होते, उधर अकील ने मुंह खोला, इधर मुखबिर को खबर मिली और पुलिस ने आखिरकार उसे उसी जुर्म के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जिस पर उसने इतने सालों से पर्दा डाल रखा था। वो भी तब जब वो इस वारदात को अंजाम देने के बाद कई बार अलग अलग केसेस में गिरफ्तार होता रहा और जेल जाता रहा। पुलिस उससे पूछताछ भी करती रही, मगर कृष्णा के कत्ल को लेकर उसने कभी अपना मुंह नहीं खोला था।
5: ये इसमें कुछ जो लूट की संपत्ति को लेकर कहीं ना कहीं झगड़ा हो रहा था इस बात को लेकर के, और कई मुखबिर जो था, जो खजराना का जो पुलिस लगा हुआ था, उसने मुखबिर ने सूचना दी, तो उस आधार पर जब उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की तब कोई घटना पसंद इसमें आरिफ के लगभग 3 से 4 अपराध पंजीबद्ध है, उज्जैन में भी पंजीबद्ध है, और अकील जो है अकील के एक दर्जन से अधिक अपराध अलग अलग थानों में पंजीबद्ध है, उज्जैन में भी मामले पंजीबद्ध है, इंदौर पुलिस कमिश्नर भी इसके मामले पंजीबद्ध है।
1: धर्मेंद्र कुमार शर्मा, इंदौर आज तक।
0: लंबे 11 सालों तक कृष्णा मर्डर केस अनसुलझा रहा, लेकिन परिवार ने कभी हिम्मत नहीं हारी, ना ही अपनी कसम तोड़ी। अब 11 साल बाद इसी परिवार ने खुद आरोपियों से बातचीत की और उसके बाद ये माना कि पुलिस ने सही कातिलों को पकड़ा है, कोई फर्जी केस नहीं खोला।
1: मुखबिरों से मिली जानकारी के बाद पुलिस गुनहगारों तक तो पहुंच चुकी थी, लेकिन उसे आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद 11 साल पुरानी वारदात की पूरी कहानी भी समझनी थी। ऐसे में पुलिस ने आरोपियों को उस जगह पर लेकर जाने का फैसला किया जिस सुनसान जगह पर उन्होंने कृष्णा का कत्ल किया था।
5: ये दोनों आरोपी अलग अलग जेल में बंद रहे हैं अलग अलग मामलों में, और अलग अलग पुलिस के मुखबिर स्पोर्ट रहते हैं, तो मुखबिरों के माध्यम से ही ये सूचना मिली थी कि इन्होंने कुछ लोगों को इस घटनाक्रम की जानकारी दी है। फिर पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को राउंड अप किया, राउंड अप करके इनसे सूक्ष्मता से पूछताछ करी, उन्होंने पूरा घटनाक्रम स्वीकार किया, घटना स्थल है वो उसका विजिट कराया गया, तो एक्जैक्टली जो सीखना था वो मैच किया गया, और पुलिस ने जब तस्दीक के उपरांत पूरे घटनाक्रम को सत्य पाया तो दोनों को हिरासत में लिया, और उन्हें जो लूटा हुआ मशरूक था सोने का लॉकेट और चांदी की चेन वो भी बरामद कर ली है। मृतक की जो मोटरसाइकिल थी वो उन्होंने जला के उस समय नष्ट कर दी।
6: इतने साल बाद सर मशरूक का बरामद किस तरह से, कहां छिपा के रखा था?
5: घर पे ही अपने छिपा के रखा था और पुलिस ने इसको रिकवर कर लिया।
1: असल में पीड़ित परिवार का अपने कुछ रिश्तेदारों और पड़ोसियों से पुराना जमीनी विवाद चला आ रहा है, ऐसे में उन्हें शक था कि उनके बेटे कृष्णा के कत्ल के पीछे जमीन जायदाद का वो पुराना झगड़ा भी हो सकता है। उधर पुलिस ने कृष्णा के कातिलों को गिरफ्तार तो कर लिया था, लेकिन उन्हें पीड़ित परिवार को इस बात का भरोसा भी दिलाना था कि उन्होंने 11 साल बाद जिन्हें पकड़ा है वही उनके बेटे के असली गुनहगार हैं। आरोपियों की धरपकड़ के बाद पुलिस इसकी अच्छी तरह से तस्दीक भी करना चाहती थी, लिहाजा पुलिस ने पीड़ित परिवार का आरोपियों से आमना सामना भी करवाया। कृष्णा के घर वालों ने और खासकर उसकी मां ने अकील और आरिफ से काफी सवाल जवाब किए। दोनों ही आरोपियों ने 11 साल पुराना वो पूरा घटनाक्रम पीड़ित परिवार को सुनाया और तब जाकर उन्हें तसल्ली हुई कि इंदौर पुलिस ने उनके बेटे के असली कातिलों को ही गिरफ्तार किया है।
8: परिजन आए आरोपी से मिलने मृतक के, तब क्या बात हुई, क्या उनको बताया, क्यों मारा उसके निर्दोष बेटे को?
6: इनकी जो मृतक की माता थी वो काफी स्वाभिमानी महिला है, उसके द्वारा बताया गया कि मैं ऐसे कैसे किसी पे विश्वास कर लूँ कि इन्होंने नहीं किया। उसने काफ़ी क्वेश्चनरी क्वेश्चन किए आरोपियों से, और जब उसे संतुष्टि हुई तब जाके उसकी आंखों में आंसू छलक आए कि उसके बेटे को आज अल्टीमेटली न्याय मिला है। और उन लोगों ने अपना घटनाक्रम पूरा जिस तरह किया था उसको पूरी तरह स्वीकार किया और अंततः ये खुलासा हो गया। इनके परिजन बहुत संतुष्ट हैं पुलिस कार्रवाई से, और उनकी आंखों में खुशी भी है और गम भी है कि आज उनका बेटा खो गया, लेकिन पुलिस ने अंततः उन्हें न्याय दिलाया, इस चीज़ से उन्हें बड़ी संतुष्टि और खुशी है।
1: वैसे बात सिर्फ मुखबिर की नहीं है, इस केस को सॉल्व करने में पुलिस को काफी मुसीबतों का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि इतने पुराने मामले में सबूत इकट्ठा करना भी एक बड़ी चुनौती थी। मुलजिमों की गिरफ्तारी के साथ साथ उनके खिलाफ टेक्निकल एविडेंस भी इकट्ठा करने थे, जिन्हें पुलिस ने कामयाबी से पूरा किया।
8: पेचीदा मामला था, कहां कहां क्या क्या प्रॉब्लम सही थी आपको इसको सॉल्व करने में?
6: इसको सॉल्व करने में बड़ी समस्या ये थी कि चूंकि पुराना केस था, सभी लोग इसमें इतनी एक्सरसाइज मेहनत कर चुके हैं, और वापस री इन्वेस्टिगेट करने में हम लोगों को क्या दूसरी भी समस्याएं थी, टेक्निकल एविडेंसेस थे, टेक्निकल बेसिस थे, फिर परिजनों की संतुष्टि और सब चेन ऑफ कस्टडी, ये सब चीजें थी और वो बहुत अच्छे से रिजॉल्व हुई।
1: धर्मेंद्र कुमार शर्मा, इंदौर आज तक।
0: तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए
9: हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हाँ और जिंदाबाद रहेगा।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: बेहोश हो गया अपनी कार।
1: आप 2 सेकंड सांस रोक के बता दो, मैं आप लोगों को मान जाऊंगा।
2: 1 घंटे तक रोक के रहे,
1: 1 घंटे में जान पे रखा उसकी, कैसा हो रहा था वो।
3: सिर्फ इतना सा है कि न्याय चाहिए उस बच्चे के लिए। बच्चा तो गया, पर किसी और की जिंदगी उस स्कूल में खराब नहीं हो।
4: जब आपके सामने आपका कोई दोस्त तड़प तड़प कर दम तोड़ जाए और स्कूल प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा रह जाए तो खून खौलना लाजमी हो जाता है। जयपुर के महाराणा प्रताप स्कूल के इन छात्रों का भी खून खौल रहा है, क्यों ये इन्हीं बच्चों से सुनिए।
5: उसने बाइट ली, वो भागा, सांस नहीं आ रही थी, पानी पीने गया और फिर वो बेहोश हो गया। पूरा नहीं, आधा ही खाया था, आधी फेंक दी थी।
6: खराब
5: थी,
6: पहले पता नहीं चला।
5: पहले पता नहीं,
6: फंगस लगी थी, बदबू आ रही थी।
5: सबसे
7: बड़ी लापरवाही है ना
5: स्कूल की, हॉस्पिटल भेज देते तो वो आज चिंता रहे।
4: इस स्कूल में 12वीं क्लास के छात्र प्रिंस की जिन हालात में मौत हुई उसे सुनकर किसी का भी आक्रोश भड़क जाए। इस स्कूल में छात्र कैंटीन से पेटीज खरीदता है, खाते ही उसकी तबीयत बिगड़ती है, उसकी सांस बंद हो जाती है, बदन नीला पड़ जाता है, मुंह से झाग निकलने लगता है, लेकिन स्कूल प्रशासन अस्पताल ले जाने की जहमत तक नहीं उठाता। जाहिर है इस स्कूल ने लापरवाही की हद कर दी है। दरअसल इस स्कूल ने अपराध किया है। 50 से 100 मीटर की दूरी पर अस्पताल है, लेकिन स्कूल प्रशासन को बच्चे को वहां तक ले जाने का ख्याल तक नहीं आया। माना कि बच्चे की हालत काफी बिगड़ गई थी, लेकिन कम से कम उसे अस्पताल तो ले जाते, क्या पता कोई अनहोनी हो जाती। वक्त पर इलाज से बच्चे की जान बच जाती, लेकिन अब कुछ नहीं बचा है सिवाय एक माँ के आंसू और पिता के ताउम्र कुरीदने वाले दर्द के। होनहार प्रिंस अब इस दुनिया में नहीं रहा, परिवार के लिए अब उसकी यादें ही शेष है। माता पिता को जब भी उसकी याद आएगी तो ये ख्याल भी आएगा कि प्रिंस की किन परिस्थितियों में मौत हुई थी। अब सारा दारोमदार पुलिस पर है, क्या प्रिंस के माता पिता को इंसाफ मिल पाएगा।
8: संदिग्ध परिस्थितियों में डेथ का मैटर हमारे सामने आया है और उस पर जो उनके परिजन हैं उन्होंने ये आशंका जताई है कि स्कूल में किसी प्रकार की लापरवाही की वजह से उनकी मृत्यु हो गई है, तो उस पर भी प्रकरण पंजीबद्ध करके इसमें अनुसंधान किया जा रहा है। जो मौके की फुटेज और ये सारी चीज़ें उनको कलेक्ट किया जा रहा है और उसमें भी जो भी चीज़ें आएंगी, जो फैक्ट्स आएंगी, वो आपके सामने हम रखेंगे।
4: पुलिस जांच की बात कर रही है, उसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। मौत की वजह का पता तो तभी चल पाएगा, लेकिन पुलिस की असली जिम्मेदारी ये तय करने की है कि वक्त पर अस्पताल न पहुंचाने वाले स्कूल पर सख्त कार्रवाई जरूर हो। विशाल शर्मा, जयपुर आज तक।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

15 अगस्त की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का राष्ट्र के नाम संदेश, कहा युवा आबादी सबसे मूल्यवान संपत्ति, विकसित भारत के निर्माण के लिए आगे बढ़ने का आह्वान। जश्न आजादी के रंग में हिंदुस्तान, कर्तव्य पथ से लेकर राष्ट्रपति भवन तक तिरंगे की रोशनी, दिल्ली समेत पूरे देश में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा। नहीं रहा पीएम मोदी पर राहुल के बयान पर हंगामा, राजनाथ सिंह ने लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा बताया, विदेश मंत्रालय ने कहा आदर के साथ रखिए अपनी बात। विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में जुबानी युद्ध तेज, सीएम योगी का बयान सिर्फ सत्ता के लिए पहली की सरकारें, अखिलेश बोले यूपी में अब तक की सबसे भ्रष्ट योगी सरकार। और कॉकरोच विवाद पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत का बड़ा बयान, सूर्यकांत बोले मेरी बातों का गलत इरादे से गलत इस्तेमाल किया गया, युवाओं को गुमराह करने का प्रयास हुआ।

0: महाराष्ट्र में उद्योगों के पलायन पर राजनीतिक घमासान। शरद पवार ने चाकड़ की बदहाल सड़कें, पानी की कमी, ट्रैफिक को बताया पलायन का कारण, 20 कंपनियों के शिफ्ट होने का दावा। फडणवीस ने पलायन के दावे को रद्द कर 76% कंपनियों को बताया डिफंक्शनल। सरकार बोली महाराष्ट्र में 4 लाख सक्रिय कंपनियां। विपक्ष के आरोप के बीच उद्योग मंत्री उदय सामंत 16 अगस्त को चाकड़ में उद्यमियों से मिलेंगे। राहुल गांधी को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया सावरकर से जुड़ा मानहानि का केस। राहुल के पीएम मोदी पर कटाक्ष को लेकर राजनीतिक घमासान। फडणवीस, राजनाथ समेत बीजेपी नेताओं ने साधा निशाना, माफी की मांग। सुखबीर सिंह बादल हमला केस में आरोपी की पेशी, कोर्ट ने जसपाल सिंह को 24 अगस्त तक के लिए कस्टडी में भेजा। बादल की जांच में महाराष्ट्र एटीएस की एंट्री, जसपाल सिंह के घर और ऑफिस पे तलाशी। जसपाल सिंह पहले वकील था, बाद में नादेड़ के गुरुद्वारे में सेवादार के तौर पर सेवा करने लगा, जांच जारी। हमले के बाद बादल का बयान, पंजाब और भारत को अस्थिर करना चाहते हैं एंटी पंजाब एंटी इंडिया तत्व। बादल बोले अकाली दल ऐसा नहीं होने देगा, मेरे पिता ने इन शक्तियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, मैं भी लड़ूंगा। सुप्रीम कोर्ट में चिप्स बिस्किट जैसे पैकेज फूड पर वार्निंग लेबल लगाने की सरकार, एफएसएसआई को अंतिम चेतावनी। अधिक चीनी नमक फैट की जानकारी 2 हफ्ते में फूड पैकेट्स पर न लगाने पर कोर्ट खुद देगा आदेश। ब्लैक सी में हमलों से दुनिया भर में अनाज की सप्लाई थमने से गेहूं के दाम में 25% का उछाल, शिपमेंट में 40% की गिरावट से भारतीय बाजार पर असर की आशंका। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा विजय माल्या एसबीआई का लंबा खिस्ता विवाद देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगा, कोर्ट ने ईडी से अटैच संपत्तियों और जांच की मौजूदा स्थिति का ब्यौरा मांगा। यूपीआई डेटा एनालिसिस में सामने आया जेंजी खर्च करने में जिम्मेदारी दिखाते, कमाई का 70% रोजमर्रा की जरूरतों पर खर्च। एयर इंडिया सेट्स ने ईडब्ल्यूपीओ के द्वारा शहीदों के आश्रितों को एविएशन में रोजगार दिया, पहले बैच के लोग कस्टमर सर्विस और कार्गो की जिम्मेदारी संभाल रहे। बॉक्स ऑफिस पर सनी देओल का एक्शन, बंटवारा 1947 रिलीज, प्रीति जिंदा, करण देओल, शबाना आजमी, इमरान हाशमी की आवरण डू भी रिलीज, 2007 में आई का सीक्वल है ये फिल्म। थिएटर के बाद ओटीटी पर कंगना रनौत की फिल्म भारत भाग्य विधाता Z5 पर रिलीज, 19 जून को थिएटर्स में रिलीज होने के बाद ओटीटी पर कमाल करेगी कॉकटेल 2, नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम। संजय दत्त की फिल्म आखिरी सवाल भी ओटीटी पर रिलीज, सिनेमाघरों में हुई थी पहले रिलीज। कल से हॉकी वर्ल्ड कप की शुरुआत, बेल्जियम नीदरलैंड्स मिलकर कर रहे हैं मेजबानी, पहली बार एक साथ महिला पुरुष के टूर्नामेंट, 16 दिन तक चलेगा टूर्नामेंट, खेले जाएंगे कुल 50 मैच। कल अपना 600वां टेस्ट खेलेगा भारत, गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत श्रीलंका के बीच 2 मैचों की शुरुआत। गॉल टेस्ट जीतने पर टीम इंडिया रचेगी इतिहास, सबसे अधिक मैच जीतने की वेस्टइंडीज की करेगी बराबरी। भारत ने नाइजीरिया में कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में पहली बार ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब जीता, कुल 35 मेडल जीते। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी, स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो में। हमारे देश की राजनीति में इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी काफी सुर्खियों में। दरअसल कल राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पर प्रश्न खड़े किए थे, लेकिन उसी समय मेलोनी पर मंच से की गई टिप्पणी पर राजनीतिक घमासान मच गया। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण और बेहद शर्मनाक बताया। राजनीति में भाषा की गिरती मर्यादा पर पूरे देश में राजनीतिक महाभारत शुरू हो गई।
1: फॉरेन पॉलिसी इज दिस, मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पर तंज कसते हुए राहुल गांधी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस सियासत में कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आग में घी डालने का काम किया था। उन्होंने इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी और पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी की थी।
1: फॉरेन पॉलिसी इज दिस,
3: मैं तो बच्चे फिर रहा था।
1: अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी।
3: एक चीज पूछ सकता हूं?
1: हाँ।
3: मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था?
1: I have not reached there yet.
2: आज महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी पर जोरदार पलटवार करते हुए कहा कि राहुल ने बहुत निचले स्तर का बयान दिया है जो कांग्रेस और राहुल गांधी की कुंठा दिखाता है।
4: कल भारत के लोकसभा के विपक्षी नेता और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी, इन्होंने जो छिछोरापन दिखाया, इसको छिछोरेपन के सिवाय दूसरा कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसा छिछोरा नेता इससे पहले भारत ने कभी देखा नहीं। जिस प्रकार से मंच के ऊपर प्रधानमंत्री जी को तो अपमानित किया, लेकिन इटली की एक महिला राष्ट्र प्रमुख को जिस प्रकार से अपमानित करने का काम हुआ, भारत में महिलाओं का सम्मान करने वाले हम लोग हैं और इतने बड़े नेता इस प्रकार से जब बात करते हैं, गली का नेता भी ऐसा छिछोरापन नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है राहुल गांधी ने और संदीप दीक्षित ने देश की माफी मांगी।
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी राहुल गांधी और संदीप दीक्षित की मिमिक्री को शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण बताया।
5: ऐसी अभद्र टिप्पणी हर भारतीय के मन को अंदर से कष्ट देने वाली है, पीड़ादायक है। मैं कांग्रेस पार्टी से यह भी कहना चाहूंगा, विनम्रतापूर्वक कांग्रेस पार्टी से अनुरोध करना चाहूंगा कि ऐसी भाषा और आचरण के बाद क्या वे लोग अब लाल बाल पाल से लेकर गांधी, नेहरू, पटेल, सुभाष बाबू, राजेंद्र बाबू से लेकर शास्त्री जी, नरसिम्हा राव जी से लेकर प्रणब मुखर्जी जी तक जैसे विराट व्यक्तित्वों की विरासत का वह दावा किसी भी सूरत में कर सकते हैं? मैं कह सकता हूं कि आज इस आचरण से राहुल गांधी ने न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अपमान किया है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का अपमान किया है, लोकतंत्र नेता प्रतिपक्ष के पद की गरिमा को तार तार कर दिया है। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता कि जिसके नाम के आगे गांधी शब्द लगा हो वह ऐसा शर्मनाक बयान भी कभी दे सकता है।
2: शिवसेना और बीजेपी नेता राहुल पर हमलावर है। दोनों ने दो टूक कहा कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी के साथ इटली की महिला पीएम का भी अपमान किया है, इसलिए उन्हें माफी मांगनी ही होगी।
6: राहुल गांधी को जानना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ की आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं। विश्व भर में हग्स और टॉफीज की चर्चा नहीं होती है। भारत के सम्मान और ग्लोबल स्टेज में G7 लीडर्स आ रहे हैं, भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पार्टनर कर रहे हैं। खैर, आप तो सिर्फ एक मॉकिंग बर्ड है जो दिखाते हैं आपकी तुच्छ राजनीति। शायद आपकी दृष्टिकोण महिला नेतृत्व के ऊपर भी यहाँ स्पष्ट दिखाई देता है। खैर, राहुल गांधी से कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं, वो तो एक जिद्दी छोटे बालक है।
7: भारत देश की संस्कार संस्कृति वसुदेव कुटुंबकम की है, पूरा विश्व हमारा परिवार है और ऐसे में एक महिला राष्ट्राध्यक्ष को लेकर जिस प्रकार से टिप्पणी उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर की है, ये घोर अपमान है। हमारे देश का अपमान है, हमारे देश के संस्कारों का अपमान है। हमारा देश ये नहीं पढ़ाता है कोई भी महिला राष्ट्राध्यक्ष का अपमान हम करें। राहुल गांधी को ये भुगतना पड़ेगा। राहुल गांधी ने माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी को लोग नहीं छोड़ेंगे और हमारे देश में किसी महिला राष्ट्राध्यक्ष का अपमान भी हमारा देश सहन नहीं करेगा। राहुल गांधी ने तुरंत माफी मांगनी चाहिए। आपको
2: पता है कि हालांकि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे राहुल पर हमला करते करते खुद मर्यादा भूल गए। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की विदेश दौरे की तस्वीरें साझा करते हुए अमर्यादित टिप्पणी की। कांग्रेस और बीजेपी नेता एक दूसरे को संस्कार और भाषा की मर्यादा की नसीहत दे रहे हैं।
8: ये भी स्पष्ट होता है कि राहुल गांधी एक 55 साल के बालक है जिनकी बुद्धि अभी भी बालक बुद्धि वाली है और जो इस देश के लोकतंत्र से इतनी नफरत करते हैं कि अगर इस देश की जनता उनको प्रधानमंत्री के पद पे उनके खानदान को नहीं बैठा है तो वो हर डेमोक्रेटिक पद का मजाक उड़ाना शुरू करते हैं।
9: बीजेपी के बारे में अगर कोई इस तरह का इंसल्ट टू विमेन आता है, वो कोई पहली बार आ रहा है। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने बोला था? जर्सी गाय किसने बोला था?
10: आप कल्पना कीजिए, एक महिला विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्ष पर अभद्र, अमर्यादित और ओछी टिप्पणी करना, ये राहुल गांधी जी और कांग्रेस की मानसिकता दिखाती।
11: प्रधानमंत्री जी हमारे जहां जाते हैं, जिस ढंग से मिलते हैं, राहुल गांधी ने वही तो उठाया था। राहुल गांधी ने तो और कुछ कहा नहीं, किसी और ने कहा हो तो उसकी जिम्मेदारी राहुल गांधी की तो नहीं हो सकती।
2: राजनीति में भाषा की गिरती मर्यादा पर अब दोनों पक्ष एक दूसरे को आईना दिखाने में जुटे हुए हैं।
12: देखिए, अपनी उद्दंडता, उच्छृंखलता और सनक से संसद के सत्र को एक प्रकार से पूरी तरह अव्यवस्थित करने के बाद, सत्र के तुरंत बाद कांग्रेस के औपचारिक प्लेटफॉर्म से राहुल गांधी जी ने जो असभ्य, अशोभनीय, निंदनीय भाषा का प्रयोग किया है, वो ये दर्शाता है कि शायद अब कुंठा में राहुल गांधी सभी प्रकार की पराकाष्ठाओं को पार करते चले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के प्रति जो शब्द प्रयोग हुआ है, वो ये दर्शाता है कि पहले संसद का सत्र और संसद सत्र के बाद कांग्रेस का यह मंच अब दिखाई पड़ता है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी देश के लोकतंत्र के लिए और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए चुनौती बन के खड़े।
1: फॉरेन पॉलिसी,
2: बीजेपी राहुल गांधी और संदीप दीक्षित की इस सियासी मिमिक्री को विपक्ष के खिलाफ बड़ा हथियार बना सकती है।
3: मिलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था
2: आज तक।
0: महाराष्ट्र की राजनीति में पलायन पर शरद पवार ने महाराष्ट्र सरकार पर जोरदार निशाना साधा। शरद पवार ने दावा किया कि महाराष्ट्र में 5 वर्ष में 36,000 कंपनियां बंद हो चुकी हैं। वहीं चाकड़ औद्योगिक क्षेत्र में 20 कंपनियां और पलायन की सोच रही हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार को जवाब देते हुए उनके आरोप रद्द किए। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जो कंपनियां बंद बताई जा रही हैं उनमें 76% कंपनियां बोगस थी। फडणवीस ने दावा किया महाराष्ट्र में 4 लाख कंपनियों के साथ देश में पहले नंबर पर महाराष्ट्र है।

0: महाराष्ट्र में कारोबारी समूह के पलायन करने और चाकण इंडस्ट्रियल एरिया की समस्याओं को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। विपक्ष बुनियादी ढांचों की बदहाली की वजह से कंपनियों के पलायन का दावा कर रहा है।
1: बंद होना, एक भी कंपनी बंद हो तो ये चिंताजनक है। और मैं आपको बड़ी विनम्रता से कहना चाहती हूँ कि एक समय था जब महाराष्ट्र सबसे फेवरेट हॉटस्पॉट जिसे कहते हैं था कि जो कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता था वो महाराष्ट्र पहले आता था, और उसके बाद बाकी के राज्यों से भी आज देख रहे हैं। बट मैं देख रही हूँ कि तेलंगाना, कर्नाटका और आंध्र आज सबसे फेवरेट डेस्टिनेशंस बन गए। और अच्छा है, इस देश में प्रगति हो रही है तो अच्छी बात है, लेकिन हमारे राज्य में भी इन्वेस्टमेंट्स आनी चाहिए। और जिस तरह से इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के बारे में आप सबकी चैनल्स में चाकण का भी आप सबने देखा होगा, तो इंडस्ट्री के लिए आज जो माहौल इस राज्य में है वो इतना पोषक नहीं है। और मैं महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री से विनती करना चाहती हूँ, हर साल दावोस जाते, इतने सारे MOUs साइन करके आते हैं, उसका आगे क्या हुआ, इसका थोड़ा हिसाब किताब देना पड़ेगा।
0: दरअसल इस मामले की शुरुआत NCPSP अध्यक्ष और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार के एक सोशल मीडिया पोस्ट से हुई। शरद पवार ने सोशल मीडिया पर लिखा कि चाकण औद्योगिक क्षेत्र में टूटी सड़कें, पानी की किल्लत और ट्रैफिक जैम से परेशान होकर करीब 2000 से ज्यादा कर्मचारियों वाली 20 कंपनियां पलायन करने की सोच रही हैं। पवार ने संसद के आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया कि पिछले 5 सालों में महाराष्ट्र में 36,000 से ज्यादा निजी कंपनियां बंद हुई हैं। शरद पवार के पोस्ट पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तुरंत पलटवार करते हुए साफ किया कि बंद बताई जा रही 76% कंपनियां डिफेक्ट थी, यानी वो कभी शुरू ही नहीं हुई थी, और उन्हें प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत लिस्ट से हटाया गया है। फडणवीस के मुताबिक महाराष्ट्र 4,00,000 सक्रिय कंपनियों के साथ देश में पहले स्थान पर है। वहीं फडणवीस ने चाकण इंडस्ट्रियल एरिया से पलायन पर कहा, स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है और कई योजनाएं भी लागू की जा रही हैं।
2: पवार साहेब ज्येष्ठ नेते आहेत, ते नेहमी महाराष्ट्राच्या हिताचा विचार करतात, म्हणूनच त्यांच्यापर्यंत चुकीची माहिती जाऊ नये या दृष्टीनं खरी माहिती मी त्या ठिकाणी दिली। सर्वात जास्त कंपन्या महाराष्ट्रात सुरू झालेल्या आहेत, सर्वात जास्त फंक्शनल कंपन्या महाराष्ट्रात आहेत, ज्या नॉन फंक्शनल कंपन्या आहेत ज्या कधी सुरूच होऊ शकलेल्या नाहीत त्याचा आकडा देऊन काही लोक फसवेगिरी करतायत। मात्र आता माझ्या ट्विट नंतर सगळ्या गोष्टी समोर आल्या आणि चाकणचा जो विषय आहे तो निश्चितपणे गंभीर आहे, तो आम्ही गांभीर्याने घेतलेला आहे। असं लक्षात येत आहे की 5-7 एजन्सीजमुळे त्याचा कोणी वाली नाही आहे, त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्याला त्याचा वाली करून त्यांच्या अंतर्गत सगळ्या एजन्सीजचं कॉर्डिनेशन करण्याचा आम्ही प्रयत्न करतो।
0: विपक्ष लगातार सरकार की उद्योग नीतियों, कानून व्यवस्था और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर सवाल उठा रहा है। जूनियर ठाकरे का आरोप है कि महाराष्ट्र सरकार के ढीले रवैये की वजह से कंपनियां गुजरात और बाकी प्रदेशों में शिफ्ट हो रही हैं।
3: और यही जवाब आया कि 35,000 इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस और एलाइड बिजनेसेस ये सारे पिछले 5 सालों में यहाँ से बाहर गए हैं, महाराष्ट्र से बाहर गए, लगभग 680 गुजरात में गए, बहुत सारे अलग अलग जगह पे गए, लेकिन महाराष्ट्र से पिछले 5 सालों में ये इमिग्रेशन क्यों हुआ है, इसका जवाब CM ने खुद देना जरूरी है। दो ही उदाहरण में दे सकता हूँ, एक जो हमने ईज ऑफ कंप्लायंस कमिटी बनाई थी, क्योंकि क्या होता है बहुत बार ऐसे होता है कि आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इन्वाइट करते हो लेकिन एक बार आप बस जाते हो यहाँ पे कंपनी शुरू हो जाती है तो बाकी के जो आपके बिजनेस लॉज होते हैं उसको डिक्रिमिनलाइज करना बहुत जरूरी है। हमने जो ईज ऑफ कंप्लायंस कमेटी बनाई थी वो हमारी सरकार गिराने के बाद एक भी बार मिली नहीं है शायद। दूसरी बात यह है कि चाकण की आपने बात की होगी या देखी होगी, लगभग 20 इंडस्ट्रीज इसी महीने में बाहर एमिग्रेट हो रहे। नासिक का भी यही हाल है, अगर रास्तों की जो परिस्थिति वो ठीक ना हो, पानी की परिस्थिति हो या बिजली की स्थिति हो, ये ठीक ना हो तो ऐसे ही निकल जाएंगे और CM देखते रहेंगे, डाइवोर्स जाते रहेंगे, साइन करते रहेंगे, मफलर पहनो, जैकेट पहनो, खुश रहो, लेकिन युवा बेरोजगार रहेगा।
0: लेकिन महाराष्ट्र सरकार में उद्योग मंत्री उदय सामंत ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कंपनियों के पलायन वाली खबर विपक्ष का प्रोपेगेंडा है।
4: ही कंपनी स्थलांतरित झालेली नाही, मी स्वतः कुलकर्णी नामक पदाधिकाऱ्यांशी बोललो, हे तर मी जाहीरपणानं बोललोय आणि मी कधीही असं कोणाचं रेकॉर्डिंग करत नाही, परंतु जे काही चाललेलं राजकारण आहे त्याच्यातनं मी ते मुद्दामच समोरच्या लोकांची भूमिका काय आहे की महाराष्ट्राच्या जनतेपर्यंत पोचावी आणि कशा बाबतीमध्ये कोण कसं कसं राजकारण करतं हे कळण्यासाठीच मी ते रेकॉर्डिंग केलेलं होतं. मी 16 तारखेला भेटून त्यांच्या सगळ्या शंका दूर करेन आणि त्या रेकॉर्डिंगमध्ये देखील तुम्ही ऐकलं असेल माझी बैठक ज्यावेळी होईल त्यावेळी तुमचे 90% कामं मी मार्गी लावीन असं त्यांना मी विश्वास दिलेला आहे. तिथं जाऊन त्या उद्योजकांबरोबर बैठक घेतोय. 2 तास लागू दे, 3 तास लागू दे, 4 तास लागू दे, त्यांच्या शंकांचं निरसन दूर होईपर्यंत मी तिथून चाकणमधनं उठणार नाही.
0: कुल मिलाकर चाकण की बुनियादी समस्याओं ने महाराष्ट्र की राजनीति में उद्योग बनाम पलायन की एक नई बहस को जन्म दे दिया है.

0: और स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देने वाले यानी आहुति देने वाले अमर सेनानी वीर विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ टिप्पणियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ निचली अदालत में चल रही कार्रवाई और समन को रद्द करने का आदेश दिया है, क्योंकि ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये कहा है कि अब तक इस मामले में कार्रवाई किसी निर्णायक उस तक नहीं पहुंची है और साथ ही सरकार की तरफ से मुकदमा चलाने के लिए शिकायत को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्रवाई की जानी चाहिए थी, जो मंजूरी दी जानी चाहिए थी, वो अब तक नहीं दी गई है, लिहाजा कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी को राहत दी है। ये अलग बात है कि इसी सुप्रीम कोर्ट में इसी मामले पर जब पिछली दफा सुनवाई हुई थी तो कोर्ट ने राहुल गांधी को बहुत सारी नसीहतें दी थी। उन्होंने कहा था कि वैसे भी लोगों को सोच समझ के बोलना चाहिए, लेकिन जो सार्वजनिक जीवन में लोग होते हैं, जो जनप्रतिनिधि होते हैं, उन्हें तो और भी सोच समझ कर बोलना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि आपको इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। आपने जिस विनायक दामोदर सावरकर को ये कहा कि वो अंग्रेजों के गुलाम थे और अंग्रेजों के नौकर की तरह ट्रीट करते थे खुद को, उन्होंने ये भी कहा कि गांधी जी ने, आप अगर इतिहास में देखें तो गांधी जी ने अंग्रेजों को जितनी भी चिट्ठियां लिखी उसके आखिर में उन्होंने लिखा था योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट मोहनदास करमचंद गांधी। तो आपको इतिहास की जानकारी होनी चाहिए, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि कब कहां कैसे कैसा बोलना चाहिए। लेकिन अब जब कहते हैं अंत भला तो सब भला, इन सारी नसीहतों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत दी है और उनके खिलाफ जितने भी ये आरोप चल रहे थे, मुकदमा चल रहा था और जो समन था लोअर कोर्ट का जिसमें राहुल गांधी को कोर्ट में पेश होकर अपना जवाब दाखिल करना था, उस पर रोक लगा दी, उसे रद्द कर दिया है। यानी कुल मिलाकर निचली अदालत में अब इस मामले को लेकर कार्रवाई बंद हो चुकी है। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।
1: और खबरों के साथ कुछ ही पलों में होते हैं दोबारा मुंबई मेट्रो में उपस्थित। आप देखते रहिए आज तक।
2: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में महानगर पालिका में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर वायरमैन के तौर पर काम करने वाले धीरज परदेसी के साथ अगस्त को कुछ लोगों ने हत्या कर दी थी, जिसके बाद एनसीपी विधायक संग्राम जगताप और उनके घर वालों ने आरोप लगाया कि तिलक लगाने पर धीरज की हत्या कर दी गई। मृतक धीरज की पत्नी ने आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने और इंसाफ की मांग की है।
2: महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में 7 अगस्त को धीरज परदेसी इनकी मॉब लिंचिंग में हत्या कर दी गई थी। हमारे साथ हैं स्थानीय विधायक अजीत पवार गुट के संग्राम जगताप जी और उनकी धर्म पत्नी सौंदर्य परदेसी जी, हम उन्हीं से बात करेंगे। सर मैम, 7 अगस्त को धीरज जी की मॉब लिंचिंग में हत्या कर दी गई थी, क्या कहना है आपका? ये हत्या क्यों गई थी, किस वजह से की गई?
3: जैसे कि आप सबने देखा है, मैं कभी अभा की पत्नी हूँ, मेरी पति की हत्या की गई है। मेरे पति तो आज मेरे साथ नहीं है, पर मैं खड़ी हूँ क्योंकि आज मेरा बसा बसाया घर उजड़ गया है, पर किसी और हिंदू लड़की का घर उजड़ ना जाए। मेरी सरकार से यही मांग है कि मेरी पति की केस फास्ट ट्रैक पर चलाई जाए, मेरी पति को सरकारी वकील मिले और मेरे पति के लिए जो हिंदू लोग खड़े रह रहे हैं

0: पर जो झूठे एफआईआर दर्ज किए गए हैं वो हटाए जाए, और जो आरोप जो लोग जो जिन लोगों ने मेरे पति के ऊपर ये किया है उन लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाए।
1: मुंबई मेट्रो में आज के लिए बस इतना है, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: हम इस समय हिंदुस्तान के हीरोज के साथ यहाँ पर मौजूद हैं।
1: भारतीय तटरक्षक की
0: स्वतंत्रता का पर्व हम इनके साथ आज मनाने वाले हैं।
2: हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद।
3: लोकसभा में जितना टाइम आवंटित किया गया है टोटल टाइम एलोकेशन के हिसाब से सिर्फ 19% हमने प्रोडक्टिविटी के दृष्टि से 19% सक्सेस प्राप्त किया है। राज्यसभा में 39%। राज्यसभा में ऑपोजिशन पार्टी हंगामा करके कभी कभी वॉकआउट भी करते थे तो बाकी मेजोरिटी पार्टीज एनडीए के और कुछ ऑपोजिशन पार्टी के एमपीज ने डिबेट डिस्कशन में हिस्सा लिया तो राज्यसभा का टोटल प्रोडक्टिविटी मॉनसून सेशन का 39%, लोकसभा का 19%। एक बिल सिर्फ चर्चा हो पाई लोकसभा में जो प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट जो बना है ये लोकसभा में भी डिस्कशन हुए थे और राज्यसभा में भी हुए हैं। इसके अलावा लोकसभा में कोई अच्छा चर्चा नहीं हुआ, बिल पास हुए हैं, 11 बिल्स पास किए हैं। इसलिए मैंने कहा टोटल 12 बिल्स पास किए हैं इन टोटल और चर्चा के दृष्टि से हम खुश नहीं है क्योंकि ऑपोजिशन ने ठीक से चर्चा करने नहीं दिया विशेष करके लोकसभा में।
4: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

जश्न आजादी के रंग में रंगा हिंदुस्तान सुबह लाल किले की प्राचीर से लगातार 13वीं बार तिरंगा फहराएंगे प्रधानमंत्री मोदी, देश को करेंगे संबोधित। 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का राष्ट्र के नाम संदेश, बोली युवा आबादी सबसे मूल्यवान संपत्ति, विकसित भारत के निर्माण के लिए आगे बढ़ने का आह्वान। नहीं थम रहा पीएम मोदी पर राहुल के बयान पर हंगामा, राजनाथ सिंह ने लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा बताया, विदेश मंत्रालय ने कहा आदर के साथ रखो बात। विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में जुबानी युद्ध तेज, सीएम योगी बोले सिर्फ सत्ता के लिए पहले की सरकारें, अखिलेश बोले यूपी में अब तक की सबसे भ्रष्ट योगी सरकार। और कॉकरोच विवाद पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत का बड़ा बयान, बोले मेरी बातों का गलत इरादे से गलत इस्तेमाल, युवाओं को सूर्यकांत ने गुमराह करने की कोशिश बताया।

आज देश मना रहा है 80वां स्वतंत्रता दिवस। देशभर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, रोशनी से जगमग दिल्ली, राष्ट्रपति भवन तिरंगे की रोशनी से जगमगाए। स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का देश के नाम संबोधन। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से भारत की सैन्य शक्ति का उल्लेख, आतंकवादियों मददगारों को सख्त संदेश। राष्ट्रपति ने विकसित भारत 2047 के संकल्प पर दिया जोर। वैश्विक अस्थिरता के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती का किया उल्लेख, साथ ही जेंजी को बताया सबसे बड़ी शक्ति। आजादी के जश्न में देशभर में गूंजेंगी सेना की देशभक्ति धुन। ताजमहल से इंडिया गेट, वाराणसी की घाटों तक 14 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में आर्मी बैंड की विशेष प्रस्तुति। 8 से 15 अगस्त तक 20 से अधिक प्रमुख स्थानों पर आर्मी बैंड्स का प्रदर्शन। ले शिमला, मुंबई, पुणे, गोवा, दिल्ली, देशभर में राष्ट्रभक्ति का रंग। जम्मू कश्मीर के रियासी में आजादी का जश्न, तिरंगे की भव्य रोशनी में नहाया सलार बांध, डैम से गिरते पानी का विहंगम दृश्य। लखनऊ में तिरंगे के रंग में यूपी विधानसभा इमारत पर विशेष ट्राइकलर लाइटिंग, आजादी के जश्न की झलक। रांची में तिरंगे की रोशनी से जगमगाया झारखंड हाईकोर्ट, झारखंड विधानसभा पर तिरंगे का रंग केसरिया सफेद हरे रंग से रोशन भवन। कोलकाता से गुवाहाटी तक तिरंगे की रोशनी, कोलकाता लेक भवन तिरंगे की रोशनी में नहाया असम विधानसभा, असम सचिवालय की भव्य सजावट। चेन्नई में रिपन बिल्डिंग तिरंगे की रोशनी में नहाई, आरबीआई बिल्डिंग पर दिखा तिरंगे का रंग, पोर्ट ट्रस्ट बिल्डिंग भी सजी, तमिलनाडु सचिवालय भी जगमग। 80वें स्वतंत्रता दिवस के उत्साह में तिरंगे झंडे से भरा नजर आया दिल्ली का कर्तव्य पथ। नई दिल्ली जोन में अनोखी पीसीआर वैन और बाइक तिरंगा रैली। भोपाल में विशाल तिरंगा यात्रा, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हरी झंडी दिखाई, लहराती तिरंगे हाथ में लेकर सड़कों पर निकले। श्रीनगर के डल झील में शिकारों एसडीआरएफ की बोट पर निकाली गई तिरंगा रैली, बड़ी संख्या में लोग शामिल। देशभक्ति के रंग में पूरी डल झील, भारी बारिश, खराब मौसम के बावजूद स्थानीय नागरिकों, युवाओं, अधिकारियों ने लिया हिस्सा। रामबन में सीआरपीएफ 84 बटालियन ने हर घर तिरंगा का किया आयोजन, छात्रों के साथ रैली। लद्दाख के जांस्कर में देशभक्ति राष्ट्रीय एकता की मिसाल, भारतीय सेना ने 100 फीट ऊंचा ध्वज फहराया। देश के कोने कोने में देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना, बड़ी संख्या में छात्रों और नागरिकों ने लिया हिस्सा। लद्दाख के करगिल में 80वें स्वतंत्रता दिवस के फुल ड्रेस रिहर्सल, दिखा देशभक्ति का जोश। मार्च पास्ट में स्कूली छात्रों की टुकड़ियां, एनसीसी और लद्दाख पुलिस बैंड ने हिस्सा लिया, राष्ट्रीय ध्वज फहराया। कुलगाम में भव्य तिरंगा रैली, भारत माता की जय के लगे नारे। झारखंड की टिहरी झील में बोट पर भव्य तिरंगा यात्रा, 150 से अधिक लोग शामिल। सहरसा में हर घर तिरंगा आंदोलन की चेतावनी पर शिक्षा मंत्री का पलटवार, छात्र नहीं नेतागिरी करने वालों को दी धमकी। वडोदरा में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन, हर्ष सिंघवी ने दिखाई हरी झंडी। दिल्ली मेट्रो के राजीव चौक, कश्मीरी गेट स्टेशन पर विभाजन विभीषिका की विशेष प्रदर्शनी 21 अगस्त तक जारी। सुबह 4 बजे से शुरू होगी दिल्ली मेट्रो की सेवा, लाल किले पर आमंत्रित लोग करेंगे सफर। भारतीय सेना के लिए 1577 करोड़ की डील, टाटा एडवांस सिस्टम्स और खरीदे जाएंगे ड्रोन जैसे हथियार। नई तकनीक से सेना की शक्ति बढ़ेगी, मेक इन इंडिया के तहत देश में हथियारों का निर्माण। विभाजन विभीषिका दिवस पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा, सीएम योगी ने कहा 1947 में अगर मोदी होते तो पीएम देश का दुश्मन ये लोग नहीं होते। अखिलेश यादव का योगी परिवार, कहा अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार, अन्याय बढ़ा। कॉकरोच विवाद पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत का बड़ा बयान, मेरी बातों का गलत इरादे से गलत इस्तेमाल, युवाओं को गुमराह करने की कोशिश। सुखबीर सिंह बादल हमला केस में आरोपी की पेशी, कोर्ट ने आरोपी जसपाल सिंह को 24 अगस्त तक कस्टडी में भेजा।
सुखबीर सिंह बादल हमले की जांच में महाराष्ट्र एटीएस की एंट्री, आरोपी के पुणे वाले घर और ऑफिस की तलाश। जसपाल सिंह पहले वकील था, बाद में नादेड़ के गुरुद्वारे में सेवादार के तौर पर सेवा करने लगा। हमले के बाद बादल का बयान, पंजाब भारत को अस्थिर करना चाहते हैं, एंटी पंजाब एंटी इंडिया तत्व। बोले सुखबीर बादल, अकाली दल ऐसा नहीं होने देगा, मेरे पिता ने इन शक्तियों के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी, मैं भी लड़ूंगा। महाराष्ट्र में उद्योगों के पलायन पर राजनीतिक घमासान, शरद पवार ने चाकड़ की बदहाल सड़कें, पानी की कमी, ट्रैफिक को बताया पलायन का कारण, 20 कंपनियों के होने का टिकट कटा। फडणवीस ने पलायन के दावे को रद्द कर 76% कंपनियों को बताया डिफंक्शनल। सरकार बोली, महाराष्ट्र में 4,00,000 सक्रिय कंपनियां, विपक्ष के आरोप के बीच उद्योग मंत्री उदय सामंत 16 अगस्त को उद्योगपतियों से मिलेंगे। राहुल को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया सावरकर से जुड़ा मानहानि का केस। राहुल के मोदी पर कटाक्ष को लेकर घमासान, फडणवीस राजनाथ समेत सभी ने साधा निशाना, माफी की मांग। भारत मलेशिया एयरफोर्स का संयुक्त अभ्यास उदारा शक्ति 2026 संपन्न। इंडियन एयरफोर्स राफेल मलेशियाई SU-30 MKM FA-18 क्रू ने साझा ऑपरेशन अनुभव किया। अभ्यास से दोनों वायुसेनाओं के इंटर ऑपरेटेबिलिटी और आपसी तालमेल मजबूत, भारत मलेशिया के रक्षा संबंधों को मिली मजबूती। दिल्ली के वसंत वाले स्कूल में टेकविज 2026 का भव्य समापन। देश भर के 20 स्कूलों के छात्रों ने टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, इनोवेशन, बिजनेस आइडियाज में दिखाई प्रतिभा, वसंत वाले स्कूल बना ओवरऑल चैंपियन। रोबोटिक्स से मल्टीमीडिया और इनोवेट तक छात्रों ने पेश किए शानदार प्रोजेक्ट्स। प्रतियोगिता में प्रेजेंटेशन, पब्लिक स्पीकिंग, टीम वर्क, बिजनेस स्किल्स को मिला अनुभव। मुख्य अतिथि श्रीमती रेखा पुरी जी ने विजेताओं को किया सम्मानित। मुंबई फिल्म सिटी के बॉलीवुड कैफे के गंभीर गंदगी का खुलासा, मक्खियों के प्रकोप, गंदे किचन के बीच खाद्य विभाग ने शुरू की कार्रवाई। जमशेदपुर में बाढ़ का कहर, ओडिशा में मूसलाधार बारिश, डैम से पानी छोड़े जाने के बाद स्वर्णरेखा, बागबेड़ा, जुगसई, कदमा समेत 250 से अधिक इलाके जलमग्न। बाढ़ से दहशत में लोग घर छोड़कर सामुदायिक भवनों और सुरक्षित जगहों पर पहुंचे, प्रशासन से राहत और मदद की मांग। ओडिशा में फिर बाढ़ का खतरा, भारी बारिश के बाद 5 जिलों में बिगड़ी स्थिति, नदियों का जलस्तर बढ़ा, बालासोर से आई तस्वीर। बालासोर में बारिश से जनजीवन प्रभावित, कई इलाकों में पानी भरा, बाढ़ जैसी स्थिति, घर मकान डूबे। मयूरभंज में बाढ़ प्रभावित गांवों तक ट्रैक्टर से पहुंचे जिलाधिकारी, राहत बचाव का निरीक्षण किया। असम में बाढ़ का पानी घटा लेकिन बीमारियों का खतरा बढ़ा, ग्रामीणों की चिंता। नेपाल में बाढ़ का कहर, जाजरकोट में 2 घर बहे, 37 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। बागेश्वर में लगातार बारिश के कारण सरयू उफान पर, लैंडस्लाइड के कारण 8 मोटर मार्ग बंद, कई गांवों का संपर्क कटा। पिथौरागढ़ में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर, मलबा सड़कों पर आया, लोगों से सतर्क रहने की अपील। सवाई माधोपुर में तेज बहाव में बाइक समेत बह गए 2 युवक, संतोष के बाद दोनों सुरक्षित बचा लिए गए। मुंबई लोकल से तिरंगा दुपट्टा संग खतरनाक स्टंट करती दिखी महिलाएं, वायरल वीडियो ने बढ़ाई सुरक्षा की चिंता। नैनीताल में खाई में गिरा टेम्पो ट्रैवलर, 2 की मौत, पुलिस ने रेस्क्यू चलाकर 22 लोगों को बचाया। बिहार के वैशाली में भीड़ ने पुलिस टीम पर किया पथराव, आरोपी को छुड़ाया, चौकीदार के घर पर फायरिंग, उपद्रव का वीडियो वायरल। हरिद्वार में थार चालक की दबंगई, बस चालक पर गाड़ी चढ़ा दी, घायल व्यक्ति को छोड़कर भागा। महोबा में शमशान की जमीन न मिलने पर सड़क पर चिता जलाकर विरोध, घंटों हंगामे के बाद प्रशासन ने दी जमीन। जूनागढ़ में खड़े ट्रक से टकराया यात्रियों से भरा टेम्पो ट्रैवलर, 9 घायल, 2 की स्थिति गंभीर। सूरत में शराब के नशे में कार चालक ने कई वाहनों को भारी टक्कर, भागने की कोशिश पर भीड़ ने पकड़कर जमकर पीटा। ओडिशा के भुवनेश्वर में इंडिगो फ्लाइट कैंसिल होने पर एयरपोर्ट पर महिला पैसेंजर ने किया हंगामा, का बच्चों के इलाज के लिए जाना था, इंडिगो से जवाबदेही की जगह महिला पैसेंजर पर FIR दर्ज। राजकोट में कुत्ते का आतंक, 10 से ज्यादा लोगों को काटा, नगर पालिका की टीम ने पीट पीट कर कुत्ते को मार डाला।
बेंगलुरु के मंदिर में तैनात महिला आईपीएस से बीजेपी विधायक की बेटी पर मारपीट, धमकी का आरोप, एफआईआर दर्ज। पंचकुला में क्रैन पलटने के कारण चौथी मंजिल से गिरे दो युवक, सड़क पर गिरते ही दोनों की मौत, 1500 किलो का जनरेटर था। पटना में अचानक लगी आग, कार ड्राइवर ने पत्नी बच्चे के साथ जा रहे थे अस्पताल, सभी चपेट में आए। दिल्ली में कावड़ लेकर लौट रहे युवक पर पहले चाकू से हमला, फिर गोली मारकर हत्या। श्योपुर में सड़क किनारे चाय की दुकान में भीषण आग, धमाके के साथ फट गया गैस सिलेंडर। जैसलमेर में सरकारी जवाहर अस्पताल 16 घंटे से अंधेरे में, टॉर्च की रोशनी में हो रहे हैं ऑपरेटर, जनरेटर है खराब। इंदौर में महिला इंजीनियर ने की आत्महत्या, पति पर प्रताड़ना, उकसाने का केस। नैनाना के मंदिर में दलित युवतियों के प्रवेश को रोकने का आरोप, एट्रोसिटी पॉक्सो के तहत केस। सूरत में नशे में चूर लाइसेंसी रिवॉल्वर से फायरिंग करते सीसीटीवी में कैद युवक, पुलिस ने गिरफ्तार किया। साबरकांठा में चलती कार बनी आग का गोला, चालक को लोगों ने मुश्किल से बाहर निकाला। कपूरथला में 9 वर्ष के बच्चे ने बाइक का शीशा छुआ, मां की लाज चप्पलों से पिटाई, कार्रवाई की मांग। आज से हॉकी वर्ल्ड कप की शुरुआत, बेल्जियम नीदरलैंड्स मिलकर कर रहे हैं मेजबानी। पहली बार एक साथ हो रहे हैं महिला और पुरुष के टूर्नामेंट। 16 दिनों तक चलेगा वर्ल्ड कप, दोनों टूर्नामेंट में खेले जाएंगे कुल 50 मैच। आज अपना 600वां टेस्ट मैच खेलेगा भारत। गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत। गॉल में टीम इंडिया रचेगी नया इतिहास, सबसे अधिक टेस्ट मैच जीतने के मामले में कर लेगी वेस्ट इंडीज की बराबरी। भारत ने नाइजीरिया में कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में पहली बार जीता ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब। भारतीय फेंसर्स ने सीनियर और अंडर 23 कैटेगरी में 35 मेडल जीते। सुप्रीम कोर्ट ने चिप्स बिस्किट जैसे पैकेज्ड फूड पर वार्निंग लेवल लगाने की सरकार FSSAI को दी अंतिम चेतावनी। अधिक चीनी, नमक, फैट की जानकारी 2 सप्ताह में फूड पैकेट्स पर न लगाने पर अदालत का आदेश। ब्लैक सी में हमलों से दुनिया भर में अनाज की सप्लाई थमने से गेहूं के दामों में 25% का उछाल, शिपमेंट में 40% गिरावट से भारतीय बाजार पर असर की आशंका। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा विजय माल्या SBI का लंबा खींचता विवाद देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगा। कोर्ट ने ईडी से अटैच संपत्तियों की जांच, मौजूदा स्थिति का मांगा ब्यौरा। UPI डेटा एनालिसिस में सामने आया जेंजी खर्च करने में जिम्मेदारी दिखाते हैं, कमाई का 70% से अधिक रोजमर्रा की जरूरतों पर खर्च करते हैं देश की युवा। एयर इंडिया सेट्स ने AWPO के द्वारा शहीदों के आश्रितों को एविएशन में रोजगार दिया, पहले बैच के उम्मीदवार दिल्ली एयरपोर्ट पर संभालेंगे कस्टमर सर्विस कार्गो की जिम्मेदारी। बॉक्स ऑफिस पर सनी देओल का एक्शन अवतार बंटवारा 1947 रिलीज, प्रीति जिंटा, करण देओल, शबाना आजमी। इमरान हाशमी की आवारापन 2 भी रिलीज, 2007 में आई इमरान की फिल्म आवारापन का सीक्वल है फिल्म। थिएटर के बाद OTT पर कंगना रनौत की फिल्म भारत भाग्य विधाता Z5 पर रिलीज। 19 जून को थिएटर्स में रिलीज होने के बाद OTT पर कमाल करेगी कॉकटेल 2, नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम। संजय दत्त की अंतिम फिल्म आखिरी सवाल भी OTT पर रिलीज, इस वर्ष सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। रूस के विदेश मंत्री का बयान, यूक्रेन को पश्चिम से मिल रहे समर्थन पर रोक लगाएगा रूस, अमेरिका यूक्रेन को दे रहा है सहायता। लातविया में हवाई क्षेत्र में ड्रोन घुसने से हड़कंप, नेटो के फाइटर जेट्स ने मार गिराया। फिनलैंड में उड़ानों और जहाजों की आवाजाही पर लगी रोक। यूक्रेनी शहरों पर रूस की भीषण बमबारी, सुमी चक्रकासी में भीषण हमला, 3 की मौत, 22 घायल। वेस्ट बैंक के कुसरा गांव में इजरायली सैनिकों ने फिलिस्तीनियों को घरों में कैद किया। कुसरा गांव में आवाजाही पर रोक, इजरायली सैनिकों ने फिलिस्तीनियों के घरों के अंदर बनाए अपने ठिकाने। सीमा पर अमेरिकी और मैक्सिकी सेना की संयुक्त गश्त, अमेरिका की ओर से मैक्सिको के आतंकवादी गुट घोषित किए जाने के बाद यह निर्णय। पाकिस्तान में आजादी के जश्न के बीच बलोच लिबरेशन आर्मी ने जानबूझकर पाकिस्तानी सैन्य परिसरों पर हमले का वीडियो किया जारी, 10 किलोमीटर दूर हुआ था हमला। पाकिस्तान से आजादी की लड़ाई लड़ रहा है BLA। फ्रांस की सर्वोच्च अदालत ने मैक्रों सरकार को झटका दिया, 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया बैन को खत्म किया। इटली की हथियार फैक्ट्री में धमाका, दूर तक सुनी गई आवाज, आसमान में काले धुएं का गुबार। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में 21 मंजिला इमारत में भीषण आग, 5 लोग घायल, सभी को सुरक्षित बचाया गया। जापान में 1 घंटे में 115 मिलीलीटर बारिश, यह आंकड़ा पूरे अगस्त महीने के बराबर। जबरदस्त लोग परेशान, एयरपोर्ट पर फंसे यात्री।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या राजनीति में अब वायरल होने की होड़ नेताओं पर भारी पड़ रही है। कल दिल्ली में कांग्रेस के रचनात्मक प्रकोष्ठ का अधिवेशन था। मकसद था नई राजनीति की शुरुआत, लेकिन इस मंच से जो हुआ उसने पार्टी की पूरी क्रिएटिविटी पर ही सवालिया निशान लगा दिया है। मंच से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी की हग डिप्लोमेसी यानी गले मिलने के अंदाज पर तंज कसते हुए मिमिक्री की, तो वहीं कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी पर एक बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी कर डाली। और हद तब हो गई जब ये सुनकर लोग ठहाके लगा रहे थे। इंदिरा गांधी की विरासत का दावा करने वाली कांग्रेस के मंच से एक महिला प्रधानमंत्री पर ऐसी टिप्पणी ने बीजेपी को बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा दे दिया। सवाल यह है कि क्या जेंजी को रिझाने और सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने की इस दौड़ में हमारे नेता अपनी राजनीतिक मर्यादा भूलते जा रहे हैं? और सोचिए, जब बीजेपी की तरफ से हमला आया तो बीजेपी की तरफ से निशिकांत दुबे ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर एक ऐसी अमर्यादित बात लिख दी जिस पर आज चर्चा करना, कुल मिलाकर अगर आप देखिए तो सिर्फ दिखाता है दोनों ही हिस्से। ऐसा दिखता है, प्रतीत होता है कि राजनीति में अब कोई सीमा बची नहीं है धरातल के नीचे जाने की। इसके बाद आपको उत्तराखंड के चमोली में पीपल कोटी टनल हादसे के बारे में बताएंगे। इस टनल में हुए भूस्खलन में 7 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। इस हादसे को 25 घंटे से ज्यादा वक्त बीत चुका है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन भारी बारिश और मलबे ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बड़ा सवाल यह है कि जब बारिश का येलो अलर्ट पहले से जारी था, सोचिए येलो अलर्ट, तो मानसून में जान जोखिम में डालकर इन मजदूरों को ये काम करने पर मजबूर क्यों कराया गया? क्या इस लापरवाही को सुसाइड मिशन नहीं कहना चाहिए जिसने मजदूरों को मौत के मुंह में उत्तराखंड में ढकेल दिया है? और आखिर में फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट को लेकर नया खुलासा दिखाएंगे। शुरुआत में इसे महज टर्बुलेंस या पायलट की गलती बताया जा रहा था, लेकिन विमान बनाने वाली कंपनी एयरबस की शुरुआती जांच रिपोर्ट के मुताबिक हवा में इस विमान के सभी हाइड्रोलिक सिस्टम्स कुछ सेकंड के लिए पूरी तरह फेल हो गए थे। राहत की बात यह रही कि वक्त रहते सिस्टम रिकवर कर गया, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। सबसे पहले बात पॉलिटिक्स की करेंगे, कांग्रेस के कल हुए उस अधिवेशन की जिसने कल कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और संदीप दीक्षित को फंसा दिया है। वो कल से ही बीजेपी ने के निशाने पर है। दरअसल कल दिल्ली में रचनात्मक कांग्रेस का पहला अधिवेशन था और हमने कल ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत में ही आपको ये पूरा वीडियो दिखाया था, आज फिर दिखाएंगे। मकसद ये बताया गया कि कांग्रेस न्यू पॉलिटिक्स करना चाहती है, क्रिएटिव पॉलिटिक्स, नए तरह की राजनीति करने वालों को अपने साथ जोड़ना चाहती है। लेकिन नए तरह की राजनीति वाले इस मंच से इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी पर अभद्र टिप्पणी हुई और केंद्र सरकार की विदेश नीति पर राहुल गांधी की व्यंगात्मक एक्ट ने विवाद खड़ा कर दिया है। करीब 56 सेकंड के अंदर ही इन दोनों बड़े नेताओं ने मंच से बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा दिया, जिसका जवाब अब कांग्रेस पार्टी इस बात से दे रही है कि आपके नेता भी तो अपशब्द बोलते हैं। लेकिन यह कोई जवाब है? सवाल है कि एक ऐसी महिला प्रधानमंत्री का जिस देश के साथ भारत के अच्छे रिश्ते हैं, हम उनके नागरिकों को क्या संदेश दे रहे हैं अगर इस तरह का व्यवहार हम करते हैं? हुआ ये कि राहुल गांधी मंच से केंद्र सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों को गले लगाने की उनकी आदत का मजाक उड़ा रहे थे। इसी एक्ट के दौरान संदीप दीक्षित ने उनसे इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को लेकर अभद्र टिप्पणी कर दी और यहीं से संदीप दीक्षित और राहुल का राजनीतिक घेराव शुरू हो गया है। पहले सुनिए,
1: इनके इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया, अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी।
2: एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ। मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था?
1: आई हैव नॉट रीच देयर येट, बट पता नहीं कहां से घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी का मतलब नेताओं से गले लगना।
0: सवाल तो यह है कि राजनीति में यह कहां से घुस गया कि आपको महिलाओं का अपमान करने की खुली इजाजत है। एक महिला पर संदीप दीक्षित की इस टिप्पणी ने कांग्रेस पार्टी के इस कार्यक्रम की छवि धूमिल की, और जिस तरह से मंच पर इस टिप्पणी के बाद ठहाके लगे, उसने इस अधिवेशन के उद्देश्य नई तरह की राजनीति का मजाक बनाया। जिस पार्टी से इंदिरा गांधी जैसी सशक्त महिला प्रधानमंत्री रही हूं, उस पार्टी के एक नेता के द्वारा दूसरे देश की किसी महिला प्रधानमंत्री के लिए गलत टिप्पणी करना राजनीतिक बयानबाजी सबसे निचला स्तर है। और यही वजह है कि कल से ही भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, कई पार्टियों के नेताओं ने इसकी निंदा की है और कई लोग इसके खिलाफ सोशल मीडिया पर भी लिख रहे हैं। देखिए,
3: कल मैंने देखा, एक भारत के नागरिक के नाते मैं कह रहा हूं, जो व्यवहार नेता प्रतिपक्ष ने किया वो अभारतीय है, अशोभनीय है, अलोकतांत्रिक है, मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाने वाला है। आप किसी को गले लगाते हैं और वो कह रहे हैं एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र की महिला प्रधानमंत्री जी के बारे में, ये क्या कांग्रेस को शोभा देता है? क्या ये भारत के विचार है? मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, उनको माफी मांगनी चाहिए।
4: पूरे देश की महिलाओं का अपमान करने का काम राहुल गांधी ने किया, एक चुने हुए देश की महिला का, ननियाल देश की महिला का अपमान करने का काम राहुल गांधी ने किया। अपनी निम्नता, घटियापन, ओछापन देश के लोगों के सामने रखने का काम राहुल गांधी ने किया, और उनके साथ में जो एक जोकर और खड़ा था, वो जोकर भी इसलिए क्योंकि उसकी माताजी मुख्यमंत्री थी दिल्ली की, वहां भी उसकी मां का भी अपमान किया उस जोकर ने।
5: दोनों कांग्रेस के वो नेता जिनकी परिवार की महिलाएं उच्च पदों पर रही, वो एक महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में उचित टिप्पणी करें तो महिलाओं के प्रति कांग्रेस की सोच क्या है दिखती है। महिला आरक्षण का कांग्रेस विरोध क्यों करती है ये दिखता है, और जानबूझ के डिलिमिटेशन बिल क्यों नहीं पास होने देते ताकि महिलाओं को 33% आरक्षण, ये दिखता है। लेकिन अब विदेशी महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष पर अभद्र टिप्पणी करना, अमर्यादित टिप्पणी करना, ये इनके चरित्र को दिखाता है, इनके पालन पोषण को, इनके संस्कारों को दिखाता है।
6: राहुल गांधी फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ ड्रामा कर ही रहे थे, उनके साथ उनके एक नेता ने जाकर ये कहना कि इटली की स्टेट हेड के बारे में इस तरह की बातें करना, ये क्या भारत की संस्कृति है? किस तरह की जबान बोली जा रही है? ये दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह की भाषा कांग्रेसी बोल रहे हैं और एक्ट कांग्रेसी कर रहे हैं।
0: संदीप दीक्षित की महिला विरोधी टिप्पणी कांग्रेस पार्टी की पहली मुसीबत थी, लेकिन इसके बाद क्या हुआ वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आज राजनाथ सिंह, देश के रक्षा मंत्री, ने भी राहुल गांधी के इस टिप्पणी पर गहरी चिंता जाहिर की है। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा है।
7: ऐसी अभद्र टिप्पणी हर भारतीय के मन को अंदर से कष्ट देने वाली है, पीड़ादायक है। मैं कांग्रेस पार्टी से यह भी कहना चाहूंगा, विनम्रतापूर्वक कांग्रेस पार्टी से अनुरोध करना चाहूंगा कि ऐसी भाषा और आचरण के बाद क्या वे लोग अब लाल बाल पाल से लेकर गांधी, नेहरू, पटेल, सुभाष बाबू, राजेंद्र बाबू से लेकर शास्त्री जी, नरसिम्हा राव जी से लेकर प्रणब मुखर्जी जी तक जैसे विराट व्यक्तित्वों की विरासत का वह दावा किसी भी सूरत में कर सकते हैं? मैं कह सकता हूं कि आज इस आचरण से राहुल गांधी ने न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अपमान किया है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का अपमान किया है, लोकतंत्र नेता प्रतिपक्ष के पद की गरिमा को तार तार कर दिया है। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता कि जिसके नाम के आगे गांधी शब्द लगा हो वह ऐसा शर्मनाक बयान भी कभी दे सकता है।
0: तो संदीप दीक्षित की महिला विरोधी टिप्पणी कांग्रेस पार्टी की पहली मुसीबत थी। दूसरी मुसीबत राहुल गांधी द्वारा पीएम मोदी की मिमिक्री। राहुल गांधी ने कल मंच से कहा कि केंद्र सरकार के दिमाग में घुस गया है कि विदेश नीति का मतलब है नेताओं से गले लगना। आपने राजनाथ सिंह को भी सुना, उन्होंने भी कड़े शब्दों में इस पर टिप्पणी की। उनका निशाना देखिए, राहुल गांधी का निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गले मिलने का स्वभाव है, जिसमें वो अपने समकक्ष नेता, मित्रों, कुछ सहयोगियों से गले मिलते हैं। राहुल गांधी ने इसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि विदेश नीति जो है वो अब इस बात पर सीमित हो गई है कि प्रधानमंत्री सबके गले मिलते हैं, और उन्होंने बाकायदा इसकी एक्टिंग की जो आप देख रहे हैं। राहुल गांधी की एक्टिंग को नई दिल्ली की सांसद बासी स्वराज ने फेल्ड स्टैंड अप कॉमेडी कहा है। बीजेपी नेता प्रहलाद जोशी ने उनसे पूछा कि वो बड़े कब होंगे। इसके अलावा कई नेताओं ने राहुल गांधी के इस बयान को बचकाना बताया। अपने राजनाथ सिंह को सुना, वो तो कह रहे हैं कि जिसके नाम में गांधी है वो ऐसा कैसे कर सकता है।

0: मैं कह सकता हूं कि आज इस आचरण से राहुल गांधी ने न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अपमान किया है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का अपमान किया है, लोकतंत्र नेता प्रतिपक्ष के पद की गरिमा को तार तार कर दिया है।
1: लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अब हमारे देश के राजनेता सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की तरह वायरल होना चाहते हैं। सोशल मीडिया को एक्सक्लूसिव कंटेंट देने के लिए भी कई चीजें की जाती हैं और इसी वजह से बहुत सारा ऐसा कंटेंट बनाया जाता है। खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से सोशल मीडिया पर हमारे नेताओं की बयानबाजी, सरकाज्म, आपने हाल में देखा होगा जेंजी आंदोलन के बाद से ज्यादा ही कोशिशें हो रही हैं कि ऐसी ऐसी बातें कही जाएं जिनकी मीम्स बने, जिनका अलग अलग अंदाज में लोगों तक पहुंच पड़े। जैसे आपने राहुल गांधी का वो मीम देखा होगा जिसमें वो कहते हैं खत्म, ओके, टाटा, बाय बाय, काफी वायरल मीम है और वो कई बार इसका इस्तेमाल अपने भाषण में कर चुके हैं। कल भी उन्होंने मंच से इसी मीम को रिपीट किया, यानी उन्हें मालूम है कि उनका कौन सा कंटेंट सोशल मीडिया पर लोग ज्यादा देख रहे हैं, मीम कंटेंट। सुनिए,
2: सिस्टम बदलना है, प्यार से, मोहब्बत से, नफरत से नहीं। सिस्टम को खत्म, टाटा, बाय बाय करना है।
3: जैसे सर ने कहा, खत्म, टाटा, बाय बाय,
2: खत्म, टाटा, बाय बाय।
4: अब तो हो गया ना, क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी ओपोजिशन सबका एक्सप्रेशन चालू है, अब नहीं रुकने वाला वो क्या। हाँ, थैंक यू, टाटा, गुड बाय। और मैं आपको बता रहा हूं, आप लिख लो, जिस दिन तक नरेंद्र मोदी अपना इस्तीफा नहीं देंगे, अमित शाह नहीं हटेगा, उस दिन तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं सो पाएंगे।
1: उम्रदराज नेता भी ऐसे वीडियोस बनवा रहे हैं जो जेंजी को पसंद आए, अपने भाषणों में ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो जेंजी की बोलचाल में सामान्य मानी जाती है। अभी हाल ही में जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान संसद में जो चर्चा हुई थी उसमें कुछ नेताओं ने जेंजी द्वारा बोले जाने वाले शब्दों का इस्तेमाल किया। इन शब्दों का इस्तेमाल भी इसलिए किया ताकि भाई भाषणों में एक जुड़ाव जेंजी के साथ दिखे। सुनिए,
5: जहां पर कांग्रेस शासित यूपीए ने पॉलिसी वैक्यूम करा, वहीं पर अगर मैं जेंजी की भाषा को बोरो करूं, देन आई विल हैव टू से मोदी जी क्लॉक्ड इट एंड प्रोवाइडेड अ लेजिस्लेटिव सॉल्यूशन।
6: विपक्ष के आंदोलन को एक समराइज करना चाहूंगा मैं जेंजी के भाषा में। 37 दिन तक तो ये जंतर मंतर नहीं गए, तो इनको एमआईए हो गया। एमआईए क्या है? एमआईए मिसिंग इन एक्शन। आंदोलन क्यों किया आपने? उनको फोमो हुआ, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अरे बच्चे यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? तो हम चले गए पीएम आवास पर, फोमो होने के बाद लहू। इनको डेलुलू हुआ, डेलुलू,
7: डॉक्टर डेल्यूशन। श्रीकांत जी,
6: इनको लगा छात्र हमारे साथ आएंगे प्रधानमंत्री के घर के इधर जाने के बाद, लेकिन छात्र तो कोई आए नहीं।
8: अध्यक्ष जी, मैं जेंजी के लैंग्वेज में मैं आज विपक्ष से कहना चाहता हूं, बिकॉज ऑफ दिस इश्यू ऑपोजिशन थिंक्स दैट यूथ आर विद देम, इससे बड़ा डेलुलू दूसरा नहीं है।
9: ये जो नया जेंजी का लिंगो यूज कर रहे हैं ना, मैं भी उनको बताना चाहती हूँ सर, इन्होंने शायद इंस्टाग्राम नहीं देखा सब बीजेपी के लोगों ने, देखा भी होगा तो बोलेंगे नहीं पता है, सबके बच्चे हमारे साइड पे, उनके साइड पे तो किसी के बच्चे नहीं है। उनकी अगली जनरेशन ना इनके साथ नहीं, हमारे साथ भी नहीं है शायद। हम जो डेलुलू के बारे में बोले ना, आप भी उस डिलुलू में ना रहना कि वो आपके साथ है। yes. आपकी जनरेशन किसके साथ है ये 29 में पता चलेगा, तब देखा जाएगा।
10: वो कभी आपसे टकराते थे तो दूसरा नारा देते थे, वास्ते गुने हुईया, एक नारा देते थे वास्ते गुने हुईया। आपको समझ ना आए तो आप घर जाके गूगल पे आप सर्च कर लेना ये क्या नारा है। वो नारा देते थे वास्ते गुने हुईया, और वो नारा देते थे इतने प्यार से, इतनी खूबसूरत तरीके से इस्तीफा मांगते थे, कहते थे, जब आपसे इस्तीफा भी मांगते थे तो कहते थे कुचू पुचू इस्तीफा दे दो, आज हमारा जन्मदिन।
1: तो पिछले कुछ समय में कई बड़े और चर्चित नेताओं ने किसी इन्फ्लुएंसर की तरह वीडियोस बनाए हैं, वायरल भी हुए हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, जिसमें दोनों बारिश में भीग रहे थे। बारिश से बचने के लिए छतरी नहीं ली थी और संसद परिसर में मौजूद ये दोनों सांसद आपस में किसी मुद्दे पर गहन बातचीत में बिजी नजर आए। ये वीडियो की रीच मिलियंस में थी। हालांकि बाद में जब वो वीडियो भी आया जिसमें आसपास लोग छतरी के साथ खड़े दिख रहे थे, तो वो वीडियो भी वायरल होने लगा क्योंकि आसपास में लोग खड़े थे। हालांकि ये अलग बात है कि राहुल विरोधियों ने इस घटना का एक और वीडियो, जैसा हम बता रहे हैं आपको, सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। नजर आया कि जिस जगह राहुल और प्रियंका बारिश में भीग रहे थे, वहां पर बहुत सारे सुरक्षाकर्मी छतरियों के साथ खड़े थे। साफ थी कि राहुल प्रियंका का ये वीडियो जो है बारिश वाला, वो रील का कंटेंट था, जिसका मेन जो पॉइंट है ये था कि कांग्रेस पार्टी के दो बड़े नेता कर्ता धरता किसी गहन मुद्दे पर बात करते वक्त बारिश की भी चिंता नहीं कर रहे।

0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली गए थे और वहां पर भी जब मेलेडी चॉकलेट वाला ये कंटेंट बना तो सोशल मीडिया पर ये भी बहुत देखा गया और इसे भी आप इंस्टाग्राम या फिर वीडियो कंटेंट बता सकते हैं क्योंकि मेलेडी चॉकलेट की बात हुई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलोनी के दोस्ती को लेकर खुद इटली की प्रधानमंत्री ने पहली बार हैशटैग मेलेडी लिखा था। जंतर मंतर पर हुए जेंजी आंदोलन के बाद तो सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को साधने की नई कोशिशें शुरू हो गई हैं। अब तो सोशल मीडिया पर रील स्टाइल में वीडियोस और संबोधन हो ही रहे हैं। जैसे राहुल गांधी ने E20 के मुद्दे पर एक वीडियो बनाया था जिसमें वो बारिश के दौरान कार के पेट्रोल टैंक के पास खड़े हैं, पेट्रोल टैंक का नॉब खोलते हैं और बाद में कहते हैं कि दाल में काला नहीं है, पूरी दाल काली है। इस वीडियो के करीब काफी व्यूज थे, 35 मिलियन के आसपास आप देख रहे हैं। फिर लोगों ने जूम इन किया और जूम इन करके दिखाया कि यहां पर तो E20 लिखा हुआ है, जिस एथेनॉल गाड़ी मानी E20 कंप्लायंट कार है ये। इसी तरह से एक वीडियो जब जेंजी पर हुए लाठी चार्ज को लेकर प्रधानमंत्री आवास पर धरना दे रहे थे तब उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें सुरक्षा कर्मी उनको ले जा रहे हैं, उसके भी लगभग 24 मिलियन व्यूज थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 23 जुलाई वाले इंस्टाग्राम रील भी आपको याद होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे से एक दिन पहले ये डाला था उन्होंने, माफ कीजिएगा, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से एक दिन पहले ये रिलीज की गई थी। ये एक सेल्फी वीडियो बताया गया था जिसमें उन्होंने जेंजी को संबोधित किया था। इसमें नकल माफिया और दोषी लोगों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही गई थी। इसके व्यूज आप देख सकते हैं, 417 मिलियन व्यूज थे। इसके बाद लोगों ने उन्हें इस सेल्फी वीडियो के कुछ फ्रेम्स बताए जिस पर उन्होंने अमल भी किया और फिर अगले दिन एक वीडियो बनाया और इस वीडियो के 293 मिलियन व्यूज थे। इसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने घर के बाहर जाकर एक और वीडियो बनाया था और ये वीडियो के 195 व्यूज थे, मिलियन, 195 मिलियन। यानी देश के नेता जेंजी को सोशल मीडिया के जरिए कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और वो साफ अब रिफ्लेक्ट कर रहा है क्योंकि इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि बहुत सारे रील्स प्रभावी रहे, चाहे वो जंतर मंतर का आंदोलन है उसको लोगों तक पहुंचाने में। आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हक डिप्लोमेसी का मजाक भी कुछ इसी तरह से उड़ाया जिससे उनका ये वीडियो वायरल हो सके और काफी हद तक कामयाबी भी रही क्योंकि लगातार टीवी डिबेट्स, बुलेटिन्स में इस पर चर्चा हो रही है, भारतीय जनता पार्टी इस पर अटैक कर रही है, उनके समर्थक ही नहीं बल्कि विरोधी भी काफी देख रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हक डिप्लोमेसी को लेकर राहुल गांधी के विचार लोगों को सोशल मीडिया में वायरल होने के मिमिक्स से अगर आप इसको तुलना करें तो अलग अलग जगहों पर, क्योंकि उन्होंने सिर्फ विदेशों में जाकर डिप्लोमेसी में हक करने की बात की कि सबके गले लगते हैं, लेकिन अब लोग ये वीडियोस डालने लगे हैं क्योंकि विदेश नीति की कोई रणनीति के बजाय उन्होंने इसका मजाक उड़ाया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के अंदर भी ये वीडियो अब बीजेपी के लोग वायरल कर रहे हैं जिसमें उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी, चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण, कांग्रेस नेता अशोक गहलोत को भी गले लगाया। इसके अलावा इसरो के पूर्व चीफ डॉक्टर सिवान, वाराणसी में हुए कार्यक्रम में दिव्यांगों को भी गले लगाया था।
1: बोलो भारत माता की।
2: সরকার সবরই প্রতীক্ষা কত দীর্ঘ প্রতীক্ষা।

0: बोलो भारत माता की।
1: बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए एक्स पर कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं। उन्होंने इसमें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तस्वीर डाली है, जिसमें वो क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल कास्ट्रो से गले मिलते हुए दिख रही हैं। ये तस्वीर मार्च 1983 की है, जब दिल्ली में नॉन अलाइंड नेशंस कॉन्फ्रेंस की 7वीं बैठक आयोजित की गई थी। इसमें इंदिरा गांधी जैसी मंच पर जाती हैं तो फिदेल कास्ट्रो की तरफ से हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाती हैं, लेकिन फिदेल कास्ट्रो ने उन्हें छोटी बहन की तरह गले लगा लिया। और आज इस बात को लेकर बहुत चर्चा हो रही है कि निशिकांत दुबे ने इस पोस्ट के साथ जिस तरह की भाषा लिखी है वो कतई एक प्रधानमंत्री के लिए, और वो भी भारत की महिला, पूर्व महिला प्रधानमंत्री के लिए अमर्यादित है। और आज आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जिसमें राहुल गांधी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी गले मिले थे। जुलाई 2018 के मानसून सत्र में अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी बोलते बोलते अपनी सीट से उठे, वो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास गए और उन्हें गले लगा लिया था।
2: आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सभी गुस्सा, इतना सभी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है। मैं कांग्रेस हूँ और ये सब कांग्रेस है। इट्स इंटरेस्टिंग, यू लाइक इट, यू विल एंजॉय दिस वन।
1: और अब हम बात करेंगे उत्तराखंड के चमोली में हुए टनल हादसे की। इस हादसे में अब तक 7 मजदूर मारे जा चुके हैं, 3 लापता हैं, उनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। पिछले करीब 26 घंटे से ये रेस्क्यू जारी है और बारिश इसको मुश्किल बनाती जा रही है। यह हादसा चमोली के पीपल कोटी में हुआ। यहां पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए टनल बनाने का काम चल रहा था। कल शाम करीब 7 बजे टनल में पानी रिसने के बाद लैंडस्लाइड हो गया। उस वक्त वहां टनल में काम कर रहे करीब 22 मजदूर फंस गए और हादसे के तुरंत बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। इसमें अब तक 19 लोगों को निकाला गया है, जिसमें 12 लोग घायल हैं, 7 लोगों की मौत हो चुकी है। जिस टनल में हादसा हुआ है वो THDC यानी इंडिया लिमिटेड बना रहा है। ये 444 मेगावाट का एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, यानी पानी से बिजली बनाने का प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के तहत अलकनंदा नदी के पानी का इस्तेमाल होना है। यह दर्दनाक हादसा इस प्रोजेक्ट के तहत बन रही टेल रेस टनल में हुआ है। यह टनल चमोली के बिरही इलाकों में पड़ती है। और अब हम आपको यह बताते हैं कि असल में यह हादसा किस पॉइंट पर हुआ है। इस हाइड्रो प्रोजेक्ट की शुरुआत चमोली के हेलांग से होती है। यहां अलकनंदा नदी पर एक 65 मीटर ऊंचा डैम बनाया जा रहा है। इस डैम से अलकनंदा की एक धारा का डायवर्जन किया गया है। अलकनंदा की यह धारा करीब 13 किलोमीटर लंबी हेडरेस टनल से होती हुई पीपल कोटी के हाट गांव में बन रहे अंडरग्राउंड पार हाउस में पहुंचेगी। फिर यहां से अलकनंदा की धारा करीब 3 किलोमीटर लंबी टेल रेस टनल से होते हुए मुख्य धारा में जाकर मिल जाएगी। यह हादसा इसी टेल रेस टनल में हुआ है। जानकारी के मुताबिक हादसा का जो लोकेशन है वो टेल रेस टनल के एग्जिट पॉइंट के करीब 1600 मीटर अंदर है, यानी जिस रेस टनल से पानी वापस अलकनंदा नदी में पहुंचाया जाना है उसके बिल्कुल बीच में हादसा हुआ। अभी भी 3 मजदूर बताया जा रहा है इसमें फंसे हुए हैं। इस प्रोजेक्ट के हर चरण पर अलग अलग काम चल रहा है। साल 2009 से शुरू हुए इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए दिसंबर 2027 का टारगेट रखा गया, लेकिन काम की जल्दबाजी कहिए, कुछ और कहिए, लेकिन इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया कि मानसून है और मानसून से पूरे उत्तराखंड में भारी बारिश हो रही है। लैंडस्लाइड की सैकड़ों घटनाएं हो चुकी हैं। येलो अलर्ट मौसम का जारी है, बावजूद इसके टनल बनाने का काम जारी रखा गया, रोका नहीं गया। क्या इन मजदूरों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है? साफ दिख रहा है। अब स्थिति यह है कि बारिश की वजह से रेस्क्यू टीम का काम अटका है। जिन तीन मजदूरों को बचाने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, स्थानीय प्रशासन की टीम्स लगी हैं, वो बारिश के बंद होने और टनल में पानी का स्तर कम होने का इंतजार कर रही हैं। उनके पास इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं है। बताया जा रहा है कि टनल में करीब 1 किलोमीटर के इलाके तक पानी भरा है, कुछ जगहों पर तो पानी 5 फीट तक भर गया है। इस पानी में मलबा, मिट्टी और गाद जमा हुआ है, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी हो रही है। हादसे में 7 मजदूरों की मौतों के बाद सवाल यह है कि क्या टारगेट पूरा करने के लिए उन्हें भारी बारिश, लैंडस्लाइड के खतरों के बीच किसी सुसाइड मिशन पर टनल के अंदर भेज दिया गया था? क्या इस हाइड्रो प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों को यह पता नहीं था कि मानसून में इस बार उत्तराखंड में भारी बारिश हो रही है? केवल चमोली में ही इस मानसून सीजन में सामान्य से लगभग 53% ज्यादा बारिश हुई। 1 जून से लेकर 13 अगस्त के बीच 746 mm बारिश हो चुकी है, जबकि इस समय आमतौर पर 488 mm बारिश होती है। जिस दिन चमोली में हादसा हुआ, उस दिन मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया था, यानी भारी बारिश की चेतावनी जारी की थी। मौसम विभाग के येलो अलर्ट का मतलब है कि बारिश से सावधान रहे, क्योंकि 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश की संभावना रहती है। यहां एक और बात जान लीजिए कि मौसम विभाग ने चमोली में 1 अगस्त से कई बार येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किए, 10 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक के लिए पहले से येलो अलर्ट है, यानी आने वाले दिनों में और बारिश हो सकती है। ये बारिश रेस्क्यू टीम्स के लिए नई चुनौती बन जाएगी। आप सोचिए कि क्या हालत है, अंधेरा है, लेकिन वीडियो से आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे मजदूरों की जिंदगी को खतरे में डाला जाता है। आप सोचिए कि कितनी बड़ी लापरवाही है कि हाइड्रो प्रोजेक्ट जिन लोगों की निगरानी में चल रहा है, उन्होंने मौसम विभाग की चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया है। और ये विष्णुगढ़ पीपल कोटी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है, उसका पूरा टनल हम आपको दिखा रहे हैं कि अलकनंदा नदी से होते हुए ये किस तरह से आप देख रहे हैं, इधर से अलकनंदा नदी और फिर उधर अलकनंदा नदी में मिलना है। बीच में ये हेडरेस टनल है, लगभग 13.5 किलोमीटर का सर्ज शाफ्ट है और टेल रेस टनल है और अंडरग्राउंड पावर हाउस 444 मेगावाट इसका कैपेसिटी है। आमतौर पर आप देखिए, टनल बनाने का काम हो, पानी अचानक, मलबा आने का खतरा तो रहता ही है। पहाड़ों में ये खतरा बारिश के मौसम में इतना बढ़ जाता है। जिस टेल रेस टनल में हादसा हुआ, इसमें अचानक रिसाव शुरू हो गया और इसके बाद भूस्खलन हो गया, और ये कोई पहली बार हो रहा है। लगातार हमने कई बार बारिश के मौसम में पहले भी देखा है, कई जगहों पर हमने मजदूरों का इस तरह से फंसे होना, लाइफ रेस्क्यू ऑपरेशन होना, सब कुछ देखा है। लेकिन बावजूद इसके सबक इसलिए नहीं सीखते हैं क्योंकि इन मजदूरों की जिंदगी की कोई कीमत जाहिर तौर पर इनकी नजर में है ही नहीं। और यही वजह है कि जो मजदूर इसमें काम कर रहे थे, उन्हें अंदाज नहीं था बारिश उनके लिए ऐसी मुसीबत खड़ी कर देगी। अगर मौसम विभाग की चेतावनियों को ही ध्यान में जरा रख लेते तो फिर ऐसा नहीं होता। और यही आज सबसे बड़ा सवाल है, किया नहीं गया, और इसी वजह से हमने 7 मजदूरों को खो दिया है। उन परिवारों की चिंता कौन करेगा? और इसीलिए यह सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि आखिर इन मजदूरों की जिंदगी की जवाबदेही किसकी है, उन परिवारों को लेकर क्या कर रही है सरकार। अब सवाल तो यही है कि आप देखिए किस तरह से यह हादसा हुआ है। जिस जगह पर येलो अलर्ट हो, येलो अलर्ट, वहां पर आप ऐसा कर रहे हैं, यह अपने आप में बताता है कि किस तरह की सोच है, मजदूरों की जिंदगी को लेकर किस तरह की लापरवाही बरती जा रही है। और ऐसा नहीं है पहली बार हुआ है, जैसा हमने आपको बताया, इस तरह की लापरवाही पहले भी की गई है। पिछले साल ही इसी मौसम में, मुझे याद है, हम लोग लाइव कवरेज कर रहे थे, इसी प्रोजेक्ट में ऐसा हादसा हुआ जब चमोली के हिलांग में डैम बनाने का काम चल रहा था। 2 अगस्त को यहां काम के दौरान भूस्खलन हो गया और 12 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। लेकिन इस हादसे से प्रोजेक्ट संभाल रहे लोगों ने कोई सीख नहीं ली। उन्हें पता होना चाहिए कि मानसून में जब पहाड़ों पर जबरदस्त बारिश होती है, इस तरह का भूस्खलन आता है, टनल बनता है, तो पानी, गाद, सब कुछ आता है। और देखिए, 7 मजदूरों की मौत, 3 अभी भी फंसे हुए हैं इस वक्त जब आप ये बुलेटिन देखें। ये सुसाइड मिशन नहीं है तो क्या है? उत्तराखंड में इसी सीजन में 53 दिनों के अंदर ही 1944 सड़कें अलग अलग जगहों पर हुए भूस्खलन की वजह से बाधित हुई। अनुमान है कि इससे सरकार को करीब 217 करोड़ रुपए का नुकसान भी हुआ है। जब भी ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं तो सभी परेशान होते हैं, फिर चाहे पीड़ित हो, रेस्क्यू टीम्स हो, या फिर प्रशासन से जुड़े लोग हो। और फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पहुंच भी जाते हैं, घटना स्थल पर पहुंचे वो, कि भाई रेस्क्यू का काम कैसे चल रहा है। लेकिन कोई तो इस बात की सुध ले कि आखिर ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। अब वो राज्यों की सुरंगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो पिछले साल भी हुआ था। सीएम धामी के अलावा गढ़वाल के बीजेपी सांसद अनिल बलूनी भी घटनास्थल पर हालात का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे।
3: टनल दुर्घटनाएं हमेशा हो रही, सिलक्यारा हुई, ये हुई, इससे पहले टनल की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार क्या संबंधित एजेंसी को कोई निर्देश देगी?
4: बिल्कुल निर्देश देंगे और हमारे लिए जो भी कार्मिक जो भी काम करने वाले हैं उनकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। बिना सुरक्षा के जब तक पूरे सुरक्षा के प्रबंध नहीं हो जाते तब तक इन कामों को भी आगे नहीं बढ़ाएंगे।
5: वाकई बड़ी मुश्किल परिस्थितियों में अंदर काम हो रहा है और आप सब लोग जानते हैं अभी ऑपरेशन जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है और हमारे NDRF और SDRF के जवान और बाकी जो हमारा स्थानीय प्रशासन है सब मिलकर अंदर, क्योंकि काफ़ी पानी भरा हुआ है और काफ़ी मुश्किल परिस्थितियाँ हैं, उन सब में काम कर रहा है। अभी बताया जाता है कि 3 लोग मिसिंग की जानकारी जो है वो सब है, हम अंदर देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति मिल सके हमें और सारे लोग बातचीत कर रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं, अभी प्रशासन पूरी ताकत से लगा है।
1: और अब हम आपको इस हादसे की मौजूदा स्थिति पर अपनी एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं और इस रिपोर्ट में आप देखेंगे कि बारिश ने किस तरह से टनल में तबाही मचाई और अब रेस्क्यू टीम्स के लिए चुनौती भी बन गई है।

0: योजना की जो TSDC की ये टनल है TRT टनल, इसके अंदर 1500-1600 मीटर के करीब में एक लूज जो है टनल के अंदर गिरा और उसके बाद एक बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे बताया जा रहा है हवा का झोंका और पानी का बहुत बड़ा रिसाव हुआ और उसने कुछ लोगों को तो अंदर की ओर धकेला और कुछ लोगों को बाहर की ओर धकेला। ऐसे में कुछ तो ठीक ठाक निकल चुके हैं लेकिन अभी तक 3 लोग लापता है। पता चला इस पूरे हादसे में 22 लोग यहाँ पे हताहत हुए थे, जो कुछ घायल हैं, कुछ 7 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। वहीं अभी राज्य आपदा प्रबंधन सचिव जो है विनोद कुमार सुमन वो यहाँ पे निरीक्षण करके गए। उनका कहना है कि डीवाटरिंग करने का काम किया जा रहा है और जल्द से जल्द इस पानी को बाहर निकाला जाएगा ताकि जो 3 लोग हैं अंदर उनका रेस्क्यू हो नहीं पा रहा है, पानी भर जा रहा है। ऐसे में लगातार यहाँ पे ITBP की फोर्स है वो लगातार आ रही है जा रही है, जो टीमें हैं वो लगातार लगी हैं, कभी मशीनें भेजी जा रही हैं, कभी ड्रम भेजे जा रहे हैं, अलग अलग तरीके से यहाँ पे इस समय जो रेस्क्यू और बचाव के काम चल रहे हैं वो करवाए जा रहे हैं।
1: कल तक काफ़ी लोगों को निकाला हम लोगों ने, जिसमें से 12 लोग को सुरक्षित बचाया गया है, 7 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है।
2: और अब आपको हवा में गोते लगाने वाले एयर इंडिया के विमान के बारे में बताएंगे, जिसमें पहले एयर टर्बुलेंस, बाद में पायलट के नशे में होने का दावा किया जा रहा था। अब इसमें एक और नई बात सामने आ रही है जिसने सबको हैरान कर दिया है। एयर इंडिया की फुकेट से दिल्ली आने वाली फ्लाइट AI 2379 में सिर्फ एयर टर्बुलेंस और पायलट के नशे में होने के दावों की चर्चा थी, लेकिन अब इस विमान को बनाने वाली कंपनी एयरबस की शुरुआती जांच रिपोर्ट ने एविएशन सेक्टर में सनसनी फैला दी है। रिपोर्ट के मुताबिक हवा में कुछ सेकंड्स के लिए प्लेन के सभी हाइड्रोलिक सिस्टम्स फेल हो गए थे, यानी कुछ पल के लिए विमान से कंट्रोल पूरी तरह से खो चुका था। यह घटना 4 अगस्त की है, जब एयर इंडिया की यह फ्लाइट थाईलैंड के फुकेट से उड़ान भरकर दिल्ली आ रही थी। विमान जब हवा में था तो अचानक उसमें भारी हलचल और सडन लॉस ऑफ एल्टीट्यूड दर्ज किया गया। इस घटना में विमान में सवार कई यात्रियों को चोटें भी आई। शुरुआत में इसे सामान्य एयर टर्बुलेंस या मौसम की खराबी माना गया। इसके अलावा कॉकपिट के भीतर के माहौल को लेकर तरह तरह की चर्चाएं थी, लेकिन जब विमान के फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और सेंट्रलाइज फॉल्ट डिस्प्ले सिस्टम के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया तो जो सच सामने आया उसने एयरलाइंस और रेगुलेटर्स के होश उड़ा दिए। एयरबस की इनिशियल फाइंडिंग्स के अनुसार कॉकपिट के भीतर सुबह 9:32 और 44 सेकंड पर खौफ का वो मंजर शुरू हुआ जिसने विमान को बड़े खतरे में डाल दिया। फ्लाइट वार्निंग सिस्टम द्वारा सबसे पहले ग्रीन हाइड्रोलिक सिस्टम के फेल होने की घोषणा की गई। विमान में ग्रीन हाइड्रोलिक सिस्टम एक बहुत ही ताकतवर और मुख्य पावर सप्लाई होता है जो विमान को सुरक्षित रूप से उड़ाने और जमीन पर कंट्रोल करने वाले भारी कलपुर्जों को चलाता है। विमान में ग्रीन हाइड्रोलिक सिस्टम के बंद होते ही लेफ्ट हैंड ग्रीन एलिवेटर जो है वो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड ग्रीन एलेरॉन और स्पॉयलर्स 1 और 5 ने काम करना बंद कर दिया। अब ये स्थिति बड़ी खतरनाक है इतना ही हम लोग समझ सकते हैं। ये समझना जरूरी है कि लेफ्ट हैंडेड ग्रीन एलिवेटर विमान को ऊपर या नीचे ले जाने में मदद करता है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड ग्रीन एलेरॉन जो होते हैं वो विमान को हवा में दाई या बाई तरफ झुकाते हैं। स्पॉयलर 1 और 5 हवा में बहाव रोककर विमान की गति काम करने में कंट्रोल करने में मदद करते हैं। अब विमान के डिजाइन के मुताबिक जब यह ग्रीन हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हुआ, सिस्टम का कंट्रोल बैकअप के तौर पर ब्लू और येलो हाइड्रोलिक्स पर शिफ्ट हो जाता है, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि अगले ही 1 सेकंड के अंदर ये दोनों बैकअप सिस्टम्स भी फेल हो गए। अब विमान के सबसे अहम हिस्से यानी प्लेन को ऊपर नीचे करने वाले जो एलिवेटर्स हैं, बाएं दाएं मोड़ने वाले एलेरॉन्स हैं, स्पॉयलर्स हैं, नियंत्रण पूरी तरह खत्म। एलेरॉन्स के फेल होने का सीधा मतलब था कि पायलट के पास प्लेन को बाएं या दाएं मोड़ने का कोई कंट्रोल नहीं बचा। तीनों हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हुए, वजह से विमान के जो मेन कंट्रोलर्स हैं उन्होंने लगभग 7 सेकंड तक काम करना बंद कर दिया। एयरबस की इनिशियल फाइंडिंग्स बताती है कि जब विमान का नोज यानी आगे का हिस्सा खतरनाक तरीके से ऊपर उठ रहा था तो उसे रोकने के लिए तत्काल एक्शन की जरूरत थी, जबकि ऑटो पायलट पहले ही डिस्कनेक्ट हो चुका था। रिपोर्ट के मुताबिक को पायलट की ओर से नोज डाउन का इनपुट देना शुरू किया गया ताकि प्लेन के आगे के हिस्से को नीचे किया जा सके, लेकिन बड़ी समस्या यह थी कि फ्लाइट कंट्रोल सीधे तौर पर रिस्पॉन्ड कर नहीं रहे थे, सिस्टम काम कर नहीं रहा था, इसे पायलट सिर्फ कोशिश कर रहे थे।

और विमान अनियंत्रित गति से आगे बढ़ रहा था। क्रू और यात्रियों की किस्मत ही थी कि 9:32 और 51 सेकंड पर तीनों हाइड्रोलिक सिस्टम ने अपने आप फिर से काम करना शुरू कर दिया। सिस्टम रिस्पॉन्ड करने लगा, जिससे पायलट्स को प्लेन का कंट्रोल वापस मिल गया और वो दिल्ली में सुरक्षित लैंडिंग कर पाए। शुरुआती जांच में तकनीकी खराबी सामने आने के बाद विमान निर्माता कंपनी एयरबस ने एयर इंडिया को तुरंत और बेहद सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। एयरबस ने एयर इंडिया को इस घटना में शामिल एयरक्राफ्ट पर कई परीक्षण और निरीक्षण करने के लिए कहा है, जिसके तहत हाइड्रोलिक सिस्टम पर 4 से 5 कड़े टेस्ट कंडक्ट करना, ऑटोमेटिक फ्लाइट सिस्टम की पूरी तरह से जांच करना, विमान की स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी की जांच करना। इसके साथ ही पिछले एक महीने के दौरान हाइड्रोलिक सिस्टम पर किए गए मेंटेनेंस एक्टिविटीज की पूरी रिपोर्ट साझा करने के लिए कहा गया है। एयरबस ने अपने कम्युनिकेशन में साफ किया है कि इस असेसमेंट की जटिलता को देखते हुए इसकी फाइनल रिपोर्ट में ज्यादा वक्त लग सकता है। इसके परिणामों के आधार पर आगे और भी एडिशनल इंस्पेक्शंस किए जा सकते हैं। अब इस खुलासे के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या यह सिर्फ एक अकेली तकनीकी खराबी थी या फिर भारत में उड़ने वाले A320neo विमानों के फ्लीट्स में कोई गंभीर डिजाइन या सिस्टम फॉल्ट है। आज तक ने इस गंभीर मामले पर एयरबस और DGCA से कुछ सवाल पूछे हैं। ये जानने की कोशिश की गई है कि क्या इस घटना के बाद भारत में इस्तेमाल हो रहे सभी A320neo विमानों के बेड़े की स्पेशल ऑडिट की सिफारिश की जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम की आधिकारिक जांच एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन द्वारा की जा रही है और फिलहाल उनकी आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। शुरुआती जांच में यह निकल कर आ रहा है कि यह घटना सिर्फ एक रूटीन एयर टर्बुलेंस या सिर्फ पायलट की गलती का मामला नहीं है। यह विमान निर्माता कंपनी एयरबस की रिपोर्ट के आधार पर एक संभावित बड़े विमान हादसे की तरफ इशारा करती है, जहां महज कुछ सेकेंड्स के भीतर विमान का हाइड्रोलिक सिस्टम धड़ाम हो गया। देखिए कुछ पेशेंट्स किस हालत में निकले थे। यदि सिस्टम अपने आप रिकवर ना होता तो परिणाम बहुत भयानक हो सकते थे। आजादी की 80वीं वर्षगांठ से पहले आपको एक दिलचस्प खबर दिखाएंगे और बताएंगे कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी भारत को लेकर ग्लोबल मंच पर क्या सोच चल रही है। क्या दुनिया भारत के बढ़ते कदमों और ताकत को पसंद कर रही है या उसकी सोच भारत के लिए पॉजिटिव है। प्यू रिसर्च सेंटर जिसकी ताजा सर्वे रिपोर्ट ने दुनिया के 36 देशों की लप्स टटोली, इसके आंकड़े चौंकाने वाले भी हैं और भारत की ग्लोबल कूटनीति के नए रंग दिखाने वाले भी हैं। सबसे पहले बात ग्लोबल तस्वीर के 36 देशों के सर्वे में एक मीडियन आंकड़े के मुताबिक 45% लोगों की राय भारत के प्रति फेवरेबल, यानी ये लोग भारत को पसंद करते हैं, जबकि 41% लोग अनफेवरेबल नजर आए। लेकिन असली खेल पड़ोसी देशों में है, जहां आंकड़े एकदम उलटफेर दिखाई देते हैं। पड़ोसियों की बात करें तो श्रीलंका में भारत के प्रति दीवानगी गजब की है। लगभग 79% लोग भारत को पसंद करते हैं। इसके अलावा केन्या, ब्रिटेन में भी करीब 70% यानी 10 में 7 लोग भारत को पॉजिटिव नजर से देखते हैं। जर्मनी, इजराइल, इटली, स्वीडन, जापान, थाईलैंड में भी बहुमत भारत के पक्ष में ही खड़ा है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। वहां सिर्फ 7% लोग भारत के पक्ष में है और 91% लोग भारत को बिल्कुल पसंद नहीं करते। इसके अलावा तुर्की में सिर्फ 15% और वेस्ट बैंक में मात्र 18% लोग भारत को अच्छा मानते हैं। बांग्लादेश में भी भारत को लेकर पिछले कुछ सालों में फेवरेबल रेटिंग 15 अंकों की गिरावट के साथ 50% से नीचे आ गई है, जबकि श्रीलंका में यह आंकड़ा 2024 के बाद से 14 अंकों की जोरदार बढ़त के साथ ऊपर गया है। अमेरिका की बात करें तो यहां तस्वीर थोड़ी मिली जुली है। आज अमेरिका में 45% लोग भारत को फेवर करते हैं, जबकि 50% अनफेवरेबल है। साल 2008 के बाद से ये आंकड़े सबसे निचले स्तर के करीब है, क्योंकि 2023 में यह आंकड़ा 51% हुआ और तब से इसमें लगातार हल्की सी गिरावट ही आ रही है। अमेरिका के भीतर भी राजनीतिक और एक जेनरेशन गैप साफ दिखता है। वहां 50% डेमोक्रेट भारत को लेकर सकारात्मक सोच रखते हैं, जबकि 42% रिपब्लिकन ही भारत को लेकर अच्छी राय रखते हैं। उम्र की बात करें तो अमेरिका में 65 साल से ज्यादा उम्र के 50% बुजुर्ग भारत को पसंद करते हैं, जबकि 18 से 29 साल के युवाओं में यह आंकड़ा 42% है। अमेरिका के 54% लोगों का मानना है कि पिछले कुछ सालों में भारत का ग्लोबल इन्फ्लुएंस जो है वैसा ही बना हुआ है, जबकि 30% मानते हैं कि भारत और मजबूत हुआ है। सिर्फ 13% लोगों को लगता है कि दुनिया में भारत का प्रभाव कमजोर हुआ है। जर्मनी, फ्रांस जैसे यूरोपीय देशों में भारत की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है। तो आइए आपको दिखाते हैं, आइडियोलॉजी की बात करें तो ये भी बड़े दिलचस्प ट्रेंड ही दिखाती है। अमेरिका और कैनेडा में
लेफ्ट विचारधारा वाले लोग भारत को ज्यादा पसंद करते हैं। जैसे अमेरिका में 54% लिबरल भारत के पक्ष में है, जबकि कंजर्वेटिव जो है वो 40% है। वहीं इसराइल में इसके बिल्कुल उलट स्थिति है, वहां 68% राइट विंगर्स भारत को पसंद करते हैं, जबकि लेफ्ट विचारधारा वाले सिर्फ 40% लोग ही भारत को लेकर अच्छी राय रखते हैं। अब प्यू रिसर्च सेंटर का यह सर्वे जाहिर करता है कि दुनिया के एक बड़े हिस्से में भारत का दबदबा और सम्मान लगातार बढ़ रहा है। प्यू रिसर्च सेंटर के सर्वे में कई और दिलचस्प बातें भी सामने आई हैं। दुनिया की महाशक्तियों को लेकर भारत और पाकिस्तान के लोगों की सोच में जमीन आसमान का अंतर दिखता है। प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट बताती है कि भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जहां लोग चाइना के मुकाबले अमेरिका को ज्यादा सकारात्मक नजरिए से देखते हैं। भारत में 45% लोग अमेरिका को पसंद करते हैं। इसके उलट पाकिस्तान में तस्वीर बिल्कुल अलग है। सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान के सिर्फ 15% लोगों की ही अमेरिका को लेकर अच्छी राय है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि 36 देशों के सर्वे में अमेरिका और चाइना की लोकप्रियता का सबसे बड़ा अंतर पाकिस्तान में ही देखने को मिलता है। भारत में चाइना को लेकर सिर्फ 23% लोग ही सकारात्मक राय रखते हैं और देश के अधिकतर लोग जो है वो चाइना को एक बड़े खतरे के तौर पर देखते हैं। वहीं पाकिस्तान के 75% लोग चाइना को अपना सबसे बड़ा सहयोगी मानते हैं। 90% लोग चाइना को ही पसंद करते हैं। हालांकि भारत के अंदर भी दिलचस्प आंकड़े सामने आए हैं। प्यू रिसर्च सेंटर की इस रिपोर्ट के ही मुताबिक तुलनात्मक रूप से भारतीय जो मुस्लिम्स हैं वो चाइना और राष्ट्रपति शी जिनपिंग को लेकर सकारात्मक रुख थोड़ा ज्यादा है। हालांकि हिंदू और मुस्लिम दोनों का नजरिया प्यू रिपोर्ट के मुताबिक शी जिनपिंग के प्रति नकारात्मक ही है। दूसरी ओर रशिया के मामले में भारत का पलड़ा भारी है। भारत के करीब 36% लोग रशिया को अपना सबसे बड़ा सहयोगी मानते हैं और 58% लोग रशिया तथा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रति अच्छी राय रखते हैं, जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा सकारात्मक राय में से एक है। आजादी के पूरे 79 साल बीत चुके हैं, पीढ़ी बदल गई, दौर बदल गया, लेकिन क्या भारत और पाकिस्तान के बीच का अविश्वास कम हुआ है? प्यू रिसर्च सेंटर की एक नई रिपोर्ट ने इस सवाल का जवाब दिया है और जो जवाब दिया है वो चौंकाने वाला है, आंखें खोलने वाला भी है। सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक भारत के 54% लोग पाकिस्तान को देश का सबसे बड़ा खतरा मानते हैं, जबकि 21% लोग चाइना को खतरे के रूप में देखते हैं। वहीं पाकिस्तान में 43% लोग भारत को सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। इसके बाद 24% लोग इसराइल और अमेरिका को पाकिस्तान के लिए खतरा मानते हैं। और अब अगली खबर आपको अंजना 2.0 बताएंगी, कैसे गोरखपुर में एक नाबालिग लड़के ने पिता से 1,00,000 रुपए लेने के लिए अपने अपहरण की कहानी रची। वो अंजना 2.0 है, AI वर्जन है, तो जरा वो भी देखें कि AI के कैसे कैसे खतरे सामने आ रहे हैं। AI की खबर है तो जरा उन्हीं से सुनते हैं, क्योंकि इसके लिए AI से उस बच्चे ने अपनी तस्वीर बनाई, पिता को भेज दी। ये पैसे वो ऑनलाइन गेम में लगाना चाहता था, कहा कि किडनैप हो गया हूं और पैसा ले रहा था अपने पिता से। बताइए अंजना 2.0। जी अंजना, ये खबर हर माता पिता को अलर्ट करने वाली खबर है। AI के इस युग में ऑनलाइन गेम की लत कैसे किसी बच्चे को अपराध की ओर धकेल सकती है, इस पर यह खबर सावधान करती है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सिकरीगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक ऐसे केस का पर्दाफाश किया है जिसमें बेटे ने खुद के अपहरण का नाटक रचा। पिता के मोबाइल पर फेक किडनैपिंग की तस्वीरें भेजी गई। ये तस्वीरें AI से जनरेट की गई। मिली जानकारी के मुताबिक AI से अपहरण की ये फेक तस्वीरें दिल्ली में रहने वाली आरोपी बेटे की कथित गर्लफ्रेंड ने तैयार की। AI से तैयार फेक किडनैपिंग की तस्वीरों के साथ बेटे के जान की सलामती के लिए पिता के मोबाइल पर कथित तौर पर किडनैप हुए बेटे के मोबाइल से 1,00,000 की फिरौती मांगी गई। सामने आए व्हाट्सएप चैट में साफ दिख रहा है कि कैसे अपने अपहरण का झूठा नाटक खेल रहा बच्चा अपने पिता को फिरौती के लिए धमका रहा है। एक प्रोफेशनल किडनैपर की तरह व्हाट्सएप चैट में कहा जा रहा है कि इसी नंबर पर ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करो। लेकिन पीड़ित परिवार ने अपने बच्चे के घर न लौटने की सूचना गोरखपुर पुलिस को दी। पुलिस ने जब CDR और CCTV की मदद से कथित तौर पर अगवा बच्चे को तलाशना शुरू किया तो उस तक पहुंचने में पुलिस को महज 2 घंटे लगे। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और कभी कभी अनजान लोगों से भी मिलना चाहिए, इनमें कुछ अपनों से बेहतर ही निकल जाते हैं। नमस्कार।

0: आज हमारा देश स्वतंत्रता का 80वां उत्सव मना रहा है। 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने से पहले लोकतांत्रिक तरीके से जन अल्फा ने अपनी आवाज बुलंद कर दी। जन अल्फा, जिनके हाथों की तनी मुट्ठी नारे लोकतंत्र की मजबूती का संदेश देते हैं, सरकारी व्यवस्था को इस बात का एहसास कराते हैं कि उनकी आवाज अनसुनी आप नहीं कर सकते।
1: 80वें स्वतंत्रता दिवस से पहले गूंजते नारे लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। ২০২৬ में आजादी का जश्न मनाते भारत के बच्चे हक मांगने से नहीं डरते हैं।
2: क्या हो गया टीचर सर? आज मैंने हम लोग से
3: टीचर है कोई यहाँ पे? तो पहला काम करो, सुनो तुरंत साइड में आओ, अंदर चलो, बात करते हैं, ट्रैफिक खोलो, ठीक है? तुरंत मेरे साथ आओ, चलो।
1: 15 अगस्त 2026 ऐतिहासिक है, जहां बच्चे अधिकारियों की आंख से आंख मिलाकर अधिकार मांगते हैं।
4: 4 साल हो गई सीनियर स्कूल बने हुए, मात्र 5 टीचर है
5: जो भी थर्ड ग्रेड के।
4: सुनवाई नहीं की गई, 4 साल हो गए खाते में। कलेक्टर को मैंने खुद अपने लिखित में कागज दिया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।
6: सही बात,
4: अगर आपके बच जाते तभी आप यही सुविधा रखते क्या?
1: एक तरफ लगता है कि आजादी के 80 साल बाद भी स्कूल व्यवस्था राज्यों में ढुलमुल है, दूसरी तरफ अच्छा लगता है कि लोकतांत्रिक रूप से विरोध करना बच्चे जानते हैं।
7: हमारे खाने के लिए थाने में सुड़ी निकलती है, मेढक निकलता है, छिपकली निकलती है, प्रिंसिपल पास लेकर जाओ। इनका ये होता है कि इस मौसम में निकलता है, मैं क्या कर सकता हूँ। दूसरी बात, तुमने खुद डाला होगा और कहे भी दें तो कहते दूसरा रखवा लो। ऐसा क्या हम लोग मतलब जानवर से बेबत्तर है ये करते हैं हमारे लिए?
1: बच्चों के नारे इस बात का एहसास कराते हैं कि आजादी का असली मतलब अपनी आवाज को बुलंद करना है।
8: हम हमारा अधिकार मांगते
4: हैं।
1: स्वतंत्रता का 80वां महोत्सव खास है क्योंकि अब की जेन जी और जेन अल्फा की बुलंद आवाज है।
9: कल जो आपने प्रदर्शन किया था उसमें कितने रुपए किराया लिया जा रहा था पहले आपसे? और आज कितने रुपए किराया लिया जा रहा है? आपसे भी 10 रुपए। सभी का किराया मान के चलने तो कम हुआ सभी से, ठीक है।
1: लाल किले पर लहराता तिरंगा, वो पल जब देश हमेशा गर्व से भर जाता है, याद करता है स्वतंत्रता की सेनानियों को। भारत और भारतीयता के विश्वास से उत्प्रोत हर नागरिक के लिए आजादी का दिन बहुत विशेष महत्व रखता है, लेकिन इस बार ये उत्सव और भी विशेष है, जहां भारत के भविष्य की बुलंद होती आवाजें, लोकतांत्रिक रूप से रखी जाती मांगे, अड़ने की जगह बिना डरे हक के लिए लड़ने वाली आदत इस भरोसे को मजबूत करती है कि भारत का बच्चा बच्चा अपने अधिकार और कर्तव्य दोनों को समझ रहा है। आज इसीलिए एक एक करके हम आपको ऐसी तस्वीरों से खबरदार करेंगे। अधिकार और कर्तव्य को समझते भारत के जेन अल्फा की पहली गवाही लखनऊ से आई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मोहान रोड पर जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय है। प्रदेश के समाज कल्याण विभाग के अधीन आने वाले इस स्कूल में छात्र संभव है कि देश में जंतर मंतर आंदोलन से शुरू हुए प्रदर्शन के बाद अपना हक मांगने वाली लकीर पर चलते हुए आगे बढ़े। जहां हॉस्टल में खराब खाना, खाने में बार बार कीड़ा निकलना, बीमार होने पर इलाज की व्यवस्था न होना और शिक्षकों की कमी को लेकर छात्रों का दावा है कि स्कूल प्रशासन ने उनकी शिकायत पर कान नहीं दिया तो ये सड़क जाम करने निकल पड़े। लखनऊ में छात्रों की तरफ से सड़क जाम की खबर आते ही पहले जहां छात्रों को हटाने के लिए पुलिस दिखती रही थी, वहां अब की बार शायद पहली बार ऐसा देखा सुना जा रहा है जब कोई मंत्री तुरंत समस्या सुनने पहुंच गया जैसे असीम अरुण उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री हैं, प्रदर्शन करते छात्रों के बीच पहुंचकर सीधे कहते हैं चलो तुम्हारी बातें सुनते हैं, शिकायत दूर करते हैं,
3: अंदर चलो बात करते हैं, ट्रैफिक खोलो, ठीक है, तुरंत मेरे साथ आओ।
1: इसके बाद तुरंत मंत्री असीम अरुण के साथ छात्र भीतर आते हैं। यही आज हम आपको दिखा रहे हैं कि छात्र संविधान से मिले अधिकार और कर्तव्य दोनों को समझ रहे हैं, जो अपने अधिकार के लिए प्रदर्शन करने का अधिकार भी जानते हैं, और मंत्री की तरफ से समस्या सुने जाने की बात आते ही तुरंत रास्ता भी छोड़ देते हैं और फिर समाधान की बात आती है।
3: जो कमियां हैं उनको दूर काफी हद तक किया हम लोग ने, लेकिन मैं स्वयं अभी संतुष्ट नहीं हूँ, हम लोग को कमियों को और दूर करना है। पहली चीज जितने स्टाफ सारे हमारे क्वार्टर बन गए, हमारे ट्रांजिट हॉस्पिटल बन गए, टीचर्स 24 घंटे यहाँ पे रहेंगे, कोई हाँ फार्मासिस्ट भी और भी नॉन टीचिंग स्टाफ जिसके लिए आवास अवेलेबल है, ये आवासीय विद्यालय है, केवल बच्चों का नहीं स्टाफ का, और जिसको रहने में समस्या आ रही है वो अपना इस्तीफा देते घर।
1: लोकतंत्र की यही ताकत है जो इस स्वतंत्रता दिवस को विशेष बनाती है, जहाँ स्कूली शिक्षा का बुनियादी ढांचा लचर है उसे मजबूत करने की मांग खुद बच्चे कर रहे हैं। अधिकार और कर्तव्य को समझते भारत के जेन अल्फा की दूसरी गवाही भी उत्तर प्रदेश से आई है, इसके लिए अब कन्नौज चलते हैं।
7: कई दिनों से समस्याएं थी जिनको लेकर हम झेल रहे थे, सह रहे थे, लेकिन अब कुछ ज्यादा ही ओवर हो गया था
5: जी।
7: तो उसके लिए हमने ये किया क्योंकि परेशान हो चुके थे, और एक नहीं क्लास 6 के जूनियर से लेकर क्लास 12 के बच्चे सभी परेशान हैं।
1: कन्नौज के जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले ये वो जैन अल्फा हैं जो अपनी समस्याओं के निदान के लिए सड़क पर नहीं उतरे, बल्कि खुद को ही एक कमरे में बंद कर लिया। इनका वीडियो वायरल हुआ, मीडिया पहुंचा, इन छात्रों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए मुंह ढक लिया, ये इनका अधिकार है। लेकिन अपने दूसरे अधिकारों के लिए इन्होंने खुद को क्लास में लॉक करने का ऐसा तरीका लगाया कि प्रशासन को जागना पड़ा। पहले शिकायत सुनिए, फिर समाधान देने पहुंचे जिलाधिकारी को।
7: मैं इसमें खाने की सही व्यवस्था नहीं होती, हाउस में लाते हैं, खाने की व्यवस्था इसलिए नहीं क्योंकि 550 बच्चे हैं वहाँ पर, ना तो फैन लगा है ना कोई फैन, वैसे क्या नाम गैस फैन नहीं लगे हैं, तो सफोकेशन होती है, खाते हैं वहाँ पर, बच्चे भी नहीं बैठ पाते, 550 बच्चे हैं, इतनी जगह नहीं है, तो हम लोग हाउस में ले आते हैं तो ये कहते हैं कि तुम लेटरिन में खाते हो, उसी का सूंघते हो, उसी में खाते हो, उसी में बैठ कर खाते हो, गंदे गंदे सब खाना, ऐसा कच्चे चावल रखे हैं हम दिखाते हैं, चावल कच्चे बिल्कुल जो गले से नीचे ना होते। हम लोग करीब 100 से 100 बच्चे हैं।
3: कितनी देर से बंद है
7: सर? हम कल
3: 4 बजे से,
7: कल शाम से हम लोगों ने खाना नहीं खाया।
3: स्कूल प्रशासन की सूचना दी थी इस बात की आप लोग बंद है अंदर?
7: सूचना सबको
6: दी, आए मतलब आए विद्यालय,
7: हमारी डिमांड है कि डीएम सर आए और हमसे बात करें आकर।
10: इस विद्यालय में बच्चों को कुछ अपनी कठिनाइयां थीं, जिसमें हम लोग आज गए और उनके बीच वार्ता की, जहां उन वो रह रहे थे उनके हॉस्टल में उन्हीं के बीच में हम लोग बैठे। सभी बच्चे अनुशासित हैं, अच्छे बच्चे हैं, और मेरिट में ये लोग सेलेक्ट होकर के यहाँ आए हैं। विधिवत रूप से उनको सुना गया है, जो उनकी कठिनाइयां थी उनके बारे में हम लोग दूर करेंगे उनको, और सरकार हर तरीके से विद्यार्थियों के साथ है और मेधावी विद्यार्थियों के साथ भी है, किसी प्रकार की कोई कठिनाई इन लोगों को नहीं होने देंगे।
0: राजस्थान में भर्तियों का भ्रष्टाचार खुला, जहां योग्य किनारे हो जाएं, अयोग्य जनता की सेहत से खिलवाड़ करने लगे, फर्जी डिग्री लगाकर डॉक्टर बनकर मरीजों का इलाज करने लगे, 3 डॉक्टर गिरफ्तार किए गए, 20 से 30 लाख रुपए में फर्जी डिग्री इन्होंने बनवाई थी। राजस्थान SOG इस पूरे मामले की तह तक पहुंचने में जुटी है।

0: चेहरा छुपा रहे ये तीनों राजस्थान के वो फर्जी डॉक्टर हैं जो कई वर्षों से मरीजों की जान से खिलवाड़ करते रहे, दवाइयां उनके लिए लिखते रहे। आशीष शर्मा फर्जी डिग्री वाला डॉक्टर, करौली के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ये मरीज देखता था।
1: आदेश दिनांक 18/12/2023 के तहत हमारे पास एक लिस्ट आई थी। उस लिस्ट में डॉक्टर आशीष का सीरियल नंबर 11 पर है। उसकी रैंक एग्जाम में FMG इंट्रेंसिप रैंक 245 थी।
0: नरेश रौलनिया फर्जी डिग्री वाला डॉक्टर, उदयपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज से इंटर्नशिप करके कोटपुतली के पल्स अस्पताल में डॉक्टर बन गया। जयपुर के मुरलीपुरा में ये श्रीनारायण अस्पताल चला रहा डॉक्टर राजेंद्र यादव है, जो चीन से 2006 से 2012 के बीच MBBS करने का सर्टिफिकेट लेकर आया। साल 2012 से लेकर 8 बार इसने राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड की FMG स्क्रीनिंग परीक्षा देने की कोशिश की, पर एक बार भी पास नहीं हो पाया। फिर इसने खुद ही नकली सर्टिफिकेट छपवा कर 29 लाख में राजस्थान मेडिकल काउंसिल से मरीज देखने का लाइसेंस हासिल कर लिया। SOG की गिरफ्त में आए राजेंद्र यादव के अस्पताल में जब आज तक संवाददाता खबरदार करने पहुंचते हैं, तो यहां अस्पताल को और आगे बढ़ाने का काम चलता मिलता है। डॉक्टर की गिरफ्तारी के बाद भी अस्पताल खुला हुआ है। फर्जी डॉक्टर और उसकी डेंटिस्ट पत्नी 6 साल से यहां मरीज देख रहे थे।
2: तो कब उनको अरेस्ट की पुलिस ने?
3: 4 रोज पहले।
2: 4 रोज पहले? आपको पता था आपको कि उनके पास नकली डिग्री है?
3: नहीं,
2: किसी को पता नहीं था?
3: नहीं।
2: ये अस्पताल उन्हीं का है?
3: हाँ।
0: डॉक्टर की फर्जी डिग्री वाले आशीष शर्मा ने कजाकिस्तान से साल 2021 में MBBS करने का सर्टिफिकेट बनवाया था। भारत में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड की FMG स्क्रीनिंग परीक्षा 3 बार देने के बावजूद वो पास नहीं हो सका। इसके बाद आरोपी ने शुभम गुर्जर के जरिए 25 लाख रुपए देकर FMG परीक्षा का फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया। शुभम गुर्जर भी पहले 25 लाख में फर्जी सर्टिफिकेट बनवाता था। हैरत की बात है कि दोनों ही राजस्थान सरकार के करौली मेडिकल कॉलेज में मरीज देख रहे थे। दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं।
4: आदमी जितने पैसे करोड़ों रुपए खर्च करके वो बाहर अपनी MBBS करता था, और यहाँ पे जो किंग पिन्स हम लोगों ने जिनको अरेस्ट किया है, उनके इंटरोगेशन से 25 से लेके 35 लाख 40 लाख तक ये अमाउंट लेते थे सर्टिफिकेट अवेलेबल कराने का।
0: नरेश तो इनसे भी आगे निकला। तजाकिस्तान से फर्जी डॉक्टरी की डिग्री हासिल कर पल्स हॉस्पिटल कोटपुतली के इमरजेंसी वार्ड में काम कर रहा था। वो बिना FMG स्क्रीनिंग परीक्षा पास किए और बिना राजस्थान मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रेशन के मरीजों का इलाज करता रहा।
4: फेक FMG एग्जाम के जो सर्टिफिकेट वाला जो स्कैंडल हम लोगों ने खोला है, उसमें करीब 30 के करीब हम डॉक्टर्स और अन एसोसिएट्स को इसमें अरेस्ट कर चुके हैं, और हमारे पास में करीब 80-90 और अधिक इसके अलावा भी कुछ नाम हमारे पास में चल रहे हैं जो इस सारे सिस्टम में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहे हैं।
0: राजस्थान SOG के मुताबिक इस मामले में अब तक 100 से अधिक फर्जी डॉक्टर की पहचान की जा चुकी है, जिन्होंने कथित तौर पर फर्जी स्क्रीनिंग प्रमाण पत्र तैयार करवाया है। इन्हें पकड़ना आसान नहीं हो रहा था क्योंकि इन्होंने सारे फर्जी सर्टिफिकेट ऑफलाइन बनवाए हैं। इस मामले में राजस्थान मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार डॉक्टर राजेश शर्मा समेत 4 कर्मचारी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं।
5: राजस्थान के अस्पतालों में मरीज देखने वाले फर्जी डॉक्टरों के पकड़े जाने का सिलसिला जारी है। अब तक 35 से ज्यादा फर्जी डॉक्टर पकड़े जा चुके हैं, मगर अभी भी 80 से ज्यादा फर्जी डॉक्टर अस्पतालों में मरीज देख रहे हैं और मरीजों के जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कैमरा मनीष के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक।
6: उत्तराखंड में हुए एक और टनल एक्सीडेंट की यह खबर है। चमोली में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की टनल में कल एक हादसा हुआ। 7 मजदूर इस हादसे में अब तक मारे गए, 3 लापता हैं, 12 मजदूर घायल हैं। लापता मजदूरों की तलाश हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों उत्तराखंड में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए जो टनल्स बनाई जा रही हैं उनमें हादसे हो रहे हैं, और यह हादसे आखिर कब तक होते रहेंगे?
7: बार बार उत्तराखंड की सुरंगों में
3: क्यों हो रहे हैं इतने बड़े हादसे? विकास की राह में विनाश का इंतजाम कौन कर रहा है? क्या उत्तराखंड की नदियों में जरूरत से ज्यादा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं? उत्तराखंड के कच्चे पहाड़ों में बड़ी बड़ी सुरंगें खोदकर विनाश कौन ला रहा है? उत्तराखंड में एक और मौत की सुरंग बनी है चमोली जिले के पीपल कोटी की टीएचडीसी की सुरंग। तस्वीरें बता रही हैं कि सुरंग के अंदर इस वक्त क्या हालात हैं। पूरी स्थिति समझने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि यह हादसा कहां और कैसे हुआ। उत्तराखंड के चमोली जिले के पीपल कोटी में टीएचडीसी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहा है। यह प्रोजेक्ट अलकनंदा नदी पर बन रहा है जिसकी क्षमता होगी 444 मेगावाट। बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट का 80% काम पूरा हो चुका है। इस प्रोजेक्ट के तहत एक 65 मीटर ऊंचा डैम बन रहा है जिसमें दो सुरंगें होंगी। पहली है हेड रेस टनल यानी एचआरटी जिसकी लंबाई है 13.4 किलोमीटर और दूसरी है टेल रेस टनल टीआरटी जिसकी लंबाई है 3.04 किलोमीटर। गुरुवार को जो हादसा हुआ वो इसी टीआरटी सुरंग में हुआ है। अब ये समझिए कि यह हादसा कैसे हुआ। इस इलाके में जमकर बारिश हो रही है, मॉनसून का सीजन है और आसमान से आफत बरस रही है। कई जगहों पर भूस्खलन और बादल फटने की घटनाएं भी हो रही हैं। इन हालात में भी इस टनल में काम चालू था। बताया जा रहा है कि गुरुवार को अचानक से सुरंग में 150 मीटर दूर तेज आवाज के साथ भारी भूस्खलन हुआ। मलबा, पत्थर और पानी तेज गति से टनल के अंदर घुस गए। उस वक्त वहां पर कुछ मजदूर काम कर रहे थे। इसी हादसे में कुछ मजदूर मलबे में दब गए और बाकी फंस गए। टनल में कई जगह से मलबा आने से ऑक्सीजन लेवल बेहद कम हो गया था। बताया जा रहा है कि टनल के अंदर मलबा दो दिन से आ रहा था लेकिन इसके बाद भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ने इस पर ध्यान नहीं दिया और काम चालू रखा। इसके बाद तो टनल में लगातार पानी भरता गया। हालांकि हादसे की सूचना मिलते ही राहत और बचाव दल मौके पर पहुंच गया था। ये तस्वीरें बता रही हैं कि अंदर क्या हालात थे। बताया गया कि सुरंग के अंदर कुल 22 मजदूर फंसे हुए थे। 7 मजदूरों की मौत हो गई है, 3 अभी भी फंसे हैं। 12 मजदूरों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।
7: गुरुवार शाम को 6:30 बजे के आसपास पीपल कोटी विष्णु घाट परियोजना की जो टीएचडीसी की ये टनल है, टीआरटी टनल, इसके अंदर 1500-1600 मीटर के करीब में एक लूज जो है टनल के अंदर गिरा और उसके बाद एक बहुत जबरदस्त, यहाँ पे बताया जा रहा, हवा का झोंका और पानी का बहुत बड़ा रिसाव हुआ और उसने कुछ लोगों को तो अंदर की ओर धकेला और कुछ लोगों को बाहर की ओर धकेला। ऐसे में कुछ तो ठीक ठाक निकल चुके हैं लेकिन अभी तक 3 लोग लापता है। पता चला इस पूरे हादसे में 22 लोग यहाँ पे हताहत हुए थे, जो कुछ घायल है, कुछ 7 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। वहीं अभी राज्य आपदा प्रबंधन सचिव जो है विनोद कुमार सुमन, वो यहाँ पे निरीक्षण करके गए। उनका कहना है कि डीवाटरिंग करने का काम किया जा रहा है और जल्द से जल्द इस पानी को बाहर निकाला जाएगा ताकि जो 3 लोग हैं अंदर उनका रेस्क्यू हो नहीं पा रहा है, पानी भर जा रहा है। ऐसे में लगातार यहाँ पे आईटीबीपी की फोर्स है, वो लगातार आ रही है, जा रही है। जो टीमें हैं वो लगातार लगी हैं, कभी मशीनें भेजी जा रही हैं, कभी ड्रम भेजे जा रहे हैं, अलग अलग तरीके से यहाँ पे इस समय जो रेस्क्यू और बचाव के काम चल रहे हैं वो करवाए जा रहे हैं।
3: लेकिन समस्या ये है कि टनल के अंदर लगातार पानी भरता जा रहा है, इसी वजह से रेस्क्यू टीमों को दिक्कतें आ रही हैं। जैसे ही कल रात ये रेस्क्यू टीमें पहुंची तो टनल में बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ था। तुरंत इन्होंने टेम्पररी नाव बना दी, नीचे बड़े बड़े ड्रम बांधे और एक अस्थायी नाव का निर्माण किया और उसके बाद देखिए कैसे इन जुगाड़ की नावों से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया।
8: कल तक काफी लोगों को निकाला हम लोगों ने, जिसमें से 12 लोग को सुरक्षित बचाया गया है, 7 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है, 3 लोग अभी लापता चल रहे हैं जिनको खोजने का काम चल रहा है। पानी का लेवल ज़्यादा होने से थोड़ी सी समस्या आ रही है हम लोगों को। डीवाटरिंग पंप अभी 5 काम कर रहे हैं तो डीवाटरिंग पंप की संख्या को बढ़ाने के लिए कहा गया है टीएचडीसी से, वो पंप मंगा रहे हैं एनटीपीसी के माध्यम से। और बाकी हमने कहा जहाँ भी पंप जितने भी अवेलेबल हैं पंपों की संख्या बढ़ाइए, क्योंकि अभी जिस गति से पानी हम निकाल रहे हैं लगभग उसी गति से पानी ऊपर से आ रहा है, इसके कारण जो है थोड़ी समस्या हो रही है। अभी मैनुअल तरीके से हम राहत बचाव कर्मी दल जाके ढूंढ कर रहे हैं, खोजबीन कर रहे हैं लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल पाई है अभी तक।
3: अभी सबसे पहली प्राथमिकता 3 लापता लोगों को खोजने की है, लेकिन टनल के अंदर बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि करीब 1 किलोमीटर के इलाके में पानी भरा है और कहीं कहीं तो पानी 5 फीट तक गहरा है। पानी में बहुत सी गाद और मलबा है, कीचड़ है, इसी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में समस्याएं हैं। पहली कोशिश यही है कि टनल के अंदर से पानी को किसी तरीके से बाहर निकाला जाए।
9: कठिनाई जैसे मैं बता रहा हूं आपको कि पानी का एरिया जो है बहुत लंबा है, लगभग 1 किलोमीटर एरिया है जो पानी से भरा हुआ है और उसमें हाइट जो है 3-4 फीट तक जा रही है, कहीं कहीं पर 5 फीट भी है। तो उस पर्टिकुलर एरिया में 1 किलोमीटर लंबा प्लस 3-4 फीट गहरा पानी है, और वो केवल पानी नहीं है, वो स्लजी वाटर है। तो उसमें जो सर्च करने के लिए दिक्कत आ रही है, बट हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा ट्रूप्स को यूज़ करके और मैक्सिमम एरिया जो है मैनुअली सर्च करके क्लियर कर रहे हैं।
10: क्या लग रहा है कब तक ये हो पाएगा या फिर पानी कैसे भर रहा है इतना ज़्यादा पानी?
9: जी देखिए, मोस्ट फेवरेबल कंडीशन यही होगी जब पानी कम होगा। तो पानी कम करने के लिए जैसा मैंने बताया, संस्थान ने जो मोटर्स लगाई हैं वो सही कार्रवाई करें। बट हो क्या रहा है कि जो इसका दूसरा सोर्स है जहाँ से ये कोलैप्स हुआ है, वहाँ से पानी कंटिन्यूसली आ रहा है, तो जितना हम निकाल रहे हैं उतना ही आ रहा है। तो ये कंडीशन थोड़ा सा हमारे लिए डाइसी हो रही है इस वजह से।
10: कितनी टीम मेंबर एनडीआरएफ यहाँ पर लगी हुई है?
9: देखिए एनडीआरएफ की यहाँ पर 3 टीमें वर्तमान में आ रखी हैं और तीनों टीमें जो है रोटेट होकर अपनी कार्रवाइयां कर रही हैं।
3: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी घटनास्थल पर पहुंचे और टनल के अंदर जाकर रेस्क्यू का काम उन्होंने देखा। घायलों से मुलाकात की। अब वो कह रहे हैं कि राज्य की सुरंगों की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि सुरंगों में लगातार हादसों को कैसे टाला जाए।
11: एक और निवेदन, टनल दुर्घटनाएं हमेशा हो रही, सिलक्यारा हुई, ये हुई, इससे पहले टनल की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार क्या संबंधित एजेंसी को कोई निर्देश देगी?
12: बिल्कुल निर्देश देंगे, और हमारे लिए जो भी कार्मिक जो भी काम करने वाले हैं उनकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। बिना सुरक्षा के, जब तक पूरी सुरक्षा के प्रबंध नहीं हो जाते, तब तक इन कामों को भी आगे नहीं बढ़ाएंगे।
3: गढ़वाल से बीजेपी के सांसद अनिल बलूनी भी पहुंचे, टनल के अंदर गए, पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन देखा। सबसे ज्यादा समस्या यही आ रही है कि टनल में लगातार पानी भर रहा है। बड़े बड़े पंप लगाकर पानी को निकाला तो जा रहा है, लेकिन जितना पानी निकलता है उतना फिर से सुरंग में आ जा रहा है।
13: वाकई बड़ी मुश्किल परिस्थिति में अंदर काम हो रहा है, और आप सब लोग जानते हैं अभी ऑपरेशन जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है, और हमारे NDRF और SDRF के जवान और बाकी जो हमारा स्थानीय प्रशासन है सब मिलकर अंदर, क्योंकि काफ़ी पानी भरा हुआ है और काफ़ी मुश्किल परिस्थितियाँ हैं, उन सब में काम कर रहा है। अभी बताया जाता है कि 3 लोग मिसिंग की जानकारी जो है वो सब है, हम अंदर देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति मिल सके हमें, और सारे लोग बातचीत कर रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं। अभी प्रशासन पूरी ताकत से लगा है, आगे तक जाने की तैयारी में है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में आगे जाके कुछ अच्छी सूचना भी हम लोगों को मिल सके तो अच्छी बात है।
3: इन हालात में सबसे ज्यादा समस्या मौसम को लेकर भी है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, बारिश रुकी नहीं रही। ऐसे में डर ये भी है कि कहीं और ज्यादा भूस्खलन न हो जाए। अभी तो पहली प्राथमिकता उन 3 लापता मजदूरों को खोजने की है।
14: आ जाओ।
3: कमल नयन सिलोड़ी, चमोली, आज तक।
6: छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: جشن آزادی کے رنگ میں رنگا ہندوستان. صبح لال قلعے کی پراچیر سے لگاتار 13ویں بار ترنگا پھہرائیں گے پردھان منتری مودی, دیش کو کریں گے سمبودھت. 15 اگست کی پورو سندھیا پر راشٹرپتی دروپدی مرمو جی کا راشٹر کے نام سندیش, بولی یوا آبادی سب سے مولیوان سمپتی, وکست بھارت کے نرمان کے لیے آگے بڑھنے کا آہوان. نہیں تھم رہا پی ایم مودی پر راہل کے بیان پر ہنگامہ, راجناتھ سنگھ نے لوکتنتر کے لیے گمبھیر خطرہ بتایا, ودیش منترالے نے کہا آدر کے ساتھ رکھو بات. چناؤ سے پہلے یو پی میں زبانی یدھ تیز, سی ایم یوگی بولے صرف ستہ کے لیے پہلے کی سرکاریں, اکھلیش بولے یو پی میں اب تک کی سب سے بھرشٹ یوگی سرکار. اور کاکروچ وواد پر چیف جسٹس سوریہ کانت کا بڑا بیان, بولے میری باتوں کا غلط ارادے سے غلط استعمال, یواؤں کو سوریہ کانت نے گمراہ کرنے کی کوشش بتایا. آج ہمارا دیش سوتنترتا کا 80واں اتسو منا رہا ہے. 80واں سوتنترتا دیوس منانے سے پہلے لوک تانترک طریقے سے جن الفا نے اپنی آواز بلند کر دی. جن الفا جن کے ہاتھوں کی تنی مٹھی نعرے لوک تنتر کی مضبوطی کا سندیش دیتے ہیں, سرکاری ویوستھا کو اس بات کا احساس کراتے ہیں کہ ان کی آواز انسنی آپ نہیں کر سکتے.
1: 80ویں سوتنترتا دیوس سے پہلے گونجتے نعرے لوک تنتر کو مضبوط کرتے ہیں. ہزار 26 میں آزادی کا جشن مناتے بھارت کے بچے حق مانگنے سے نہیں ڈرتے ہیں.
2: کیا ہو گیا ٹیچر ہے کوئی یہاں پہ؟ پہلا کام کرو, سنو ترنت سائڈ میں آؤ, اندر چلو, بات کرتے ہیں, ٹریفک کھولو, ٹھیک ہے؟ ترنت میرے ساتھ آؤ, چلو.
1: 15 اگست 2026 ایتہاسک ہے, جہاں بچے ادھیکاریوں کی آنکھ سے آنکھ ملا کر ادھیکار مانگتے ہیں.
3: 4 سال ہو گئی سینئر اسکول بنے ہوئے, ماتر 5 ٹیچر ہے
4: جو بھی تھرڈ گریڈ کی,
3: سنوائی نہیں کی گئی. 4 سال ہو گئے کھاتے میں, کلکٹر کو میں نے خود اپنے لکھت میں کاغذ دیا, ابھی تک کوئی کاروائی نہیں کی گئی.
4: صحیح بات.
1: ایک طرف لگتا ہے کہ آزادی کے 80 سال بعد بھی اسکول ویوستھا راجیوں میں ڈھل مل ہے, دوسری طرف اچھا لگتا ہے کہ لوک تانترک روپ سے ویرودھ کرنا بچے جانتے ہیں.
5: ہمارے کھانے کے لیے تھانے میں سوری نکلتی ہے, میڈک نکلتا ہے, چھپکلی نکلتی ہے, پرنسپل پاس لے کر جاؤ. ان کا یہ ہوتا ہے کہ اس موسم میں نکلتا ہے, میں کیا کر سکتا ہوں. دوسری بات, تم نے خود ڈالا ہوگا اور کہے بھی دیں تو کہتے ہیں دوسرا رکھوا لو. ایسا کہ ہم لوگ مطلب جانور سے بے بدتر ہیں, یہ کرتے ہیں ہمارے لیے.
1: بچوں کے نعرے اس بات کا احساس کراتے ہیں کہ آزادی کا اصلی مطلب اپنی آواز کو بلند کرنا ہے. سوتنترتا کا 80واں مہوتسو خاص ہے کیونکہ اب کی جین زی اور جین الفا کی بلند آواز ہے.
6: کل جو آپ نے پردرشن کیا تھا اس میں کتنے روپے کرایہ لیا جا رہا تھا پہلے آپ سے؟ اور آج کتنے روپے کرایہ لیا جا رہا ہے؟ آپ سے بھی 10 روپے. سبھی کا کرایہ مان کے چلیں تو کم ہوا سبھی سے. ٹھیک ہے.
1: لال قلعے پر لہراتا ترنگا وہ پل جب دیش ہمیشہ گرو سے بھر جاتا ہے, یاد کرتا ہے سوتنترتا کی سینانیوں کو. بھارت اور بھارتیتا کے وشواس سے اتپروت ہر ناگرک کے لیے آزادی کا دن بہت وشیش مہتو رکھتا ہے. لیکن اس بار یہ اتسو اور بھی وشیش ہے, جہاں بھارت کے بھوشیہ کی بلند ہوتی آوازیں, لوک تانترک روپ سے رکھی جاتی مانگے, اڑنے کی جگہ بنا ڈرے حق کے لیے لڑنے والی عادت اس بھروسے کو مضبوط کرتی ہے کہ بھارت کا بچہ بچہ اپنے ادھیکار اور کرتویہ دونوں کو سمجھ رہا ہے. آج اسی لیے एक एक करके हम आपको ऐसी तस्वीरों से खबरदार करेंगे। अधिकार और कर्तव्य को समझते भारत के जैन अल्फा की पहली गवाही लखनऊ से आई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मोहान रोड पर जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय है। प्रदेश के समाज कल्याण विभाग के अधीन आने वाले इस स्कूल में छात्र संभव है कि देश में जंतर मंतर आंदोलन से शुरू हुए प्रदर्शन के बाद अपना हक मांगने वाली लकीर पर चलते हुए आगे बढ़े। जहां हॉस्टल में खराब खाना, खाने में बार बार कीड़ा निकलना, बीमार होने पर इलाज की व्यवस्था न होना और शिक्षकों की कमी को लेकर छात्रों का दावा है कि स्कूल प्रशासन ने उनकी शिकायत पर कान नहीं दिया तो ये सड़क जाम करने निकल पड़े। लखनऊ में छात्रों की तरफ से सड़क जाम की खबर आते ही पहले जहां छात्रों को हटाने के लिए पुलिस दिखती रही थी, वहां अब की बार शायद पहली बार ऐसा देखा सुना जा रहा है जब कोई मंत्री तुरंत समस्या सुनने पहुंच गया। जैसे असीम अरुण उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री हैं, प्रदर्शन करते छात्रों के बीच पहुंचकर सीधे कहते हैं चलो तुम्हारी बातें सुनते हैं, शिकायत दूर करते हैं,
2: अंदर चलो बात करते हैं, ट्रैफिक खोलो, ठीक है तुरंत मेरे साथ आओ।
1: इसके बाद तुरंत मंत्री असीम अरुण के साथ छात्र भीतर आते हैं। यहीं आज हम आपको दिखा रहे हैं कि छात्र संविधान से मिले अधिकार और कर्तव्य दोनों को समझ रहे हैं, जो अपने अधिकार के लिए प्रदर्शन करने का अधिकार भी जानते हैं और मंत्री की तरफ से समस्या सुने जाने की बात आते ही तुरंत रास्ता भी छोड़ देते हैं और फिर समाधान की बात आती है।
2: जो कमियां हैं उनको दूर काफी हद तक किया हम लोग ने, लेकिन मैं स्वयं अभी संतुष्ट नहीं हूँ। हम लोग को कमियों को और दूर करना है। पहली चीज जितने स्टाफ सारे हमारे क्वार्टर बन गए, हमारे ट्रांजिट हॉस्टल बन गए, टीचर्स 24 घंटे यहाँ पे रहेंगे, कोई हाँ फार्मासिस्ट भी और भी नॉन टीचिंग स्टाफ जिसके लिए आवास अवेलेबल है। ये आवासीय विद्यालय है, केवल बच्चों का नहीं स्टाफ का, और जिसको रहने में समस्या आ रही है वो अपना इस्तीफा देते घर।
1: लोकतंत्र की यही ताकत है जो इस स्वतंत्रता दिवस को विशेष बनाती है। जहाँ स्कूली शिक्षा का बुनियादी ढांचा लचर है उसे मजबूत करने की मांग खुद बच्चे कर रहे हैं। अधिकार और कर्तव्य को समझते भारत के जैन अल्फा की दूसरी गवाही भी उत्तर प्रदेश से आई है। इसके लिए अब कन्नौज चलते हैं।
4: कई दिनों से समस्याएं थी जिनको लेकर हम झेल रहे थे, सह रहे थे, लेकिन अब कुछ ज्यादा ही ओवर हो गया था तो उसके लिए हमने ये किया क्योंकि परेशान हो चुके थे। और एक नहीं, क्लास 6 के जूनियर से लेकर क्लास 12 के बच्चे सभी परेशान हैं।
1: कन्नौज के जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले ये वो जैन अल्फा हैं जो अपनी समस्याओं के निदान के लिए सड़क पर नहीं उतरे बल्कि खुद को ही एक कमरे में बंद कर लिया। इनका वीडियो वायरल हुआ, मीडिया पहुंचा। इन छात्रों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए मुंह ढक लिया, ये इनका अधिकार है। लेकिन अपने दूसरे अधिकारों के लिए इन्होंने खुद को क्लास में लॉक करने का ऐसा तरीका लगाया कि प्रशासन को जागना पड़ा। पहले शिकायत सुनिए फिर समाधान देने पहुंचे जिलाधिकारी को।
4: मैं इसमें खाने की सही व्यवस्था नहीं होती, हाउस में लाते हैं। खाने की व्यवस्था इसलिए नहीं क्योंकि 550 बच्चे हैं वहाँ पर, ना तो फैन लगा है ना कोई फैन, वैसे क्या नाम गैस फैन नहीं लगे हैं तो सफोकेशन होती है। खाते हैं वहाँ पर, बच्चे भी नहीं बैठ पाते, 550 बच्चे हैं, इतनी जगह नहीं है। तो हम लोग हाउस में ले आते हैं तो ये कहते हैं कि तुम लेटरिन में खाते हो, उसी का सूंघते हो, उसी में खाते हो, उसी में बैठ कर खाते हो, गंदे गंदे सब खाना। ऐसा कच्चे चावल रखे हैं, हम दिखाते हैं चावल कच्चे बिल्कुल, जो गले से नीचे ना होते। हम लोग करीब 100 से 100 बच्चे हैं।
2: कितनी देर से बंद है
4: सर? हम कल
2: 4 बजे से,
4: कल शाम से हम लोगों ने खाना नहीं खाया।
2: स्कूल प्रशासन की सूचना दी थी इस बात की आप लोग बंद है अंदर?
4: सूचना हमारी डिमांड है कि डीएम सर आए और हमसे बात करें आकर।
7: इस विद्यालय में बच्चों को कुछ अपनी कठिनाइयां थीं जिसमें हम लोग आज गए और उनके बीच वार्ता की। जहां वो रह रहे थे उनके हॉस्टल में, उन्हीं के बीच में हम लोग बैठे। सभी बच्चे अनुशासित हैं, अच्छे बच्चे हैं और मेरिट में ये लोग सेलेक्ट होकर के यहाँ आए हैं। विधिवत रूप से उनको सुना गया है, जो उनकी कठिनाइयां थीं उनके बारे में हम लोग दूर करेंगे उनको, और सरकार हर तरीके से विद्यार्थियों के साथ है और मेधावी विद्यार्थियों के साथ भी है। किसी प्रकार की कोई कठिनाई इन लोगों को नहीं होने देंगे।
0: कहीं नारा लग रहा है कि कलेक्टर साहब का आना होगा, कहीं नारे लगाए जाते हैं, हमारी बातें आपको सुननी होंगी। ये हमारे वो बच्चे हैं जिन्हें नागरिक शास्त्र का पाठ पढ़ाया जाता है, लेकिन ये पहली बार उन पाठों का प्रयोग भी कर रहे हैं। ये हमारे वो बच्चे हैं जिन्होंने आंदोलन के बारे में पढ़ा है, लेकिन पहली बार ये बच्चे खुद आंदोलन कर रहे हैं। अब दो चीजों की जरूरत है, पहले ऐसे हर आंदोलन में बच्चों की मांगें सुनी जाएं, उनकी बातों को पूरा किया जाए, और दूसरी जरूरत ये कि सरकारें देखें कि आखिर क्यों अब भी हमारे बच्चों के स्कूलों की स्थिति खराब है।
1: अधिकार और कर्तव्य को समझते भारत के जेन अल्फा की तीसरी गवाही राजस्थान के अलवर से आई है।
3: 4 साल हो गई, 3 ईयर स्कूल बने हुए, मात्र 5 टीचर है,
8: जो भी थर्ड ग्रेड के
1: अधिकारियों के सामने मर्दानी बनकर अपने हक को बुलंद करती एक छात्रा बोलती, और तभी
3: मजाक बना रखा है स्कूल को, ना इसमें बैठने लायक एक भी कमरा है, कितने
1: ये बच्चे चीख नहीं रहे, बस उन अधिकारियों के कानों में सामने खड़े होकर अपनी आवाज पहुंचा रहे, जो एसी कमरों से अब तक बहुत कम निकलते रहे, जो फाइलों में ऑल इज वेल लिखते रहे, उन्हें अब सुनना भी पड़ रहा है, बदलाव करना भी पड़ रहा है।
9: पुलिस की गाड़ी बात होती है और पुलिस की गाड़ी आ चुकी है और
1: जिस मानसून सत्र में हंगामे की वजह से संसद का कामकाज धुल गया, वहां इस मानसून में राजस्थान के अलवर में होता यह हंगामा कामकाज धुलने का नहीं, कामकाज को सुधारने का। ये बच्चे अलवर जिले के थाना गाजी में जोधावास गांव की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के हैं, जो कुछ बड़ा या अलग नहीं मांग रहे, बस ये चाहते हैं स्कूल दिया है तो सुरक्षित क्लासरूम हो, टीचर हो, स्कूल आने का रास्ता साफ हो, सड़क बने।
3: हमारे एक रनिंग दौड़, फुटबॉल, टेनिस दौड़, वॉलीबॉल के लिए इतना बड़ा मैदान हो, हमारे विद्यालय के लिए जगह आवंटित की जाए, हमारे पास बैठने के लिए कक्षा भी नहीं है,
10: हमारे यहाँ 3 कप है, उनमें भी पानी टपकता है, बच्चे परेशान है, तो बैठे कैसे।
3: हमारे स्कूल को सीनियर हुए 4 साल हो गई, मात्र 5 टीचर है, जो थर्ड ग्रेड के जो बड़ी सीनियर क्लास है वो पढ़ाते हैं, सेकंड ग्रेड का बस मात्र एक टीचर है, और जिसको भी कुछ भी होगा जो 400 रखा है, और
11: हमारे विद्यालय में विद्यार्थियों को पहुंचने के लिए अच्छा रास्ता है, फुले हमारे जो सहपाठियां हैं वो नदी क्रॉस करके आते हैं, तो हम चाहते हैं कि उनको नदी क्रॉस करने के लिए पुलिया का निर्माण किया जाए।
1: प्रदर्शन के बाद अधिकारियों ने पहले यहां तुरंत 7 टीचर और लगाकर शिक्षकों की कमी को पूरा किया, लेकिन इसके बाद भी धरना खत्म नहीं होता।
12: सभी से वार्ता की गई, 4 घंटे वो रुके, तो पहले तो ये है कि वो एक सीनियर स्कूल है, 5-6 अध्यापक थे, तो उसकी वजह 7 अध्यापक वहाँ और लगा दिए मौके पर ही, और 13 अध्यापक अब वहाँ 170 बच्चों के ऊपर हो गए।
1: बच्चे पूरा हिसाब चाहते हैं, इनके स्कूल के क्लासरूम की हालत देखिए, जहाँ पढ़ना खतरे से खाली नहीं, यहाँ बच्चे बाल बाल बचते हैं जब एक क्लासरूम में हादसा हो जाता है, इसीलिए धरना देना जारी रखते हैं। अधिकार और कर्तव्य को समझते भारत के जेन अल्फा की चौथी गवाही मध्य प्रदेश के उज्जैन से आई। छात्राओं के नारों की गूंज उज्जैन में गूंज रही, 700 से ज्यादा बच्चियां उज्जैन के सर्राफा कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हैं, जो अभी महाकाल मंदिर के पास जयसिंहपुरा में चलता है। अब इनके स्कूल को संदीपन विद्यालय में मर्ज किया जा रहा है, दलील ये कि स्कूलों की गुणवत्ता और शिक्षा में सुधार लाया जाएगा। छात्राओं का कहना है कि अब जिस स्कूल के साथ मर्ज किया जा रहा है वहाँ की दूरी ज्यादा है, रास्ते में इन्हें दिक्कत होगी, इसीलिए कलेक्टर दफ्तर के बाहर आकर धरना दे दिया। कलेक्टर शिकायत सुनने आए नहीं, जिला शिक्षा अधिकारी को भेज दिया।
3: स्कूल जयसिंहपुरा में और हमारा स्कूल शिफ्ट हो रहा है,
10: हम इतनी दूर नहीं जा सकते, हमारे मम्मी पापा हमको परमिशन नहीं देंगे, वो बहुत दूर है और उधर का इलाका भी बहुत मतलब बहुत खराब है, हम कैसे जाएंगे।
8: लड़कियां गांव से आती है 10-10 किलोमीटर दूर से यहाँ तक, और छोटे और इतनी दूर से अगर वो दाऊद खेड़ी जाएंगे तो कब पहुंचेंगी, रात को 10 बजे। अगर बीच में अगर कोई दुर्घटना हो गई उनके साथ तो जिम्मेदार क्या कलेक्टर रहेगा या कोई और रहेगा। हमारे मम्मी पापा ने बोल दिया अगर सराफा स्कूल में दावत खेड़ी जाएगा तो हमें पढ़ाएंगे ही नहीं वो बिल्कुल भी।
13: अभी एकदम निर्णय नहीं होगा कि वहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, शासन के भी निर्देश है कि जिला स्तरीय मॉनिटरिंग समिति निर्णय ले, तो जिला स्तरीय मॉनिटरिंग समिति की बैठक शीघ्र होने वाली है जिसमें पालकों के प्रतिनिधि को सूचित किया जाएगा, वो भी आएंगे और वो भी अपना पक्ष रखेंगे, उसके बाद जो निर्णय होगा वो मॉनिटरिंग समिति लेगी।
1: देश के तमाम राज्यों में होते ये प्रदर्शन इस बात को साबित करते हैं सरकारों की तमाम कोशिश के बाद व्यवस्था बुनियादी जरूरतों को स्कूली ढांचे में पूरा करने में नाकाम है, जिसकी वजह से अब बच्चों को मैदान में उतरना पड़ रहा है।
0: राजस्थान में भर्तियों का भ्रष्टाचार खुला, जहां योग्य किनारे हो जाएं, अयोग्य जनता की सेहत से खिलवाड़ करने लगे, फर्जी डिग्री लगाकर डॉक्टर बनकर मरीजों का इलाज करने लगे, 3 डॉक्टर गिरफ्तार किए गए, 20 से 30 लाख रुपए में फर्जी डिग्री इन्होंने बनवाई थी। राजस्थान एसओजी इस पूरे मामले की तह तक पहुंचने में जुटी है।

0: चेहरा छुपा रहे ये तीनों राजस्थान के वो फर्जी डॉक्टर हैं जो कई वर्षों से मरीजों की जान से खिलवाड़ करते रहे, दवाइयां उनके लिए लिखते रहे। आशीष शर्मा फर्जी डिग्री वाला डॉक्टर, करौली के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ये मरीज देखता था।
1: आदेश दिनांक 18/12/2023 के तहत हमारे पास एक लिस्ट आई थी, उस लिस्ट में डॉक्टर आशीष का सीरियल नंबर 11 पर है। उसकी रैंक एग्जाम में FMG इंट्रेंसिप रैंक 245 थी।
0: नरेश रोलनिया फर्जी डिग्री वाला डॉक्टर, उदयपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज से इंटर्नशिप करके कोटपुतली के पल्स अस्पताल में डॉक्टर बन गया। जयपुर के मुरलीपुरा में ये श्रीनारायण अस्पताल चला रहा डॉक्टर राजेंद्र यादव है, जो चीन से 2006 से 2012 के बीच MBBS करने का सर्टिफिकेट लेकर आया। साल 2012 से लेकर 8 बार इसने राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड की FMG स्क्रीनिंग परीक्षा देने की कोशिश की, पर एक बार भी पास नहीं हो पाया। फिर इसने खुद ही नकली सर्टिफिकेट छपवाकर 29 लाख में राजस्थान मेडिकल काउंसिल से मरीज देखने का लाइसेंस हासिल कर लिया। SOG की गिरफ्त में आए राजेंद्र यादव के अस्पताल में जब आज तक संवाददाता खबरदार करने पहुंचते हैं, तो यहां अस्पताल को और आगे बढ़ाने का काम चलता मिलता है। डॉक्टर की गिरफ्तारी के बाद भी अस्पताल खुला हुआ है। फर्जी डॉक्टर और उसकी डेंटिस्ट पत्नी 6 साल से यहां मरीज देख रहे थे।
2: तो कब उनको अरेस्ट की पुलिस ने?
3: 4 रोज पहले।
2: 4 रोज पहले? आपको पता था आपको कि उनके पास नकली डिग्री है?
3: नहीं,
2: किसी को पता नहीं था?
3: नहीं।
2: ये अस्पताल उन्हीं का है?
3: हाँ।
0: डॉक्टर की फर्जी डिग्री वाले आशीष शर्मा ने कजाकिस्तान से साल 2021 में MBBS करने का सर्टिफिकेट बनवाया था। भारत में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड की FMG स्क्रीनिंग परीक्षा 3 बार देने के बावजूद वो पास नहीं हो सका। इसके बाद आरोपी ने शुभम गुर्जर के जरिए 25 लाख रुपए देकर FMG परीक्षा का फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया। शुभम गुर्जर भी पहले 25 लाख में फर्जी सर्टिफिकेट बनवाता था। हैरत की बात है कि दोनों ही राजस्थान सरकार के करौली मेडिकल कॉलेज में मरीज देख रहे थे। दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं।
4: आदमी जितने पैसे करोड़ों रुपए खर्च करके वो बाहर अपनी MBBS करता था, और यहाँ पे जो किंग पिन्स हम लोगों ने जिनको अरेस्ट किया है, उनके इंटरोगेशन से 25 से लेके 35 लाख 40 लाख तक ये अमाउंट लेते थे सर्टिफिकेट अवेलेबल कराने का।
0: नरेश तो इनसे भी आगे निकला। तजाकिस्तान से फर्जी डॉक्टरी की डिग्री हासिल कर पल्स हॉस्पिटल कोटपुतली के इमरजेंसी वार्ड में काम कर रहा था। वो बिना FMG स्क्रीनिंग परीक्षा पास किए और बिना राजस्थान मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रेशन के मरीजों का इलाज करता रहा।
4: फेक FMG एग्जाम के जो सर्टिफिकेट वाला जो स्कैंडल हम लोगों ने खोला है, उसमें करीब 30 के करीब हम डॉक्टर्स और अन एसोसिएट्स को इसमें अरेस्ट कर चुके हैं, और हमारे पास में करीब 80-90 और अधिक इसके अलावा भी कुछ नाम हमारे पास में चल रहे हैं जो इस सारे सिस्टम में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहे हैं।
0: राजस्थान SOG के मुताबिक इस मामले में अब तक 100 से अधिक फर्जी डॉक्टर की पहचान की जा चुकी है, जिन्होंने कथित तौर पर फर्जी स्क्रीनिंग प्रमाण पत्र तैयार करवाया है। इन्हें पकड़ना आसान नहीं हो रहा था क्योंकि इन्होंने सारे फर्जी सर्टिफिकेट ऑफलाइन बनवाए हैं। इस मामले में राजस्थान मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार डॉक्टर राजेश शर्मा समेत 4 कर्मचारी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं।
5: राजस्थान के अस्पतालों में मरीज देखने वाले फर्जी डॉक्टरों के पकड़े जाने का सिलसिला जारी है। अब तक 35 से ज्यादा फर्जी डॉक्टर पकड़े जा चुके हैं, मगर अभी भी 80 से ज्यादा फर्जी डॉक्टर अस्पतालों में मरीज देख रहे हैं और मरीजों के जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कैमरा मनीष के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक।
6: उत्तराखंड में हुए एक और टनल एक्सीडेंट की यह खबर है। चमोली में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की टनल में कल एक हादसा हुआ। 7 मजदूर इस हादसे में अब तक मारे गए, 3 लापता हैं, 12 मजदूर घायल हैं। लापता मजदूरों की तलाश हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों उत्तराखंड में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए जो टनल्स बनाई जा रही हैं उनमें हादसे हो रहे हैं। और

0: रही हैं उनमें हादसे हो रहे हैं और ये हादसे आखिर कब तक होते रहेंगे?
1: बार बार उत्तराखंड की सुरंगों में क्यों हो रहे हैं इतने बड़े हादसे? विकास की राह में विनाश का इंतजाम कौन कर रहा है? क्या उत्तराखंड की नदियों में जरूरत से ज्यादा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं? उत्तराखंड के कच्चे पहाड़ों में बड़ी बड़ी सुरंगें खोदकर विनाश कौन ला रहा है? उत्तराखंड में एक और मौत की सुरंग बनी है चमोली जिले के पीपल कोटी की टीएचडीसी की सुरंग। तस्वीरें बता रही हैं कि सुरंग के अंदर इस वक्त क्या हालात हैं। पूरी स्थिति समझने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि यह हादसा कहां और कैसे हुआ। उत्तराखंड के चमोली जिले के पीपल कोटी में टीएचडीसी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहा है। यह प्रोजेक्ट अलकनंदा नदी पर बन रहा है जिसकी क्षमता होगी 444 मेगावाट। बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट का 80% काम पूरा हो चुका है। इस प्रोजेक्ट के तहत एक 65 मीटर ऊंचा डैम बन रहा है जिसमें दो सुरंगें होंगी। पहली है हेड रेस टनल यानी HRT जिसकी लंबाई है 13.4 किलोमीटर और दूसरी है टेल रेस टनल TRT जिसकी लंबाई है 3.04 किलोमीटर। गुरुवार को जो हादसा हुआ वो इसी TRT सुरंग में हुआ है। अब ये समझिए कि यह हादसा कैसे हुआ। इस इलाके में जमकर बारिश हो रही है, मॉनसून का सीजन है और आसमान से आफत बरस रही है। कई जगहों पर भूस्खलन और बादल फटने की घटनाएं भी हो रही हैं। इन हालात में भी इस टनल में काम चालू था। बताया जा रहा है कि गुरुवार को अचानक से सुरंग में 150 मीटर दूर तेज आवाज के साथ भारी भूस्खलन हुआ। मलबा, पत्थर और पानी तेज गति से टनल के अंदर घुस गए। उस वक्त वहां पर कुछ मजदूर काम कर रहे थे। इसी हादसे में कुछ मजदूर मलबे में दब गए और बाकी फंस गए। टनल में कई जगह से मलबा आने से ऑक्सीजन लेवल बेहद कम हो गया था। बताया जा रहा है कि टनल के अंदर मलबा 2 दिन से आ रहा था लेकिन इसके बाद भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ने इस पर ध्यान नहीं दिया और काम चालू रखा। इसके बाद तो टनल में लगातार पानी भरता गया। हालांकि हादसे की सूचना मिलते ही राहत और बचाव दल मौके पर पहुंच गया था। ये तस्वीरें बता रही हैं कि अंदर क्या हालात थे। बताया गया कि सुरंग के अंदर कुल 22 मजदूर फंसे हुए थे। 7 मजदूरों की मौत हो गई है, 3 अभी भी फंसे हैं। 12 मजदूरों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।
2: गुरुवार शाम को 6:30 बजे के आसपास पीपलकोटी विष्णुघाट परियोजना की जो TSDC की ये टनल है, TRT टनल, इसके अंदर 1500-1600 मीटर के करीब में एक लूज जो है टनल के अंदर गिरा और उसके बाद एक बहुत जबरदस्त, यहाँ पे बताया जा रहा है, हवा का झोंका और पानी का बहुत बड़ा रिसाव हुआ और उसने कुछ लोगों को तो अंदर की ओर धकेला और कुछ लोगों को बाहर की ओर धकेला। ऐसे में कुछ तो ठीक ठाक निकल चुके हैं लेकिन अभी तक 3 लोग लापता है। बता चला इस पूरे हादसे में 22 लोग यहाँ पे हताहत हुए थे, जो कुछ घायल हैं, कुछ 7 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। वहीं अभी राज्य आपदा प्रबंधन सचिव जो है विनोद कुमार सुमन, वो यहाँ पे निरीक्षण करके गए। उनका कहना है कि डीवाटरिंग करने का काम किया जा रहा है और जल्द से जल्द इस पानी को बाहर निकाला जाएगा ताकि जो 3 लोग हैं अंदर उनका रेस्क्यू हो नहीं पा रहा है, पानी भर जा रहा है। ऐसे में लगातार यहाँ पे ITBP की फोर्स है, वो लगातार आ रही है, जा रही है। जो टीमें हैं वो लगातार लगी हैं, कभी मशीनें भेजी जा रही हैं, कभी ड्रम भेजे जा रहे हैं, अलग अलग तरीके से यहाँ पे इस समय जो रेस्क्यू और बचाव के काम चल रहे हैं वो करवाए जा रहे हैं।
1: लेकिन समस्या ये है कि टनल के अंदर लगातार पानी भरता जा रहा है, इसी वजह से रेस्क्यू टीमों को दिक्कतें आ रही हैं। जैसे ही कल रात ये रेस्क्यू टीमें पहुंची तो टनल में बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ था। तुरंत इन्होंने टेम्पररी नाव बना दी, नीचे बड़े बड़े ड्रम बांधे और एक अस्थायी नाव का निर्माण किया और उसके बाद देखिए कैसे इन जुगाड़ की नावों से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया।
0: थोड़ा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।
3: हम इस समय हिंदुस्तान के हीरोज के साथ यहाँ पर मौजूद हैं।
4: भारतीय तटरक्षक की
3: स्वतंत्रता का पर्व हम इनके साथ आज मनाने वाले हैं।

0: جشن آزادی کے رنگ میں رنگا ہندوستان. صبح لال قلعے کی پراچیر سے لگاتار 13ویں بار ترنگا پھہرائیں گے پردھان منتری مودی, دیش کو کریں گے سمبودھت. 15 اگست کی پورو سندھیا پر راشٹرپتی دروپدی مرمو جی کا راشٹر کے نام سندیش, بولی یوا آبادی سب سے مولیوان سمپتی, وکست بھارت کے نرمان کے لیے آگے بڑھنے کا آہوان. نہیں تھم رہا پی ایم مودی پر راہل کے بیان پر ہنگامہ, راجناتھ سنگھ نے لوکتنتر کے لیے گمبھیر خطرہ بتایا, ودیش منترالے نے کہا آدر کے ساتھ رکھو بات. ودھان سبھا چناؤ سے پہلے یو پی میں زبانی یدھ تیز, سی ایم یوگی بولے صرف ستا کے لیے پہلے کی سرکاریں, اکھلیش بولے یو پی میں اب تک کی سب سے بھرشٹ یوگی سرکار. اور کاکروچ وواد پر چیف جسٹس سوریہ کانت کا بڑا بیان, بولے میری باتوں کا غلط ارادے سے غلط استعمال, یواؤں کو سوریہ کانت نے گمراہ کرنے کی کوشش بتایا. آج ہمارا دیش سوتنترتا کا 80واں اتسو منا رہا ہے. 80واں سوتنترتا دیوس منانے سے پہلے لوک تانترک طریقے سے جن الفا نے اپنی آواز بلند کر دی. جن الفا جن کے ہاتھوں کی تنی مٹھی نعرے لوک تنتر کی مضبوطی کا سندیش دیتے ہیں, سرکاری ویوستھا کو اس بات کا احساس کراتے ہیں کہ ان کی آواز انسنی آپ نہیں کر سکتے.
1: 80वें स्वतंत्रता दिवस से पहले गूंजते नारे लोकतंत्र को मजबूत करते हैं. ۲۰۲۶ में आजादी का जश्न मनाते भारत के बच्चे हक मांगने से नहीं डरते हैं.
2: क्या हो गया टीचर है कोई यहाँ पे?
3: तो
2: पहला काम करो, सुनो तुरंत साइड में आओ, अंदर चलो, बात करते हैं, ट्रैफिक खोलो, ठीक है? तुरंत मेरे साथ आओ, चलो.
1: 15 अगस्त 2026 ऐतिहासिक है, जहां बच्चे अधिकारियों की आंख से आंख मिलाकर अधिकार मांगते हैं.
4: 4 साल हो गई सीनियर स्कूल बने हुए, मात्र 5 टीचर है
5: जो भी थायर ग्रेड की,
4: सुनवाई नहीं की गई. 4 साल हो गए खाते में, कलेक्टर को मैंने खुद अपने लिखित में कागज दिया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई.
5: सही बात.
1: एक तरफ लगता है कि आजादी के 80 साल बाद भी स्कूल व्यवस्था राज्यों में ढुलमुल है, दूसरी तरफ अच्छा लगता है कि लोकतांत्रिक रूप से विरोध करना बच्चे जानते हैं.
6: हमारे खाने के लिए थाने में सुड़ी निकलती है, मेढक निकलता है, छिपकली निकलती है, प्रिंसिपल पास लेकर जो इनका ये होता है कि इस मौसम में निकलता है, मैं क्या कर सकता हूँ. दूसरी बात, तुमने खुद डाला होगा और कहे भी दें तो कहते दूसरा रखवा लो, ऐसा कि हम लोग मतलब जानवर से बेबत्तर है ये करते हैं हमारे लिए.
1: बच्चों के नारे इस बात का एहसास कराते हैं कि आजादी का असली मतलब अपनी आवाज को बुलंद करना है.
7: हम हमारा अधिकार मांगते
4: हैं.
1: स्वतंत्रता का 80वां महोत्सव खास है क्योंकि अब की जेन जी और जेन अल्फा की बुलंद आवाज है.
8: कल जो आपने प्रदर्शन किया था उसमें कितने रुपए किराया लिया जा रहा था पहले आपसे? और आज कितने रुपए किराया लिया जा रहा है? आपसे भी 10 रुपए. सभी का किराया मान के चलने तो कम हुआ सभी से, ठीक है.
1: लाल किले पर लहराता तिरंगा, वो पल जब देश हमेशा गर्व से भर जाता है, याद करता है स्वतंत्रता की सेनानियों को. भारत और भारतीयता के विश्वास से उत्प्रोत हर नागरिक के लिए आजादी का दिन बहुत विशेष महत्व रखता है, लेकिन इस बार ये उत्सव और भी विशेष है, जहां भारत के भविष्य की बुलंद होती आवाजें, लोकतांत्रिक रूप से रखी जाती मांगे, अड़ने की जगह बिना डरे हक के लिए लड़ने वाली आदत इस भरोसे को मजबूत करती है कि भारत का बच्चा बच्चा अपने अधिकार और कर्तव्य दोनों को समझ रहा है. आज इसीलिए एक एक करके हम आपको ऐसी तस्वीरों से खबरदार करेंगे। अधिकार और कर्तव्य को समझते भारत के जैन अल्फा की पहली गवाही लखनऊ से आई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मोहान रोड पर जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय, प्रदेश के समाज कल्याण विभाग के अधीन आने वाले इस स्कूल में छात्र संभव है कि देश में जंतर मंतर आंदोलन से शुरू हुए प्रदर्शन के बाद अपना हक मांगने वाली लकीर पर चलते हुए आगे बढ़े। जहां हॉस्टल में खराब खाना, खाने में बार बार कीड़ा निकलना, बीमार होने पर इलाज की व्यवस्था न होना और शिक्षकों की कमी को लेकर छात्रों का दावा है कि स्कूल प्रशासन ने उनकी शिकायत पर कान नहीं दिया तो ये सड़क जाम करने निकल पड़े। लखनऊ में छात्रों की तरफ से सड़क जाम की खबर आते ही पहले जहां छात्रों को हटाने के लिए पुलिस दिखती रही थी, वहां अब की बार शायद पहली बार ऐसा देखा सुना जा रहा है जब कोई मंत्री तुरंत समस्या सुनने पहुंच गया। जैसे असीम अरुण उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री हैं, प्रदर्शन करते छात्रों के बीच पहुंचकर सीधे कहते हैं चलो तुम्हारी बातें सुनते हैं, शिकायत दूर करते हैं,
2: अंदर चलो बात करते हैं, ट्रैफिक खोलो, ठीक है तुरंत मेरे साथ आओ।
1: इसके बाद तुरंत मंत्री असीम अरुण के साथ छात्र भीतर आते हैं। यही आज हम आपको दिखा रहे हैं कि छात्र संविधान से मिले अधिकार और कर्तव्य दोनों को समझ रहे हैं, जो अपने अधिकार के लिए प्रदर्शन करने का अधिकार भी जानते हैं और मंत्री की तरफ से समस्या सुने जाने की बात आते ही तुरंत रास्ता भी छोड़ देते हैं और फिर समाधान की बात आती है।
2: जो कमियां हैं उनको दूर काफी हद तक किया हम लोग ने, लेकिन मैं स्वयं अभी संतुष्ट नहीं हूँ। हम लोग को कमियों को और दूर करना है। पहली चीज जितने स्टाफ सारे हमारे क्वार्टर बन गए, हमारे ट्रांजिट हॉस्टल बन गए, टीचर्स 24 घंटे यहाँ पे रहेंगे, कोई हाँ फार्मासिस्ट भी और भी नॉन टीचिंग स्टाफ जिसके लिए आवास अवेलेबल है। ये आवासीय विद्यालय है, केवल बच्चों का नहीं स्टाफ का, और जिसको रहने में समस्या आ रही है वो अपना इस्तीफा देते घर।
1: लोकतंत्र की यही ताकत है जो इस स्वतंत्रता दिवस को विशेष बनाती है। जहाँ स्कूली शिक्षा का बुनियादी ढांचा लचर है, उसे मजबूत करने की मांग खुद बच्चे कर रहे हैं। अधिकार और कर्तव्य को समझते भारत के जैन अल्फा की दूसरी गवाही भी उत्तर प्रदेश से आई है। इसके लिए अब कन्नौज चलते हैं।
3: कई दिनों से समस्याएं थी जिनको लेकर हम झेल रहे थे, सह रहे थे, लेकिन अब कुछ ज्यादा ही ओवर हो गया था
2: जी, जी।
3: तो उसके लिए हमने ये किया क्योंकि परेशान हो चुके थे, और एक नहीं क्लास 6 के जूनियर से लेकर क्लास 12 के बच्चे सभी परेशान हैं।
1: कन्नौज के जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले ये वो जैन अल्फा हैं जो अपनी समस्याओं के निदान के लिए सड़क पर नहीं उतरे बल्कि खुद को ही एक कमरे में बंद कर लिया। इनका वीडियो वायरल हुआ, मीडिया पहुंचा। इन छात्रों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए मुंह ढक लिया, ये इनका अधिकार है। लेकिन अपने दूसरे अधिकारों के लिए इन्होंने खुद को क्लास में लॉक करने का ऐसा तरीका लगाया कि प्रशासन को जागना पड़ा। पहले शिकायत सुनिए, फिर समाधान देने पहुंचे जिलाधिकारी को।
3: मैं इसमें खाने की सही व्यवस्था नहीं होती, हाउस में लाते हैं। खाने की व्यवस्था इसलिए नहीं क्योंकि 550 बच्चे हैं वहाँ पर, ना तो फैन लगा है ना कोई फैन, वैसे क्या नाम गैस फैन नहीं लगे हैं, तो सफोकेशन होती है। खाते हैं वहाँ पर, बच्चे भी नहीं बैठ पाते, 550 बच्चे हैं, इतनी जगह नहीं है। तो हम लोग हाउस में ले आते हैं तो ये कहते हैं कि तुम लेटरिन में खाते हो, उसी का सूंघते हो, उसी में खाते हो, उसी में बैठ कर खाते हो, गंदे गंदे सब खाना। ऐसा कच्चे चावल, चावल रखे हैं हम दिखाते हैं, चावल कच्चे बिल्कुल जो गले से नीचे ना होते। हम लोग करीब 100 से 100 बच्चे हैं।
2: कितनी देर से बंद है
3: सर? हम कल
2: 4 बजे से,
3: कल शाम से हम लोगों ने खाना नहीं खाया।
2: स्कूल प्रशासन की सूचना दी थी इस बात की आप लोग बंद है अंदर?
5: सूचना सबको दी, आए मतलब आए विद्यालय।
3: हमारी डिमांड है कि डीएम सर आए और हमसे बात करें आकर।
9: इस विद्यालय में बच्चों को कुछ अपनी कठिनाइयां थी जिसमें हम लोग आज गए और उनके बीच वार्ता की। जहां वो रह रहे थे उनके हॉस्टल में, उन्हीं के बीच में हम लोग बैठे। सभी बच्चे अनुशासित हैं, अच्छे बच्चे हैं और मेरिट में ये लोग सेलेक्ट होकर के यहाँ आए हैं। विधिवत रूप से उनको सुना गया है। जो उनकी कठिनाइयां थी उनके बारे में हम लोग दूर करेंगे उनको, और सरकार हर तरीके से विद्यार्थियों के साथ है और मेधावी विद्यार्थियों के साथ भी है। किसी प्रकार की कोई कठिनाई इन लोगों को नहीं होने देंगे।
0: कहीं नारा लग रहा है कि कलेक्टर साहब का आना हो को आना होगा, कहीं नारे लगाए जाते हैं, हमारी बातें आपको सुननी होंगी। ये हमारे वो बच्चे हैं जिन्हें नागरिक शास्त्र का पाठ पढ़ाया जाता है, लेकिन ये पहली बार उन पाठों का प्रयोग भी कर रहे हैं। ये हमारे वो बच्चे हैं जिन्होंने आंदोलन के बारे में पढ़ा है, लेकिन पहली बार ये बच्चे खुद आंदोलन कर रहे हैं। अब दो चीजों की जरूरत है। पहले, ऐसे हर आंदोलन में बच्चों की मांगें सुनी जाएं, उनकी बातों को पूरा किया जाए, और दूसरी जरूरत ये कि सरकारें देखें कि आखिर क्यों अब भी हमारे बच्चों के स्कूलों की स्थिति खराब है।
1: अधिकार और कर्तव्य को समझते भारत के जेन अल्फा की तीसरी गवाही राजस्थान के अलवर से आई है।
4: 4 साल हो गई, 3 ईयर स्कूल बने हुए, मात्र 5 टीचर है,
10: जो भी थर्ड ग्रेड के,
1: अधिकारियों के सामने मर्दानी बनकर अपने हक को बुलंद करती एक छात्रा बोलती, और तभी
4: मजाक बना रखा है स्कूल को, ना इसमें बैठने लायक एक भी कमरा है, कितने
1: ये बच्चे चीख नहीं रहे, बस उन अधिकारियों के कानों में सामने खड़े होकर अपनी आवाज पहुंचा रहे, जो एसी कमरों से अब तक बहुत कम निकलते रहे, जो फाइलों में ऑल इज वेल लिखते रहे, उन्हें अब सुनना भी पड़ रहा है, बदलाव करना भी पड़ रहा है।

0: पुलिस की गाड़ी आ चुकी है और
1: जिस मानसून सत्र में हंगामे की वजह से संसद का कामकाज भूल गया, वहाँ इस मानसून में राजस्थान के अलवर में होता यह हंगामा कामकाज भूलने का नहीं, कामकाज को सुधारने का। ये बच्चे अलवर जिले के थाना गाजी में जोधावास गांव की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के हैं, जो कुछ बड़ा या अलग नहीं मांग रहे, बस ये चाहते हैं स्कूल दिया है तो सुरक्षित क्लासरूम हो, टीचर हो, स्कूल आने का रास्ता साफ हो, सड़क बने।
2: हमारी स्कूल को सीनियर हुए 4 साल हो गई, मात्र 5 टीचर है, जो थर्ड ग्रेड के जो बड़ी सीनियर क्लासों को पढ़ाते हैं, सेकंड ग्रेड में बस मात्र 1 टीचर है और जिसको भी कुछ भी होगा जो 400 तक है और लेक्चरर फोर्थ सेक्शन करवाओ।
3: हमारे विद्यालय में विद्यार्थियों को पहुंचने के लिए अच्छा रास्ता है, फुल हमारे जो सहपाठी है वो नदी क्रॉस करके आते हैं, तो हम चाहते हैं कि उनको नदी क्रॉस करने के लिए पुलिया का निर्माण किया जाए।
1: प्रदर्शन के बाद अधिकारियों ने पहले यहां तुरंत 7 टीचर और लगाकर शिक्षकों की कमी को पूरा किया, लेकिन इसके बाद भी धरना खत्म नहीं होता।
4: सभी से वार्ता की गई, 4 घंटे वो रुके, तो पहले तो ये है कि वो एक सीनियर स्कूल है, तो वहाँ 6 अध्यापक थे, तो उसकी वजह 7 अध्यापक वहाँ और लगा दिए मौके पर ही, और 13 अध्यापक अब वहाँ 170 बच्चों के ऊपर हो गए।
1: बच्चे पूरा हिसाब चाहते हैं, इनके स्कूल के क्लासरूम की हालत देखिए, जहाँ पढ़ना खतरे से खाली नहीं, यहाँ बच्चे बाल बाल बचते हैं जब एक क्लासरूम में हादसा हो जाता है, इसीलिए धरना देना जारी रखते हैं। अधिकार और कर्तव्य को समझते भारत के जैन अल्फा की चौथी गवाही मध्य प्रदेश के उज्जैन से आई। छात्राओं के नारों की गूंज उज्जैन में गूंज रही, 700 से ज्यादा बच्चियां उज्जैन के सर्राफा कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हैं, जो अभी महाकाल मंदिर के पास जयसिंहपुरा में चलता है। अब इनके स्कूल को संदीपन विद्यालय में मर्ज किया जा रहा है, दलील ये कि स्कूलों की गुणवत्ता और शिक्षा में सुधार लाया जाएगा। छात्राओं का कहना है कि अब जिस स्कूल के साथ मर्ज किया जा रहा है वहाँ की दूरी ज्यादा है, रास्ते में इन्हें दिक्कत होगी, इसीलिए कलेक्टर दफ्तर के बाहर आकर धरना दे दिया। कलेक्टर शिकायत सुनने आए नहीं, जिला शिक्षा अधिकारी को भेज दिया।
5: स्कूल जयसिंहपुरा में और हमारा स्कूल शिफ्ट हो रहा है, हम इतनी दूर नहीं जा सकते, हमारे मम्मी पापा हमको परमिशन नहीं देंगे, वो बहुत दूर है और उधर का इलाका भी बहुत मतलब बहुत खराब है, हम कैसे जाएंगे।
6: लड़कियां गांव से आती है 10-10 किलोमीटर दूर से यहां तक, और छोटी और इतनी दूर से अगर वो दाऊद खेड़ी जाएंगे तो कब पहुंचेंगी, रात को 10 बजे, अगर बीच में अगर कोई दुर्घटना हो गई उनके साथ तो जिम्मेदार क्या कलेक्टर रहेगा या कोई और रहेगा।
5: हमारे मम्मी पापा ने बोल दिया अगर सराफा स्कूल में दावत खेड़ी जाएगा तो हमें पढ़ाएंगे ही नहीं वो बिल्कुल भी।
7: अभी एकदम निर्णय नहीं होगा कि वहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, शासन के भी निर्देश है कि जिला स्तरीय मॉनिटरिंग समिति निर्णय ले, तो जिला स्तरीय मॉनिटरिंग समिति की बैठक शीघ्र होने वाली है जिसमें पालकों के प्रतिनिधि को सूचित किया जाएगा, वो भी आएंगे और वो भी अपना पक्ष रखेंगे, उसके बाद जो निर्णय होगा वो मॉनिटरिंग समिति लेगी।
1: देश के तमाम राज्यों में होते ये प्रदर्शन इस बात को साबित करते हैं सरकारों की तमाम कोशिश के बाद व्यवस्था बुनियादी जरूरतों को स्कूली ढांचे में पूरा करने में नाकाम है, जिसकी वजह से अब बच्चों को मैदान में उतरना पड़ रहा है।
8: राजस्थान में भर्तियों का भ्रष्टाचार खुला, जहां योग्य किनारे हो जाएं, अयोग्य जनता की सेहत से खिलवाड़ करने लगे, फर्जी डिग्री लगाकर डॉक्टर बनकर मरीजों का इलाज करने लगे, 3 डॉक्टर गिरफ्तार किए गए, 20 से 30 लाख रुपए में फर्जी डिग्री इन्होंने बनवाई थी। राजस्थान एसओजी इस पूरे मामले की तह तक पहुंचने में जुटी है।

0: चेहरा छुपा रहे ये तीनों राजस्थान के वो फर्जी डॉक्टर हैं जो कई वर्षों से मरीजों की जान से खिलवाड़ करते रहे, दवाइयां उनके लिए लिखते रहे। आशीष शर्मा फर्जी डिग्री वाला डॉक्टर, करौली के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ये मरीज देखता था।
1: आदेश दिनांक 18/12/2023 के तहत हमारे पास एक लिस्ट आई थी, उस लिस्ट में डॉक्टर आशीष का सीरियल नंबर 11 पर है। उसकी रैंक एग्जाम में FMG इंट्रेंसिप रैंक 245 थी।
0: नरेश रौलनिया फर्जी डिग्री वाला डॉक्टर, उदयपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज से इंटर्नशिप करके कोटपुतली के पल्स अस्पताल में डॉक्टर बन गया। जयपुर के मुरलीपुरा में ये श्रीनारायण अस्पताल चला रहा डॉक्टर राजेंद्र यादव है, जो चीन से 2006 से 2012 के बीच MBBS करने का सर्टिफिकेट लेकर आया। साल 2012 से लेकर 8 बार इसने राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड की FMG स्क्रीनिंग परीक्षा देने की कोशिश की, पर एक बार भी पास नहीं हो पाया। फिर इसने खुद ही नकली सर्टिफिकेट छपवा कर 29 लाख में राजस्थान मेडिकल काउंसिल से मरीज देखने का लाइसेंस हासिल कर लिया। SOG की गिरफ्त में आए राजेंद्र यादव के अस्पताल में जब आज तक संवाददाता खबरदार करने पहुंचते हैं, तो यहां अस्पताल को और आगे बढ़ाने का काम चलता मिलता है। डॉक्टर की गिरफ्तारी के बाद भी अस्पताल खुला हुआ है। फर्जी डॉक्टर और उसकी डेंटिस्ट पत्नी 6 साल से यहां मरीज देख रहे थे।
2: कब उनको अरेस्ट की पुलिस ने?
3: 4 रोज पहले।
2: 4 रोज पहले? अब पता था आपको कि उनके पास नकली डिग्री है?
3: नहीं,
2: किसी को पता नहीं था?
3: नहीं।
2: ये कॉलोनी क्या है?
3: हाँ।
0: डॉक्टर की फर्जी डिग्री वाले आशीष शर्मा ने कजाकिस्तान से साल 2021 में MBBS करने का सर्टिफिकेट बनवाया था। भारत में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड की FMG स्क्रीनिंग परीक्षा 3 बार देने के बावजूद वो पास नहीं हो सका। इसके बाद आरोपी ने शुभम गुर्जर के जरिए 25 लाख रुपए देकर FMG परीक्षा का फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया। शुभम गुर्जर भी पहले 25 लाख में फर्जी सर्टिफिकेट बनवाता था। हैरत की बात है कि दोनों ही राजस्थान सरकार के करौली मेडिकल कॉलेज में मरीज देख रहे थे। दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं।
4: आदमी जितने पैसे करोड़ों रुपए खर्च करके वो बाहर अपनी MBBS करता था, और यहाँ पे जो किंग पिंस हम लोगों ने जिनको अरेस्ट किया है उनके इंटरोगेशन से 25 से लेके 35 लाख 40 लाख तक ये अमाउंट लेते थे सर्टिफिकेट अवेलेबल कराने का।
0: नरेश तो इनसे भी आगे निकला। तजाकिस्तान से फर्जी डॉक्टरी की डिग्री हासिल कर पल्स हॉस्पिटल कोटपुतली के इमरजेंसी वार्ड में काम कर रहा था। वो बिना FMG स्क्रीनिंग परीक्षा पास किए और बिना राजस्थान मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रेशन के मरीजों का इलाज करता रहा।
4: फेक FMG एग्जाम के जो सर्टिफिकेट वाला जो स्कैंडल हम लोगों ने खोला है, उसमें करीब 30 के करीब हम डॉक्टर्स और अनएसोसिएट्स को इसमें अरेस्ट कर चुके हैं, और हमारे पास में करीब 80-90 और अधिक इसके अलावा भी कुछ नाम हमारे पास में चल रहे हैं जो इस सारे सिस्टम में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहे हैं।
0: राजस्थान SOG के मुताबिक इस मामले में अब तक 100 से अधिक फर्जी डॉक्टर की पहचान की जा चुकी है, जिन्होंने कथित तौर पर फर्जी स्क्रीनिंग प्रमाण पत्र तैयार करवाया है। इन्हें पकड़ना आसान नहीं हो रहा था क्योंकि इन्होंने सारे फर्जी सर्टिफिकेट ऑफलाइन बनवाए हैं। इस मामले में राजस्थान मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार डॉक्टर राजेश शर्मा समेत 4 कर्मचारी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं।
5: राजस्थान के अस्पतालों में मरीज देखने वाले फर्जी डॉक्टरों के पकड़े जाने का सिलसिला जारी है। अब तक 35 से ज्यादा फर्जी डॉक्टर पकड़े जा चुके हैं, मगर अभी भी 80 से ज्यादा फर्जी डॉक्टर अस्पतालों में मरीज देख रहे हैं और मरीजों के जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कैमरा मनीष के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक।
6: उत्तराखंड में हुए एक और टनल एक्सीडेंट की यह खबर है। चमोली में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की टनल में कल एक हादसा हुआ। 7 मजदूर इस हादसे में अब तक मारे गए, 3 लापता हैं, 12 मजदूर घायल हैं। लापता मजदूरों की तलाश हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों उत्तराखंड में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए जो टनल्स बनाई जा रही हैं उनमें हादसे हो रहे हैं, और यह हादसे आखिर कब तक होते रहेंगे?
7: बार बार उत्तराखंड की सुरंगों में क्यों हो रहे हैं इतने बड़े हादसे?
3: विकास की राह में विनाश का इंतजाम कौन कर रहा है? क्या उत्तराखंड की नदियों में जरूरत से ज्यादा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं? उत्तराखंड के कच्चे पहाड़ों में बड़ी बड़ी सुरंगें खोदकर विनाश कौन ला रहा है? उत्तराखंड में एक और मौत की सुरंग बनी है चमोली जिले के पीपल कोटी की टीएचडीसी की सुरंग। तस्वीरें बता रही हैं कि सुरंग के अंदर इस वक्त क्या हालात हैं। पूरी स्थिति समझने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि यह हादसा कहां और कैसे हुआ। उत्तराखंड के चमोली जिले के पीपल कोटी में टीएचडीसी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहा है। यह प्रोजेक्ट अलकनंदा नदी पर बन रहा है जिसकी क्षमता होगी 444 मेगावाट। बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट का 80% काम पूरा हो चुका है। इस प्रोजेक्ट के तहत एक 65 मीटर ऊंचा डैम बन रहा है जिसमें दो सुरंगें होंगी। पहली है हेड रेस टनल यानी HRT जिसकी लंबाई है 13.4 किलोमीटर और दूसरी है टेल रेस टनल TRT जिसकी लंबाई है 3.04 किलोमीटर। गुरुवार को जो हादसा हुआ वो इसी TRT सुरंग में हुआ है। अब ये समझिए कि यह हादसा कैसे हुआ। इस इलाके में जमकर बारिश हो रही है, मॉनसून का सीजन है और आसमान से आफत बरस रही है। कई जगहों पर भूस्खलन और बादल फटने की घटनाएं भी हो रही हैं। इन हालात में भी इस टनल में काम चालू था। बताया जा रहा है कि गुरुवार को अचानक से सुरंग में 150 मीटर दूर तेज आवाज के साथ भारी भूस्खलन हुआ। मलबा, पत्थर और पानी तेज गति से टनल के अंदर घुस गए। उस वक्त वहां पर कुछ मजदूर काम कर रहे थे। इसी हादसे में कुछ मजदूर मलबे में दब गए और बाकी फंस गए। टनल में कई जगह से मलबा आने से ऑक्सीजन लेवल बेहद कम हो गया था। बताया जा रहा है कि टनल के अंदर मलबा 2 दिन से आ रहा था, लेकिन इसके बाद भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ने इस पर ध्यान नहीं दिया और काम चालू रखा। इसके बाद तो टनल में लगातार पानी भरता गया। हालांकि हादसे की सूचना मिलते ही राहत और बचाव दल मौके पर पहुंच गया था। ये तस्वीरें बता रही हैं कि अंदर क्या हालात थे। बताया गया कि सुरंग के अंदर कुल 22 मजदूर फंसे हुए थे। 7 मजदूरों की मौत हो गई है, 3 अभी भी फंसे हैं। 12 मजदूरों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।
7: गुरुवार शाम को 6:30 बजे के आसपास पीपल कोटी विष्णु घाट परियोजना की जो TSDC की ये टनल है, TRT टनल, इसके अंदर 1500-1600 मीटर के करीब में एक लूज जो है टनल के अंदर गिरा और उसके बाद एक बहुत जबरदस्त, यहाँ पे बताया जा रहा है, हवा का झोंका और पानी का बहुत बड़ा रिसाव हुआ और उसने कुछ लोगों को तो अंदर की ओर धकेला और कुछ लोगों को बाहर की ओर धकेला। ऐसे में कुछ तो ठीक ठाक निकल चुके हैं लेकिन अभी तक 3 लोग लापता है। पता चला इस पूरे हादसे में 22 लोग यहाँ पे हताहत हुए थे, जो कुछ घायल है, कुछ 7 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। वहीं अभी राज्य आपदा प्रबंधन सचिव जो है विनोद कुमार सुमन, वो यहाँ पे निरीक्षण करके गए। उनका कहना है कि डीवाटरिंग करने का काम किया जा रहा है और जल्द से जल्द इस पानी को बाहर निकाला जाएगा ताकि जो 3 लोग हैं अंदर उनका रेस्क्यू हो नहीं पा रहा है, पानी भर जा रहा है। ऐसे में लगातार यहाँ पे ITBP की फोर्स है, वो लगातार आ रही है, जा रही है। जो टीमें हैं वो लगातार लगी हैं, कभी मशीनें भेजी जा रही हैं, कभी ड्रम भेजे जा रहे हैं, अलग अलग तरीके से यहाँ पे इस समय जो रेस्क्यू और बचाव के काम चल रहे हैं वो करवाए जा रहे हैं।
3: लेकिन समस्या ये है कि टनल के अंदर लगातार पानी भरता जा रहा है, इसी वजह से रेस्क्यू टीमों को दिक्कतें आ रही हैं। जैसे ही कल रात ये रेस्क्यू टीमें पहुंची तो टनल में बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ था। तुरंत इन्होंने टेम्पररी नाव बना दी, नीचे बड़े बड़े ड्रम बांधे और एक अस्थायी नाव का निर्माण किया और उसके बाद देखिए कैसे इन जुगाड़ की नावों से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया।
8: कल तक काफी लोगों को निकाला हम लोगों ने, जिसमें से 12 लोग को सुरक्षित बचाया गया है, 7 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है, 3 लोग अभी लापता चल रहे हैं जिनको खोजने का काम चल रहा है। पानी का लेवल ज़्यादा होने से थोड़ी सी समस्या आ रही है हम लोगों को। डीवाटरिंग पंप अभी 5 काम कर रहे हैं, तो डीवाटरिंग पंप की संख्या को बढ़ाने के लिए कहा गया है TSDC से, वो पंप मंगा रहे हैं NTPC के माध्यम से। और बाकी हमने कहा जहाँ भी पंप जितने भी अवेलेबल हैं पंपों की संख्या बढ़ाइए, क्योंकि अभी जिस गति से पानी हम निकाल रहे हैं लगभग उसी गति से पानी ऊपर से आ रहा है, इसके कारण जो है थोड़ी समस्या हो रही है। अभी मैनुअल तरीके से हम राहत बचाव कर्मी दल जाके ढूंढ कर रहे हैं, खोजबीन कर रहे हैं, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल पाई है अभी तक।
3: अभी सबसे पहली प्राथमिकता तीन लापता लोगों को खोजने की है, लेकिन टनल के अंदर बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि करीब एक किलोमीटर के इलाके में पानी भरा है और कहीं कहीं तो पानी 5 फीट तक गहरा है। पानी में बहुत सी गाद और मलबा है, कीचड़ है, इसी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में समस्याएं हैं। पहली कोशिश यही है कि टनल के अंदर से पानी को किसी तरीके से बाहर निकाला जाए।
9: कठिनाई जैसे मैं बता रहा हूं आपको कि पानी का एरिया जो है बहुत लंबा है, लगभग 1 किलोमीटर एरिया है जो पानी से भरा हुआ है और उसमें हाइट जो है 3-4 फीट तक जा रही है, कहीं कहीं पर 5 फीट भी है। तो उस पर्टिकुलर एरिया में 1 किलोमीटर लंबा प्लस 3-4 फीट गहरा पानी है, और वो केवल पानी नहीं है, वो स्लजी वाटर है। तो उसमें जो सर्च करने के लिए दिक्कत आ रही है, बट हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा ट्रूप्स को यूज़ करके और मैक्सिमम एरिया जो है मैनुअली सर्च करके क्लियर कर रहे हैं।
10: क्या लग रहा है कब तक ये हो पाएगा या फिर पानी कैसे भर रहा है इतना ज़्यादा पानी?
9: जी देखिए, मोस्ट फेवरेबल कंडीशन यही होगी जब पानी कम होगा। तो पानी कम करने के लिए जैसा मैंने बताया, संस्थान ने जो मोटर्स लगाई हैं वो सही कार्रवाई करें, बट हो क्या रहा है कि जो इसका दूसरा सोर्स है जहाँ से ये कोलैप्स हुआ है वहाँ से पानी कंटिन्यूसली आ रहा है, तो जितना हम निकाल रहे हैं उतना ही आ रहा है, तो ये कंडीशन थोड़ा सा हमारे लिए डाइसी हो रही है इस वजह से।
10: कितनी टीम मेंबर एनडीआरएफ यहाँ पर लगी हुई है?
9: देखिए एनडीआरएफ की यहाँ पर 3 टीमें वर्तमान में आ रखी हैं और तीनों टीमें जो है रोटेट होकर अपनी कार्रवाइयां कर रही हैं।
3: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी घटनास्थल पर पहुंचे और टनल के अंदर जाकर रेस्क्यू का काम उन्होंने देखा। घायलों से मुलाकात की, अब वो कह रहे हैं कि राज्य की सुरंगों की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि सुरंगों में लगातार हादसों को कैसे टाला जाए।
11: एक और निवेदन, टनल दुर्घटनाएं हमेशा हो रही, सिलक्यारा हुई, ये हुई, इससे पहले टनल की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार क्या संबंधित एजेंसी को कोई निर्देश देगी?
12: बिल्कुल निर्देश देंगे, और हमारे लिए जो भी कार्मिक जो भी काम करने वाले हैं उनकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। बिना सुरक्षा के, जब तक पूरी सुरक्षा के प्रबंध नहीं हो जाते तब तक इन कामों को भी आगे नहीं बढ़ाएंगे।
3: गढ़वाल से बीजेपी के सांसद अनिल बलूनी भी पहुंचे, टनल के अंदर गए, पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन देखा। सबसे ज्यादा समस्या यही आ रही है कि टनल में लगातार पानी भर रहा है, बड़े बड़े पंप लगाकर पानी को निकाला तो जा रहा है, लेकिन जितना पानी निकलता है उतना फिर से सुरंग में आ जा रहा है।
13: वाकई बड़ी मुश्किल परिस्थिति में अंदर काम हो रहा है, और आप सब लोग जानते हैं अभी ऑपरेशन जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है, और हमारे NDRF और SDRF के जवान और बाकी जो हमारा स्थानीय प्रशासन है सब मिलकर अंदर, क्योंकि काफ़ी पानी भरा हुआ है और काफ़ी मुश्किल परिस्थितियाँ हैं, उन सब में काम कर रहा है। अभी बताया जाता है कि 3 लोग मिसिंग की जानकारी जो है वो सब है, हम अंदर देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति मिल सके हमें, और सारे लोग बातचीत कर रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं। अभी प्रशासन पूरी ताकत से लगा है, आगे पूरे आगे तक जाने की तैयारी में है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में आगे जाके कुछ अच्छी सूचना भी हम लोगों को मिल सके तो अच्छी बात है।
3: इन हालात में सबसे ज्यादा समस्या मौसम को लेकर भी है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, बारिश रुकी नहीं रही। ऐसे में डर ये भी है कि कहीं और ज्यादा भूस्खलन न हो जाए। अभी तो पहली प्राथमिकता उन 3 लापता मजदूरों को खोजने की है।
14: आजा, आजा, आजा, आजा।
3: कमल नयन सिलोड़ी, चमोली, आज तक।
15: छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: जश्न आजादी के रंग में रंगा हिंदुस्तान, सुबह लाल किले की प्राचीर से लगातार 13वीं बार तिरंगा फहराएंगे प्रधानमंत्री मोदी, देश को करेंगे संबोधित। 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का राष्ट्र के नाम संदेश, बोली युवा आबादी सबसे मूल्यवान संपत्ति, विकसित भारत के निर्माण के लिए आगे बढ़ने का आह्वान। नहीं थम रहा पीएम मोदी पर राहुल के बयान पर हंगामा, राजनाथ सिंह ने लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा बताया, विदेश मंत्रालय ने कहा आदर के साथ रखो बात। विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में जुबानी युद्ध तेज, सीएम योगी बोले सिर्फ सत्ता के लिए पहले की सरकार है, अखिलेश बोले यूपी में अब तक की सबसे भ्रष्ट योगी सरकार। और कॉकरोच विवाद पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत का बड़ा बयान, बोले मेरी बातों का गलत इरादे से गलत इस्तेमाल, युवाओं को सूर्यकांत ने गुमराह करने की कोशिश बताया। आज हमारा देश स्वतंत्रता का 80वां उत्सव मना रहा है। 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने से पहले लोकतांत्रिक तरीके से जन अल्फा ने अपनी आवाज बुलंद कर दी। जन अल्फा जिनके हाथों की तनी मुट्ठी नारे लोकतंत्र की मजबूती का संदेश देते हैं, सरकारी व्यवस्था को इस बात का एहसास कराते हैं कि उनकी आवाज अनसुनी आप नहीं कर सकते।
1: 80वें स्वतंत्रता दिवस से पहले गूंजते नारे लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। ২০২৬ में आजादी का जश्न मनाते भारत के बच्चे हक मांगने से नहीं डरते हैं।
2: क्या हो गया टीचर है कोई यहाँ पे? पहला काम करो, सुनो तुरंत साइड में आओ, अंदर चलो, बात करते हैं, ट्रैफिक खोलो, ठीक है, तुरंत मेरे साथ आओ, चलो।
1: 15 अगस्त 2026 ऐतिहासिक है, जहां बच्चे अधिकारियों की आंख से आंख मिलाकर अधिकार मांगते हैं।
3: 4 साल हो गई सीनियर स्कूल बने हुए, मात्र 5 टीचर है
4: जो भी थर्ड ग्रेड के,
3: सुनवाई नहीं की गई। 4 साल हो गए खाते में, कलेक्टर को मैंने खुद अपने लिखित में कागज दिया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।
4: सही बात,
3: अगर आपके बन जाते तभी आप यही सुविधा रखते क्या?
1: एक तरफ लगता है कि आजादी के 80 साल बाद भी स्कूल व्यवस्था राज्यों में ढुलमुल है, दूसरी तरफ अच्छा लगता है कि लोकतांत्रिक रूप से विरोध करना बच्चे जानते हैं।
5: हमारे खाने के लिए थाने में सुड़ी निकलती है, मेढक निकलता है, छिपकली निकलती है, प्रिंसिपल पास लेकर जाओ, इनका ये होता है कि इस मौसम में निकलता है मैं क्या कर सकता हूँ। दूसरी बात, तुमने खुद डाला होगा और कहे भी दें तो कहते हैं दूसरा रखवा लो, ऐसा कि हम लोग मतलब जानवर से बेबत्तर है ये करते हैं हमारे लिए।
1: बच्चों के नारे इस बात का एहसास कराते हैं कि आजादी का असली मतलब अपनी आवाज को बुलंद करना है।
6: हम हमारा अधिकार मांगते
3: हैं, चोर चोर के चक्कर में
1: स्वतंत्रता का 80वां महोत्सव खास है क्योंकि अब की जेन जी और जेन अल्फा की बुलंद आवाज है।
7: कल जो आपने प्रदर्शन किया था उसमें कितने रुपए किराया लिया जा रहा था पहले आपसे?
8: पहले 25।
7: और आज कितने रुपए किराया लिया जा रहा है?
8: 10 रुपए।
7: आपसे भी 10 रुपए? सभी का किराया मान के चलने तो कम हुआ, सभी से ठीक है।
1: लाल किले पर लहराता तिरंगा, वो पल जब देश हमेशा गर्व से भर जाता है, याद करता है स्वतंत्रता के सेनानियों को। भारत और भारतीयता के विश्वास से उत्प्रोत हर नागरिक के लिए आजादी का दिन बहुत विशेष महत्व रखता है, लेकिन इस बार ये उत्सव और भी विशेष है, जहां भारत के भविष्य की बुलंद होती आवाजें, लोकतांत्रिक रूप से रखी जाती मांगे, अड़ने की जगह बिना डरे हक के लिए लड़ने वाली आदत इस भरोसे को मजबूत करती है कि भारत का बच्चा बच्चा अपने अधिकार और कर्तव्य दोनों को समझ रहा है। आज इसीलिए एक एक करके हम आपको ऐसी तस्वीरों से खबरदार करेंगे। अधिकार और कर्तव्य को समझते भारत के जैन अल्फा की पहली गवाही लखनऊ से आई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मोहान रोड पर जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय है। प्रदेश के समाज कल्याण विभाग के अधीन आने वाले इस स्कूल में छात्र संभव है कि देश में जंतर मंतर आंदोलन से शुरू हुए प्रदर्शन के बाद अपना हक मांगने वाली लकीर पर चलते हुए आगे बढ़े। जहां हॉस्टल में खराब खाना, खाने में बार बार कीड़ा निकलना, बीमार होने पर इलाज की व्यवस्था न होना और शिक्षकों की कमी को लेकर छात्रों का दावा है कि स्कूल प्रशासन ने उनकी शिकायत पर कान नहीं दिया तो ये सड़क जाम करने निकल पड़े। लखनऊ में छात्रों की तरफ से सड़क जाम की खबर आते ही पहले जहां छात्रों को हटाने के लिए पुलिस दिखती रही थी, वहां अब की बार शायद पहली बार ऐसा देखा सुना जा रहा है जब कोई मंत्री तुरंत समस्या सुनने पहुंच गया। जैसे असीम अरुण उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री हैं, प्रदर्शन करते छात्रों के बीच पहुंचकर सीधे कहते हैं चलो तुम्हारी बातें सुनते हैं, शिकायत दूर करते हैं,
2: अंदर चलो बात करते हैं, ट्रैफिक खोलो, ठीक है, तुरंत मेरे साथ आओ।
1: इसके बाद तुरंत मंत्री असीम अरुण के साथ छात्र भीतर आते हैं। यहीं आज हम आपको दिखा रहे हैं कि छात्र संविधान से मिले अधिकार और कर्तव्य दोनों को समझ रहे हैं, जो अपने अधिकार के लिए प्रदर्शन करने का अधिकार भी जानते हैं और मंत्री की तरफ से समस्या सुने जाने की बात आते ही तुरंत रास्ता भी छोड़ देते हैं और फिर समाधान की बात आती है।
2: जो कमियां हैं उनको दूर काफी हद तक किया हम लोग ने, लेकिन मैं स्वयं अभी संतुष्ट नहीं हूँ। हम लोग को कमियों को और दूर करना है। पहली चीज जितने स्टाफ सारे हमारे क्वार्टर बन गए, हमारे ट्रांजिट हॉस्पिटल बन गए, टीचर्स 24 घंटे यहाँ पे रहेंगे, कोई फार्मासिस्ट भी और भी नॉन टीचिंग स्टाफ जिसके लिए आवास अवेलेबल है। ये आवासीय विद्यालय है, केवल बच्चों का नहीं स्टाफ का, और जिसको रहने में समस्या आ रही है वो अपना इस्तीफा देते घर।
1: लोकतंत्र की यही ताकत है जो इस स्वतंत्रता दिवस को विशेष बनाती है। जहाँ स्कूली शिक्षा का बुनियादी ढांचा लचर है उसे मजबूत करने की मांग खुद बच्चे कर रहे हैं। अधिकार और कर्तव्य को समझते भारत के जैन अल्फा की दूसरी गवाही भी उत्तर प्रदेश से आई है। इसके लिए अब कन्नौज चलते हैं।
4: कई दिनों से समस्याएं थी जिनको लेकर हम झेल रहे थे, सह रहे थे, लेकिन अब कुछ ज्यादा ही ओवर हो गया था तो उसके लिए हमने ये किया, क्योंकि परेशान हो चुके थे और एक नहीं, क्लास 6 के जूनियर से लेकर क्लास 12 के बच्चे सभी परेशान हैं।
1: कन्नौज के जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले ये वो जैन अल्फा हैं जो अपनी समस्याओं के निदान के लिए सड़क पर नहीं उतरे बल्कि खुद को ही एक कमरे में बंद कर लिया। इनका वीडियो वायरल हुआ, मीडिया पहुंचा। इन छात्रों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए मुंह ढक लिया, ये इनका अधिकार है। लेकिन अपने दूसरे अधिकारों के लिए इन्होंने खुद को क्लास में लॉक करने का ऐसा तरीका लगाया कि प्रशासन को जागना पड़ा। पहले शिकायत सुनिए फिर समाधान देने पहुंचे जिलाधिकारी को।
4: मैथ में खाने की सही व्यवस्था नहीं होती, हाउस में लाते हैं। खाने की व्यवस्था इसलिए नहीं क्योंकि 550 बच्चे हैं वहाँ पर, ना तो फैन लगा है ना फैन, वैसे क्या नाम गैस फैन नहीं लगे हैं, तो सफोकेशन होती है। खाते हैं वहाँ पर, बच्चे भी नहीं बैठ पाते, 550 बच्चे हैं, इतनी जगह नहीं है, तो हम लोग हाउस में ले आते हैं तो ये कहते हैं कि तुम लेटरिन में खाते हो, उसी का सूंघते हो, उसी में खाते हो, उसी में बैठ कर खाते हो, गंदे गंदे सब खाना, ऐसा कच्चे चावल, चावल रखे हैं हम दिखाते हैं, चावल कच्चे बिल्कुल जो गले से नीचे ना होते। हम लोग करीब 100 से 100 बच्चे हैं।
2: कितनी देर से बंद है
4: सर? हम कल 4 बजे
2: से,
4: कल शाम से हम लोगों ने खाना नहीं खाया।
2: स्कूल प्रशासन की सूचना दी थी इस बात की आप लोग बंद है अंदर?
4: सूचना आए विद्यालय, हमारी डिमांड है कि डीएम सर आए और हमसे बात करें आकर।
8: इस विद्यालय में बच्चों को कुछ अपनी कठिनाइयां थीं जिसमें हम लोग आज गए और उनके बीच वार्ता की। जहां वो रह रहे थे उनके हॉस्टल में, उन्हीं के बीच में हम लोग बैठे। सभी बच्चे अनुशासित हैं, अच्छे बच्चे हैं और मेरिट में ये लोग सेलेक्ट होकर के यहाँ आए हैं। विधिवत रूप से उनको सुना गया है, जो उनकी कठिनाइयां थीं उनके बारे में हम लोग दूर करेंगे उनको, और सरकार हर तरीके से विद्यार्थियों के साथ है और मेधावी विद्यार्थियों के साथ भी है। किसी प्रकार की कोई कठिनाई इन लोगों को नहीं होने देंगे।
0: कहीं नारा लग रहा है कि कलेक्टर साहब का आना हो, को आना होगा, कहीं नारे लगाए जाते हैं, हमारी बातें आपको सुननी होंगी। ये हमारे वो बच्चे हैं जिन्हें नागरिक शास्त्र का पाठ पढ़ाया जाता है, लेकिन ये पहली बार उन पाठों का प्रयोग भी कर रहे हैं। ये हमारे वो बच्चे हैं जिन्होंने आंदोलन के बारे में पढ़ा है, लेकिन पहली बार ये बच्चे खुद आंदोलन कर रहे हैं। अब दो चीजों की जरूरत है। पहले, ऐसे हर आंदोलन में बच्चों की मांगें सुनी जाएं, उनकी बातों को पूरा किया जाए, और दूसरी जरूरत ये कि सरकारें देखें कि आखिर क्यों अब भी हमारे बच्चों के स्कूलों की स्थिति खराब है।
1: अधिकार और कर्तव्य को समझते भारत के जेन अल्फा की तीसरी गवाही राजस्थान के अलवर से आई है।
3: 4 साल हो गए सीनियर स्कूल बने हुए, मात्र 5 टीचर है।
9: जो भी थर्ड ग्रेड के
1: अधिकारियों के सामने मर्दानी बनकर अपने हक को बुलंद करती एक छात्रा बोलती, और तभी
3: मजाक बना रखा है स्कूल को, ना इसमें बैठने लायक एक भी कमरा है।
1: ये बच्चे चीख नहीं रहे, बस उन अधिकारियों के कानों में सामने खड़े होकर अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं, जो एसी कमरों से अब तक बहुत कम निकलते रहे, जो फाइलों में ऑल इज वेल लिखते रहे, उन्हें अब सुनना भी पड़ रहा है, बदलाव करना भी पड़ रहा है।

0: पुलिस की गाड़ी बात होती है और पुलिस की गाड़ी आ चुकी है और
1: जिस मानसून सत्र में हंगामे की वजह से संसद का कामकाज भूल गया, वहाँ इस मानसून में राजस्थान के अलवर में होता यह हंगामा कामकाज धुलने का नहीं, कामकाज को सुधारने का। ये बच्चे अलवर जिले के थाना गाजी में जोधावास गांव की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के हैं, जो कुछ बड़ा या अलग नहीं मांग रहे, बस ये चाहते हैं स्कूल दिया है तो सुरक्षित क्लासरूम हो, टीचर हो, स्कूल आने का रास्ता साफ हो, सड़क बने।
2: हमारी स्कूल को सीनियर हुए 4 साल हो गई, मात्र 5 टीचर है, जो थर्ड ग्रेड के जो बड़ी सीनियर क्लासों को पढ़ाते हैं, सेकंड ग्रेड में बस मात्र 1 टीचर है और जिसको भी कुछ भी होगा जो 400 तक है और लेक्चरर
3: हमारे विद्यालय में विद्यार्थियों को पहुंचने के लिए अच्छा रास्ता है, फुले हमारे जो सहपाठी है वो नदी क्रॉस करके आते हैं, तो हम चाहते हैं कि उनको नदी क्रॉस करने के लिए पुलिया का निर्माण किया जाए।
1: प्रदर्शन के बाद अधिकारियों ने पहले यहां तुरंत 7 टीचर और लगाकर शिक्षकों की कमी को पूरा किया, लेकिन इसके बाद भी धरना खत्म नहीं होता।
4: सभी से वार्ता की गई, 4 घंटे वो रुके, तो पहले तो ये है कि वो एक सीनियर स्कूल है, 6 अध्यापक थे, तो उसकी वजह 7 अध्यापक वहाँ और लगा दिए मौके पर ही, और 13 अध्यापक अब वहाँ 170 बच्चों के ऊपर हो गए।
1: बच्चे पूरा हिसाब चाहते हैं, इनके स्कूल के क्लासरूम की हालत देखिए, जहाँ पढ़ना खतरे से खाली नहीं, यहाँ बच्चे बाल बाल बचते हैं जब एक क्लासरूम में हादसा हो जाता है, इसीलिए धरना देना जारी रखते हैं। अधिकार और कर्तव्य को समझते भारत के जैन अल्फा की चौथी गवाही मध्य प्रदेश के उज्जैन से आई। छात्राओं के नारों की गूंज उज्जैन में गूंज रही, 700 से ज्यादा बच्चियां उज्जैन के सर्राफा कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हैं, जो अभी महाकाल मंदिर के पास जयसिंहपुरा में चलता है। अब इनके स्कूल को संदीपन विद्यालय में मर्ज किया जा रहा है, दलील ये कि स्कूलों की गुणवत्ता और शिक्षा में सुधार लाया जाएगा। छात्राओं का कहना है कि अब जिस स्कूल के साथ मर्ज किया जा रहा है वहाँ की दूरी ज्यादा है, रास्ते में इन्हें दिक्कत होगी, इसीलिए कलेक्टर दफ्तर के बाहर आकर धरना दे दिया। कलेक्टर शिकायत सुनने आए नहीं, जिला शिक्षा अधिकारी को भेज दिया।
5: स्कूल जयसिंहपुरा में और हमारा स्कूल शिफ्ट हो रहा है, हम इतनी दूर नहीं जा सकते, हमारे मम्मी पापा हमको परमिशन नहीं देंगे, वो बहुत दूर है और उधर का इलाका भी बहुत मतलब बहुत खराब है, हम कैसे जाएंगे।
6: लड़कियां गांव से आती है 10-10 किलोमीटर दूर से यहाँ तक, और छोटे और इतनी दूर से अगर वो दाऊद खेड़ी जाएंगे तो कब पहुंचेंगी, रात को 10 बजे, अगर बीच में अगर कोई दुर्घटना हो गई उनके साथ तो जिम्मेदार क्या, कलेक्टर रहेगा या कोई और रहेगा।
7: हमारे मम्मी पापा ने बोल दिया अगर सराफा स्कूल में दावत खेड़ी जाएगा तो हमें पढ़ाएंगे ही नहीं वो बिल्कुल भी।
8: अभी एकदम निर्णय नहीं होगा कि वहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, शासन के भी निर्देश है कि जिला स्तरीय मॉनिटरिंग समिति निर्णय ले, तो जिला स्तरीय मॉनिटरिंग समिति की बैठक शीघ्र होने वाली है, जिसमें पालकों के प्रतिनिधि को सूचित किया जाएगा, वो भी आएंगे और वो भी अपना पक्ष रखेंगे, उसके बाद जो निर्णय होगा वो मॉनिटरिंग समिति लेगी।
1: देश के तमाम राज्यों में होते ये प्रदर्शन इस बात को साबित करते हैं, सरकारों की तमाम कोशिश के बाद व्यवस्था बुनियादी जरूरतों को स्कूली ढांचे में पूरा करने में नाकाम है, जिसकी वजह से अब बच्चों को मैदान में उतरना पड़ रहा है।
9: राजस्थान में भर्तियों का भ्रष्टाचार खुला, जहां योग्य किनारे हो जाएं, अयोग्य जनता की सेहत से खिलवाड़ करने लगे, फर्जी डिग्री लगाकर डॉक्टर बनकर मरीजों का इलाज करने लगे, 3 डॉक्टर गिरफ्तार किए गए, 20 से 30 लाख रुपए में फर्जी डिग्री इन्होंने बनवाई थी। राजस्थान एसओजी इस पूरे मामले की तह तक पहुंचने में जुटी है।

0: चेहरा छुपा रहे ये तीनों राजस्थान के वो फर्जी डॉक्टर हैं जो कई वर्षों से मरीजों की जान से खिलवाड़ करते रहे, दवाइयां उनके लिए लिखते रहे। आशीष शर्मा फर्जी डिग्री वाला डॉक्टर, करौली के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ये मरीज देखता था।
1: आदेश दिनांक 18/12/2023 के तहत हमारे पास एक लिस्ट आई थी, उस लिस्ट में डॉक्टर आशीष का सीरियल नंबर 11 पर है। उसकी रैंक एग्जाम में FMG इंट्रेंसिप रैंक 245 थी।
0: नरेश रौलनिया फर्जी डिग्री वाला डॉक्टर, उदयपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज से इंटर्नशिप करके कोटपुतली के पल्स अस्पताल में डॉक्टर बन गया। जयपुर के मुरलीपुरा में ये श्रीनारायण अस्पताल चला रहा डॉक्टर राजेंद्र यादव है, जो चीन से 2006 से 2012 के बीच MBBS करने का सर्टिफिकेट लेकर आया। साल 2012 से लेकर 8 बार इसने राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड की FMG स्क्रीनिंग परीक्षा देने की कोशिश की, पर एक बार भी पास नहीं हो पाया। फिर इसने खुद ही नकली सर्टिफिकेट छपवा कर 29 लाख में राजस्थान मेडिकल काउंसिल से मरीज देखने का लाइसेंस हासिल कर लिया। SOG की गिरफ्त में आए राजेंद्र यादव के अस्पताल में जब आज तक संवाददाता खबरदार करने पहुंचते हैं, तो यहां अस्पताल को और आगे बढ़ाने का काम चलता मिलता है। डॉक्टर की गिरफ्तारी के बाद भी अस्पताल खुला हुआ है। फर्जी डॉक्टर और उसकी डेंटिस्ट पत्नी 6 साल से यहां मरीज देख रहे थे।
2: कब उनको अरेस्ट की पुलिस ने?
3: 4 रोज पहले।
2: 4 रोज पहले? और पता था आपको कि उनके पास नकली डिग्री है?
3: नहीं,
2: किसी को पता नहीं था?
3: नहीं।
2: ये अस्पताल उन्हीं का है?
3: हाँ।
0: डॉक्टर की फर्जी डिग्री वाले आशीष शर्मा ने कजाकिस्तान से साल 2021 में MBBS करने का सर्टिफिकेट बनवाया था। भारत में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड की FMG स्क्रीनिंग परीक्षा 3 बार देने के बावजूद वो पास नहीं हो सका। इसके बाद आरोपी ने शुभम गुर्जर के जरिए 25 लाख रुपए देकर FMG परीक्षा का फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया। शुभम गुर्जर भी पहले 25 लाख में फर्जी सर्टिफिकेट बनवाता था। हैरत की बात है कि दोनों ही राजस्थान सरकार के करौली मेडिकल कॉलेज में मरीज देख रहे थे। दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं।
4: आदमी जितने पैसे करोड़ों रुपए खर्च करके वो बाहर अपनी MBBS करता था, और यहाँ पे जो किंग पिंस हम लोगों ने जिनको अरेस्ट किया है उनके इंटरोगेशन से 25 से लेके 35 लाख 40 लाख तक ये अमाउंट लेते थे सर्टिफिकेट अवेलेबल कराने का।
0: नरेश तो इनसे भी आगे निकला। तजाकिस्तान से फर्जी डॉक्टरी की डिग्री हासिल कर पल्स हॉस्पिटल कोटपुतली के इमरजेंसी वार्ड में काम कर रहा था। वो बिना FMG स्क्रीनिंग परीक्षा पास किए और बिना राजस्थान मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रेशन के मरीजों का इलाज करता रहा।
4: फेक FMG एग्जाम के जो सर्टिफिकेट वाला जो स्कैंडल हम लोगों ने खोला है, उसमें करीब 30 के करीब हम डॉक्टर्स और अनएसोसिएट्स को इसमें अरेस्ट कर चुके हैं, और हमारे पास में करीब 80-90 और अधिक इसके अलावा भी कुछ नाम हमारे पास में चल रहे हैं जो इस सारे सिस्टम में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहे हैं।
0: राजस्थान SOG के मुताबिक इस मामले में अब तक 100 से अधिक फर्जी डॉक्टर की पहचान की जा चुकी है, जिन्होंने कथित तौर पर फर्जी स्क्रीनिंग प्रमाण पत्र तैयार करवाया है। इन्हें पकड़ना आसान नहीं हो रहा था क्योंकि इन्होंने सारे फर्जी सर्टिफिकेट ऑफलाइन बनवाए हैं। इस मामले में राजस्थान मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार डॉक्टर राजेश शर्मा समेत 4 कर्मचारी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं।
5: राजस्थान के अस्पतालों में मरीज देखने वाले फर्जी डॉक्टरों के पकड़े जाने का सिलसिला जारी है। अब तक 35 से ज्यादा फर्जी डॉक्टर पकड़े जा चुके हैं, मगर अभी भी 80 से ज्यादा फर्जी डॉक्टर अस्पतालों में मरीज देख रहे हैं और मरीजों के जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कैमरा मनीष के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक।
6: पानी के लिए तड़पता पाकिस्तान बार बार भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है। अब पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने सिंधु जल समझौते को लेकर धमकी दी है कि अगर पाकिस्तान के हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं हुआ, अगर इसे रोकने या कम करने की कोशिश हुई तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। शरीफ ने कहा, पानी की हर बूंद पाकिस्तान के लिए रेड लाइन है। शहबाज की धमकी के बाद लश्कर आतंकी की गीदड़ भभकी भी दे रहे हैं।
7: पानी पर पाकिस्तान की फिर घुड़की, शहबाज शरीफ की गीदड़ भभकी।
8: पाकिस्तान के पानी की एक एक बूंद हमारी रेड लाइन है। भारत براہ راست پر نہ آیا تو اسے براہ راست جواب دیا جائے گا.
7: پانی کے لیے پاکستان بوکھلایا, سندھو سمجھوتے پر تل بلایا. بوند بوند پانی کے لیے ترسے گا پاکستان, مودی کا میسج کلیئر ہے.
3: طے کر لیا ہے خون اور پانی ایک ساتھ نہیں بہے.
7: حافظ سعید, منیر شہباز, بلاول مریم سب چیختے رہ جائیں گے,
9: پاکستان کی ایک بوند بھی تم پاکستان سے چھین نہیں سکتے.
10: اس ملک کے عوام میں اتنا طاقت ہے جو آپ کی چھینک گیا ہے وہ واپس حاصل بھی کر سکتے.
11: اگر تو پانی بند کرے گا انشاءاللہ ہم تیری سانس بند کریں گے, ان دریاؤں میں پھر خون بہے گا.
12: ہندوستان کے حق کا جو پانی ہے اس پر ادھکار صرف اور صرف ہندوستان کا ہے.
7: بھارت کا پروجیکٹ سندھو ندی, پاکستان پر پھوٹے گا واٹر بم. اسے کہتے ہیں مرے میں دو لات اور لگانا. پاکستان نے اپنے پیروں پر خود کلہاڑی ماری. نہ پاکستان پہلگام میں آتنکی حملہ کرواتا اور نہ اسے

0: रहे हैं, तो इससे ये साबित हो जाता है कि पाकिस्तान कैसे पानी के लिए तड़प रहा है, तरस रहा है। सिंधु जल समझौता सस्पेंड किए जाने से तिलमिलाए शहबाज ने कहा है कि पानी की एक एक बूंद पाकिस्तान की रेड लाइन है। शहबाज ने खोखली धमकी दी कि अगर भारत होश में नहीं आया तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा।
1: जंग में शिकस्त के बाद भारत ने सिंध तास मुआहदे को यकतरफा और गैर कानूनी तौर पर मुअत्तल करके खुद को अमन का दुश्मन साबित किया है। मैं वाशगाफ अल्फाज में ऐलान करता हूं कि पाकिस्तान के पानी की एक एक बूंद हमारी रेड लाइन है। भारत राह रास्त पर ना आया तो उसे बराह रास्त जवाब दिया जाएगा।
0: पाकिस्तान की सरकार और आतंक के आकाओं में किस तरह की साठ गांठ और गठजोड़ है, एक बार फिर से ये साबित हो रहा है। सिद्धू जल समझौता रद्द होने पर शहबाज शरीफ ने धमकी दी तो लश्कर ए तैयबा के कमांडर सैफुल्ला खालिद कसूरी ने भी गीदर धमकी दी।
2: इसी तरह पाकिस्तान को आलमी इस्तेमारी निशानों और सूती शिकंजों से आजाद करवाना भी पाकिस्तान की तकमील के लिए इंशाल्लाह लाजिम है। इनसे भी जान छुड़वाएंगे, सूती कर्जे की लानत से अपनी कौम को निकालेंगे, पाकिस्तान का केस लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, कुर्बानियां पेश करेंगे, कश्मीर भी लेंगे, तिबरापुर भी लेंगे, पाकिस्तान के पानियों का इंशाल्लाह कतरा कतरा भी लेंगे और यूं अपनी आजादी की तकबील इंशाल्लाह करेंगे।
0: अभी हाल ही में सैफुल्ला कसूरी को भारत सरकार ने घोषित आतंकियों की लिस्ट में शामिल किया है। ये पहली बार नहीं है जब से भारत ने पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सिंधु नदी का पानी रोका है। पाकिस्तान से लगातार गीदड़ भत्तियां आ रही हैं। इससे पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान पानी के लिए भारत के खिलाफ जंग भी छेड़ सकता है।
3: बगलियार में उन्होंने अपनी मर्जी का डिजाइन किया, बाकी जगह वो तमाम अपने वो प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। दे आर गोइंग ऑन विद कंस्ट्रक्शन।
4: लेट मी एक्सप्लेन, मैं पिछले एक दो साल तीन साल की बात नहीं कर सकता, लेकिन मेरा ख्याल है कोई बड़ी चेंज नहीं आई। अब तक जितने भी किशनगंगा वगैरह जितने भी प्रोजेक्ट सारे उस सारे के सारे पाकिस्तान ने मॉनिटर किए हुए हैं, बल्कि जाकर फिजिकली इंस्पेक्ट किए।
3: अगर मैं आपसे बड़ा सिंपल पूछूं,
4: और ये IWT की उसमें, लेकिन पिछले एक साल में जब जंग हुई है उसके बाद जब उन्होंने धमकी चमकी लगाई हैं या अब धमकियों को थोड़ा बहुत जो है वो लिबास में पहना रहे हैं, तो उसमें जो है हो सकता है एक साल में कोई ऐसी सिचुएशन हुई, मेरे पास लेटेस्ट सिचुएशन नहीं है, लेकिन उससे पहले तमाम तर जो है इवन मैं जैसे आपको बता रहा था कि हाइट है रिजर्वॉयर का पानी कितना।
3: अगर हमें ये लगता है कि इंडिया उस मुकाम पे या चल पड़ा है उस सफर पे सीरियसली, या उस मुकाम की तरफ मीनिंगफुल उसकी अलार्मिंग स्पीड से काम चल रहा है, तो क्या पाकिस्तान इंडिया से इस पे जंग कर सकता है?
4: द मोमेंट वी फील दैट आवर नेशनल सिक्योरिटी, व्हाट इज पार्ट ऑफ आवर नेशनल सिक्योरिटी इज बीइंग थ्रेटन्ड, वी विल गो टू वॉर अगेंस्ट इंडिया, डेफिनेटली।
3: ठीक है,
4: किसी को शक नहीं होना चाहिए।
0: यही नहीं, पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए सिंधु नदी पर भी पीएम मोदी ने एक मास्टर प्लान तैयार किया है। जी हाँ, सिंधु नदी को व्यास नदी से जोड़ने वाली 14 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण किया जाएगा। ये सुरंग जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में बहुउद्देशीय परियोजना से भी जुड़ी होगी, ताकि रावी की सहायक नदी उज से व्यास बेसिन तक पानी पहुंचाया जा सके। इस परियोजना से जम्मू और कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब जैसे राज्यों को भी लाभ होगा। चिनाब नदी को रावी व्यास सतलुज प्रणाली से जोड़ने के लिए एक नहर का निर्माण भी किया जाएगा। यदि पाकिस्तान पर वाटर बम अब फूट चुका है, पाकिस्तान जानता है कि वो पूरी तरह से सिंधु नदी के पानी पर निर्भर है, इसलिए वो बार बार वर्ल्ड बैंक का हवाला देता आ रहा है और पानी के लिए जंग की बात भी कर रहा है।
5: आज से बहुत साल पहले जो डॉक्टर इस्माइल थे वाइस प्रेसिडेंट वर्ल्ड बैंक के, उन्होंने कहा था कि 20वीं सदी की जंगें तो तेल के ऊपर होती थी, लेकिन 21वीं सदी की जंगें जो हैं वो पानी से।
6: सिंधु और झेलम जैसी नदियों पर विवाद के लिए पंचायत किसको दी? वर्ल्ड बैंक को दी। वर्ल्ड बैंक फैसला करे क्या करना है, नदी हमारी, पानी हमारा, और 80% पानी उन्होंने उसको दिया जो देश खुलेआम भारत को अपना दुश्मन करार कर देता रहा है, दुश्मन कहता रहा।
7: छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए।

0: जश्न आजादी के रंग में रंगा हिंदुस्तान, सुबह लाल किले की प्राचीर से लगातार 13वीं बार तिरंगा फहराएंगे प्रधानमंत्री मोदी, देश को करेंगे संबोधित। 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का राष्ट्र के नाम संदेश, बोली युवा आबादी सबसे मूल्यवान संपत्ति, विकसित भारत के निर्माण के लिए आगे बढ़ने का आह्वान। नहीं थम रहा पीएम मोदी पर राहुल के बयान पर हंगामा, राजनाथ सिंह ने लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा बताया, विदेश मंत्रालय ने कहा आदर के साथ रखो बात। विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में जुबानी युद्ध तेज, सीएम योगी बोले सिर्फ सत्ता के लिए पहले की सरकारें, अखिलेश बोले यूपी में अब तक की सबसे भ्रष्ट योगी सरकार। और कॉकरोच विवाद पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत का बड़ा बयान, बोले मेरी बातों का गलत इरादे से गलत इस्तेमाल, युवाओं को सूर्यकांत ने गुमराह करने की कोशिश बताया। आज हमारा देश स्वतंत्रता का 80वां उत्सव मना रहा है। 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने से पहले लोकतांत्रिक तरीके से जन अल्फा ने अपनी आवाज बुलंद कर दी। जन अल्फा जिनके हाथों की तनी मुट्ठी नारे लोकतंत्र की मजबूती का संदेश देते हैं, सरकारी व्यवस्था को इस बात का एहसास कराते हैं कि उनकी आवाज अनसुनी आप नहीं कर सकते।
1: 80वें स्वतंत्रता दिवस से पहले गूंजते नारे लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। '26 में आजादी का जश्न मनाते भारत के बच्चे हक मांगने से नहीं डरते हैं।
2: क्या हो गया टीचर सर, आज मैंने हम लोग से
3: टीचर है कोई यहाँ पे लगा, पहला काम करो सुनो, तुरंत साइड में आओ, अंदर चलो बात करते हैं, ट्रैफिक खोलो, ठीक है, तुरंत मेरे साथ आओ चलो।
1: 15 अगस्त 2026 ऐतिहासिक है, जहां बच्चे अधिकारियों की आंख से आंख मिलाकर अधिकार मांगते हैं।
4: 4 साल हो गई सीनियर स्कूल बने हुए, मात्र 5 टीचर है
5: जो भी थर्ड ग्रेड के,
4: सुनवाई नहीं की गई। 4 साल हो गए खाते में, कलेक्टर को मैंने खुद अपने लिखित में कागज दिया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।
5: सही बात,
4: अगर आपके बच जाते तभी आप यही सुविधा रखते क्या?
1: एक तरफ लगता है कि आजादी के 80 साल बाद भी स्कूल व्यवस्था राज्यों में ढुलमुल है, दूसरी तरफ अच्छा लगता है कि लोकतांत्रिक रूप से विरोध करना बच्चे जानते हैं।
6: हमारे खाने के लिए थाने में सुड़ी निकलती है, मेढक निकलता है, छिपकली निकलती है, प्रिंसिपल पास लेकर जाओ, इनका ये होता है कि इस मौसम में निकलता है, मैं क्या कर सकता हूँ। दूसरी बात, तुमने खुद डाला होगा और कहे भी दें तो कहते दूसरा रखवा लो, ऐसा कि हम लोग मतलब जानवर से बेबत्तर है ये करते हैं हमारे लिए।
1: बच्चों के नारे इस बात का एहसास कराते हैं कि आजादी का असली मतलब अपनी आवाज को बुलंद करना है।
7: हम हमारा अधिकार मांगते
4: हैं, जोर जोर के चक्कर में
1: स्वतंत्रता का सीवा महोत्सव खास है, क्योंकि अब की जेन जी और जेन अल्फा की बुलंद आवाज है।
8: कल जो आपने प्रदर्शन किया था उसमें कितने रुपए किराया लिया जा रहा था पहले आपसे, और आज कितने रुपए किराया लिया जा रहा है आपसे भी 10 रुपए, सभी का किराया मान के चलने तो कम हुआ सभी से, ठीक है।
1: लाल किले पर लहराता तिरंगा, वो पल जब देश हमेशा गर्व से भर जाता है, याद करता है स्वतंत्रता के सेनानियों को। भारत और भारतीयता के विश्वास से उत्प्रोत हर नागरिक के लिए आजादी का दिन बहुत विशेष महत्व रखता है, लेकिन इस बार ये उत्सव और भी विशेष है, जहां भारत के भविष्य की बुलंद होती आवाजें, लोकतांत्रिक रूप से रखी जाती मांगे, अड़ने की जगह बिना डरे हक के लिए लड़ने वाली आदत इस भरोसे को मजबूत करती है कि भारत का बच्चा बच्चा अपने अधिकार और कर्तव्य दोनों को समझ रहा है। आज इसीलिए एक एक करके हम आपको ऐसी तस्वीरों से खबरदार करेंगे। अधिकार और कर्तव्य को समझते भारत के जैन अल्फा की पहली गवाही लखनऊ से आई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मोहान रोड पर जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय है। प्रदेश के समाज कल्याण विभाग के अधीन आने वाले इस स्कूल में छात्र संभव है कि देश में जंतर मंतर आंदोलन से शुरू हुए प्रदर्शन के बाद अपना हक मांगने वाली लकीर पर चलते हुए आगे बढ़े। जहां हॉस्टल में खराब खाना, खाने में बार बार कीड़ा निकलना, बीमार होने पर इलाज की व्यवस्था न होना और शिक्षकों की कमी को लेकर छात्रों का दावा है कि स्कूल प्रशासन ने उनकी शिकायत पर कान नहीं दिया तो ये सड़क जाम करने निकल पड़े। लखनऊ में छात्रों की तरफ से सड़क जाम की खबर आते ही पहले जहां छात्रों को हटाने के लिए पुलिस दिखती रही थी, वहां अब की बार शायद पहली बार ऐसा देखा सुना जा रहा है जब कोई मंत्री तुरंत समस्या सुनने पहुंच गया। जैसे असीम अरुण उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री हैं, प्रदर्शन करते छात्रों के बीच पहुंचकर सीधे कहते हैं चलो तुम्हारी बातें सुनते हैं, शिकायत दूर करते हैं,
3: अंदर चलो बात करते हैं, ट्रैफिक खोलो, ठीक है तुरंत मेरे साथ आओ।
1: इसके बाद तुरंत मंत्री असीम अरुण के साथ छात्र भीतर आते हैं। यहीं आज हम आपको दिखा रहे हैं कि छात्र संविधान से मिले अधिकार और कर्तव्य दोनों को समझ रहे हैं, जो अपने अधिकार के लिए प्रदर्शन करने का अधिकार भी जानते हैं और मंत्री की तरफ से समस्या सुने जाने की बात आते ही तुरंत रास्ता भी छोड़ देते हैं और फिर समाधान की बात आती है।
3: जो कमियां हैं उनको दूर काफी हद तक किया हम लोग ने, लेकिन मैं स्वयं अभी संतुष्ट नहीं हूँ। हम लोग को कमियों को और दूर करना है। पहली चीज जितने स्टाफ सारे हमारे क्वार्टर बन गए, हमारे ट्रांजिट हॉस्टल बन गए, टीचर्स 24 घंटे यहाँ पे रहेंगे, कोई हाँ फार्मासिस्ट भी और भी नॉन टीचिंग स्टाफ जिसके लिए आवास अवेलेबल है। ये आवासीय विद्यालय है, केवल बच्चों का नहीं स्टाफ का, और जिसको रहने में समस्या आ रही है वो अपना इस्तीफा देते घर।
1: लोकतंत्र की यही ताकत है जो इस स्वतंत्रता दिवस को विशेष बनाती है। जहाँ स्कूली शिक्षा का बुनियादी ढांचा लचर है उसे मजबूत करने की मांग खुद बच्चे कर रहे हैं। अधिकार और कर्तव्य को समझते भारत के जैन अल्फा की दूसरी गवाही भी उत्तर प्रदेश से आई है। इसके लिए अब कन्नौज चलते हैं।
5: कई दिनों से समस्याएं थी जिनको लेकर हम झेल रहे थे, सह रहे थे, लेकिन अब कुछ ज्यादा ही ओवर हो गया था तो उसके लिए हमने ये किया क्योंकि परेशान हो चुके थे। और एक नहीं, क्लास 6 के जूनियर से लेकर क्लास 12 के बच्चे सभी परेशान हैं।
1: कन्नौज के जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले ये वो जैन अल्फा हैं जो अपनी समस्याओं के निदान के लिए सड़क पर नहीं उतरे बल्कि खुद को ही एक कमरे में बंद कर लिया। इनका वीडियो वायरल हुआ, मीडिया पहुंचा। इन छात्रों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए मुंह ढक लिया, ये इनका अधिकार है। लेकिन अपने दूसरे अधिकारों के लिए इन्होंने खुद को क्लास में लॉक करने का ऐसा तरीका लगाया कि प्रशासन को जागना पड़ा। पहले शिकायत सुनिए फिर समाधान देने पहुंचे जिलाधिकारी को।
5: मैं इसमें खाने की सही व्यवस्था नहीं होती, हाउस में लाते हैं। खाने की व्यवस्था इसलिए नहीं क्योंकि 550 बच्चे हैं वहाँ पर, ना तो फैन लगा है ना कोई फैन, वैसे क्या नाम गैस फैन नहीं लगे हैं तो सफोकेशन होती है। खाते हैं वहाँ पर, बच्चे भी नहीं बैठ पाते, 550 बच्चे हैं, इतनी जगह नहीं है। तो हम लोग हाउस में ले आते हैं तो ये कहते हैं कि तुम लेटरिन में खाते हो, उसी का सूंघते हो, उसी में खाते हो, उसी में बैठ कर खाते हो, गंदे गंदे सब खाना। ऐसा कच्चे चावल रखे हैं, हम दिखाते हैं चावल कच्चे बिल्कुल, जो गले से नीचे ना होते। हम लोग करीब 100 से 100 बच्चे हैं।
3: कितनी देर से बंद है
5: सर? हम कल
3: 4 बजे से,
5: और कल शाम से हम लोगों ने खाना नहीं खाया।
3: आप स्कूल प्रशासन की सूचना दी थी इस बात की आप लोग बंद है अंदर?
9: सूचना सबको दी, आए मतलब आए विद्यालय।
5: हमारी डिमांड है कि डीएम सर आए और हमसे बात करें आकर।
10: इस विद्यालय में बच्चों को कुछ अपनी कठिनाइयां थी जिसमें हम लोग आज गए और उनके बीच वार्ता की। जहां वो रह रहे थे उनके हॉस्टल में, उन्हीं के बीच में हम लोग बैठे। सभी बच्चे अनुशासित हैं, अच्छे बच्चे हैं और मेरिट में ये लोग सेलेक्ट होकर यहाँ आए हैं। विधिवत रूप से उनको सुना गया है। जो उनकी कठिनाइयां थी उनके बारे में हम लोग दूर करेंगे उनको, और सरकार हर तरीके से विद्यार्थियों के साथ है और मेधावी विद्यार्थियों के साथ भी है। किसी प्रकार की कोई कठिनाई इन लोगों को नहीं होने देंगे।
0: कहीं नारा लग रहा है कि कलेक्टर साहब का आना हो को आना होगा, कहीं नारे लगाए जाते हैं, हमारी बातें आपको सुननी होंगी। ये हमारे वो बच्चे हैं जिन्हें नागरिक शास्त्र का पाठ पढ़ाया जाता है, लेकिन ये पहली बार उन पाठों का प्रयोग भी कर रहे हैं। ये हमारे वो बच्चे हैं जिन्होंने आंदोलन के बारे में पढ़ा है, लेकिन पहली बार ये बच्चे खुद आंदोलन कर रहे हैं। अब दो चीजों की जरूरत है। पहले, ऐसे हर आंदोलन में बच्चों की मांगें सुनी जाएं, उनकी बातों को पूरा किया जाए, और दूसरी जरूरत ये कि सरकारें देखें कि आखिर क्यों अब भी हमारे बच्चों के स्कूलों की स्थिति खराब है।
1: अधिकार और कर्तव्य को समझते भारत के जेन अल्फा की तीसरी गवाही राजस्थान के अलवर से आई है।
4: 4 साल हो गई, 3 ईयर स्कूल बने हुए, मात्र 5 टीचर है,
11: जो भी थर्ड ग्रेड
4: की,
1: अधिकारियों के सामने मर्दानी बनकर अपने हक को बुलंद करती एक छात्रा बोलती, और तभी
4: मजाक बना रखा है स्कूल को, ना बैठने लायक एक भी कमरा है।
1: ये बच्चे चीख नहीं रहे, बस उन अधिकारियों के कानों में सामने खड़े होकर अपनी आवाज पहुंचा रहे, जो एसी कमरों से अब तक बहुत कम निकलते रहे, जो फाइलों में ऑल इज वेल लिखते रहे, उन्हें अब सुनना भी पड़ रहा है, बदलाव करना भी पड़ रहा है।

0: पुलिस की गाड़ी भी आ चुकी है और पुलिस की गाड़ी आ चुकी है और
1: जिस मानसून सत्र में हंगामे की वजह से संसद का कामकाज खुल गया, वहाँ इस मानसून में राजस्थान के अलवर में होता यह हंगामा कामकाज धुलने का नहीं, कामकाज को सुधारने का। ये बच्चे अलवर जिले के थाना गाजी में जोधावास गांव की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के हैं, जो कुछ बड़ा या अलग नहीं मांग रहे, बस ये चाहते हैं स्कूल दिया है तो सुरक्षित क्लासरूम हो, टीचर हो, स्कूल आने का रास्ता साफ हो, सड़क बने।
2: हमारी स्कूल को सीनियर हुए 4 साल हो गए, मात्र 5 टीचर है जो थर्ड ग्रेड के हैं, जो बड़े सीनियर क्लासों को पढ़ाते हैं, सेकंड ग्रेड का बस मात्र 1 टीचर है और जिसको भी कुछ भी होगा जो 400 रखा है और
3: हमारे विद्यालय में विद्यार्थियों को पहुंचने के लिए अच्छा रास्ता है, पुलिस हमारे जो सहपाठी है वो नदी क्रॉस करके आते हैं, तो हम चाहते हैं कि उनको नदी क्रॉस करने के लिए पुलिया का निर्माण किया जाए।
1: प्रदर्शन के बाद अधिकारियों ने पहले यहां तुरंत 7 टीचर और लगाकर शिक्षकों की कमी को पूरा किया, लेकिन इसके बाद भी धरना खत्म नहीं होता।
4: सभी से वार्ता की गई, 4 घंटे वो रुके, तो पहले तो ये है कि वो एक सीनियर स्कूल है, वहाँ 6 अध्यापक थे, तो उसकी वजह 7 अध्यापक वहाँ और लगा दिए मौके पर ही, और 13 अध्यापक अब वहाँ 170 बच्चों के ऊपर हो गए।
1: बच्चे पूरा हिसाब चाहते हैं, इनके स्कूल के क्लासरूम की हालत देखिए, जहाँ पढ़ना खतरे से खाली नहीं, यहाँ बच्चे बाल बाल बचते हैं जब एक क्लासरूम में हादसा हो जाता है, इसीलिए धरना देना जारी रखते हैं। अधिकार और कर्तव्य को समझते भारत के जैन अल्फा की चौथी गवाही मध्य प्रदेश के उज्जैन से आई। छात्राओं के नारों की गूंज उज्जैन में गूंज रही, 700 से ज्यादा बच्चियां उज्जैन के सर्राफा कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हैं, जो अभी महाकाल मंदिर के पास जयसिंहपुरा में चलता है। अब इनके स्कूल को संदीपन विद्यालय में मर्ज किया जा रहा है, दलील ये कि स्कूलों की गुणवत्ता और शिक्षा में सुधार लाया जाएगा। छात्राओं का कहना है कि अब जिस स्कूल के साथ मर्ज किया जा रहा है वहाँ की दूरी ज्यादा है, रास्ते में इन्हें दिक्कत होगी, इसीलिए कलेक्टर दफ्तर के बाहर आकर धरना दे दिया। कलेक्टर शिकायत सुनने आए नहीं, जिला शिक्षा अधिकारी को भेज दिया।
5: स्कूल जयसिंहपुरा में और हमारा स्कूल हावेरी शिफ्ट हो रहा है, हम इतनी दूर नहीं जा सकते, हमारे मम्मी पापा हमको परमिशन नहीं देंगे, वो बहुत दूर है और उधर का इलाका भी बहुत मतलब बहुत खराब है, हम कैसे जाएंगे।
6: लड़कियां गांव से आती है 10-10 किलोमीटर दूर से यहां तक, और छोटी और इतनी दूर से अगर वो दाऊदखेड़ी जाएंगे तो कब पहुंचेंगी, रात को 10 बजे, अगर बीच में अगर कोई दुर्घटना हो गई उनके साथ तो जिम्मेदार क्या कलेक्टर रहेगा या कोई और रहेगा।
5: हमारे मम्मी पापा ने बोल दिया अगर सराफा स्कूल में दावतखेड़ी जाएगा तो हमें पढ़ाएंगे ही नहीं वो बिल्कुल भी।
7: अभी एकदम निर्णय नहीं होगा कि वहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, शासन के भी निर्देश है कि जिला स्तरीय मॉनिटरिंग समिति निर्णय ले, तो जिला स्तरीय मॉनिटरिंग समिति की बैठक शीघ्र होने वाली है जिसमें पालकों के प्रतिनिधि को सूचित किया जाएगा, वो भी आएंगे और वो भी अपना पक्ष रखेंगे, उसके बाद जो निर्णय होगा वो मॉनिटरिंग समिति लेगी।
1: देश के तमाम राज्यों में होते ये प्रदर्शन इस बात को साबित करते हैं सरकारों की तमाम कोशिश के बाद व्यवस्था बुनियादी जरूरतों को स्कूली ढांचे में पूरा करने में नाकाम है, जिसकी वजह से अब बच्चों को मैदान में उतरना पड़ रहा है।
8: राजस्थान में भर्तियों का भ्रष्टाचार खुला, जहां योग्य किनारे हो जाएं, अयोग्य जनता की सेहत से खिलवाड़ करने लगे, फर्जी डिग्री लगाकर डॉक्टर बनकर मरीजों का इलाज करने लगे, 3 डॉक्टर गिरफ्तार किए गए, 20 से 30 लाख रुपए में फर्जी डिग्री इन्होंने बनवाई थी। राजस्थान एसओजी इस पूरे मामले की तह तक पहुंचने में जुटी है।

0: चेहरा छुपा रहे ये तीनों राजस्थान के वो फर्जी डॉक्टर हैं जो कई वर्षों से मरीजों की जान से खिलवाड़ करते रहे, दवाइयां उनके लिए लिखते रहे। आशीष शर्मा फर्जी डिग्री वाला डॉक्टर, करौली के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ये मरीज देखता था।
1: आदेश दिनांक 18/12/2023 के तहत हमारे पास एक लिस्ट आई थी, उस लिस्ट में डॉक्टर आशीष का सीरियल नंबर 11 पर है। उसकी रैंक एग्जाम में FMG इंट्रेंसिप रैंक 245 थी।
0: नरेश रौलनिया फर्जी डिग्री वाला डॉक्टर, उदयपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज से इंटर्नशिप करके कोटपुतली के पल्स अस्पताल में डॉक्टर बन गया। जयपुर के मुरलीपुरा में ये श्रीनारायण अस्पताल चला रहा डॉक्टर राजेंद्र यादव है, जो चीन से 2006 से 2012 के बीच MBBS करने का सर्टिफिकेट लेकर आया। साल 2012 से लेकर 8 बार इसने राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड की FMG स्क्रीनिंग परीक्षा देने की कोशिश की, पर एक बार भी पास नहीं हो पाया। फिर इसने खुद ही नकली सर्टिफिकेट छपवाकर 29 लाख में राजस्थान मेडिकल काउंसिल से मरीज देखने का लाइसेंस हासिल कर लिया। SOG की गिरफ्त में आए राजेंद्र यादव के अस्पताल में जब आज तक संवाददाता खबरदार करने पहुंचते हैं, तो यहां अस्पताल को और आगे बढ़ाने का काम चलता मिलता है। डॉक्टर की गिरफ्तारी के बाद भी अस्पताल खुला हुआ है। फर्जी डॉक्टर और उसकी डेंटिस्ट पत्नी 6 साल से यहां मरीज देख रहे थे।
2: तो कब उनको अरेस्ट की पुलिस ने?
3: 4 रोज पहले।
2: 4 रोज पहले? आपको पता था आप लोगों की उनके पास नकली डिग्री है?
3: नहीं,
2: किसी को पता नहीं था?
3: नहीं।
2: ये अस्पताल उन्हीं का है?
3: हाँ।
0: डॉक्टर की फर्जी डिग्री वाले आशीष शर्मा ने कजाकिस्तान से साल 2021 में MBBS करने का सर्टिफिकेट बनवाया था। भारत में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड की FMG स्क्रीनिंग परीक्षा 3 बार देने के बावजूद वो पास नहीं हो सका। इसके बाद आरोपी ने शुभम गुर्जर के जरिए 25 लाख रुपए देकर FMG परीक्षा का फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया। शुभम गुर्जर भी पहले 25 लाख में फर्जी सर्टिफिकेट बनवाता था। हैरत की बात है कि दोनों ही राजस्थान सरकार के करौली मेडिकल कॉलेज में मरीज देख रहे थे। दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं।
4: आदमी जितने पैसे करोड़ों रुपए खर्च करके वो बाहर अपनी MBBS करता था, और यहाँ पे जो किंग पिन्स हम लोगों ने जिनको अरेस्ट किया है, उनके इंटरोगेशन से 25 से लेके 35 लाख 40 लाख तक ये अमाउंट लेते थे सर्टिफिकेट अवेलेबल कराने का।
0: नरेश तो इनसे भी आगे निकला। तजाकिस्तान से फर्जी डॉक्टरी की डिग्री हासिल कर पल्स हॉस्पिटल कोटपुतली के इमरजेंसी वार्ड में काम कर रहा था। वो बिना FMG स्क्रीनिंग परीक्षा पास किए और बिना राजस्थान मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रेशन के मरीजों का इलाज करता रहा।
4: फेक FMG एग्जाम के जो सर्टिफिकेट वाला जो स्कैंडल हम लोगों ने खोला है, उसमें करीब 30 के करीब हम डॉक्टर्स और अन एसोसिएट्स को इसमें अरेस्ट कर चुके हैं, और हमारे पास में करीब 80-90 और अधिक इसके अलावा भी कुछ नाम हमारे पास में चल रहे हैं जो इस सारे सिस्टम में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहे हैं।
0: राजस्थान SOG के मुताबिक इस मामले में अब तक 100 से अधिक फर्जी डॉक्टर की पहचान की जा चुकी है, जिन्होंने कथित तौर पर फर्जी स्क्रीनिंग प्रमाण पत्र तैयार करवाया है। इन्हें पकड़ना आसान नहीं हो रहा था क्योंकि इन्होंने सारे फर्जी सर्टिफिकेट ऑफलाइन बनवाए हैं। इस मामले में राजस्थान मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार डॉक्टर राजेश शर्मा समेत 4 कर्मचारी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं।
5: राजस्थान के अस्पतालों में मरीज देखने वाले फर्जी डॉक्टरों के पकड़े जाने का सिलसिला जारी है। अब तक 35 से ज्यादा फर्जी डॉक्टर पकड़े जा चुके हैं, मगर अभी भी 80 से ज्यादा फर्जी डॉक्टर अस्पतालों में मरीज देख रहे हैं और मरीजों के जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कैमरा मनीष के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक।
6: उत्तराखंड में हुए एक और टनल एक्सीडेंट की यह खबर है। चमोली में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की टनल में कल एक हादसा हुआ। 7 मजदूर इस हादसे में अब तक मारे गए, 3 लापता हैं, 12 मजदूर घायल हैं। लापता मजदूरों की तलाश हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों उत्तराखंड में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए जो टनल्स बनाई जा रही हैं उनमें हादसे हो रहे हैं, और यह हादसे आखिर कब तक होते रहेंगे?
7: बार बार उत्तराखंड की सुरंगों में
3: क्यों हो रहे हैं इतने बड़े हादसे? विकास की राह में विनाश का इंतजाम कौन कर रहा है? क्या उत्तराखंड की नदियों में जरूरत से ज्यादा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं? उत्तराखंड के कच्चे पहाड़ों में बड़ी बड़ी सुरंगें खोदकर विनाश कौन ला रहा है? उत्तराखंड में एक और मौत की सुरंग बनी है चमोली जिले के पीपल कोटी की टीएचडीसी की सुरंग। तस्वीरें बता रही हैं कि सुरंग के अंदर इस वक्त क्या हालात हैं। पूरी स्थिति समझने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि यह हादसा कहां और कैसे हुआ। उत्तराखंड के चमोली जिले के पीपल कोटी में टीएचडीसी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहा है। ये प्रोजेक्ट अलकनंदा नदी पर बन रहा है जिसकी क्षमता होगी 444 मेगावाट। बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट का 80% काम पूरा हो चुका है। इस प्रोजेक्ट के तहत एक 65 मीटर ऊंचा डैम बन रहा है जिसमें दो सुरंगें होंगी। पहली है हेड रेस टनल यानी HRT जिसकी लंबाई है 13.4 किलोमीटर और दूसरी है टेल रेस टनल TRT जिसकी लंबाई है 3.04 किलोमीटर। गुरुवार को जो हादसा हुआ वो इसी TRT सुरंग में हुआ है। अब ये समझिए कि यह हादसा कैसे हुआ। इस इलाके में जमकर बारिश हो रही है, मॉनसून का सीजन है और आसमान से आफत बरस रही है। कई जगहों पर भूस्खलन और बादल फटने की घटनाएं भी हो रही हैं। इन हालात में भी इस टनल में काम चालू था। बताया जा रहा है कि गुरुवार को अचानक से सुरंग में 150 मीटर दूर तेज आवाज के साथ भारी भूस्खलन हुआ। मलबा, पत्थर और पानी तेज गति से टनल के अंदर घुस गए। उस वक्त वहां पर कुछ मजदूर काम कर रहे थे। इसी हादसे में कुछ मजदूर मलबे में दब गए और बाकी फंस गए। टनल में कई जगह से मलबा आने से ऑक्सीजन लेवल बेहद कम हो गया था। बताया जा रहा है कि टनल के अंदर मलबा 2 दिन से आ रहा था लेकिन इसके बाद भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ने इस पर ध्यान नहीं दिया और काम चालू रखा। इसके बाद तो टनल में लगातार पानी भरता गया। हालांकि हादसे की सूचना मिलते ही राहत और बचाव दल मौके पर पहुंच गया था। ये तस्वीरें बता रही हैं कि अंदर क्या हालात थे। बताया गया कि सुरंग के अंदर कुल 22 मजदूर फंसे हुए थे। 7 मजदूरों की मौत हो गई है, 3 अभी भी फंसे हैं। 12 मजदूरों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।
7: गुरुवार शाम को 6:30 बजे के आसपास पीपलकोटी विष्णुघाट परियोजना की जो TSDC की ये टनल है, TRT टनल, इसके अंदर 1500-1600 मीटर के करीब में एक लूज जो है टनल के अंदर गिरा और उसके बाद एक बहुत जबरदस्त, यहाँ पे बताया जा रहा है, हवा का झोंका और पानी का बहुत बड़ा रिसाव हुआ और उसने कुछ लोगों को तो अंदर की ओर धकेला और कुछ लोगों को बाहर की ओर धकेला। ऐसे में कुछ तो ठीक ठाक निकल चुके हैं लेकिन अभी तक 3 लोग लापता है। पता चला इस पूरे हादसे में 22 लोग यहाँ पे हताहत हुए थे, जो कुछ घायल हैं, कुछ 7 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। वहीं अभी राज्य आपदा प्रबंधन सचिव जो है विनोद कुमार सुमन, वो यहाँ पे निरीक्षण करके गए। उनका कहना है कि डीवाटरिंग करने का काम किया जा रहा है और जल्द से जल्द इस पानी को बाहर निकाला जाएगा ताकि जो 3 लोग हैं अंदर उनका रेस्क्यू हो नहीं पा रहा है, पानी भर जा रहा है। ऐसे में लगातार यहाँ पे ITBP की फोर्स है, वो लगातार आ रही है, जा रही है। जो टीमें हैं वो लगातार लगी हैं, कभी मशीनें भेजी जा रही हैं, कभी ड्रम भेजे जा रहे हैं, अलग अलग तरीके से यहाँ पे इस समय जो रेस्क्यू और बचाव के काम चल रहे हैं वो करवाए जा रहे हैं।
3: लेकिन समस्या ये है कि टनल के अंदर लगातार पानी भरता जा रहा है, इसी वजह से रेस्क्यू टीमों को दिक्कतें आ रही हैं। जैसे ही कल रात ये रेस्क्यू टीमें पहुंची तो टनल में बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ था। तुरंत इन्होंने टेम्पररी नाव बना दी, नीचे बड़े बड़े ड्रम बांधे और एक अस्थायी नाव का निर्माण किया और उसके बाद देखिए कैसे इन जुगाड़ की नावों से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया।
8: कल तक काफी लोगों को निकाला हम लोगों ने, जिसमें से 12 लोग को सुरक्षित बचाया गया है, 7 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है, 3 लोग अभी लापता चल रहे हैं जिनको खोजने का काम चल रहा है। पानी का लेवल ज़्यादा होने से थोड़ी सी समस्या आ रही है हम लोगों को। डीवाटरिंग पंप अभी 5 काम कर रहे हैं, तो डीवाटरिंग पंप की संख्या को बढ़ाने के लिए कहा गया है TSDC से, वो पंप मंगा रहे हैं NTPC के माध्यम से। और बाकी हमने कहा जहाँ भी पंप जितने भी अवेलेबल हैं पंपों की संख्या बढ़ाइए, क्योंकि अभी जिस गति से पानी हम निकाल रहे हैं लगभग उसी गति से पानी ऊपर से आ रहा है, इसके कारण जो है थोड़ी समस्या हो रही है। अभी मैनुअल तरीके से हम राहत बचाव कर्मी दल जाके ढूंढ कर रहे हैं, खोजबीन कर रहे हैं, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल पाई है अभी तक।
3: अभी सबसे पहली प्राथमिकता 3 लापता लोगों को खोजने की है, लेकिन टनल के अंदर बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि करीब 1 किलोमीटर के इलाके में पानी भरा है और कहीं कहीं तो पानी 5 फीट तक गहरा है। पानी में बहुत सी गाद और मलबा है, कीचड़ है, इसी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में समस्याएं हैं। पहली कोशिश यही है कि टनल के अंदर से पानी को किसी तरीके से बाहर निकाला जाए।
9: कठिनाई जैसे मैं बता रहा हूं आपको कि पानी का एरिया जो है बहुत लंबा है, लगभग 1 किलोमीटर एरिया है जो पानी से भरा हुआ है और उसमें हाइट जो है 3-4 फीट तक जा रही है, कहीं कहीं पर 5 फीट भी है। तो उस पर्टिकुलर एरिया में 1 किलोमीटर लंबा प्लस 3-4 फीट गहरा पानी है और वो केवल पानी नहीं है, वो स्लजी वाटर है। तो उसमें जो सर्च करने के लिए दिक्कत आ रही है, बट हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा ट्रूप्स को यूज़ करके और मैक्सिमम एरिया जो है मैनुअली सर्च करके क्लियर कर रहे हैं।
10: क्या लग रहा है कब तक ये हो पाएगा या फिर पानी कैसे भर रहा है इतना ज़्यादा पानी?
9: जी देखिए, मोस्ट फेवरेबल कंडीशन यही होगी जब पानी कम होगा। तो पानी कम करने के लिए जैसा मैंने बताया, संस्थान ने जो मोटर्स लगाई हैं वो सही कार्रवाई करें। बट हो क्या रहा है कि जो इसका दूसरा सोर्स है जहाँ से ये कोलैप्स हुआ है वहाँ से पानी कंटिन्यूसली आ रहा है, तो जितना हम निकाल रहे हैं उतना ही आ रहा है। तो ये कंडीशन थोड़ा सा हमारे लिए डाइसी हो रही है इस वजह से।
10: कितनी टीम मेंबर एनडीआरएफ यहाँ पर लगी हुई है?
9: देखिए एनडीआरएफ की यहाँ पर 3 टीमें वर्तमान में आ रखी हैं और तीनों टीमें जो है रोटेट होकर अपनी कार्रवाइयां कर रही हैं।
3: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी घटना स्थल पर पहुंचे और टनल के अंदर जाकर रेस्क्यू का काम उन्होंने देखा। घायलों से मुलाकात की, अब वो कह रहे हैं कि राज्य की सुरंगों की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि सुरंगों में लगातार हादसों को कैसे टाला जाए।
11: एक और निवेदन, टनल दुर्घटनाएं हमेशा हो रही, सिलक्यारा हुई, ये हुई, इससे पहले टनल की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार क्या संबंधित एजेंसी को कोई निर्देश देगी?
12: बिल्कुल निर्देश देंगे और हमारे लिए जो भी कार्मिक जो भी काम करने वाले हैं उनकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। बिना सुरक्षा के, जब तक पूरी सुरक्षा के प्रबंध नहीं हो जाते तब तक इन कामों को भी आगे नहीं बढ़ाना चाहिए।
3: गढ़वाल से बीजेपी के सांसद अनिल बलूनी भी पहुंचे, टनल के अंदर गए, पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन देखा। सबसे ज्यादा समस्या यही आ रही है कि टनल में लगातार पानी भर रहा है, बड़े बड़े पंप लगाकर पानी को निकाला तो जा रहा है लेकिन जितना पानी निकलता है उतना फिर से सुरंग में आ जा रहा है।
13: वाकई बड़ी मुश्किल परिस्थिति में अंदर काम हो रहा है और आप सब लोग जानते हैं अभी ऑपरेशन जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है और हमारे NDRF और SDRF के जवान और बाकी जो हमारा स्थानीय प्रशासन है सब मिलकर अंदर, क्योंकि काफ़ी पानी भरा हुआ है और काफ़ी मुश्किल परिस्थितियाँ हैं, उन सब में काम कर रहा है। अभी बताया जाता है कि 3 लोग मिसिंग की जानकारी जो है वो सब है, हम अंदर देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति मिल सके हमें और सारे लोग बातचीत कर रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं। अभी प्रशासन पूरी ताकत से लगा कर रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं, अभी प्रशासन पूरी ताकत से लगा है, आगे तक जाने की तैयारी में है, मुझे पूरी उम्मीद है।
3: ज्यादा समस्या मौसम को लेकर भी है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, बारिश रुकी नहीं रही, ऐसे में डर ये भी है कि कहीं और ज्यादा भूस्खलन न हो जाए। अभी तो पहली प्राथमिकता उन 3 लापता मजदूरों को खोजने की है।
14: आ जाओ।
3: कमल नयन सिलोड़ी, चमोली, आज तक।
15: छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज

0: जश्न आजादी के रंग में रंगा हिंदुस्तान, सुबह लाल किले की प्राचीर से लगातार 13वीं बार तिरंगा फहराएंगे प्रधानमंत्री मोदी, देश को करेंगे संबोधित। 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का राष्ट्र के नाम संदेश, बोली युवा आबादी सबसे मूल्यवान संपत्ति, विकसित भारत के निर्माण के लिए आगे बढ़ने का आह्वान। नहीं थम रहा पीएम मोदी पर राहुल के बयान पर हंगामा, राजनाथ सिंह ने लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा बताया, विदेश मंत्रालय ने कहा आदर के साथ रखो बात। विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में जुबानी युद्ध तेज, सीएम योगी बोले सिर्फ सत्ता के लिए पहले की सरकारें, अखिलेश बोले यूपी में अब तक की सबसे भ्रष्ट योगी सरकार। और कॉकरोच विवाद पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत का बड़ा बयान, बोले मेरी बातों का गलत इरादे से गलत इस्तेमाल, युवाओं को सूर्यकांत ने गुमराह करने की कोशिश बताया। आज हमारा देश स्वतंत्रता का 80वां उत्सव मना रहा है। 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने से पहले लोकतांत्रिक तरीके से जन अल्फा ने अपनी आवाज बुलंद कर दी। जन अल्फा जिनके हाथों की तनी मुट्ठी नारे लोकतंत्र की मजबूती का संदेश देते हैं, सरकारी व्यवस्था को इस बात का एहसास कराते हैं कि उनकी आवाज अनसुनी आप नहीं कर सकते।
1: 80वें स्वतंत्रता दिवस से पहले गूंजते नारे लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। ২০২৬ में आजादी का जश्न मनाते भारत के बच्चे हक मांगने से नहीं डरते हैं।
2: क्या हो गया टीचर सर, पाँच महीने हम लोग
3: टीचर है कोई यहाँ पे लगा दे, पहला काम करो सुनो तुरंत साइड में आओ, अंदर चलो बात करते हैं, ट्रैफिक खोलो ठीक है, तुरंत मेरे साथ आओ चलो।
1: 15 अगस्त 2026 ऐतिहासिक है, जहां बच्चे अधिकारियों की आंख से आंख मिलाकर अधिकार मांगते हैं।
4: 4 साल हो गई सीनियर स्कूल बने हुए, मात्र 5 टीचर है
5: जो भी थायर ग्रेड की
4: सुनवाई नहीं की गई। 4 साल हो गए कलेक्टर को मैंने खुद अपने लिखित में कागज दिया।
1: एक तरफ लगता है कि आजादी के 80 साल बाद भी स्कूल व्यवस्था राज्यों में ढुलमुल है, दूसरी तरफ अच्छा लगता है कि लोकतांत्रिक रूप से विरोध करना बच्चे जानते हैं।
6: हमारे खाने के लिए थाने में सूरी निकलती है, मेढक निकलता है, छिपकली निकलती है, प्रिंसिपल पास लेकर जो इनका ये होता है कि इस मौसम में निकलता है मैं क्या कर सकता हूँ। दूसरी बात, तुमने खुद डाला होगा और कहे भी दें तो कहते दूसरा रखवा लो, ऐसा कि हम लोग मतलब जानवर से बेबत्तर है ये करते हैं हमारे लिए।
1: बच्चों के नारे इस बात का एहसास कराते हैं कि आजादी का असली मतलब अपनी आवाज को बुलंद करना है।
7: हम हमारा अधिकार मांगते
8: हैं, जोर जोर में के चक्कर में
1: स्वतंत्रता का 80वां महोत्सव खास है क्योंकि अब की जेन जी और जेन अल्फा की बुलंद आवाज है।
9: कल जो आपने प्रदर्शन किया था उसमें कितने रुपए किराया लिया जा रहा था पहले आपसे, और आज कितने रुपए किराया लिया जा रहा है आपसे भी 10 रुपए, सभी का किराया मान के चलने तो कम हुआ सभी से ठीक है।
1: लाल किले पर लहराता तिरंगा, वो पल जब देश हमेशा गर्व से भर जाता है, याद करता है स्वतंत्रता की सेनानियों को। भारत और भारतीयता के विश्वास से उत्प्रोत हर नागरिक के लिए आजादी का दिन बहुत विशेष महत्व रखता है, लेकिन इस बार ये उत्सव और भी विशेष है, जहां भारत के भविष्य की बुलंद होती आवाजें, लोकतांत्रिक रूप से रखी जाती मांगे, अड़ने की जगह बिना डरे हक के लिए लड़ने वाली आदत इस भरोसे को मजबूत करती है कि भारत का बच्चा बच्चा अपने अधिकार और कर्तव्य दोनों को समझ रहा है। आज इसीलिए एक एक करके हम आपको ऐसी तस्वीरों से खबरदार करेंगे। अधिकार और कर्तव्य को समझते भारत के जैन अल्फा की पहली गवाही लखनऊ से आई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मोहान रोड पर जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय है। प्रदेश के समाज कल्याण विभाग के अधीन आने वाले इस स्कूल में छात्र संभव है कि देश में जंतर मंतर आंदोलन से शुरू हुए प्रदर्शन के बाद अपना हक मांगने वाली लकीर पर चलते हुए आगे बढ़े। जहां हॉस्टल में खराब खाना, खाने में बार बार कीड़ा निकलना, बीमार होने पर इलाज की व्यवस्था न होना और शिक्षकों की कमी को लेकर छात्रों का दावा है कि स्कूल प्रशासन ने उनकी शिकायत पर कान नहीं दिया तो ये सड़क जाम करने निकल पड़े। लखनऊ में छात्रों की तरफ से सड़क जाम की खबर आते ही पहले जहां छात्रों को हटाने के लिए पुलिस दिखती रही थी, वहां अब की बार शायद पहली बार ऐसा देखा सुना जा रहा है जब कोई मंत्री तुरंत समस्या सुनने पहुंच गया। जैसे असीम अरुण उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री हैं, प्रदर्शन करते छात्रों के बीच पहुंचकर सीधे कहते हैं चलो तुम्हारी बातें सुनते हैं, शिकायत दूर करते हैं,
3: अंदर चलो बात करते हैं, ट्रैफिक खोलो, ठीक है, तुरंत मेरे साथ आओ।
1: इसके बाद तुरंत मंत्री असीम अरुण के साथ छात्र भीतर आते हैं। यही आज हम आपको दिखा रहे हैं कि छात्र संविधान से मिले अधिकार और कर्तव्य दोनों को समझ रहे हैं, जो अपने अधिकार के लिए प्रदर्शन करने का अधिकार भी जानते हैं और मंत्री की तरफ से समस्या सुने जाने की बात आते ही तुरंत रास्ता भी छोड़ देते हैं और फिर समाधान की बात आती है।
3: जो कमियां हैं उनको दूर काफी हद तक किया हम लोग ने, लेकिन मैं स्वयं अभी संतुष्ट नहीं हूँ। हम लोग को कमियों को और दूर करना है। पहली चीज जितने स्टाफ सारे हमारे क्वार्टर बन गए, हमारे ट्रांजिट हॉस्टल बन गए, टीचर्स 24 घंटे यहाँ पे रहेंगे, कोई हाँ फार्मासिस्ट भी और भी नॉन टीचिंग स्टाफ जिसके लिए आवास अवेलेबल है। ये आवासीय विद्यालय है, केवल बच्चों का नहीं स्टाफ का, और जिसको रहने में समस्या आ रही है वो अपना इस्तीफा देते घर।
1: लोकतंत्र की यही ताकत है जो इस स्वतंत्रता दिवस को विशेष बनाती है। जहाँ स्कूली शिक्षा का बुनियादी ढांचा लचर है, उसे मजबूत करने की मांग खुद बच्चे कर रहे हैं। अधिकार और कर्तव्य को समझते भारत के जैन अल्फा की दूसरी गवाही भी उत्तर प्रदेश से आई है। इसके लिए अब कन्नौज चलते हैं।
5: कई दिनों से समस्याएं थी जिनको लेकर हम झेल रहे थे, सह रहे थे, लेकिन अब कुछ ज्यादा ही ओवर हो गया था
3: जी, जी।
5: तो उसके लिए हमने ये किया क्योंकि परेशान हो चुके थे, और एक नहीं क्लास 6 के जूनियर से लेकर क्लास 12 के बच्चे सभी परेशान हैं।
1: कन्नौज के जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले ये वो जैन अल्फा हैं जो अपनी समस्याओं के निदान के लिए सड़क पर नहीं उतरे बल्कि खुद को ही एक कमरे में बंद कर लिया। इनका वीडियो वायरल हुआ, मीडिया पहुंचा। इन छात्रों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए मुंह ढक लिया, ये इनका अधिकार है। लेकिन अपने दूसरे अधिकारों के लिए इन्होंने खुद को क्लास में लॉक करने का ऐसा तरीका लगाया कि प्रशासन को जागना पड़ा। पहले शिकायत सुनिए, फिर समाधान देने पहुंचे जिलाधिकारी को।
5: मैं इसमें खाने की सही व्यवस्था नहीं होती, हाउस में लाते हैं। खाने की व्यवस्था इसलिए नहीं क्योंकि 550 बच्चे हैं वहाँ पर, ना तो फैन लगा है ना कोई फैन, वैसे क्या नाम गैस फैन नहीं लगे हैं, तो सफोकेशन होती है। खाते हैं वहाँ पर, बच्चे भी नहीं बैठ पाते, 550 बच्चे हैं, इतनी जगह नहीं है। तो हम लोग हाउस में ले आते हैं तो ये कहते हैं कि तुम लेटरिन में खाते हो, उसी का सूंघते हो, उसी में खाते हो, उसी में बैठ कर खाते हो, गंदे गंदे सब खाना। ऐसा कच्चे चावल रखे हैं, हम दिखाते हैं चावल कच्चे बिल्कुल, जो गले से नीचे ना होते। हम लोग करीब 100 से 100 बच्चे हैं।
3: कितनी देर से बंद है
5: सर? हम कल
3: 4 बजे से,
5: कल शाम से हम लोगों ने खाना नहीं खाया।
3: स्कूल प्रशासन की सूचना दी थी इस बात की आप लोग बंद है अंदर?
5: सूचना सबको थी, आए मतलब आए विद्यालय। हमारी डिमांड है कि डीएम सर आए और हमसे बात करें आकर।
10: इस विद्यालय में बच्चों को कुछ अपनी कठिनाइयां थीं जिसमें हम लोग आज गए और उनके बीच वार्ता की। जहां उन वो रह रहे थे उनके हॉस्टल में, उन्हीं के बीच में हम लोग बैठे। सभी बच्चे अनुशासित हैं, अच्छे बच्चे हैं और मेरिट में ये लोग सेलेक्ट होकर के यहाँ आए हैं। विधिवत रूप से उनको सुना गया है, जो उनकी कठिनाइयां थी उनके बारे में हम लोग दूर करेंगे उनको, और सरकार हर तरीके से विद्यार्थियों के साथ है और मेधावी विद्यार्थियों के साथ भी है। किसी प्रकार की कोई कठिनाई इन लोगों को नहीं होने देंगे।
0: कहीं नारा लग रहा है कि कलेक्टर साहब का आना हो को आना होगा, कहीं नारे लगाए जाते हैं, हमारी बातें आपको सुननी होंगी। ये हमारे वो बच्चे हैं जिन्हें नागरिक शास्त्र का पाठ पढ़ाया जाता है, लेकिन ये पहली बार उन पाठों का प्रयोग भी कर रहे हैं। ये हमारे वो बच्चे हैं जिन्होंने आंदोलन के बारे में पढ़ा है, लेकिन पहली बार ये बच्चे खुद आंदोलन कर रहे हैं। अब दो चीजों की जरूरत है। पहले, ऐसे हर आंदोलन में बच्चों की मांगें सुनी जाएं। उनकी बातों को पूरा किया जाए, और दूसरी जरूरत ये कि सरकारें देखें कि आखिर क्यों अब भी हमारे बच्चों के स्कूलों की स्थिति खराब है।
1: अधिकार और कर्तव्य को समझते भारत के जेन अल्फा की तीसरी गवाही राजस्थान के अलवर से आई है।
11: 4 साल हो गई, 3 ईयर स्कूल बने हुए, मात्र 5 टीचर है,
12: जो भी थर्ड ग्रेड के,
1: अधिकारियों के सामने मर्दानी बनकर अपने हक को बुलंद करती एक छात्रा बोलती, और तभी
11: मजाक बना रखा है स्कूल को, ना इसमें बैठने लायक एक भी कमरा है, कितने कमरे
12: मैदान
11: है, सही बात, अगर आपके बच जाते तभी आप यही सुविधा रखते क्या?
1: ये बच्चे चीख नहीं रहे, बस उन अधिकारियों के कानून सामने खड़े होकर अपनी आवाज पहुंचा रहे, जो एसी कमरों से अब तक बहुत कम निकलते रहे, जो फाइलों में ऑल इज वेल लिखते रहे, उन्हें अब सुनना भी पड़ रहा है, बदलाव करना भी पड़ रहा है।

0: उसके गाड़ी बात होती है और पुलिस की गाड़ी आ चुकी है और
1: जिस मानसून सत्र में हंगामे की वजह से संसद का कामकाज भूल गया, वहां इस मानसून में राजस्थान के अलवर में होता यह हंगामा कामकाज धुलने का नहीं, कामकाज को सुधारने का। ये बच्चे अलवर जिले के थाना गाजी में जोधावास गांव की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के हैं, जो कुछ बड़ा या अलग नहीं मांग रहे, बस ये चाहते हैं स्कूल दिया है तो सुरक्षित क्लासरूम हो, टीचर हो, स्कूल आने का रास्ता साफ हो, सड़क बने।
2: हमारी स्कूल को सीनियर हुए 4 साल हो गई, मात्र 5 टीचर है जो थर्ड ग्रेड के, जो बड़ी सीनियर क्लासों में पढ़ाते हैं, सेकंड ग्रेड में बस मात्र एक टीचर है और जिसको भी कुछ भी होगा जो 400 रखा है और
3: हमारे विद्यालय में विद्यार्थियों को पहुंचने के लिए अच्छा रास्ता है, फुले हमारे जो सहपाठी है वो नदी क्रॉस करके आते हैं, तो हम चाहते हैं कि उनको नदी क्रॉस करने के लिए पुलिया का निर्माण किया जाए।
1: प्रदर्शन के बाद अधिकारियों ने पहले यहां तुरंत 7 टीचर और लगाकर शिक्षकों की कमी को पूरा किया, लेकिन इसके बाद भी धरना खत्म नहीं होता।
4: सभी से वार्ता की गई, 4 घंटे वो रुके, तो पहले तो ये है कि वो एक सीनियर स्कूल है, 5-6 अध्यापक थे, तो उसकी वजह 7 अध्यापक वहाँ और लगा दिए मौके पर ही, और 13 अध्यापक अब वहाँ 170 बच्चों के ऊपर हो गए।
1: बच्चे पूरा हिसाब चाहते हैं, इनके स्कूल के क्लासरूम की हालत देखिए, जहाँ पढ़ना खतरे से खाली नहीं, यहाँ बच्चे बाल बाल बचते हैं जब एक क्लासरूम में हादसा हो जाता है, इसीलिए धरना देना जारी रखते हैं। अधिकार और कर्तव्य को समझते भारत के जैन अल्फा की चौथी गवाही मध्य प्रदेश के उज्जैन से आई। छात्राओं के नारों की गूंज उज्जैन में गूंज रही, 700 से ज्यादा बच्चियां उज्जैन के सर्राफा कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हैं, जो अभी महाकाल मंदिर के पास जयसिंहपुरा में चलता है। अब इनके स्कूल को संदीपन विद्यालय में मर्ज किया जा रहा है, दलील ये कि स्कूलों की गुणवत्ता और शिक्षा में सुधार लाया जाएगा। छात्राओं का कहना है कि अब जिस स्कूल के साथ मर्ज किया जा रहा है वहां की दूरी ज्यादा है, रास्ते में इन्हें दिक्कत होगी, इसीलिए कलेक्टर दफ्तर के बाहर आकर धरना दे दिया। कलेक्टर शिकायत सुनने आए नहीं, जिला शिक्षा अधिकारी को भेज दिया।
5: स्कूल जयसिंहपुरा में और हमारा स्कूल हावित खरीद शिफ्ट हो रहा है, हम इतनी दूर नहीं जा सकते, हमारे मम्मी पापा हमको परमिशन नहीं देंगे, वो बहुत दूर है और उधर का इलाका भी बहुत मतलब बहुत खराब है, हम कैसे जाएंगे।
6: लड़कियां गांव से आती है 10-10 किलोमीटर दूर से यहां तक, और छोटे और इतनी दूर से अगर वो दाऊद खेड़ जाएंगे तो कब पहुंचेंगे, रात को 10 बजे, अगर बीच में अगर कोई दुर्घटना हो गई उनके साथ तो जिम्मेदार क्या, कलेक्टर रहेगा या कोई और रहेगा।
7: हमारे मम्मी पापा ने बोल दिया अगर सराफा स्कूल में दावत खेड़ी जाएगा तो हमें पढ़ाएंगे ही नहीं वो बिल्कुल भी।
8: अभी एकदम निर्णय नहीं होगा कि वहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, शासन के भी निर्देश है कि जिला स्तरीय मॉनिटरिंग समिति निर्णय ले, तो जिला स्तरीय मॉनिटरिंग समिति की बैठक शीघ्र होने वाली है जिसमें पालकों के प्रतिनिधि को सूचित किया जाएगा, वो भी आएंगे और वो भी अपना पक्ष रखेंगे, उसके बाद जो निर्णय होगा वो मॉनिटरिंग समिति लेगी।
1: देश के तमाम राज्यों में होते ये प्रदर्शन इस बात को साबित करते हैं, सरकारों की तमाम कोशिश के बाद व्यवस्था बुनियादी जरूरतों को स्कूली ढांचे में पूरा करने में नाकाम है, जिसकी वजह से अब बच्चों को मैदान में उतरना पड़ रहा है।
9: राजस्थान में भर्तियों का भ्रष्टाचार खुला, जहां योग्य किनारे हो जाएं, अयोग्य जनता की सेहत से खिलवाड़ करने लगे, फर्जी डिग्री लगाकर डॉक्टर बनकर मरीजों का इलाज करने लगे, 3 डॉक्टर गिरफ्तार किए गए, 20 से 30 लाख रुपए में फर्जी डिग्री इन्होंने बनवाई थी। राजस्थान SOG इस पूरे मामले की तह तक पहुंचने में जुटी,

0: चेहरा छुपा रहे ये तीनों राजस्थान के वो फर्जी डॉक्टर हैं जो कई वर्षों से मरीजों की जान से खिलवाड़ करते रहे, दवाइयां उनके लिए लिखते रहे। आशीष शर्मा फर्जी डिग्री वाला डॉक्टर, करौली के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ये मरीज देखता था।
1: आदेश दिनांक 18/12/2023 के तहत हमारे पास एक लिस्ट आई थी, उस लिस्ट में डॉक्टर आशीष का सीरियल नंबर 11 पर है। उसकी रैंक एग्जाम में एफएमजी इंटर्नशिप रैंक 245 थी।
0: नरेश रौलनिया फर्जी डिग्री वाला डॉक्टर, उदयपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज से इंटर्नशिप करके कोटपुतली के पल्स अस्पताल में डॉक्टर बन गया। जयपुर के मुरलीपुरा में ये श्रीनारायण अस्पताल चला रहा डॉक्टर राजेंद्र यादव है, जो चीन से 2006 से 2012 के बीच एमबीबीएस करने का सर्टिफिकेट लेकर आया। साल 2012 से लेकर 8 बार इसने राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड की एफएमजी स्क्रीनिंग परीक्षा देने की कोशिश की, पर एक बार भी पास नहीं हो पाया। फिर इसने खुद ही नकली सर्टिफिकेट छपवा कर 29 लाख में राजस्थान मेडिकल काउंसिल से मरीज देखने का लाइसेंस हासिल कर लिया। एसओजी की गिरफ्त में आए राजेंद्र यादव के अस्पताल में जब आज तक संवाददाता खबरदार करने पहुंचते हैं, तो यहां अस्पताल को और आगे बढ़ाने का काम चलता मिलता है। डॉक्टर की गिरफ्तारी के बाद भी अस्पताल खुला हुआ है। फर्जी डॉक्टर और उसकी डेंटिस्ट पत्नी 6 साल से यहां मरीज देख रहे थे।
2: तो कब उनको अरेस्ट की पुलिस ने?
3: 4 रोज पहले।
2: 4 रोज पहले? और पता था आपको कि उनके पास नकली डिग्री है?
3: नहीं,
2: किसी को पता नहीं था?
3: नहीं।
2: ये अस्पताल उन्हीं का है?
3: हाँ।
0: डॉक्टर की फर्जी डिग्री वाले आशीष शर्मा ने कजाकिस्तान से साल 2021 में एमबीबीएस करने का सर्टिफिकेट बनवाया था। भारत में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड की एफएमजी स्क्रीनिंग परीक्षा 3 बार देने के बावजूद वो पास नहीं हो सका। इसके बाद आरोपी ने शुभम गुर्जर के जरिए 25 लाख रुपए देकर एफएमजी परीक्षा का फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया। शुभम गुर्जर भी पहले 25 लाख में फर्जी सर्टिफिकेट बनवाता था। हैरत की बात है कि दोनों ही राजस्थान सरकार के करौली मेडिकल कॉलेज में मरीज देख रहे थे। दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं।
4: आदमी जितने पैसे करोड़ों रुपए खर्च करके वो बाहर अपनी एमबीबीएस करता था, और यहाँ पे जो किंग पिन्स हम लोगों ने जिनको अरेस्ट किया है, उनके इंटरोगेशन से 25 से लेके 35 लाख 40 लाख तक ये अमाउंट लेते थे सर्टिफिकेट अवेलेबल कराने का।
0: नरेश तो इनसे भी आगे निकला। तजाकिस्तान से फर्जी डॉक्टरी की डिग्री हासिल कर पल्स हॉस्पिटल कोटपुतली के इमरजेंसी वार्ड में काम कर रहा था। वो बिना एफएमजी स्क्रीनिंग परीक्षा पास किए और बिना राजस्थान मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रेशन के मरीजों का इलाज करता रहा।
4: फेक एफएमजी एग्जाम के जो सर्टिफिकेट वाला जो स्कैंडल हम लोगों ने खोला है, उसमें करीब 30 के करीब हम डॉक्टर्स और अनएसोसिएट्स को इसमें अरेस्ट कर चुके हैं, और हमारे पास में करीब 80-90 और अधिक इसके अलावा भी कुछ नाम हमारे पास में चल रहे हैं जो इस सारे सिस्टम में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहे हैं।
0: राजस्थान एसओजी के मुताबिक इस मामले में अब तक 100 से अधिक फर्जी डॉक्टर की पहचान की जा चुकी है, जिन्होंने कथित तौर पर फर्जी स्क्रीनिंग प्रमाण पत्र तैयार करवाया है। इन्हें पकड़ना आसान नहीं हो रहा था क्योंकि इन्होंने सारे फर्जी सर्टिफिकेट ऑफलाइन बनवाए हैं। इस मामले में राजस्थान मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार डॉक्टर राजेश शर्मा समेत 4 कर्मचारी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं।
5: राजस्थान के अस्पतालों में मरीज देखने वाले फर्जी डॉक्टरों के पकड़े जाने का सिलसिला जारी है। अब तक 35 से ज्यादा फर्जी डॉक्टर पकड़े जा चुके हैं, मगर अभी भी 80 से ज्यादा फर्जी डॉक्टर अस्पतालों में मरीज देख रहे हैं और मरीजों के जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कैमरामैन मनीष के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक।
6: उत्तराखंड में हुए एक और टनल एक्सीडेंट की यह खबर है। चमोली में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की टनल में कल एक हादसा हुआ। 7 मजदूर इस हादसे में अब तक मारे गए, 3 लापता हैं, 12 मजदूर घायल हैं। लापता मजदूरों की तलाश हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों उत्तराखंड में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए जो टनल्स बनाई जा रही हैं उनमें हादसे हो रहे हैं, और यह हादसे आखिर कब तक होते रहेंगे?
7: बार बार उत्तराखंड की सुरंगों में क्यों हो रहे हैं इतने बड़े हादसे?
3: विकास की राह में विनाश का इंतजाम कौन कर रहा है? क्या उत्तराखंड की नदियों में जरूरत से ज्यादा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं? उत्तराखंड के कच्चे पहाड़ों में बड़ी बड़ी सुरंगें खोदकर विनाश कौन ला रहा है? उत्तराखंड में एक और मौत की सुरंग बनी है चमोली जिले के पीपल कोटी की टीएचडीसी की सुरंग। तस्वीरें बता रही हैं कि सुरंग के अंदर इस वक्त क्या हालात हैं। पूरी स्थिति समझने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि यह हादसा कहां और कैसे हुआ। उत्तराखंड के चमोली जिले के पीपल कोटी में टीएचडीसी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहा है। ये प्रोजेक्ट अलकनंदा नदी पर बन रहा है जिसकी क्षमता होगी 444 मेगावाट। बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट का 80% काम पूरा हो चुका है। इस प्रोजेक्ट के तहत एक 65 मीटर ऊंचा डैम बन रहा है जिसमें दो सुरंगें होंगी। पहली है हेड रेस टनल यानी HRT जिसकी लंबाई है 13.4 किलोमीटर और दूसरी है टेल रेस टनल TRT जिसकी लंबाई है 3.04 किलोमीटर। गुरुवार को जो हादसा हुआ वो इसी TRT सुरंग में हुआ है। अब ये समझिए कि यह हादसा कैसे हुआ। इस इलाके में जमकर बारिश हो रही है, मॉनसून का सीजन है और आसमान से आफत बरस रही है। कई जगहों पर भूस्खलन और बादल फटने की घटनाएं भी हो रही हैं। इन हालात में भी इस टनल में काम चालू था। बताया जा रहा है कि गुरुवार को अचानक से सुरंग में 150 मीटर दूर तेज आवाज के साथ भारी भूस्खलन हुआ। मलबा, पत्थर

0: बताया जा रहा है कि टनल के अंदर मलबा दो दिन से आ रहा था, लेकिन इसके बाद भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ने इस पर ध्यान नहीं दिया और काम चालू रखा। इसके बाद तो टनल में लगातार पानी भरता गया। हालांकि हादसे की सूचना मिलते ही राहत और बचाव दल मौके पर पहुंच गया था। ये तस्वीरें बता रही हैं कि अंदर क्या हालात थे। बताया गया कि सुरंग के अंदर कुल 22 मजदूर फंसे हुए थे। 7 मजदूरों की मौत हो गई है, 3 अभी भी फंसे हैं। 12 मजदूरों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।
1: गुरुवार शाम को 6:30 बजे के आसपास पीपलकोटी विष्णुघाट परियोजना की जो TSDC की ये टनल है, TRT टनल, इसके अंदर 1500-1600 मीटर के करीब में एक लूज जो है टनल के अंदर गिरा और उसके बाद एक बहुत जबरदस्त, यहाँ पे बताया जा रहा है, हवा का झोंका और पानी का बहुत बड़ा रिसाव हुआ और उसने कुछ लोगों को तो अंदर की ओर धकेला और कुछ लोगों को बाहर की ओर धकेला। ऐसे में कुछ तो ठीक ठाक निकल चुके हैं, लेकिन अभी तक 3 लोग लापता है। पता चला इस पूरे हादसे में 22 लोग यहाँ पे हताहत हुए थे, जो कुछ घायल हैं, कुछ 7 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। वहीं अभी राज्य आपदा प्रबंधन सचिव जो है विनोद कुमार सुमन, वो यहाँ पे निरीक्षण करके गए। उनका कहना है कि डीवाटरिंग करने का काम किया जा रहा है और जल्द से जल्द इस पानी को बाहर निकाला जाएगा, ताकि जो 3 लोग हैं अंदर उनका रेस्क्यू हो नहीं पा रहा है, पानी भर जा रहा है। ऐसे में लगातार यहाँ पे ITBP की फोर्स है, वो लगातार आ रही है, जा रही है, जो टीमें हैं वो लगातार लगी हैं, कभी मशीनें भेजी जा रही हैं, कभी ड्रम भेजे जा रहे हैं, अलग अलग तरीके से यहाँ पे इस समय जो रेस्क्यू और बचाव के काम चल रहे हैं वो करवाए जा रहे हैं।
0: लेकिन समस्या ये है कि टनल के अंदर लगातार पानी भरता जा रहा है, इसी वजह से रेस्क्यू टीमों को दिक्कतें आ रही हैं। जैसे ही कल रात ये रेस्क्यू टीमें पहुंची तो टनल में बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ था। तुरंत इन्होंने टेम्पररी नाव बना दी, नीचे बड़े बड़े ड्रम बांधे और एक अस्थाई नाव का निर्माण किया, और उसके बाद देखिए कैसे इन जुगाड़ की नावों से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया।
2: कल तक काफी लोगों को निकाला हम लोगों ने, जिसमें से 12 लोग को सुरक्षित बचाया गया है, 7 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है, 3 लोग अभी लापता चल रहे हैं जिनको खोजने का काम चल रहा है। पानी का लेवल ज़्यादा होने से थोड़ी सी समस्या आ रही है हम लोगों को। डीवाटरिंग पंप अभी 5 काम कर रहे हैं, तो डीवाटरिंग पंप की संख्या को बढ़ाने के लिए कहा गया है TSDC से, वो पंप मंगा रहे हैं NTPC के माध्यम से, और बाकी हमने कहा जहाँ भी पंप जितने भी अवेलेबल हैं पंपों की संख्या बढ़ाइए, क्योंकि अभी जिस गति से पानी हम निकाल रहे हैं लगभग उसी गति से पानी ऊपर से आ रहा है, इसके कारण जो है थोड़ी समस्या हो रही है। अभी मैनुअल तरीके से हम राहत बचाव कर्मी दल जाके ढूंढ कर रहे हैं, खोजबीन कर रहे हैं, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल पाई है अभी तक।
0: अभी सबसे पहली प्राथमिकता 3 लापता लोगों को खोजने की है, लेकिन टनल के अंदर बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि करीब 1 किलोमीटर के इलाके में पानी भरा है और कहीं कहीं तो पानी 5 फीट तक गहरा है। पानी में बहुत सी गाद और मलबा है, कीचड़ है, इसी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में समस्याएं हैं। पहली कोशिश यही है कि टनल के अंदर से पानी को किसी तरीके से बाहर निकाला जाए।
3: कठिनाई जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि पानी का एरिया जो है बहुत लंबा है, लगभग 1 किलोमीटर एरिया है जो पानी से भरा हुआ है, और उसमें हाइट जो है 3-4 फीट तक जा रही है, कहीं कहीं पर 5 फीट भी है। तो उस पर्टिकुलर एरिया में 1 किलोमीटर लंबा प्लस 3-4 फीट गहरा पानी है, और वो केवल पानी नहीं है, वो स्लजी वाटर है, तो उसमें जो सर्च करने के लिए दिक्कत आ रही है। बट हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा ट्रूप्स को यूज़ करके और मैक्सिमम एरिया जो है मैनुअली सर्च करके क्लियर कर रहे हैं।
1: क्या लग रहा है कब तक ये हो पाएगा, या फिर पानी कैसे भर रहा है इतना ज़्यादा पानी?
3: जी देखिए, मोस्ट फेवरेबल कंडीशन यही होगी जब पानी कम होगा। तो पानी कम करने के लिए जैसा मैंने बताया, संस्थान ने जो मोटर्स लगाई हैं वो सही कार्रवाई करें। बट हो क्या रहा है कि जो इसका दूसरा सोर्स है जहाँ से ये कोलैप्स हुआ है, वहाँ से पानी कंटिन्यूसली आ रहा है, तो जितना हम निकाल रहे हैं उतना ही आ रहा है, तो ये कंडीशन थोड़ा सा हमारे लिए डाइसी हो रही है इस वजह से।
1: कितनी टीम मेंबर NDRF यहाँ पे लगी हुई है?
3: देखिए NDRF की यहाँ पर 3 टीमें वर्तमान में आ रखी हैं, और तीनों टीमें जो है रोटेट होकर अपनी कार्रवाइयाँ कर रही हैं।
0: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी घटनास्थल पर पहुंचे और टनल के अंदर जाकर रेस्क्यू का काम उन्होंने देखा। घायलों से मुलाकात की, अब वो कह रहे हैं कि राज्य की सुरंगों की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि सुरंगों में लगातार हादसों को कैसे टाला जाए।
4: एक और टनल दुर्घटनाएं हमेशा हो रही, सिलक्यारा हुई, ये हुई, इससे पहले टनल की

0: समस्या के लिए राज्य सरकार क्या संबंधित एजेंसी को कोई निर्देश देगी?
1: बिल्कुल निर्देश देंगे, और हमारे लिए जो भी कार्मिक जो भी काम करने वाले हैं उनकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। बिना सुरक्षा के, जब तक पूरे सुरक्षा के प्रबंध नहीं हो जाते तब तक इन कामों को भी आगे नहीं बढ़ाएंगे।
2: गढ़वाल से बीजेपी के सांसद अनिल बलूनी भी पहुंचे, टनल के अंदर गए, पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन देखा। सबसे ज्यादा समस्या यही आ रही है कि टनल में लगातार पानी भर रहा है। बड़े बड़े पंप लगाकर पानी को निकाला तो जा रहा है, लेकिन जितना पानी निकलता है उतना फिर से सुरंग में आ जा रहा है।
3: वाकई बड़ी मुश्किल परिस्थितियों में अंदर काम हो रहा है, और आप सब लोग जानते हैं अभी ऑपरेशन जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है, और हमारे NDRF और SDRF के जवान और बाकी जो हमारा स्थानीय प्रशासन है सब मिलकर अंदर, क्योंकि काफ़ी पानी भरा हुआ है और काफ़ी मुश्किल परिस्थितियाँ हैं, उन सब में काम कर रहा है। अभी बताया जाता है कि 3 लोग मिसिंग की जानकारी जो है वो सब है, हम अंदर देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति मिल सके हमें, और सारे लोग बातचीत कर रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं। अभी प्रशासन पूरी ताकत से लगा है, आगे पूरे आगे तक जाने की तैयारी में है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में आगे जाके कुछ अच्छी सूचना भी हम लोगों को मिल सके तो अच्छी बात है।
2: इन हालात में सबसे ज्यादा समस्या मौसम को लेकर भी है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, बारिश रुकी नहीं रही। ऐसे में डर ये भी है कि कहीं और ज्यादा भूस्खलन न हो जाए। अभी तो पहली प्राथमिकता उन 3 लापता मजदूरों को खोजने की है।
4: आ जाओ।
2: कमल नयन सिलोड़ी, चमोली, आज तक।
4: आ जाओ।
5: छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज

0: جشن آزادی کے رنگ میں رنگا ہندوستان. صبح لال قلعے کی پراچیر سے لگاتار 13ویں بار ترنگا پھہرائیں گے پردھان منتری مودی, دیش کو کریں گے سمبودھت. 15 اگست کی پورو سندھیا پر راشٹرپتی دروپدی مرمو جی کا راشٹر کے نام سندیش, بولی یوا آبادی سب سے مولیوان سمپتی, وکست بھارت کے نرمان کے لیے آگے بڑھنے کا آہوان. نہیں تھم رہا پی ایم مودی پر راہل کے بیان پر ہنگامہ, راجناتھ سنگھ نے لوکتنتر کے لیے گمبھیر خطرہ بتایا, ودیش منترالے نے کہا آدر کے ساتھ رکھو بات. ودھان سبھا چناؤ سے پہلے یو پی میں زبانی یدھ تھے, سی ایم یوگی بولے صرف ستا کے لیے پہلے کی سرکاریں, اکھلیش بولے یو پی میں اب تک کی سب سے بھرشٹ یوگی سرکار. اور کاکروچ وواد پر چیف جسٹس سوریہ کانت کا بڑا بیان, بولے میری باتوں کا غلط ارادے سے غلط استعمال, یواؤں کو سوریہ کانت نے گمراہ کرنے کی کوشش بتایا. آج ہمارا دیش سوتنترتا کا 80واں اتسو منا رہا ہے. 80واں سوتنترتا دیوس منانے سے پہلے لوک تانترک طریقے سے جن الفا نے اپنی آواز بلند کر دی. جن الفا جن کے ہاتھوں کی تنی مٹھی نعرے لوک تنتر کی مضبوطی کا سندیش دیتے ہیں, سرکاری ویوستھا کو اس بات کا احساس کراتے ہیں کہ ان کی آواز انسنی آپ نہیں کر سکتے.
1: 80वें स्वतंत्रता दिवस से पहले गूंजते नारे लोकतंत्र को मजबूत करते हैं. ۲۰۲۶ में आजादी का जश्न मनाते भारत के बच्चे हक मांगने से नहीं डरते हैं.
2: क्या हो गया टीचर है कोई यहाँ पे?
3: नहीं,
2: पहला काम करो सुनो, तुरंत साइड में आओ, अंदर चलो, बात करते हैं, ट्रैफिक खोलो, ठीक है? तुरंत मेरे साथ आओ, चलो.
1: 15 अगस्त 2026 ऐतिहासिक है, जहां बच्चे अधिकारियों की आंख से आंख मिलाकर अधिकार मांगते हैं.
4: 4 साल हो गई सीनियर स्कूल बने हुए, मात्र 5 टीचर है.
5: जो भी थायर ग्रेड की
4: सुनवाई नहीं की गई. 4 साल हो गए खाते हुए, कलेक्टर को मैंने खुद अपने लिखित में कागज दिया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई.
5: सही बात.
1: एक तरफ लगता है कि आजादी के 80 साल बाद भी स्कूल व्यवस्था राज्यों में ढुलमुल है, दूसरी तरफ अच्छा लगता है कि लोकतांत्रिक रूप से विरोध करना बच्चे जानते हैं.
6: हमारे खाने के लिए थाने में सुड़ी निकलती है, मेढक निकलता है, छिपकली निकलती है, प्रिंसिपल पास लेकर जाओ. इनका ये होता है कि इस मौसम में निकलता है, मैं क्या कर सकता हूँ. दूसरी बात, तुमने खुद डाला होगा और कहे भी दें तो कहते दूसरा रखवा लो. ऐसा क्या हम लोग मतलब जानवर से बेबत्तर है ये करते हैं हमारे लिए.
1: बच्चों के नारे इस बात का एहसास कराते हैं कि आजादी का असली मतलब अपनी आवाज को बुलंद करना है.
7: हम हमारा अधिकार मांगते
8: हैं.
1: स्वतंत्रता का 80वां महोत्सव खास है क्योंकि अब की जेन जी और जेन अल्फा की बुलंद आवाज है.
9: कल जो आपने प्रदर्शन किया था उसमें कितने रुपए किराया लिया जा रहा था पहले आपसे? और आज कितने रुपए किराया लिया जा रहा है? आपसे भी 10 रुपए. सभी का किराया मान के चलें तो कम हुआ सभी से, ठीक है.
1: लाल किले पर लहराता तिरंगा, वो पल जब देश हमेशा गर्व से भर जाता है, याद करता है स्वतंत्रता की सेनानियों को. भारत और भारतीयता के विश्वास से उत्प्रोत हर नागरिक के लिए आजादी का दिन बहुत विशेष महत्व रखता है. लेकिन इस बार ये उत्सव और भी विशेष है, जहां भारत के भविष्य की बुलंद होती आवाजें, लोकतांत्रिक रूप से रखी जाती मांगे, अड़ने की जगह बिना डरे हक के लिए लड़ने वाली आदत इस भरोसे को मजबूत करती है कि भारत का बच्चा बच्चा अपने अधिकार और कर्तव्य दोनों को समझ रहा है. आज इसीलिए एक एक करके हम आपको ऐसी तस्वीरों से खबरदार करेंगे। अधिकार और कर्तव्य को समझते भारत के जैन अल्फा की पहली गवाही लखनऊ से आई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मोहान रोड पर जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय, प्रदेश के समाज कल्याण विभाग के अधीन आने वाले इस स्कूल में छात्र संभव है कि देश में जंतर मंतर आंदोलन से शुरू हुए प्रदर्शन के बाद अपना हक मांगने वाली लकीर पर चलते हुए आगे बढ़े। जहां हॉस्टल में खराब खाना, खाने में बार बार कीड़ा निकलना, बीमार होने पर इलाज की व्यवस्था न होना और शिक्षकों की कमी को लेकर छात्रों का दावा है कि स्कूल प्रशासन ने उनकी शिकायत पर कान नहीं दिया तो ये सड़क जाम करने निकल पड़े। लखनऊ में छात्रों की तरफ से सड़क जाम की खबर आते ही पहले जहां छात्रों को हटाने के लिए पुलिस दिखती रही थी, वहां अब की बार शायद पहली बार ऐसा देखा सुना जा रहा है जब कोई मंत्री तुरंत समस्या सुनने पहुंच गया। जैसे असीम अरुण उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री हैं, प्रदर्शन करते छात्रों के बीच पहुंचकर सीधे कहते हैं चलो तुम्हारी बातें सुनते हैं, शिकायत दूर करते हैं,
2: अंदर चलो बात करते हैं, ट्रैफिक खोलो, ठीक है, तुरंत मेरे साथ आओ।
1: इसके बाद तुरंत मंत्री असीम अरुण के साथ छात्र भीतर आते हैं। यहीं आज हम आपको दिखा रहे हैं कि छात्र संविधान से मिले अधिकार और कर्तव्य दोनों को समझ रहे हैं, जो अपने अधिकार के लिए प्रदर्शन करने का अधिकार भी जानते हैं और मंत्री की तरफ से समस्या सुने जाने की बात आते ही तुरंत रास्ता भी छोड़ देते हैं और फिर समाधान की बात आती है।
2: जो कमियां हैं उनको दूर काफी हद तक किया हम लोग ने, लेकिन मैं स्वयं अभी संतुष्ट नहीं हूँ। हम लोग को कमियों को और दूर करना है। पहली चीज जितने स्टाफ सारे हमारे क्वार्टर बन गए, हमारे ट्रांजिट हॉस्टल बन गए, टीचर्स 24 घंटे यहाँ पे रहेंगे, कोई हाँ फार्मासिस्ट भी और भी नॉन टीचिंग स्टाफ जिसके लिए आवास अवेलेबल है। ये आवासीय विद्यालय है, केवल बच्चों का नहीं स्टाफ का, और जिसको रहने में समस्या आ रही है वो अपना इस्तीफा देते घर।
1: लोकतंत्र की यही ताकत है जो इस स्वतंत्रता दिवस को विशेष बनाती है। जहाँ स्कूली शिक्षा का बुनियादी ढांचा लचर है, उसे मजबूत करने की मांग खुद बच्चे कर रहे हैं। अधिकार और कर्तव्य को समझते भारत के जैन अल्फा की दूसरी गवाही भी उत्तर प्रदेश से आई है। इसके लिए अब कन्नौज चलते हैं।
3: कई दिनों से समस्याएं थी जिनको लेकर हम झेल रहे थे, सह रहे थे, लेकिन अब कुछ ज्यादा ही ओवर हो गया था
2: जी, जी, जी।
3: तो उसके लिए हमने ये किया क्योंकि परेशान हो चुके थे, और एक नहीं क्लास 6 के जूनियर से लेकर क्लास 12 के बच्चे सभी परेशान हैं।
1: कन्नौज के जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले ये वो जैन अल्फा हैं जो अपनी समस्याओं के निदान के लिए सड़क पर नहीं उतरे बल्कि खुद को ही एक कमरे में बंद कर लिया। इनका वीडियो वायरल हुआ, मीडिया पहुंचा। इन छात्रों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए मुंह ढक लिया, ये इनका अधिकार है। लेकिन अपने दूसरे अधिकारों के लिए इन्होंने खुद को क्लास में लॉक करने का ऐसा तरीका लगाया कि प्रशासन को जागना पड़ा। पहले शिकायत सुनिए, फिर समाधान देने पहुंचे जिलाधिकारी को।
3: मैं इसमें खाने की सही व्यवस्था नहीं होती, हाउस में लाते हैं। खाने की व्यवस्था इसलिए नहीं क्योंकि 550 बच्चे हैं वहाँ पर, ना तो फैन लगा है ना कोई फैन, वैसे क्या नाम गैस फैन नहीं लगे हैं, तो सफोकेशन होती है। खाते हैं वहाँ पर, बच्चे भी नहीं बैठ पाते, 550 बच्चे हैं, इतनी जगह नहीं है। तो हम लोग हाउस में ले आते हैं तो ये कहते हैं कि तुम लेटरिन में खाते हो, उसी का सूंघते हो, उसी में खाते हो, उसी में बैठ कर खाते हो, गंदे गंदे सब खाना। ऐसा कच्चे चावल रखे हैं, हम दिखाते हैं चावल कच्चे बिल्कुल, जो गले से नीचे ना होते। हम लोग करीब 100 से 100 बच्चे हैं।
2: कितनी देर से बंद है
3: सर? हम कल
2: 4 बजे से,
3: कल शाम से हम लोगों ने खाना नहीं खाया।
2: स्कूल प्रशासन की सूचना दी थी इस बात की आप लोग बंद है अंदर?
3: सूचना सबको दी, आए मतलब आए विद्यालय। हमारी डिमांड है कि डीएम सर आए और हमसे बात करें आकर।
5: इस विद्यालय में बच्चों को कुछ अपनी कठिनाइयां थीं, जिसमें हम लोग आज गए और उनके बीच वार्ता की। जहां वो रह रहे थे उनके हॉस्टल में, उन्हीं के बीच में हम लोग बैठे। सभी बच्चे अनुशासित हैं, अच्छे बच्चे हैं और मेरिट में ये लोग सेलेक्ट होकर के यहाँ आए हैं। विधिवत रूप से उनको सुना गया है, जो उनकी कठिनाइयां थी उनके बारे में हम लोग दूर करेंगे उनको, और सरकार हर तरीके से विद्यार्थियों के साथ है और मेधावी विद्यार्थियों के साथ भी है। किसी प्रकार की कोई कठिनाई इन लोगों को नहीं होने देंगे।
0: कहीं नारा लग रहा है कि कलेक्टर साहब का आना हो को आना होगा, कहीं नारे लगाए जाते हैं, हमारी बातें आपको सुननी होंगी। ये हमारे वो बच्चे हैं जिन्हें नागरिक शास्त्र का पाठ पढ़ाया जाता है, लेकिन ये पहली बार उन पाठों का प्रयोग भी कर रहे हैं। ये हमारे वो बच्चे हैं जिन्होंने आंदोलन के बारे में पढ़ा है, लेकिन पहली बार ये बच्चे खुद आंदोलन कर रहे हैं। अब दो चीजों की जरूरत है। पहले, ऐसे हर आंदोलन में बच्चों की मांगें सुनी जाएं, उनकी बातों को पूरा किया जाए, और दूसरी जरूरत ये कि सरकारें देखें कि आखिर क्यों अब भी हमारे बच्चों के स्कूलों की स्थिति खराब है।
1: अधिकार और कर्तव्य को समझते भारत के जेन अल्फा की तीसरी गवाही राजस्थान के अलवर से आई है।
4: 4 साल हो गई, 3 ईयर स्कूल बने हुए, मात्र 5 टीचर है,
10: जो भी थर्ड ग्रेड के
1: अधिकारियों के सामने मर्दानी बनकर अपने हक को बुलंद करती एक छात्रा बोलती, और तभी
4: मजाक बना रखा है स्कूल को, ना इसमें बैठने लायक एक भी कमरा है।
1: ये बच्चे चीख नहीं रहे, बस उन अधिकारियों के कानून सामने खड़े होकर अपनी आवाज पहुंचा रहे, जो एसी कमरों से अब तक बहुत कम निकलते रहे, जो फाइलों में ऑल इज वेल लिखते रहे, उन्हें अब सुनना भी पड़ रहा है, बदलाव करना भी पड़ रहा है।

0: पुलिस की गाड़ी भी आ चुकी है और पुलिस की गाड़ी आ चुकी है और
1: जिस मानसून सत्र में हंगामे की वजह से संसद का कामकाज खुल गया, वहाँ इस मानसून में राजस्थान के अलवर में होता यह हंगामा कामकाज धुलने का नहीं, कामकाज को सुधारने का। ये बच्चे अलवर जिले के थाना गाजी में जोधावास गांव की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के हैं, जो कुछ बड़ा या अलग नहीं मांग रहे, बस ये चाहते हैं स्कूल दिया है तो सुरक्षित क्लासरूम हो, टीचर हो, स्कूल आने का रास्ता साफ हो, सड़क बने।
2: और जिसको भी कुछ भी होगा जो चार सौंप रखा है और लेक्चरर फोर्थ सेक्शन करवाओ।
3: हमारे विद्यालय में विद्यार्थियों को पहुंचने के लिए अच्छा रास्ता है, फुल हमारे जो सहपाठी है वो नदी क्रॉस करके आते हैं, तो हम चाहते हैं कि उनको नदी क्रॉस करने के लिए पुलिया का निर्माण किया जाए।
1: प्रदर्शन के बाद अधिकारियों ने पहले यहाँ तुरंत 7 टीचर और लगाकर शिक्षकों की कमी को पूरा किया, लेकिन इसके बाद भी धरना खत्म नहीं होता।
4: सभी से वार्ता की गई, 4 घंटे वो रुके, तो पहले तो ये है कि वो एक सीनियर स्कूल है, वहाँ 6 अध्यापक थे, तो उसकी वजह 7 अध्यापक वहाँ और लगा दिए मौके पर ही, और 13 अध्यापक अब वहाँ 170 बच्चों के ऊपर हो गए।
1: बच्चे पूरा हिसाब चाहते हैं, इनके स्कूल के क्लासरूम की हालत देखिए, जहाँ पढ़ना खतरे से खाली नहीं, यहाँ बच्चे बाल बाल बचते हैं जब एक क्लासरूम में हादसा हो जाता है, इसीलिए धरना देना जारी रखते हैं। अधिकार और कर्तव्य को समझते भारत के जैन अल्फा की चौथी गवाही मध्य प्रदेश के उज्जैन से आई। छात्राओं के नारों की गूंज उज्जैन में गूंज रही, 700 से ज्यादा बच्चियां उज्जैन के सर्राफा कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हैं, जो अभी महाकाल मंदिर के पास जयसिंहपुरा में चलता है। अब इनके स्कूल को संदीपन विद्यालय में मर्ज किया जा रहा है, दलील ये कि स्कूलों की गुणवत्ता और शिक्षा में सुधार लाया जाएगा। छात्राओं का कहना है कि अब जिस स्कूल के साथ मर्ज किया जा रहा है वहाँ की दूरी ज्यादा है, रास्ते में इन्हें दिक्कत होगी, इसीलिए कलेक्टर दफ्तर के बाहर आकर धरना दे दिया। कलेक्टर शिकायत सुनने आए नहीं, जिला शिक्षा अधिकारी को भेज दिया।
5: स्कूल जयसिंहपुरा में और हमारा स्कूल शिफ्ट हो रहा है, हम इतनी दूर नहीं जा सकते, हमारे मम्मी पापा हमको परमिशन नहीं देंगे, वो बहुत दूर है और उधर का इलाका भी बहुत मतलब बहुत खराब है, हम कैसे जाएंगे।
6: लड़कियां गांव से आती है 10-10 किलोमीटर दूर से यहां तक, और छोटी और इतनी दूर से अगर वो दाऊद खेड़ी जाएंगे तो कब पहुंचेंगी, रात को 10 बजे। अगर बीच में अगर कोई दुर्घटना हो गई उनके साथ तो जिम्मेदार क्या, कलेक्टर रहेगा या कोई और रहेगा।
5: हमारे मम्मी पापा ने बोल दिया अगर सराफा स्कूल में दावत खेड़ी जाएगा तो हमें पढ़ाएंगे ही नहीं वो बिल्कुल भी।
7: अभी एकदम निर्णय नहीं होगा कि वहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, शासन के भी निर्देश है कि जिला स्तरीय मॉनिटरिंग समिति निर्णय ले, तो जिला स्तरीय मॉनिटरिंग समिति की बैठक शीघ्र होने वाली है, जिसमें पालकों के प्रतिनिधि को सूचित किया जाएगा, वो भी आएंगे और वो भी अपना पक्ष रखेंगे, उसके बाद जो निर्णय होगा वो मॉनिटरिंग समिति लेगी।
1: देश के तमाम राज्यों में होते ये प्रदर्शन इस बात को साबित करते हैं, सरकारों की तमाम कोशिश के बाद व्यवस्था बुनियादी जरूरतों को स्कूली ढांचे में पूरा करने में नाकाम है, जिसकी वजह से अब बच्चों को मैदान में उतरना पड़ रहा है।
8: राजस्थान में भर्तियों का भ्रष्टाचार खुला, जहां योग्य किनारे हो जाएं, अयोग्य जनता की सेहत से खिलवाड़ करने लगे, फर्जी डिग्री लगाकर डॉक्टर बनकर मरीजों का इलाज करने लगे, 3 डॉक्टर गिरफ्तार किए गए। 20-30 लाख रुपए में फर्जी डिग्री इन्होंने बनवाई थी। राजस्थान SOG इस पूरे मामले की तह तक पहुंचने में जुटी है।

0: चेहरा छुपा रहे ये तीनों राजस्थान के वो फर्जी डॉक्टर हैं जो कई वर्षों से मरीजों की जान से खिलवाड़ करते रहे, दवाइयां उनके लिए लिखते रहे। आशीष शर्मा फर्जी डिग्री वाला डॉक्टर, करौली के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ये मरीज देखता था।
1: आदेश दिनांक 18/12/2023 के तहत हमारे पास एक लिस्ट आई थी, उस लिस्ट में डॉक्टर आशीष का सीरियल नंबर 11 पर है। उसकी रैंक एग्जाम में FMG इंट्रेंसशिप रैंक 245 थी।
0: नरेश रौलनिया फर्जी डिग्री वाला डॉक्टर, उदयपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज से इंटर्नशिप करके कोटपुतली के पल्स अस्पताल में डॉक्टर बन गया। जयपुर के मुरलीपुरा में ये श्रीनारायण अस्पताल चला रहा डॉक्टर राजेंद्र यादव है, जो चीन से 2006 से 2012 के बीच MBBS करने का सर्टिफिकेट लेकर आया। साल 2012 से लेकर 8 बार इसने राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड की FMG स्क्रीनिंग परीक्षा देने की कोशिश की, पर एक बार भी पास नहीं हो पाया। फिर इसने खुद ही नकली सर्टिफिकेट छपवा कर 29 लाख में राजस्थान मेडिकल काउंसिल से मरीज देखने का लाइसेंस हासिल कर लिया। SOG की गिरफ्त में आए राजेंद्र यादव के अस्पताल में जब आज तक संवाददाता खबरदार करने पहुंचते हैं, तो यहां अस्पताल को और आगे बढ़ाने का काम चलता मिलता है। डॉक्टर की गिरफ्तारी के बाद भी अस्पताल खुला हुआ है। फर्जी डॉक्टर और उसकी डेंटिस्ट पत्नी 6 साल से यहां मरीज देख रहे थे।
2: तो कब उनको अरेस्ट की पुलिस ने?
3: 4 रोज पहले।
2: 4 रोज पहले आपको पता था आप लोगों की उनके पास नकली डिग्री है?
3: नहीं,
2: किसी को पता नहीं था?
3: नहीं।
2: ये अस्पताल उन्हीं का है?
3: हाँ।
0: डॉक्टर की फर्जी डिग्री वाले आशीष शर्मा ने कजाकिस्तान से साल 2021 में MBBS करने का सर्टिफिकेट बनवाया था। भारत में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड की FMG स्क्रीनिंग परीक्षा 3 बार देने के बावजूद वो पास नहीं हो सका। इसके बाद आरोपी ने शुभम गुर्जर के जरिए 25 लाख रुपए देकर FMG परीक्षा का फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया। शुभम गुर्जर भी पहले 25 लाख में फर्जी सर्टिफिकेट बनवाता था। हैरत की बात है कि दोनों ही राजस्थान सरकार के करौली मेडिकल कॉलेज में मरीज देख रहे थे। दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं।
4: आदमी जितने पैसे करोड़ों रुपए खर्च करके वो बाहर अपनी MBBS करता था, और यहाँ पे जो किंग पिन्स हम लोगों ने जिनको अरेस्ट किया है, उनके इंटरोगेशन से 25 से लेके 35 लाख 40 लाख तक ये अमाउंट लेते थे सर्टिफिकेट अवेलेबल कराने का।
0: नरेश तो इनसे भी आगे निकला। तजाकिस्तान से फर्जी डॉक्टरी की डिग्री हासिल कर पल्स हॉस्पिटल कोटपुतली के इमरजेंसी वार्ड में काम कर रहा था। वो बिना FMG स्क्रीनिंग परीक्षा पास किए और बिना राजस्थान मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रेशन के मरीजों का इलाज करता रहा।
4: फेक FMG एग्जाम के जो सर्टिफिकेट वाला जो स्कैंडल हम लोगों ने खोला है, उसमें करीब 30 के करीब हम डॉक्टर्स और अन एसोसिएट्स को इसमें अरेस्ट कर चुके हैं, और हमारे पास में करीब 80-90 और अधिक इसके अलावा भी कुछ नाम हमारे पास में चल रहे हैं जो इस सारे सिस्टम में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहे हैं।
0: राजस्थान SOG के मुताबिक इस मामले में अब तक 100 से अधिक फर्जी डॉक्टर की पहचान की जा चुकी है, जिन्होंने कथित तौर पर फर्जी स्क्रीनिंग प्रमाण पत्र तैयार करवाया है। इन्हें पकड़ना आसान नहीं हो रहा था क्योंकि इन्होंने सारे फर्जी सर्टिफिकेट ऑफलाइन बनवाए हैं। इस मामले में राजस्थान मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार डॉक्टर राजेश शर्मा समेत 4 कर्मचारी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं।
5: राजस्थान के अस्पतालों में मरीज देखने वाले फर्जी डॉक्टरों के पकड़े जाने का सिलसिला जारी है। अब तक 35 से ज्यादा फर्जी डॉक्टर पकड़े जा चुके हैं, मगर अभी भी 80 से ज्यादा फर्जी डॉक्टर अस्पतालों में मरीज देख रहे हैं और मरीजों के जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कैमरा मनीष के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक।
6: उत्तराखंड में हुए एक और टनल एक्सीडेंट की यह खबर है। चमोली में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की टनल में कल एक हादसा हुआ। 7 मजदूर इस हादसे में अब तक मारे गए, 3 लापता हैं, 12 मजदूर घायल हैं। लापता मजदूरों की तलाश हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों उत्तराखंड में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए जो टनल्स बनाई जा रही हैं उनमें हादसे हो रहे हैं, और यह हादसे आखिर कब तक होते रहेंगे?
7: बार बार उत्तराखंड की सुरंगों में
3: क्यों हो रहे हैं इतने बड़े हादसे? विकास की राह में विनाश का इंतजाम कौन कर रहा है? क्या उत्तराखंड की नदियों में जरूरत से ज्यादा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं? उत्तराखंड के कच्चे पहाड़ों में बड़ी बड़ी सुरंगें खोदकर विनाश कौन ला रहा है? उत्तराखंड में एक और मौत की सुरंग बनी है चमोली जिले के पीपल कोटी की टीएचडीसी की सुरंग। तस्वीरें बता रही हैं कि सुरंग के अंदर इस वक्त क्या हालात हैं। पूरी स्थिति समझने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि यह हादसा कहां और कैसे हुआ। उत्तराखंड के चमोली जिले के पीपल कोटी में टीएचडीसी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहा है। यह प्रोजेक्ट अलकनंदा नदी पर बन रहा है जिसकी क्षमता होगी 444 मेगावाट। बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट का 80% काम पूरा हो चुका है। इस प्रोजेक्ट के तहत एक 65 मीटर ऊंचा डैम बन रहा है जिसमें दो सुरंगें होंगी। पहली है हेड रेस टनल यानी HRT जिसकी लंबाई है 13.4 किलोमीटर और दूसरी है टेल रेस टनल TRT जिसकी लंबाई है 3.04 किलोमीटर। गुरुवार को जो हादसा हुआ वो इसी TRT सुरंग में हुआ है। अब ये समझिए कि यह हादसा कैसे हुआ। इस इलाके में जमकर बारिश हो रही है, मॉनसून का सीजन है और आसमान से आफत बरस रही है। कई जगहों पर भूस्खलन और बादल फटने की घटनाएं भी हो रही हैं। इन हालात में भी इस टनल में काम चालू था। बताया जा रहा है कि गुरुवार को अचानक से सुरंग में 150 मीटर दूर तेज आवाज के साथ भारी भूस्खलन हुआ। मलबा, पत्थर और पानी तेज गति से टनल के अंदर घुस गए। उस वक्त वहां पर कुछ मजदूर काम कर रहे थे। इसी हादसे में कुछ मजदूर मलबे में दब गए और बाकी फंस गए। टनल में कई जगह से मलबा आने से ऑक्सीजन लेवल बेहद कम हो गया था। बताया जा रहा है कि टनल के अंदर मलबा 2 दिन से आ रहा था लेकिन इसके बाद भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ने इस पर ध्यान नहीं दिया और काम चालू रखा। इसके बाद तो टनल में लगातार पानी भरता गया। हालांकि हादसे की सूचना मिलते ही राहत और बचाव दल मौके पर पहुंच गया था। ये तस्वीरें बता रही हैं कि अंदर क्या हालात थे। बताया गया कि सुरंग के अंदर कुल 22 मजदूर फंसे हुए थे। 7 मजदूरों की मौत हो गई है, 3 अभी भी फंसे हैं। 12 मजदूरों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।
7: गुरुवार शाम को 6:30 बजे के आसपास पीपलकोटी विष्णुघाट परियोजना की जो TSDC की ये टनल है, TRT टनल, इसके अंदर 1500-1600 मीटर के करीब में एक लूज जो है टनल के अंदर गिरा और उसके बाद एक बहुत जबरदस्त, यहाँ पे बताया जा रहा है, हवा का झोंका और पानी का बहुत बड़ा रिसाव हुआ और उसने कुछ लोगों को तो अंदर की ओर धकेला और कुछ लोगों को बाहर की ओर धकेला। ऐसे में कुछ तो ठीक ठाक निकल चुके हैं लेकिन अभी तक 3 लोग लापता है। पता चला इस पूरे हादसे में 22 लोग यहाँ पे हताहत हुए थे, जो कुछ घायल है, कुछ 7 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। वहीं अभी राज्य आपदा प्रबंधन सचिव जो है विनोद कुमार सुमन, वो यहाँ पे निरीक्षण करके गए। उनका कहना है कि डीवाटरिंग करने का काम किया जा रहा है और जल्द से जल्द इस पानी को बाहर निकाला जाएगा ताकि जो 3 लोग हैं अंदर उनका रेस्क्यू हो नहीं पा रहा है, पानी भर जा रहा है। ऐसे में लगातार यहाँ पे ITBP की फोर्स है, वो लगातार आ रही है, जा रही है। जो टीमें हैं वो लगातार लगी हैं, कभी मशीनें भेजी जा रही हैं, कभी ड्रम भेजे जा रहे हैं, अलग अलग तरीके से यहाँ पे इस समय जो रेस्क्यू और बचाव के काम चल रहे हैं वो करवाए जा रहे हैं।
3: लेकिन समस्या ये है कि टनल के अंदर लगातार पानी भरता जा रहा है, इसी वजह से रेस्क्यू टीमों को दिक्कतें आ रही हैं। जैसे ही कल रात ये रेस्क्यू टीमें पहुंची तो टनल में बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ था। तुरंत इन्होंने टेम्पररी नाव बना दी, नीचे बड़े बड़े ड्रम बांधे और एक अस्थायी नाव का निर्माण किया और उसके बाद देखिए कैसे इन जुगाड़ की नावों से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया।
6: छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: جشن آزادی کے رنگ میں رنگا ہندوستان. صبح لال قلعے کی پراچیر سے لگاتار 13ویں بار ترنگا پھہرائیں گے پردھان منتری مودی, دیش کو کریں گے سمبودھت. 15 اگست کی پورو سندھیا پر راشٹرپتی دروپدی مرمو جی کا راشٹر کے نام سندیش, بولی یوا آبادی سب سے مولیوان سمپتی, وکست بھارت کے نرمان کے لیے آگے بڑھنے کا آہوان. نہیں تھم رہا پی ایم مودی پر راہل کے بیان پر ہنگامہ, راجناتھ سنگھ نے لوکتنتر کے لیے گمبھیر خطرہ بتایا, ودیش منترالے نے کہا آدر کے ساتھ رکھو بات. ودھان سبھا چناؤ سے پہلے یو پی میں زبانی یدھ تھے, سی ایم یوگی بولے صرف ستا کے لیے پہلے کی سرکاریں, اکھلیش بولے یو پی میں اب تک کی سب سے بھرشٹ یوگی سرکار. اور کاکروچ وواد پر چیف جسٹس سوریہ کانت کا بڑا بیان, بولے میری باتوں کا غلط ارادے سے غلط استعمال, یواؤں کو سوریہ کانت نے گمراہ کرنے کی کوشش بتایا. آج ہمارا دیش سوتنترتا کا 80واں اتسو منا رہا ہے. 80واں سوتنترتا دیوس منانے سے پہلے لوک تانترک طریقے سے جن الفا نے اپنی آواز بلند کر دی. جن الفا جن کے ہاتھوں کی تنی مٹھی نعرے لوک تنتر کی مضبوطی کا سندیش دیتے ہیں, سرکاری ویوستھا کو اس بات کا احساس کراتے ہیں کہ ان کی آواز انسنی آپ نہیں کر سکتے.
1: 80वें स्वतंत्रता दिवस से पहले गूंजते नारे लोकतंत्र को मजबूत करते हैं. ۲۰۲۶ में आजादी का जश्न मनाते भारत के बच्चे हक मांगने से नहीं डरते हैं.
2: क्या हो गया
3: टीचर है कोई यहाँ पे?
2: लगा
3: दे पहला काम करो, सुनो
2: यस सर
3: तुरंत साइड में आओ, अंदर चलो बात करते हैं, ट्रैफिक खोलो ठीक है, तुरंत मेरे साथ आओ चलो.
1: 15 अगस्त 2026 ऐतिहासिक है, जहां बच्चे अधिकारियों की आंख से आंख मिलाकर अधिकार मांगते हैं.
4: 4 साल हो गई सीनियर स्कूल बने हुए, मात्र 5 टीचर है
5: जो भी थर्ड ग्रेड की
4: सुनवाई नहीं की गई. 4 साल हो गए खाते में, कलेक्टर को मैंने खुद अपने लिखित में कागज दिया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई.
5: सही बात,
4: अगर आपके बच जाते तब भी आप यही सुविधा रखते क्या?
1: एक तरफ लगता है की आजादी के 80 साल बाद भी स्कूल व्यवस्था राज्यों में ढुलमुल है, दूसरी तरफ अच्छा लगता है कि लोकतांत्रिक रूप से विरोध करना बच्चे जानते हैं.
6: हमारे खाने के लिए थाने में सूरी निकलती है, मेढक निकलता है, छिपकली निकलती है, प्रिंसिपल पास लेकर जो इनका ये होता है कि इस मौसम में निकलता है, मैं क्या कर सकता हूँ. दूसरी बात, तुमने खुद डाला होगा और कहे भी दें तो कहते दूसरा रखवा लो, ऐसा कि हम लोग मतलब जानवर से बेबत्तर है ये करते हैं हमारे लिए.
1: बच्चों के नारे इस बात का एहसास कराते हैं कि आजादी का असली मतलब अपनी आवाज को बुलंद करना है.
7: हम हमारा अधिकार मांगते
8: हैं,
9: जोर जोर में के चक्कर में
1: स्वतंत्रता का 80वां महोत्सव खास है क्योंकि अब की जेन जी और जेन अल्फा की बुलंद आवाज है.
10: कल जो आपने प्रदर्शन किया था उसमें कितने रुपए किराया लिया जा रहा था पहले आपसे?
11: पहले 25.
10: और आज कितने रुपए किराया लिया जा रहा है?
11: 10 रुपए.
10: आपसे भी 10 रुपए?
11: हाँ.
10: सभी का किराया मान के चलने तो कम हुआ?
11: हाँ, सबका
10: सभी से. ठीक है.
1: लाल किले पर लहराता तिरंगा, वो पल जब देश हमेशा गर्व से भर जाता है, याद करता है स्वतंत्रता की सेनानियों को. भारत और भारतीयता के विश्वास से उत्प्रोत हर नागरिक के लिए आजादी का दिन बहुत विशेष महत्व रखता है, लेकिन इस बार ये उत्सव और भी विशेष है, जहां भारत के भविष्य की बुलंद होती आवाजें, लोकतांत्रिक रूप से रखी जाती मांगे, अड़ने की जगह बिना डरे हक के लिए लड़ने वाली आदत इस भरोसे को मजबूत करती है कि भारत का बच्चा बच्चा अपने अधिकार और कर्तव्य दोनों को समझ रहा है. आज इसीलिए एक एक करके हम आपको ऐसी तस्वीरों से खबरदार करेंगे। अधिकार और कर्तव्य को समझते भारत के जैन अल्फा की पहली गवाही लखनऊ से आई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मोहान रोड पर जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय है। प्रदेश के समाज कल्याण विभाग के अधीन आने वाले इस स्कूल में छात्र संभव है कि देश में जंतर मंतर आंदोलन से शुरू हुए प्रदर्शन के बाद अपना हक मांगने वाली लकीर पर चलते हुए आगे बढ़े। जहां हॉस्टल में खराब खाना, खाने में बार बार कीड़ा निकलना, बीमार होने पर इलाज की व्यवस्था न होना और शिक्षकों की कमी को लेकर छात्रों का दावा है कि स्कूल प्रशासन ने उनकी शिकायत पर कान नहीं दिया तो ये सड़क जाम करने निकल पड़े। लखनऊ में छात्रों की तरफ से सड़क जाम की खबर आते ही पहले जहां छात्रों को हटाने के लिए पुलिस दिखती रही थी, वहां अब की बार शायद पहली बार ऐसा देखा सुना जा रहा है जब कोई मंत्री तुरंत समस्या सुनने पहुंच गया। जैसे असीम अरुण उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री हैं, प्रदर्शन करते छात्रों के बीच पहुंचकर सीधे कहते हैं चलो तुम्हारी बातें सुनते हैं, शिकायत दूर करते हैं,
3: अंदर चलो बात करते हैं, ट्रैफिक खोलो, ठीक है, तुरंत मेरे साथ आओ।
1: इसके बाद तुरंत मंत्री असीम अरुण के साथ छात्र भीतर आते हैं। यही आज हम आपको दिखा रहे हैं कि छात्र संविधान से मिले अधिकार और कर्तव्य दोनों को समझ रहे हैं, जो अपने अधिकार के लिए प्रदर्शन करने का अधिकार भी जानते हैं और मंत्री की तरफ से समस्या सुने जाने की बात आते ही तुरंत रास्ता भी छोड़ देते हैं और फिर समाधान की बात आती है।
3: जो कमियां हैं उनको दूर काफी हद तक किया हम लोग ने, लेकिन मैं स्वयं अभी संतुष्ट नहीं हूँ। हम लोग को कमियों को और दूर करना है। पहली चीज जितने स्टाफ सारे हमारे क्वार्टर बन गए, हमारे ट्रांजिट हॉस्टल बन गए, टीचर्स 24 घंटे यहाँ पे रहेंगे, कोई हाँ फार्मासिस्ट भी और भी नॉन टीचिंग स्टाफ जिसके लिए आवास अवेलेबल है। ये आवासीय विद्यालय है, केवल बच्चों का नहीं स्टाफ का, और जिसको रहने में समस्या आ रही है वो अपना इस्तीफा देते घर।
1: लोकतंत्र की यही ताकत है जो इस स्वतंत्रता दिवस को विशेष बनाती है। जहाँ स्कूली शिक्षा का बुनियादी ढांचा लचर है, उसे मजबूत करने की मांग खुद बच्चे कर रहे हैं। अधिकार और कर्तव्य को समझते भारत के जैन अल्फा की दूसरी गवाही भी उत्तर प्रदेश से आई है। इसके लिए अब कन्नौज चलते हैं।
5: कई दिनों से समस्याएं थी जिनको लेकर हम झेल रहे थे, सह रहे थे, लेकिन अब कुछ ज्यादा ही ओवर हो गया था
3: जी, जी।
5: तो उसके लिए हमने ये किया क्योंकि परेशान हो चुके थे, और एक नहीं क्लास 6 के जूनियर से लेकर क्लास 12 के बच्चे सभी परेशान हैं।
1: कन्नौज के जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले ये वो जैन अल्फा हैं जो अपनी समस्याओं के निदान के लिए सड़क पर नहीं उतरे बल्कि खुद को ही एक कमरे में बंद कर लिया। इनका वीडियो वायरल हुआ, मीडिया पहुंचा। इन छात्रों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए मुंह ढक लिया, ये इनका अधिकार है। लेकिन अपने दूसरे अधिकारों के लिए इन्होंने खुद को क्लास में लॉक करने का ऐसा तरीका लगाया कि प्रशासन को जागना पड़ा। पहले शिकायत सुनिए, फिर समाधान देने पहुंचे जिलाधिकारी को।
5: मैं इसमें खाने की सही व्यवस्था नहीं होती, हाउस में लाते हैं। खाने की व्यवस्था इसलिए नहीं क्योंकि 550 बच्चे हैं वहाँ पर, ना तो फैन लगा है ना कोई फैन, वैसे क्या नाम गैस फैन नहीं लगे हैं, तो सफोकेशन होती है। खाते हैं वहाँ पर, बच्चे भी नहीं बैठ पाते, 550 बच्चे हैं, इतनी जगह नहीं है। तो हम लोग हाउस में ले आते हैं तो ये कहते हैं कि तुम लेटरिन में खाते हो, उसी का सूंघते हो, उसी में खाते हो, उसी में बैठ कर खाते हो, गंदे गंदे सब खाना। ऐसा कच्चे चावल रखे हैं, हम दिखाते हैं चावल कच्चे बिल्कुल, जो गले से नीचे ना होते। हम लोग करीब 100 से 100 बच्चे हैं।
3: कितनी देर से बंद है
5: सर? हम कल
3: 4 बजे से,
5: कल शाम से हम लोगों ने खाना नहीं खाया।
3: स्कूल प्रशासन की सूचना दी थी इस बात की आप लोग बंद है अंदर?
5: सूचना सबको थी, आए मतलब आए विद्यालय। हमारी डिमांड है कि डीएम सर आए और हमसे बात करें आकर।
8: इस विद्यालय में बच्चों को कुछ अपनी कठिनाइयां थीं, जिसमें हम लोग आज गए और उनके बीच वार्ता की। जहां वो रह रहे थे उनके हॉस्टल में, उन्हीं के बीच में हम लोग बैठे। सभी बच्चे अनुशासित हैं, अच्छे बच्चे हैं और मेरिट में ये लोग सेलेक्ट होकर के यहाँ आए हैं। विधिवत रूप से उनको सुना गया है, जो उनकी कठिनाइयां थी उनके बारे में हम लोग दूर करेंगे उनको, और सरकार हर तरीके से विद्यार्थियों के साथ है और मेधावी विद्यार्थियों के साथ भी है। किसी प्रकार की कोई कठिनाई इन लोगों को नहीं होने देंगे।
0: कहीं नारा लग रहा है कि कलेक्टर साहब का आना हो को आना होगा, कहीं नारे लगाए जाते हैं, हमारी बातें आपको सुननी होंगी। ये हमारे वो बच्चे हैं जिन्हें नागरिक शास्त्र का पाठ पढ़ाया जाता है, लेकिन ये पहली बार उन पाठों का प्रयोग भी कर रहे हैं। ये हमारे वो बच्चे हैं जिन्होंने आंदोलन के बारे में पढ़ा है, लेकिन पहली बार ये बच्चे खुद आंदोलन कर रहे हैं। अब दो चीजों की जरूरत है। पहले, ऐसे हर आंदोलन में बच्चों की मांगें सुनी जाएं, उनकी बातों को पूरा किया जाए, और दूसरी जरूरत ये कि सरकारें देखें कि आखिर क्यों अब भी हमारे बच्चों के स्कूलों की स्थिति खराब है।
1: अधिकार और कर्तव्य को समझते भारत के जेन अल्फा की तीसरी गवाही राजस्थान के अलवर से आई है।
12: चार साल हो गई, सीनियर स्कूल बने हुए, मात्र 5 टीचर है,
13: जो भी थर्ड ग्रेड के,
1: अधिकारियों के सामने मर्दानी बनकर अपने हक को बुलंद करती एक छात्रा बोलती, और तभी
12: मजाक बना रखा है स्कूल को, ना इसमें बैठने लायक एक भी कमरा है, कितने कमरे
13: मैदान
12: है, खुद अपने लिखित में कागज दिया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।
13: सही बात,
12: अगर आपके बच जाते तभी आप यही सुविधा रखते क्या?
1: ये बच्चे चीख नहीं रहे, बस उन अधिकारियों के कानों में सामने खड़े होकर अपनी आवाज पहुंचा रहे, जो एसी कमरों से अब तक बहुत कम निकलते रहे, जो फाइलों में ऑल इज वेल लिखते रहे, उन्हें अब सुनना भी पड़ रहा है, बदलाव करना भी पड़ रहा है।

0: पुलिस की गाड़ी बात होती है और पुलिस की गाड़ी आ चुकी है और
1: जिस मानसून सत्र में हंगामे की वजह से संसद का कामकाज भूल गया, वहाँ इस मानसून में राजस्थान के अलवर में होता यह हंगामा कामकाज भूलने का नहीं, कामकाज को सुधारने का। ये बच्चे अलवर जिले के थाना राजी में जोधावास गांव की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के हैं, जो कुछ बड़ा या अलग नहीं मांग रहे, बस ये चाहते हैं स्कूल दिया है तो सुरक्षित क्लासरूम हो, टीचर हो, स्कूल आने का रास्ता साफ हो, सड़क बने।
2: हमारी स्कूल को सीनियर हुए 4 साल हो गई, मात्र 5 टीचर है, जो थर्ड ग्रेड के जो बड़े सीनियर क्लासों में पढ़ाते हैं, सेकंड ग्रेड का बस मात्र एक टीचर है और जिसको भी कुछ भी होगा जो 400 रखा है और लेक्चरर
3: हमारे विद्यालय में विद्यार्थियों को पहुंचने के लिए अच्छा रास्ता है, पुलिस हमारे जो सहपाठी है वो नदी क्रॉस करके आते हैं, तो हम चाहते हैं कि उनको नदी क्रॉस करने के लिए पुलिया का निर्माण किया जाए।
1: प्रदर्शन के बाद अधिकारियों ने पहले यहां तुरंत 7 टीचर और लगाकर शिक्षकों की कमी को पूरा किया, लेकिन इसके बाद भी धरना खत्म नहीं होता।
4: सभी से वार्ता की गई, 4 घंटे वो रुके, तो पहले तो ये है कि वो एक सीनियर स्कूल है, 5-6 अध्यापक थे, तो उसकी वजह 7 अध्यापक वहाँ और लगा दिए मौके पर ही, और 13 अध्यापक अब वहाँ 170 बच्चों के ऊपर हो गए।
1: बच्चे पूरा हिसाब चाहते हैं, इनके स्कूल के क्लासरूम की हालत देखिए, जहाँ पढ़ना खतरे से खाली नहीं, यहाँ बच्चे बाल बाल बचते हैं जब एक क्लासरूम में हादसा हो जाता है, इसीलिए धरना देना जारी रखते हैं। अधिकार और कर्तव्य को समझते भारत के जैन अल्फा की चौथी गवाही मध्य प्रदेश के उज्जैन से आई। छात्राओं के नारों की गूंज उज्जैन में गूंज रही, 700 से ज्यादा बच्चियां उज्जैन के सर्राफा कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हैं, जो अभी महाकाल मंदिर के पास जयसिंहपुरा में चलता है। अब इनके स्कूल को संदीपन विद्यालय में मर्ज किया जा रहा है, दलील ये कि स्कूलों की गुणवत्ता और शिक्षा में सुधार लाया जाएगा। छात्राओं का कहना है कि अब जिस स्कूल के साथ मर्ज किया जा रहा है वहां की दूरी ज्यादा है, रास्ते में इन्हें दिक्कत होगी, इसीलिए कलेक्टर दफ्तर के बाहर आकर धरना दे दिया। कलेक्टर शिकायत सुनने आए नहीं, जिला शिक्षा अधिकारी को भेज दिया।
5: स्कूल जयसिंहपुरा में और हमारा स्कूल हावित खरी शिफ्ट हो रहा है, हम इतनी दूर नहीं जा सकते, हमारे मम्मी पापा हमको परमिशन नहीं देंगे, वो बहुत दूर है और उधर का इलाका भी बहुत मतलब बहुत खराब है, हम कैसे जाएंगे।
6: लड़कियां गांव से आती है 10-10 किलोमीटर दूर से यहां तक, और छोटे और इतनी दूर से अगर वो दाऊद खेड़ी जाएंगे तो कब पहुंचेंगी, रात को 10 बजे, अगर बीच में अगर कोई दुर्घटना हो गई उनके साथ तो जिम्मेदार क्या, कलेक्टर रहेगा या कोई और रहेगा।
7: हमारे मम्मी पापा ने बोल दिया अगर सराफा स्कूल में दावत खेड़ी जाएगा तो हमें पढ़ाएंगे ही नहीं वो बिल्कुल भी।
8: अभी एकदम निर्णय नहीं होगा कि वहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, शासन के भी निर्देश है कि जिला स्तरीय मॉनिटरिंग समिति निर्णय ले, तो जिला स्तरीय मॉनिटरिंग समिति की बैठक शीघ्र होने वाली है जिसमें पालकों के प्रतिनिधि को सूचित किया जाएगा, वो भी आएंगे और वो भी अपना पक्ष रखेंगे, उसके बाद जो निर्णय होगा वो मॉनिटरिंग समिति लेगी।
1: देश के तमाम राज्यों में होते ये प्रदर्शन इस बात को साबित करते हैं, सरकारों की तमाम कोशिश के बाद व्यवस्था बुनियादी जरूरतों को स्कूली ढांचे में पूरा करने में नाकाम है, जिसकी वजह से अब बच्चों को मैदान में उतरना पड़ रहा है।
9: राजस्थान में भर्तियों का भ्रष्टाचार खुला, जहां योग्य किनारे हो जाएं, अयोग्य जनता की सेहत से खिलवाड़ करने लगे, फर्जी डिग्री लगाकर डॉक्टर बनकर मरीजों का इलाज करने लगे, 3 डॉक्टर गिरफ्तार किए गए, 20 से 30 लाख रुपए में फर्जी डिग्री इन्होंने बनवाई थी। राजस्थान SOG इस पूरे मामले की तह तक पहुंचने में जुटी,

0: चेहरा छुपा रहे ये तीनों राजस्थान के वो फर्जी डॉक्टर हैं जो कई वर्षों से मरीजों की जान से खिलवाड़ करते रहे, दवाइयां उनके लिए लिखते रहे। आशीष शर्मा फर्जी डिग्री वाला डॉक्टर, करौली के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ये मरीज देखता था।
1: आदेश दिनांक 18/12/2023 के तहत हमारे पास एक लिस्ट आई थी, उस लिस्ट में डॉक्टर आशीष का सीरियल नंबर 11 पर है। उसकी रैंक एग्जाम में FMG इंट्रेंसिप रैंक 245 थी।
0: नरेश रोलनिया फर्जी डिग्री वाला डॉक्टर, उदयपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज से इंटर्नशिप करके कोटपुतली के पल्स अस्पताल में डॉक्टर बन गया। जयपुर के मुरलीपुरा में ये श्रीनारायण अस्पताल चला रहा डॉक्टर राजेंद्र यादव है, जो चीन से 2006 से 2012 के बीच MBBS करने का सर्टिफिकेट लेकर आया। साल 2012 से लेकर 8 बार इसने राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड की FMG स्क्रीनिंग परीक्षा देने की कोशिश की, पर एक बार भी पास नहीं हो पाया। फिर इसने खुद ही नकली सर्टिफिकेट छपवा कर 29 लाख में राजस्थान मेडिकल काउंसिल से मरीज देखने का लाइसेंस हासिल कर लिया। SOG की गिरफ्त में आए राजेंद्र यादव के अस्पताल में जब आज तक संवाददाता खबरदार करने पहुंचते हैं, तो यहां अस्पताल को और आगे बढ़ाने का काम चलता मिलता है। डॉक्टर की गिरफ्तारी के बाद भी अस्पताल खुला हुआ है। फर्जी डॉक्टर और उसकी डेंटिस्ट पत्नी 6 साल से यहां मरीज देख रहे थे।
2: तो कब उनको अरेस्ट की पुलिस ने?
3: 4 रोज पहले।
2: 4 रोज पहले आपको पता था आप लोगों की उनके पास नकली डिग्री है?
3: नहीं,
2: किसी को पता नहीं था?
3: नहीं।
0: डॉक्टर की फर्जी डिग्री वाले आशीष शर्मा ने कजाकिस्तान से साल 2021 में MBBS करने का सर्टिफिकेट बनवाया था। भारत में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड की FMG स्क्रीनिंग परीक्षा 3 बार देने के बावजूद वो पास नहीं हो सका। इसके बाद आरोपी ने शुभम गुर्जर के जरिए 25 लाख रुपए देकर FMG परीक्षा का फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया। शुभम गुर्जर भी पहले 25 लाख में फर्जी सर्टिफिकेट बनवाता था। हैरत की बात है कि दोनों ही राजस्थान सरकार के करौली मेडिकल कॉलेज में मरीज देख रहे थे। दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं।
4: आदमी जितने पैसे करोड़ों रुपए खर्च करके वो बाहर अपनी MBBS करता था, और यहाँ पे जो किंग पिन्स हम लोगों ने जिनको अरेस्ट किया है, उनके इंटरोगेशन से 25 से लेके 35 लाख 40 लाख तक ये अमाउंट लेते थे सर्टिफिकेट अवेलेबल कराने का।
0: नरेश तो इनसे भी आगे निकला। तजाकिस्तान से फर्जी डॉक्टरी की डिग्री हासिल कर पल्स हॉस्पिटल कोटपुतली के इमरजेंसी वार्ड में काम कर रहा था। वो बिना FMG स्क्रीनिंग परीक्षा पास किए और बिना राजस्थान मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रेशन के मरीजों का इलाज करता रहा।
4: फेक FMG एग्जाम के जो सर्टिफिकेट वाला जो स्कैंडल हम लोगों ने खोला है, उसमें करीब 30 के करीब हम डॉक्टर्स और अन एसोसिएट्स को इसमें अरेस्ट कर चुके हैं, और हमारे पास में करीब 80-90 और अधिक इसके अलावा भी कुछ नाम हमारे पास में चल रहे हैं जो इस सारे सिस्टम में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहे हैं।
0: राजस्थान SOG के मुताबिक इस मामले में अब तक 100 से अधिक फर्जी डॉक्टर की पहचान की जा चुकी है, जिन्होंने कथित तौर पर फर्जी स्क्रीनिंग प्रमाण पत्र तैयार करवाया है। इन्हें पकड़ना आसान नहीं हो रहा था क्योंकि इन्होंने सारे फर्जी सर्टिफिकेट ऑफलाइन बनवाए हैं। इस मामले में राजस्थान मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार डॉक्टर राजेश शर्मा समेत 4 कर्मचारी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं।
5: राजस्थान के अस्पतालों में मरीज देखने वाले फर्जी डॉक्टरों के पकड़े जाने का सिलसिला जारी है। अब तक 35 से ज्यादा फर्जी डॉक्टर पकड़े जा चुके हैं, मगर अभी भी 80 से ज्यादा फर्जी डॉक्टर अस्पतालों में मरीज देख रहे हैं और मरीजों के जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कैमरा मनीष के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक।
6: उत्तराखंड में हुए एक और टनल एक्सीडेंट की यह खबर है। चमोली में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की टनल में कल एक हादसा हुआ। 7 मजदूर इस हादसे में अब तक मारे गए, 3 लापता हैं, 12 मजदूर घायल हैं। लापता मजदूरों की तलाश हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों उत्तराखंड में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए जो टनल्स बनाई जा रही हैं उनमें हादसे हो रहे हैं, और यह हादसे आखिर कब तक होते रहेंगे?
7: बार बार उत्तराखंड की सुरंगों में
3: क्यों हो रहे हैं इतने बड़े हादसे? विकास की राह में विनाश का इंतजाम कौन कर रहा है? क्या उत्तराखंड की नदियों में जरूरत से ज्यादा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं? उत्तराखंड के कच्चे पहाड़ों में बड़ी बड़ी सुरंगें खोदकर विनाश कौन ला रहा है? उत्तराखंड में एक और मौत की सुरंग बनी है चमोली जिले के पीपल कोटी की टीएचडीसी की सुरंग। तस्वीरें बता रही हैं कि सुरंग के अंदर इस वक्त क्या हालात हैं। पूरी स्थिति समझने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि यह हादसा कहां और कैसे हुआ। उत्तराखंड के चमोली जिले के पीपल कोटी में टीएचडीसी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहा है। यह प्रोजेक्ट अलकनंदा नदी पर बन रहा है जिसकी क्षमता होगी 444 मेगावाट। बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट का 80% काम पूरा हो चुका है। इस प्रोजेक्ट के तहत एक 65 मीटर ऊंचा डैम बन रहा है जिसमें दो सुरंगें होंगी। पहली है हेड रेस टनल यानी HRT जिसकी लंबाई है 13.4 किलोमीटर और दूसरी है टेल रेस टनल TRT जिसकी लंबाई है 3.04 किलोमीटर। गुरुवार को जो हादसा हुआ वो इसी TRT सुरंग में हुआ है। अब ये समझिए कि यह हादसा कैसे हुआ। इस इलाके में जमकर बारिश हो रही है, मॉनसून का सीजन है और आसमान से आफत बरस रही है। कई जगहों पर भूस्खलन और बादल फटने की घटनाएं भी हो रही हैं। इन हालात में भी इस टनल में काम चालू था। बताया जा रहा है कि गुरुवार को अचानक से सुरंग में 150 मीटर दूर तेज आवाज के साथ भारी भूस्खलन हुआ। मलबा, पत्थर और पानी तेज गति से टनल के अंदर घुस गए। उस वक्त वहां पर कुछ मजदूर काम कर रहे थे। इसी हादसे में कुछ मजदूर मलबे में दब गए और बाकी फंस गए। टनल में कई जगह से मलबा आने से ऑक्सीजन लेवल बेहद कम हो गया था। बताया जा रहा है कि टनल के अंदर मलबा 2 दिन से आ रहा था, लेकिन इसके बाद भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ने इस पर ध्यान नहीं दिया और काम चालू रखा। इसके बाद तो टनल में लगातार पानी भरता गया। हालांकि हादसे की सूचना मिलते ही राहत और बचाव दल मौके पर पहुंच गया था। ये तस्वीरें बता रही हैं कि अंदर क्या हालात थे। बताया गया कि सुरंग के अंदर कुल 22 मजदूर फंसे हुए थे। 7 मजदूरों की मौत हो गई है, 3 अभी भी फंसे हैं। 12 मजदूरों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।
7: गुरुवार शाम को 6:30 बजे के आसपास पीपल कोटी विष्णु घाट परियोजना की जो TSDC की ये टनल है, TRT टनल, इसके अंदर 1500-1600 मीटर के करीब में एक लूज जो है टनल के अंदर गिरा और उसके बाद एक बहुत जबरदस्त, यहाँ पे बताया जा रहा है, हवा का झोंका और पानी का बहुत बड़ा रिसाव हुआ और उसने कुछ लोगों को तो अंदर की ओर धकेला और कुछ लोगों को बाहर की ओर धकेला। ऐसे में कुछ तो ठीक ठाक निकल चुके हैं लेकिन अभी तक 3 लोग लापता है। पता चला इस पूरे हादसे में 22 लोग यहाँ पे हताहत हुए थे, जो कुछ घायल हैं, कुछ 7 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। वहीं अभी राज्य आपदा प्रबंधन सचिव जो है विनोद कुमार सुमन, वो यहाँ पे निरीक्षण करके गए। उनका कहना है कि डीवाटरिंग करने का काम किया जा रहा है और जल्द से जल्द इस पानी को बाहर निकाला जाएगा ताकि जो 3 लोग हैं अंदर उनका रेस्क्यू हो नहीं पा रहा है, पानी भर जा रहा है। ऐसे में लगातार यहाँ पे ITBP की फोर्स है, वो लगातार आ रही है, जा रही है, जो टीमें हैं वो लगातार लगी हैं। कभी मशीनें भेजी जा रही हैं, कभी ड्रम भेजे जा रहे हैं, अलग अलग तरीके से यहाँ पे इस समय जो रेस्क्यू और बचाव के काम चल रहे हैं वो करवाए जा रहे हैं।
3: लेकिन समस्या ये है कि टनल के अंदर लगातार पानी भरता जा रहा है, इसी वजह से रेस्क्यू टीमों को दिक्कतें आ रही हैं। जैसे ही कल रात ये रेस्क्यू टीमें पहुंची तो टनल में बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ था। तुरंत इन्होंने टेम्पररी नाव बना दी, नीचे बड़े बड़े ड्रम बांधे और एक अस्थायी नाव का निर्माण किया और उसके बाद देखिए कैसे इन जुगाड़ की नावों से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया।
8: कल तक काफी लोगों को निकाला हम लोगों ने, जिसमें से 12 लोग को सुरक्षित बचाया गया है, 7 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है, 3 लोग अभी लापता चल रहे हैं।

0: टेबल ज्यादा होने से थोड़ी सी समस्या आ रही है हम लोगों को। डीवाटरिंग पंप अभी 5 काम कर रहे हैं, तो डीवाटरिंग पंप की संख्या को बढ़ाने के लिए कहा गया है TSDC से। वो पंप मंगा रहे हैं NTPC के माध्यम से, और बाकी हमने कहा जहाँ भी पंप जितने भी अवेलेबल हैं पंपों की संख्या बढ़ाइए, क्योंकि अभी जिस गति से पानी हम निकाल रहे हैं लगभग उसी गति से पानी ऊपर से आ रहा है, इसके कारण जो है थोड़ी समस्या हो रही है। अभी मैनुअल तरीके से हम राहत बचाव कर्मी दल जाके ढूंढ कर रहे हैं, खोजबीन कर रहे हैं, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल पाई है अभी तक।
1: अभी सबसे पहली प्राथमिकता 3 लापता लोगों को खोजने की है, लेकिन टनल के अंदर बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि करीब 1 किलोमीटर के इलाके में पानी भरा है और कहीं कहीं तो पानी 5 फीट तक गहरा है। पानी में बहुत सी गाद और मलबा है, कीचड़ है, इसी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में समस्याएं हैं। पहली कोशिश यही है कि टनल के अंदर से पानी को किसी तरीके से बाहर निकाला जाए।
2: कठिनाई जैसे मैं बता रहा हूं आपको कि पानी का एरिया जो है बहुत लंबा है, लगभग 1 किलोमीटर एरिया है जो पानी से भरा हुआ है, और उसमें हाइट जो है 3-4 फीट तक जा रही है, कहीं कहीं पर 5 फीट भी है। तो उस पर्टिकुलर एरिया में 1 किलोमीटर लंबा प्लस 3-4 फीट गहरा पानी है, और वो केवल पानी नहीं है, वो स्लजी वाटर है। तो उसमें जो सर्च करने के लिए दिक्कत आ रही है, बट हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा ट्रूप्स को यूज़ करके और मैक्सिमम एरिया जो है मैनुअली सर्च करके क्लियर कर रहे हैं।
3: क्या लग रहा है कब तक ये हो पाएगा, या फिर पानी कैसे भर रहा है इतना ज़्यादा पानी?
2: जी देखिए, मोस्ट फेवरेबल कंडीशन यही होगी जब पानी कम होगा। तो पानी कम करने के लिए जैसा मैंने बताया, संस्थान ने जो मोटर्स लगाई हैं वो सही कार्रवाई करें, बट हो क्या रहा है कि जो इसका दूसरा सोर्स है जहाँ से ये कोलैप्स हुआ है वहाँ से पानी कंटिन्यूसली आ रहा है, तो जितना हम निकाल रहे हैं उतना ही आ रहा है, तो ये कंडीशन थोड़ा सा हमारे लिए डाइसी हो रही है इस वजह से।
3: कितनी टीम मेंबर NDRF यहाँ पर लगी हुई है?
2: देखिए NDRF की यहाँ पर 3 टीमें वर्तमान में आ रखी हैं, और तीनों टीमें जो है रोटेट होकर अपनी कार्रवाइयाँ कर रही हैं।
1: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी घटनास्थल पर पहुंचे और टनल के अंदर जाकर रेस्क्यू का काम उन्होंने देखा। घायलों से मुलाकात की, अब वो कह रहे हैं कि राज्य की सुरंगों की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि सुरंगों में लगातार हादसों को कैसे टाला जाए।
4: एक और निवेदन, टनल दुर्घटनाएं हमेशा हो रही, चिनकियारा हुई, ये हुई, इससे पहले टनल की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार क्या संबंधित एजेंसी को कोई निर्देश देगी?
5: बिल्कुल निर्देश देंगे, और हमारे लिए जो भी कार्मिक जो भी काम करने वाले हैं उनकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। बिना सुरक्षा के, जब तक पूरी सुरक्षा के प्रबंध नहीं हो जाते तब तक इन कामों को भी आगे नहीं बढ़ाना चाहिए।
1: गढ़वाल से BJP के सांसद अनिल बलूनी भी पहुंचे, टनल के अंदर गए, पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन देखा। सबसे ज्यादा समस्या यही आ रही है कि टनल में लगातार पानी भर रहा है, बड़े बड़े पंप लगाकर पानी को निकाला तो जा रहा है, लेकिन जितना पानी निकलता है उतना फिर से सुरंग में आ जा रहा है।
6: वाकई बड़ी मुश्किल परिस्थिति में अंदर काम हो रहा है, और आप सब लोग जानते हैं अभी ऑपरेशन जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है, और हमारे NDRF और SDRF के जवान और बाकी जो हमारा स्थानीय प्रशासन है सब मिलकर अंदर, क्योंकि काफ़ी पानी भरा हुआ है और काफ़ी मुश्किल परिस्थितियाँ हैं, उन सब में काम कर रहा है। अभी बताया जाता है कि 3 लोग मिसिंग की जानकारी जो है वो सब है, हम अंदर देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति मिल सके हमें, और सारे लोग बातचीत कर रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं। अभी प्रशासन पूरी ताकत से लगा है, आगे तक जाने की तैयारी में है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में आगे जाके कुछ अच्छी सूचना भी हम लोगों को मिल सके तो अच्छी बात है।
1: इन हालात में सबसे ज्यादा समस्या मौसम को लेकर भी है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, बारिश रुकी नहीं रही। ऐसे में डर ये भी है कि कहीं और ज्यादा भूस्खलन न हो जाए। अभी तो पहली प्राथमिकता उन 3 लापता मजदूरों को खोजने की है।
7: आ जाओ।
1: कमल नयन सिलोड़ी, चमोली, आज तक।
8: छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: जश्न आजादी के रंग में रंगा हिंदुस्तान, सुबह लाल किले की प्राचीर से लगातार 13वीं बार तिरंगा फहराएंगे प्रधानमंत्री मोदी, देश को करेंगे संबोधित। 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का राष्ट्र के नाम संदेश, बोली युवा आबादी सबसे मूल्यवान संपत्ति, विकसित भारत के निर्माण के लिए आगे बढ़ने का आह्वान। नहीं थम रहा पीएम मोदी पर राहुल के बयान पर हंगामा, राजनाथ सिंह ने लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा बताया, विदेश मंत्रालय ने कहा आदर के साथ रखो बात। विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में जुबानी युद्ध तेज, सीएम योगी बोले सिर्फ सत्ता के लिए पहले की सरकारें, अखिलेश बोले यूपी में अब तक की सबसे भ्रष्ट योगी सरकार। और कॉकरोच विवाद पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत का बड़ा बयान, बोले मेरी बातों का गलत इरादे से गलत इस्तेमाल, युवाओं को सूर्यकांत ने गुमराह करने की कोशिश बताया। आज हमारा देश स्वतंत्रता का 80वां उत्सव मना रहा है। 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने से पहले लोकतांत्रिक तरीके से जन अल्फा ने अपनी आवाज बुलंद कर दी। जन अल्फा जिनके हाथों की तनी मुट्ठी नारे लोकतंत्र की मजबूती का संदेश देते हैं, सरकारी व्यवस्था को इस बात का एहसास कराते हैं कि उनकी आवाज अनसुनी आप नहीं कर सकते।
1: 80वें स्वतंत्रता दिवस से पहले गूंजते नारे लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। ২০২৬ में आजादी का जश्न मनाते भारत के बच्चे हक मांगने से नहीं डरते हैं।
2: क्या हो गया टीचर सर, पाँच महीने हम लोग
3: टीचर है कोई यहाँ पे
2: लगा,
3: पहला काम करो सुनो
2: सर,
3: तुरंत साइड में आओ, अंदर चलो बात करते हैं, ट्रैफिक खोलो ठीक है, तुरंत मेरे साथ आओ चलो।
1: 15 अगस्त 2026 ऐतिहासिक है, जहां बच्चे अधिकारियों की आंख से आंख मिलाकर अधिकार मांगते हैं।
4: 4 साल हो गई सीनियर स्कूल बने हुए, मात्र 5 टीचर है
5: जो भी थायर ग्रेड की,
4: सुनवाई नहीं की गई। 4 साल हो गए खाते में, कलेक्टर को मैंने खुद अपने लिखित में कागज दिया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।
5: सही बात,
4: अगर आपके बच जाते तब भी आप यही सुविधा रखते क्या?
1: एक तरफ लगता है कि आजादी के 80 साल बाद भी स्कूल व्यवस्था राज्यों में ढुलमुल है, दूसरी तरफ अच्छा लगता है कि लोकतांत्रिक रूप से विरोध करना बच्चे जानते हैं।
6: हमारे खाने के लिए थाने में सुड़ी निकलती है, मेढक निकलता है, छिपकली निकलती है, प्रिंसिपल पास लेकर जो इनका ये होता है कि इस मौसम में निकलता है, मैं क्या कर सकता हूँ। दूसरी बात, तुमने खुद डाला होगा और कहे भी दें तो कहते दूसरा रखवा लो, ऐसा कि हम लोग मतलब जानवर से बेबत्तर है ये करते हैं हमारे लिए।
1: बच्चों के नारे इस बात का एहसास कराते हैं कि आजादी का असली मतलब अपनी आवाज को बुलंद करना है।
7: हम हमारा अधिकार मांगते
4: हैं, जोर जोर के टक्कर में
1: स्वतंत्रता का 80वां महोत्सव खास है, क्योंकि अब की जेन जी और जेन अल्फा की बुलंद आवाज है।
8: कल जो आपने प्रदर्शन किया था उसमें कितने रुपए किराया लिया जा रहा था पहले आपसे, और आज कितने रुपए किराया लिया जा रहा है आपसे भी 10 रुपए, सभी का किराया मान के चलने तो कम हुआ सभी से, ठीक है।
1: लाल किले पर लहराता तिरंगा, वो पल जब देश हमेशा गर्व से भर जाता है, याद करता है स्वतंत्रता की सेनानियों को। भारत और भारतीयता के विश्वास से उत्प्रोत हर नागरिक के लिए आजादी का दिन बहुत विशेष महत्व रखता है, लेकिन इस बार ये उत्सव और भी विशेष है, जहां भारत के भविष्य की बुलंद होती आवाजें, लोकतांत्रिक रूप से रखी जाती मांगे, अड़ने की जगह बिना डरे हक के लिए लड़ने वाली आदत इस भरोसे को मजबूत करती है कि भारत का बच्चा बच्चा अपने अधिकार और कर्तव्य दोनों को समझ रहा है। आज इसीलिए एक एक करके हम आपको ऐसी तस्वीरों से खबरदार करेंगे। अधिकार और कर्तव्य को समझते भारत के जैन अल्फा की पहली गवाही लखनऊ से आई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मोहान रोड पर जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय, प्रदेश के समाज कल्याण विभाग के अधीन आने वाले इस स्कूल में छात्र संभव है कि देश में जंतर मंतर आंदोलन से शुरू हुए प्रदर्शन के बाद अपना हक मांगने वाली लकीर पर चलते हुए आगे बढ़े। जहां हॉस्टल में खराब खाना, खाने में बार बार कीड़ा निकलना, बीमार होने पर इलाज की व्यवस्था न होना और शिक्षकों की कमी को लेकर छात्रों का दावा है कि स्कूल प्रशासन ने उनकी शिकायत पर कान नहीं दिया तो ये सड़क जाम करने निकल पड़े। लखनऊ में छात्रों की तरफ से सड़क जाम की खबर आते ही पहले जहां छात्रों को हटाने के लिए पुलिस दिखती रही थी, वहां अब की बार शायद पहली बार ऐसा देखा सुना जा रहा है जब कोई मंत्री तुरंत समस्या सुनने पहुंच गया। जैसे असीम अरुण उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री हैं, प्रदर्शन करते छात्रों के बीच पहुंचकर सीधे कहते हैं चलो तुम्हारी बातें सुनते हैं, शिकायत दूर करते हैं,
3: अंदर चलो बात करते हैं, ट्रैफिक खोलो, ठीक है, तुरंत मेरे साथ आओ।
1: इसके बाद तुरंत मंत्री असीम अरुण के साथ छात्र भीतर आते हैं। यहीं आज हम आपको दिखा रहे हैं कि छात्र संविधान से मिले अधिकार और कर्तव्य दोनों को समझ रहे हैं, जो अपने अधिकार के लिए प्रदर्शन करने का अधिकार भी जानते हैं और मंत्री की तरफ से समस्या सुने जाने की बात आते ही तुरंत रास्ता भी छोड़ देते हैं और फिर समाधान की बात आती है।
3: जो कमियां हैं उनको दूर काफी हद तक किया हम लोग ने, लेकिन मैं स्वयं अभी संतुष्ट नहीं हूँ, हम लोग को कमियों को और दूर करना है। पहली चीज जितने स्टाफ सारे हमारे क्वार्टर बन गए, हमारे ट्रांजिट हॉस्टल बन गए, टीचर्स 24 घंटे यहाँ पे रहेंगे, कोई हाँ फार्मासिस्ट भी और भी नॉन टीचिंग स्टाफ जिसके लिए आवास अवेलेबल है। ये आवासीय विद्यालय है, केवल बच्चों का नहीं स्टाफ का, और जिसको रहने में समस्या आ रही है वो अपना इस्तीफा देते घर।
1: लोकतंत्र की यही ताकत है जो इस स्वतंत्रता दिवस को विशेष बनाती है। जहाँ स्कूली शिक्षा का बुनियादी ढांचा लचर है, उसे मजबूत करने की मांग खुद बच्चे कर रहे हैं। अधिकार और कर्तव्य को समझते भारत के जैन अल्फा की दूसरी गवाही भी उत्तर प्रदेश से आई है। इसके लिए अब कन्नौज चलते हैं।
5: कई दिनों से समस्याएं थी जिनको लेकर हम झेल रहे थे, सह रहे थे, लेकिन अब कुछ ज्यादा ही ओवर हो गया था
3: जी।
5: तो उसके लिए हमने ये किया क्योंकि परेशान हो चुके थे, और एक नहीं क्लास 6 के जूनियर से लेकर क्लास 12 के बच्चे सभी परेशान हैं।
1: कन्नौज के जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले ये वो जैन अल्फा हैं जो अपनी समस्याओं के निदान के लिए सड़क पर नहीं उतरे बल्कि खुद को ही एक कमरे में बंद कर लिया। इनका वीडियो वायरल हुआ, मीडिया पहुंचा, इन छात्रों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए मुंह ढक लिया, ये इनका अधिकार है। लेकिन अपने दूसरे अधिकारों के लिए इन्होंने खुद को क्लास में लॉक करने का ऐसा तरीका लगाया कि प्रशासन को जागना पड़ा। पहले शिकायत सुनिए, फिर समाधान देने पहुंचे जिलाधिकारी को।
5: मैं इसमें खाने की सही व्यवस्था नहीं होती, हाउस में लाते हैं, खाने की व्यवस्था इसलिए नहीं क्योंकि 550 बच्चे हैं वहाँ पर, ना तो फैन लगा है ना कोई फैन, वैसे क्या नाम गैस फैन नहीं लगे हैं, तो सफोकेशन होती है, खाते हैं वहाँ पर, बच्चे भी नहीं बैठ पाते, 550 बच्चे हैं, इतनी जगह नहीं है, तो हम लोग हाउस में ले आते हैं तो ये कहते हैं कि तुम लेटरिन में खाते हो, उसी का सूंघते हो, उसी में खाते हो, उसी में बैठ कर खाते हो, गंदे गंदे सब खाना, ऐसा कच्चे चावल रखे हैं हम दिखाते हैं, चावल कच्चे बिल्कुल जो गले से नीचे ना होते। हम लोग करीब 100 से 100 बच्चे हैं।
3: कितनी देर से बंद है
5: सर? हम कल
3: 4 बजे से,
5: कल शाम से हम लोगों ने खाना नहीं खाया।
3: स्कूल प्रशासन की सूचना दी थी इस बात की आप लोग बंद है अंदर?
5: सूचना सबको दी, आए मतलब आए विद्यालय। हमारी डिमांड है कि डीएम सर आए और हमसे बात करें आकर।
9: इस विद्यालय में बच्चों को कुछ अपनी कठिनाइयां थीं जिसमें हम लोग आज गए और उनके बीच वार्ता की। जहां उन वो रह रहे थे उनके हॉस्टल में, उन्हीं के बीच में हम लोग बैठे। सभी बच्चे अनुशासित हैं, अच्छे बच्चे हैं और मेरिट में ये लोग सेलेक्ट होकर के यहाँ आए हैं। विधिवत रूप से उनको सुना गया है, जो उनकी कठिनाइयां थी उनके बारे में हम लोग दूर करेंगे उनको, और सरकार हर तरीके से विद्यार्थियों के साथ है और मेधावी विद्यार्थियों के साथ भी है। किसी प्रकार की कोई कठिनाई इन लोगों को नहीं होने देंगे।
0: कहीं नारा लग रहा है कि कलेक्टर साहब का आना हो को आना होगा, कहीं नारे लगाए जाते हैं, हमारी बातें आपको सुननी होंगी। ये हमारे वो बच्चे हैं जिन्हें नागरिक शास्त्र का पाठ पढ़ाया जाता है, लेकिन ये पहली बार उन पाठों का प्रयोग भी कर रहे हैं। ये हमारे वो बच्चे हैं जिन्होंने आंदोलन के बारे में पढ़ा है, लेकिन पहली बार ये बच्चे खुद आंदोलन कर रहे हैं। अब दो चीजों की जरूरत है। पहले, ऐसे हर आंदोलन में बच्चों की मांगें सुनी जाएं, उनकी बातों को पूरा किया जाए, और दूसरी जरूरत ये कि सरकारें देखें कि आखिर क्यों अब भी हमारे बच्चों के स्कूलों की स्थिति खराब है।
1: अधिकार और कर्तव्य को समझते भारत के जेन अल्फा की तीसरी गवाही राजस्थान के अलवर से आई है।
4: 4 साल हो गई, 3 ईयर स्कूल बने हुए, मात्र 5 टीचर है,
10: जो भी थर्ड ग्रेड के,
1: अधिकारियों के सामने मर्दानी बनकर अपने हक को बुलंद करती एक छात्रा बोलती, और तभी
4: मजाक बना रखा है स्कूल को, ना इसमें बैठने लायक एक भी कमरा है, कितने
10: मैदान
4: है, 4 साल हो गए खाते में, कलेक्टर को मैंने खुद अपने लिखित में कागज दिया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।
10: सही बात,
4: बताओ अगर आपके बच जाते तब भी आप यही सुविधा रखते क्या?
1: ये बच्चे चीख नहीं रहे, बस उन अधिकारियों के कानों में सामने खड़े होकर अपनी आवाज पहुंचा रहे, जो एसी कमरों से अब तक बहुत कम निकलते रहे, जो फाइलों में ऑल इज वेल लिखते रहे, उन्हें अब सुनना भी पड़ रहा है, बदलाव करना भी पड़ रहा है।

0: उसकी गाड़ी बात होती है और पुलिस की गाड़ी आ चुकी है और
1: जिस मानसून सत्र में हंगामे की वजह से संसद का कामकाज भूल गया, वहां इस मानसून में राजस्थान के अलवर में होता यह हंगामा कामकाज भूलने का नहीं, कामकाज को सुधारने का। ये बच्चे अलवर जिले के थाना गाजी में जोधावास गांव की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के हैं, जो कुछ बड़ा या अलग नहीं मांग रहे, बस ये चाहते हैं स्कूल दिया है तो सुरक्षित क्लासरूम हो, टीचर हो, स्कूल आने का रास्ता साफ हो, सड़क बने।
2: हमारे एक रनिंग कोर्ट, फुटबॉल, टेनिस कोर्ट, वॉलीबॉल के लिए इतना बड़ा मैदान हो, हमारे विद्यालय के लिए जगह आवंटित की जाए, हमारे पास बैठने के लिए कक्षा भी नहीं है,
3: हमारे यहाँ 3 कप है उनमें भी पानी टपकता है, बच्चे परेशान है तो बैठे कैसे।
4: हमारे स्कूल को सीनियर हुए 4 साल हो गए, मात्र 5 टीचर है, जो थर्ड ग्रेड के जो बड़ी सीनियर क्लासों को पढ़ाता है, सेकंड ग्रेड में बस मात्र 1 टीचर है और जिसको भी कुछ भी होगा जो 4 सौंप रखा है और
5: हमारे विद्यालय विद्यार्थियों को पहुंचने के लिए अच्छा रास्ता है, फुल हमारे जो सहपाठी है वो नदी क्रॉस करके आते हैं, तो हम चाहते हैं कि उनको नदी क्रॉस करने के लिए पुलिया का निर्माण किया जाए।
1: प्रदर्शन के बाद अधिकारियों ने पहले यहां तुरंत 7 टीचर और लगाकर शिक्षकों की कमी को पूरा किया, लेकिन इसके बाद भी धरना खत्म नहीं होता।
6: सभी से वार्ता की गई, 4 घंटे वो रुके, तो पहले तो ये है कि वो एक सीनियर स्कूल है, 5-6 अध्यापक थे, तो उसकी वजह 7 अध्यापक वहाँ और लगा दिए मौके पर ही, और 13 अध्यापक अब वहाँ 170 बच्चों के ऊपर हो गए।
1: बच्चे पूरा हिसाब चाहते हैं, इनके स्कूल के क्लासरूम की हालत देखिए, जहाँ पढ़ना खतरे से खाली नहीं, यहाँ बच्चे बाल बाल बचते हैं जब एक क्लासरूम में हादसा हो जाता है, इसीलिए धरना देना जारी रखते हैं। अधिकार और कर्तव्य को समझते भारत के जैन अल्फा की चौथी गवाही मध्य प्रदेश के उज्जैन से आई।
7: उत्तराखंड में हुए एक और टनल एक्सीडेंट की यह खबर है। चमोली में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की टनल में कल एक हादसा हुआ, 7 मजदूर इस हादसे में अब तक मारे गए, 3 लापता हैं, 12 मजदूर घायल हैं, लापता मजदूरों की तलाश हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों उत्तराखंड में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए जो टनल्स बनाई जा रही हैं उनमें हादसे हो रहे हैं, और यह हादसे आखिर कब तक होते रहेंगे।
8: बार बार उत्तराखंड की सुरंगों में क्यों हो रहे हैं इतने बड़े हादसे? विकास की राह में विनाश का इंतजाम कौन कर रहा है? क्या उत्तराखंड की नदियों में जरूरत से ज्यादा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं? उत्तराखंड के कच्चे पहाड़ों में बड़ी बड़ी सुरंगें खोदकर विनाश कौन ला रहा है? उत्तराखंड में एक और मौत की सुरंग बनी है चमोली जिले के पीपल कोटी की THDC की सुरंग। तस्वीरें बता रही हैं कि सुरंग के अंदर इस वक्त क्या हालात हैं। पूरी स्थिति समझने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि यह हादसा कहां और कैसे हुआ। उत्तराखंड के चमोली जिले के पीपल कोटी में THDC हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहा है। यह प्रोजेक्ट अलकनंदा नदी पर बन रहा है, जिसकी क्षमता होगी 444 मेगावाट। बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट का 80% काम पूरा हो चुका है। इस प्रोजेक्ट के तहत एक 65 मीटर ऊंचा डैम बन रहा है, जिसमें 2 सुरंगें होंगी। पहली है हेड रेस टनल यानी HRT, जिसकी लंबाई है 13.4 किलोमीटर, और दूसरी है टेल रेस टनल TRT, जिसकी लंबाई है 3.04 किलोमीटर। गुरुवार को जो हादसा हुआ वो इसी TRT सुरंग में हुआ है। अब ये समझिए कि यह हादसा कैसे हुआ। इस इलाके में जमकर बारिश हो रही है, मॉनसून का सीजन है और आसमान से आफत बरस रही है। कई जगहों पर भूस्खलन और बादल फटने की घटनाएं भी हो रही हैं। इन हालात में भी इस टनल में काम चालू था। बताया जा रहा है कि गुरुवार को अचानक से सुरंग में 150 मीटर दूर तेज आवाज के साथ भारी भूस्खलन हुआ। मलबा, पत्थर और पानी तेज गति से टनल के अंदर घुस गए। उस वक्त वहां पर कुछ मजदूर काम कर रहे थे। इसी हादसे में कुछ मजदूर मलबे में दब गए और बाकी फंस गए। टनल में कई जगह से मलबा आने से ऑक्सीजन लेवल बेहद कम हो गया था। बताया जा रहा है कि टनल के अंदर मलबा दो दिन से आ रहा था, लेकिन इसके बाद भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ने इस पर ध्यान नहीं दिया और काम चालू रखा। इसके बाद तो टनल में लगातार पानी भरता गया। हालांकि हादसे की सूचना मिलते ही राहत और बचाव दल मौके पर पहुंच गया था। ये तस्वीरें बता रही हैं कि अंदर क्या हालात थे। बताया गया कि सुरंग के अंदर कुल 22 मजदूर फंसे हुए थे। 7 मजदूरों की मौत हो गई है, 3 अभी भी फंसे हैं। 12 मजदूरों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।
9: गुरुवार शाम को 6:30 के आसपास पीपलकोटी विष्णुघाट परियोजना के जो TSDC की ये टनल है, TRT टनल, इसके अंदर 1500-1600 मीटर के करीब में एक लूज जो है टनल के अंदर गिरा और उसके बाद एक बहुत जबरदस्त, यहाँ पे बताया जा रहा है, हवा का झोंका और पानी का बहुत बड़ा रिसाव हुआ और उसने कुछ लोगों को तो अंदर की ओर धकेला और कुछ लोगों को बाहर की ओर धकेला। ऐसे में कुछ तो ठीक ठाक निकल चुके हैं, लेकिन अभी तक 3 लोग लापता है। पता चला इस पूरे हादसे में 22 लोग यहाँ पे हताहत हुए थे, जो कुछ घायल है, कुछ 7 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। वहीं अभी राज्य आपदा प्रबंधन सचिव जो है विनोद कुमार सुमन, वो यहाँ पे निरीक्षण करके गए। उनका कहना है कि डीवाटरिंग करने का काम किया जा रहा है और जल्द से जल्द इस पानी को बाहर निकाला जाएगा, ताकि जो 3 लोग हैं अंदर उनका रेस्क्यू हो नहीं पा रहा है, पानी भर जा रहा है। ऐसे में लगातार यहाँ पे ITBP की फोर्स है, वो लगातार आ रही है, जा रही है। जो टीमें हैं वो लगातार लगी हैं, कभी मशीनें भेजी जा रही हैं, कभी ड्रम भेजे जा रहे हैं, अलग अलग तरीके से यहाँ पे इस समय जो रेस्क्यू और बचाव के काम चल रहे हैं वो करवाए जा रहे हैं।
8: लेकिन समस्या ये है कि टनल के अंदर लगातार पानी भरता जा रहा है, इसी वजह से रेस्क्यू टीमों को दिक्कतें आ रही हैं। जैसे ही कल रात ये रेस्क्यू टीमें पहुंची तो टनल में बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ था। तुरंत इन्होंने टेम्पररी नाव बना दी, नीचे बड़े बड़े ड्रम बांधे और एक अस्थायी नाव का निर्माण किया। और उसके बाद देखिए कैसे इन जुगाड़ की नावों से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया।
10: कल तक काफी लोगों को निकाला हम लोगों ने, जिसमें से 12 लोग को सुरक्षित बचाया गया है, 7 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है, 3 लोग अभी लापता चल रहे हैं जिनको खोजने का काम चल रहा है। पानी का लेवल ज़्यादा होने से थोड़ी सी समस्या आ रही है हम लोगों को। डीवाटरिंग पंप अभी 5 काम कर रहे हैं, तो डीवाटरिंग पंप की संख्या को बढ़ाने के लिए कहा गया है TSDC से, वो पंप मंगा रहे हैं NTPC के माध्यम से। और बाकी हमने कहा जहाँ भी पंप जितने भी अवेलेबल हैं पंपों की संख्या बढ़ाइए, क्योंकि अभी जिस गति से पानी हम निकाल रहे हैं लगभग उसी गति से पानी ऊपर से आ रहा है, इसके कारण जो है थोड़ी समस्या हो रही है। अभी मैनुअल तरीके से हम राहत बचाव कर्मी दल जाके ढूंढ कर रहे हैं, खोजबीन कर रहे हैं, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल पाई है अभी तक।
8: अभी सबसे पहली प्राथमिकता 3 लापता लोगों को खोजने की है, लेकिन टनल के अंदर बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि करीब 1 किलोमीटर के इलाके में पानी भरा है और कहीं कहीं तो पानी 5 फीट तक गहरा है। पानी में बहुत सी गाद और मलबा है, कीचड़ है, इसी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में समस्याएं हैं। पहली कोशिश यही है कि टनल के अंदर से पानी को किसी तरीके से बाहर निकाला जाए।
11: कठिनाई जैसे मैं बता रहा हूं आपको कि पानी का एरिया जो है बहुत लंबा है, लगभग 1 किलोमीटर एरिया है जो पानी से भरा हुआ है और उसमें हाइट जो है 3-4 फीट तक जा रही है, कहीं कहीं पर 5 फीट भी है। तो उस पर्टिकुलर एरिया में 1 किलोमीटर लंबा प्लस 3-4 फीट गहरा पानी है, और वो केवल पानी नहीं है, वो स्लजी वाटर है। तो उसमें जो सर्च करने के लिए दिक्कत आ रही है, बट हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा ट्रूप्स को यूज़ करके और मैक्सिमम एरिया जो है मैनुअली सर्च करके क्लियर कर रहे हैं।
12: क्या लग रहा है कब तक ये हो पाएगा या फिर पानी कैसे भर रहा है इतना ज़्यादा पानी?
11: जी देखिए, मोस्ट फेवरेबल कंडीशन यही होगी जब पानी कम होगा। तो पानी कम करने के लिए जैसा मैंने बताया, संस्थान ने जो मोटर्स लगाई हैं वो सही कार्रवाई करें। बट हो क्या रहा है कि जो इसका दूसरा सोर्स है जहाँ से ये कोलैप्स हुआ है, वहाँ से पानी कंटिन्यूसली आ रहा है, तो जितना हम निकाल रहे हैं उतना ही आ रहा है। तो ये कंडीशन थोड़ा सा हमारे लिए डाइसी हो रही है इस वजह से।
12: कितनी टीम मेंबर NDRF यहाँ पे लगी हुई है?
11: देखिए NDRF की यहाँ पर 3 टीमें वर्तमान में आ रखी हैं और तीनों टीमें जो है रोटेट होकर अपनी कार्रवाइयाँ कर रही हैं।
8: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी घटनास्थल पर पहुंचे और टनल के अंदर जाकर रेस्क्यू का काम उन्होंने देखा। घायलों से मुलाकात की, अब वो कह रहे हैं कि राज्य की सुरंगों की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि सुरंगों में लगातार हादसों को कैसे टाला जाए।
13: एक और निवेदन, टनल दुर्घटनाएं हमेशा हो रही, सिलक्यारा हुई, ये हुई, इससे पहले टनल की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार क्या संबंधित एजेंसी को कोई निर्देश देंगे?
14: बिल्कुल निर्देश देंगे, और हमारे लिए जो भी कार्मिक जो भी काम करने वाले हैं उनकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। बिना सुरक्षा के, जब तक पूरे सुरक्षा के प्रबंध नहीं हो जाते तब तक इन कामों को भी आगे नहीं बढ़ाएंगे।
8: गढ़वाल से बीजेपी के सांसद अनिल बलूनी भी पहुंचे, टनल के अंदर गए, पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन देखा। सबसे ज्यादा समस्या यही आ रही है कि टनल में लगातार पानी भर रहा है। बड़े बड़े पंप लगाकर पानी को निकाला तो जा रहा है, लेकिन जितना पानी निकलता है उतना फिर से सुरंग में आ जा रहा है।
15: वाकई बड़ी मुश्किल परिस्थितियों में अंदर काम हो रहा है, और आप सब लोग जानते हैं अभी ऑपरेशन जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है, और हमारे NDRF और SDRF के जवान और बाकी जो हमारा स्थानीय प्रशासन है सब मिलकर अंदर, क्योंकि काफ़ी पानी भरा हुआ है और काफ़ी मुश्किल परिस्थितियाँ हैं, उन सब में काम कर रहा है। अभी बताया जाता है कि 3 लोग मिसिंग की जानकारी जो है वो सब है, हम अंदर देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति मिल सके हमें, और सारे लोग बातचीत कर रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं। अभी प्रशासन पूरी ताकत से लगा है, आगे तक जाने की तैयारी में है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में आगे जाके कुछ अच्छी सूचना भी हम लोगों को मिल सके तो अच्छी बात है।
8: इन हालात में सबसे ज्यादा समस्या मौसम को लेकर भी है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, बारिश रुकी नहीं रही। ऐसे में डर ये भी है कि कहीं और ज्यादा भूस्खलन न हो जाए। अभी तो पहली प्राथमिकता उन 3 लापता मजदूरों को खोजने की है।
16: आ जाओ।
8: कमल नयन सिलोड़ी, चमोली, आज तक।
16: आ जाओ।
17: छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: भिखारियों का मनोविज्ञान क्या है?
1: तैयारी तुम भी कर रहे हो क्या?
0: नहीं सर।
1: ट्वेल्थ किससे की हो?
0: ट्वेल्थ सर मेरा पीसीएम से रहा।
1: कंपाउंड क्या होता है?
0: बेसिकली जो एक्युमुलेटेड चीजें रहती हैं उसके ऊपर।
1: यही है भीख मंगे वाली क्वालिटी। तुम पूछ रहे थे ना, यही है यही। एक मिनट,
0: ये जो आपका तरीका बहुत सर बहुत अच्छा नहीं है, इस तरीके से समझाने का स्टूडेंट्स को। इसे सर ह्यूमिलिएशन कहते हैं।
1: देख भाई, अपनी गारंटी पे छेड़ना।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: جشن آزادی کے رنگ میں رنگا ہندوستان. صبح لال قلعے کی پراچیر سے لگاتار 13ویں بار ترنگا پھہرائیں گے پردھان منتری مودی, دیش کو کریں گے سمبودھت. 15 اگست کی پورو سندھیا پر راشٹرپتی دروپدی مرمو جی کا راشٹر کے نام سندیش, بولی یوا آبادی سب سے مولیوان سمپتی, وکست بھارت کے نرمان کے لیے آگے بڑھنے کا آہوان. نہیں تھم رہا پی ایم مودی پر راہل کے بیان پر ہنگامہ, راجناتھ سنگھ نے لوکتنتر کے لیے گمبھیر خطرہ بتایا, ودیش منترالے نے کہا آدر کے ساتھ رکھو بات. ودھان سبھا چناؤ سے پہلے یو پی میں زبانی یدھ تیز, سی ایم یوگی بولے صرف ستا کے لیے پہلے کی سرکاریں, اکھلیش بولے یو پی میں اب تک کی سب سے بھرشٹ یوگی سرکار. اور کاکروچ وواد پر چیف جسٹس سوریہ کانت کا بڑا بیان, بولے میری باتوں کا غلط ارادے سے غلط استعمال, یواؤں کو سوریہ کانت نے گمراہ کرنے کی کوشش بتایا. آج ہمارا دیش سوتنترتا کا 80واں اتسو منا رہا ہے. 80واں سوتنترتا دیوس منانے سے پہلے لوک تانترک طریقے سے جن الفا نے اپنی آواز بلند کر دی. جن الفا جن کے ہاتھوں کی تنی مٹھی نعرے لوک تنتر کی مضبوطی کا سندیش دیتے ہیں, سرکاری ویوستھا کو اس بات کا احساس کراتے ہیں کہ ان کی آواز انسنی آپ نہیں کر سکتے.
1: 80वें स्वतंत्रता दिवस से पहले गूंजते नारे लोकतंत्र को मजबूत करते हैं. ۲۰۲۶ में आजादी का जश्न मनाते भारत के बच्चे हक मांगने से नहीं डरते हैं.
2: क्या हो गया टीचर है कोई यहाँ पे?
3: गेट लगा,
2: पहला काम करो सुनो.
3: यस सर
2: तुरंत साइड में आओ, अंदर चलो, बात करते हैं, ट्रैफिक खोलो, ठीक है? तुरंत मेरे साथ आओ, चलो.
1: 15 अगस्त 2026 ऐतिहासिक है, जहां बच्चे अधिकारियों की आंख से आंख मिलाकर अधिकार मांगते हैं.
4: 4 साल हो गई सीनियर स्कूल बने हुए, मात्र 5 टीचर है
5: जो भी थायर ग्रेड की
4: सुनवाई नहीं की गई. 4 साल हो गए खाते हुए, कलेक्टर को मैंने खुद अपने लिखित में कागज दिया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई.
5: सही बात.
4: अगर आपके बच जाते तब भी आप यही सुविधा रखते क्या?
1: एक तरफ लगता है कि आजादी के 80 साल बाद भी स्कूल व्यवस्था राज्यों में ढुलमुल है, दूसरी तरफ अच्छा लगता है कि लोकतांत्रिक रूप से विरोध करना बच्चे जानते हैं.
6: हमारे खाने के लिए थाने में सुड़ी निकलती है, मेढक निकलता है, छिपकली निकलती है, प्रिंसिपल पास लेकर जाओ. इनका ये होता है कि इस मौसम में निकलता है, मैं क्या कर सकता हूँ. दूसरी बात, तुमने खुद डाला होगा और कह भी दें तो कहते हैं दूसरा रखवा लो. ऐसा कि हम लोग मतलब जानवर से बेबत्तर है ये करते हैं हमारे लिए.
1: बच्चों के नारे इस बात का एहसास कराते हैं कि आजादी का असली मतलब अपनी आवाज को बुलंद करना है.
7: हम हमारा अधिकार मांगते
8: हैं.
1: स्वतंत्रता का 80वां महोत्सव खास है क्योंकि अब की जेन जी और जेन अल्फा की बुलंद आवाज है.
9: कल जो आपने प्रदर्शन किया था उसमें कितने रुपए किराया लिया जा रहा था पहले आपसे? और आज कितने रुपए किराया लिया जा रहा है? आपसे भी 10 रुपए. सभी का किराया मान के चलने तो कम हुआ सभी से, ठीक है.
1: लाल किले पर लहराता तिरंगा, वो पल जब देश हमेशा गर्व से भर जाता है, याद करता है स्वतंत्रता की सेनानियों को. भारत और भारतीयता के विश्वास से उत्प्रोत हर नागरिक के लिए आजादी का दिन बहुत विशेष महत्व रखता है. लेकिन इस बार ये उत्सव और भी विशेष है, जहां भारत के भविष्य की बुलंद होती आवाजें, लोकतांत्रिक रूप से रखी जाती मांगे, अड़ने की जगह बिना डरे हक के लिए लड़ने वाली आदत इस भरोसे को मजबूत करती है कि भारत का बच्चा बच्चा अपने अधिकार और कर्तव्य दोनों को समझ रहा है. आज इसीलिए एक एक करके हम आपको ऐसी तस्वीरों से खबरदार करेंगे। अधिकार और कर्तव्य को समझते भारत की जैन अल्फा की पहली गवाही लखनऊ से आई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मोहान रोड पर जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय है। प्रदेश के समाज कल्याण विभाग के अधीन आने वाले इस स्कूल में छात्र संभव है कि देश में जंतर मंतर आंदोलन से शुरू हुए प्रदर्शन के बाद अपना हक मांगने वाली लकीर पर चलते हुए आगे बढ़े। जहां हॉस्टल में खराब खाना, खाने में बार बार कीड़ा निकलना, बीमार होने पर इलाज की व्यवस्था न होना और शिक्षकों की कमी को लेकर छात्रों का दावा है कि स्कूल प्रशासन ने उनकी शिकायत पर कान नहीं दिया तो ये सड़क जाम करने निकल पड़े। लखनऊ में छात्रों की तरफ से सड़क जाम की खबर आते ही पहले जहां छात्रों को हटाने के लिए पुलिस दिखती रही थी, वहां अब की बार शायद पहली बार ऐसा देखा सुना जा रहा है जब कोई मंत्री तुरंत समस्या सुनने पहुंच गया। जैसे असीम अरुण उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री हैं, प्रदर्शन करते छात्रों के बीच पहुंचकर सीधे कहते हैं चलो तुम्हारी बातें सुनते हैं, शिकायत दूर करते हैं,
2: अंदर चलो बात करते हैं, ट्रैफिक खोलो, ठीक है, तुरंत मेरे साथ आओ।
1: इसके बाद तुरंत मंत्री असीम अरुण के साथ छात्र भीतर आते हैं। यहीं आज हम आपको दिखा रहे हैं कि छात्र संविधान से मिले अधिकार और कर्तव्य दोनों को समझ रहे हैं, जो अपने अधिकार के लिए प्रदर्शन करने का अधिकार भी जानते हैं और मंत्री की तरफ से समस्या सुने जाने की बात आते ही तुरंत रास्ता भी छोड़ देते हैं और फिर समाधान की बात आती है।
2: जो कमियां हैं उनको दूर काफी हद तक किया हम लोग ने, लेकिन मैं स्वयं अभी संतुष्ट नहीं हूँ। हम लोग को कमियों को और दूर करना है। पहली चीज जितने स्टाफ सारे हमारे क्वार्टर बन गए, हमारे ट्रांजिट हॉस्पिटल बन गए, टीचर्स 24 घंटे यहाँ पे रहेंगे, कोई हाँ फार्मासिस्ट भी और भी नॉन टीचिंग स्टाफ जिसके लिए आवास अवेलेबल है। ये आवासीय विद्यालय है, केवल बच्चों का नहीं स्टाफ का, और जिसको रहने में समस्या आ रही है वो अपना इस्तीफा देते घर।
1: लोकतंत्र की यही ताकत है जो इस स्वतंत्रता दिवस को विशेष बनाती है। जहाँ स्कूली शिक्षा का बुनियादी ढांचा लचर है उसे मजबूत करने की मांग खुद बच्चे कर रहे हैं।